0: कहा हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा, वो देश को बताएं किसके कहने पर हुआ पैलेट गन का इस्तेमाल। राहुल के सवालों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, मुद्दा भटकाने का लगाया आरोप, कहा हर बार चेंज करते हैं गोल पोस्ट, माफी मांगे नेता विपक्ष। पेपर लीक पर संसद का बड़ा कदम, पास हुआ परीक्षा बिल, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना, बहस के दौरान जोरदार हंगामा। मानसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। और एमपी में प्रदर्शनकारी किसानों से मिले, मोहन सरकार के मंत्री 25% की जगह 60% मूंग खरीदी का फैसला, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम को लिखी चिट्ठी। पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक हुई। राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया, राहुल गांधी से माफी की मांग की, राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के चलते राहुल गांधी का पूरा भाषण ही नहीं हुआ। इसी बीच लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में सरकार पर सीधा हमला बोला।
1: लोकसभा में राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर बवाल मचा। सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग की, लेकिन राहुल ने माफी मांगने से मना कर दिया। आखिरकार हंगामे के चलते राहुल के पूरे भाषण के बिना ही बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
2: जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रॉसिटी हुई, उन पर पैलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं, एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से, एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोज ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे।
1: राहुल ने 20 मार्च को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन में जख्मी हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें दिखाई। आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में छात्रों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाने नहीं दिया।
2: ये आज मैंने एज एनओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए, हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे, मेरा हक बनता है बोलने का।
1: भले ही आंदोलन खत्म हो चुका है, छात्रों की मांगे सरकार ने मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, लेकिन राहुल गांधी का सवाल है कि छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर किसने दिया था।
2: और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे, सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पेलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पेलेट गन का यूज का ऑर्डर,
1: प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी ने अपनी मांग रखी है। साथ ही कहा कि छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है।
3: मेरा सवाल ये है कि क्या आप अभी कुछ दिन पहले मैं मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल रहा है?
2: अमित शाह मस्ट गो, देयर नो एम्बिग्युटी हियर, देयर नो कंफ्यूजन।
3: ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप?
2: जब तक जानी पड़ेगी। बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही हैज शॉट आवर स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो।
1: राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाया कि संसद में जब राहुल गांधी का एजेंडा फेल हो गया तो सियासत चमकाने के लिए नया खेल खेल रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहाँ? दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त तो हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे।
1: राहुल अपने स्टैंड पर कायम हैं, तो वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी पर आक्रामक है। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सीधा टकराव अब पूरे मॉनसून सत्र में दिखेगा? आज तक ब्यूरो।
0: संसद से सड़क तक राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों पर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सवाल यही है, राहुल गांधी युवाओं के जिन मुद्दों पर सरकार पर आक्रामक हैं, उन मुद्दों के जरिए क्या जेंजी के दिल में जगह बना पाएंगे? आखिर सोशल मीडिया पर एक्टिव जेंजी के दिमाग में राहुल गांधी को लेकर चल क्या रहा है?
1: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन इस आंदोलन के दौरान और आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर सीधे नहीं गए, लेकिन आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और छात्रों की आवाज बनकर देश को आंदोलन के साथ जोड़ दिया। राहुल ने गिरफ्तारी दी, सड़क पर प्रदर्शन किया, युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सरकार पर छात्रों की मांगे मानने के लिए दबाव बनाया। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों के असल मुद्दों को उठाकर राहुल देश के नौजवानों के दिल में जगह बना पाएंगे? क्योंकि वोट की कसौटी पर राहुल बीते दो लोकसभा चुनावों में नौजवानों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं रहे। सीएसडीएस लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के बीच के वोटरों का सिर्फ 21% मत कांग्रेस के खाते में आया, जबकि बीजेपी को 39% मत मिला। वहीं 2019 लोकसभा चुनावों में इसी वर्ग के 20% वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जबकि बीजेपी के पक्ष में 40%, मतलब फर्स्ट टाइम और युवा वोटरों की पहली पसंद बीजेपी रही। यही वजह है कि युवा वोटरों में अपनी पकड़ बनाने के लिए राहुल गांधी लगातार नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का, या फिर शिक्षा व्यवस्था में खामियों का। भले ही सरकार की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों को सियासी बताकर खारिज किया जाता हो, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने की वजह से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। सबसे पहले बात राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट की। बीते 6 महीनों में राहुल के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर मई और जुलाई महीने में बढ़े। मई में नीट का पेपर लीक हुआ और राहुल ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों से सीधा संवाद शुरू कर सिस्टम पर सीधे चोट की, और जुलाई महीने में पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। राहुल ने इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, मतलब छात्रों का मुद्दा उठाने का फायदा राहुल को इंस्टाग्राम पर दिखा। इसे यूं समझिए, फरवरी महीने में 2,42,259 फॉलोअर बढ़े, मार्च में 1,84,178, अप्रैल में 1,74,335, मई में 8,87,670, जून में 2,37,155 और जुलाई में 7,01,239। हमारी पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि पिछले 1.5 महीने में इंस्टाग्राम पर राहुल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील छात्रों या पेपर लीक से जुड़ी थी। 15 जून से 29 जुलाई के बीच इंस्टाग्राम पर 13 रील को 1 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। इसमें कुछ रील्स को 3 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। बड़ी बात यह है कि सभी रील्स पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी हुई हैं। मतलब राहुल ने जो कंटेंट शेयर किया उसमें सबसे ज्यादा रुचि पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर दिखी। बीते 6 महीनों में राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों की हुई। इसका असर उनके यूट्यूब चैनल पर बढ़े सब्सक्राइबर और वीडियो के व्यूज से पता चलता है। बीते 6 महीने के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में उनके यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। इसे समझिए, फरवरी में 1 लाख, मार्च में 1 लाख, अप्रैल में 1 लाख, मई में 1 लाख, जून में 1 लाख, लेकिन जुलाई में 2 लाख। अगर राहुल के YouTube वीडियो के व्यूज को देखें, तो फरवरी में 3,28,84,523, मार्च में 2,18,36,380, अप्रैल में 4,11,51,626, मई में 12,65,30,993, जून में 10,95,72,747 और जुलाई में 12,69,99,084। राहुल ने मई महीने में नीट पेपर लीक के बाद से ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा, पेपर लीक के मामलों के खिलाफ राजस्थान के कोटा से जून में छात्रों की गूंज के नाम से राष्ट्रव्यापी कैंपेन की शुरुआत की थी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने छात्रों के जिन मुद्दों को उठाया उसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर समर्थन मिला। अगर बात राहुल के एक्स अकाउंट की करें तो 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच राहुल ने छात्रों के आंदोलन को लेकर कई पोस्ट किए, जिनमें 4 पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल उठाया। 21 जुलाई को हिरासत से छोड़े जाने के बाद छत्रसाल स्टेडियम से सरकार और छात्रों के नाम राहुल का संदेश। 23 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। 24 जुलाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई जिसमें छात्रों और शिक्षकों को आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की नसीहत दी गई थी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी को मिला समर्थन क्या युवाओं और उनके बीच की खाई को पाट देगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया की तस्वीर तभी सच्चाई में बदलेगी जब असल चुनावों में युवा वोटर अपना सपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर करेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगलवार को जब स्कूल में क्लासरूम के भीतर पंखे, स्कूल में साफ पानी, स्कूल में साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी चीजों की मांग करते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया, तो आज तक ने प्रमुखता से इसे उठाया ताकि प्रशासन सुन पाए और नतीजा ये रहा कि अब छात्रों की मांगें सुनी जा रही हैं।
5: हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले जेन जी के आंदोलन के बाद देश के शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का फतेहपुर हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर और मांगों का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते स्कूली छात्र। इसे जेन अल्फा का प्रोटेस्ट कहा गया। यहां भी तुरंत कामयाबी मिली। ये खबर आपको आज तक ने मंगलवार को ही दिखाई। जेन अल्फा जिन्होंने फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज में स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी जरूरत वाले पंखा बेंच साफ पानी साफ शौचालय को लेकर प्रदर्शन किया है।
6: बच्चों को किरण मारा और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं जर्जर बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं और हम लोग सब लोग मिलकर धरना दिए तो शिक्षकों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा उनको रोक रहा देखो हम चाहते
7: हैं
6: करने धमकी दी जा रही है।
8: मुख्य मांगे है कि स्कूल की अर्थव्यवस्था सुधारी जाए टंकी सफाई करवाई जाए बाथरूम से इतनी स्मेल आ रही है कि उसमें जाने से लड़कियां डरती हैं नहीं जाती हैं।
9: अच्छा इसके पहले कभी आप लोगों ने अपने स्कूल प्रबंधन से कोई बातें की थी इन समस्याओं
8: को लेकर? की जाती है टीचर लोग सुनवाई ही नहीं करते हैं की जाती है बातें डांट देते हैं
10: बोलते हैं ज्यादा नेता ना बनो।
5: इसी प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्कूल विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन को ऐसा हिलाया कि पहले तो तुरंत प्रशासन मामले को समझने और संभालने पहुंचा जहां जिले के अधिकारियों के सामने बच्चियों ने खुलकर अपनी मांगे रखी हैं। 1800 छात्र छात्राओं वाले सर्वोदय इंटर कॉलेज में मंगलवार को इस प्रदर्शन को जेन अल्फा का वो प्रोटेस्ट माना गया जिसको लेकर तुरंत यूपी में प्रशासन सक्रिय हुआ। इसके बाद दो चीजें हुई हैं। एक तरफ तो आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद तुरंत फतेहपुर के इस स्कूल में देखिए पंखा तो कम से कम लगाया जाने लगा। दूसरा आरोप अब प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र की तरफ से सामने आता है। आरोप इस बात का है कि प्रदर्शन की वजह से सादी ड्रेस में पुलिस वाले उसके घर पहुंचे और उसका उसके परिवार का नाम पता पूछकर दबाव बनाने लगे। पहले इस खबर में आई अच्छी बात जानिए जहां बच्चों के प्रदर्शन ने नींद प्रशासन की तोड़ी है। जहां क्लासरूम में पंखा तक नहीं मिलता था वहां स्कूली बच्चों के प्रशासन के बाद पंखा क्लासरूम में लगने लगा। बाकी चीजें भी पूरी करने का भरोसा जिलाधिकारी दे रही हैं।
11: मूलभूत सुविधाएं जैसे आरओ वाटर सप्लाई की या फिर पंखों की या फिर शौचालय या खेल के मैदान की साफ सफाई की और बेंच और क्लासरूम्स रखने की व्यवस्था के बारे में बच्चों के द्वारा एक मांग दी गई थी जिसको मौके पे DIOS के माध्यम से और मजिस्ट्रेट और थाने की फोर्स के माध्यम से चेक कराया गया जिसमें कि बच्चों की मांगें जायज निकली और प्रबंधक को यह निर्देशित किया गया कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं यथाशीघ्र बच्चों को उपलब्ध करा दी जाए। तो जिसमें कि आज दोबारा से टीम को भेजा गया था और इसमें शौचालय और जो साफ सफाई का खेल का मैदान का इशू था वो रिजॉल्व करा दिया गया है। आरओ भी कल तक लग जाएगा। फैन का काम भी 4-5 कमरों में हो गया है। तो इसकी लगातार इसको ध्यान रखा जा रहा है और साथ साथ अन्य प्रबंधकों को भी ये सूचित कर दिया गया है कि अगर कोई भी बच्चों की जायज मांग है और जो मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उसका निस्तारण कराया जाए।
5: मतलब जिले की जिलाधिकारी खुद मानती है कि स्कूली बच्चों ने फतेहपुर में जो प्रदर्शन किया वो जायज है, इसीलिए तो प्रशासन कॉलेज में पंखे लगवाने लगा और बाकी मांगों की व्यवस्था करने का वादा किया। लेकिन अब इस छात्र को देखिए, ये अंकुर सोनकर है जिसका आरोप है कि प्रदर्शन के बाद मांगे जरूर मानी गई लेकिन आरोप इस बात का है कि पुलिस घर पर आकर नाम पता पूछने लगी है।
12: धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद हम जब शाम को हुआ तो फिर इसके बाद पुलिस शासन जो है हमारे घर में दरोगा विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि कहाँ है। फिर इसके बाद यहाँ जो और अदर जो दोस्त हैं वो अपनी आवाज़ उठाए सब लोग सहमत से और उनके घर में जाके उनके गार्जियन से कह रहे हैं कि आप आओ थाना में आओ पता नहीं किस लिए हम बताओ हम अपनी
4: हाथ परेशान कर रहे हैं।
12: जी बिल्कुल, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो क्या पुलिस प्रशासन को वो करना चाहिए? या तो हम अपनी ये जो मांग कर रहे थे हम गलत बोल रहे होंगे पानी के लिए जो गलत मुद्दा उठा या गलत कोई ऐसा किए हो तो उसी समय सर को DIOS सर को उसी समय उनको हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
5: छात्र प्रदर्शन करेगा तो मांग पूरी होनी चाहिए, पर उसके घर पुलिस के जाने का क्या मतलब है? इस सवाल को लेकर आज तक सीधे फतेहपुर की डीएम तक पहुंचता है।
7: तंग की बात नहीं है, इट इज जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंश्योर कि वहां पर कोई असामाजिक तत्व इस चीज का फायदा ना उठाएं और उस वो बच्चों को ना गलत डायरेक्शन में मोड़ें। और क्योंकि हमें साथ साथ ये भी देखना है कि बच्चों का भविष्य उनकी पढ़ाई से संबंधित है और प्रबंधन और बच्चों के बीच में जो गैप्स हैं उसको हम किस प्रकार से एमिकेबली रिजॉल्व कर पाएं और सभी प्रतिनिधियों को हम एक सेम टेबल पे ले पाएं, यही प्रशासन का मूल्य है।
5: डीएम कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और छात्रों का कोई असामाजिक तत्व फायदा ना उठाए इसलिए पुलिस घर तक छात्रों की गई। लेकिन सवाल है कि जो व्यवस्था स्कूल को मेंटेन करनी चाहिए, जहां शिक्षा अधिकारियों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा उठाना चाहिए था, क्या कभी उसके बारे में पहले सोचा गया? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों पुलिस प्रदर्शनकारी छात्र के घर जा रही है? क्यों ना ये माना जाए कि ये छात्र पर दबाव बनाने की कोशिश है, और अगर है तो फिर ये गलत है।
0: पार्टियां चुनाव में या तो नौकरी देने का वादा करती हैं या फिर फ्री वाला वादा। कैशबैक और डिस्काउंट वाले विज्ञापनों में अक्सर आपने बड़ी बड़ी छूट देखी होगी, लेकिन जब आप खरीदने शोरूम पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये छूट चुनिंदा और पुराने सामानों पर ही लागू होती है। दिल्ली के महिला वोटर्स भी कुछ ऐसी ही हालत में है इस वक्त, जिनसे बीजेपी ने चुनावों में 2500 रुपए हर महीने देने का वादा तो किया, इसका ऐलान भी कर दिया गया था। बताया गया कि 17 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ।
13: दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से हमारी ऐसी योजना जिसमें हम दिल्ली की बहनों को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से 2500 रुपए महीना देने वाले हैं, कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
5: दिल्ली में वोट देकर बीजेपी को सत्ता दिलाने वाली जो महिलाएं अपने 2500 रुपए बैंक खाते में आने का इंतजार कर रही थी, उनमें से एक बड़े हिस्से को झटका लग गया है, क्योंकि कंडीशन अप्लाई के नाम पर असल खेल बदलता दिख रहा है।
14: हमने जो वादा किया है उस वादे को अक्षरशः पूरा करेंगे, मगर उसके साथ साथ दिल्ली की जनता को साफ पानी, साफ सड़कें, बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छे स्कूल, टेक एनेबल्ड स्कूल और एआई ड्रिवन एजुकेशन आदि दिल्ली के लोगों को भी देना है। इसलिए प्रारंभिक दौर में आज इस प्रकार की एक व्यवस्था खड़ी की गई है कि एक निश्चित सूची की महिलाओं को पहले ये पॉलिसी दी, इस के तहत राशि दी जाए।
5: चुनावों में बीजेपी ने सरकार बनने पर हर महिला को हर महीने 2500 रुपए देने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद अब बताया जा रहा है कि अगर किसी परिवार में 3 से ज्यादा बच्चे तो उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है वो भी योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी परिवार की सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक या परिवार का कोई सदस्य जीएसटी का भुगतान करता है या सरकारी कर्मचारी है तो ऐसी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो कहानी ये कि दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए महीने की मीठी किश्त तो जरूर मिलेगी, लेकिन शर्तों के साथ। सवाल है क्यों, ये जानने हम दिल्ली के गृह मंत्री के पास पहुंचे, जिन्होंने हमें नियम और शर्तें लागू वाले इस योजना वाले खेल का असल मतलब समझाया।
14: कितने लोग आगे आते हैं, कितने लोग रजिस्टर करते हैं, क्योंकि हम पहली किश्त राखी पर देने वाले हैं। उसके अनुभव के बाद अपने साधनों को बढ़ाते हुए, केंद्र सरकार की मदद लेते हुए इसको हम अपने वादे को पूरा करने की और सब तरफ एक्सटेंड करें।
5: तो दिल्ली सरकार पैसे की कमी का हवाला देकर, विकास करने की दलील देकर अपनी तरफ से नियम और शर्तें लागू के कदम का बचाव करती है, और एक दलील ये भी दी जाती है कि जरूरतमंद लोगों को पहले इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
15: चुनावों से पहले तमाम वादे थे कि भैया कि हर महिला को मिलेगा, उसको आप कैसा देखें?
16: हर जरूरतमंद महिला को मिलेगा, ये मेरे ख्याल समझती हूँ कि हर जरूरतमंद बहनें इस योजना को, जो जरूरतमंद हो, एक स्पेशल क्लॉज था, जरूरतमंद बहनों तक पहुँचेगा, तो ये एक अच्छा है।
0: इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

सात बजे से छह बजे तक वोटिंग, बाकीपुर सीट पर सबकी नजर। गृहमंत्री पर राहुल गांधी का सीधा हमला, कहा हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा। बीजेपी पर पलटवार, भ्रम फैला रहे हैं नेता, विपक्ष माफी मांगे। लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाए गए राहुल की स्पीच के शब्द, बीजेपी ने तीन शब्दों पर जताया था विरोध, अमित शाह पर राहुल ने की थी टिप्पणी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बागी गुट को बार बार समय देने पर उठाए सवाल, पक्षपात का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द जांच की मांग की।

सुबह के 6 बजे हैं और 6 बजे में 6 ताजा खबरों के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात करेंगे 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीट पर आज होने वाले उपचुनाव की। दूसरी खबर आपको बताएंगे राहुल के किस बयान को लेकर संसद में कल हंगामा होता रहा है। वहीं बात होगी पंजाब पेपर लीक से जुड़ी, इसको लेकर घमासान मचा हुआ है जहां विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। और साथ ही आपको ये बताएंगे कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आखिर क्या आरोप लगाए हैं। पांचवी खबर होगी मौसम विभाग ने अब कहां कहां बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी मौसम से जुड़ी। और आखिर में देश का नाम ऊंचा करने वाले एथलीट की भी बात करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला है, किसने दिलाया है गोल्ड, पूरी खबर डिटेल के साथ।

आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की। दरअसल बिहार की बांकीपुर, एमपी की दतिया और गुजरात की मांझलपुर सीट पर आज वोटिंग होने जा रही है, लेकिन बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर सभी की नजरें बनी हुई है। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यह मुकाबला जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर, बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच है। वहीं एमपी की दतिया सीट पर बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच ये महामुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गुजरात के बड़ोदरा जिले की मांझलपुर सीट पर बीजेपी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री भीकाभाई रबारी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब जीत या हार का फैसला 3 अगस्त को होगा। तीनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरा दमखम लगा दिया है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 3 अगस्त को इन तीनों सीटों पर मतगणना होगी। तो उपचुनाव में कहां कहां वोटिंग है, बांकीपुर बिहार से, एमपी की दतिया सीट से, वही गुजरात में मांझलपुर सीट से उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके जो रिजल्ट है वो 3 अगस्त को आएंगे। तो तीनों सीट पर आज महामुकाबला होने वाला है। सुबह 7 बजे से इस वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। तीनों राज्यों की तीन विधानसभा सीट जिनको लेकर उपचुनाव होगा और 7 बजे से इसकी शुरुआत होगी, जो शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, बांकीपुर बिहार की सीट, वही एमपी में दतिया को लेकर उपचुनाव होगा, वही मांझलपुर गुजरात से उपचुनाव होने वाला है।

सबसे जो जरूरी सीट है बिहार में वो है बांकीपुर। देखिए बांकीपुर सीट क्यों अहम है ये आप जानिए। प्रशांत किशोर का चुनावी डेब्यू इसमें है। यहां से कई बार नितिन नवीन भी विधायक रहे हैं, इसलिए बांकीपुर सीट काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद चुनाव हो रहा है और ऐसे में शुरुआत हो जाएगी सुबह 7 बजे से चुनाव की वोटिंग की। दांव पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की साख है, इसलिए बांकीपुर सीट काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। सम्राट सरकार का पहला लिटमस टेस्ट ये एक तरीके से माना जा रहा है। वहीं आपको ये बता दें कि नितिन नवीन का बांकीपुर कनेक्शन आखिर क्या है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद सीट खाली उन्होंने की थी। वहीं पहली बार नितिन नवीन के पिता 1995 में यहां से जीते। और साथ ही आपको ये बता दें कि नितिन नवीन के पिता 1995 से 2005 तक वहां पर विधायक रहे हैं, तो इसलिए नितिन नवीन के लिए बांकीपुर कनेक्शन, क्योंकि पिता के निधन के बाद 2006 का उपचुनाव वो जीते हैं।

तो कांटे का एक महामुकाबला होने वाला है। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल और उम्मीदवार कांग्रेस से भीकाभाई रबारी, दोनों के बीच टक्कर होने वाली है। दतिया में भी वोटिंग है, उनके बीच भी कांटे का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस से घनश्याम सिंह और आशुतोष तिवारी, बीजेपी से। तो दतिया में भी एक कांटे की टक्कर मानी जा रही है। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं मॉनसून सत्र की, जहां आज भी टकराव के पूरे आसार दिख रहे हैं। दरअसल छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन और पुलिस कनेक्शन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। वहीं कल लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पास हो गया है। बिल पर कल भी 9 घंटे तक चर्चा हुई, तो राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक बिल भी पास हो गया। अब जनगण मन की तरह वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। वंदे मातरम का अपमान, अनादर और गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा।

0: बात राहुल गांधी के बयान को लेकर मचे हुए सियासी घमासान की। दरअसल एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक हुई। राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया, राहुल गांधी से माफी की मांग की तो वहीं राहुल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है।
1: लोकसभा में राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर बवाल मचा। सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग की लेकिन राहुल ने माफी मांगने से मना कर दिया। आखिरकार हंगामे के चलते राहुल के पूरे भाषण के बिना ही बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
2: जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रोसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं, एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोज ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे।
1: राहुल ने 20 मार्च को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन में जख्मी हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें दिखाई। आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में छात्रों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाने नहीं दिया।
2: ये आज मैंने एज एनओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए। हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया, उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे। मेरा हक बनता है बोलने का।
1: भले ही आंदोलन खत्म हो चुका है, छात्रों की मांगे सरकार ने मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, लेकिन राहुल गांधी का सवाल है कि छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर किसने दिया था।
2: और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई है, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर।
1: प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी ने अपनी मांग रखी है, साथ ही कहा कि छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है।
2: मेरा सवाल ये है कि क्या आप अभी कुछ दिन पहले यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपोलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल रहा है?
3: अमित शाह मस्ट गो, देयर इज नो एम्बिग्युटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन।
2: ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप?
3: जब तक जानी पड़ेगी। बट the person who has done this, he has shot our students, he's going to be held accountable today or tomorrow.
1: राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाया कि संसद में जब राहुल गांधी का एजेंडा फेल हो गया तो सियासत चमकाने के लिए नया खेल खेल रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहाँ? दो पक्ष है, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे।
1: राहुल अपने स्टैंड पर कायम हैं, तो वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी पर आक्रामक है। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सीधा टकराव अब पूरे मॉनसून सत्र में दिखेगा? आज तक ब्यूरो।
0: तो सड़क से संसद तक राहुल गांधी युवाओं के मुद्दे पर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। सवाल यही है कि राहुल गांधी युवाओं के जिन मुद्दों पर सरकार पर आक्रामक है, उन मुद्दों के जरिए क्या जेंजी के दिल में जगह बना पाएंगे राहुल गांधी? आखिर सोशल मीडिया पर एक्टिव जेंजी के दिमाग में राहुल गांधी को लेकर क्या चल रहा है, देखिए।
1: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन इस आंदोलन के दौरान और आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर सीधे नहीं गए, लेकिन आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और छात्रों की आवाज बनकर देश को आंदोलन के साथ जोड़ दिया। राहुल ने गिरफ्तारी दी, सड़क पर प्रदर्शन किया, युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सरकार पर छात्रों की मांगे मानने के लिए दबाव बनाया। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों के असल मुद्दों को उठाकर राहुल देश के नौजवानों के दिल में जगह बना पाएंगे, क्योंकि वोट की कसौटी पर राहुल बीते दो लोकसभा चुनावों में नौजवानों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं रहे। CSDS लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के बीच के वोटरों का सिर्फ 21% मत कांग्रेस के खाते में आया, जबकि बीजेपी को 39% मत मिला। वहीं 2019 लोकसभा चुनावों में इसी वर्ग के 20% वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जबकि बीजेपी के पक्ष में 40%, मतलब फर्स्ट टाइम और युवा वोटरों की पहली पसंद बीजेपी रही। यही वजह है कि युवा वोटरों में अपनी पकड़ बनाने के लिए राहुल गांधी लगातार नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का, या फिर शिक्षा व्यवस्था में खामियों का। भले ही सरकार की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों को सियासी बताकर खारिज किया जाता हो, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने की वजह से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। सबसे पहले बात राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट की। बीते 6 महीनों में राहुल के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर मई और जुलाई महीने में बढ़े। मई में नीट का पेपर लीक हुआ और राहुल ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों से सीधा संवाद शुरू कर सिस्टम पर सीधे चोट की और जुलाई महीने में पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। राहुल ने इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, मतलब छात्रों का मुद्दा उठाने का फायदा राहुल को इंस्टाग्राम पर दिखा। इसे यूं समझिए, फरवरी महीने में 2,42,259 फॉलोअर बढ़े, मार्च में 1,84,178, अप्रैल में 1,74,335, मई में 8,87,670, जून में 2,37,155 और जुलाई में 7,01,239। हमारी पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि पिछले 1.5 महीने में इंस्टाग्राम पर राहुल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील छात्रों या पेपर लीक से जुड़ी थी। 15 जून से 29 जुलाई के बीच इंस्टाग्राम पर 13 रील को 1 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। इसमें कुछ रील्स को 3 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। बड़ी बात यह है कि सभी रील्स पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी हुई हैं। मतलब राहुल ने जो कंटेंट शेयर किया उसमें सबसे ज्यादा रुचि पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर दिखी। बीते 6 महीनों में राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों की हुई। इसका असर उनके YouTube चैनल पर बढ़े सब्सक्राइबर और वीडियो के व्यूज से पता चलता है। बीते 6 महीने के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में उनके YouTube चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। इसे समझिए, फरवरी में 1 लाख, मार्च में 1 लाख, अप्रैल में 1 लाख, मई में 1 लाख, जून में 1 लाख, लेकिन जुलाई में 2 लाख। अगर राहुल के YouTube वीडियो के व्यूज को देखें तो फरवरी में 3,28,84,523, मार्च में 2,18,36,380, अप्रैल में 4,11,51,626, मई में 12,65,30,993, जून में 10,95,72,747 और जुलाई में 12,69,99,084। राहुल ने मई महीने में नीट पेपर लीक के बाद से ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा, पेपर लीक के मामलों के खिलाफ राजस्थान के कोटा से जून में छात्रों की गूंज के नाम से राष्ट्रव्यापी कैंपेन की शुरुआत की थी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने छात्रों के जिन मुद्दों को उठाया उसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर समर्थन मिला। अगर बात राहुल के एक्स अकाउंट की करें तो 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच राहुल ने छात्रों के आंदोलन को लेकर कई पोस्ट किए, जिनमें 4 पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। 20 जुलाई को छात्रों के संसद भवन पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल उठाया। 21 जुलाई को हिरासत से छोड़े जाने के बाद छत्रसाल स्टेडियम से सरकार और छात्रों के नाम राहुल का संदेश। 23 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। 24 जुलाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई जिसमें छात्रों और शिक्षकों को आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की नसीहत दी गई थी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी को मिला समर्थन क्या युवाओं और उनके बीच की खाई को पाट देगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया की तस्वीर तभी सच्चाई में बदलेगी जब असल चुनावों में युवा वोटर अपना सपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर करेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। दरअसल भारत का शानदार प्रदर्शन अभी भी जारी है। ग्लासगो में तिरंगे का जलवा बरकरार है। एथलेटिक्स से लेकर बॉक्सिंग तक भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पदक की रफ्तार बढ़ा दी है। पैरा एथलेटिक्स में दिलीप महादु 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच चुके हैं। वहीं गावित ने 10.71 सेकंड के शानदार समय के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि भारत के मोहम्मद बासिल ने लगभग 10 सेकंड के साथ सिल्वर मेडल जीता। वहीं लॉन्ग जंप में स्टार एथलीट मुरली श्रीशंकर ने 8 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। श्रीशंकर लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय लॉन्ग जंपर बन गए हैं। इसके अलावा भारतीय मुक्केबाजों ने अपने पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए रिंग में कम से कम 10 मेडल पक्के कर लिए हैं।

आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो रही है और देश भर में आस्था और शिव भक्ति का अद्भुत रंग देखने को मिल रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है। भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए बड़ी तादाद में कांवड़िए उमड़े हुए हैं। तो वहीं वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे। सावन के शुभारंभ पर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया, जहां दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। शुरुआत हो गई है और सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ आस्था की अद्भुत तस्वीरें भी अब सुबह से ही सामने आने लगी है। शिव भक्तों का उत्साह इतना ज्यादा है कि सुबह से ही लंबी लंबी कतार में मंदिर में भीड़ लगी हुई है और महादेव को जल अर्पित करने के लिए भक्त पहुंचे हुए हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश भर से आस्था का नजारा नजर आ रहा है। हर हर महादेव के जयकारों के साथ सावन की शुरुआत अब हो चुकी है। तो देश भर से आस्था और शिव भक्ति का एक अद्भुत रंग देखने को मिल रहा है। शिव मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। भस्म आरती की भी शुरुआत हो चुकी है। बम बम भोले के जयकारों से महादेव की नगरी गूंज रही है। हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए बड़ी तादाद में कांवड़िए भी पहुंच गए, क्योंकि कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। और अब सावन के महीने की शुरुआत के साथ भक्ति की शक्ति नजर आ रही है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह सवेरे भक्त पहुंचे हैं महादेव को जल अर्पित करने के लिए। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है सुबह से ही, और महाकाल मंदिर में भी भस्म आरती का ये अद्भुत नजारा सामने आ चुका है।

0: नया वक्त हो गया है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से पर... प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: सावन के महीने में शिव जी को जल क्यों चढ़ता है? सावन के महीने में मिल सकते हैं कौन से वरदान, और सावन के महीने में क्या है शिव जी का पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
3: May I have your attention, please? College has been out of reach for too many for too long, but talent is everywhere. Opportunity isn't. WGU changes that. We're an online nonprofit university built for working adults, caregivers, first-generation students, and anyone overlooked by traditional colleges. And with low tuition and millions in need-based scholarships awarded each year, WGU makes college possible. This is education without limits. Accessible, affordable, and built for all. Learn more at wgu.edu.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

सात बजे से छह बजे तक वोटिंग, बांकीपुर सीट पर सबकी नजर। गृहमंत्री पर राहुल गांधी का सीधा हमला, कहा हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा। बीजेपी पर पलटवार, भ्रम फैला रहे हैं नेता, विपक्ष माफी मांगे। लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाए गए राहुल की स्पीच के शब्द, बीजेपी ने तीन शब्दों पर जताया था विरोध, अमित शाह पर राहुल ने की थी टिप्पणी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बागी गुट को बार बार समय देने पर उठाए सवाल, पक्षपात का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द जांच की मांग की।

5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 3 की मौत, महानदी में मध्यम बाढ़ का खतरा। ओडिशा में लगातार बारिश ने मचाई तबाही, नागावली नदी पर भी, रायगढ़ में भी टाला हादसा।

और नाबालिग का सुरक्षित रेस्क्यू। उत्तरकाशी में बारिश का कहर जारी, यमुनोत्री हाईवे बंद, गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित।

में डालकर पुल पार करने को मजबूर ग्रामीण, सड़कें बंद और गांव का संपर्क प्रभावित। सुकमा में बारिश का कहर, उफनती नदियों में 50 से ज्यादा गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। रुद्रप्रयाग में बारिश से टनल के बाहर भूस्खलन, अलकनंदा पुल निर्माण पर असर, टनल सुरक्षित। आसनसोल में भूधसान के 24 घंटे बाद भी हालात गंभीर, हजार लोग बेघर हुए, इलाके में नई दरारें से दहशत। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में दर्दनाक हादसा, उफनते नाले से निकली कार में हाथ थामे मिले दंपति के शव। कावड़ यात्रा के दौरान गंगा में डूब रहा हरियाणा का कावड़िया बचाया, एसडीआरएफ ने समय रहते हुए किया सफल रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और नागमार्ग क्षेत्र में बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बांदीपुरा में फ्लैश फ्लड के कारण निचले इलाकों में कई गांवों में आई अचानक बाढ़ से लोगों में दहशत, एसडीआरएफ का बचाव अभियान जारी।

बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। कई क्लब और संस्थान द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है अभियान। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए उतरी भारतीय एथलीट, लोगों तक राहत सामान पहुंचा रही है हिमा दास। सावधानी बरतने की जा रही अपील। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग में टला बड़ा हादसा, कुश नदी में अचानक से फ्लैश फ्लड के कारण बढ़ा जलस्तर, फंसे हुए शख्स का किया गया सफल रेस्क्यू।

लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड मलबे की चपेट में आने के कारण एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। कई जगहों पर प्राकृतिक आपदा के कारण हाईवे बंद। रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर, घरों तक पहुंचा अलकनंदा नदी का पानी। केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली सुरंग के पास भूस्खलन, मौके पर पहुंचे डीएम ने हालात का लिया जायजा। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर जारी, घरों में घुसा पानी और सड़कें नाले में तब्दील, लगभग 16 ग्रामीण मार्ग बंद। राजस्थान के अलवर में तेज बारिश के बाद सड़कें बनी सैलाब, पानी में फंसी एक स्कूल बस, ड्राइवर की सूझबूझ से टला एक बड़ा हादसा, घरों में घुसा बारिश का पानी। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद आवाजाही हुई बाधित, पुलिस ने जगतियाल से मिंचिरियल जाने वाले यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। बुलंदशहर में बारिश बनी काल, स्कूल से लौट रही चौथी की छात्रा उफनते नाले में बही, 48 घंटे बाद भी सुराग नहीं मिला। अब बात कर लेते हैं मानसून सत्र की, जहां पर आज भी टकराव के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन और पुलिस एक्शन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। तो वहीं कल लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पास हो गया। बिल पर कल भी 9 घंटे तक चर्चा हुई। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक बिल भी पास हो गया। अब जनगण मन की तरह वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। वंदे मातरम का अपमान, अनादर और गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुका है।

0: चलिए अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी के बयान को लेकर मचे सियासी घमासान की। दरअसल एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक हुई है। राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया, राहुल गांधी से माफी की मांग भी की गई, तो वहीं राहुल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है।
1: लोकसभा में राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर बवाल मचा। सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग की, लेकिन राहुल ने माफी मांगने से मना कर दिया। आखिरकार हंगामे के चलते राहुल के पूरे भाषण के बिना ही बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
2: जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रोसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं, एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोज ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे।
1: राहुल ने 20 मार्च को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन में जख्मी हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें दिखाई। आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में छात्रों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाने नहीं दिया।
2: ये आज मैंने एज एमओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए, हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, पर मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे। मेरा हक बनता है बोलने का।
1: भले ही आंदोलन खत्म हो चुका है, छात्रों की मांगे सरकार ने मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, लेकिन राहुल गांधी का सवाल है कि छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर किसने दिया था।
2: और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे। सिंपल सी बात है, ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर।
1: प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी ने अपनी मांग रखी है, साथ ही कहा कि छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है।
2: मेरा सवाल ये है कि क्या आप अभी कुछ दिन पहले न्याय मिनिस्टर आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल रहा है?
3: अमित शाह मस्ट गो, देयर नो एम्बिग्युटी हियर, देयर नो कंफ्यूजन।
2: ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप?
3: जब तक जानी पड़ेगी। बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही हैज शॉट आवर स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो।
1: राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाया कि संसद में जब राहुल गांधी का एजेंडा फेल हो गया तो सियासत चमकाने के लिए नया खेल खेल रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहाँ? दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे।
1: राहुल अपने स्टैंड पर कायम है तो वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी पर आक्रामक है। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सीधा टकराव अब पूरे मॉनसून सत्र में दिखेगा? आज तक ब्यूरो।
0: सड़क से संसद तक राहुल गांधी युवाओं के मुद्दे पर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। सवाल यही है कि राहुल गांधी युवाओं के जिन मुद्दों पर सरकार पर आक्रामक है उन मुद्दों के जरिए क्या जेंजी के दिल में जगह बना पाएंगे राहुल गांधी? आखिर सोशल मीडिया पर एक्टिव जेंजी के दिमाग में राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ चल रहा है देखिए।
1: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन इस आंदोलन के दौरान और आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी सीजेपी के मंच पर सीधे नहीं गए, लेकिन आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और छात्रों की आवाज बनकर देश को आंदोलन के साथ जोड़ दिया। राहुल ने गिरफ्तारी दी, सड़क पर प्रदर्शन किया, युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सरकार पर छात्रों की मांगे मानने के लिए दबाव बनाया। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों के असल मुद्दों को उठाकर राहुल देश के नौजवानों के दिल में जगह बना पाएंगे, क्योंकि वोट की कसौटी पर राहुल बीते दो लोकसभा चुनावों में नौजवानों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं रहे। CSDS लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल के बीच के वोटरों का सिर्फ 21% मत कांग्रेस के खाते में आया, जबकि बीजेपी को 39% मत मिला। वहीं 2019 लोकसभा चुनावों में इसी वर्ग के 20% वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जबकि बीजेपी के पक्ष में 40%, मतलब फर्स्ट टाइम और युवा वोटरों की पहली पसंद बीजेपी रही। यही वजह है कि युवा वोटरों में अपनी पकड़ बनाने के लिए राहुल गांधी लगातार नौजवानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का, या फिर शिक्षा व्यवस्था में खामियों का। भले ही सरकार की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों को सियासी बताकर खारिज किया जाता हो, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने की वजह से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। सबसे पहले बात राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट की। बीते 6 महीनों में राहुल के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर मई और जुलाई महीने में बढ़े। मई में नीट का पेपर लीक हुआ और राहुल ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों से सीधा संवाद शुरू कर सिस्टम पर सीधे चोट की और जुलाई महीने में पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। राहुल ने इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, मतलब छात्रों का मुद्दा उठाने का फायदा राहुल को इंस्टाग्राम पर दिखा। इसे यूं समझिए, फरवरी महीने में 2,42,259 फॉलोअर बढ़े, मार्च में 1,84,178, अप्रैल में 1,74,335, मई में 8,87,670, जून में 2,37,155 और जुलाई में 7,01,239। हमारी पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि पिछले 1.5 महीने में इंस्टाग्राम पर राहुल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील छात्रों या पेपर लीक से जुड़ी थी। 15 जून से 29 जुलाई के बीच इंस्टाग्राम पर 13 रील को 1 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले, इसमें कुछ रील्स को 3 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले। बड़ी बात यह है कि सभी रील्स पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी हुई है, मतलब राहुल ने जो कंटेंट शेयर किया उसमें सबसे ज्यादा रुचि पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों पर दिखी। बीते 6 महीनों में राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा पेपर लीक और छात्रों के मुद्दों की हुई। इसका असर उनके YouTube चैनल पर बढ़े सब्सक्राइबर और वीडियो के व्यूज से पता चलता है। बीते 6 महीने के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में उनके YouTube चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। इसे समझिए, फरवरी में 1 लाख, मार्च में 1 लाख, अप्रैल में 1 लाख, मई में 1 लाख, जून में 1 लाख, लेकिन जुलाई में 2 लाख। अगर राहुल के YouTube वीडियो के व्यूज को देखें तो फरवरी में 3,28,84,523, मार्च में 2,18,36,380, अप्रैल में 4,11,51,626, मई में 12,65,30,993, जून में 10,95,72,747 और जुलाई में 12,69,99,084। राहुल ने मई महीने में नीट पेपर लीक के बाद से ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा, पेपर लीक के मामलों के खिलाफ राजस्थान के कोटा से जून में छात्रों की गूंज के नाम से राष्ट्रव्यापी कैंपेन की शुरुआत की थी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने छात्रों के जिन मुद्दों को उठाया उसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर समर्थन मिला। अगर बात राहुल के एक्स अकाउंट की करें तो 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच राहुल ने छात्रों के आंदोलन को लेकर कई पोस्ट किए, जिनमें 4 पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। 20 जुलाई को छात्रों के संसद भवन पर हुए लाठीचार्ज पर सवाल उठाया। 21 जुलाई को हिरासत से छोड़े जाने के बाद छत्रसाल स्टेडियम से सरकार और छात्रों के नाम राहुल का संदेश। 23 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। 24 जुलाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई जिसमें छात्रों और शिक्षकों को आंदोलन में हिस्सा नहीं लेने की नसीहत दी गई थी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी को मिला समर्थन क्या युवाओं और उनके बीच की खाई को पाट देगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया की तस्वीर तभी सच्चाई में बदलेगी जब असल चुनावों में युवा वोटर अपना सपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर करेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब में पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिरोमणि अकाली दल के नेता और भटिंडा सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पंजाब में सामने आए 11 परीक्षा पेपर लीक मामलों की केंद्रीय जांच कराने की मांग की है। तो वहीं हरसिमरत ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार जांच को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने ये दावा किया है कि इन मामलों से करीब 5 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
5: आज मैं गृह मंत्री जी नो चिट्ठी लिखी है कि जिन्ने भी पेपर लीक पंजाब चे होए ने उना सारिया दी एक सेंट्रल एजेंसी दे नाल उना दा इनक्वायरी कीती जाए, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरु दोखी ओदे नाल पावे केजरीवाल पावे ससोदिया बिल्कुल झूठ मार के कवर अप कर रहे ने।
0: पश्चिम बंगाल की सियासत में टीएमसी के चुनाव चिन्ह और असली पार्टी की पहचान को लेकर चल रही लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द फैसला किया जाए। ममता ने आरोप लगाया है कि विरोधी गुट जानबूझकर फैसला टालने के लिए समय मांग रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने 2 जुलाई को दोनों गुटों से दावे पर जवाब मांगा था और 6 जुलाई तक समय सीमा तय की थी। ममता गुट ने तय समय पर अपना जवाब दाखिल कर दिया था, जबकि रिद्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को पहले 10 जुलाई और फिर 25 जुलाई तक समय दिया गया। ममता ने कहा कि अब और समय देने से निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: सावन के महीने में शिव जी को जल क्यों चढ़ता है? सावन के महीने में मिल सकते हैं कौन से वरदान और सावन के महीने में क्या है शिव जी का पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बजे से 6 बजे तक वोटिंग, बाकीपुर सीट पर सबकी नजर। गृहमंत्री पर राहुल गांधी का सीधा हमला, कहा हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा, बीजेपी पर पलटवार, भ्रम फैला रहे हैं नेता, विपक्ष माफी मांगे। लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाए गए राहुल की स्पीच के शब्द, बीजेपी ने 3 शब्दों पर जताया था विरोध, अमित शाह पर राहुल ने की थी टिप्पणी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बागी गुट को बार बार समय देने पर उठाए सवाल, पक्षपात का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द जांच की मांग की।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना आज से शुरू हो रहा है, तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे सावन के महीने का महत्व क्या है, सावन के महीने में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और सावन के महीने का पूजा विधान क्या है। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 9:30 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र शाम के 5:43 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज से सावन महीने का आरंभ हो रहा है। सावन यानी श्रावण के महीने की महिमा क्या है, पहले ये जानते हैं। श्रावण का महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, उसमें चातुर्मास का पहला महीना श्रावण का महीना है। इस महीने का संबंध पूरी तरह से भगवान शिव से माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि श्रावण के महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। विष पीने के बाद

बाद उस उग्र विष को, उस गर्म विष को शांत करने के लिए भक्त इस महीने में शिव जी को जल अर्पित करते हैं। पूरे साल भर पूजा करने का जो फल पाया जाता है वो केवल सावन में पूजा करके पाया जा सकता है। सावन का महीना इतना पवित्र महीना है कि इस महीने में आप शिव जी की पूजा करके अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तपस्या के लिए, साधना के लिए और वरदान पाने के लिए ये महीना बहुत शुभ है। भगवान शिव की कृपा से आप अपने भाग्य को, अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं और सावन के महीने में अगर आप शिव जी की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रारब्ध बदल सकता है। इस बार सावन का महीना 30 जुलाई से आरंभ हो रहा है और ये महीना 28 अगस्त तक रहेगा। तो जितने दिन सावन का महीना रहेगा उतने दिन सावन के महीने के नियमों का पालन करना चाहिए। सावन के महीने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले। और अब हम आपको बताएंगे सावन के महीने का एक विशेष उपाय सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो सावन का पावन महीना बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान शिव का वरदान पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए अगर आप सावन के महीने में साधना करें, उपासना करें, तपस्या करें
तो किस तरह के विशेष लाभ आपको हो सकते हैं? जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास करने के बावजूद ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके विवाह का वरदान पा सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है, उनको भी आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है। सावन में शनि देव की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। अगर आप सावन में शनि देव की पूजा करें तो शनि संबंधी दोषों को दूर कर सकते हैं। सावन के महीने में आप पूजा उपासना करके, तपस्या करके अपनी कुंडली के तमाम दोषों को शांत कर सकते हैं। जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष और गुरु चांडाल दोष आदि को आप सावन में समाप्त कर सकते हैं। सावन का महीना एक ऐसा महीना है जब इस महीने में सर्प की पूजा की जा सकती है। सर्प की पूजा और कभी नहीं कर सकते। मुख्यतः जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग सावन में पूजा जरूर करें। और जिनकी कुंडली में कोई दोष है, कोई बाधा है, अगर सावन के महीने में पूजा करें तो उनके दोष, उनकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। सावन पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या

होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब सावन का महीना शुरू हो गया है तो घर घर में, मंदिरों में, शिवालयों में भगवान शिव की पूजा होगी। सामान्य रूप से हम और आप सावन में कैसे पूजा करेंगे? कम से कम इतना करिए कि सावन में जितने सोमवार पड़ रहे हैं हर सोमवार को उपवास रखिएगा। शिवलिंग पर रोज प्रातः जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। दूध कम से कम चढ़ाइएगा और तांबे के बर्तन से, तांबे के पात्र से दूध अर्पित मत करिएगा। रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाने के बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र या शिव मंत्र का जप करिएगा। और जब सुबह आप शिव जी को जल चढ़ा लें, नमः शिवाय का या शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर लें, तब आप जलपान या फलाहार करिएगा। अगर आप एक दाना रुद्राक्ष का पहनना चाहते हैं या रुद्राक्ष की माला पहनना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जिसको भी रुद्राक्ष धारण करना हो वो सावन में शिवलिंग पर स्पर्श करा के रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर सकता है। सावन पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और सावन के विशेष अवसर पर आपको बताएंगे एक सावन सूत्र के बारे में, सावन के अचूक उपाय के बारे में। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, चोट चपेट से बचाव करें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, करियर की समस्याओं में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे,
वाहन सावधानी से चलाएं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, पूरा सावन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरे सावन में भी सावन के जितने सोमवार होते हैं ये अपने आप में सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। तो सावन के सोमवार पर पूजा के नियम क्या हैं? देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चने आ रही हो तो सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर कुंडली में आयु की बाधा है या स्वास्थ्य की बाधा है या मानसिक समस्या है तब भी सावन के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। जो बालिकाएं, जो कन्याएं शीघ्र विवाह के लिए पूजा करती हैं उनको सावन के सोमवार पर उपवास रखना चाहिए, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए और सावन के सोमवार की रात को जग करके पूजा साधना करनी चाहिए। अगर ऐसा करें बालिकाएं तो उनका विवाह शीघ्र होगा। और अगर कोई विवाहिता स्त्री है जो सावन के सोमवार पर शिव जी की पूजा करती है तो वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा। देखिए, सावन के महीने में खान पान में दो तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में आयुर्वेद कहता है कि साग नहीं खाना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स पत्तेदार सब्जियां यानी साग सावन के महीने में ना खाएं, उसमें कीड़े हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। दूसरा, सावन के महीने में कच्चे सब्जियां खाने से बचना चाहिए, उनको उबाल कर पका कर खाना ही आपके लिए बेहतर होगा। और तीसरा, सावन के महीने में अगर आप गर्म पानी का सेवन करें, गुनगुने जल का इस्तेमाल करें पीने के लिए, तो इससे आपका स्वास्थ्य और आपकी पाचन की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। खान पान में सावधानी बनाए रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

सर मिलेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि शिव जी की पूजा में बेलपत्र, पंचामृत, जल, फूल ये सब चढ़ाना जरूरी है। क्या ऐसा है? देखिए, शास्त्र कहता है कि भगवान सूर्य नमस्कार से प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु अलंकार यानी आभूषण से प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव केवल जल से प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी की पूजा में आप बेलपत्र ना चढ़ाएं, आप पंचामृत ना चढ़ाएं, फल और मिठाई ना चढ़ाएं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान शिव की पूजा में जल चढ़ाना जरूरी है। आप कुछ भी भगवान शिव को अर्पित करें लेकिन भगवान शिव प्रसन्न होंगे जल अर्पित करने से। तो मुख्यतः शिव जी की पूजा में और किसी चीज का प्रयोग ना भी करें तो जल का प्रयोग अवश्य करिएगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामले में लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है, पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी।
अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपने साथ एक पीला फूल रख के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास चिकित्सा या इलाज के लिए जाना है तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा तुला राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज प्रतिपदा तिथि है, सावन शुरू हो रहा है। आज थोड़ा समय निकाल कर किसी भी समय भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में अब बात करते हैं सावन सूत्र की और आपको बताते हैं सावन महीने का एक अचूक उपाय। सावन में अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? सावन में जितने दिन भी संभव हो रोज शाम को शिव मंदिर में घी का या तिल के तेल का दीपक जलाइएगा पूरे सावन में, और दीपक जलाने के बाद अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करिएगा। अगर सावन में अधिक से अधिक दिन रोज शाम को ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

चलिए अब बात करते हैं तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की। दरअसल बिहार की बांकीपुर, एमपी की दतिया और गुजरात की माजलपुर सीट पर आज वोटिंग शुरू हो गई है। लेकिन बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर सभी की नजरें बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यह मुकाबला जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर, बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच है। तो वहीं एमपी की बात करें तो एमपी की दतिया सीट पर बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच महामुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गुजरात के वडोदरा में भी उपचुनाव है और वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो वडोदरा की जिले की मांजुलपुर सीट पर बीजेपी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री भीकाभाई रबारी को चुनावी मैदान में उतारा। अब जीत या हार का फैसला 3 अगस्त को होगा। तीनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरा दमखम लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का।

बिहार एमपी और गुजरात में वोटिंग, उपचुनाव में तीनों राज्यों में एक एक सीट पर वोटिंग। बिहार एमपी और गुजरात में वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी, वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। आज भी संसद में टकराव के पूरे आसार, पैलेट गन पुलिसियाई कार्रवाई को लेकर आज भी घमासान। अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है विपक्ष। गृहमंत्री अमित शाह का राहुल गांधी ने मांगा इस्तीफा, कहा पैलेट गन मामले में शाह के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं। राहुल गांधी ने पूछे सवाल, छात्रों पर किसके कहने पर पैलेट गन चलाया गया, क्या गृहमंत्री को अपने मंत्रालय की जानकारी नहीं थी। इडियट अंधभक्त शब्द को लोकसभा रिकॉर्ड से हटाया गया, राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान दिया था बयान, हुआ बवाल। समित पात्रा का राहुल गांधी पर निशाना, समित पात्रा ने कहा राहुल गांधी देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, गोली चलाने की बात बिल्कुल झूठ, छात्रों पर गोली नहीं चली। राहुल के बजरंग दल पर टिप्पणी से वीएचपी खफा, वीएचपी ने राहुल गांधी को झूठे और देश विरोधी तत्वों का नेता बताया। वीएचपी राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, राहुल गांधी का आरोप, बजरंग दल के सदस्यों ने छात्रों पर हमला किया। पेपर लीक मामले में योगी सरकार को अखिलेश ने घेरा, यूपी में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए, कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा पेपर लीक में जो शामिल है उनके रिश्ते सरकार से है। पंजाब में पेपर लीक को लेकर अकाली नेता हरसिमरत कौर ने अमित शाह को पत्र लिखकर जांच के आदेश देने की बात की। पंजाब में परीक्षा के 11 पेपर लीक मामलों की केंद्रीय जांच की मांग की गई, हरसिमरत ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भोजशाला विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नमाज के लिए वैकल्पिक जगह तय करने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई। आज से तेजस्वी यादव ने बिहार में प्रदर्शन की चेतावनी दी, कहा अगर प्रदर्शनकारियों पर केस वापस नहीं लिए गए तो करेंगे राज्यव्यापी प्रदर्शन। पेपर लीक मामले के लिए बिहार में 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित, पटना में टीआरई 3 सिपाही भर्ती, बीपीएससी केसों की सुनवाई। पटना के नौबतपुर में युवती पर फायरिंग की गई, युवती को पटना एम्स में कराया गया है भर्ती, युवती पर 3 गोलियां चलाई गई। ठाकरे शिंदे गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बंगाल में ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी, असली टीएमसी को लेकर जल्द फैसला करने की मांग की। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में विरोधी गुट पर देरी की चाले चलने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने 6 जुलाई को समय सीमा के साथ दोनों पक्षों से राय मांगी थी। ममता बनर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल में गंभीर राजनीतिक नतीजे हो सकते हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई, अभिषेक के खिलाफ 8 एफआईआर में मामले में सख्त कार्रवाई से संरक्षण की मांग की गई थी। मध्य प्रदेश में खत्म हुआ किसानों का आंदोलन, सरकार से बातचीत के बाद किसानों को दिया गया आश्वासन, पहले से ज्यादा होगी मूंग की खरीद। सरकार ने गठित की कमेटी, 25% से 7% मूंग खरीद बढ़ाया, भोपाल के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का बयान, सरकार स्थिति की कर रही है समीक्षा। किसान 100% खरीद की कर रहे हैं मांग, सरकार ने किसानी को आश्वासन दिया कि पहले से ज्यादा मूंग खरीदेगी और ई टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई। भोपाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हुई, एसपी मोनिका शुक्ला का बस रोकने वाला वीडियो तेजी से हुआ वायरल। ओडिशा में बाढ़ का कहर, 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, 3 की मौत हुई, महानदी में बाढ़ का खतरा। ओडिशा में लगातार बारिश ने मचाई तबाही, नागावली नदी उफान पर, रायगढ़ में बड़ा हादसा टला। रायगढ़ में उफनती नागवाली नदी के बीच ट्रैक्टर फंसा चालक और नाबालिग का सुरक्षित रेस्क्यू। उत्तरकाशी में बारिश का कहर जारी, यमुनोत्री हाईवे बंद, गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित। बैली ब्रिज अधूरा, जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर ग्रामीण, सड़कें बंद और गांव का संपर्क प्रभावित हुआ। सुकमा में बारिश का कहर, उफनती नदियों से 50 से ज्यादा गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। रुद्रप्रयाग में बारिश से टनल के बाहर भूस्खलन, अलकनंदा पुल निर्माण पर असर, टनल सुरक्षित। आसनसोल में भू धसन के वजह से 24 घंटे बाद भी हालत गंभीर, 1000 लोग बेघर हुए, इलाके में नई दरारें से दहशत। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में दर्दनाक हादसा, उफनते नाले से निकली कार में हाथ थामे मिले दंपति के शव। कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा में डूब रहा हरियाणा का कांवड़िया बचाया गया, एसडीआरएफ ने समय रहते हुए किया सफल रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और नागमार्ग क्षेत्र से बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बांदीपुरा में फ्लैश फ्लड के कारण निचले इलाकों में कई गांवों में आई अचानक से बाढ़ के कारण लोगों में दहशत, एसडीआरएफ का बचाव अभियान जारी। डोडा में जोरदार बारिश हुई, प्रशासन और मौसम विभाग ने बाढ़ और भूस्खलन की वजह से आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। असम में बाढ़ से हालत गंभीर, अब तक 78 लोगों की मौत हुई, 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। ऊपरी असम में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी, कई क्लब और संस्थान द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है अभियान।
असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए उतरी भारतीय एथलीट, लोगों तक राहत सामान पहुंचा रही है हिमा दास, सावधानी बरतने की जा रही है अपील। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग में टला बड़ा हादसा, कुश नदी में अचानक से फ्लैश फ्लड के कारण बढ़ा जलस्तर, फंसे हुए शख्स का किया गया सफल रेस्क्यू। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से बिगड़े हालात, 3 नेशनल हाईवे समेत 140 से अधिक सड़कें बंद, चारधाम यात्रा पर भी आज से रोक। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड, मलबे की चपेट में आने के कारण एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, कई जगहों पर प्राकृतिक आपदा के कारण हाईवे बंद। रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर, घरों तक पहुंचा अलकनंदा नदी का पानी। केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली सुरंग के पास भूस्खलन, मौके पर पहुंची डीएम ने हालात का लिया जायजा। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर जारी, घरों में घुसा पानी, सड़कें नाले में तब्दील हुई, लगभग 16 ग्रामीण मार्ग बंद किए गए। राजस्थान के अलवर में तेज बारिश के बाद सड़कें बनी सैलाब, पानी में फंसी स्कूल बस, ड्राइवर की सूझबूझ से टला एक बड़ा हादसा, घरों में भी घुसा बारिश का पानी। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद आवाजाही हुई बाधित, पुलिस ने जगतियाल से मिंट्रियल जाने वाले यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। बुलंदशहर में बारिश बनी काल, स्कूल से लौट रही 4th की छात्रा उफनते नाले में बही, 48 घंटे बाद भी सुराग नहीं मिला। पुणे में एनसीपी नेता पार्थ पवार की सगाई समारोह में पहुंचे महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी नेता पार्थ पवार की सगाई समारोह की फैमिली फोटो आई सामने, कई दिग्गज नेता आए नजर। तमिलनाडु के सीएम विजय चेन्नई ने ओमांथुरार एस्टेट से नंदनम तक मेट्रो ट्रेन से यात्रा की, मेट्रो में एंट्री करते देख मेट्रो कर्मी भी खुशी से झूमे। नैनीताल की मॉल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध रहेगा, उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगेगा 1000 रूपये तक का जुर्माना। देवगढ़ के बाबा बैद्यनाथ धाम में लगने वाले राजकीय श्रावणी मेले का हुआ भव्य उद्घाटन, दुमा बॉर्डर पर विधिवत दीप प्रज्वलित कर हुआ मेले का शुभारंभ। ग्रेटर नोएडा में पुलिस से बचकर सोसायटी में घुसा चोर, सुरक्षाकर्मियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। कोटा में बीच सड़क स्कूटी सवार युवक पर 4 बदमाशों ने चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला, पुलिस जवानों ने बचाई जान, चाकू समेत मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर में शादी का रिश्ता लेकर घर में घुसे बदमाश, परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में उफनती सरयू नदी के बीच जा बैठा नशे में धुत शख्स, ग्राम प्रधान ने बचाई युवक की जान, पुलिस एक्ट के तहत कटा चला। झांसी में चालक को झपकी आने के कारण यात्रियों से भरी बस की डंपर से टक्कर, चालक समेत 2 की मौत, करीब 40 लोग घायल हुए। इंदौर में चोरी के शक में 2 युवकों की को दी गई तालिबानी सजा, हाथ पर बांधकर बेल्ट और लात घूसों से की बेरहमी से पिटाई। पश्चिम बंगाल पुलिस का बड़ा एक्शन, बीरभूम में कारोबारी के घर से करोड़ों की नकदी और 15 किलो सोना जब्त किया गया। संत कबीर नगर में जिलाधिकारी कार्यालय पर एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। बेगूसराय में जमीन कब्जे को लेकर फायरिंग में 4 लोग घायल हुए, भीड़ ने बदमाशों की पिटाई कर वाहनों में तोड़फोड़ की। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में 4 गौ तस्कर गिरफ्तार, 3 25,000 के इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। महाराष्ट्र के जालना में स्कूल के सामने युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, धारदार हथियार से ताबड़तोड़ बार कर शव को फेंका, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। जालना में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, राज्य कर अधिकारी और टैक्स कंसल्टेंट को 60,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। नागपुर में मंदिर में दान पेटी चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, चोरी से पहले आरोपी भगवान से माफी मांगते नजर आया है। भीड़ में आईटीआई परिसर में पेड़ से लटका शव मिलने की वजह से हड़कंप मचा, पॉक्सो मामले में केस दर्ज। मुंबई में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, साफ सफाई में गंभीर खामियों पर 5 प्रतिष्ठित क्लबों के फूड लाइसेंस किए गए सीज। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला, अब तक कुल 15 मिले, बॉक्सिंग में 10 मेडल मिलने तय। दिलीप महादुग ने पैरा 100 मीटर की रेस में जीता गोल्ड मेडल और गावित ने 10 से भी कम सेकंड की जीती रेस। पैरा 100 मीटर की रेस में भारत के मोहम्मद बासिल ने जीता सिल्वर मेडल, बासिल ने लगभग 10 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर रहे। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने जीता सिल्वर मेडल, लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने मुरली। बॉक्सिंग में जैस्मिन महिलाओं की 57 किलो वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है और अगला मुकाबला 31 जुलाई को लेसोथो की खिलाड़ी से होगा। दुनिया के टॉप 50 T20 बल्लेबाजों में शामिल हुए वैभव सूर्यवंशी लगाए 230 स्थान की लंबी छलांग लगाकर 48वें नंबर पर पहुंचे। 536 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के 48वें नंबर के बल्लेबाज बने सूर्यवंशी, पहली बार टॉप 50 में बल्लेबाजों में हुए शामिल। T20 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन नंबर 1 स्थान पर काबिज, 910 है रेटिंग पॉइंट्स। वनडे में भारत के कप्तान शुभमन गिल वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज, विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर है। टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में भारत की पेस बैटरी जसप्रीत बुमराह की बादशाहत कायम हुई,
870 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर वन स्थान पर काबिज। इराक में मौजूद कताइब हिजबुल्ला संगठन के हमलों के बाद चेतावनी, कहा अमेरिका और सऊदी अरब को देंगे कड़ा जवाब। ईरान को लेकर रॉयटर्स के हवाले से एक बड़ी खबर, युद्ध के बीच ईरान को हथियार बेचेगा चीन, करीब 400 मैनपैड सिस्टम खरीदेगा ईरान। जॉर्डन पर ईरानी हमले की तस्वीर आई सामने, अमेरिकी एयरबेस और सेंट्रल कमांड सेंटर को निशाना बनाकर ईरान ने किया था हमला। यूक्रेनी विदेश मंत्री से बातचीत के दौरान ईरानी विदेश मंत्री अराग्ची की दो टूक, कहा ईरानी नागरिकों पर हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, दरअसल यमन के हूती विद्रोही दक्षिणी लाल सागर से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों पर टैक्स लगाने पर कर रहे हैं विचार।

0: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
1: You're listening to CNBC.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
3: Keep it on smooth jazz.
4: This is Roots Reggae
5: exclusively on TuneIn.
6: This is classic hip hop
7: exclusively on TuneIn.
0: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
10: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।

0: पहाड़ों पर भारी बारिश कैसे लोगों की जान जोखिम में डाल देती है ये तस्वीरें बता रही हैं। ये रुद्रप्रयाग का तिलवाड़ा पुल है जहां मंदाकिनी नदी में ये महिलाएं फंस गई हैं। ये महिलाएं नदी में बह रही लकड़ियों को निकालने के लिए यहां गई थी, लेकिन अचानक से नदी में पानी बढ़ गया। जिस तरफ से महिलाएं गई थी वहां पानी भर गया, जिससे महिलाएं यहीं फंस कर रही।
1: ये तीन महिलाएं तिलवाड़ा की नदी के तट पर लकड़ी लेने गई थी, तो दोनों ओर से बाढ़ आने के कारण ये तीनों महिलाएं यहां पर फंस गई हैं।
0: इसके बाद लोगों ने एसडीआरएफ को सूचना दी। तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। नदी के एक तरफ से छोटा सा अस्थायी पुल बनाया गया और फिर एक एक करके इन महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। गनीमत थी कि कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि नीचे नदी का बहाव बहुत तेज था और इसी बहाव में इन महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया। रुद्रप्रयाग में सारी नदियां उफान पर हैं। ये अलकनंदा की तस्वीरें हैं जो बिल्कुल खतरे के स्तर पर पहुंच गई है। अलकनंदा का डेंजर लेवल 627 मीटर है और नदी अभी 626 मीटर तक पहुंच गई है। सब कुछ जलमग्न हो गया है। यहाँ बड़े बड़े घाट हैं, भगवान शिव की मूर्ति है वो भी नदी में डूब गई और अब तो लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। लोगों को प्रशासन अलर्ट कर रहा है क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यह है प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव गुफा। यहाँ गुफा के अंदर शिवलिंग है और बगल में अलकनंदा बहती है। अलकनंदा के जल से श्रद्धालु शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन अभी तो हालात ऐसे हैं कि अलकनंदा सीधे खुद ही गुफा के अंदर जलाभिषेक कर रही हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगातार बारिश को देखते हुए केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है, क्योंकि बारिश और भूस्खलन हो रहा है, इसीलिए यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी गई है और यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रुकने की सलाह दी गई है। फिलहाल यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका जा रहा है, क्योंकि कल रात ही केदारनाथ हाईवे पर गुप्तकाशी में पहाड़ी टूट गई और मलबा दो दुकानों में घुस गया, जिससे कई दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। इधर चमोली में देर रात से बारिश जारी है, जिसकी वजह से कंचनगंगा के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। यहाँ पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी सड़कों पर आ गए, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। सड़क खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन कह रहा है कि मौसम सामान्य होने तक यात्रा न करें और सतर्क रहें। बारिश से तबाही उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में भी हो रही है। यहाँ चंबा में सोमवार की रात को बारिश ने भारी तबाही मचाई। मलबा कई घरों में घुस गया। राहत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई घरों, दुकानों और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। मलबे की चपेट में आने से 12 से ज्यादा वाहन दब गए, जिनमें निजी कारें, मालवाहक ट्रक, मोटरसाइकिलें और स्कूटी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में 28 जुलाई से 31 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। 30 और 31 जुलाई को कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: संसद के दो सदनों में दो विधेयक पर चर्चा हुई, लेकिन शोरगुल सिर्फ गृह मंत्री को लेकर रहा। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पर चर्चा, लेकिन गृह मंत्री नहीं थे, इसलिए विपक्ष नाराज हुआ। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हुई और गृह मंत्री नहीं थे, इसीलिए सियासत की।
2: इसका लक्ष्य क्या होता है?
1: दरअसल संसद में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा चल रही थी। राहुल बोलने उठे, उन्होंने पहले भारतवासियों को एक कहानी के जरिए तीन कैटेगरी में बांटा, जिसमें एक वर्ग विद्यार्थियों और बाकी दो कैटेगरी बेवकूफ और अंधभक्त वाली बताई। इस पर शोर हुआ, असंसदीय शब्द क्यों बोल रहे हैं, तो वो असंसदीय शब्द निकाला गया।
2: जब नहीं यूज करूंगा सर, आई विल नॉट यूज।
1: फिर राहुल ने कहा कि इस्तीफा तो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, लेकिन एजुकेशन सिस्टम पर आरएसएस ने कब्जा कर रखा है।
2: एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी इन इंडिया टुडे हैज अ वाइस चांसलर फ्रॉम द आरएसएस।
1: चर्चा आगे बढ़ी थी, राहुल गांधी ने सीधे गृह मंत्री पर वार करना शुरू किया।
2: दैट द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
1: राहुल ने अमित शाह पर ताबड़तोड़ आरोप लगाने शुरू कर दिए। राहुल ने कहा कि गृह मंत्री में सामने आने का साहस, गृह मंत्री 30 कारों के काफिले में चलते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि गृह मंत्री के आदेश पर विद्यार्थियों पर गोली चली।
2: He is not here today because he is scared.
1: सरकार ने तुरंत बड़ा विरोध किया, अमर्यादित, अपुष्ट, आपत्तिजनक आरोपों के सबूत राहुल गांधी से मांगे।
3: किस बेसिस पे ये बयान दिया? बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी। मैं इसका आपत्ति करता हूँ। क्या राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. Rahul Gandhi ji ne inquiry ka baat nahi kiya. Unhone seedha naam lekar ke firing order ka baat kiya. Itna gambhir aarop hai. Aap Gandhi ji ka naam lekar ke aapne jo shabd istemal kiya, jo aapne vaktavya diya, is basis pe aapne kaha hai, aap proof dikhao. आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। माफी मांगेगा तो हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता।
4: सदन की कार्रवाई,
1: शोर हुआ, स्थगन हुआ और फिर राहुल गांधी का भाषण अधूरा रह गया। दोबारा एक मिनट के लिए कार्रवाई शुरू हुई तो राहुल पर पलटवार तेज हुआ।
5: ये हाउस नियम कानून से चलता है, रूल 117 और रूल 132। ये कहता है कोई भी एमपी केवल और केवल बिल पर बोलेगा, रूल नंबर 117 और 132। राहुल गांधी अपने आप को भी इडियट नहीं कह सकते हैं, इडियट जो है इन्होंने विद्या की होगा। अगर आप
1: एंटी पेपर लीक बिल पर 10 घंटे की चर्चा तय, 3 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो मंत्री के जवाब का वक्त हो चुका था।
6: नौकरी की मांग, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है, इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती।
1: मंत्री जितेंद्र सिंह के पूरे जवाब तक विपक्ष की ओर से नारेबाजी होती है और इसी शोर शराबे के बीच विधेयक पर संशोधन नामंजूर हुआ, विधेयक मंजूर हुआ।
7: जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड एक अधिनियम शुद्ध और विधेयक का पूरा नाम विधेयक अंग बने। मंत्री जी अब

जब में मुरली को सिल्वर मेडल हासिल हुआ। आज से आ गया सावन का पवित्र महीना, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। महाकाल मंदिर की विशेष भस्म आरती में भी पहुंचे हजारों भक्त, कांवड़ यात्रा भी शुरू।

बज चुके हैं और अब वक्त है खास बुलेटिन सुपर आठ का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे संसद में पेपर लीक बिल पर सियासी संग्राम की, साथ ही आपको दिखाएंगे कि शाह पर राहुल के बयान को लेकर कैसे सियासी घमासान तेज हो गया है, और आज तीन विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव की भी एक एक झलक आपको दिखाएंगे। जिक्र करेंगे कि पटना के थाने में आखिर क्यों प्रशांत किशोर का गुस्सा फूटा, खबर टीएमसी के सिंबल की लड़ाई से जुड़ी भी होगी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भोपाल में कैसे प्रदर्शनकारी किसान मान गए हैं। खबरें मानसूनी संकट की भी दिखाएंगे, कहां पर लहरों में फंस गई है जिंदगी, और ईरान पर अमेरिकी हमले का भी अपडेट आपको देते रहेंगे। वहीं सबसे पहले बात करेंगे मानसून सत्र में जारी हंगामे के बवाल की। दरअसल आज भी संसद में जोरदार टकराव के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन और पुलिस एक्शन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। तो वहीं कल लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पास हो गया है। छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस एक्शन पर भी संसद में घमासान मचा हुआ है। तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट कर उन्होंने क्या लिखा है वो आप देखिए। लोकसभा ने बिल को ध्वनिमत से पारित कर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, ये उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक के तहत कड़ी सजा, फास्ट ट्रैक अदालतें और सशक्त जांच तंत्र और परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। तो वही आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी के बयान को लेकर मचे सियासी घमासान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक दिखाई दी है। ये बवाल लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के बयान को लेकर हुआ, जिसमें उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके शब्दों को लेकर सत्ता पक्ष ने भी हंगामा किया। बाद में राहुल के उन शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया गया है। साथ ही बीजेपी ने राहुल से माफी की मांग की है, हालांकि राहुल ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में इस मसले को लेकर आज भी संसद के अंदर और संसद के

0: बाहर हंगामे के पूरे आसार हैं। बीजेपी लगातार राहुल पर हमले भी कर रही है।
1: Where's the truth? It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege.
2: सदन में राहुल के बयान पर मचा घमासान। पैलेट गन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीजेपी ने राहुल के बयान को बताया तथ्यहीन
3: और वह माफी मांगेगा।
2: लोकसभा ने एंटी पेपर लीक बिल पर मुहर लगा दी है, लेकिन बिल पास होने से पहले लड़ाई राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई है। चर्चा के दौरान राहुल ने गृह मंत्री के सदन में न होने का सवाल उठाया, जिस पर काफी देर तक हंगामा हुआ।
1: That the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here.
2: गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए राहुल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री को कांपते देखा।
1: Sir, I saw the carcade, 30 cars, with the Home Minister sitting inside the car, like that, looking.
2: राहुल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा अमित शाह वो शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली भी थरथराते हैं।
4: इस प्रकार से एक्शन किया कि मैंने देखा गाड़ी के अंदर इस प्रकार अमित शाह जी थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। राहुल जी, अमित शाह जी वह शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली थरथराते हैं।
2: तो अब साफ है कि एंटी पेपर लीक बिल पर शुरू हुई लड़ाई लोकसभा में राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई है। आज तक ब्यूरो।
0: तो लोकसभा में बयान देने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह को भी घेरा और उनका इस्तीफा मांगा है। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी से भ्रम फैलाने को लेकर माफी की मांग की है।
5: और देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस अमित शाह दैट, लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो दो मिनट में आते जवाब दे देते।
4: माफी मांगो राहुल गांधी, माफी मांगो राहुल गांधी। माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया। आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फैलाए, फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया। सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं।
0: तो लोकसभा में दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे माफी मांगने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मैं कभी भी बीजेपी आरएसएस और उनसे जुड़े लोगों से माफी नहीं मांग सकता।
6: आई वॉज ऑल्सो गिवन एन अश्योरेंस दैट इफ आई अपोलोजाइज देन आई विल बी अलाउड टू कंटिन्यू टू स्पीक। सी द फर्स्ट थिंग इज आई विल नेवर एवर अपोलोजाइज to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood.
0: वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी राहुल गांधी से माफी की मांग की है। दरअसल वीएचपी ने राहुल के बजरंग दल पर दिए गए बयान को लेकर नाराजगी जताई। वीएचपी ने कहा है कि राहुल ने संगठन के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। वीएचपी ने यह भी कहा कि वो राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार कर रहा है। राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि बजरंग दल के सदस्यों ने दिल्ली और अन्य स्थानों पर प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर हमला किया था और उन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए अब वीएचपी भी भड़क उठी है। राहुल गांधी पर मानहानि केस की चेतावनी राहुल गांधी को दी गई है।
7: लेकिन बजरंग दल का नाम लिए बिना, आरएसएस का नाम लिए बिना, लगता है कि आजकल उनकी स्थिति वो हो गई है जैसे कभी रावण की थी कि अंत समय में वो राम राम ही याद आते थे उसको। राहुल गांधी, कुछ तो शर्म करो, अविलंब अपने बयान पर माफी मांगिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा एक और कानूनी पचड़े में फंस जाओ। बजरंग दल के बारे में इस तरह का दुस्साहस मत करिए कि आपको दोबारा से फिर माफी मांगनी पड़े।
0: उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पेपर लीक पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा है कि यूपी इस पूरे मामले में आगे है और 20 से अधिक प्रश्न पत्र लीक भी हुए हैं, फिर भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसमें शामिल लोग सरकार का हिस्सा है और जानबूझकर पेपर आउट होता है क्योंकि वो नौकरी नहीं देना चाहते। बीजेपी के इस एजेंडे में नौकरी नहीं है, ये आरोप भी लगाया जा रहा है।
8: नहीं, यूपी उससे अब आगे है, यहाँ तो 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए, कोई नहीं पकड़ा गया, सब सरकार में है, सब सरकार में शामिल है। और यूपी में तो जानबूझ के पेपर आउट होता है या परीक्षा रद्द जानबूझ करके होती है, क्योंकि वो नौकरी नहीं देना चाहते, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में नौकरी नहीं है।
0: तो ये पंजाब में पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिरोमणि अकाली दल के नेता और भटिंडा सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पंजाब में सामने आए 11 परीक्षा पेपर लीक मामलों की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। दरअसल हरसिमरत ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार जांच को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इन मामलों से करीब 5 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ और इसके लिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए।
9: आज मैं गृह मंत्री जी नो चिट्ठी लिखी है कि जिन्हें भी पेपर लीक पंजाब से हुए ने उन्हें सारियां दी एक सेंट्रल एजेंसी दे नाल उन्हें दा इंक्वायरी की जाए, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरु दोखी ओदे नाल पावे केजरीवाल पावे ससोदिया बिल्कुल झूठ मार के कवर अप कर रहे ने।
0: उधर झारखंड में भी पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक दिन पहले ही रांची में सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। जेपीएससी और झारखंड एसएससी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा। उनकी सबसे बड़ी मांग सिविल सर्विसेज इम्तिहान में धांधली की बड़ी जांच को लेकर है। अभी सोरेन सरकार ने सीआईडी को जांच भी दे रखी है, जबकि छात्रों को सरकारी एजेंसी पर विश्वास नहीं है। दरअसल नाराज छात्र मांग कर रहे हैं कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। आपको ये बता दें कि साल 2000 में झारखंड बनने के बाद से जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की लगभग हर बड़ी भर्ती किसी न किसी विवाद में घिरी है और ताजा प्रदर्शन 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा में धांधली को लेकर है। और चलिए अब बात कर लेते हैं 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की। दरअसल बिहार की बांकीपुर, एमपी की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां मुकाबला जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर, बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जल्द ही इसके रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे अगस्त में। वहीं आपको ये बताते हैं कि कहां कहां पर वोटिंग हो रही है। दरअसल बिहार के बांकीपुर, जो कि सबसे अहम सीट मानी जा रही है, एमपी के दतिया में वोटिंग शुरू हो चुकी है, वहीं गुजरात का मांजलपुर, यहां पर भी एक अहम टक्कर है। बांकीपुर सीट इतनी अहम क्यों है ये आप समझिए। प्रशांत किशोर का चुनावी डेब्यू ये माना जा रहा है। यहां से कई बार नितिन नवीन भी विधायक रहे हैं, इसलिए बांकीपुर सीट काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। वहीं नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद ये चुनाव हो रहा है, जिसकी शुरुआत आज सुबह 7 बजे से हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और दांव पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की साख है, इसलिए बांकीपुर सीट कई मायनों में खास है। सम्राट सरकार का भी पहला लिटमस टेस्ट यहां से हो रहा है। वहीं कांटे का मुकाबला बांकीपुर सीट में है, बीजेपी से नीरज कुमार, आरजेडी से रेखा कुमारी और प्रशांत किशोर आमने सामने है, तो इसलिए कांटे की टक्कर मानी जा रही है। नितिन नवीन का बांकीपुर कनेक्शन आप समझिए, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद सीट उन्होंने खाली की थी। पहली बार नितिन नवीन के पिता 1995 में आपको याद होगा यहीं से बांकीपुर से जीते थे, इसलिए उनका कनेक्शन काफी ज्यादा बांकीपुर से स्ट्रांग है। नितिन नवीन के पिता 1995 से 2005 तक वहां विधायक रहे और उसके बाद पिता के निधन के बाद 2006 का उपचुनाव वो यहां से जीते। तो नितिन नवीन का बांकीपुर कनेक्शन, नितिन नवीन लगातार 2025 तक चुनाव जीतते आए हैं, इसलिए कांटे की टक्कर यहां पर है। तो बांकीपुर सीट पर मतदान शुरू होने से पहले वहां से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ पटना की जनकपुर थाने पहुंचे और प्रशांत किशोर का आरोप था कि उनके कई समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस वाले इससे इनकार करते रहे और इसी बात को लेकर प्रशांत किशोर और पुलिस अधिकारी में जोरदार बहस हुई है। देखिए
10: दो आदमी गायब हो जाएंगे,
11: गायब होने के बाद यहाँ पे नहीं कर रहे हैं आप सर, आपको चिल्ला यहाँ उठा के नहीं ले गया किसी को, जो आप बात कर रहे हैं मैंने नहीं उठाया किसी को।
10: अरे आप कहें
12: हम उसको डांटे हमारे हैं,
11: मतलब यही है
12: निकल के थाना में आके
11: पीछे चलो तुम थाना में आके यहाँ तक तो बात बर्दाश्त हम यहाँ तक तो कर ली है, यहाँ तक क्या बोला हुआ सुने
12: यार, सुन लिए भाई
11: अपना, थाना में आके बैठ के किसके बल पे बोल रहे हैं, किसके बल में
12: और क्या,
11: किसके बल में बोल रहे हैं वो,
12: मोहल्ला बर्बाद किए हुए भाई पूरा,
11: किसके बल पे बोल रहे हैं वो दावी है प्रतिष्ठा
0: और अब खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पर टीएमसी के सिंबल और असली पार्टी की पहचान को लेकर चल रही लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द फैसला किया जाए। ममता ने आरोप लगाया है कि विरोधी गुट जानबूझकर फैसला टालने के लिए समय मांग रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने 2 जुलाई को दोनों गुटों से दावे पर जवाब मांगा था और 6 जुलाई तक इसकी समय सीमा तय की थी। ममता गुट ने तय समय पर अपना जवाब दाखिल कर दिया था, जबकि ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को पहले 10 जुलाई और फिर 25 जुलाई तक समय दिया गया। ममता ने कहा कि अब और समय देने से निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। और अब खबर भोपाल की, जहां से चल रहा किसानों का प्रदर्शन अब समाप्त हो गया है। दरअसल सरकार ने किसानों को भरोसा दिया है कि वो पहले से ज्यादा मूंग की खरीद सरकार करेगी और ई टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। मध्य प्रदेश की सरकार के साथ कई घंटे की बातचीत के बाद किसानों का आंदोलन अब खत्म हो सका। ज्यादा मूंग की खरीद राज्य सरकार करेगी, आश्वासन किसानों को दिया गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। मोदी सरकार ने आश्वासन दिया है मध्य प्रदेश में, जिस वजह से किसानों ने भरोसा जताते हुए अपना आंदोलन खत्म किया। वहीं एसपी मोनिका शुक्ला का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो आप देखिए, हाथों से रोकी उन्होंने बस, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारी किसान जब बैरिकेड के तौर पर खड़ी बसों को हटा रहे थे, तब भोपाल पुलिस की एसीपी मोनिका शुक्ला बस के सामने जाकर दीवार की तरह खड़ी हो गई और हाथों से बस को रोक दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, कैसे मोनिका पहले खड़ी हुई है बस के सामने, उसके बाद उन्होंने बस को हाथ लगाकर वहां रोका है, जिसके बाद ये वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब हनीमून मर्डर केस में आरोपी सोनम रघुवंशी की बात कर लेते हैं, जिसने मेघालय की अदालत में सरेंडर कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत रद्द किए जाने के बाद सोनम ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आत्मसमर्पण किया, इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल सोनम पर साल 2025 में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को सोनम को मिली जमानत को रद्द करते हुए 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया था। सोनम को पिछले साल जून में कारोबारी पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। और अब बात कर लेते हैं ओडिशा की। बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है, मूसलाधार बारिश से कई जिले प्रभावित हुए हैं और अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कुदरत ने क्या तबाही वहां पर मचाई है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए।
2: पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसूनी आफत, मूसलाधार बारिश के चलते ओडिशा में हालात खराब, 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। लगातार हो रही बारिश के चलते ओडिशा के कई जिले इस वक्त बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई। ये तस्वीर ओडिशा के ढेंकनाल की है, जहां भारी भरकम जेसीबी भी पानी के तेज बहाव में बह गई और देखते ही देखते पानी में समा गई। हालांकि ड्राइवर को बचा लिया गया। लगातार बारिश होने से और नदी का जलस्तर बढ़ जाने से पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ढेंकनाल ही नहीं, ओडिशा के दूसरे इलाकों में भी ये ही हाल है। ये तस्वीर रायगढ़ जिले की है, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। सड़क पार करते वक्त नागावली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और ट्रैक्टर फंस गया। ड्राइवर के साथ एक बच्चे की भी जान खतरे में पड़ गई, जिसके बाद एक शख्स ने बच्चे को सुरक्षित बचाया। भारी बारिश और बाढ़ के चलते उत्तरी ओडिशा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आज तक ब्यूरो।
0: वहीं उत्तराखंड में भी मानसूनी आफत जारी है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स की वजह से कई इलाकों में हालात बिगड़े हुए हैं। यमुनोत्री हाईवे बंद है, जबकि जिलों में भी जलभराव और मलबे से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

0: पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से उत्तराखंड में हड़कंप। पहाड़ों से मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे बंद। देवभूमि उत्तराखंड इस वक्त मानसूनी आफत का सामना कर रही है। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड के चलते लोग काफी परेशान हैं। उत्तरकाशी से लेकर बागेश्वर तक बारिश और हादसों ने हड़कंप मचा कर रखा हुआ है। ये तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है, जहां पहाड़ों से मलबा आ जाने के बाद यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही बंद पड़ गई है। वहीं गंगोत्री हाईवे पर भी जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक में काफी परेशानी हो रही है। उत्तरकाशी ही नहीं, बाकी इलाकों में भी बारिश से बुरा हाल है। ये तस्वीर बागेश्वर की है, जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़कों पर पानी नाले की तरह बह रहा है। लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। जहां एक तरफ बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में खासी तैयारियां की जा रही है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने के चलते कहीं कोई हादसा ना हो जाए, उसके लिए SDRF की टीम ने मॉक ड्रिल कर तैयारियों को परखा। उत्तराखंड से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: वही कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। ग्लासगो में तिरंगे का जलवा बरकरार है। एथलेटिक्स से लेकर बॉक्सिंग तक भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पदक की रफ्तार बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पैरा एथलेटिक्स में दिलीप महादू गावित ने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। वहीं गावित ने 10 सेकंड के शानदार समय के साथ पहला स्थान हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं आज से, क्योंकि पवित्र सावन महीने का शुभारंभ हो गया है, तो खबर इसी से जुड़ी। दरअसल देश भर में आस्था शिव भक्ति का अद्भुत रंग देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें सुबह से सामने आने लगी हैं। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करने के लिए पहुंच रहे हैं। हर तरफ हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए बड़ी तादाद में कांवड़िए उमड़े, तो वहीं वाराणसी की बात करें तो वहां पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हैं। सावन के शुभारंभ पर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का भी दिव्य श्रृंगार किया गया और यहां पर दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली है। देखिए आप तस्वीरें, देश भर से आस्था की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ सुपर 8 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
5: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
4: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
6: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
7: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
8: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

अपने ही नागरिकों को खाना और बिजली मांगने पर दुश्मन और भारतीय एजेंट बताना ये साबित करता है कि आसिम मुनीर के ये प्यादे बौखला गए। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा दी है। शहजाद इकबाल ने ऑन एयर सरकार से चुपता हुआ सवाल पूछा, अगर पीओके के प्रदर्शनकारियों की फंडिंग भारत से हो रही है तो उनसे पिछले एक डेढ़ साल से बातचीत क्यों होती रही, क्यों उनकी 38 में से 36 मांगे मान ली गई। शहजाद इकबाल ने बेबाकी से आरोप लगाया कि पाकिस्तानी मीडिया को पीओजेके की जमीनी हकीकत दिखाने से रोका जा रहा है, जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जहां एक तरफ पश्चिमी मीडिया पीओके में हो रहे इस मानवाधिकार हनन पर चुप्पी साधे बैठा है, वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के इशारे पर पीओके की अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। सिर्फ रोटी कपड़ा और बुनियादी सहूलियतें मांगने की सजा गोलियों से दी जा रही है। लेकिन अब ये जुल्म ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पीओके की अवाम ने पाकिस्तान की गुलामी के खिलाफ जो बिगुल फूंका है वो अब सच्ची आजादी की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज तक ब्यूरो, अपने ही नागरिकों को खाना और बिजली मांगने पर दुश्मन और भारतीय एजेंट बताना ये साबित करता है कि आसिम मुनीर के ये प्यादे बौखला गए। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा दी है। शहजाद इकबाल ने ऑन एयर सरकार से चुपता हुआ सवाल पूछा, अगर पीओके के प्रदर्शनकारियों की फंडिंग भारत से हो रही है तो उनसे पिछले एक डेढ़ साल से बातचीत क्यों होती रही, क्यों उनकी 38 में से 36 मांगे मान ली गई। शहजाद इकबाल ने बेबाकी से आरोप लगाया कि पाकिस्तानी मीडिया को पीओजेके की जमीनी हकीकत दिखाने से रोका जा रहा है, जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जहां एक तरफ पश्चिमी मीडिया पीओके में हो रहे इस मानवाधिकार हनन पर चुप्पी साधे बैठा है, वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के इशारे पर पीओके की अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। सिर्फ रोटी कपड़ा और बुनियादी सहूलियतें मांगने की सजा गोलियों से दी जा रही है। लेकिन अब ये जुल्म ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पीओके की अवाम ने पाकिस्तान की गुलामी के खिलाफ जो बिगुल फूंका है वो अब सच्ची आजादी की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर शुरू हुआ मतदान। बांकीपुर, दतिया, माजलपुर में सियासी जंग। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग। पटना में फूटा प्रशांत किशोर का गुस्सा। गृहमंत्री पर राहुल गांधी के हमले के बाद आज संसद में फिर से घमासान के आसार। कहा, हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा। बीजेपी का पलटवार, नेता विपक्ष माफी मांगे। असली टीएमसी की जंग में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। बागी गुट को बार बार समय देने पर उठाया सवाल। पक्षपात का लगाया आरोप। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को तीसरा गोल्ड। पैरा 100 मीटर की रेस में दिलीप बहादुर ने दिलाया पदक। लॉन्ग जंप में मुरली को सिल्वर मेडल। आज से शुरू हुआ सावन का पवित्र महीना। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। महाकाल मंदिर की विशेष भस्म आरती में भी पहुंचे हजारों भक्त।

आज बिहार एमपी और गुजरात में वोटिंग, उपचुनाव में तीनों राज्यों में एक एक सीट पर वोटिंग। बिहार एमपी और गुजरात में वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी, वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। आज भी संसद में टकराव के पूरे आसार, पहले दिन पुलिसियाई कार्रवाई को लेकर आज भी घमासान होने की उम्मीद। गृहमंत्री अमित शाह का राहुल गांधी ने मांगा इस्तीफा, कहा पैलेट गन मामले में शाह के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं। राहुल गांधी ने पूछे सवाल, छात्रों पर किसके कहने पर पैलेट गन चलाया, क्या गृहमंत्री को अपने मंत्रालय की जानकारी नहीं थी। इडियट अंधभक्त शब्द को लोकसभा रिकॉर्ड से हटाया गया, राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान दिया था यह बयान, हुआ बवाल। संबित पात्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, गोली चलाने की बात बिल्कुल झूठ है, छात्रों पर गोली नहीं चली। राहुल की बजरंग दल पर टिप्पणी से वीएचपी खफा, वीएचपी ने राहुल गांधी को झूठे और देश विरोधी तत्वों को बताया नेता। वीएचपी राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, राहुल गांधी का आरोप, बजरंग दल के सदस्यों ने छात्रों पर हमला किया। वहीं पेपर लीक मामले में योगी सरकार को अखिलेश ने घेरा, यूपी में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा पेपर लीक में जो शामिल उनके रिश्ते सरकार से है। पंजाब में पेपर लीक को लेकर अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल ने अमित शाह को पत्र लिखकर जांच के आदेश देने की मांग की। पंजाब में परीक्षा के 11 पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच की मांग की गई, हरसिमरत ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। भोजशाला विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नमाज के लिए वैकल्पिक जगह तय करने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई। आज से तेजस्वी यादव ने बिहार में प्रदर्शन की चेतावनी दी, कहा अगर प्रदर्शनकारियों पर केस वापस नहीं लिए गए तो करेंगे राज्यव्यापी प्रदर्शन। पेपर लीक मामलों के लिए बिहार में 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित, पटना में TRE 3 सिपाही भर्ती, BPSC केसों की सुनवाई। पटना के नौबतपुर में युवती पर फायरिंग, युवती को पटना एम्स में करवाया गया भर्ती, युवती पर 3 गोलियां चलाई गई। ठाकरे शिंदे गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बंगाल में ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी, 80 TMC को लेकर जल्द फैसला लेने की मांग की। ममता बनर्जी की चिट्ठी में विरोधी गुट पर देरी की चाले चलने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने 6 जुलाई की समय सीमा के साथ दोनों पक्षों से राय मांगी थी। ममता बनर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल में गंभीर राजनीतिक नतीजे हो सकते हैं। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई, अभिषेक के खिलाफ 8 FIR के मामले में सख्त कार्रवाई के संरक्षण की मांग की गई थी। मध्य प्रदेश में खत्म हुआ किसानों का आंदोलन, सरकार से बातचीत के बाद किसानों को दिया गया आश्वासन। सरकार ने गठित की कमेटी, 25% से 7% मूंग खरीद बढ़ाया, भोपाल के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का बयान। सरकार स्थिति की कर रही है समीक्षा, किसान 100% खरीद की कर रहे हैं मांग। सरकार ने किसानी को आश्वासन दिया और कहा कि पहले से ज्यादा मूंग खरीदेगी और ई टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। वहीं भोपाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प, ACP मोनिका शुक्ला का बस रोकने वाला वीडियो हुआ तेजी से वायरल। ओडिशा में बाढ़ का कहर, 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, 3 की मौत हुई। ओडिशा में लगातार बारिश ने मचाई तबाही, नागावली नदी उफान पर, रायगढ़ा में बड़ा हादसा टला। रायगढ़ा में उफनती नागावली नदी के बीच ट्रैक्टर फंसा, चालक और नाबालिग का सुरक्षित रेस्क्यू। उत्तरकाशी में बारिश का कहर, यमुनोत्री हाईवे बंद, गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित। बैली ब्रिज अधूरा, जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हुए ग्रामीण, सड़कें बंद और गांव का संपर्क प्रभावित। सुकमा में बारिश का कहर, उफनती नदियों से 50 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। रुद्रप्रयाग में बारिश से टनल के बाहर भूस्खलन, अलकनंदा पुल निर्माण पर असर, टनल सुरक्षित। आसनसोल में भू धसान की वजह से 24 घंटे बाद भी हालत गंभीर, 1000 लोग बेघर हुए। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में दर्दनाक हादसा, उफनते नाले से निकली कार में हाथ थामे मिले दंपति के शव। कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा में डूब रहा हरियाणा का कांवड़िया बचाया गया, SDRF समय रहते हुए किया सफल रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और नागमार्ग क्षेत्र में बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड जैसी घटना। बांदीपुरा में फ्लैश फ्लड के कारण निचले इलाकों में कई गांव में आई अचानक बाढ़ से लोगों में दहशत, SDRF का बचाव अभियान जारी। डोडा में जोरदार बारिश, प्रशासन और मौसम विभाग ने बाढ़ और भूस्खलन की आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। असम में बाढ़ के हालत गंभीर, अब तक 78 लोगों की मौत हुई, 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। ऊपरी असम में बाढ़ से जनजीवन हुआ बुरी तरह से प्रभावित, पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम अभी भी जारी। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए उतरी भारतीय एथलीट, लोगों तक राहत सामान पहुंचा रही हैं हिमा दास। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग में टला बड़ा हादसा, कुछ नदी में अचानक से फ्लैश फ्लड की वजह से बढ़ा जलस्तर, फंसे हुए शख्स का किया गया सफल रेस्क्यू। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से बिगड़े हालात, 3 नेशनल हाईवे समेत 140 से अधिक सड़कें बंद हुई। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर भी आज से रोक लगी। वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड के कारण मलबे की चपेट में आने की वजह से एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, कई जगहों पर प्राकृतिक आपदा के कारण हाईवे बंद। रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर, घरों तक पहुंचा अलकनंदा नदी का पानी। केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली सुरंग के पास भूस्खलन की घटना, मौके पर पहुंचे ADM ने हालात का लिया जायजा। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर, घरों में घुसा पानी और सड़कें नाले में तब्दील, लगभग 16 ग्रामीण मार्ग बंद। राजस्थान के अलवर में तेज बारिश के बाद सड़कें भरी सैलाब, पानी में फंसी स्कूल बस। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद आवाजाही हुई बाधित, पुलिस ने जगतियाल से
मिंचुरियल जाने वाले यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। बुलंदशहर में बारिश बनी काल, स्कूल से लौट रही चौथी की छात्रा फतेह नाले में बही, 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। पुणे में एनसीपी नेता पार्थ पवार की सगाई समारोह में पहुंचे महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस। एनसीपी नेता पार्थ पवार की सगाई समारोह की फैमिली फोटो आई सामने, कई दिग्गज नेता हुए नजर। तमिलनाडु के सीएम विजय चेन्नई ने ओमनाथुरार एस्टेट से नंदनाम तक मेट्रो ट्रेन से यात्रा की, मेट्रो में एंट्री करते देख मेट्रो कर्मी भी खुशी से झूमे। नैनीताल के मॉल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध रहेगा, उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगेगा ₹1000 का जुर्माना। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में लगने वाले राजकीय श्रावणी मेले का हुआ भव्य उद्घाटन, दुब्बा बॉर्डर पर विधिवत दीप प्रज्वलित कर हुआ मेले का शुभारंभ। ग्रेटर नोएडा में पुलिस से बचकर सोसायटी में घुसा चोर, सुरक्षाकर्मियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। कोटा में बीच सड़क सूटी सवार युवक पर 4 बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, पुलिस जवानों ने बचाई उसकी जान। धौलपुर में शादी का रिश्ता लेकर घर में घुसे बदमाश, परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट को दिया अंजाम। उत्तराखंड के बागेश्वर में उफंती सरयू नदी के बीच जा बैठा नशे में धुत शख्स, ग्राम प्रधान ने बचाई युवक की जान। वहीं झांसी में चालक को झपकी आने की वजह से यात्रियों से भरी बस की डंपर से टक्कर हुई, चालक की मौके पर ही मौत हुई, 2 लोगों की और मौत हुई, करीब 40 लोग घायल। इंदौर में चोरी के शक में 2 युवकों की ओर दी गई है तालिबानी सजा, हाथ पर बांधकर बेल्ट और लात घूसों से बेरहमी से पिटाई की गई। पश्चिम बंगाल पुलिस का बड़ा एक्शन, बीरभूम में कारोबारी के घर से करोड़ों की नकदी और 15 किलो सोना जब्त। संत कबीर नगर में जिला अधिकारी कार्यालय पर एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। बेगूसराय में जमीन कब्जे को लेकर फायरिंग में 4 लोग घायल हुए, भीड़ ने बदमाशों की पिटाई कर वाहनों में तोड़फोड़ की। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में 4 गौ तस्कर गिरफ्तार, 3 25,000 के इनामी बदमाश गोली लगने की वजह से घायल। महाराष्ट्र के जालना में स्कूल के सामने युवक की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर शव को फेंका, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। जालना में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, राज्य कर अधिकारी और टैक्स कंसल्टेंट को ₹60,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। नागपुर में मंदिर में दान पेटी चोरी की घटना सामने आई, सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, चोरी से पहले आरोपी भगवान से माफी मांगता नजर आया। भीड़ में आईटीआई परिसर में पेड़ से लटका शव मिलने की वजह से हड़कंप, पॉक्सो मामले में केस दर्ज। मुंबई में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, साफ सफाई में गंभीर खामियों पर 5 प्रतिष्ठित क्लबों के फूड लाइसेंस सीज किए गए। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल, अब तक कुल 15 मिले, बॉक्सिंग में 10 मेडल मिलने तय। दिलीप महादू गावित ने पैरा 100 मीटर की रेस में जीता गोल्ड मेडल, गावित ने 10 सेकंड की जीती रेस। पैरा 100 मीटर की रेस में भारत के मोहम्मद बासिल ने जीता सिल्वर मेडल, बासिल ने लगभग 10 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने जीता सिल्वर मेडल, लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले भारतीय बने मुरली। बॉक्सिंग में जैस्मिन ने महिलाओं की 57 किलो वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया, अगला मुकाबला 31 जुलाई को लेसोथो की खिलाड़ी से होगा। वहीं दुनिया के टॉप 50 T20 बल्लेबाजों में शामिल हुए वैभव सूर्यवंशी, लगाए 230 स्थान की लंबी छलांग लगाकर 48वें नंबर पर पहुंचे। 536 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के 48वें नंबर के बल्लेबाज बने सूर्यवंशी, पहली बार टॉप 50 में बल्लेबाजों में शामिल हुए। T20 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन नंबर 1 स्थान पर काबिज, 910 है रेटिंग पॉइंट्स। वनडे में भारत के कप्तान शुभमन गिल वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज बने, विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर काबिज। टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में भारत की पेस बैटरी जसप्रीत बुमराह की बादशाहत कायम, 870 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 स्थान पर काबिज। रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म रामायण के ट्रेलर का इंतजार खत्म, आज रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। फिल्म रामायण ने धुरंधर 2 का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, 75 करोड़ में बिके रामायण के म्यूजिक राइट्स, टी सीरीज ने खरीदे राइट्स। वहीं गुरु पूर्णिमा के दिन श्रीमद भगवतम फिल्म सीरीज की घोषणा, श्रीमद भगवत पर बनेगी 7 फिल्मों की सीरीज, रामायण शो बनाने वाले रामानंद सागर के पोते कर रहे हैं डायरेक्ट। महाप्रभु जगन्नाथ एनिमेशन फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हुआ, फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 9:30 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, शाम के 5:43 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, चोट चपेट से बचाव करें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, करियर की समस्याओं में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, खान पान में सावधानी बनाए रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

उत्तर मिलेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: चल रहा है मतदान। प्रशांत किशोर और आरजेडी से बीजेपी की टक्कर। एमपी के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में भी वोटिंग। 3 अगस्त को नतीजे। गृहमंत्री पर राहुल गांधी के हमले के बाद आज संसद में फिर से घमासान के आसार। कहा हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा। बीजेपी का पलटवार। नेता विपक्ष माफी मांगे। मध्य प्रदेश में मानी गई किसानों की मांगे तो खत्म हुआ आंदोलन, लेकिन कायम है नाराजगी। 100 की बजाय 7% मूंग एमएसपी पर लेने को तैयार हुई सरकार। खरीद की तारीख भी बढ़ाई गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 3रा गोल्ड। पैरा 100 मीटर की रेस में दिलीप महादुगावित ने दिलाया पदक। लॉन्ग जंप में मुरली को सिल्वर मेडल। आज से आ गया सावन का पवित्र महीना। मंदिरों में श्रद्धालु की उमड़ी भीड़। महाकाल मंदिर की विशेष भस्म आरती में पहुंचे हजारों भक्त। कावड़ यात्रा भी शुरू।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। मॉर्निंग प्राइम टाइम के सुपर हिट शो 9 बज गए में शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो की, क्योंकि देश और दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरें इसमें हाजिर है। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से भी, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की झलकियों पर एक नजर डालते हैं। दरअसल आज और चढ़ सकता है दिल्ली का सियासी पारा। राहुल ने ठुकराई है बीजेपी की मांग। कहा है कि नहीं मांगूंगा माफी। वहीं देश में कितने पेपर लीक हुए हैं। पंजाब, झारखंड, गुजरात में पेपर लीक पर उबाल मचा हुआ है। दिखाएंगे पूरी खबर डिटेल में। बुलेटिन में ओडिशा की सैलाबी आफत पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, कैसे बाढ़ में बह गई है भारी भरकम जेसीबी। और आधे घंटे बाद यानी सुबह 9:30 बजे बात होगी 100 शहर 100 खबर की। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते 3 राज्यों में उपचुनाव में इम्तिहान की खबर के साथ। दरअसल बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर आज वोटिंग हो रही है। 2 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर सभी की नजरें बनी हुई है। ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे की वजह से खाली हुई। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा का मुकाबला जनसुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता से है। तो वही एमपी की दतिया सीट पर बीजेपी के आशुतोष तिवारी, कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच महामुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर सीट की बात करें तो वहां बीजेपी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस ने गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री भीकाबाई रवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब जीत या हार का फैसला 3 अगस्त को होने वाला है।
2: क्या लग रहा है जिस तरीके से चुनाव हो रहा है बांकीपुर में, ट्रायंगल फाइट उधर तेज भी आता
3: है। कहीं कोई ट्रायंगुलर नहीं है यहाँ पर। एनडीए निश्चित रूप से जीतेगी और अपार बहुमत से जीतेगी।
0: तो हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए जहां पर वोटिंग शुरू हो रखी है। और शशि भूषण हमारे साथ बांकीपुर से जुड़ गए। सबसे पहले आपको बांकीपुर लिए चलते हैं। शशि भूषण, बताइएगा कि 2 घंटे का ये मतदान अभी फिलहाल हो चुका है, वोटर्स का मिजाज वहां कैसा दिख रहा है?
4: पूजा, देखिए ये उपचुनाव है, बाय इलेक्शन है, और बाय इलेक्शन में उस तरह का उत्साह देखने को नहीं मिलता है जैसा अमून हमने विधानसभा चुनाव या आम चुनाव में हम देखते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको दिखाते हैं कि पटना विमेंस कॉलेज है जो बांकीपुर के अंदर आता है, उसमें तकरीबन 4 बूथ बनाए गए हैं। एक एक करके वोटर्स यहां पहुंच रहे हैं, अपना मताधिकार जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद यहां से निकल रहे हैं। तो बहुत कोई लंबी कतार तो यहां देखने को नहीं मिलती है, लेकिन वोटर्स पहुंच रहे हैं। सुरक्षा बलों की बड़ी मौजूदगी है, खासतौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेज। आप देख सकते हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम है यहां पे। पटना कि ये हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नितिन नवीन बने तो वो राज्यसभा गए और उनके विधानसभा से इस्तीफे के बाद इस सीट पे उपचुनाव हो रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि प्रशांत किशोर वो भी इस सीट पे इस बार किस्मत आजमा रहे हैं, पहली दफे विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने नीरज सिन्हा जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता रहे निचले स्तर के, उनको उम्मीदवार बनाया। लगातार हमने कैंपेन देखा। चुनाव आयोग ने इंश्योर करने की कोशिश की है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो। हालांकि बहुत शांतिपूर्ण वोटिंग का ट्रेंड

0: रहा है बांकीपुर में, शहरी सीट है पटना की। देखना होगा कि जो बाय इलेक्शन है उसमें क्या जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे पूजा 2025 के नवंबर में, उससे ऊपर का आंकड़ा जाता है वोटिंग प्रतिशत का या नहीं जाता है। लेकिन वोटर्स लगातार यहां पे पहुंच रहे हैं। देखिए, जैसे मैं बता रहा था, कुछ वोटर्स पहुंचे हैं अभी सुबह सुबह 9 बज रहा है, और पहले तो आप लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी बीच में चुनाव हो जाएगा, तो बाय इलेक्शन में मतलब तैयार है वोटिंग के लिए सुबह सुबह?
1: बिल्कुल 100%
0: तैयार हैं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, वही उत्साह दिखता है मैडम जो आप नवंबर में भी आपने वोट डाला होगा, फिर एक बार आई हैं, तो क्या लगता है मतलब सभी लोगों को निकल के आना चाहिए वोटिंग करने के लिए?
2: बिल्कुल।
0: आप नाश्ता वास्ता बना के आई हैं या जाके बनाएंगे?
2: नहीं, जाके बनाएंगे।
0: अच्छा, पहले मतलब वोटिंग करनी?
2: हाँ, पहले।
0: पूजा, देखिए ये मिजाज है लोगों का, घर की गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, और उनका ये कहना है कि हम जाएंगे पहले वोटिंग करेंगे और उसके बाद। देखिए यहाँ भी एक कपल हैं वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, और बाय इलेक्शन में लोग कहते हैं कि वोटर निकलते नहीं है, लोगों को आना चाहिए बाहर?
3: नहीं, मैं नहीं समझता कि ये अच्छी बात है, और ये गलत मिसकंसेप्शन है एक प्रकार का। लोगों को बराबर ट्रीट करना चाहिए और वोट खुल के देना चाहिए, क्योंकि आपके सोच से सरकार बनती है और सरकार को ताकत आती है।
0: आप क्या कहेंगे, घर में नाश्ता वास्ता बना के आई हैं या फिर जाके बनाई?
4: नहीं नहीं, पहले वोट देने आए हैं, पहले वोट देंगे फिर घर का काम।
0: पूजा, देखिए इस बात को समझना होगा, लोग उत्साह रखते हैं क्योंकि लोकतंत्र में ऐसे कई मौके आते हैं जब आपको 5 साल
5: बिल्कुल बाकीपुर सीट कितनी अहम है, वोट देना कितना अहम है, तस्वीरें साफ बयां कर रही है। अब रवीश के पास चलते हैं आपको, दरअसल रवीश दतिया से हमारे साथ जुड़ गए। रवीश, बताइएगा कि नामांकन से पहले, क्योंकि बीजेपी में काफी खींचतान वहां पर देखी गई थी, और आज जब मतदान हो रहा है तो बीजेपी खेमे में कैसा मूड नजर आ रहा है रवीश?
6: बिल्कुल पूजा, और ये शायद पहला ऐसा उपचुनाव होगा जिसमें उम्मीदवार की हार जीत से ज्यादा जिसका टिकट कट गया है उसके राजनीतिक भविष्य की बात हो रही है इस चुनाव में। दतिया दरअसल इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और जब मंत्री रहे थे नरोत्तम मिश्रा, तो उनको बोला जाता था मिनिस्टर नंबर 2, यानी वो जब भी सरकार में मंत्री बने वो ताकतवर ओहदों पर रहे हैं, और इसीलिए जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो दतिया जो है वो अचानक से देश भर की सुर्खियों में आ गया। नरोत्तम मिश्रा वहां लंबे समय से विधायक रहे, मंत्री रहे, और एक छोटे से इलाके में जब लगातार इतने लंबे समय तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया तो उनका एक अपना जो कार्यकर्ताओं से लेकर के बूथ लेवल तक के अपना एक विश्वास पात्र संगठन बन चुका था। तो ऐसे में जब उनका टिकट कटा तो जाहिर सी बात है हिंसा हुई, हंगामा हुआ, सबने देखा। बाद में नरोत्तम मिश्रा सामने आए, उन्होंने अपील की अपने समर्थकों से, और उसके बाद से लेकर अब तक वो लगातार इस डैमेज कंट्रोल में ही लगे रहे। उन्होंने ये साफ किया है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है आशुतोष तिवारी, तो उनके जो समर्थक है, उनके जो कार्यकर्ता है, वो ये मान के चले कि वो भाजपा के ही कार्यकर्ता है और उनको भाजपा को वोट देना है, भाजपा के उम्मीदवार को जिताना है, उनके पक्ष में वोट करना है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा के लिए ये चुनाव ज्यादा जरूरी हो जाता है। आशुतोष तिवारी पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, अब जो भी नतीजे आएंगे वो तो खैर 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अगर ये चुनाव भाजपा के पक्ष में नहीं गया तो सवाल उठेंगे कि क्या नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने भीतरघात किया। अगर भाजपा का उम्मीदवार जीत गया तो फिर सवाल ये भी उठेंगे कि दतिया से लोगों ने अपना नया नेता चुन लिया तो अब नरोत्तम मिश्रा का भविष्य क्या होगा। तो दोनों ही सूरत में नरोत्तम मिश्रा का जो राजनीतिक भविष्य है वो दतिया विधानसभा चुनाव के नतीजों से तय होना है, इसलिए ये ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। घनश्याम सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं दतिया से और स्थानीय भी हैं। तो दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि जो आशुतोष तिवारी है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, वो दतिया जिले से तो है लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार दतिया शहर से ही आते हैं,
5: और यही सेवड़ा से आते हैं। अगर आशुतोष तिवारी देखा जाए लेकिन जिले के हैं, 3 अगस्त को नतीजे आ जाएंगे तो साफ हो जाएगा कि कौन इस टक्कर में जीतता है। एक बार मांजलपुर भी लिए चलते हैं, ब्रजेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, बीजेपी के दबदबे वाली सीट है ये, और इस बार वहां पर क्या हालात नजर आ रहे हैं?
7: देखिए, ये बीजेपी के दबदबे वाली सीट है, जिनके निधन से ये सीट खाली हुई। वो 8 बार से विधायक थे उसी जगह से, हालांकि सीट बदली, पहले रावपुरा सीट थी और फिर उसके बाद जो है वो मांजलपुर सीट हुई। 2008 से ये नई सीट बनी, तब से योगेश पटेल ही जो है वहां पे विधायक थे और उनका एक स्थानीय दबदबा रहा था। उनके परिवार से कोई भी जो है वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए बीजेपी ने अपने पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश पटेल को जो है चुनावी मैदान में उतारा है, और बीजेपी आश्वस्त है कि पूरी तरह से जो है सीट उनके साथ रहेगी, लोगों का मूड उनके साथ रहेगा। हालांकि कांग्रेस को उम्मीद यह है कि जिस तरह से बारिश में लोग परेशान हुए हैं और लोगों की परेशानी सामने आई है, कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है कि बीजेपी का भ्रष्ट शासन, अब कितना ये मुद्दा लोगों के बीच चल पाएगा वो एक बड़ा सवाल है। बीजेपी इसलिए आश्वस्त है क्योंकि लंबे वक्त से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है और वोटर्स जो है शहरी वोटर्स हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। हालांकि उपचुनाव है तो उपचुनाव में वोटिंग कम होगा, पिछले दोनों उपचुनाव में भी हमने देखा था कि 45% से कम वोटिंग हुआ था, तो यहाँ पे भी वोटिंग कम रहने की जो है वो संभावना रहती है।
5: चलिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं कि राहुल का बयान और सियासी घमासान कैसे छिड़ा हुआ है।
1: होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
2: होम मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए
8: कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है।
1: Where's soul of the system has been captured by the RSS।
9: बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे।
10: जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए।
5: तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी माफी मांगने से इनकार कर चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं कभी भी बीजेपी, आरएसएस और उनसे जुड़े लोगों से माफी नहीं मांग सकता। इस मुद्दे पर आज संसद के अंदर और बाहर फिर से हंगामे के आसार प्रबल नजर आ रहे हैं। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गृहमंत्री अमित शाह के आदेश पर पुलिस ने फायरिंग की थी। राहुल गांधी ने इस पर अमित शाह को गृहमंत्री पद से हटाने की मांग की है। राहुल गांधी के इस बयान पर कल संसद में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए माफी मांगी है और लेकिन राहुल गांधी ने ये माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है।
11: I was also given an assurance that if I apologize, then I will be allowed to continue to speak. See, the first thing is I will never ever apologize to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood.
5: तो राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी भी हमलावर है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप तेज है। आइए आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा और बीजेपी ने कैसे उसका पलटवार दिया है।
12: आप देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए, क्यों? इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आते जवाब दे देते।
13: माफी मांगो राहुल गांधी, माफी मांगो राहुल गांधी, माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया। आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फैलाए, फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया। सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं।
5: तो अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, देखिए, राहुल गांधी ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब क्या लग रहा है, आज संसद के बाहर और अंदर हंगामा और बढ़ सकता है?
14: निश्चित रूप से हंगामा बढ़ेगा क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर अब एजेंडा बनाएगा संसद के बाहर। खासतौर पर जब हम देखते हैं कि 10-10:30 बजे के आसपास विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगता है, सांसदों का जमावड़ा लगता है मकर द्वार पे, तो वहां जबरदस्त प्रोटेस्ट भी विपक्ष आज कर सकता है क्योंकि नेता विपक्ष का भाषण अभिभाषण कर लोकसभा में खत्म नहीं हुआ था और उसके बाद डिसरप्शन हुआ। फिर हाउस जब रिकन्वीन हुआ तो मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से बयान दिया गया और बयान के बाद बिल को पैसेज के लिए डाल दिया गया, यानी कि बिल पास भी करा लिया गया लोकसभा में। बिल अब राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी विपक्ष अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेगा कि ना केवल बिल पर पेपर लीक के जो उनके दावे हैं उस पर और लाठीचार्ज को लेकर उनके जो सवाल हैं उन सवालों से सरकार को घेरा जाए। गृहमंत्री अमित शाह से फिर एक बार जवाब मांगने की कोशिश विपक्ष तो करेगा ही, लेकिन जो राहुल गांधी के साथ लोकसभा में उनकी स्पीच को कट शॉर्ट किया गया उसको लेकर भी सवाल उठाएगा। तो सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों जगह आपको विपक्षी मोर्चा एकजुट दिखेगा इस मामले पे।
5: बिल्कुल, सियासी बवाल इससे बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। साफ लग रहा है कि आज दिल्ली में सियासी पारा और चढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है।
15: राहुल गांधी जी की नकारात्मक सोच निंदनीय है, उनको कोई शालीनता नहीं है, बड़ों का सम्मान करना नहीं आता है, और मुझे लगता है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो कांग्रेस कहा जाती थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने के एजेंडा से राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं।
16: एक पुरानी कहानी है कि एक समूह बच्चों का चिल्ला रहा था, देश का राजा चोर है। तो पुलिस ने पकड़ लिया, बोला सर हम तो फलाना देश की बात कर रहे थे। बोले बेवकूफ समझ रखा क्या, हमको नहीं पता था। तो एक संदर्भ से अलग उन्होंने बात रखी, आपने वो उड़ता तीर ले लिया, तो आप तो उनकी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं।
5: दिल्ली में संसद से सड़क पर पेपर लीक पर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन देश के कई राज्य में पेपर लीक पर बवाल मचा है। झारखंड, गुजरात और पंजाब में प्रदर्शन भी हुए हैं।
17: छात्रों के आक्रोश की ये तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची की है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र कल रांची के फिराया लाल चौक पर धरने पर बैठ गए।
18: जितने भी छात्र वो ये डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई और ईडी की जांच हो, और हम भी ये चाहते हैं यदि सीबीआई, ईडी और यहाँ की जो स्टेट की एजेंसी है सीआईडी, तीनों का परिणाम यदि एक निकल के सामने आता है तो क्रॉस चेक हो जाएगा कि जांच सही तरीके से चला आ रहा है। इसके बाद जीएसएससी में भी जितनी भी एग्जाम हुई है उसमें भी अनियमितता बरती गई है, जिसका कि सबूत आपको बहुत सारे कैंडिडेट के पास, टीचर्स के पास यहाँ पे है, जो कि मांग पत्र में दिया गया है।
19: हम लोग सड़क पर उतरे हैं, सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि नौकरी है झारखंड का, और पढ़ाई होता है नेपाल में, पढ़ाई होता है बंगाल में, पढ़ाई होता है उड़ीसा में, और झारखंड के नौकरी बिक रहा है। कर्नाटक के लोगों को पता है, पंजाब के लोगों को पता है, और वह बंगाल के लोगों को पता है, दिल्ली के, पंजाब, सारे लोगों को पता है, लेकिन झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं है।
20: राहुल गांधी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय।
17: रांची ही नहीं, प्रदर्शन दिल्ली में संसद भवन के बाहर भी हुआ। बीजेपी के सांसदों ने तख्तियों के साथ प्रदर्शन करते हुए भर्ती में हुई धांधली का मुद्दा उठाया।
21: मैंने अभी इसकी जांच चल रही है, लीपापोती चल रही है, सीआईडी जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है।
17: साल 2000 में झारखंड बनने के बाद से जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की लगभग हर बड़ी भर्ती किसी न किसी विवाद में घिरी है। इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा का मुद्दा गरमाया हुआ है। आरोप ये लग रहा है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप छात्रों का ये है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप ये है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर पर जितने गोले लगाए यानी सवाल सॉल्व किए उससे क्वालिफाइंग नंबर से बहुत नीचे नंबर मिले, लेकिन उसे क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया, मतलब ओएमआर के नाम पर फर्जीवाड़ा होने का दावा है। चौथा आरोप ये है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो तो एक महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई थी, लेकिन फिर भी उसी से परीक्षा कराई जाती है।
22: जिस एजेंसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया और जेपीएससी ने भी ब्लैकलिस्टेड किया, और उसको उसी TDPL को 4 साल से काम दे दिया, 2023, 24, 25, 26 वहाँ प्रश्न पत्र लीक हुए, वहाँ भर्ती घोटाला हुआ, यहाँ तक कि जो सहायक आचार्य की परीक्षा हुई, एक बार परीक्षा हुई, परिणाम कितने बार आया पता है? 7 बार।
17: पंजाब पेपर लीक पर संसद के बाहर प्रदर्शन पंजाब पेपर लीक का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। कल संसद भवन के बाहर कांग्रेस ने इस पर प्रदर्शन किया।
0: चार साल में छह पेपर लीक हुए हैं और रोजाना धरना प्रदर्शन हो रहा है और भगवंत मान कह रहा है चीटिंग का केस, अगर चीटिंग का केस था तो आपने क्या किया अब तक।
17: पंजाब पेपर लीक पर प्रदर्शन फरीदकोट में भी हुआ। यहां प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने की। उधर अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भेजकर पंजाब पेपर लीक की जांच की मांग की है।
3: आज मैं गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है कि जिन्ने भी पेपर लीक पंजाब से हुए ने उन्हां सारियां दी एक सेंट्रल एजेंसी दे नाल उन्हां दा इंक्वायरी की जाए, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरु दोखी ओदे नाल पावे केजरीवाल पावे ससोदिया बिल्कुल झूठ मार के कवर अप कर रहे ने।
17: पेपर लीक का मुद्दा गुजरात में भी गर्म है। जामनगर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में पेपर लीक के मुद्दे पर राजकोट में एनएसयूआई ने कल चक्का जाम किया। एनएसयूआई की मांग है कि पेपर लीक के लिए जिम्मेदार पेपर माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज तक ब्यूरो।
5: तो वही मध्य प्रदेश में फसल उपज की खरीद को लेकर किसान और सरकार आमने सामने हैं। एमपी के किसानों ने मूंग की फसल को लेकर भोपाल का घेराव किया और मांग की पूरी फसल के रेट पर सरकार इसे खरीदे, और कल दिन भर हंगामा भी होता रहा। रात में कहीं जाकर बात बनती दिखाई दी जब सरकार ने आश्वासन दिया कि अब 7% फसल खरीदेंगे।
17: ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये प्रदर्शन मध्य प्रदेश के किसानों का है। किसान परेशान हैं क्योंकि जिस फसल को तैयार करने के लिए खून पसीना बहाया, जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह नहीं की, पहाड़ तोड़ परिश्रम किया और जब फसल तैयार हुई तो सरकार ने खरीद कोटा टोकन सिस्टम लगा दिया कि इससे ज्यादा तो खरीदेंगे ही नहीं।
4: सरकार कह रही है नीति बनाएंगे, लेकिन नीति कब बनेगी? रोज बारिश में हमारी ट्रालियां बाहर खड़ी है, रोज ये एक क्विंटल मूंग को लेकर हम कब तक बैठे रहेंगे? हमारे बच्चे उनका पेट कैसे भरेंगे?
23: किसान आश्वासन लेने तो आया ही नहीं है। किसान लेने आया है मूंग खरीदी का 100%। किसान 2 महीने की तैयारी से आया है। हमारे 20,000 ट्रैक्टर गांव से निकल चुके हैं। हम भोपाल तब तक जाम रखेंगे जब तक किसानों की ई टोकन और 100% मूंग खरीदी की मांग पूरी नहीं हो जाती।
17: ये किसान मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से भोपाल पहुंचे हैं। उनकी मांग एक ही है कि मूंग की पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीद ले। लेकिन सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार ने जो कोटा निर्धारित किया है हम उतना खरीद चुके हैं। बची हुई फसल किसान खुद देखें, लेकिन जब किसानों ने भोपाल पर चढ़ाई कर दी तो मध्य प्रदेश सरकार ने किसान प्रतिनिधियों के साथ बात करके मामला सुलटाने का प्रयास किया।
24: किसानों के प्रतिनिधि और सरकार के बीच बातचीत 3 घंटे के बाद खत्म हो चुकी है। सरकार ने फैसला किया है कि जो 25% मूंग MSP पे खरीदी जा रही थी अब उस पे फैसला लेते हुए 60% उसे किया गया है, यानी प्रति एकड़ जो अभी 1.25 क्विंटल मूंग खरीदी होनी थी MSP पे वो अब बढ़ करके प्रति एकड़ 3 क्विंटल हो जाएगी। लेकिन लगता नहीं कि किसान इससे खुश है, क्योंकि इस बैठक के तुरंत बाद जैसे ही किसानों को इसकी जानकारी मिली किसान एक बार फिर से रात को मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच कर रहे हैं और हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे किसानों और पुलिस के बीच में अब वहां पे आपको बातचीत होती हुई दिखेगी। किसान अलग अलग जत्थों में पहुंच रहे हैं और सीएम आवास जाना चाहते हैं, लेकिन देखिए पुलिस ने उन्हें वहां रोका है।
17: करीब 3 घंटे तक किसान प्रतिनिधियों और MP सरकार में बातचीत हुई, जिसमें तय किया गया कि 25% के बजाय सरकार अब किसानों से कुल उत्पादन का 60% मूंग MMSE रेट पर खरीदेगी। विक्रय स्लॉट बुकिंग की अवधि भी 10 दिन बढ़ा दी गई है, यानी 20 अगस्त तक किसान विक्रय टोकन बुक कर सकेंगे।
25: अब प्रत्येक पात्र किसानों को उसकी मूंग उपार्जन का 25% नहीं बल्कि 60% उपार्जन किया जाएगा। जो नर्मदापुरम, सीहोर एवं हरदा जैसे जिलों में लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ आता है, यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और हमारे प्रयास रहेंगे कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले।
17: MP सरकार के इस फैसले से कई किसान मान गए, लेकिन कुछ अभी भी फसल की 100% खरीद की मांग पर अड़े हुए हैं। मूंग की MSP 8,780 रुपए प्रति क्विंटल है। इसी रेट पर एमपी सरकार किसानों से मूंग खरीदती है, लेकिन इसमें भी काश्तकार के हिसाब से कैपिंग है। नर्मदापुरम, सीहोर एवं हरदा जैसे जिलों में प्रति किसान लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ ही मूंग एमएसपी पर बेच सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोहन सरकार ने भी उनकी कुछ मांगे मान ली हैं, लेकिन सरकार की मांग किसान कितना मानेंगे ये वक्त बताएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
5: अब बात कर लेते हैं मौसम की मार के। ओडिशा सैलाब के संकट से जूझ रहा है करीब 5 लाख लोग, यहां बाढ़ से प्रभावित भी हुए हैं। रिपोर्ट देखिए।
17: उफनती हुई नदी के बीच फंसा एक ट्रैक्टर और जिस पर सवार है ट्रैक्टर का चालक और एक बच्चा। जिंदगी से जंग की ये तस्वीर है ओडिशा के रायगढ़ जिले के मालीगुड़ा गांव की। तस्वीरें देखिए, नागावली नदी उफान पर है, ट्रैक्टर आधा डूबा हुआ है। ट्रैक्टर से उतरना खतरे से खाली नहीं, बचाव के लिए ट्रैक्टर का ड्राइवर अपने जानने वालों को कॉल करता नजर आता है। दोनों की किस्मत अच्छी थी, एक स्थानीय शख्स लहरों को चीरता हुआ मदद के लिए ट्रैक्टर पर पहुंच गया। उसने बच्चों को गोद में उठा लिया, बाढ़ में फंसे दोनों की जान बच गई। ओडिशा में सैलाब के सितम की एक और तस्वीर देखिए, ये ढेंकनाल की तस्वीर है। पानी से भरे पुल को पार करना इस जेसीबी चालक को महंगा पड़ गया। देखिए कैसे भारी भरकम जेसीबी देखते ही देखते पानी में समा गई। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में ड्राइवर बच गया। लगातार बारिश होने और नदी का जलस्तर बढ़ जाने से पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ओडिशा के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ से त्राहिमाम है। ढेंकनाल, बालासोर, रायगढ़, भद्रक, जाजपुर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ से जुड़े हादसों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 1,88,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। 396 राहत केंद्र बनाए गए हैं। बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और क्योंझर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में। बाढ़ की मार ओडिशा भी झेल रहा है। इस आपदा में लोगों की मदद के लिए स्टार एथलीट हिमा दास भी सामने आई है। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हिमा दास बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री बांटती नजर आई हैं। हिमा दास मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी आधी सैलरी दान कर पहले ही मिसाल कायम कर चुकी है। बाढ़ में मदद की एक और भावुक कर देने वाली तस्वीर शिवसागर से आई। यह बाढ़ में फंसी एक गाय को निकालने के लिए एक शख्स ने खुद अपनी जान को मुश्किल में डाल दिया। असम के करीब 3 लाख लोग इस समय बाढ़ प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से 78 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 7 जिले शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, विश्वनाथ और कामरूप जिले बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
5: वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। पैरा एथलेटिक्स में दिलीप महादुर ने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। गावित ने 10 सेकंड के शानदार समय के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि भारत के मोहम्मद बासिल ने भी कुछ 10 सेकंड के ही साथ सिल्वर मेडल जीता। लॉन्ग जंप में स्टार एथलीट मुरली श्रीशंकर ने भी 8.9 मीटर का छलांग लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। श्रीशंकर लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय लॉन्ग जंपर बन गए। इसके अलावा भारतीय मुक्केबाजों ने अपने पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए रिंग में कम से कम 10 मेडल पक्के कर लिए हैं। बात सावन की करते हैं क्योंकि आज से पवित्र सावन महीने का शुभारंभ हो गया है और देश भर में आस्था और शिव भक्ति का अद्भुत रंग देखने को मिल रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए बड़ी तादाद में कांवड़िए उमड़े हुए हैं। वहीं वाराणसी की बात करें तो वहां पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हैं। सावन के शुभारंभ पर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया, जहां दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, देश भर से आस्था की तस्वीरें, वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली, हर जगह पर अब सावन की शुरुआत काफी उत्साह के साथ हुई। और ये दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सावन की शुरुआत हो गई है और ऐसे में काल भैरव मंदिर वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। नौ बज गए हैं, बिना ब्रेक की खबरें जारी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

हाई प्रोफाइल बाकीपुर सीट पर चल रहा है मतदान। प्रशांत किशोर आरजेडी से बीजेपी की टक्कर। एमपी के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में भी वोटिंग 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। गृहमंत्री पर राहुल गांधी के हमले के बाद आज संसद में फिर से घमासान के आसार। कहा हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा। बीजेपी का पलटवार, नेता विपक्ष माफी मांगे। मध्य प्रदेश में मानी गए किसानों की मांगे तो खत्म हुआ आंदोलन, लेकिन कायम है नाराजगी। 100 की बजाय 7% मूंग एमएसपी पर लेने को तैयार हुई सरकार। खरीद की तारीख भी बढ़ाई गई।

तक लॉन्ग जंप में मुरली को सिल्वर मेडल हासिल। आज से आ गया सावन का पवित्र महीना। मंदिरों में श्रद्धालु की उमड़ी भीड़। महाकाल मंदिर की विशेष भस्म आरती में पहुंचे हजारों भक्त। कावड़ यात्रा भी शुरू।

0: ओडिशा में बाढ़ का कहर, 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 3 की मौत, महानदी में बाढ़ का खतरा। ओडिशा में लगातार बारिश ने मचाई तबाही, नागावली नदी उफान पर, रायगढ़ में बड़ा हादसा टला। रायगढ़ में उफनती नागावली नदी के बीच ट्रैक्टर फंसा, चालक और नाबालिग का सुरक्षित रेस्क्यू। उत्तरकाशी में बारिश का कहर जारी, यमुनोत्री हाईवे बंद, गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित। बैली ब्रिज अधूरा, जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हुए ग्रामीण, सड़कें बंद और गांव का संपर्क प्रभावित। सुकमा में बारिश का कहर, उफनती नदियों से 50 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। रुद्रप्रयाग में बारिश से टनल के बाहर भूस्खलन, अलकनंदा पुल निर्माण पर असर, टनल सुरक्षित। आसनसोल में भूदसान के 24 घंटे बाद भी हालात गंभीर, 1000 लोग बेघर हुए, इलाके में नई दरारें से दहशत। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में दर्दनाक हादसा, उफनते नाले से निकली कार में हाथ थामे मिले दंपति के शव। कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा में डूब रहा हरियाणा का कांवड़िया बचाया गया, एसडीआरएफ ने समय रहते हुए सफल रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और नागमार्ग क्षेत्र में बादल फटने के कारण फ्लैश फ्लड, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बांदीपुरा में फ्लैश फ्लड के कारण निचले इलाकों में कई गांवों में आई अचानक बाढ़ से लोगों में दहशत, एसडीआरएफ का बचाव अभियान जारी। डोडा में जोरदार बारिश, प्रशासन और मौसम विभाग ने बाढ़ और भूस्खलन की आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। असम में बाढ़ से हालत गंभीर, अब तक 78 लोगों की मौत हुई, 3 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। ऊपरी असम में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी, कई क्लब और संस्थान द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है अभियान। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए उतरी भारतीय एथलीट, लोगों तक राहत सामान पहुंचा रही है हिमा दास, सावधानी बरतने की अपील। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग में टला बड़ा हादसा, कुश नदी में अचानक से फ्लैश फ्लड के कारण बढ़ा जलस्तर, फंसे हुए शख्स का किया गया सफल रेस्क्यू। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण बिगड़े हालात, 3 नेशनल हाईवे समेत 140 से अधिक सड़कें बंद हुई, चारधाम यात्रा पर आज के लिए रोक। वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाएं आई सामने, मलबे की चपेट में आने की वजह से एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, कई जगहों पर प्राकृतिक आपदा के कारण हाईवे बंद। रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर, घरों तक पहुंचा अलकनंदा नदी का पानी। केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली सुरंग के पास भूस्खलन, मौके पर पहुंचे डीएम ने हालात का लिया जायजा। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर जारी, घरों में घुसा पानी और सड़क के नाले में तब्दील हुई, लगभग 16 ग्रामीण मार्ग बंद। राजस्थान के अलवर में तेज बारिश के बाद सड़कें बनी सैलाब, पानी में फंसी स्कूल बस, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, घरों में भी घुसा बारिश का पानी। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद आवाजाही हुई प्रभावित, पुलिस ने जगतियाल से मिंचरियल जाने वाले यात्रियों के लिए जारी की एक एडवाइजरी। बुलंदशहर में बारिश बनी काल, स्कूल से लौट रही 4th की छात्रा उफनते नाले में, वही 48 घंटे बाद कोई सुराग नहीं। आज बिहार, एमपी और गुजरात में वोटिंग, उपचुनाव में तीनों राज्यों में एक एक सीट पर वोटिंग जारी। बिहार, एमपी और गुजरात में वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी, वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। आज भी संसद में टकराव के पूरे आसार, पहले गन पुलिसियाई कार्रवाई को लेकर आज भी घमासान मचा हुआ, अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है विपक्ष। गृहमंत्री अमित शाह का राहुल गांधी ने मांगा इस्तीफा, कहा पैलेट गन मामले में शाह के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं। राहुल गांधी ने पूछे सवाल, छात्रों पर किसने कहा कि पैलेट गन चलाई जाए, क्या गृहमंत्री को अपने मंत्रालय की जानकारी नहीं थी। ईडीआर अंधभक्त शब्द को लोकसभा रिकॉर्ड से हटाया गया, राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान दिया था बयान, हुआ बवाल, संबित पात्रा का राहुल गांधी पर निशाना। संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, गोली चलाने की बात बिल्कुल झूठ है, छात्रों पर गोली नहीं चली। राहुल के बजरंग दल पर टिप्पणी से वीएचपी खफा, वीएचपी ने राहुल गांधी को झूठे और देश विरोधी तत्वों का नेता बताया। वीएचपी राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, राहुल गांधी का आरोप, बजरंग दल के सदस्यों ने छात्रों पर हमला किया। पेपर लीक मामले में योगी सरकार को अखिलेश ने घेरा, यूपी में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा, पेपर लीक में जो शामिल उनके रिश्ते सरकार से है। पंजाब में पेपर लीक को लेकर अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल ने अमित शाह को पत्र लिखकर जांच के आदेश देने की मांग की। पंजाब में परीक्षा के 11 पेपर लीक मामलों की केंद्रीय जांच की मांग की गई। हरसिमरत ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। भोजशाला विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नमाज के लिए वैकल्पिक जगह तय करने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई। आज से तेजस्वी यादव ने बिहार में प्रदर्शन की चेतावनी दी, कहा अगर प्रदर्शनकारियों पर केस वापस नहीं लिए गए तो करेंगे राज्यव्यापी प्रदर्शन। पेपर लीक मामलों के लिए बिहार में 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित, पटना में टीआरई 3 सिपाही भर्ती, बीपीएससी केसों की सुनवाई। पटना के नौबतपुर में युवती पर फायरिंग, युवती को पटना एम्स में करवाया गया भर्ती, युवती पर 3 गोलियां चलाई गई। ठाकरे शिंदे गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर चिट्ठी, 80 TMC को लेकर जल्द फैसले करने की मांग। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में विरोधी गुट पर देरी की चाले चलने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने 6 जुलाई की समय सीमा के साथ दोनों पक्षों से राय मांगी थी। ममता बनर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल में गंभीर राजनीतिक नतीजे हो सकते हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई। अभिषेक के खिलाफ 8 FIR के मामले में सख्त कार्रवाई से संरक्षण की मांग की गई। मध्य प्रदेश में खत्म हुआ किसानों का आंदोलन, सरकार से बातचीत के बाद किसानों को दिया गया आश्वासन, पहले से ज्यादा होगी मूंग की खरीद। सरकार ने गठित की कमेटी, 25% से 60% मूंग खरीद बढ़ाया। भोपाल के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का बयान, सरकार स्थिति की कर रही है समीक्षा। किसान 100% खरीद की कर रहे हैं मांग, सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि पहले से ज्यादा मूंग खरीदेगी और ई टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। भोपाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प, ACP मोनिका शुक्ला का बस रोकने वाला वीडियो वायरल। यूपी चुनाव 2027 NDA में सीट बंटवारे पर संग्राम, RLD ने 33+ सीटें पर ठोका है अपना दावा। वहीं बीजेपी 20 से 25 सीटों पर अड़ी, RLD पश्चिम यूपी के साथ पूर्वांचल में भी बढ़ा रही है दावेदारी। यूपी चुनाव 2027 के लिए बीजेपी का सीक्रेट सर्वे मिशन शुरू, 403 सीटों पर उम्मीदवारों की होगी परीक्षा, सहयोगी दलों की सीटों पर भी फोकस। भदोही का बदलेगा नाम, सीएम योगी ने संत रविदास नगर करने का ऐलान किया, 32 साल में 5वीं बार बदलेगा जिले का नाम, वाराणसी कार्यक्रम में हुई घोषणा। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, 12 अगस्त तक भारी वाहनों की एंट्री बंद, 4 अगस्त तक NH 58 की बाई लेन कावड़ियों के लिए आरक्षित। कावड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर अलर्ट, ATS ड्रोन और 4,000 पुलिसकर्मी तैनात, जनपद को 9 सुपर जोन 16 जोन में विभाजित किया गया। तो वही वाराणसी में सीएम योगी ने किए काल भैरव मंदिर में दर्शन, सावन पर पूजा अर्चना, मुख्यमंत्री ने बाबा काल भैरव के दरबार में माथा टेका, प्रदेश की सुख शांति की कामना की। सावन के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, वाराणसी में श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। सावन के पहले दिन अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना। सावन के पहले दिन कानपुर और आनंदेश्वर शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। सावन के पहले दिन गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, शिव भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की, मंदिर में दिखा आस्था का माहौल। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल, अब तक कुल 15 मिले, बॉक्सिंग में 10 मेडल मिलने तय। दिलीप महादुगावित ने पैरा 100 मीटर की रेस में जीता गोल्ड मेडल, गावित ने 10 सेकंड की जीती रेस। पैरा 100 मीटर की रेस में भारत के मोहम्मद बासिल ने जीता सिल्वर मेडल, बासिल ने भी कुछ 10 सेकंड के लगभग दूसरा स्थान हासिल किया। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने जीता सिल्वर मेडल, लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने मुरली। बॉक्सिंग में जैस्मिन ने महिलाओं की 57 किलो वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया, अगला मुकाबला 31 जुलाई को लेसोथो की खिलाड़ी से होगा। वहीं दुनिया के टॉप 50 T20 बल्लेबाजों में शामिल हुए वैभव सूर्यवंशी, लगाए 230 स्थान की लंबी छलांग लगाकर 48वें नंबर पर पहुंचे। 536 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के 48वें नंबर के बल्लेबाज बने सूर्यवंशी, पहली बार टॉप 50 में बल्लेबाजों में शामिल। T20 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन नंबर 1 स्थान पर काबिज, 910 है रेटिंग पॉइंट्स। वनडे में भारत के कप्तान शुभमन गिल वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज, विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर। टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में भारत की पेस बैटरी जसप्रीत बुमराह की बादशाहत कायम, 870 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 स्थान पर काबिज। शाहजहांपुर में किराए के कमरे में मिला सब इंस्पेक्टर का शव, मचा हड़कंप, हार्ट अटैक से मौत की आशंका, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर देवबंद शिवा हत्याकांड का खुलासा, मारपीट का बदला लेने के लिए की गई थी हत्या, मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार, गला घोटकर हत्या की साजिश का खुलासा। सहारनपुर में पेट्रोल पंप पर प्रशासन का छापा, मिलावट की शिकायत पर जांच हुई, अधूरे दस्तावेज मिलने पर पेट्रोल बिक्री रुकवाई गई। झांसी में CO ऑफिस में 2 महिलाओं का हंगामा, आत्मदाह की धमकी से मचा हड़कंप, बयान दर्ज कराने पहुंची महिलाओं को पुलिस थाने ले गई, आधे घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। कौशाम्बी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, चंदावारी बाजार में लाठी डंडे ईंट पत्थर और बैट से चले हमले, वहीं पुलिस जांच में जुटी। नूह में तेज रफ्तार कार ने मचाया कहर, बस स्टैंड पर कई वाहनों को रौंदा, हादसे में कई वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। बेंगलुरु में बाइक सवार ने उड़ाई ट्रैफिक नियम की धज्जियां, बीच सड़क पर खतरनाक स्टंट करते नजर आया, कई लोगों की जान खतरे में डाली। हनुमानगढ़ जंक्शन के पास ट्रेन की चपेट में आने की वजह से ट्रैफिक पुलिस में तैनात कांस्टेबल की मौत हुई। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। राजस्थान के अलवर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति की फोटो लगाकर महिला से ठगी का प्रयास, महिला की सूझबूझ से नाकाम हुई ठगी। गुजरात में जामनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, 10 आरोपी अभी भी फरार घोषित। बिहार के जहानाबाद में सनकी देवर ने भाभी की हत्या कर सिर पेड़ से टांगा, खाने में देरी की वजह से दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में 3 साल के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पिता ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का गंभीर आरोप, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के बांसवाड़ा में स्कूली बच्चों से भरी वैन खड़े ट्रक से जाकर टकराए, हादसे में कई बच्चों की मौत की खबर सामने आई है जबकि कई घायल। पटना के मानेर में सरेआम लड़की को गोली मारकर फरार हुए बदमाश, गंभीर अवस्था में एम्स में इलाज जारी। मणिपुर के नोनी में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और नाग विलेज वॉलंटियर्स के बीच हुई गोलीबारी में एक नागा विलेज गार्ड सदस्य की मौत हो गई है और 5 अन्य घायल। दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई, शराब के लिए पैसे ना देने पर बेटे ने हथौड़े से मारकर मां की हत्या की। दिल्ली के केशवपुरम में 20 वर्षीय गुप्ती के माथे पर गोली मारकर हत्या, सनकी आरोपी प्रेमी की तलाश तेज। यूपी के बांदा में 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, उसमें एक बुजुर्ग और 11 वर्षीय बच्चे की मौत हुई, वहीं हादसे में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के सतारा में नीट परीक्षा में कम अंक आने पर छात्रा ने चूहे मारने का जहर खाकर अपनी जान दी, शिक्षा व्यवस्था पर परिवार ने उठाए सवाल। बिहार में होमगार्ड हवलदार परीक्षा में फर्जीवाड़ा, पुलिस ने हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह की साजिश का बड़ा पर्दाफाश किया, परीक्षा केंद्र से 3 शिक्षक समेत 10 को हिरासत में लिया गया। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के नूह में बेकाबू रफ्तार का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार ने एक सड़क किनारे एक शख्स को उड़ाया और वहां पर खड़ी कई गाड़ियों को एक रौनती वो चली गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते यह हादसा हुआ और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज के आप देख रहे हैं। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा और खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
5: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
6: वाह वाह वाह वाह।
5: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
7: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
8: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
9: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se.
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: महाराष्ट्र टीचर यानी टीचर एजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक केस की जांच में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब ठाणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट भिवंडी में एक सरकारी अधिकारी की भूमिका की जांच भी कर रही है। एसआईटी मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर ले जा रही है, जिससे उसके पूरे पेपर लीक नेटवर्क को खंगाला जा सके। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच में आगरा के माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही सामने आई है, जहां टीटी का प्रश्न पत्र छापा गया था और वहीं से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे थे, न ही यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। अब तक इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता के साथ ही और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी शामिल हैं। ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के तहत भिवंडी पुलिस की टीमें उन खरीदारों की तलाश कर रही है जो परीक्षा से पहले महाराष्ट्र में टीटी क्वेश्चन पेपर पार्ट और बेच रहे थे। हैरानी की बात है कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस को करीब 30 साल से सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रिंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रेस में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी। सवाल है कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने टीटी प्रश्न पत्र की छपाई का कॉन्ट्रैक्ट आगरा की इसी प्रिंटिंग प्रेस को क्यों दिया? क्या मंत्रालय या शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी इस लीक कांड में शामिल है?
1: सोनू कुमार विजेंद्र गुप्ता का पुराना साथी है और पेपर लीक के मामले में शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो माहिम पत्रम नाम का जो प्रेस है, जहां पर ये पेपर छपा था, जो ये क्वेश्चन पेपर है टीटी का, वो पेपर छपा था, वहां पर ये पता चला पुलिस को कि वहां पर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी सीसीटीवी कवर नहीं था और कोई भी आ जा सकता था, और इसी वजह से वो पेपर वहां पर छपने के बाद आसानी से जो कर्मचारी थे वो अपने जूते में छुपा कर बाहर ले आए। इससे पहले भी ऐसा होते रहा होगा, क्योंकि माहिम पत्रम ये जो प्रेस है ये बहुत साल से सरकारी क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहा है। कैमरा पर्सन नितिन बर्ने और मिथिलेश गुप्ता के साथ दिव्येश सिंह, भिवंडी, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। आज भी सड़क से संसद तक हंगामे का दिन है। पेपर लीक का मामला फायरिंग तक पहुंच गया है। आज संसद में फिर हंगामे के आसार हैं। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में चर्चा अभी बाकी है। राहुल गांधी ने संसद के अंदर बाहर मोर्चा खोल दिया है और निशाने पर हैं अमित शाह। तो बीजेपी ने जवाबी पलटवार कर माफी मांगने की मांग शुरू कर दी है और उस पर अड़ गई है। और बताएंगे कि कैसे भोपाल में डटे किसान लौट गए, किन शर्तों पर उनकी हड़ताल खत्म हुई है। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। संसद की कार्रवाई बस एक घंटे बाद शुरू होगी। एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन बवाल नहीं थमा है। कब राहुल गांधी के भाषण पर भारी घमासान हो जाए इसका पता नहीं रहता है। बार बार ऐसा होता रहता है। कई शब्द आज संसदीय बताए गए। कल जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उनके दिए हुए बयानों में जो शब्द थे उनको हटाना पड़ा। कई शब्द हटाए गए, लेकिन संसद के बाद राहुल ने उसी को दोहराकर हंगामे को एक बार फिर से तूल दे दिया। उधर पैलेट गन पर सड़क से संसद तक उबल रहा है पूरा मामला। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की है, तो बीजेपी ने गैर जिम्मेदार बताते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो आरोप सदन के अंदर लगाए उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में धार दी। उन्होंने सीधे सीधे छात्रों पर एक्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताया है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे वॉल लगाई जिसमें छात्रों पर कथित ज्यादती की तस्वीरें भी दिखाई गई।
1: स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे। उन पर पुलिस अट्रोसिटी हुई, उन पर पैलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं। एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को। और ये प्लेन क्लोज ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे। ये आज मैंने As NOP, as representatives of the students, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेस करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए। हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया, उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, पर मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे।

0: बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री एक्शन का आदेश नहीं देते।
1: कि हो क्या रहा है यहां, दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे, तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे।
0: उधर बीजेपी ने राहुल गांधी से लोकसभा में दिए बयान पर माफी मांग ली है, तो राहुल गांधी भी अब बिल्कुल अड़ गए हैं।
2: और देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस अमित शाह दैट, लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो दो मिनट में आते जवाब दे देते।
1: माफी मांगो राहुल गांधी, माफी मांगो राहुल गांधी, माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया, आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फैलाए, फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया, सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री रिजिजू और पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया।
3: लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मालूम नहीं है और ऐसे बोल गया, गृहमंत्री जी ने फायरिंग का ऑर्डर दिया, इतना बड़ा झूठ, इतना हल्का बात, गुमराह करने वाला बात बोल के राहुल गांधी जी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अब वो उसको अलग अलग तरीके से वक्तव्य देने का कोशिश करेंगे, लेकिन फंस तो गए ना।
0: तो आपको बता दें कि इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर, इंडिया ब्लॉक की पार्टियों की आज एक अहम बैठक हो रही है। दरअसल ये बैठक रणनीति तय करने के लिए है और ये बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के कैबिन में हो रही है। अहम बैठक ये इस वक्त चल रही है क्योंकि मुद्दा जो है वो लगातार उठाने की कोशिश की जा रही है, उसमें अहम रहा है पेपर लीक का। और कल से राहुल गांधी ने और विपक्षी नेताओं ने पुलिसियाई एक्शन को लेकर के काफी सवाल उठाए हैं और एंटी पेपर लीक आज जो राज्यसभा में पेश होना है उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी आज राज्यसभा में, इस पर भी चर्चा हो सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज उनके कमरे में ये बैठक जारी है जिसमें इंडिया ब्लॉक के सांसद मौजूद हैं और एक संयुक्त रणनीति पर चर्चा चल रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का। मौसमी, आज राज्यसभा में आएगा बिल, तो क्या लगता है आज ये जो मीटिंग चल रही है उस पर क्या चर्चा हो रही होगी?
4: देखिए, चर्चा हो रही होगी रणनीति को लेके कि लोकसभा में क्या रणनीति होगी। अखिलेश यादव चाहते हैं चंदा चोरी का मसला जो है उसको अब उठाया जाए, वहीं राहुल गांधी आपने सुनाया ही कि किस तरीके से अमित शाह मस्ट गो की बात कह देते हैं और इस्तीफे की बात कह देते हैं कि अमित शाह को जाना ही पड़ेगा और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या पूरा विपक्ष इसको लेके, इंडिया ब्लॉक इसको लेके एकजुट है, ये देखना होगा। और आगे की रणनीति अगले हफ्ते क्या करेगा इंडिया ब्लॉक, इसको लेके टेम्पलेट तैयार होगी। अमित शाह जो गृह मंत्री है उनकी उनकी स्टेटमेंट की भी मांग हो रही है, तो ये देखना होगा कि क्या स्टेटमेंट पर विपक्ष मान जाता है या राहुल गांधी ने जो इस्तीफे की बात कर दी है उसको लेके एक बीच का रास्ता क्या इख्तियार किया जाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आगे की लड़ाई में, ये विपक्ष मंथन कर रहा हो।
0: जी आप हमारे साथ बने रहे और आइए एक बार सुन लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राहुल गांधी को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए।
5: राहुल गांधी जी की नकारात्मक सोच निंदनीय है, उनको कोई शालीनता नहीं है, बड़ों का सम्मान करना नहीं आता है। और मुझे लगता है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो कांग्रेस कहा कर जाती थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने के एजेंडा से राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं।
0: तो फायरिंग मामले पर सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है, देखिए।
6: उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है तो आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं था।
7: एक पुरानी कहानी है कि एक समूह बच्चों का चिल्ला रहा था मेरे देश का राजा चोर, मेरे देश का राजा चोर है, देश का राजा चोर है, मेरे भी नहीं देश का राजा चोर है। तो पुलिस ने पकड़ लिया, बोला सर हम तो फलाना देश की बात कर रहे थे। बोले बेवकूफ समझ रखा क्या, हमको नहीं पता था। तो एक संदर्भ से अलग उन्होंने बात रखी, आपने वो उड़ता तीर ले लिया, तो आप तो उनकी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं।
0: तो पैलेट गन को लेकर राहुल गांधी का एक्शन 24 जुलाई को ही शुरू हो गया था जब वो एक पीड़ित को लेकर सामने आए। फिर उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, संसद के अंदर इस मसले को उठाया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से आरोपों की बौछार कर दी। तो पैलेट गन के नाम पर संसद के अंदर भी काफी बवाल रहा। राहुल गांधी ने मामले को उठाया तो सत्ता पक्ष ने जमकर पलटवार भी किया, झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि गोली तो चली ही नहीं। तो आपको बता दें कि दरअसल ये हंगामा चल क्यों रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर आरोप लगा दिया और आरोप ये था कि उन्हीं के आदेश पर छात्रों पर दरअसल फायरिंग की गई है और उनके आरोपों को बीजेपी ने वहां पर सरासर झूठ बताया और माफी मांगने की बात कही। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो तो माफी नहीं मांगेंगे, बीजेपी आरएसएस या उससे किसी भी जुड़े लोग से वो माफी बिल्कुल नहीं मांगे, उन्होंने ये साफ कर दिया। राहुल ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की, ऐसा आरोप किरण रिजिजू ने भी उन पर लगाया। साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि गृह मंत्री को ऑर्डर देते हुए राहुल ने कहां से देख लिया।
8: सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।
9: अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है,
5: अखिलेश जी आप जो बता रहे हो अलग बात है, राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा राहुल गांधी जी ने, इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप, ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी आप जो कह रहे हैं वो अलग है, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी आपको देखिए ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। आपका शब्द बहुत गलत बात है।
0: तो 28 जुलाई को प्रियंका गांधी ने भी पैलेट गन का मुद्दा उठाया, तब भी शोर उठा था लेकिन राहुल के मुकाबले ज्यादा नहीं था।
10: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। जवाब देंगे, किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए, किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया, गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है।
0: तो पैलेट गन की आंच सीआरपीएफ तक भी पहुंची, सीआरपीएफ इस मामले में जांच की बात करती रही। अब डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का बयान सामने आया है जो उन्होंने 27 जुलाई को स्थापना दिवस के दिन दिया था।
11: जब मैं आपके डीजी साहब की का भाषण सुन रहा था तो उन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही कि जो भी कुछ होगा जिम्मेवारी मैं लूंगा। ऐसे लीडर बहुत कम मिलते हैं। मैंने 37 वर्ष राज्य पुलिस में काम किया है और जब भी कुछ गलत होता है, जब आप विकट परिस्थितियों का सामना करेंगे तो बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी और कभी कभी गलत भी होंगी, लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत अक्सर हम ये देखते हैं कि जब कुछ गलत होता है तो हम नीचे देखने लगते हैं कि किससे गलती हुई, किसकी जिम्मेवारी फिक्स की जाए। ये जो एक शब्द आपके डीजी जीपी सिंह साहब ने कहा है उसकी मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूं।
0: तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि जो डीजी हैं सीआरपीएफ के वो कह क्या रहे हैं, उनका बयान क्या कहता है, आपको समझाते हैं। तो उन्होंने ये स्थापना दिवस के दौरान ये बयान दिया था, 27 जुलाई को था। उन्होंने ईमानदारी के लिए लिए गए फैसले की जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से मेरी यानी कि डीजी की बनती है, कर्तव्य निभाने में भय ना रखे, निडर रहे, ये संदेश उन्होंने अपने सभी सैनिकों को दिया था। उन्होंने कहा कि ईमानदारी के लिए लिए गए फैसले की जिम्मेदारी उनकी है, डीजी की है, अफसर की है। और आइए सीधा रुक करते हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह का। जितेंद्र, लगातार पैलेट गन को लेकर और पुलिसियाई एक्शन और वहां पर मौजूद दूसरे सुरक्षा बलों को एक्शन जो उन्होंने लिया उसको लेकर सदन में हमने हंगामा देखा, बाहर भी देखा, तो क्या ये आज भी छाया रहेगा पैलेट गन का मुद्दा या जो एक्शन लिया गया उसका मुद्दा?
12: और देखिए, सदन के अंदर जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जो है इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पैलेट गन का जो इस्तेमाल किया गया है वो ठीक नहीं है, छात्रों को इसमें काफी चोटें आई हैं, सदन के बाहर भी उन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जिस तरीके से राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के ऊपर पूरी तरीके से आरोप लगाया, केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने साफ किया कि राहुल गांधी जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन इन सबके बीच जो सीआरपीएफ के डीजी का एक बड़ा बयान आया है और ये बयान 27 तारीख का है, सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने अपने इन्वेस्टिगेटर कैप्चर सेरेमनी यानी कि अलंकरण समारोह चल रहा था, उस दौरान सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि हमारे जो जवान हैं, चाहे वो ऑपरेशन की सिचुएशन हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उस दौरान वो निर्भीक तरीके से और निडर होकर के काम कर सकते हैं, और अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन आती है तो वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके की बात कह करके उन्होंने पूरे इस मामले का एक अलग मोड़ दिया है और ये बताते हुए कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन हुई है उसके लिए सीआरपीएफ के जवानों ने सही तरीके से कदम उठाया।
0: शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात तीन राज्यों के उपचुनाव की करते हैं, क्योंकि ये इम्तिहान है बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर, जहां आज वोटिंग हो रही है। 3 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर सभी की नजरें बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा का मुकाबला जनसुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता से है।
13: देखिए, मैं बांकीपुर का ही वोटर हूँ। 20 साल से मैं इसी वुमेन्स कॉलेज बूथ में अपने मतदान का प्रयोग करता हूँ। आज अपने भाजपा एनडीए के उम्मीदवार नीरज जी को वोट देकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। मैं 10-15 दिन से ही काम कर रहा हूँ, आज जाऊंगा संसद में, मेरी प्रतीक्षा है। लेकिन एक बात मैंने देखा है कि बांकीपुर की जनता का लगाव बीजेपी के साथ वर्षों से है, और जो काम किया गया है नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा, सम्राट जी, स्वयं नितिन नवीन जी पूर्व में सांसद के रूप में मेरे द्वारा, तो जनता ने वो काम देखा है। तो विकास की इस प्रक्रिया को और उत्साह से आगे बढ़ाएं, यही जनता का संकल्प है, तो बहुत प्रभावी निर्णायक जीत होगी।
14: कई बूथ पे सर मारपीट भी की खबरें।
0: और इस मुद्दे पर सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शशि भूषण का, जो बांकीपुर में ही मौजूद है। शशि, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की वोटिंग चल रही है सुबह से, एक तो इसका जायजा दीजिए, दूसरा ये भी जानना चाहेंगे क्यों ये सीट साख की बात है बीजेपी के लिए।
15: देखिए, आपने आखिर में जो पूछा पहले उसका जवाब दिए देता हूं अंजलि। बीजेपी का गढ़ मानी जाती है सीट बांकीपुर। बीजेपी कभी यहां हारी नहीं है, जब से राजनीतिक दल के तौर पे बीजेपी है। पहले नवीन किशोर सिन्हा इस सीट से जीते थे,
0: जी थोड़ा तस्वीरें भी दिखाते रहे,
15: नितिन नवीन के पिता थे, उसके बाद नितिन नवीन लगातार नितिन नवीन भी इस सीट से लगातार जीतते रहे। आपको दिखाते हैं, ये देखिए शहरी इलाका है पटना का, तो बहुत ज्यादा कतार यहां देखने को नहीं मिलती है वोटर्स की, लेकिन हाँ, वोटर लगातार आ रहे हैं, एक एक करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां से निकल जाते हैं। तो हम जो सुबह से देख रहे हैं उसमें एक ट्रेंड जो दिखता है बांकीपुर में, अगर आप 2025 के विधानसभा चुनाव की बात करिए तो उस समय वहां पर ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा वोटिंग हुई थी, 40% से कम वोटिंग हुई थी। और देखिए, मतदान करने के बाद यहां वोटर्स निकले हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं एक बार अंजलि और समझने की कोशिश करते हैं। बाय इलेक्शन है, लोग थोड़ा कम आते हैं वोटिंग करने, ऐसा माना जाता है, लोगों को निकलना चाहिए घर से, आप लोग क्या सोच करके?
16: बिल्कुल, लोगों को निकलना चाहिए और मतदान करना चाहिए।
15: घर का सब काम निपटा के आई थी या मतलब अभी जा करके?
17: घर का काम सारा निपटा चुके हैं।
15: वोटिंग कर दी आपने?
17: हाँ, वोटिंग कर दी।
15: चलिए, देखिए वोटर्स जागरूक भी हैं, ऐसा नहीं है कि
0: जी बिल्कुल। शशि, अपने शशि इस पर हमारी नजर रहेगी कि कैसी चलती है दिन भर वोटिंग। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: Hexa Organic Radiance.
21: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
22: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
23: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. talk sport.
1: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
23: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
20: And nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
2: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: अरे वाह तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है? हाँ क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना। गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना? अर्ज किया है पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
8: वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ।
7: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
9: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
10: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
12: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
1: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

गृहमंत्री पर राहुल गांधी के हमले के बाद आज संसद में फिर घमासान के आसार। इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक में तय हो रही है रणनीति। आज राज्यसभा में आ सकता परीक्षा बिल। हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर चल रहा है मतदान। प्रशांत किशोर और आरजेडी से बीजेपी की टक्कर। एमपी के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में भी वोटिंग। 3 अगस्त को नतीजे। मध्य प्रदेश में मानी गई किसानों की मांगे तो खत्म हुआ आंदोलन, लेकिन कायम है नाराजगी। 100 की बजाय 60% मूंग एमएसपी पर लेने को तैयार हुई सरकार। खरीद की तारीख बढ़ाई। चीन से पाकिस्तान के रास्ते ईरान जाने वाली मिसाइलों के खुलासे के बाद अमेरिका हैरान। 400 चाइनीज डिफेंस मिसाइल्स का सौदा। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के फैसले से हैरानी। और आज से आ गया सावन का पवित्र महीना। मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। महाकाल मंदिर की विशेष भस्म आरती में भी पहुंचे हैं हजारों भक्त। कांवड़ यात्रा भी शुरू।

0: हिस्से में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के महायुद्ध और पीओके में मचे हाहाकार की। मिडिल ईस्ट का युद्ध अब महायुद्ध में बदलने वाला है क्योंकि एक के बाद एक कई देश इसमें अब सीधे शामिल हो रहे हैं। अमेरिकी गठबंधन में सऊदी अरब भी युद्ध में कूद गया है। उधर पाकिस्तान चीन की भूमिका ईरान के पक्ष में संदिग्ध दिख रही है और पूरी खबर हम आपको विस्तार से समझाएंगे। साथ ही पीओके में मुनीर की क्रूरता की भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला कर दिया है। कुछ दिन तक हमले रुके थे लेकिन अब एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। ईरान के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करके अमेरिकी फौजों ने हमला किया है। अमेरिकी बलों ने ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इसमें सैन्य कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन सुविधाएं, तटीय निगरानी एवं रक्षा ठिकाने तथा समुद्री सैनिक क्षमताओं से जुड़े लक्ष्य शामिल बताए जा रहे हैं। और अब बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई जो आपको बताते हैं, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अब दावा किया है कि चीन ईरान को हथियार पहुंचा रहा है और ये हथियार वाया पाकिस्तान ईरान तक पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ी खबर है क्योंकि इस युद्ध को महायुद्ध की ओर ये बात ले जा सकती है, क्योंकि एक तरफ जो पाकिस्तान मध्यस्थता का ढोल पीटता है, दूसरी तरफ हथियार सप्लाई के लिए सेफ रूट भी चीन ईरान को दे रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह दावा किया है कि कुछ हथियार तो पहुंच भी चुके हैं। तो आइए आपको समझाते हैं कि दरअसल रॉयटर्स एजेंसी की तरफ से जो खबर आ रही है उसमें क्या दावा किया जा रहा है। ये एक बेहद चिंताजनक बात रहेगी अमेरिका के लिए, क्योंकि दावा यह है कि ईरान को हथियार भेज रहा है चीन। आपको याद है शी और ट्रंप की मुलाकात भी हुई थी, उसके बाद ये हो रहा है और चीन और ईरान में हथियार सौदा हो रहा है, ऐसी बातें आ रही है। मिसाइलें भेजी जाएंगी और ये रास्ता कहां से मिलेगा? पाकिस्तान के जरिए, जहां से एक सेफ रूट बनाया जाएगा और वहां भेजे जाएंगे ये हथियार। करीब 400 मिसाइल लॉन्चर अब तक कहा जा रहा है कि भेजे जा चुके हैं चीन द्वारा ईरान को। तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि क्या अब इसमें दूसरे देश भी शामिल हो रहे हैं? तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? शोल्डर फायर्ड लॉन्चर ये भेजे जा रहे हैं चीन की तरफ से ईरान को, और पाकिस्तान की भूमिका साफ नजर आ रही है इसमें। तो अमेरिका भी अब हैरान है क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते ही ये हथियार अब ईरान तक पहुंचेंगे। जो रूट बनेगा उसमें पाकिस्तान शामिल होगा, वो समर्थन देगा, सपोर्ट देगा अपनी तरफ से इन मिसाइलों को भेजने के लिए। तो आइए सुनते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं।
1: President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran.
2: Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed.
0: तो ये सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, डोनाल्ड ट्रंप के बयान से लगता है कि वो थोड़े से चौंक गए हैं कि चीन या शी जिनपिंग ने उनकी बात नहीं मानी। उधर पाकिस्तान ने, जो एक तरफ कहता है कि हम तो मध्यस्थता में और शांति लाने में मदद कर रहे हैं, वो दूसरी ही बात करता हुआ नजर आ रहा है।
3: अंजलि, आपके सवाल का जवाब मैं तीन हिस्सों में देता हूं। सबसे पहली बात, तो पाकिस्तान की भूमिका डबल क्रॉस की रही है कोई नया मामला नहीं है। अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि वॉर ऑन टेरर के अंदर जो हथियार आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने लिए थे, उनका उसने कहां, कैसे और कितना इस्तेमाल किया, कितना भारत के खिलाफ किया है और कितना उन तालिबान की मदद के लिए किया जो अमेरिका की कोई सेनाओं को हटाकर अगस्त 2021 के अंदर वापस काबुल के अंदर काबिज हुए। जहां तक पाकिस्तान की भूमिका का सवाल है, ये सारी चीजें सवालों के घेरे में पहले से रही है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका उस पाकिस्तान की मदद ले रहा है। जहां तक ये रिपोर्ट है रॉयटर्स की कि मैन पैड्स या मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम करीब करीब 300 से 400 शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स की चीन सप्लाई कर रहा है, और इसको लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे बहुत निराशा होगी, आश्चर्य होगा कि अगर चीन इस तरीके की कार्रवाई करता है, क्योंकि यह बहुत खराब होगा अगर ऐसा होता हो। यूएस ईरान की इस लड़ाई के बीच में यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके की रिपोर्ट आई है, लेकिन पाकिस्तान और चीन दोनों ने इसका खंडन किया है। आधिकारिक रूप से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, और अगर वाकई में ऐसा है अमेरिका के ऊपर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है अगर अमेरिका इसके बावजूद ये सारी चीजें कर रहा है। लेकिन रूट पाकिस्तान होगा, इसको लेकर कुछ शंका के सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि चीन और ईरान के बीच में सीधी रेल लाइन की लिंक है, तेहरान तक पहुंचती है वो ट्रेन। तो क्या चीन उसका इस्तेमाल न करके पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है? अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें स्पष्ट होना बाकी है।
0: बिल्कुल, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, शुक्रिया आपका। उधर ईरान युद्ध में अब सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। सऊदी और अमेरिकी गठबंधन सेना ने पहली बार इराक पर हमला किया और यह हमला ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क पर था। इस बीच वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की 90 मिनट की एक बातचीत भी हुई। माना यह जा रहा है कि युद्ध को लेकर नेतन्याहू ने टारगेट की एक लिस्ट डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दी है।

0: ईरान अमेरिका में फिर सीधी जंग शुरू। ट्रंप की धमकी, ईरान बड़ी कीमत चुकाएगा। एक बार फिर अमेरिका ईरान वार्ता ठप। ईरान जंग में सऊदी अरब की एंट्री हो गई। इराक पर अमेरिका और सऊदी का हमला। हमले के बाद जॉर्डन पर ईरान का बड़ा हमला। यूक्रेन पर भी हमले की तैयारी में है ईरान। नेतन्याहू के साथ मीटिंग, क्या है प्लान 90?
1: Talking to them right now, I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason, but we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them, so I think while we're talking, we'll see what comes of it.
2: And we like to say, just
1: I believe, Jeff, they're very serious. Okay. They should be.
2: And when you say
0: that... चंद घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने यही दावा किया था कि ईरान के साथ युद्ध विराम को लेकर वार्ता जारी है, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ऐसा क्या हुआ कि ईरान और अमेरिका का युद्ध फिर से शुरू हो गया? दरअसल इराक पर अमेरिका और सऊदी अरब के जॉइंट ऑपरेशन से ठीक पहले ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग हुई थी। 90 मिनट चली मीटिंग में ईरान युद्ध को लेकर लंबी चर्चा हुई। मीटिंग खत्म हुई और इराक में ईरान के समर्थकों के ठिकानों पर अमेरिका और सऊदी अरब ने बम बरसाए। पिछले 72 घंटों में IRGC के आदेश पर 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमले हुए। अमेरिकी सेना के खिलाफ ये हमले सफल नहीं हुए। जवाब में अमेरिकी और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। फरवरी से अप्रैल 2026 तक इराक में ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों ने अमेरिकी नागरिकों और ठिकानों पर 600 से ज्यादा हमले के प्रयास किए हैं। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए IRGC और उसके आतंकवादी सहयोगियों को अब हमलों को रोकना होगा। सरल शब्दों में समझे तो अब अमेरिका ईरान युद्ध में सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। बीती रात ईरान के प्रॉक्सी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के ठिकानों पर हमले किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में PMF के 20 लड़ाकों की मौत हो गई। इस लिस्ट में 4 ईरानी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। हमले के बाद अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि इराक में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऑयल प्लांट पर हमले की तैयारी हो रही थी। सऊदी और अमेरिका के हमले के कुछ घंटों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर दागी गई थी। इन हमलों के बाद ट्रंप ने धमकी दी है कि जॉर्डन पर मिसाइल हमले का जवाब ईरान पर हमले से अमेरिका देगा। जॉर्डन में अमेरिकी सेना पर ईरानी मिसाइल हमले का अमेरिका जोरदार जवाब देगा। हम बहुत जल्द ईरान को बुरी तरह हरा देंगे। हम उन्हें कड़ी टक्कर देंगे। अब उनकी जमकर पिटाई होगी। भले ही ईरान ने मिसाइलें दागी, लेकिन अमेरिकी सैनिकों के पास मिसाइलों को रोकने के लिए सिर्फ कुछ मिनट थे और उन्होंने उसे रोक दिया। ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी तो मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु हथियारों को रोकने के लिए एकजुट हैं। हमारी एक साझा प्रतिबद्धता है। हम ईरान में एक कट्टरपंथी शासन को परमाणु हथियार हासिल करते हुए नहीं देखना चाहते। ईरान के संबंध में इजराइल और अमेरिका का एक साझा लक्ष्य है और ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हुई मुलाकात में ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों पर लंबी चर्चा की। नेतन्याहू ने ट्रंप को यही बताया कि ईरान के खिलाफ इजराइल को फिर से बड़ा हमला करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू यही मानते हैं कि ईरान पर दोबारा हमला ही अब आखिरी विकल्प बचा है, क्योंकि जब तक युद्ध भूमि में ईरान सरेंडर नहीं करता तब तक मिडल ईस्ट में शांति की संभावना नहीं है। इसी कड़ी में नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के नए टारगेट की लिस्ट ट्रंप को सौंपी है, जहां अभी तक एक बार भी हमले नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि इस लिस्ट में ईरान का पिकैक्स परमाणु सेंटर भी शामिल है। वैसे ट्रंप पहले भी पिकैक्स परमाणु सेंटर पर हमले की धमकी दे चुके हैं।
3: Great speech, Mr. President. Go get Pickaxe Mountain and don't keep the speaker waiting. I appreciate your time, sir.
4: Okay, and we will do that. We're going to take out Pickaxe Mountain. Tell the Iranians to be ready.
3: I will.
4: Let them know we're coming, okay? There's not a damn thing they can do about it.
5: और बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की। जी हाँ, पीओके में आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ ने मिलकर कत्लेआम मचा रखा है। पीओके में जिस तरह से शाहबाज शरीफ और मुनीर ने आतंक मचाया है, उससे तंग आकर वहां के लोगों ने कह दिया है कि पीओके पाकिस्तान नहीं है। तो क्या अब पीओके मुनीर के हाथ से निकल चुका है?
6: तो अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर उसके हाथ से जाने वाला है। पीओके की जनता ने मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ की क्रूरता की पोल खोल दी है। पीओके में इस वक्त हालात ये हैं कि भूख, बुनियादी हक और आटा बिजली मांगने वाले निहत्थे कश्मीरियों पर जनरल आसिम मुनीर की फौज गोलियां बरसा रही है। पिछले 48 घंटों में 31 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी गई। मस्जिद के इमाम तक को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पीओके में जगह जगह सिर्फ लाशें और जनाजे नजर आ रहे हैं।
7: पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, उन्होंने बड़ी बेरहमाना अंदाज में, ज़ालिमाना अंदाज में नते अवाम पे जो है गोलियां बरसाई, जदीद असलाह का इस्तेमाल किया गया और नती अवाम पे जो है 20 के करीब हमारी कल शातें हुई और 400 से अबाव हमारे जो जख्मी उनको गोलियां लगी।
6: पीओके में 5 जून से शुरू हुए इस जन आंदोलन में अब तक 100 के करीब बेगुनाह मारे जा चुके हैं और दर्जनों घायल हैं। लेकिन पीओके वाले पीछे हटने को राजी नहीं। अब जेएएसी ने मुनीर की फौज से आर पार का ऐलान कर दिया है।
8: आज मुजफ्फराबाद बैठे हुए अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाल्लाह ताला आएंगे। एक भी जिंदा रहा तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। अभी ये सफर शुरू हुआ है इंशाल्लाह ताला। अपने वतन पे अपना राज होगा, अपने वतन पे अपने वतन पे।
6: एक तरफ तो मुनीर और शहबाज शरीफ का पूरा खानदान पीओके वालों की लाशों के ऊपर से गुजर रहा है, दूसरी तरफ चुनाव का दिखावा भी कर रहा है। लेकिन पीओके की जनता ने कथित चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। पीओके के मीरपुर डिवीजन में सिर्फ 10% वोटिंग हुई, जबकि पाकिस्तान 45% मतदान का दावा करता है। पीओके में 10% मतदान साबित करता है कि वहां की जनता अब मुनीर के चंगुल से आजाद होना चाहती है।
9: पीओके में जनमत रुझानों से बौखलाया पाकिस्तान अब कत्लेआम पर उतर आया है। बेरहमी से हत्या की जा रही है, इंटरनेट शटडाउन है और फौज की तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। इस क्रूरता के खिलाफ जेएसी ने अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से स्वतंत्र जांच की मांग की है। इंटरनेशनल एमनेस्टी ने भी पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है।
6: सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। आपको बता दें कि 1948 से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन जब से आसिम मुनीर सेना प्रमुख बने ये विद्रोह चरम पर पहुंच गया। बलोचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म की इंतहा कर रही है। पाकिस्तानी सांसद मौलाना अताउर रहमान ने मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान टूटने जा रहा है।
10: बस बस तक गुजारिश करता हूँ, खुदारा खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे।
6: इससे पहले आसिम मुनीर को उलेमाए इस्लाम फजल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान की सीधी चुनौती आ चुकी है।
11: आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे।
6: अब पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक आसिम मुनीर की शामत है और ये बगावत शांत होने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो।
5: एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
12: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach
13: Hexa Organic Radiant Skin and Nourished Hair Pure Ayurvedic Beauty.
14: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
16: There are three categories of people. I'm not using the word. There is one category of people called student vidyarthi, jo vidya ka arth dhoondta hai. And then there are the two other categories which I will not name. But these categories have natures. So the student is never scared of the truth. He loves the truth, goes towards the truth. Student never uses force against somebody else because he knows that that person's truth is different than my truth. The other category, they do not like the truth. They need an image. They need force. They need violence. Superficially, it looks that our students were upset because of exams. They were upset because of the education system. They were upset because they have to study hours and hours and hours, and then paper leaks. Some rich boy or girl pays 30, 40 lakh rupees, gets the paper, gets the job. And jo middle class ka gareeb student hai, imandar hai, wo bypass ho jata hai. So they are upset because of these things. And our system is terrible. It's terrible, it's cruel. Lakhs and lakhs of rupees are taken from the poorest people. Everything has been privatized. Paper leaks. In one exam, something happens. In another exam, something else happens. Some people are allowed re-exam. Some people are not allowed re-exam. Rampant privatization means private companies are checking exams. Wrong papers are going. It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings.
13: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक एक और 11 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। और सीधा रुख करते हैं संसद का, जहां पर गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और आप दोनों सदनों से देख रहे हैं ये सीधा प्रसारण। इस वक्त वहां कार्यवाही शुरू हो रही है।
2: पैरा खिलाड़ी श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पद जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पद जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल। माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये सदन के माध्यम से भी और फ्लोर लीडरों की मीटिंग में भी आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल बाधित करना चाहते हैं। सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
3: पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, श्रीमान
0: कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। और जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद स्पीकर ओम बिरला की तरफ से लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब 2 बजे दोबारा लोकसभा की कार्यवाही को शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये कार्यवाही स्थगित हो गई।
1: और आइए अब देखते हैं शतक आज तक।

0: संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा। समाजवादी पार्टी के सांसदों की अगुवाई, विपक्ष ने चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संसद के बाहर दान पेटी लेकर सांसद पहुंच गए। बागीपुर में, किदवईपुरी में बूथ संख्या 101, 102 और 103 पर मतदान के दौरान बीजेपी और जनसुराज कार्यकर्ताओं में पुलिस के सामने भिड़ंत। जनसुराज के कार्यकर्ताओं का आरोप, पूर्व में प्रत्याशी बनाए गए बीजेपी लोगों के साथ पहुंचकर दबंगई कर रहे, वोट डालने से रोका जा रहा। वहीं बीजेपी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया मतदान, मतदान के बाद आज तक से खास बातचीत में बोले, बागीपुर में कोई लड़ाई नहीं, बीजेपी की जीत होगी। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने किया मतदान, मतदान के बाद बीजेपी की जीत का दावा। पेपर लीक मामले में योगी सरकार को अखिलेश ने घेरा, यूपी में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा पेपर लीक में जो शामिल उनके रिश्ते सरकार से हैं। पंजाब में पेपर लीक को लेकर अकाली नेता हरसिमरत कौर ने अमित शाह को पत्र लिखकर जांच के आदेश देने की मांग की। पंजाब में परीक्षा के 11 पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच की मांग, हरसिमरत ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भोजशाला विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नमाज के लिए वैकल्पिक जगह तय करने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई।
1: तेजस्वी यादव ने बिहार में प्रदर्शन की चेतावनी दी, कहा अगर प्रदर्शनकारियों पर केस वापस नहीं लिए गए तो करेंगे राज्यव्यापी प्रदर्शन। पेपर लीक मामलों के लिए बिहार में 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट।

0: गठित। पटना में टीआरई 3 सिपाही भर्ती बीपीएससी केसों की सुनवाई। पटना के नौबतपुर में युवती पर फायरिंग, युवती को पटना एम्स में कराया गया भर्ती, युवती पर 3 गोलियां चलाई गई। ठाकरे शिंदे गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बंगाल में ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी, असली टीएमसी को लेकर जल्द फैसले की मांग। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में विरोधी गुट पर देरी की चाले चलने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने 6 जुलाई की समय सीमा के साथ दोनों पक्षों के से राय मांगी थी। ममता बनर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल में गंभीर राजनीतिक नतीजे हो सकते हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। अभिषेक के खिलाफ 8 एफआईआर के मामले में सख्त कार्रवाई की से संरक्षण की मांग की गई।
1: मध्यप्रदेश में खत्म हुआ किसानों का आंदोलन, सरकार से बातचीत के बाद किसानों को दिया गया आश्वासन, पहले से ज्यादा होगी मूंग की खरीद। सरकार ने गठित की कमेटी, 25% से 60% मूंग खरीद बढ़ाया, भोपाल के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का बयान, सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है। किसान 100% खरीद की मांग कर रहे हैं, सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि पहले से ज्यादा मूंग खरीदेगी और ई टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई। भोपाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प, एसीपी मोनिका शुक्ला का बस रोकने का वीडियो वायरल हुआ। यूपी चुनाव 2027 एनडीए में सीट बंटवारे पर संग्राम, आरएलडी ने 33 प्लस सीटों पर ठोका दावा, बीजेपी 20 से 25 सीटों पर अड़ी, आरएलडी पश्चिमी यूपी के साथ पूर्वांचल में भी बढ़ा रही दावेदारी। यूपी चुनाव 2027 के लिए बीजेपी का सीक्रेट सर्वे मिशन शुरू, 403 सीटों पर उम्मीदवारों की होगी परीक्षा, सहयोगी दलों की सीटों पर भी फोकस। भदोही का बदलेगा नाम, सीएम योगी ने संत रविदास नगर करने का ऐलान किया, 32 साल में 5वीं बार बदलेगा जिले का नाम, वाराणसी कार्यक्रम में हुई घोषणा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, 12 अगस्त तक भारी वाहनों की एंट्री बंद, 4 अगस्त तक नेशनल हाईवे 58 की 22 लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर अलर्ट, एटीएस ड्रोन और 4000 पुलिसकर्मी तैनात, जनपद को 9 सुपर जोन 16 जोन में विभाजित किया गया।
0: ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, जगदीश आफले को बनाया जाएगा नया सचिव, दैनिक प्रशासन की संभालेंगे जिम्मेदारी, 2 सितंबर की कार्यकारी समिति बैठक में लगेगी अंतिम मुहर। कांवड़ यात्रा इंतजामों पर एआईएमआईएम का योगी सरकार पर हमला, शादाब चौहान के बयान से विवाद, यात्रा रूट मास्क की दुकानों पर कार्रवाई और विशेष व्यवस्थाओं पर उठाए गए सवाल। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट, कावड़ मार्ग की शराब दुकानों को तिरपाल से ढका गया, मंदिर मस्जिद वाले रूट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। जंतर मंतर प्रदर्शन में खाना बांटने वाले गाजियाबाद के जुनैद के परिवार का दावा, पुलिस ने की पूछताछ, परिजनों का आरोप, दस्तावेज लिए गए। उन्नाव में बच्चों के विवाद ने लिया हिंसक रूप, पथराव के बीच चली गोली, तमंचे से फायरिंग का वीडियो वायरल। वाराणसी में सीएम योगी ने किए काल भैरव मंदिर के दर्शन, सावन पर की पूजा अर्चना, मुख्यमंत्री ने बाबा काल भैरव के दरबार में माथा टेका, प्रदेश की सुख शांति की कामना की। सावन के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, वाराणसी में श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर की पूजा अर्चना। सावन के पहले दिन अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि की कामना की। सावन के पहले दिन कानपुर के आनंदेश्वर शिव मंदिर में भी आस्था का सैलाब, शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा की। सावन के पहले दिन गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, शिव भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।
1: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल, अब तक कुल 15 मिले, बॉक्सिंग में 10 मेडल मिलने तय। दिलीप महादुगावित ने पैरा 100 मीटर की रेस में जीता गोल्ड मेडल, गावित ने 10.71 सेकंड की रेस जीती। पैरा 100 मीटर की रेस में भारत के मोहम्मद बासिल ने जीता सिल्वर मेडल। बासिल ने 10.83 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर रहे। लॉन्ग जंप में मुरली श्री शंकर ने सिल्वर मेडल जीता। लगातार दो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने मुरली। बॉक्सिंग में जैस्मिन लेम्बोरिया ने महिलाओं की 57 किलो वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अगला मुकाबला 31 जुलाई को लेसोथो की खिलाड़ी से। अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। बोले, अलविदा कहने का यही सही वक्त अब नया पड़ा। 536 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के 48वें नंबर के बल्लेबाज बने सूर्यवंशी। पहली बार टॉप 50 में बल्लेबाजों में शामिल। टी20 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन नंबर 1 स्थान पर काबिज। 910 रेटिंग पॉइंट्स। वनडे में भारत के कप्तान शुभमन गिल वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज, विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर। टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में भारत की पेस बैटरी जसप्रीत बुमराह की बादशाहत कायम। 870 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर।
0: ओडिशा में बाढ़ का कहर, 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 3 की मौत, महानदी में बाढ़ का खतरा। ओडिशा में लगातार बारिश ने मचाई तबाही। नागावली नदी उफान पर, रायगढ़ में बड़ा हादसा टला। रायगढ़ में उफनती नागावली नदी के बीच ट्रैक्टर फंसा, चालक और नाबालिग का सुरक्षित रेस्क्यू। उत्तरकाशी में बारिश का कहर, यमुनोत्री हाईवे बंद। गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित। बेली ब्रिज अधूरा, जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर है ग्रामीण। सड़कें बंद और गांवों का संपर्क प्रभावित। सुकमा में बारिश का कहर, उफनती नदियों से 50 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। रुद्रप्रयाग में बारिश से टनल के बाहर भूस्खलन, अलकनंदा पुल निर्माण पर असर, टनल सुरक्षित। आसनसोल में भूस्खलन से के 24 घंटे बाद भी हालात गंभीर, 1000 लोग बेघर, इलाके में नई दरारों से दहशत। और छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में दर्दनाक हादसा, उफनते नाले से निकली कार में हाथ थामे मिले दंपति के शव। कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा में डूब रहा हरियाणा का कांवड़िया बचाया गया, एसटीआरएफ ने समय रहते किया सफल रेस्क्यू।
1: रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और भूस्खलन का असर, तीसरे दिन भी केदारनाथ यात्रा पर रोक, मार्ग पर गिर रहे पत्थर। केदारनाथ में भारी बारिश का असर, दुकानों पर पसरा सन्नाटा, यात्रा प्रभावित होने से बाजार खाली। खराब मौसम के बीच श्रद्धालुओं की आवाजाही थम गई। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन, जीएम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, मलबा हटाने, यातायात सुचारू करने के निर्देश। ओडिशा के भद्रक में बाढ़ का कहर, प्रभावित इलाकों में सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जलभराव में फंसे कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राजौरी में बाढ़ से तबाह सड़कों की बहाली में जुटा बीआरओ, मलबा हटाने का काम जारी, क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए उतरी भारतीय एथलीट, लोगों तक राहत सामान पहुंचा रही हिमा दास, सावधानी बरतने की भी अपील। अरुणाचल के कुरुंग में चला बड़ा हादसा, कुश्क नदी में अचानक फ्लैश फ्लड के कारण बड़ा जलस्तर, फंसे लोगों ने शख्स का सफल रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से हालात बिगड़ गए हैं, 3 नेशनल हाईवे समेत 140 से अधिक सड़कें बंद हो गई, 4 धाम यात्रा पर भी आज के लिए रोक। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड, मलबे की चपेट में आने से एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त, कई जगहों पर प्राकृतिक आपदा के कारण हाईवे बंद। रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है, घरों तक पहुंचा अलकनंदा नदी का पानी। केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली सुरंग के पास भूस्खलन, मौके पर पहुंचे डीएम ने हालात का जायजा लिया।
0: बागेश्वर में भारी बारिश का कहर, घरों में घुसा पानी और सड़क के नाले में तब्दील, लगभग 16 ग्रामीण मार्ग बंद। राजस्थान के अलवर में तेज बारिश के बाद सड़कें बनी सैलाब, पानी में फंसी स्कूल बस, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, घरों में भी घुसा बारिश का पानी। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद आवाजाही हुई बाधित, पुलिस ने जगतियाल से मिंचरियल जाने वाले यात्रियों के लिए जारी की एडवाइस। बुलंदशहर में बारिश बनी काल, स्कूल से लौट रही चौथी कक्षा की छात्र उफनते नाले में बही, 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं। शाहजहांपुर में किराए के कमरे में मिला सब इंस्पेक्टर का शव, मचा हड़कंप, हार्ट अटैक से मौत की आशंका, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर देवबंद शिवा हत्याकांड का खुलासा, मारपीट का बदला लेने के लिए की गई थी हत्या, मुठभेड़ के बाद दो आरोपी गिरफ्तार, गला घोंटकर हत्या की साजिश का खुलासा। सहारनपुर में पेट्रोल पंपों पर प्रशासन का छापा, मिलावट की शिकायत पर हुई जांच, अधूरे दस्तावेज मिलने पर पेट्रोल बिक्री रुकवाई गई। झांसी में सीओ ऑफिस में दो महिलाओं का हंगामा, आत्मदाह की धमकी से मचा हड़कंप, बयान दर्ज कराने पहुंची महिलाओं को पुलिस थाने ले गई, आधे घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। कौशाम्बी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, चंदवारी बाजार में लाठी डंडे, ईंट पत्थर और बैट से चले हमले, पुलिस जांच में जुटी।
1: नूह में तेरी रफ्तार कार ने मचाया कहर, बस स्टैंड पर कई वाहनों को रौंदा, हादसे में कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त, तीन लोग गंभीर रूप से घायल। बेंगलुरु में बाइक सवार ने उड़ाई ट्रैफिक नियम की धज्जियां, बीच सड़क पर खतरनाक स्टंट, कई लोगों की जान खतरे में डाली। हनुमानगढ़ जंक्शन के पास ट्रेन की चपेट में आने से ट्रैफिक पुलिस में तैनात कांस्टेबल की मौत, सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जांच शुरू। राजस्थान के अलवर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति की फोटो लगाकर महिला से ठगी का प्रयास, महिला की सूझबूझ से नाकाम हुई ठगी। गुजरात में जामनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार, 10 आरोपी फरार घोषित। बिहार के जहानाबाद में सनकी देवर ने भाभी की हत्या कर सिर पेड़ से टांगा, खाने में देरी की वजह से दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में 3 साल की मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पिता ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, जांच जारी। राजस्थान के बांसवाड़ा में स्कूली बच्चों से भरी वैन खड़े ट्रक से टकराई, हादसे में एक बच्चे की मौत, कई घायल। पटना के मानेर में सरेआम लड़की की गोली मारकर फरार हुआ बदमाश, गंभीर अवस्था में एम्स में इलाज जारी है। मणिपुर के नौनी में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और नागा विलेज वॉलंटियर्स के बीच हुई गोलीबारी में एक नागा विलेज गार्ड सदस्य की मौत हो गई, 5 अन्य घायल। दिल्ली के मैदानगढ़ इलाके में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई, शराब के लिए पैसे ना देने पर बेटे ने हथौड़े से मारकर मां की हत्या की। दिल्ली के केशवपुरम में 20 वर्षीय युवती के माथे पर गोली मारकर हत्या, संख्या आरोपित प्रेमी की तलाश तेज। यूपी के बांदा में दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर, एक बुजुर्ग और 11 वर्षीय बच्चे की मौके पर मौत, हादसे में 4 अन्य लोग घायल। महाराष्ट्र के सतारा में नीट परीक्षा में कम अंक आने पर छात्रा ने चूहे मारने की जहर खाकर जान दी, शिक्षा व्यवस्था पर परिवार ने सवाल उठाए। बिहार में होमगार्ड हवलदार परीक्षा में फर्जीवाड़ा, पुलिस ने हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह की साजिश का बड़ा पर्दाफाश किया, परीक्षा केंद्र से 3 शिक्षक समेत 10 को हिरासत में लिया।
0: रणबीर कपूर की मच वेटेड फिल्म रामायण के ट्रेलर का इंतजार अब खत्म, रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर। फिल्म रामायण ने धुरंधर 2 का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, 75 करोड़ में बिके रामायण के म्यूजिक राइट्स, टी सीरीज ने खरीदे ये राइट्स। गुरु पूर्णिमा के दिन श्रीमद्दागवतम फिल्म सीरीज की घोषणा, और इस पर बनेगी 7 फिल्मों की सीरीज, रामायण शो बनाने वाले रामानंद सागर के पोते कर रहे हैं इसे डायरेक्ट। महाप्रभु जगन्नाथ एनिमेशन फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ, फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। अमित राय की फिल्म ओ माय डॉग का पहला गाना रिलीज, 7 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन।
1: प्रियंका गांधी वाड्रा अभी कुछ कह रही हैं, वो आपको सुनाते हैं, अपनी बात रख रही हैं वो।
3: जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे उनकी क्या कह, वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना, ये देश की आवाज है, ये देश, इस देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी, और पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी के की अगुवाई में ये आंदोलन किया था, और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है, कोई उसे निकाल नहीं सकता, आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता, चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं, अंत में इस देश की एक आत्मा है भाईचारे की, प्रेम, आपसी प्रेम की, सबकी एकता की, और वो कोई उनमें से निकाल नहीं सकता।
4: मंत्री ने सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है। और
3: बताइए, आप बताइए, तो उस लड़के जो जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को उसके पूरे शरीर में।
0: तो नीट पेपर लीक पर मचे बवाल के बीच पंजाब पेपर लीक का मामला भी गरमाया हुआ है। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी दफ्तर पर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी पंजाब में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है और लगातार ये मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है। यह आवाज दिल्ली में संसद तक भी पहुंची थी और अब आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर प्रदर्शन दिल्ली में।
1: तो पंजाब पेपर लीक को लेकर इस्तीफे की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है और आम आदमी पार्टी को इस बार कटघरे में खड़ा किया गया है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पंजाब में अब एक्शन होना चाहिए, पंजाब में अब रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: उधर आम आदमी पार्टी की सरकार ने साफ किया कि पंजाब में दरअसल पेपर लीक नहीं हुआ है। उनका दावा है कि वो एक चीटिंग का मामला है और यही वो बार बार कहते आ रहे हैं।
5: इस बात से सहमत हो तो जोर से नारा लगा दो।
6: सांसद रामबीर सिंह बिदूड़ी जो कि बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से, अगर आप तस्वीरें देखिए सोशा, कि यहाँ पर जबरदस्त बीजेपी के जो वर्कर्स जो है वो आपको सड़कों पर नजर आएंगे। हालांकि पुलिस की तरफ से बैरिगेट किया गया ताकि कार्यकर्ता पार्टी के दफ्तर की तरफ ना पहुंच सके, लेकिन कई लेयर की बैरिगेटिंग जो है वो यहाँ पर की गई है सुरक्षा के पूरे लिहाज से, क्योंकि लोकसभा का सत्र भी चल रहा है और ऐसे में पिछले दिनों जिस तरीके से एजिटेशन देखने को मिला वो स्थिति ना बने इसको लेकर के काफी जमी है।
5: छात्रों की भविष्य से खिलवाड़ हो रही है
1: जी। और यहां पर वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: ट्यून इन इज योर ऑल इन वन ऑडियो ऐप, रेडियो, म्यूजिक, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
10: Sokudo.
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
2: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
1: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना? अर्ज किया है, पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
3: वाह वाह वाह वाह।
1: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
4: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
5: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: पापा।
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ,
9: टाटा
10: AIG है तो भरोसा है।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se
1: Punjab National Bank Bharose Ka Prati.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

0: जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत, कुलगाम में बादल फटने से भारी तबाही, फ्लैश फ्लड की चपेट में आए कई मकान। धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर इस वक्त मानसून की मार झेल रहा है। एक के बाद एक बादल फटने की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। राजौरी, पुंछ, गुरेज और उरी के बाद अब कुलगाम में भी बादल फटने से तबाही मची। ये तस्वीरें कुलगाम के देवसर के दार्दगंड की हैं, जहां बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में कई घर और मवेशी भी आए। बादल फटने की खबर मिलते ही SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। कुलगाम ही नहीं, बांदीपोरा में भी भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी हुई। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कें, रिहायशी इलाके और खेत खलिहान सब पानी में डूबे नजर आए। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: गृह मंत्री पर राहुल गांधी के हमले के बाद संसद परिसर में विपक्ष का हल्ला बोल, बैनर के साथ नारेबाजी, पूछा दिल्ली में फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया, लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित।
1: पेपर लीक में अब बीजेपी के निशाने पर आई आम आदमी पार्टी। पंजाब की परीक्षाओं में लीक को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी के दिल्ली मुख्यालय पर जबरदस्त नारेबाजी।
0: हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर पहले घंटे में धीमा मतदान, रविशंकर प्रसाद समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। दतिया में नरोत्तम मिश्रा ने मतदान किया, 3 अगस्त को आएंगे नतीजे।
1: सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ यात्रा पर तेज हुई सियासत, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता का विवादित बयान, कांवड़ियों को बताया नशेड़ी।
0: चीन से पाकिस्तान के रास्ते ईरान जाने वाली मिसाइलों के खुलासे के बाद अमेरिका हैरान, 400 चाइनीज डिफेंस मिसाइल का सौदा, ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के फैसले से हैरानी।

0: तो संसद में आज भी बवाल है, हंगामा है। लोकसभा में कार्रवाई की शुरुआत होते ही हंगामा हो गया और हंगामा और विपक्ष के तेवर को देखते हुए स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा से भी विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है।
1: सदन के बाहर भी विपक्ष का विरोध जारी रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निशाने पर हैं। छात्रों पर पैलेट गन से हमले को लेकर विपक्ष अमित शाह की घेराबंदी कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसदों ने चंदा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि राज्यसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद वहां पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और ये मुद्दा पैलेट गन का था, जिसके बाद विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने राज्यसभा से वॉक आउट स्टेज किया।
0: और इस दौरान जेपी नड्डा की तरफ से भी ये कहा गया है कि विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है, अपनी जिम्मेदारी से हट रहा है विपक्ष। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। विपक्ष की भूमिका पर जेपी नड्डा ने सवाल उठाते हुए उसे नकारात्मक बताया क्योंकि विपक्ष में जमकर हंगामा किया और उसके बाद वॉकआउट कर दिया।
2: इसी सत्र की बात नहीं है, जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है, दे आर इश्यूलेस। आज भी सुबह से जब हम जो उन्होंने कहा था कि डिस्कशन होना चाहिए, आज जितेंद्र सिंह जी दोपहर में 2 बजे से वो डिस्कशन करने वाले हैं, वो बिल आ रहा है उस पर चर्चा होगी, लेकिन इनकी आदत है कि ये हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। मैं विपक्ष की भूमिका की तीव्र भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: तो राज्यसभा में क्या हुआ ये तो आपने देख लिया, लेकिन लोकसभा में क्या हुआ, कार्रवाई शुरू होते ही क्यों स्थगित हो गई, ये हम आपको दिखाते हैं।
3: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल बाधित करना चाहते हैं। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: तो संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा है। समाजवादी पार्टी के सांसदों की अगुवाई में विपक्ष ने चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संसद के बाहर दान पेटी लेकर सांसद पहुंचे और इसी तरह का प्रदर्शन हमने कल भी देखा था जब दान पेटी हाथ में लेकर उसमें पैसे डालते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद खड़े हो गए थे। वो मुद्दा उठाना चाह रहे हैं अयोध्या में चंदा चोरी का।
4: राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा आज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ संसद के अंदर नजर आ रहा है। इस वक्त जो है मकर द्वार के सामने एक दान पात्र रख दिया गया है और इस दान पात्र के अंदर विपक्ष के सभी सांसद दान डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए कैसे जो सांसद है उनके हाथ में जो दान पात्र है उसमें कुछ अलग अलग सांसद, ये दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद है जिन्होंने हाथ में दान पात्र लिया हुआ है और स्वागत हो रहा है। जो टीएमसी के सांसद है वो उसमें दान डालते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे ही ये दान डाला जाता है वैसे ही संसद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो इस दान पात्र को छीनने लगते हैं, यानी कि एक प्रतीकात्मक विरोध है जिसमें जैसे ही दान डलेगा वैसे ही उस डब्बे को लेकर जो है जो वो लोग यहां से चले जाएंगे और ये आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि आप दान लेते हैं और उसी चंदे को जो है लेकर भाग जाते हैं। देखिए जो अयोध्या से सांसद है वो भी दान इसमें डाल रहे हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद है और देखिए सुप्रिया सुले भी इसमें मौजूद है। कुछ देर पहले प्रियंका गांधी भी यहाँ पर दान डालती हुई नजर आई थी। तो जो राम मंदिर चंदा चोरी हुआ है उस मुद्दे को यहाँ पर अब विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। मैम आप डाल रहे हैं क्या, क्या है
5: आप लोग तो ये क्या दे रहे हैं ना, चढ़ावा दे रहे हैं,
6: हम लोग डरे हुए है की कहीं ये भी चोरी ना हो जाए।
4: अच्छा आपको डर लग रहे
6: हुए है की कहीं ये भी चोरी ना हो जाए,
4: इसमें ताले लगा के
6: ताले लगा के
4: ताले
6: लगे हैं और पकड़े हुए भी है।
0: तो संसद के बाहर किस तरह से प्रदर्शन हुआ यह भी आपने देखा। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कुछ नया नहीं देखा आज लोकसभा राज्यसभा वही हुआ, शुरू हुआ हंगामा और फिर स्थगित, कुछ नया कब देखने को मिलेगा, चर्चा कब होगी?
7: और देखिए, जिस तरीके से पैलेट गन के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर के सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगहों पर उनके द्वारा हंगामा किया जा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को हमने देखा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ राम मंदिर का मुद्दा जो चढ़ावा चोरी का है उसको लेकर के भी उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से दान पेटी लेकर के यहां पर तमाम सांसद पहुंचे थे और उन्होंने संसद परिसर के अंदर उस दान पेटी में पैसे डालते हुए दिखाई पड़े। और सांसदों से जब हमने बातचीत किया तो उन्होंने ये कहा कि चढ़ावा चोरी को लेकर के उनको काफी डर लगता है, पैसा जिस तरीके से चोरी हुआ है उसको लेकर के वो लगातार एक मैसेजिंग देने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। तो दोनों मुद्दे संसद भवन के अंदर और संसद भवन के बाहर इसको लेकर के लगातार उठाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को जो है राज्यसभा के अंदर भी उठाया, इसके साथ साथ लोकसभा के अंदर जैसे ही इस 11 बजे संसद की शुरुआत हुई वैसे ही इस मुद्दे को उठाया गया, पैलेट गन के मुद्दे को करके। उसके बाद लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रियंका गांधी बाहर निकल करके उन्होंने कहा कि जो छात्रों की और युवाओं की आवाज है वो लगातार इसी तरीके से उठाते रहेंगे और इसका जवाब जो है केंद्रीय गृह मंत्री को देना चाहिए, इस तरीके की बातें विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है।
1: शुक्रिया आपका, इस पर हमारी नजर रहेगी। उधर परीक्षा संशोधन विधेयक पर राहुल गांधी ने संसद में हमले किए जिन पर बवाल की ऐसी आंधी उठी कि अब सारी राजनीति उसी के इर्द गिर्द आकर ठहर गई है, ऐसा दिख रहा है। आज दूसरे दिन भी राहुल गांधी के बयानों को लेकर लड़ाई जारी है।
0: सवाल है कि राहुल क्या राहुल गांधी पेपर लीक पर चल रही राजनीति को पैलेट गन की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं? क्या है राहुल गांधी का इरादा? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
8: पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन दिए नहीं किया जा सकता।
9: जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।
8: हम लोगों को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे।
9: ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं।
10: ये मानसून सत्र में राजनीति का दूसरा पार्ट है। पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, जंतर मंतर पर खामोशी है। धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा हो चुका है लेकिन राहुल गांधी सीज फायर करने पर राजी नहीं है। राहुल गांधी का इरादा साफ दिख रहा है, पेपर लीक की लड़ाई को पैलेट गन पर शिफ्ट करने की, धर्मेंद्र प्रधान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट पर लाने की।
8: तो ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे? सिंपल सी बात है, ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर।
11: शी सेज द स्टूडेंट।
10: कल राहुल गांधी संसद में हुए हंगामे के केंद्र में रहे, उनके हमले पर दिन भर बवाल रहा। राहुल गांधी के भाषणों के कुछ शब्दों को असंसदीय बताकर रिकॉर्ड से बाहर भी किया गया लेकिन राहुल गांधी ने संसद से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और हमलों का सिलसिला जारी रखा। वो जंग संसद में आज भी जारी रही।
12: तस्वीरें आप देखिए मकर दुराग के सामने किस तरह से विपक्ष के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल आपको दिखाई देंगे, कांग्रेस पार्टी के सांसद दिखाई देंगे और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद भी, धर्मेंद्र यादव भी इसी प्रदर्शन में दिख रहे हैं। तो गृह मंत्री का जवाब मांगा जा रहा है कि आखिरकार 20 जुलाई को जो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ, छात्रों का प्रदर्शन हुआ, जंजीर का प्रदर्शन हुआ, उसका ऑर्डर किसने दिया था, लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया था, और तमाम आरोप जो विपक्ष लगा रहा है उन आरोपों को लेकर जिस तरह से लोकसभा में कल गृह मंत्री का जवाब मांगा गया था, ठीक उसी तरह से आज विरोध प्रदर्शन मकर द्वार के ठीक बाहर संसद में हो रहा है।
10: बीजेपी राहुल गांधी की मंशा को समझ रही है कि राहुल गांधी ने अमित शाह को ही हमले के लिए क्यों चुना, क्योंकि अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं। सत्र के 10 दिन हुए हैं, 15 दिन और बाकी हैं, और राहुल गांधी अमित शाह को चर्चा के केंद्र में रखने की कोशिश में दिख रहे हैं।
13: कि हो क्या रहा है यहां, दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त तो हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे, तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं।
10: बीजेपी बनाम राहुल गांधी की यह लड़ाई असल में युवाओं के बीच पैठ बनाने की जंग भी है। पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन की कामयाबी से लगता है कि विपक्ष के हाथों में भविष्य के लिए नई कुंजी आ गई है, जिसका इस्तेमाल संसद में होता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: तो अमित शाह और बीजेपी पर विपक्ष का हमला जारी है। सदन से निकलकर प्रियंका गांधी ने क्या कहा, आइए वो सुनिए।
14: चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे उनकी क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना, ये देश की आवाज है, ये देश, इस देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी, और पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी के की अगुवाई में ये आंदोलन किया था, और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है, कोई उसे निकाल नहीं सकता, आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता।
15: सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है, और
14: बताइए आप बताइए तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहाँ से आई, आसमान से गिर गई।
16: ये लोग चर्चा एलओपी को बोलने नहीं देंगे, कल एलओपी ने इडियट कहा था कि आपको क्यों लगा कि आपको कहा, गड्ढे में पानी भर गया खुद ही अपना भी।
17: कब तक चलेगा
16: अभी, जब ये तैयार होंगे चर्चा करने के लिए, हम तो हर चीज पे चर्चा।
17: एफसीआरए पे आपकी क्या राय है, एफसीआरए भी सरकार लेके आने वाली,
16: जब आएगा तब देखते हैं।
0: विपक्ष को आपने सुना, विपक्ष का सारा जोर अब अमित शाह पर हमला करने को लेकर है, तो सत्ता पक्ष की ओर से भी इन हमलों का पुरजोर तरीके से जवाब दिया जा रहा है।
18: उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए, और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली, और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है, तो आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं था।
19: एक पुरानी कहानी है कि एक समूह बच्चों का चिल्ला रहा था, मेरे देश का राजा चोर है, देश का राजा चोर है, मेरे भी नहीं, देश का राजा चोर है। तो पुलिस ने पकड़ लिया, बोला सर हम तो फलाना देश की बात कर रहे थे। बोले बेवकूफ समझ रखा क्या, हमको नहीं पता था। तो एक संदर्भ से अलग उन्होंने बात रखी, आपने वो उड़ता तीर ले लिया, तो आप तो उनकी बात को जस्टिफाई कर।
1: तो इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने सीजेपी यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल आपराधिक छवि वाले 2873 लोगों की पहचान कर ली है। ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए इन लोगों की पहचान की गई है जिनके नाम आपराधिक रिकॉर्ड और डोजियर में दर्ज बताए जा रहे हैं।
0: अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अरविंद, अब पहचान कर ली गई है 2873 लोगों की जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है, अब आगे क्या कार्रवाई?
20: देखिए, ये वो तस्वीरें हैं और तकरीबन आज तक के पास ऐसे 900 लोगों की तस्वीरें हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उनको पहचान कर लिया गया। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के सूत्र वो बता रहे हैं कि 2873 ऐसे आदतन क्रिमिनल हैं जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर एक नहीं बल्कि कई बार देखे गए। दरअसल दिल्ली पुलिस ने जो FRS सिस्टम होता है उसके जरिए ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर इस चीज की पहचान की है, क्योंकि शादी वर्दी में इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए जो इंटेलिजेंस के लोग थे वो इकट्ठा थे, और जब ये वो क्रिमिनल है जो जब जंतर मंतर साइट्स के आसपास फेंके गए तो FRS कैमरे ने इनको डिटेक्ट किया, और उसके बाद जब इनकी पहचान की गई तो पता चला कि ये सब क्रिमिनल है। इसमें 100 से ज्यादा मर्डर के अक्यूज है, अटेम्प्ट टू मर्डर के अक्यूज है, डकैती के, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के, इस तरह के क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जंतर मंतर की साइट और उसके आसपास देखे गए। तो अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। दिल्ली पुलिस का कहीं ना कहीं ये मानना है कि ये जो आदतन अपराधी हैं जिनके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज है वो नई दिल्ली इलाके में घूमते पाए गए, जंतर मंतर के आसपास देखे पाए गए। अब इनकी पहचान कर ली गई है, और क्या ये उस दौरान पुलिस पर हमले में शामिल थे, RAF पर हमले में शामिल थे और गाड़ियों को तोड़फोड़ में शामिल थे, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।
1: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में बोल रहे हैं, आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं।
21: अविसंचित करती है ऋषि मुनियों की तप और साधना से पवित्र इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी गाजीपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, गाजीपुर की धरती सदैव से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा का केंद्र बिंदु रहा है। मैं जब रामायण के कालखंड पर कभी दृष्टि डालता हूं उस समय महर्षि विश्वामित्र को जब अपने राष्ट्र रक्षा के यज्ञ के लिए कहीं और दृष्टि डालनी पड़ी थी तो उस समय उन्होंने एक ही बात का एहसास किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें बहुत ही रोचक शब्दों में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। यानी महाराज गादि जिनका राज्य सिर गाजीपुर में था, महाराज गादी के पुत्र ने अपने मन में संकल्प लिया कि जो ये रावण के राक्षस इस पूरे क्षेत्र में आकर के यहां के नगरों को जाड़ रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, नागरिकों की नृशंस हत्या कर रहे हैं, इसका उपचार अयोध्या के दो राजकुमार होंगे, और क्यों न मैं अयोध्या जाकर के इन दोनों राजकुमारों को ला करके राष्ट्र रक्षा के अपने यज्ञ को संपन्न करूं। याद करिए, जब राम और लक्ष्मण महाराज विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ रक्षा करने के लिए जाते हैं, ताड़का का वध होता है, सुबाहु मारा जाता है, मारीच को कई योजन दूर मार करके वे फेंकते हैं। हमारा ये पूरा क्षेत्र राक्षसों से मुक्त होता है। गाजीपुर तब भी उस चीज का विजन देने वाला है। गाजीपुर ने तब भी उस आतंक के खिलाफ, उस लूट खसोट के खिलाफ, उस समय की उस अराजकता के खिलाफ एक संघनाद का नेतृत्व किया था। और याद करिए, आज भी देश की आजादी के आंदोलन रहे हो, देश स्वतंत्र भारत में भारत की सीमाओं की रक्षा करने की बात आती हो, अगर एशिया का सबसे बड़ा कोई गांव है तो अकेले गहमर में ही 12,000 सैनिक और अधिक सेना अधिकारी अकेले एक ही गांव में निवास करते हैं। एक ही गांव में 12,000 से अधिक सैनिक और सेनाधिकारी, 15,000 से अवकाश प्राप्त सैनिक और सेनाधिकारी एक ही गांव में रहते हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा कैसे होनी है। 1948 में कबीलाई हमला हो, 1962, 1965, 1971, 1999 में कारगिल का युद्ध हो, या गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे गाजीपुर के रणबांकुरों ने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप में कभी पीछे नहीं हटे।
0: और अभी वक्त तो चला बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
22: ट्यून इन हाउ टू, अ ब्रीफ लुक एट ऑल द स्पेशल फंक्शंस एंड थिंग्स यू माइट नॉट नो वी हैव।
23: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
24: Savari, Sokudo.
25: There are three categories of people. I'm not using the word. There is one category of people called student vidyarthi, jo vidya ka arth dhoondta hai. And then there are the two other categories which I will not name. But these categories have natures. So the student is never scared of the truth. He loves the truth, goes towards the truth. Student never uses force against somebody else, because he knows that that person's truth is different than my truth. The other category, they do not like the truth. They need an image. They need force. They need violence. Superficially, it looks that our students were upset because of exams. They were upset because of the education system. They were upset because they have to study hours and hours and hours, and then paper leaks. Some rich boy or girl pays 30, 40 lakh rupees, gets the paper, gets the job, and jo middle class ka gareeb student hai, imandar hai, wo bypass ho jata hai. So they are upset because of these things. And our system is terrible. It's terrible, it's cruel. Lakhs and lakhs of rupees are taken from the poorest people. Everything has been privatized. Paper leaks. In one exam, something happens. In another exam, something else happens. Some people are allowed re-exam. Some people are not allowed re-exam. Rampant privatization means private companies are checking exams, wrong papers are going. It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings.

का बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की निंदा करता हूं। उच्च सदन में 2 बजे शुरू होगी चर्चा। पेपर लीक में अब बीजेपी के निशाने पर आई आम आदमी पार्टी। पंजाब की परीक्षाओं में लीक को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के दिल्ली मुख्यालय पर जबरदस्त नारेबाजी। हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर पहले घंटों में धीमा मतदान। रविशंकर प्रसाद समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। दतिया में नरोत्तम मिश्रा ने डाला वोट। 3 अगस्त को आएंगे परिणाम। सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा पर तनातनी। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता का विवादित बयान। कांवड़ियों को बताया नशेड़ी। साक्षी महाराज ने कहा, ऐसा बोलने वालों का इलाज होगा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 12 बजे 12 रिपोर्टर की शुरुआत दिल्ली से एक बड़ी खबर से। दिल्ली में बीजेपी पंजाब पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, बैरिकेडिंग पार कर ली गई है। और ये वो तस्वीरें, सीधे सुशांत के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, क्या तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही है वहां और क्या हो रहा है?
1: हिमांशु, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जबरदस्त बीजेपी का इस वक्त प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। पुलिस बैरिकेडिंग पर जो है प्रदर्शनकारी जो है वो चढ़ चुके हैं, क्योंकि आगे जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस का भारी बंदोबस्त है। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर अब सीधे तौर पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने में जुट गई है। ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर की है, जहां पर इस वक्त बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि दोहरा मापदंड जो है वो क्यों आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया जो है वो अपना रहे हैं, कि जब लीक पेपर लीक होता है तब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब पंजाब में इस तरीके से पेपर लीक होता है, फार्मास्यूटिकल्स का पेपर लीक होता है, तो क्यों आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर जो है वो आम आदमी पार्टी और उनके नेता जो है वो चुप्पी साधते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। और उस पर अब कहीं ना कहीं इसको घेरने की कोशिश जो है वो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अगर आप दूर तक देखेंगे तो आपको बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, अलग अलग पोस्टर बैनर के साथ। यहाँ पर तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि एक बैरिगेड जो है वो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस बैरिगेडिंग को तोड़ करके आगे प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे हैं। लेकिन अब ये दूसरा बैरिगेड है जिस पर फिलहाल रोकने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब पूरे मुद्दे पर पंजाब में कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश जो है वो
0: सुशांत जी बताइए, बीजेपी के इस प्रदर्शन को लीड कौन कर रहा है और बीजेपी की तरफ से इस प्रदर्शन को कितना आगे ले जाने की तैयारी इस वक्त है? क्या जानकारी मिल पा रही है इस बारे में?
1: देखिए हिमांशु, इस वक्त पार्टी के जो अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा इस पूरे प्रदर्शन को जो है वो लीड कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ही हर्ष मल्होत्रा जो है को जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली प्रदेश की दी गई थी। अगर आप पीछे देखेंगे तो बीजेपी के तमाम सांसद भी जो है इस प्रदर्शन के अंदर जो है वो शामिल हुए हैं, और कोशिश यही है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक जाकर के प्रदर्शन जो है वो करें, ताकि ये आवाज जो है वो सामने नजर आए, ताकि ये लोगों को पता चले कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो डबल तरीके से जो है वो प्ले करती है, कि जब नीट का एग्जाम होता है उस पर तो घेरा जाता है केंद्र सरकार को, केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांग लिया जाता है, लेकिन जब बात उन्हीं की सरकार पर उन्हीं के मंत्री पर आती है तो क्यों चुप्पी साधते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, क्योंकि इस पर अभी तक बयान जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया। और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश जो है वो लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही, क्योंकि अगले साल 2027 में पंजाब का चुनाव है और इसी मुद्दे पर जो है वो अब लगातार बीजेपी जो है वो घेरने की कोशिश कर रही है, ताकि पंजाब में भी इसका मुद्दा जो है वो बनाया जा सके जिस तरीके से, क्योंकि मंच पर भी अगर आप देखेंगे तो कई सारे नेता जो है वो लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग लिया, उन्होंने नैतिकता के तौर पर प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया, लेकिन पंजाब के जो शिक्षा मंत्री है वो अपना इस्तीफा जो है वो क्यों कब अरविंद केजरीवाल को सौंपेंगे और कब अरविंद केजरीवाल जो है वो उनसे अपना इस्तीफा लेंगे, भगवान मान उनसे इस्तीफा लेंगे।

0: अगर आप तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से इस वक्त बैरिगेटिंग की ये तस्वीर है, जहां पर तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो बैरिगेट पर चढ़ गए हैं। पुलिस की तरफ से लगातार उनको रोका जा रहा ताकि आगे की तरफ ना बढ़े, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप आगे की तरफ जो है वो ना बढ़े, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो चाहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर जाकर के जो है वो प्रदर्शन करें। हिमांशु,
1: सुशांत, आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी चुप्पी साधी हुई है और आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि ये लीक वाला मामला है नहीं, ये तो चीटिंग वाला मामला है। हालांकि बीजेपी इस पर अभी भी पलटवार कर रही है, बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशांत, जानकारी के लिए भी। तो 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट। संसद की दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर फायरिंग का मुद्दा आज राज्यसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर लगातार हंगामे के बीच सदन के नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है, विपक्ष का सारा ध्यान सदन को बाधित करने में है। नड्डा ने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और हमेशा गोल पोस्ट बदलना इनकी आदत है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागता है।
2: कि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है, जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इसकी इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और यह इसी सत्र की बात नहीं है, जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है। और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है, दे आर इश्यूलेस।
3: हम कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, छात्रों पर पैलेट फायर हुआ, तो अमित शाह जी आए और जवाब दे। गृह मंत्री का
4: नाव मंत्रालय
3: का जवाब जितेंद्र सिंह का देंगे।
4: लेट मी गिव माय रूलिंग नाउ। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर।
3: मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं।
1: हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, नकारात्मक राजनीति करता है, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि राज्यसभा से विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा और उसके बाद जेपी नड्डा को ये सवाल खड़े करने पड़े?
5: देखिए, क्योंकि कल लोकसभा में चर्चा के दौरान जो है राहुल गांधी ने कई सवाल खड़े किए और राहुल गांधी के पूरा जवाब नहीं होने के बावजूद जो है उस बिल को जो है प्राइवेट एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर बिल को जो है वो पास करा गया। उसके बाद आज राज्यसभा में ये बिल आना है और विपक्ष की ये मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह आए और 20 जुलाई को जो कुछ हुआ, लाठीचार्ज है या पैलेट गन का यूज है, टीयर गैस है, इसका जो यूज किया गया इसका आदेश उन्होंने दिया, इस पर जवाब दे। और बिना जवाब के नहीं तो उसी पर जो है जेपी नड्डा जो राज्यसभा में नेता सदन है उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया कि विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, मुद्दे को भटका रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि वो बार बार जो है वो अपने गोल पोस्ट को जो है वो चेंज कर रहा है। और इसके बाद जो है लगातार हंगामा सदन के अंदर चलता रहा, जिसके बाद विपक्ष को शायद ये उम्मीद थी कि पिछले 6 दिनों में जिस तरीके से सदन की कार्रवाई को जो है बार बार स्थगित करा विपक्ष ने हंगामे के कारण, आज भी वैसा होगा, लेकिन जो राज्यसभा के सभापति हैं वो उसके लिए तैयार नहीं हुए और उसके बाद जो है विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। अभी जो है 0 आवर के बाद जो है क्वेश्चन आवर चल रहा है और 2 बजे से जो है राज्यसभा के अंदर जो है प्राइवेट एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर जो बिल है उसको लेकर चर्चा होगी। जो
1: तो यही है मानसो कि 2 बजे जब चर्चा हो तो एक अच्छी चर्चा हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, संसद के मानसून सत्र में आज फिर संसद के मकर द्वार पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों और चंदा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने आज प्रदर्शन किया। गोली चलाने का आदेश किसने दिया, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, ऐसे नारे लिखी तख्तियां लेकर विपक्ष ने मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। कल राहुल गांधी ने लोकसभा में अमित शाह पर गोली चलाने का आरोप लगाते हुए पक्ष हटाने की मांग की थी। अब इस पर बीजेपी भड़की, और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। आज प्रियंका ने भी राहुल गांधी का बचाव किया है।
6: ने सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है और
7: बताइए तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहां से आई? आसमान से गिर गई?
1: राहुल गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, सत्ता पक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, राहुल ने स्पष्ट कर दिया माफी नहीं मांगेंगे और मकर द्वार पे प्रदर्शन भी जारी। अब आगे क्या?
8: देखिए, एक तरीके से आप ये मान लीजिए जो विपक्ष है उसने अपनी सारी की सारी तोपे जो है वो धर्मेंद्र प्रधान की जगह अब उनका जो निशाना है वो अमित शाह है। और आप देखिए जो लगातार जो गोल पोस्ट आप कह सकते हैं कि विपक्ष चेंज कर रहा है और अब उनके निशाने पर अमित शाह है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पिछले 20 जुलाई को जिस प्रकार से हिंसा हुई उसके बाद जो पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस शेलिंग हुई, पैलेट गन का यूज हुआ, वो किसने किया? क्या उसका सीधा ऑर्डर गृहमंत्री के पास से आया था? क्या उनको ये जानकारी थी? उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर उनकी तरफ से ऑर्डर आया है तो वो जिम्मेदार हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिए। और राहुल गांधी ने कल ये भी कहा कि अगर वो उनको जानकारी नहीं थी तो ये दर्शाता है कि वो इनकॉम्पिटेंट है या उनको अपने मंत्रालय के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कुल मिलाकर अब जो अगला हमला है आप ये कह सकते हैं हिमांशु, वो अमित शाह को लेकर है और पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष एक है कि अमित शाह को लेकर सरकार को घेरा जाए। सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि
1: अगली रिपोर्ट बिहार के बांकीपुर से। बांकीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 11 बजे तक 11.5% वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा का मुकाबला जनसुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता से है। शशि भूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, किस तरह से वोटिंग आगे बढ़ रही है बांकीपुर में?
9: हिमांशु, देखिए थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी तो हमने कहा था कि उम्मीद जताई थी कि धीरे धीरे वोटिंग का प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा और वो चीज़ें देखिए अब दिख रही हैं। 11 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि अब वोटर्स ज़्यादा टर्न अप कर रहे हैं बूथ्स पर। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, चूँकि हमारी एक सीमा है जहां से हम खड़े होकर के दिखा सकते हैं और देखिए अब वोटर्स जो हैं एक एक करके जा करके वोट कास्ट कर रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आंकड़ा गया था लगभग उसके आसपास वोटिंग फीसदी हो सकता है, लेकिन हाँ, लड़ाई बहुत दिलचस्प है यहाँ पे। त्रिकोणीय लड़ाई बताई जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट है, तो यहाँ पर उनकी तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा मैदान में हैं। प्रशांत किशोर खुद पहली दफे चुनाव लड़ रहे हैं, वो मैदान में हैं। इसके अलावा रेखा गुप्ता जो महिला उम्मीदवार हैं आरजेडी से, वो हैं। तो तीन प्रमुख उम्मीदवार और इसके अलावा कुल मिलाकर कहें तो 25 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे, काउंटिंग होगा, लेकिन इस लड़ाई में जंग वही जीतेगा हिमांशु, जिसके ज्यादा समर्थक वोटर आकर के टर्न अप होकर के आज।
1: और शशि, कुछ देर पहले जब रविशंकर प्रसाद ने बांकीपुर में मतदान किया था उस वक्त आपने बातचीत की थी, वो जरा बातचीत सुनवाते हैं दर्शकों को।
9: बांकीपुर विधानसभा सीट पे वोटिंग चल रही है और रविशंकर प्रसाद जी ने अभी मतदान किया है। और क्या सर मैसेज आपके लिए, चूंकि 5 साल पे मौका आता है लेकिन इस बार तो बाई इलेक्शन के चलते वोटिंग पहले करनी पड़ी।
10: देखिए, ये मेरा क्षेत्र है, मैं 20 साल से यही वोटर हूँ, अपने लोकसभा के इलेक्शन में भी यही वोट देता हूँ, आज विधानसभा है। और एक रोचक चीज मैं आपको बताऊं कि नितिन जी ये भी यहीं से वोटर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो सांसद रूप में हमें वोट देते हैं और मैं एमएलए में उनको वोट देता था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, सम्मान है, संसद में चले गए, तो हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ बहुत ही प्रभावी निर्णायक जीत होगी।
9: बाय इलेक्शन में माना जाता है कि वोटिंग थोड़ी कम होती है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे, चूंकि आप भी यहीं के मतदाता हैं?
10: बिल्कुल, मैं अपील करूंगा और जनता आएगी और मैं जनता से कहूंगा विकास के काम को और मजबूती देने के लिए जरूर निकले।
9: सर, जो लड़ाई रही, एक तो
11: ये 16 से ज्यादा जन स्वराज के नेताओं को पुलिस ने कल पूरे शाम देर रात तक परेशान किया, उनको अरेस्ट किया है, लेकिन बेसिकली पेपर पे अरेस्ट नहीं किया, उनको डिटेन कर लिया है और फिर उनको अलग अलग थानों में रखा गया। थानों से हटाकर उनको कहाँ ले जाया गया ये किसी को पता नहीं था। रात में 2 घंटे के मशक्कत के बाद ये पता चला कि उन सबको यहाँ से दानापुर शिफ्ट किया गया है।
1: और पीताम्बरा माई की नगरी दतिया में भी आज उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ सुबह 11 बजे तक 34.31% वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, दतिया में वोटिंग के क्या हाल है अभी?
12: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश में 3 जगह उपचुनाव है, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा मतदान अगर 11 बजे के हिसाब से देखा जाए तो वो मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ है। अब दतिया में जो उपचुनाव हो रहा है, अब ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और माना यही जाता है कि जिसकी सरकार होती है कमोबेश उस उम्मीदवार को उपचुनाव में ज्यादा फायदा होता दिखता है। लेकिन दतिया का समीकरण जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, क्योंकि इस बार दतिया से वहां के जाने पहचाने चेहरे यानी नरोत्तम मिश्रा चुनाव नहीं लड़ रहे भाजपा के टिकट पे, बल्कि एक नया उम्मीदवार आशुतोष तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जनता के सामने 2 विकल्प है, एक नया चेहरा आशुतोष तिवारी और दूसरा आजमाया हुआ नाम घनश्याम सिंह, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, 2 बार के विधायक रह चुके हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पलड़ा थोड़ा सा कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नरोत्तम मिश्रा, जिनके नाम से वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव एक के बाद एक जीतती गई, फिर 2023 में वो चुनाव हारते हैं, जब टिकट कटता है तो उसके बाद उपद्रव होता है, हिंसा होती है, आलाकमान तक बात पहुंचती है, नरोत्तम मिश्रा को भोपाल बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है वजह, बाद में वो सामने आते हैं, कहते हैं कि मेरे समर्थकों से वो अपील करते हैं कि आप जनता जो है वो भाजपा के पक्ष में माहौल बनाना शुरू करिए। तो इन तमाम समीकरणों के बीच में एक बात तय है, देखिए मतदान तो बंपर हो रहा है उपचुनाव में दतिया में, ये तय हो चुका है। अब ये किसके पक्ष में जा रहा है ये 3 अगस्त को साफ हो जाएगा। लेकिन
1: ये बहुत दिलचस्प होगा, देखिए रवीश, यही बात है कि सबसे ज्यादा दिलचस्प तो यही का मुकाबला देखा जा रहा है मध्य प्रदेश की दतिया का। अब जैसे रवीश बता रहे थे 3 जगह मतदान आज हो रहा है, तो गुजरात का मांजलपुर भी इसमें शामिल है, वहां वोटिंग हो रही है। वहां से क्या खबर है? मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री भीखा भाई रबारी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब जीत या हार का फैसला 3 अगस्त को होगा। लेकिन हमारे सहयोगी ब्रजेश दोषी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। ब्रजेश, कैसा मुकाबला चल रहा है इस वक्त?
13: देखिए, अभी तक जो है 4 घंटे में जो है वो 17% जो है मतदान हुआ है, औसत 17.53% जो है मतदान के आंकड़े सामने आए हैं। पहले 2 घंटे में ये मतदान कम था, 6% के आसपास था, पर 4 घंटे होते होते करीब 17% हुआ है। तो ये एक राहत की बात है बीजेपी के लिए, क्योंकि आमतौर पे उपचुनाव में वोटिंग कम होता है, और वैसे में जब बीजेपी की खुद की सीट है, बीजेपी आश्वस्त है कि वहां पे फिर से एक बार जीतेगी। 8 बार से लगातार जो विधायक थे योगेश पटेल, उनके निधन से ये सीट खाली हुई है, तो बीजेपी के लिए जो है ये सीट बरकरार रखनी बड़ी चैलेंज नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, और अभी 2 ही उम्मीदवार इस सीट पर मैदान में है, बीजेपी से सतीश पटेल और कांग्रेस से जो है भीखा भाई रबारी। तीसरा कोई भी उम्मीदवार नहीं है, सीधा जंग जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। आम आदमी पार्टी पहले से ही इस चुनावी मैदान से दूर रही थी, उन्होंने इस अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, तो अब 2 उम्मीदवारों के बीच में सीधी लड़ाई है। और आज जो मतदान के आंकड़े आएंगे उसके बाद करीब करीब साफ हो जाएगा कि बीजेपी को कितनी बढ़त मिलती है।
1: मतलब बहुत दिलचस्प मुकाबला यहाँ भी है, तीनों जगह जबरदस्त मुकाबला है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली जो रिपोर्ट है वो यूपी से है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एनडीए गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर जो सियासी खींचतान है वो शुरू हो गई। आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी के सामने 33 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया। पूरी खबर बता रहे हैं समर चावला।
14: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए के अंदर सीटों को लेकर सियासी खींचतान तेज हो गई है। गठबंधन साथी आरएलडी ने 33 सीटों से ज्यादा पर अपना चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी आरएलडी को 20-25 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। आरएलडी का कहना है कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपना आधार सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि पूर्वांचल के उन जिलों पर भी अपना आधार मजबूत करना चाहती है जहां पहले से ही पार्टी का राजनीतिक आधार और कार्यकर्ताओं का नेटवर्क मौजूद है। बीजेपी का कहना है कि एनडीए में पहले से ही गठबंधन के कई साथी मौजूद हैं और बेहतर संतुलन के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वही सीट गठबंधन साथियों को दी जाएंगी जहां पर उनका मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट मौजूद है। वैसे तो ये शुरुआती दौर की बातचीत है, अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरफ राजनीतिक समीकरण करवट लेते हैं।
1: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के धोखे की है। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया? देखिए, खबर है कि अमेरिका से जंग के बीच ईरान को चीन में बने करीब 400 शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर की पहली खेप आने वाले दिनों में मिलने की उम्मीद है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि चीन से ईरान को एयर डिफेंस मिसाइलें पाकिस्तान के जरिए भेजी जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान अमेरिका ईरान युद्ध में प्रमुख मध्यस्थ हैं। तो क्या मध्यस्थता की आड़ में पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है?
15: समाचार एजेंसी रॉयटर्स और अमेरिकी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ईरान को अब पाकिस्तान के रास्ते शोल्डर फायर्ड मिसाइल या मैन पैड्स की सप्लाई करने जा रहा है। करीब 300 से 400 मिसाइल लॉन्चर्स की सप्लाई की जानी है और लाखों डॉलर का ये सौदा है। हालांकि इस सौदे को लेकर पाकिस्तान और चीन दोनों ने इनकार किया है, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की भूमिका का सवाल है वो हमेशा ही संदेह और सवालों के घेरे में रही है। खासतौर पर अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में तो कई बार धोखों का इतिहास रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी पाकिस्तान ने अमेरिका से जितने हथियार और आर्थिक मदद हासिल की उसका क्या इस्तेमाल हुआ, कहां इस्तेमाल हुआ, ये दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा करता है और धोखा खाता है। यही वजह है कि ईरान के साथ शुरू हुई लड़ाई के बाद भी अमेरिका के अंदर भी ये सवाल कई बार खड़े हुए कि क्या पाकिस्तान भरोसे के लायक है। शायद यही वजह है कि इस सौदे को लेकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो ये बहुत खराब होगा, गलत होगा।
1: और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से
17: इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी
18: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
19: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, Tune In has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
20: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
5: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
4: ओ अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
6: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
7: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
8: धनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: पापा
11: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
11: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
11: हाँ ला भाई मेरा बैट।
12: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
13: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
14: बैट किसका है?
15: टाटा AIG है तो भरोसा है।
16: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा. Sarah Sanitaryware, it's your moment of Sarah.
3: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है. इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.
4: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें साथ तक, देखते रहिए आज तक.
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com. क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.
6: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
7: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

आइए आपको ले चलते यूपी एक्सप्रेस वे की ओर। गाजीपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, का विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों ने राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दिया, बीजेपी ने बदली परंपरा। यूपी चुनाव 2027 के लिए बीजेपी का सीक्रेट सर्वे मिशन की शुरुआत, 403 सीटों पर उम्मीदवारों की परीक्षा होगी, सहयोगी दलों की सीटों पर भी फोकस, विधायकों के प्रदर्शन और जीत की संभावना के आधार पर तय होगी रणनीति। भदोही का बदलेगा नाम, सीएम योगी ने संत रविदास नगर करने का ऐलान किया, वाराणसी कार्यक्रम में हुई नए नाम की घोषणा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, 12 अगस्त तक भारी वाहनों की एंट्री बंद, 4 अगस्त तक नेशनल हाईवे 58 की बाई लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के लिए अभेद सुरक्षा, एटीएस समेत भारी पुलिस बल तैनात, कांवड़ मार्ग पर फ्लैग मार्च, 9 कंपनियां, 3 अस्थायी थाने, 39 चौकियों और 12 वॉच टावर से सुरक्षा कड़ी। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट, कांवड़ मार्ग की शराब दुकानों को तिरपाल से ढका, मंदिर मस्जिद वाले रूट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू। कांवड़ यात्रा इंतजामों पर AIMIM का योगी सरकार पर हमला, शादाब चौहान के बयान से विवाद, यात्रा रूट मास्क की दुकानों पर कार्रवाई और विशेष व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल, कांवड़ियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, जगदीश आफले को बनाया जाएगा नया सचिव, दैनिक प्रशासन की संभालेगी जिम्मेदारी, 2 सितंबर की कार्यकारी समिति बैठक में लगेगी अंतिम मुहर। जंतर मंतर प्रदर्शन में खाना बांटने वाले गाजियाबाद के जुनैद के परिवार का दावा, पुलिस ने की पूछताछ, परिजनों का आरोप, दस्तावेज लिए गए, पुलिस जुटा रही थी भोजन के खर्च और फंडिंग की जानकारी। उन्नाव में बच्चों के विवाद ने लिया हिंसक रूप, पथराव के बीच चली गोली, तमंचे से फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। वाराणसी में सीएम योगी ने किए काल भैरव मंदिर के दर्शन, सावन पर की पूजा अर्चना, मुख्यमंत्री ने बाबा काल भैरव के दरबार में माथा टेका, सुख शांति की कामना की। सावन के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, वाराणसी में श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। सावन के पहले दिन अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, शिव भक्तों ने पूजा की, जलाभिषेक किया। सावन के पहले दिन कानपुर के आनंदेश्वर शिव मंदिर में आस्था का सैलाब, शिव भक्तों ने भगवान शिव को जलाभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित की। सावन के पहले दिन गाजियाबाद के दूधेश्वरनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, शिव भक्तों ने भोलेनाथ की जयकारे लगाए, जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। शाहजहांपुर में किराए के मकान में मिला सब इंस्पेक्टर का शव, हड़कंप मच गया, हार्ट अटैक से मौत की आशंका, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर देवबंद शिवा हत्याकांड का खुलासा, मारपीट का बदला लेने के लिए हत्या की गई, मुठभेड़ के बाद दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में गला घोटकर हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। सहारनपुर में पेट्रोल पंपों पर प्रशासन ने छापा, मिलावट की शिकायत पर हुई जांच, अधूरे दस्तावेज मिलने पर पेट्रोल बिक्री रुकवाई गई। झांसी में सीओ ऑफिस में दो महिलाओं का हंगामा, आत्मदाह की धमकी से मचा हड़कंप, बयान दर्ज कराने पहुंची महिलाओं को पुलिस थाने ले गई, आधे घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। कौशाम्बी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, वीडियो वायरल, चंदवारी बाजार में लाठी डंडे ईंट पत्थर और बैट से हमला हुआ।

0: और उत्तर प्रदेश में योगी के यज्ञ की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करते हैं। यूपी के गाजीपुर की रैली में सीएम योगी ने विपक्ष पर अपराध, अपराधी और सालार मसूद के मुद्दे पर बड़ा हमला किया। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी और कांग्रेस सरकारों ने देश के महानायकों और वीर पुरुषों का अपमान किया और विदेशी आक्रांताओं का सम्मान किया।
1: पहचान का संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित होने वाले भारत के राष्ट्र नायकों को सम्मान देने की बजाय जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित किया था, और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि डबल इंजन किए बीजेपी एनडीए की सरकार राष्ट्रनायकों को सम्मान देती है। राष्ट्रनायकों को सम्मान इस रूप में 1000 वर्ष पहले भारत को रौंदने की दिशा से आया था एक सालार मसूद। सालार मसूद को बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर भारत के जिस महापुरुष ने राष्ट्रनायक ने रौंद करके इस्लाम के अनुरूप सबसे कड़ी सजा दी थी वह महापुरुष कोई और नहीं महाराज सुहेलदेव हैं।
0: सावन का महीना शुरू नहीं हुआ और यूपी में कांवड़ यात्रा पर होने वाली सियासत की शुरुआत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की ओर से कांवड़ियों को नशेड़ी कहने पर विवाद बढ़ गया है। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कांवड़ यात्रा और नमाज में भेदभाव का आरोप लगाया। ओवैसी की पार्टी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में नशे की हालत में चलने वालों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। पहले आपको ओवैसी की पार्टी के नेता का वो बयान सुनाते हैं जिसे लेकर इस वक्त विवाद हो रहा है।
2: हर बार क्या होता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ गुंडे घुस जाते हैं, हम किसी आस्था वाले लोगों को नहीं बोल रहे हैं, और वो तोड़फोड़ करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, कितना आप एनकाउंटर किए, कितना बुलडोजर चला, क्योंकि आप दोनों को न्याय का प्रतीक मानते हैं पिछली बार वालों पर। क्या इस बार वालों पर चलेगा ये आपने स्पष्ट किया? क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं?
3: ऐसे राष्ट्र विरोधी भारतीय संसद विरोधी लोग
4: जी
3: पहले से सक्रिय है, इलाज किया जाए।
4: इलाज क्या आप लगता, क्या इलाज होने जा रहा
3: है? ये विधिक प्रक्रिया से जो हो सकता है वो होगा।
0: दरअसल सावन शुरू होने के काफी पहले से उत्तर प्रदेश के जिले जिले तैयारियां शुरू हो चुकी थी। खासकर पश्चिमी यूपी के जिलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसमें यूपी पुलिस ने कांवड़ यात्रा रूट चिन्हित किए हैं और उस रूट पर अन्य यातायात की आवाजाही बंद रखी गई है। यात्रा रूट के किनारे की दुकानों में शराब, मांस, मछली नहीं बेचे जाने को लेकर भी नियम लागू कर दिए गए हैं। दुकानदारों को उनकी पहचान साबित करने को कहा गया है। कांवड़ सेवा शिविर संचालकों से लेकर डीजे संचालकों तक को नियम कानून बता दिए गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हुई इन्हीं तैयारियों को लेकर अब ओवैसी की पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी का कहना है कि किसी एक धर्म को विशेष तरजीह क्यों दी जा रही है?
2: जो लोग 2 मिनट की नमाज पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कहते थे कि हमने नमाज बंद करा दी, मुख्यमंत्री जी आप बताइए कि भारत के संविधान में कहां प्रावधान है कि एक आस्था व्यक्त करने वालों पर आप कार्रवाई करेंगे और दूसरी आस्था व्यक्त करने वालों पर आप सरकारी पैसे से फूल बरसाएंगे? और जो अधिकारी मुकदमा दर्ज कर रहे थे, प्रमोशन और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वही अधिकारी अब सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, कांवड़ियों की पैर दबाते हुए नजर आएंगे। क्या ये कौन सी पुलिस रूल बुक के अनुसार है? एवं कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उनको किसने अधिकार दिया, वो कौन होते हैं? दूसरा, कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई, आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं। कितना बड़ा कारोबार है, एक्सपोर्ट नहीं रुकेगा, फाइव स्टार होटल्स नहीं रुकेंगे जहां पर चिकन मटन होता, लेकिन जो आम गरीब आदमी जो व्यापार करता है, छोटा व्यापारी जिससे उसका घर परिवार चलता है, उसको आप एक महीने के लिए 18 दिन 20 दिन के लिए डंप कर देंगे। तो आप एक आस्था को क्यों बड़ा बताना चाहते हैं?
5: सरकार का दायित्व है कि वह सभी धर्मों का, यात्राओं का, परंपराओं का और उनके त्योहारों को मनाने के लिए समुचित व्यवस्था करे। उसी के अनुरूप कांवड़ यात्रा में सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, रोड उसका बनाया जाता है। जैसे मुहर्रम के जुलूसों में रोड बनाया जाता है और सुरक्षा और सफाई की व्यवस्था की जाती है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव हमारी सरकार नहीं करती है।
6: बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस राजनीति में कूदती नजर आ रही है। एमआईएम के बयान को कहा है कि वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। सरकार दोनों तरफ कार्रवाई कर रही है और ऐसे में अगर जो उपद्रव करेगा तो उस पर भी कार्रवाई करेगी। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है और कांवड़ के जो बयान दिया है चौहान ने, उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं हिंदू संगठन कार्रवाई की बात कर रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: तो देखिए, आज से सावन का महीना शुरू हो चुका है। शिव भक्ति का ये पावन मास उत्तर प्रदेश के भक्तों के लिए, भक्ति तो नेताओं के लिए, राजनीति का बहुत बड़ा मौका होता है और लिहाजा इस बार भी सावन मेले से लेकर कांवड़ यात्रा तक सियासत तो शुरू हो चुकी है, लेकिन देखते हैं कि अब की सावन यूपी सजी कैसी है।

0: और उस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रबंधन के लिए नई नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण परियोजना के प्रबंधक रहे इंजीनियर जगदीश आफले को सचिव नियुक्त करने का फैसला किया है। खबर है कि उनके नाम की औपचारिक घोषणा 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में की जाएगी। अब इससे पहले मंदिर की 22 जुलाई की पिछली बैठक में ट्रस्ट के प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत सचिव का एक नया पद सृजित करने का फैसला किया गया था। इसी पद पर तैनाती का फैसला किया गया। मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने जगदीश आफले का नाम प्रस्तावित किए जाने की पुष्टि की, जबकि ट्रस्ट के प्रवक्ता पद के लिए भी चयन प्रक्रिया जारी है। महाराष्ट्र के पुणे निवासी जगदीश आफले बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। उन्होंने IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में MTech किया है। सेवानिवृत्ति के बाद आफले राम मंदिर निर्माण परियोजना से मानद प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में जुड़े। तो राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी केस में नई SIT ने तेजी से जांच आगे बढ़ाई है। और अब खबर यह है कि नई SIT ने चढ़ावे की गर्दन से जुड़े बैंक कर्मियों के बयान फिर से दर्ज किए हैं और अब ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का बयान दर्ज किए जाने की तैयारी है। डॉक्टर अनिल मिश्रा को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खबर है कि SIT बैंकिंग रिकॉर्ड दस्तावेजों और अब तक मिले तथ्यों के आधार पर उनसे पूछताछ करेगी। आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट से जुड़े गोपाल राव जैसे अन्य पदाधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। वहीं दिल्ली में संसद का सत्र मानसून का चल रहा है और सियासत उत्तर प्रदेश की हो रही है। एक तरफ संसद के अंदर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी यूपी में गन्ना किसानों का मुद्दा उठाकर 1200 करोड़ रुपए के बकाए का सवाल उठा रही है, तो संसद के बाहर समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तो विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रतीकात्मक तौर पर एक दान पात्र बनाकर उसमें चढ़ावा डालने का उपक्रम भी किया। विपक्षी दलों के सांसद लगातार अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद के अंदर बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: उनके पैसे पर ब्याज दिया जाए, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर।
2: देखिए, जिस तरीके से अयोध्या के अंदर भगवान राम का चढ़ावा चोरी करा गया, उसी तरीके से हम लोगों को डर है कहीं यहाँ पर भी BJP के लोग इस दान को चुरा ना ले, तो इसको हम लोगों ने ताले में रखा है और बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: दान इकट्ठा किया है इसके अंदर
2: दान इकट्ठा है और इसको हम लोग बचा रहे हैं। और हम लोग ये भी कह रहे हैं, अगर आप चाहोगे तो ऐसे ही हम लोग आपको चंदा करके दे देंगे, लेकिन जो भगवान राम का दान है वो वापस कर दो।
4: प्रभु का धन कहाँ गया? BJP के खाते में गया है। हम लोग उसकी जांच की मांग करते हैं। इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में भी और ऊपर जाकर के प्रभु के यहाँ भी जहाँ देनी पड़े।
0: और उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर ये है कि BJP ने कल गुरु पूर्णिमा के मौके पर वाराणसी में समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की। संत रविदास के मंदिर से BJP के इस अभियान की शुरुआत खुद CM योगी ने की और इसी मौके पर CM योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि भदोही का नाम अब एक बार फिर से संत रविदास नगर किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर CM योगी वाराणसी पहुंचे तो पार्टी के अभियान से पहले संत रविदास के मंदिर में पूजा अर्चना करना नहीं भूले। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर संत रविदास के मंदिर में पूजन अर्चन के बाद CM योगी जब समरसता संकल्प अभियान के मंच पर पहुंचे तो वहां भी संत रविदास की तस्वीरों को श्रद्धांजलि के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया, क्योंकि BJP संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष मना रही है। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा पर हुए राजनीतिक कार्यक्रमों में ही CM योगी ने भदोही का नाम फिर से बदलने की बड़ी घोषणा कर डाली। तो दरअसल यूपी में जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति इतनी गहरी पैठ बना चुकी है कि हर राजनीतिक घटना के पीछे जाति का सवाल उठाया जाने लगा है और ऐसा ही कुछ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी हो रहा है, जिसका आफ्टर इफेक्ट अब उत्तर प्रदेश में पैदा करने की कोशिश हो रही है। NDA के सहयोगी दल और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफे को लेकर अखिलेश यादव पर कुर्मी विरोधी होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया।
5: सीजेपी के आंदोलन से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। राहुल, प्रियंका और कांग्रेस ब्राह्मण प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय सौंपने पर सवाल उठा रहे हैं, तो यूपी में ओम प्रकाश राजभर ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे समाजवादी पार्टी पर कुर्मी विरोधी होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। यूपी सरकार के मंत्री और SBSP के अध्यक्ष ओपी राजभर ने सवाल उठाया है कि धर्मेंद्र प्रधान को कुर्मी जाति होने की वजह से ही अखिलेश ने इस्तीफा लिया है, अगर शिक्षा मंत्री की जाति यादव होती तो ये रुख नहीं होता। दरअसल इससे पहले अखिलेश यादव ने MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमीन घोटाले के आरोपों को खारिज किया था, तब भी ओपी राजभर ने अखिलेश पर सवाल उठाया था। इस बार यूपी में NDA के सहयोगी OBC नेता फिर वही सवाल उठा रहे हैं।
6: कुर्मी का इस्तीफा लेकर इन लोगों ने, पिछड़ों का इस्तीफा लेकर इन्होंने क्या किया, इसका मतलब पिछड़ों के नाम पर ठगी है, नाम की बेमानी है PDA की भाषा, और निश्चित रूप से कुर्मी सामने आएगा, पिछड़े सामने आएंगे, इन लोगों को इस इलेक्शन में जवाब देंगे।
7: ये जो बात आप कह रहे हैं ये आपको तब याद क्यों नहीं आई जब कुर्मियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपने पद से हटा दिया था। छद्म राजनीति करना बंद कीजिए। देखिए, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि बहुजन एकता हो, जो नहीं चाहते यादव और कुर्मी साथ रहें।
5: दरअसल पिछले चुनाव में पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और अवध से लेकर रुहेलखंड तक कुर्मी बिरादरी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई, तो समाजवादी पार्टी फर्श से अर्श तक आ गई। यानी 2019 में 5 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 2024 में 37 सीटों पर पहुंच गई, क्योंकि 2019 में NDA को रिकॉर्ड 74% कुर्मी वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी गठबंधन सिर्फ 26% पर थी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में घटकर 61% पर आ गया और SP को 34% कुर्मी वोट मिल गए। इस चमत्कार के पीछे OBC और दलित वोटरों की BJP से नाराजगी और खासकर कुर्मी वोटरों का SP के साथ लामबंद होना एक बड़ी वजह माना गया। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में कोई अपना जनाधार नहीं रखते, लेकिन BJP में देश के बड़े OBC चेहरे के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं और अब उनके इसी बड़े पहचान की चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत में शुरू हो गई है।
8: ओम प्रकाश राजभर से लेकर तमाम जो OBC चेहरे हैं अब सब ने ये कहना शुरू कर दिया है कि समाजवादी पार्टी ने एक ताकतवर OBC मंत्री को हटा दिया है। याद रहे कि BJP को कुर्मियों का बड़ा वोट 2024 में नहीं मिला और समाजवादी पार्टी की जीत की वजह OBC दलित और उसमें भी कुर्मी वोटरों का सपा के साथ लामबंद होना है। लेकिन क्या ये नैरेटिव कि कुर्मी बिरादरी के सबसे बड़े नेता को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया और इसे हटवाने में सपा और कांग्रेस ने भूमिका निभाई, क्या ये नैरेटिव उत्तर प्रदेश चुनाव में BJP के लिए वरदान साबित होगा? इसी पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासी चर्चा गर्म है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
9: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach
12: Hexa Organic Radiant Skin and Nourished Hair Pure Ayurvedic Beauty

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

गृहमंत्री पर राहुल गांधी के हमले के बाद दोनों सदनों में वाल, विपक्ष ने फिर पूछा फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया। नड्डा ने कहा गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की निंदा करता हूं। 2 बजे बिल पर चर्चा। पेपर लीक पर अब बीजेपी के निशाने पर आई आम आदमी पार्टी। पंजाब की परीक्षाओं में लीक को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, आपके दिल्ली मुख्यालय पर जबरदस्त नारेबाजी। भारतीय हॉकी की केसरिया जर्सी पर तेज हुई राजनीति। प्रियंका गांधी बोली बीजेपी कर रही है इतिहास बदलने की कोशिश। हॉकी इंडिया का बयान, विजिबिलिटी में दिक्कत थी इसलिए ब्लू रंग बदला। हाई प्रोफाइल बाकीपुर सीट पर पहले घंटों में धीमा मतदान। रविशंकर प्रसाद समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। दतिया में अब तक करीब 35% वोटिंग। 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। सावन शुरू होते ही कावड़ यात्रा पर तनातनी। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता का विवादित बयान, कावड़ियों को बताया नशेड़ी। साक्षी महाराज ने कहा ऐसा बोलने वालों का इलाज होगा।

गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे थे। विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कसा तंज, कहा जब जब सरकार ने चर्चा की है विपक्ष ने मुंह की खाई, विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए दो पीड़ित लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, एसओपी को लेकर मांगा जवाब। भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदले जाने पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर कसा तंज, बोली वे कुछ भी कर लें देश की आत्मा में भाईचारा है, कोई नहीं निकाल सकता। पंजाब में पेपर लीक मामले पर दिल्ली में बीजेपी का आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। राहुल गांधी ने फिर अमित शाह पर साधा निशाना, ट्वीट करके लिखा संसद में आकर छात्रों के खिलाफ हुई बर्बर हिंसा के बारे में सफाई देने से इतना क्यों डर रहे हैं। आज तक पर 20 जुलाई का नया फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, संसद भवन से 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गए थे हजारों प्रदर्शनकारी, पुलिस से लगातार हो रही थी झड़प। रेल भवन के पास सेल्फी पॉइंट तक पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी, सीसीटीवी में दिखाई दिया, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच मतदाता बूथों पर पहुंच रहे हैं। बांकीपुर में किदवईपुरी में बूथ संख्या 101, 102 और 103 पर मतदान के दौरान बीजेपी और जन सुराज कार्यकर्ताओं में पुलिस के सामने ही भिड़ंत हो गई। जन सुराज के कार्यकर्ताओं का आरोप, पूर्व में प्रत्याशी बनाए गए बीजेपी लोगों के साथ पहुंचकर दबंगई कर रहे, वोट डालने से रोका जा रहा है, वहीं बीजेपी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया मतदान, मतदान के बाद आज तक से खास बातचीत में बोले बांकीपुर में कोई लड़ाई नहीं, बीजेपी की होगी जीत। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने किया मतदान, मतदान के बाद बीजेपी की जीत का दावा। यूपी चुनाव 2027 में एनडीए में सीट बंटवारे पर संग्राम, आरएलडी ने 33 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोका, बीजेपी 20-25 सीटों पर अड़ी, आरएलडी पश्चिम यूपी के साथ पूर्वांचल में भी बढ़ा रही है दावेदारी। यूपी चुनाव 2027 के लिए बीजेपी का सीक्रेट सर्वे मिशन शुरू, 403 सीटों पर उम्मीदवारों की होगी परीक्षा, सहयोगी दलों की सीटों पर भी फोकस। भदोही का नाम बदलेगा, सीएम योगी ने संत रविदास नगर करने का किया ऐलान, 32 साल में पांचवी बार बदलेगा जिले का नाम, वाराणसी कार्यक्रम में हुई इसकी घोषणा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, 12 अगस्त तक भारी वाहनों की एंट्री बंद, 4 अगस्त तक नेशनल हाईवे 58 की बाई लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर अलर्ट, एटीएस ड्रोन और 4000 पुलिसकर्मी तैनात, जनपद को 9 सुपर जोन, 16 जोन में विभाजित किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, जगदीश आफले को बनाया गया नया सचिव, दैनिक प्रशासन संभालेंगे, 2 सितंबर की कार्यकारी समिति बैठक में लगेगी अंतिम मुहर। कांवड़ यात्रा इंतजामों पर एआईएमआईएम पर योगी सरकार पर हमला, शादाब चौहान के बयान से विवाद, यात्रा रूट मास्क की दुकानों पर कार्रवाई और विशेष व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट, कांवड़ मार्ग की शराब दुकानों को तिरपाल से ढका, मंदिर मस्जिद वाले रूट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू। जंतर मंतर प्रदर्शन में खाना बांटने वाले गाजियाबाद के जुनैद के परिवार का दावा, पुलिस ने की पूछताछ, परिजनों का आरोप दस्तावेज लिए गए। उन्नाव में बच्चों के विवाद ने लिया हिंसक रूप, पथराव के बीच चली गोली, तमंचे से फायरिंग का वीडियो वायरल। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी ने किए काल भैरव मंदिर के दर्शन, सावन पर की पूजा अर्चना, मुख्यमंत्री ने बाबा काल भैरव के दरबार में माथा टेका, प्रदेश की सुख शांति की कामना की। सावन के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, वाराणसी में श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। सावन के पहले दिन अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की।

0: जयपुर के आनंदेश्वर मंदिर में भी लोगों का हुजूम। शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शिव भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। उड़ीसा में बाढ़ का कहर, 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 3 की मौत, महानदी में बाढ़ का खतरा। उड़ीसा में लगातार बारिश ने मचाई तबाही, नागावली नदी उफान पर, रायगढ़ में बड़ा हादसा टला। रायगढ़ में उफनती नागावली नदी के बीच ट्रैक्टर फंसा, चालक और नाबालिग को सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी में बारिश का कहर, यमुनोत्री हाईवे बंद, गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित। बेली ब्रिज अधूरा, जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर है ग्रामीण, सड़कें बंद और गांव का संपर्क प्रभावित। सुकमा में बारिश का कहर, उफनती नदियों से 50 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। रुद्रप्रयाग में बारिश से टनल के बाहर भूस्खलन, अलकनंदा पुल निर्माण पर असर, टनल सुरक्षित। आसनसोल में भूधसान यानी कि जमीन धसने के 24 घंटे बाद भी हालात गंभीर, 1000 लोग बेघर, इलाके में नई दरारों से दहशत। छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ में दर्दनाक हादसा, उफनते नाले से निकली गई कार में थामे हुए हाथ मिले दंपति के शव। कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा में डूब रहा हरियाणा का कांवड़िया बचाया गया, एसटीआरएफ ने समय रहते किया सफल रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और भूस्खलन का असर, तीसरे दिन भी केदारनाथ यात्रा पर रोक और मार्ग में गिरे पत्थरों से बड़ा खतरा। केदारनाथ में भारी बारिश का असर, दुकानों पर पसरा सन्नाटा, यात्रा प्रभावित होने से बाजार खाली, खराब मौसम के बीच श्रद्धालुओं की आवाजाही थमी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन, डीएम ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण, मलबा हटाने और यातायात सुचारू करने के दिए निर्देश। उड़ीसा के भद्रक में बाढ़ का कहर, प्रभावित इलाकों में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जल भराव में फंसे कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राजौरी में बाढ़ से तबाह, सड़कों की बहाली में जुटा बीआरओ, मलबा हटाने का काम जारी, क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए उतरी भारतीय एथलीट, लोगों तक राहत और सामान पहुंचा रही है हिमा दास, सावधानी बरतने की भी अपील। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग में टला बड़ा हादसा, कुश नदी में अचानक फ्लैश फ्लड की वजह से बड़ा जलस्तर, फंसे हुए शख्स को किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से बिगड़ते हालात, 3 नेशनल हाईवे समेत 140 से ज्यादा सड़कें बंद, 4 धाम यात्रा पर भी आज के लिए रोक। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड मलबे की चपेट में आने से एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त, कई जगह पर प्राकृतिक आपदा की वजह से हाईवे बंद। रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर, घरों तक पहुंचा अलकनंदा नदी का पानी। केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली सुरंग के पास भूस्खलन, मौके पर पहुंचे डीएम ने हालात का जायजा लिया। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर, घरों में घुसा पानी और सड़कें नालों में तब्दील हुई, लगभग 16 ग्रामीण मार्ग बंद। राजस्थान के अलवर में तेज बारिश के बाद सड़कें बनी सैलाब, पानी में फंसी स्कूल बस, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद आवाजाही हुई बाधित, पुलिस ने जगतियाल और मिंचरियाल जाने वाले यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। बुलंदशहर में बारिश बनी काल, स्कूल से लौट रही 4th कक्षा की छात्रा उफनते नाले में बही, 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल, अब तक कुल 15 मेडल मिले, बॉक्सिंग में 10 मेडल मिलने तय। दिलीप महादू गावित ने पैरा 100 मीटर की रेस में जीता गोल्ड मेडल, गावित ने 10.71 सेकंड की जीती रेस। पैरा 100 मीटर की रेस में भारत के मोहम्मद बासिल ने जीता सिल्वर मेडल, बासिल ने 10.83 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर अपना कब्जा किया। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने जीता सिल्वर मेडल, लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने। बॉक्सिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलो वेट कैटेगरी में सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अगला मुकाबला 31 जुलाई को नोसेथो की खिलाड़ी के साथ होगा। अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, बोले अलविदा कहने का यही सही वक्त, अब नया पड़ा। 536 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के 48वें नंबर के बल्लेबाज बने सूर्यवंशी, पहली बार टॉप 50 में बल्लेबाजों में हुए शामिल। T20 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन नंबर 1 स्थान पर काबिज, 910 है रेटिंग पॉइंट्स। वनडे में भारत के कप्तान शुभमन गिल वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज, विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर है। टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में भारत की पेस बैटरी जसप्रीत बुमराह की बादशाहत कायम, 870 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 स्थान पर काबिज। शाहजहांपुर में किराए के कमरे में मिला सब इंस्पेक्टर का शव, मचा हड़कंप, हार्ट अटैक से मौत की आशंका, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर देवबंद शिवा हत्याकांड का खुलासा, मारपीट का बदला लेने के लिए की गई थी हत्या, मुठभेड़ के बाद दो आरोपी गिरफ्तार, गला घोट कर हत्या की साजिश का खुलासा। सहारनपुर में पेट्रोल पंपों पर प्रशासन का छापा, मिलावट की शिकायत पर हुई जांच, अधूरे दस्तावेज मिलने पर पेट्रोल बिक्री रुकवाई गई। झांसी में सीओ ऑफिस में दो महिलाओं का हंगामा, आत्मदाह की धमकी से मचा हड़कंप, बयान दर्ज कराने पहुंची महिलाओं को पुलिस थाने ले गई, आधे घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। कौशाम्बी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, चंदवाड़ी बाजार में लाठी डंडे ईंट पत्थर और बैट से चले हमले, पुलिस जांच में जुटी। लू में तेज रफ्तार कार ने मचाया कहर, बस स्टैंड पर कई वाहनों को रौंदा, हादसे में कई वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बेंगलुरु में बाइक सवार ने उड़ाई ट्रैफिक नियम की धज्जियां, बीच सड़क पर खतरनाक स्टंट करते आया नजर, कई लोगों की जान खतरे में डाली। हनुमानगढ़ जंक्शन के पास ट्रेन की चपेट में आने से ट्रैफिक पुलिस में तैनात कांस्टेबल की मौत, सूचना मिलने पर GRP पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू। राजस्थान के अलवर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति की फोटो लगाकर महिला से ठगी का प्रयास, महिला की सूझबूझ से नाकाम हुई ठगी। गुजरात में जामनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, 10 आरोपी फरार घोषित। बिहार के जहानाबाद में सनकी देवर ने भाभी की हत्या कर सिर पेड़ में टांगा, खाने में देरी की वजह से किया दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने आरोपी देवर को किया गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में 3 साल के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पिता ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के बांसवाड़ा में स्कूली बच्चों से भरी वैन खड़े ट्रक से टकराई, हादसे में एक बच्चे की मौत जबकि कई घायल। पटना में मानेर में सरेआम लड़की को गोली मारकर फरार हुए बदमाश, गंभीर अवस्था में एम्स में इलाज जारी। मणिपुर के नोनी में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और नागा विलेज वॉलंटियर्स के बीच हुई गोलीबारी में एक नागा विलेज गार्ड सदस्य की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल। दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके से रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई, शराब के लिए पैसे न देने पर बेटे ने हथौड़े से मारकर की मां की हत्या। दिल्ली के केशवपुरम में 20 वर्षीय युवती के माथे पर गोली मारकर हत्या, सनकी आरोपी प्रेमी की तलाश तेज। यूपी के बांदा में 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में एक बुजुर्ग और 11 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं हादसे में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के सतारा में नीट परीक्षा में कम अंक आने पर छात्रा ने चूहे मारने का जहर खाकर दी जान, शिक्षा व्यवस्था पर परिवार ने उठाए सवाल। बिहार में होमगार्ड हवलदार परीक्षा में फर्जीवाड़ा, पुलिस ने हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह की साजिश का बड़ा पर्दाफाश किया, परीक्षा केंद्र ने 3 शिक्षक समेत 10 को हिरासत में लिया। रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म रामायण के ट्रेलर का इंतजार खत्म, रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर। फिल्म रामायण ने धुरंधर 2 का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, 75 करोड़ में बिके रामायण के म्यूजिक राइट्स, टीवी सीरीज ने खरीदे राइट्स। और गुरु पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम फिल्म रिलीज की घोषणा। इस पर बनेगी 7 फिल्मों की सीरीज। रामायण शो बनाने वाले रामानंद सागर के पोते कर रहे हैं इसे डायरेक्ट। महाप्रभु जगन्नाथ एनिमेशन फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ। फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। अमित राय की फिल्म ओ माई डॉग का पहला गाना रिलीज। 7 अगस्त को रिलीज होगी ये फिल्म।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुड।
0: और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, संसद भवन में बैठक चल रही है। पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, किरेन रिजिजू सहित कई सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। बैठक में राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी शामिल हैं। इस सारे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा। पीयूष, क्या एजेंडा है इस बैठक का?
3: जी अंजलि, इस वक्त एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है संसद भवन के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा और भी कई मंत्री बैठे हैं और पूरी तरह से जो फोकस है इस मीटिंग का वो संसद की रणनीति और महत्वपूर्ण विधेयक जो आगे आने वाले समय में सरकार लेकर आने वाली है उस पर होने वाला है। साथ साथ जो सदन की कार्यवाही फिलहाल चल रही है जिसमें लगातार व्यवधान हम देख रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लगातार व्यवधान के बीच में ये बैठक की जा रही है और साथ साथ आगे रणनीति क्या हो इस पर विचार विमर्श हो रहा है। सूत्रों की तरफ से जानकारी ये मिली है कि बैठक के बाद सरकार कोई बड़ा फैसला, अहम फैसला ले सकती है और उसकी संभावनाएं निकल के भी सामने आ रही है। देखना ये होगा कि अब किस तरह के फैसले सरकार लेने वाली। लेकिन हाँ, हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक उच्च स्तरीय बैठक का संसद भवन के अंदर चल रही है और लगभग आधा घंटा हो गया है इस बैठक को।
0: जी पीयूष, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और रुक करते हैं इस वक्त आ रही दूसरी बड़ी खबर का। 20 जुलाई को सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। आज तक के पास 20 जुलाई के प्रदर्शन का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि संसद भवन से महज 100 मीटर की दूरी पर हजारों प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। रेल भवन के पास सेल्फी पॉइंट तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। संसद भवन के आसपास के 5 सीसीटीवी फुटेज से ये खुलासा हुआ है। ये सीसीटीवी दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े करता है। दिल्ली पुलिस को संसद मार्च के बारे में पहले से ही जानकारी थी, तो फिर पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? नई दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू थी, फिर कैसे हजारों की तादाद में इतनी भीड़ संसद भवन तक पहुंच गई? ये सवाल अब उठ रहे हैं।

0: तो आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि यह सीसीटीवी फुटेज जो अब आज तक के पास है उसमें साफ नजर आ रहा है कि संसद भवन के करीब तक पहुंच चुके थे प्रदर्शनकारी। तो जिम्मेदारी किसकी? वही सुरक्षाकर्मी जिन्हें तैनात किया गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्यों इतने पास, इतने सेंसिटिव जोन में जो वीआईपी इलाका है संसद भवन का, वहां तक इतने हजारों लोगों का हुजूम पहुंच गया जब इसकी पूरी जानकारी थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अरविंद ओझा का। अरविंद, जो तस्वीरें सामने आ रही है, पहले तो उन्हें समझाएं कहां तक पहुंचे थे ये लोग, कहां कहां का सीसीटीवी फुटेज आज तक के पास है और इससे क्या एस्टैब्लिश होता है?
1: अगर आप फुल स्क्रीन सीसीटीवी को देखेंगे तो इससे ये समझ में आएगा कि 20 जुलाई को एक बड़ा कांड होते होते टला है। क्यों? क्योंकि 5 सीसीटीवी जो आज तक के हाथ लगे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पार्लियामेंट से महज 100 मीटर की दूरी, हम 100 मीटर करें, बहुत मुमकिन है कि 50 मीटर की दूरी तक जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंच गए थे। और एक जगह तो अगर आप देखें रेल भवन के पास, सामने की तरफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के गेट से कुछ ही दूरी पर जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंच गए थे। उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो प्रदर्शनकारी है और पुलिस, उनके बीच झड़प हो रही है। पुलिसकर्मी जो प्रदर्शनकारी है उनको हिरासत में लेकर जा रहे हैं। ये एक बहुत चौंकाने वाली तस्वीर है, बहुत डराने वाली तस्वीर है। सवाल यह भी है कि दिल्ली पुलिस को पहले पता था कि संसद मार्च का ऐलान है, तो इतने बड़े पैमाने पर भीड़ नई दिल्ली इलाके में और खास तौर से संसद भवन से 50 से 100 मीटर की दूरी पर कैसे पहुंच गई? बैरिकेड्स जो दिल्ली पुलिस ने लगाए वो इतने मजबूत क्यों नहीं लगाए? क्योंकि सीसीटीवी में जो 5 हमारे पास है वो संसद भवन के आसपास का है। सेल्फी पॉइंट अगर देखेंगे सीसीटीवी में तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पार्लियामेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक जगह रेल भवन के बेहद नजदीक अगर आप सीसीटीवी देखेंगे तो दीवार जो संसद भवन की है वो साफ दिखाई दे रही है। संसद भवन के अंदर जो एक कॉन्वॉय जा रहा है किसी की लीडर का बहुत मुमकिन है वो भी दिखाई दे रहा है और बाहर भीड़ पहुंची है। तो संसद भवन के चारों तरफ जो भीड़ है, प्रदर्शनकारी है, वो पहुंच गए थे 20 जुलाई को। ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तैयारियों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है क्योंकि दिल्ली पुलिस को पहले से पता था, बीएनएस की धारा 163 लगी थी, उसके बावजूद भीड़, ये स्क्रीन पर अगर आप देखें तो ये सेल्फी पॉइंट, ये जो रेड कलर का ये सेल्फी पॉइंट दिखाई दे रहा है, यानी पार्लियामेंट बेहद नजदीक और बाहर आरएएफ की टीम, पुलिस की टीम और प्रदर्शनकारी है जो पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं।
0: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका अरविंद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देख करिए आज तक।
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी
4: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
7: Savari, Sokudo.
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
7: Where's the truth? It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege.
8: सदन में राहुल के बयान पर मचा घमासान। पैलेट गन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीजेपी ने राहुल के बयान को बताया तथ्यहीन।
9: और वह माफी मांगो राहुल।
8: लोकसभा ने एंटी पेपर लीक बिल पर मुहर लगा दी है, लेकिन बिल पास होने से पहले लड़ाई राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई है। चर्चा के दौरान राहुल ने गृह मंत्री के सदन में न होने का सवाल उठाया, जिस पर काफी देर तक हंगामा हुआ।
7: आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू सी दैट द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
8: गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए राहुल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री को कांपते देखा।
7: Sir, I saw the carcade, 30 cars, with the Home Minister sitting inside the car, like that, looking.
8: राहुल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा, अमित शाह वो शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली भी थर्राते हैं।
10: इस प्रकार से एक्शन किया कि मैंने देखा गाड़ी के अंदर इस प्रकार अमित शाह जी थरथरा रहे थे, कांप रहे थे।
11: राहुल जी, अमित शाह जी वह शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली थरथराते हैं।
8: तो अब साफ है कि एंटी पेपर लीक बिल पर शुरू हुई लड़ाई लोकसभा में राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई है। आज तक ब्यूरो,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

संसद में घमासान और पेपर लीक पर संग्राम के बीच प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग, नड्डा, पीयूष गोयल, राजनाथ समेत किरेन रिजिजू और निर्मला सीतारमन भी बैठक में शामिल। गृह मंत्री पर राहुल गांधी के हमले के बाद दोनों सदनों में उबाल, विपक्ष ने फिर पूछा फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया। नड्डा ने कहा गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की निंदा करता हूं, 2 बजे बिल पर चर्चा। भारतीय हॉकी की केसरिया जर्सी पर तेज हुई राजनीति, प्रियंका गांधी बोली बीजेपी कर रही है इतिहास बदलने की कोशिश। हॉकी इंडिया का बयान, विजिबिलिटी में दिक्कत थी इसलिए ब्लू रंग बदल दिया। प्रोफाइल बाकीपुर सीट पर पहले घंटों में धीमा मतदान, रविशंकर प्रसाद समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। दतिया में अब तक करीब 35% वोटिंग, 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा पर तनातनी, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता का विवादित बयान, कांवड़ियों को बताया नशेड़ी। साक्षी महाराज ने कहा ऐसा बोलने वालों का इलाज होगा।

0: आज तक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। 20 जुलाई को सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा हुआ है। आज तक के पास 20 जुलाई के प्रदर्शन का नया सीसीटीवी फुटेज है। अब इस सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि संसद भवन से महज 100 मीटर की दूरी तक हजारों प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। रेल भवन के पास सेल्फी पॉइंट तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। संसद भवन के आसपास के 5 सीसीटीवी से फुटेज मिला है, जिससे ये खुलासा हुआ है। ये सीसीटीवी दिल्ली पुलिस पर कई सवाल अब खड़े कर रहा है। दिल्ली पुलिस को संसद मार्च के बारे में पहले से पता था, उसकी जानकारी थी, तो सवाल ये उठता है कि इसके लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। नई दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 भी लागू थी, तो फिर कैसे हजारों की तादाद में इतनी बड़ी भीड़ संसद भवन तक पहुंच गई? और यही सवाल सुरक्षा को लेकर लगातार उठ रहे हैं, और ये अब सामने आ रहा है, इसका खुलासा हो रहा है। ये जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, 5 सीसीटीवी है जिसकी फुटेज अब आज तक के पास पहुंची है, जिसमें अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है कि किस तरीके से भीड़ बढ़ती चली गई और पुलिस उसके सामने नाकाम हो गई। तो ये तस्वीरें उस वीआईपी इलाके से हैं। ये सेल्फी पॉइंट है जो आप देख रहे हैं, जहां पर हालांकि तैनाती थी सुरक्षा कर्मियों की, लेकिन फिर भी वहां तक पहुंचने में सफल रहे प्रदर्शनकारी। मार्च करते हुए प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से चलते हुए आए, रास्ते भर में उन्हें रोका गया, लेकिन यहां तक भीड़ पहुंच गई। और आप देख सकते हैं कि पुलिस और दूसरे सुरक्षाकर्मी जो वहां पर मौजूद थे, वो उन्हें रोकने में असमर्थ रहे। और जब इतने पास संसद भवन के पहुंच गए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 5 सीसीटीवी फुटेज आज तक के पास हैं, और ये 5 इस वक्त आपके पास स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। इन सभी कैमरे आप जो देख रहे हैं, जो कैमरे के एंगल हैं, इनसे आपको पता चलेगा कि ये जो इलाका है, संसद भवन के आसपास का इलाका है, ये सभी जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो बेहद अहम है।
1: के आसपास का इलाका है, सामने की तरफ आपको जो ये रेड बिल्डिंग है, ये सेल्फी पॉइंट है। जो प्रोटेस्टर है वो यहाँ आपको सामने की तरफ दिखाई देंगे। ये देखिए, अगर ये आप देखेंगे तो ये पार्लियामेंट का गेट है, अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये गाड़ी आपको जाती हुई दिखाई देगी। ये वॉल है, ये संसद भवन की ये वॉल है। ये सब संसद भवन के आसपास की तस्वीरें हैं, और बड़ा खुलासा ये इन सीसीटीवी के जरिए कि संसद भवन से महज 50 से 100 मीटर की दूरी तक प्रोटेस्टर 20 जुलाई, ये तस्वीर बहुत डराने वाली है 20 जुलाई की। ये पार्लियामेंट गेट का गेट है, प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच यहां झड़प हो रही है। पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आपको फिर से दिखाएंगे दोबारा तस्वीरें, तो पार्लियामेंट के गेट से बेहद करीब तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे, ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है। ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहे थे, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है, नई दिल्ली इलाके में बैरिकेड्स मजबूत लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं चकमा देते हुए पार्लियामेंट के करीब तक पहुंच गए थे हजारों की तादाद में जो प्रोटेस्टर, और बकायदा नारेबाजी हो रही थी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है वो तस्वीर है ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रोटेस्टर यहां खड़े हैं, पुलिस के बीच यहां पर बकायदा उनके बीच झड़प हो रही है। तो ये जो तस्वीर है रेल भवन के राउंड अबाउट में, जहां से संसद भवन बहुत बेहद करीब है, 50 से 100 मीटर की दूरी पर, उसके अलावा सेल्फी पॉइंट, और ये जो तस्वीर है ये तो काफी ज्यादा डराने वाली तस्वीर है। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे। पुलिस पर सवाल ये है कि जब पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है, तो प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की गई, मजबूत बैरिकेड्स वो क्यों नहीं लगाए गए, और साथ ही साथ जब इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी थी, तो इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नई दिल्ली और आसपास में कैसे इकट्ठा हो गई। 5 जो सीसीटीवी है, उस 5 सीसीटीवी के जरिए हम 20 जुलाई को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि कितना बड़ा कांड उस दिन होते होते बच गया। तो 5 सीसीटीवी संसद भवन के आसपास हमारे पास आया है, जिससे ये पता चलता है कि संसद भवन की दीवार के बेहद करीब जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस पर इन तस्वीर, इन पांच तस्वीरों को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी मजबूत तैयारी क्यों नहीं की थी, भीड़ संसद भवन के आसपास पहुंचने तक कैसे कामयाब हो गई थी, और 20 जुलाई को ऐसी भी तस्वीरें आई थी जब संसद भवन के अंदर सुरक्षा जो कर्मी थे वो अलर्ट मोड में आ गए थे, तो वो अलर्ट मोड में क्यों आए थे 20 जुलाई को जब वो तस्वीर आई थी, वो इसलिए आए थे क्योंकि ये सीसीटीवी जिसमें अगर आप देखें संसद भवन की दीवार, प्रोटेस्टर झड़प होते हुए आपको दिखाई दे रहा, संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये सेल्फी पॉइंट अगर आप देखेंगे तो सेल्फी पॉइंट प्रोटेस्टर है आपको दिखाई देंगे, ये रेल भवन का राउंड अबाउट है। सभी को मालूम है कि यहां से संसद भवन कितनी दूरी पर है, गेट यहां से दिखाई दे रहा और यहां तो सीधे सीधे संसद भवन दिखाई दे रहा। तो 20 जुलाई की वो तस्वीरें और 5 सीसीटीवी से हम ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से जंतर मंतर से जो प्रोटेस्टर निकले थे वो नई दिल्ली के इलाकों में तो घूम रहे थे लेकिन संसद भवन से 50 से 100 मीटर की दूरी पर, और ये देखिए ये जो बहुत है, ये तो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है, प्रोटेस्टर पार्लियामेंट का गेट, अंदर जो कार है वो जाती हुई दिखाई दे रही है, उसके अलावा रेल भवन का ये राउंड अबाउट है, सेल्फी पॉइंट है, यानी आप ये मान लीजिए कि संसद भवन से 50 से 100।
0: शुक्रिया अरविंद। तो अरविंद जय रहते हमें ये पूरी जानकारी, और अब आपके लिए खास पेशकश मानसून काल।

0: जुलाई के महीने का अब सिर्फ एक दिन बाकी है, सावन की शुरुआत हो गई है और इन सब के बीच मॉनसून का कहर भी अलग अलग राज्यों में दिख रहा है। पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, मैदानी राज्यों में उड़ीसा, पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र में भी हालात गंभीर दिख रहे हैं। असम में तो आफत का ऐसा असर हुआ है कि वहां अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है। तबाही और हाहाकार की तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आ रही है। अभी उड़ीसा के आसमान से आफत की बारिश हो रही है, वहां कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद से बाढ़ जैसे गंभीर हालात बने हुए हैं। स्थिति यह है कि इस संकट में अब तक 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। सैलाब की चपेट में कई जिले भी आए हैं। सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बालासोर, भद्रक, रायगढ़ जिलों में देखने को मिल रही है।
1: ओडिशा में मानो बादल फट पड़े हैं। ओडिशा में आफत की ऐसी बाढ़ आई है कि कदम कदम पर संकट है। नुआपाड़ा से आई ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि वहां खतरा कितना बढ़ा है। नदियों के जलस्तर में उफान के बाद डैम भी लबालब भर गए हैं। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। इन सब के बीच मामलों को संभालने के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। नुआपाड़ा की ये तस्वीरें 29 जुलाई की है, जो ओडिशा के संकट की सिर्फ एक झलक है। ओडिशा में बीते कुछ दिनों में मूसलाधार बारिश हुई है। सैलाब में डूब रहे रायगढ़ का हाल देखिए, वहां एक बड़ा हादसा टल गया। लगातार भारी बारिश की वजह से नागावली नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया। उसी फंती नदी के बीच एक ट्रैक्टर फंस गया। घटना के वक्त ट्रैक्टर पर ड्राइवर और एक बच्चा मौजूद थे। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने पूरी सूझबूझ के साथ सैलाबी संकट में फंसी दोनों जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाला। रायगढ़ के साथ साथ ढेंकनाल में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मूसलाधार बारिश वाली मुसीबत में वहां भी जिंदगी फंसी हुई है। वहां एक दिन पहले एक चौंकाने वाली घटना हो गई। एक भारी भरकम जेसीबी सैलाब में जा फंसी। इलाके में पुल के ऊपर से फंती नदी का पानी बह रहा था। उसी दौरान जेसीबी ऑपरेटर लोगों के मना करने के बाद भी नहीं माना और पुल से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। नतीजा ये हुआ कि वो संकट में फंस गया। जेसीबी तेज बहाव में अपना संतुलन खो बैठी और पुल के किनारे से पलट गई। जेसीबी ऑपरेटर जैसे तैसे केबिन से बाहर निकल गया और मशीन के ऊपर खड़ा होकर उसने अपनी जान बचाई। खबर मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और उसे बचा लिया, लेकिन जेसीबी मशीन लहरों में समा गई। उधर बालासोर में भी सैलाब जान पर बनाई। एक शख्स अपनी बाइक के साथ पुल पार कर रहा था। ऐसे विषम हालात के बाद भी वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन तूफानी रफ्तार वाली लहरों के आगे उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। गरिमत रही कि डेंजरस बहाव से थोड़ी ही दूरी पर दोनों किनारों पर लोग मौजूद थे। साथ ही एनडीआरएफ के जवान भी मुस्तैद थे। तुरंत एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला और उस शख्स को बचा लिया। हालांकि उसकी बाइक लहरों में बह गई। ओडिशा का बालासोर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। वहां लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। 2 दिन पहले बालासोर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बाढ़ के पानी में जिंदगी डूबती दिखी। ये कार सर्विस स्टेशन की तस्वीरें हैं। वहाँ इतना पानी भर गया कि पार्क की गई कई गाड़ियां भी सैलाब में डूब गई। कई बसों का भी वैसा ही हाल दिखा। बालासोर में 2 दिन बाद भी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। अभी भी हालात बदतर हैं। लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ से बदहाली दिख रही है। राज्य सरकार के अनुसार 5 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इनमें बालासोर, मयूरभंज, क्योंझर, भद्रक और जाजपुर हैं। बाढ़ से 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। राज्य सरकार ने अब तक बाढ़ से जुड़ी 3 मौतों की पुष्टि की है, जबकि लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्थापित लोगों की मदद के लिए सरकार ने राज्य भर में 237 राहत शिविर स्थापित किए हैं, जहां आश्रय, पका हुआ भोजन, पीने का पानी और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम तक करीब 188,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बिगड़े हालात के बीच मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तीन मंत्रियों सूर्यवंशी सूरज, गणेश राम सिंह खुंटिया और केसी महापात्र को बाढ़ की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे संकट के बीच बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और फायर सर्विस की टीमों को तैनात किया गया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी नुआपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिलों में बेहिसाब बारिश का अलर्ट जारी किया है। अजय कुमार नाथ, बालासोर, आज तक।
0: ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आफत है, तो उत्तराखंड में भी मौसम के बिगड़े मिजाज ने जनजीवन को ठप कर दिया है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जबरदस्त संकट है, कहीं लैंडस्लाइड ने डरा रखा है तो कहीं भारी बारिश का असर नदियों के जलस्तर पर दिख रहा है और कई नदियां खतरा बन चुकी हैं।
1: नदियों का रौद्र रूप दिख रहा है, कहीं सैलाब में पुल डूबते जा रहे हैं, पहाड़ों पर हाहाकार मचा है, कहीं लैंडस्लाइड से जान पर पन आई है। उत्तराखंड के लिए यह संकट काल है। मॉनसून की मुसीबत ऐसी आई है कि राहत की सांस ले पाना दुभर है। अलग अलग इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। सबसे पहली तस्वीर आपको उत्तरकाशी की दिखाते हैं। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर अचानक खतरा बढ़ गया है। एक दिन पहले की तस्वीरें हैं। उत्तरकाशी के सियाना चट्टी में ऐसा लैंडस्लाइड हुआ कि वहां हड़कंप मच गया। वहां ऊंचाई वाले इलाकों से भारी भरकम पत्थर के टुकड़े हाईवे तक जा गिरे। इस वजह से नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। देर तक ये संकट बरकरार रहा। संकट की ऐसी ही तस्वीर रुद्रप्रयाग से भी आई है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए बनाए जा रहे टनल के पास भूस्खलन हो गया। पहाड़ों से बोल्डर गिरे, हालांकि टनल पूरी तरह सुरक्षित है। भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड के बाद वहां दरार भी दिखी। रुद्रप्रयाग में जिस जगह हादसा हुआ वहां 900 मीटर लंबी टनल बनकर तैयार है। अब इस टनल को बद्रीनाथ हाईवे से जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर बन रहे 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस बीच लगातार हो रही बारिश के कारण वहां मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों में भी उफान है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। हालात ऐसे हैं कि रुद्रप्रयाग में वाल्मीकि बस्ती को जोड़ने वाला पैदल पुल अलकनंदा नदी में डूब चुका है और अब लोगों के घरों तक अलकनंदा का पानी पहुंचने लगा है। हालात गंभीर बने हुए हैं और कई लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं।
0: रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इस वजह से कई मोटर मार्ग अब बंद हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग के गंगानगर बडमा सड़क पर भी ऐसा ही हादसा हुआ है और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता प्रवीण सेमवाल।
2: मानसूनी सीजन में पहाड़ों का जनजीवन आसान नहीं है। इसका एक जीता जागता उदाहरण आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं। यह रुद्रप्रयाग जनपद के लगभग 40 से 50 गाँवों को जोड़ने वाला गंगानगर बर्मा मोटर मार्ग है, जो कि लगातार भूस्खलन के चलते बंद हो रहा है। ऊपर से जहां लगातार पहाड़ी से मलबा व बोल्डर बरस रहा है, तो ठीक नीचे से आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी की तेज लहरें भू कटाव करती जा रही हैं। ऐसे में यहां पर जो मोटर मार्ग की स्थिति है वह काफ़ी दयनीय बनी हुई है। भूस्खलन होने से मोटर मार्ग का तकरीबन 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह वॉश आउट हो गया है। भले ही PWD रुद्रप्रयाग की एक JCV मशीन मोटर मार्ग को खोलने का कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। दूसरे छोर पर सुबह से ही ग्रामीण मोटर मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी
5: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
6: Schwarber to right field, and it will leave.
5: From the first pitch of the season to the stretch run,
6: and that's the ball game.
5: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn. To listen.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच In association with
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी Sokudo
7: Hexa Organic Radiant Skin and Nourished Hair Pure Ayurvedic Beauty
8: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
9: मैंने क्या सिखाया था सिल्वर के लिए स्टेलिंग मार्क गोल्ड के लिए हॉल मार्क
10: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क
11: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना
12: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों
13: कुछ तो बात है इस दिल में
14: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In association with
2: Bharat.
3: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
5: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो
6: याद है ना मैंने क्या सिखाया था, सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
7: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
8: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
9: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
10: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: संसद में गवासान और पेपर लीक पर संग्राम के बीच पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, नड्डा, पीयूष गोयल, राजनाथ समेत किरण रिजिजू और निर्मला सीतारमण भी बैठक में शामिल। गृहमंत्री पर राहुल गांधी के हमले के बाद दोनों सदनों में उबाल, विपक्ष ने फिर पूछा फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया। नड्डा ने कहा गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की निंदा करता हूं। कुछ ही देर में फिर बिल पर चर्चा। 20 जुलाई को संसद से करीब 100 मीटर दूर तक पहुंच गई थी प्रदर्शनकारियों की भीड़। आज तक के पास 5 सीसीटीवी तस्वीरें संसद भवन के गेट के बहुत करीब तक बवा। भारतीय हॉकी की केसरिया जर्सी पर तेज हुई राजनीति, प्रियंका बोली बीजेपी कर रही इतिहास बदलने की कोशिश। हॉकी इंडिया का बयान, विजिबिलिटी में दिक्कत थी इसीलिए ब्लू रंग बदला। सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा पर तनातनी, ओबीसी की पार्टी के प्रवक्ता का विवादित बयान, कांवड़ियों को बताया नशेड़ी। साक्षी महाराज ने कहा ऐसे बोलने वालों का होगा इलाज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और दो बज गए हैं न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर। और सबसे पहले जैसे आमतौर पर बताते हैं कि न्यूज रूम लाइव में किन खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले न्यूज रूम लाइव में हम आपको बताएंगे कि छात्रों की लड़ाई कैसे पैलेट गन तक आ गई है और कैसे इस पर सियासत हो रही है, ये हम आपको बताएंगे कि पेपर की लड़ाई पैलेट पॉलिटिक्स पर कैसे आ गई है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता देते हैं। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे कि अब किस तरह से 20 जुलाई का जो वीडियो अब सामने आया है

0: बैलेट पर जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक हाई लेवल बैठक मीटिंग इस वक्त चल रही है और इस हाई लेवल मीटिंग से जुड़ी जो जानकारी आ रही है कि इस हाई प्रोफाइल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही, साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल के साथ साथ हरदीप पुरी और सर्वानंद सोनोवाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। संसद भवन में हो रही इस बैठक में किरण रिजिजू और जेपी नड्डा भी शामिल हैं। तो सभी बड़े नाम, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, हाई प्रोफाइल बैठक से जुड़ी क्या जानकारी आ रही है अभी तक?
1: देखिए, ये जो हाई प्रोफाइल बैठक है इसको सीसीएस कह सकते हैं क्योंकि ये सीसीएस का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर जो है ये बैठक हो रही है कि किस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट एमपीजी और अन्य फर्टिलाइजर की जो सप्लाई चेन है वो ना रुके, जिससे देश के अंदर किसी भी तरीके का कोई क्राइसिस जो ना हो, इसीलिए ये सीसीएस की जो है ये बैठक है। और इसमें इस बैठक में सीसीएस के जो परमानेंट मेंबर हैं उनमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है।
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु, और सीधे आपके लिए चलते हैं सदन जहां जितेंद्र सिंह इस वक्त बिल पेश कर रहे हैं।
2: सेंस ऑफ सेंसिटिविटी एंड कंसर्न दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज टाइम एंड अगेन एक्सप्रेस्ड फॉर द स्टूडेंट एंड यूथ ऑफ दिस कंट्री। The bill also testifies that this government does not stand on prestige. We never stand on prestige. We are open to healthy inputs. We are open to constructive suggestions from all quarters. And that is exactly the reason why, in the wake of the recent sequence of events, Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children, and also announce the resolve of zero tolerance to paper leak. And hence, this legislation, which seeks to make amendments in 2024 Act in order to make it more stringent, more deterrent, is being brought in. My humble request to all the elders in the house is that please help us implement this legislation effectively, and if there are any suggestions for improvement I'll be taking note of it. I know by now most of the content of the bill is known to you. It has also been extensively reported in the media. Nevertheless, for a quick recall, I may state that this bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country. Paper leak is an issue and a malaise which has confronted this nation and has been reported from different parts of the country, regardless of whichever the party in power, regardless of whichever the state or the union territory. The list is very long, but if you go through, you will understand how assorted it is, hardly leaving any state or any party untouched. Some of the infamous paper leaks extensively reported in the media and talked about include the 2009 Railway Recruitment Board, 2011 All India Engineering Entrance Examination, 2012 AIIMS Delhi Entrance Leak, 2013 Maharashtra Higher Secondary Certificate Leak, 2010 B.Ed Entrance Examination, 2014 I am going to come up to 26.
3: Let the minister speak, please.
2: I said I'll come up to 2026. UP 2010 B.Ed entrance examination. UP 2014 combined pre-medical examination. UP 2015 Uttar Pradesh provincial service leak. Tamil Nadu 2012 Tamil Nadu public service. वेस्ट बंगाल।

0: 2009 joint entrance exam, Rajasthan 2018 police constable recruitment scam, 2019 Rajasthan librarian grade 3 scam, 2020 Rajasthan junior engineer, 2021 Rajasthan eligibility examination, 2021 SI recruitment exam, 2022 RPSC school lecturer, 2022 police constable, 2022 senior teacher grade 2 examination, same year RPSC public service commission, 2023 Rajasthan REET exam, 2019 Odisha teachers eligibility test, 2023 Odisha staff selection examination, 2016 Karnataka UC, and very recently Jharkhand Public Service Commission irregularities in combined civils. Now the suggestion is to come to the current. Yes, so 2026 current year Punjab Pharmacy officer recruitment scam.
1: Please.
0: And even more recent, Karnataka veterinary officers leakage.
1: Arunji, wait here, please. Arunji, you please wait here. I will take care of you, please wait here. Please, nothing will go on record except the minister's speech.
0: So, I'm glad the enthusiastic response from the opposition is a testimony to the fact that you have acknowledged what I have said. And therefore, you would also acknowledge the justification behind bringing the 2024 bill and the amendment today. Broadly speaking, Chairman Sir, in this country we have four main recruitment agencies, namely the UPSC, the Staff Selection Commission, the Railway Recruitment Board and the Institute of Banking Personnel. And for admission to higher educations, now you have National Testing Agency. And my next sentence is again going to excite some of the honourable members on the other side. The irony is that the first time the suggestion for national setting up a national agency came way back in 1992, almost 33 years back. It was a Congress government at the centre. A series of committees were formed, and in UPA 2 in 2010, again a very strong suggestion from one of the committees set up by them came to set up a national testing agency. I'm sure they will appreciate and be grateful and thank Prime Minister Modi that the unfinished task and unfinished agenda left by UPA is being completed and brought to conclusion by the NDA. And therefore,
1: please take your seat.
0: And therefore,
1: Agarwalji,
0: in an honest bid,
1: Agarwalji, please take your seat. Don't get agitated.
0: In an honest bid to carry forward what could have been carried forward by the earlier governments, the Public Examination Bill 2024 was brought in January 24. It was enacted in February 24, implemented in June, and also notified in June 24. The bill's main objectives at that time were to give greater transparency.
1: Honourable member, please take your seat.
0: Yes, that is precisely the reason you didn't bring the bill.
1: Because the bill sought to bring greater transparency,
0: greater credibility. And I'm not saying this. There's a strong opinion in this country that this agency was not brought in because there were certain vested interests involved. And which were not compatible with the transparency. But here it was a noble thought to reassure the youth that their sincere and genuine efforts would not go unrewarded in the hands of a few vested interests. A and to ensure that their future would not be jeopardized by self-seeking.
1: Your party is having sufficient time. You can give notes to your speakers and you can speak also. Please wait.
0: For 53 years. Just as they took 70 years to erase out Article 370, which was their commitment, they took 33 years not to bring in National Testing Agency. And now that this is being brought, the clamor is not against the bill. The clamor is against that interest which is going to get compromised hereafter.
2: You are the protectors of paper leak mafia.
0: Yes.
1: This will not go on record. The running commentaries will not go on record. Only the minister's speech will go on record.
0: The government's intention is evident from the fact that
1: you can speak everything when you are
0: recent leak was reported.
1: When you are going to speak, when your turn is coming, why you are giving running commentary, please?
0: No, I don't get disturbed. In fact, I feel complimented. That means it is touching the right chord. सही जगह पे निशाने पे तीर लग रहा है। क्योंकि मैं ये समर्थन कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि 33 साल तक जो ये काम ना कर सके, वो आज अंजाम होने जा रहा है। लेकिन मुझे यकीन है, इस देश में कुछ ऐसे भी कुछ बुद्धिजीवी थिंकर होंगे जो इसका भी आंकलन करेंगे कि 33 साल वो क्या कारण थे जिस कारण से ये बिल ना ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्थापित ना की गई, वो कौन से वेस्टर्न इंटरेस्ट थे, वो कौन से मैनेजमेंट कोटा थे कॉलेजों के। एंड एज फार एज द रीसेंट केस इज कंसर्न, immediately it was handed over to the CBI. It is being followed as per the prevention of unfair means. And day four yesterday, the charge sheet was filed. And I'm glad to share that from yesterday, the trial has begun. As per this new law, the investigation will be complete in 2 months, followed by trial in 3 months, 5 mahine. We did not allow indefinitely running trials, which was happening in the earlier governments. अगर कहीं मजबूरी में कोई केस दायर करना भी पड़ता तो इट वॉज मोर ऑफ एन एग्जिट रूट और फेस सेविंग विद द फॉर्म बिलीव दैट यू विल नेवर कम टू द कंक्लूजन। मैं उसका भी बताऊंगा, बट आई स्पीक एलेबोरेटली ड्यूरिंग रिप्लाई। व्हाट ही इज सेइंग इज, आई थॉट जयराम जी इज अ वेरी वेल रेड पर्सन, बट पॉसिबली ही हैज नॉट रेड द न्यूज रिपोर्ट इन फुल। Mukhiya was never implicated in 2026 case. A, he was also not implicated in 2024 leak. While rounding up, since he was a known scamster in Bihar for paper leak, so when they were rounding up the suspects, he was also taken in. But per se in this case, he was not involved. And that is the report. I thought you read more than me. But today I am glad that I read more than Jairavji. Anyway, so sir, without wasting time then, because we have to go in for discussion and a number of speakers, and finally we'll also have the concluding remarks. Just to spell out briefly in 5 minutes these important provisions that are being brought in, just the recall of the fellow speakers as well. In the earlier bill of 2024, we had the subsection 1 of section 10, where a person or persons involved were subject to 3 to 5 years of imprisonment and a fine up to 10 lakh. This has been increased to imprisonment of 5 to 10 years and a fine up to 50 lakh. As far as the service provider is concerned, now if Jairam ji has not read that, I will read out. What is the definition of service provider? क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे हैं और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोप्राइटरशिप any associates, any subcontractors, any provider of support of any computer resource or any material by whatever name it may be called, which is engaged by the public examination authority for the conduct of public examination. So this was a definition given in 24 itself, but just to recall. Now, in 24, the penalty laid down was fine up to ₹1 crore and barring them from conducting an exam for 4 years. This fine is now being increased to 5 years, and the concerned would not be allowed to conduct an exam instead of 4 years for as long as 8 years. Subsection 3 of Section 10, Director or Senior Management in Connivance. Imprisonment earlier was 3 to 10 years in 24, now it is being increased to 5 to 10 years. Fine was up to 1 crore, it is now being increased to 5 crore. And organized crime, the mafias, which sometimes prompt us to oppose the bill. Mafia is a larger nexus. It could involve persons from the business community, persons from the crime world, and persons from public life also sometimes, unfortunately. And the echo buzzes all around. And for this organized crime committers, the imprisonment earlier was 5 to 10 years. It is being increased to 7 to 10 years. And fine was earlier not less than 1 crore. It is now being increased to 10 crore. And most importantly, there is a provision of special fast track court, so that the powers that be do not find an exit in filing a case, sleeping over it, and allowing the same malaise to continue as was happening before 2014. The special task force, this is a new provision involved, and therefore in the act we are adding section 12A, a new section. The investigation could be conducted by a police officer, could be conducted by a central agency, if the government chooses to refer as has been done in the current case, and also by a special task force, namely the STF. And the investigation will have to be completed within a period of 2 months, followed by trial within a period of 3 months, so that the special fast track court will be able to exclusively deal with this. The special prosecutors will be nominated or appointed in consultation with the concerned High Court, and on justifiable grounds alone, the appeal provision is laid down, not in normal cases, that too to the double bench of the High Court. And beyond 30 days, unless the High Court is satisfied, it would not be possible to file an appeal, and in no case beyond 90 days. Now, may I also add over here that in the course of these few days when the bill was in process, it was being put up in Lok Sabha, it was being taken up in discussion, the action has simultaneously started. We requested the Ministry of Law, and I'm glad the Department of Justice has already set up 6 special fast-track courts in this country. More are in the making. One of them is Delhi, where the trial has started yesterday in the current case. The other one is Mumbai, then in Calcutta or Kolkata, fourth or Madhya Pradesh, Bihar, Uttarakhand, and more are incoming. And as you all know, Prime Minister made this announcement and also said this in a video. Har jagah hoga, har jagah hoga. Ye to abhi humne turant ye isliye kiya ki Delhi ka case tha to 6 jagah ho gaya. A task force has been appointed with Nandan Nilekani, the co-founder of Infosys, S. Somanath, former chairman ISRO, Tapan Dekha, ex-DIP, Dr. V. Kamakoti, director IIT Madras, Chennai, Anita Karwal, former secretary education, and Amrita Lal, Meena, logistics expert. And repeatedly it was said that immediately for going into the vision provisions of the National Testing Agency, I don't know how this misconception has been sought to be created, that the Radha Krishnan Committee, which was set up in 2024, the recommendations have been not been implemented, I would like to share with this august house that out of the 46 key recommendations, 35 already stand implemented, that is more than 76%. And therefore, the government is in right earnest with all the sincerity at its command, bringing in this amendment, and I'm sure no member will have any reason to object to this, and if you have an objection, I'm afraid the countrymen will be having objections for you.
1: Now the motion is moved. Honourable members, I draw your kind attention to the rules 235 and 238 of the rules of procedures. Honourable members are requested to adhere to the said rules while being present in the chamber or during their speeches. Further, those portions of the speeches made in contravention of the rules shall not be formed the part of the records. And I request all the members on both sides, there are elegant, very good and efficient speakers. Let them speak. Please don't run, make a running commentary. If your prime speaker is missing any point, you can make a note and send it to him, and so that we will have a very fruitful discussion. That is my humble request to all of you.
3: Sir,
1: now,
3: sir, one point, sir.
1: Yes.
3: Sir, the leader of the house and the leader of the opposition are institutional positions.
1: Right.
3: Time is allocated to them in terms of the positions they occupy. Mm. So I request that the leader of the opposition be given special time and not be factored in as part of the time for the Indian National Congress.
1: Okay. No, please. Let him speak. If he really requires extra time, we will consider it.
4: It is an established system that whether it's the leader of the house or leader of the opposition, when they speak on behalf of the party, the time is allocated, it is counted in the time allotted to the party. However, looking at the position, being the leader of the house and leader of opposition, they always enjoy some privileges, and I have seen the Honorable Chair has always given that courtesy. But what I want to say is opposition leader represents entire opposition party, and leader of the house represents entire house, and that part we will always ensure from our side. And only when there is some kind of remarks which is objectionable, then only our members rise and object. Otherwise, leader of opposition is always given due respect.
1: I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Leader of the opposition, Sriman Mallikarjun Gargeji. Please, take your seat. Nothing will go on record except Gargeji's speech. Don't get agitated. Let us hear the points of the speakers. Please listen.
5: धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने सविस्तर से सुनने का भी बात यहाँ पर रखी, इसीलिए मैं अपने बात को ठीक ढंग से रखूँगा और मैं यही चाहता हूँ कि सरकार के लोग ठीक से सुने और इसका उत्तर वो ठीक से दे, यही मेरी अपेक्षा है और आप मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, ये मेरी आशा है। सर, मैं शुरू करता हूँ एक पेपर चुराने वाले बचते रहे, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे, ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत, गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे, यानी मासूम लोग आज मासूम। तो ठीक है, आपका हिंदी बहुत अच्छा होगा, आपका हिंदुस्तानी भी अच्छा होगा, मेरा भी थोड़ा हिंदुस्तानी सुनिए। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पेपर लीक होने से कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ और कितने लोग पीटे गए, कितने माँ बाप परेशान हैं, कितने औरतें बच्चे परेशान हैं, इसको जाहिर करने के लिए ये बात मैंने आपके सामने रखी। सभापति जी, आप अभी पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 में जो जहां चर्चा के लिए आई है, उसमें सिर्फ आंकड़े बदले हैं। मेरे पास पूरा ये है बिल, तो उन्होंने पढ़ा, वो बिल मेरे पास भी है, इसमें सिर्फ आंकड़े बदलते गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इससे पड़ेगा आप किस ढंग से इस एग्जामिनेशन को लेके चलेंगे और विदाउट पेपर लीक आप कैसा बनाएंगे, वो उस पे ऊपर निर्भर करता है, नहीं कि इसके इसको हमने बढ़ाया 1 करोड़ से 10 करोड़ किया या 2 महीने से 6 महीने किया, इससे सुधारने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि ये तो नई बात तो नहीं है, लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना और उधर से अभी अपने भाषण में कहा कि आप लोगों ने नहीं माना, लेकिन इस मजबूत कानून को ठीक करने के लिए हम बार बार आपके सामने कहते रहे, लेकिन आप किए नहीं। लेकिन 2 साल के बाद आप जो काम कर रहे हैं उसे 2024 में ही क्यों नहीं किया, तो अब कर रहे हैं 2024 में, यानी 2 साल पहले आप क्यों नहीं किए? क्योंकि तब आपको राजनीति करनी थी, लोकसभा चुनाव सामने थे, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार पेपर लीक और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठा रहे थे। आप ये करते तो क्रेडिट नहीं मिलता था उस वक्त, इसीलिए आप उसको छोड़ दिए। तो उस समय परीक्षा व्यवस्था को सुधारने की बजाय आप जल्दबाजी में ऐसा कानून लाए जिसे 2 साल में ही आपको संशोधित करना पड़ रहा है। सभापति जी, इस अमेंडमेंट बिल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये अभी भी अधूरा है। ये पेपर लीक होने के बाद भी इसकी कार्रवाई को मजबूत करना ये जरूरी है। पेपर लीक होने से रोकने की मजबूत व्यवस्था इसमें नहीं है, सिर्फ आपने आंकड़े बदले, लेकिन आपका इंटेंशन आपने इसमें नहीं बताया, इसको रोक कैसा रोकना। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये सब जो माहौल आज चल रहा है, इस माहौल को ठंडा करने के लिए और जो आज हमारे विद्यार्थी युवा जो सड़क पे आए हैं उनको ठंडा करने के लिए ये बिल लाया गया है, ये उपाय सो समस्या को सुलझाने के लिए नहीं। सभापति जी, पिछले दो महीने की घटनाओं ने देश को झकझोर दिया है। देश भर के छात्रों और नौजवानों ने परीक्षा व्यवस्था की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाई। विपक्ष ने उनकी आवाज सड़क से लेकर संसद तक उठाई। बढ़ते जन दबाव के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े। मैं देश के छात्रों नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं, उनका संघर्ष रंग लाया और सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री को प्रधान को हटाना पड़ा, और इसीलिए ये युवाओं की ताकत है। और जब युवाओं की ताकत देखने के बाद हमारे सरकार को भी ये मालूम हुआ, अरे इससे ज्यादा अगर हम कुछ खींचतान करेंगे तो धागा टूट जाएगा और हमारी कुर्सी चले जाएगी, इसीलिए डर के आखिरी में उन्होंने युवाओं का जो डिमांड था उसको माना। लेकिन उसमें यह है, उसके पीछे है कि उनकी कुर्सी बचाने के लिए भी ये काम उन्होंने किया, ना कि विद्यार्थियों के समस्याओं को समझाने के लिए सुलझाने के लिए नहीं की। कुर्सी कैसा बचाना और इतना एजिटेशन हो रहे हैं सब कुछ, और हमारे जितेंद्र सिंह साहब भी इसको सुलझाने के लिए सड़क पर आना पड़ा, उनको भी कहना पड़ा कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं वो ये, क्योंकि उनको मेरे पास भी झुक के एक दिन आएंगे, वो वक्त भी होगा। तो सर प्रधानमंत्री जी,
6: गृहराज जी प्लीज
5: सर, तो वो समझाने की भी कोशिश करे आए सब बोले, लेकिन डर इसका था उनको, वो जो सत्याग्रह या वो जो एजिटेशन था राहुल जी ने उस दिन किया, वो एकदम डर गए और डर के बोले कि ये ठीक, इसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। तब उन्होंने ये तय किया कि प्रधान को हटाया जाए, शिक्षा मंत्री को हटाया। तब ये एक उनका अंदरूनी विचार है, और आप किसी से भी पूछिए, वो दिल में उनके है लेकिन बाहर नहीं बोलते, क्योंकि मोदी जी अपने कुर्सी के लिए ये सब कुछ किए। ये कदम तभी उठाया जब छात्र पेपर लीक, परीक्षा की गड़बड़ियों और संस्थागत नाकामियों की बात कर रहे थे, तब सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनको अराजक कहा और हर सवाल को राजनीति से जुड़ा बताकर खारिज कर दिया था। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं साहब, जब विद्यार्थी पहले ये पूछे, महीनों से वो लोग माँ सड़कों पे बैठे और महीनों से एजिटेशन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त आप क्यों नहीं पूछे, उस वक्त उनके पास क्यों नहीं गए, उनके पास क्यों आप निगोशिएट नहीं करे। बाद में बुला के नड्डा साहब अपने चेंबर में बुला के समझाने के बजाय जिस दिन वो वहां बैठे थे उसके दो दिन बाद या तीन दिन बाद अगर आप जाते तो ये समस्या नहीं होती, इतने लोग लाठी नहीं खाते थे, इतने लोग बर्बाद नहीं होते थे, इतने लोग बारिश में नहीं रहते थे। तो ये आपकी वजह से, आपके सरकार की वजह से ये सब भुगतना पड़ा। उसके कारण बीजेपी सरकार है, मोदी जी है, सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, जो दिख रहे ही नहीं हूं मैं देख रहा हूं। मैं तो बाकी के छोटे छोटे इश्यू में आके बार बार अपनी बात रखते हैं, हर तरफ घूमते हैं, तो जिस तरफ क्यों नहीं घूम रहे मुझे मालूम नहीं।
2: डरे हुए
5: हाँ
2: डरे हुए
5: तो ये प्रधानमंत्री भी मुंह नहीं खोल रहे और हमारे होम मिनिस्टर भी नहीं हो रहे, क्योंकि यहां पर दिल्ली में ही इतनी गड़बड़ हो रही है और आप होम मिनिस्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, इतना होने के बावजूद भी गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या मुंह को, बंद कर दिया? बोलना चाहिए था खुलकर, देश का नुकसान होने के बजाय देश के भलाई के लिए आपको बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, कभी इंसल्ट भी सहन करना पड़ता है, आप करना पड़ता। नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो जो सबक स्टूडेंट्स ने तुमको सिखाया है उससे डबल सारे विद्यार्थी और युवक मिलके एक दिन फिर आपको वो सबक सिखाएंगे। सर 20 जुलाई 2026 को हजारों छात्र शांतिपूर्वक संसद की ओर मार्च कर रहे थे, वे संवाद चाहते थे, लेकिन उन्हें मिला लाठी चार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनॉन्स, पैलेट गन, करंट वाले बैरिकेड, मेट्रो लाठी में किले रखकर और रेलवे स्टेशन भी बंद करे और मेट्रोस बंद करे और इंटरनेट बंद करे, ये सब ठप हो गया। ये सब आपने किया और इससे विद्यार्थी उचक है, नागरिक भी बहुत इसमें गुस्से में रहे, तो इसीलिए उनको ये एजिटेशन करना पड़ा। लेकिन आप संभाल नहीं सके, शांति से उनसे बात नहीं कर सके। 100 से अधिक छात्र इस एजिटेशन में जो थे वो घायल हो गए और आईसीयू में वेंटिलेटर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पड़े बहुत से, और कई बच्चों को आंखों में वो पलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे, आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया क्या नहीं मुझे मालूम, जो मुझे शर्म आया। अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट गन पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं, किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके बेगुन क्या है। इस
6: Now I call upon the leader of the house. Sabhapati ji. Sabhapati ji.
7: One minute.
6: When he speaks. No. Sabhapati ji. I call. When he is speaking, if he wants, I will come in. When the leader of the house is speaking, if opposition wants to intervene, I will call the leader of the opposition.
8: Sabhapati ji.
6: Yes.
8: Sabhapati ji. Leader of the opposition. Leader of the opposition. को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की. लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है. अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में ना आए. ये मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता.
9: Any unparliamentary by either side, that will be expunged. No, don't insist on it. Please try to be within the framework so that the smooth, wonderful debate should take place.
5: Sir, मैं कभी unparliamentary word इस्तेमाल नहीं किया. मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जन लोग, विद्यार्थी, महिला, ये लोग. मैं नहीं ऐसा जाके मैं खींच लेके आता हूँ नड्डा साहब को, होम मिनिस्टर को, ये नहीं बोला. मेरा कहना यह है कि ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी. कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो. अब हमेशा हर चीज का हमारे पास हमदर्द बोल के कोई औषध था, तेज नहीं, जिंदा तिलिस्मात. हर बीमारी को जिंदा तिलिस्मात, फीवर आने को जिंदा तिलिस्मात, और कोई को बुखार आ गया वो जिंदा तिलिस्मात, अच्छा खांसी आ गई जिंदा तिलिस्मात, उसका नाम ही जिंदा तिलिस्मात. हर कौन सी बीमारी आने दो, लोग हैदराबाद में वो जिंदा तिलिस्मात ही देते थे सामने. तो वैसा इनके पास कोई नहीं. हमेशा जो अपने पोर्टफोलियो के विषय रहते हैं, ठीक है, एक आधा बार हमारे स्टेट मिनिस्टर्स उनके तरफ से बोलेंगे, कोई बहुत ही अर्जेंट काम है, ठीक है, वो बोलेंगे. लेकिन हमेशा सारी बात नड्डा साहब को लगा देते हैं. वो नड्डा साहब हर चीज का वो निभाते हैं. और उसके बाद अब जितेंद्र सिंह आए, हर चीज को उनको आगे करते हैं. और ये सब क्या है, ये सब जिंदा तिलिस्मात का काम कर रहे हैं. छोड़ो सर, 20 जुलाई की घटना के तुरंत बाद सरकार को देश के सामने पूरी सच्चाई रखनी चाहिए थी. लेकिन हैरानी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आज तक मैंने कहा पीएम या एचएम अपनी बात नहीं रखे, इसके बारे में रिग्रेट भी नहीं करे. रात के 12 बजे, रात के 10 बजे इंस्टाग्राम, उसमें ऐसा लेके बात कर रहे हैं. और क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे. अरे आपको तो मन की बात बोलने की आदत है, आपको तो हर बात में इंटरफेयर करने की आदत है, आपको तो पिछले सरकार को 100 बार गालियां देने की आदत है. कम से कम बच्चों को एड्रेस करने के लिए आपको समय नहीं मिला, रात के 12 बजे मिला. और दूसरे बात, धन्यवाद, धन्यवाद, वो भी रात के 12 बजे. थैंक यू फ्रेंड्स. ये नए नए शब्द उन्होंने प्रयोग किए, मैं तो हमेशा हिंदी में बोलते थे, हिंदी में बोलते थे. सर अरे कोई पार्लियामेंट्री नहीं है मेरा, क्यों दिखा रहे तुम कुछ नहीं उसमें अनुपर. सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूँ, लाठी चार्ज कराने के लिए आंसू गैस करने के लिए छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठी चार्ज का आदेश दिया, आंसू गैस का दिया और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया? न आप स्टेटमेंट दे सकते थे लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। नहीं होता साहब, अगर आदमी झूठ बोलता है तो एक बार उसका बाहर निकलना पड़ेगा बंटवाल। तो इसीलिए आपके लोग आए, सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीआरपीएफ एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अच्छा अच्छा, मुझे मालूम है। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सवालों का जवाब अगर उनके पास नहीं है, अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहाँ कर, वो सदन में आके ही देना, मैं बाहर पूछ रहा हूँ थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए। और खासकर इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये उसके जिम्मेदार है जो चीजें मैं आपके सामने रखा। अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए और दूसरे बर्खास्त करना चाहिए। यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम में छात्रों पर हुई बर्बरता पर भी केंद्र सरकार चुप क्यों है? बिहार में AK-47 का इस्तेमाल जिस पर हुआ तो आतंकवादी नहीं छात्र था, छात्रों पर दमन हुआ, उनको जेल भेजा गया, FIR हुआ पर किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। क्या सरकार को बच्चों पर हुई इस बर्बरता को लेकर जरा भी पछतावा नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है? और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो काम हुआ, जिस तरह शिक्षा मंत्री जी इस्तीफे के बाद संसद के परिसर में बहुत पहुंचे, तो सत्ता पक्ष ने उनका जैसा स्वागत किया कि कारगिल युद्ध में जीत के आए जैसा उनकी स्वागत, उससे यह संशय संदेश यह है कि आप नाकामियों का भी उत्सव मनाते हो। आप नहीं मानते नड्डा साहब, दिल से आप नहीं मानते, क्या मानते हैं? इस सदन के मुख्य द्वार पर जो मंत्री राजीनामा दिया, जिसके खिलाफ ये सब चार्जेस थे, क्या वो ऐसा अपना क्या बोलते हो, हाँ, वो सब मुकुट पहन के शाल डाल लेके हंसते हुए? अरे तुम तो नाराजी व्यक्त करना, क्योंकि मैंने ऐसी गलती की, बच्चों को मारने पीटने लगा तो इसलिए ये ऐसी हालत मेरी हो गई, ये पश्चाताप करने के बजाय आपने जो ये अपना जलसा मना रहे। और दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, जब जंतर मंतर पर एक महीने से ज्यादा समय तक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, तब सरकार ने संवाद का रास्ता क्यों नहीं चुना? एक मंत्री के इस्तीफे के शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल दी, यानी एक मंत्री को इस्तीफा देता है उससे पूरे व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था बदलती, ऐसा मैं तो नहीं मानता, क्योंकि की वो एक कारण है, लेकिन इसको अगर आपकी सिस्टम वही रहेगी, आपका प्रयास वही रहेगा, तो निश्चित रूप से आप इसको सुधार नहीं सकेंगे। अब मंत्री तो गए, वो बात और है, लेकिन इसको सुधारने की कोशिश आप अभी भी नहीं कर रहे। सर उल्टा, हमेशा उनकी आदत है हम जो बोलते हैं उसका उल्टा करना। अगर इंस्टीट्यूशंस वही रहेंगे, एनटीए वैसी ही रहेगी, एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं बदलेगा और जवाबदेही तय नहीं होगी, तो कुछ महीनों के बाद फिर कोई नया पेपर लीक होगा और हम फिर इसी सदन में यही बहस हम लोग करते रहेंगे। क्योंकि पेपर लीक के बारे में आपने जो बिल रखा वो एक तरफ है, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या करें वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन आप सिर्फ लोगों को आपको रोकना है। सर सभापति जी, सरकार की नाकामी के सबसे ताजा मिसाल नीट यूजी 2026 है, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र बैठे थे, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी और बाद में पता चला कि परीक्षा से लगभग 15 दिन पहले बाजार में पेपर घूम रहा था। जांच में पता चला कि शिक्षा तंत्र में घुसा एक संगठित नेटवर्क नासिक, सीकर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार, केरला और उत्तराखंड तक ये फैला हुआ था। गिरोह खुलेआम काम कर रहा था, पर सरकार सोई हुई थी। क्या आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है? क्या आपके पास आईबी नहीं है? क्या हर स्टेट आपके हर जगह तो डबल इंजन है, सरकार है, डबल इंजन सरकार, क्या वो लोग इंफॉर्मेशन नहीं देते? क्या आप कलेक्ट नहीं करते? तो समय नहीं है सर, है सब व्यवस्था उनके पास, लेकिन समय नहीं, इसको सुलझाने के लिए समय नहीं, उसीलिए वो ऐसा हुआ। मैं पूछता हूं कि आपके केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। सभापति जी, ये कोई पहली नाकामी नहीं है, 2015 से लेकर 16, 21, 24 और 2026 तक नीट बार बार पेपर लीक और गंभीर गड़बड़ियों के आरोपों से घिरता रहा, हर बार मोदी की गारंटी फेल होते गई, हमेशा बोलते रहे मैं देखूंगा, इस बार नहीं होने दूंगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कहां है कड़ी से कड़ी सजा? तो कड़ी तो टूट गई, लेकिन सजा किसको भी मिली? सर आज सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की बातें करती है, लेकिन उसका अपना रिकॉर्ड क्या है? 2024 नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी को क्लीन चीट मिल गई है, जिनका नाम अभी हमारे जयराम रमेश जी ने लिया, मुखिया लिया, तो क्या किया साहब? उसको नाम मालूम है, जो आदमी किया वो भी मालूम है, डालना उसको
2: पार्टी भी मालूम
5: है। पहले तो बोलते थे छोटी मोटी चीज को, अगर डी नोटिफिकेशन क्या है वो डिमोनेटाइजेशन में अगर मैं विफल हो जाऊंगा तो 15 दिन के अंदर मैं नहीं करूंगा, मैं चौराहे पे अपने आप को लटका देना, मेरे फांसी डाल, ये उन्होंने कहा, मैं मजाक से नहीं कर रहा, आप ही के बात है, लगाओ ना इसको, जो आदमी किया आपको मिला है, आपके हाथ में है, जो आपको उसको क्लीन चीट दे रहे हैं, जो मिलता है उसको छोड़ रहे हैं और आपका अचीवमेंट जीरो है। किसी को शिक्षा अब तक नहीं हुई। तो सर 2026 मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई समय पर पेश तक नहीं होती नहीं हुई, और पिछले दशक में केंद्र और राज्य की कम से कम 152 परीक्षाएं पेपर लीक के शिकार हो गए। और
9: खड़गे जी
5: आज तक
9: हाउ मच मिनट्स मोर यू वांट
5: लीक के मामलों में सर
9: हाउ मेनी मोर मिनट्स यू वांट बिकॉज टाइम इज ओवर आई एम जस्ट आस्किंग
5: आई वांट सर यू कैन यू कुड आस्क मी हाउ मेनी मोर आवर्स यू वांट इंस्टेड ऑफ मोर
9: That again, that is correct, but we cannot sit endlessly.
5: Sir, I want, I will finish another half an hour. आज तक पेपर लीक के मामले में किसी को सजा नहीं हुई। जब जांच और जस्टिस का यही हाल हो तो केवल कानून में कड़ी सजा लिख देने से न्याय नहीं मिलेगा। हर लीक लाखों छात्रों को यह संदेश देती है कि उनकी मेहनत की सरकार की निगाह में कोई कीमत नहीं है। इसका सीधा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और पड़ता है, और मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 125,000 छात्रों ने आपकी सरकार की नाकामियों के वजह से सुसाइड कर लिए है। सर, सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की जगह हर बार केवल डैमेज कंट्रोल और हेडलाइन मैनेजमेंट की किया है। देशव्यापी छात्र आंदोलन के दबाव के बाद 12 साल में पहली बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ, और एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाने का दावा किया। लेकिन सर, इसमें मैं पूछ रहा हूँ, 47 में कम से कम 15 जगह खाली है और बाकी के तो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। अब कौन किसको निकाले आप, कहाँ है 47 लोग? तो ये सब दिखाने के लिए कहने के लिए मत करो, लोगों के दिल जीतने के लिए करो। ये महत्व का है, और बच्चों की हिफाजत करने के लिए करो। सर, सरकार मानती है कि दोबारा परीक्षा करा देने की पेपर लीक का समाधान है। नीट 2026 री एग्जामिनेशन में 2,00,000 से अधिक छात्र शामिल ही नहीं हो सके। छात्रों की तुलना में लगभग दोगुनी छात्राएं परीक्षा से वंचित रही। कम समय में दोबारा परीक्षा ने आर्थिक रूप के कमजोर परिवारों पर आवास, ट्रैवल और अतिरिक्त खर्च का भारी बोझ डाल दिया। सर, करोड़ों छात्र अनिश्चितता में जी रहे हैं। परीक्षाएं टलती है, पेपर लीक होते हैं, नतीजे देर से आते हैं और भर्तियों का वर्ष तक अटकी रहते हैं। नतीजा ये होता है कि युवाओं का करियर रुक जाता है, कई उम्मीदवारों की उम्र सीमा निकल जाती है। इसीलिए हमारी मांग है कि सभी परीक्षाओं के लिए एक कानूनी रूप से टाइम बाउंड एनुअल कैलेंडर बनाया जाए, ताकि सरकार भी समय सीमा के प्रति जवाबदेह हो और छात्रों का भविष्य अनिश्चितता से भरोसे से न रहे। सर, मैं और एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है इसके बारे में कि इस शिक्षा व्यवस्था की बीमारी का केवल एक लक्षण है। हर 10 बच्चों में से लगभग 2 बच्चे 10वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं, और कक्षा 12 तक आते आते 10 में से लगभग 4 बच्चे रहते हैं यानी इससे आप अंदाजा लगाइए, 10 में से 4 बच्चे अगर हाई स्कूल तक जाते हैं तो क्या इस शिक्षण का वैल्यू है। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो 355 रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 लाख शिक्षकों के पद खाली है, सर 10 लाख शिक्षकों के पद खाली रख के आप अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं।

0: खाली होने तक बैठे हैं। और दूसरी चीज, जब कक्षाओं में शिक्षक ही नहीं होंगे तो कोई भी शिक्षा नीति सफल नहीं होती। आप विकसित भारत की बात करते हैं पर 10 लाख खाली पदों को भरने के लिए कदम नहीं उठाते। सर, चुनौती हमारे शैक्षणिक संस्थानों की ऑटोनॉमी और एकेडमिक फ्रीडम का लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं होती, वे नए विचारों, साइंटिफिक टेंपर, शोध, स्वास्थ्य, बहस के केंद्र होते, तो वे संकीर्ण सोच, अंधश्रद्धा या किसी एक विचारधारा को थोपने की जगह नहीं होती। लेकिन मोदी साहब आज आरएसएस के लोगों में उसको भर्ती करके वाइस चांसलर आरएसएस पूछ पूछ के करते हैं, प्रोफेसर्स की भर्ती, आरएसएस के लोग होना, अरे उसको पढ़ना आता है क्या नहीं, या वो एक्सपर्ट है क्या नहीं। दूसरे कौन के कोई लड़के नहीं है, कोई प्राध्यापक नहीं है, सिर्फ आरएसएस अटैच्ड लोग विश्वविद्यालय में भर्ती होते हैं। और वाइस चांसलर्स हर यूनिवर्सिटी में वो आरएसएस के लोगों को ही भरते हैं। और इससे क्या हो रहा है, अच्छी सरकार की छत्ती अच्छी नहीं बन रही है। करीब
1: पोटारी
0: कमीशन,
1: प्लीज सर,
0: पोटारी कमीशन ने यह कहा कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, लेकिन आज हम 3% खर्च कर,
1: प्लीज
0: इस यानी 6% खर्च करना ये रिपोर्ट कहता है, लेकिन सरकार अब तक 3% खर्च कर रही है। इससे शिक्षण का सुधार होता है, बच्चों को शिक्षा शिक्षक मिलते हैं, अरे थोड़े तो आप इसे ध्यान दो ना। और दूसरी चीज, इसी का नतीजा है कि शिक्षा एक बड़ा कारोबार बन चुका है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सब खुल रहे हैं, उसको उसके वजह से गरीब के बच्चे तंग और तबाह हो चुके हैं। आज देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 70,000 से ज्यादा है, जिसमें करीब 4,50,00,000 छात्र दाखिला लेते हैं। लेकिन SC ST के बीच एनरोलमेंट आज भी राष्ट्रीय औसत से एवरेज से कम है। डिसेबिलिटी वाले छात्रों की मौजूदगी 0.12 है। सभापति जी, ये उस सोच का सिंबल है जो शिक्षा को सबका अधिकार नहीं बल्कि कुछ लोगों का विशेष अधिकार मानती है। सरकार की नीतियां बार बार उस मनुवादी सोच की याद दिलाती है जिसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। और वहां पर मैं संस्कृत तो उतना ठीक ढंग से पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसका ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ा के अच्छा ओरिजिनल टेक्स्ट के लिए लो बुक लो, मैं उसका ट्रांसलेशन ये पढ़ो इसमें आपको, अरे आपको ये मनुस्मृति है, पढ़ो इसको, मैं देता हूँ मैं आपको। तो इसीलिए
1: सर, योर मेंबर इज शाउटिंग,
0: आप इतना मेरे को टाइम दे रहे, धन्यवाद करने के बाद इंटरफियर कर रहे उनको। सर, आप भी सुनने लायक है, आपको भी सुनना जरूरी है, क्योंकि
1: आई कैन गिव यू मोर टाइम ऑल्सो, बट यू डोंट लाइक लेट नाइट स्पीचेस, दैट्स व्हाई आई वांट टू कटाइल इट।
0: सर।

0: 1 मिनट सर, अरे उस विधायक की बात ही कर रहा हूँ, हर चीज आपको बताया, नंबर बताया, टीचर्स के नंबर बताया, सिलेबस बताया, और एक बात बता दो, आप शिक्षा में सुधार ला लीजिए, सबको समान और न्यायपूर्ण शिक्षा देंगे। और आपका ये भी कहना है कि जो विश्वविद्यालय है उसमें अच्छे अच्छे टीचर्स डालना है, अच्छे वाइस चांसलर आना है, लेकिन उसमें ये भी आ रहा है, सिलेबस जो बदल रहे आप उसमें ये भी आ रहा है, ये क्या है, शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाए, वेद के अक्षर का उच्चारण करने से, सर वेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए, तथा वेद वेद मंत्र धारण करने पर उसका शरीर काट डालना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है।
1: मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मनुस्मृति हैज टू डू विद डिसेबिलिटी, प्रोमो वेदर दिस मनुस्मृति इज हैविंग एनीथिंग टू डू विद
0: डिसेबिलिटी। आरएसएस सिलेबस, This is coming in the university, high school, all that. Sir,
1: please conclude your speech, please.
0: मैं आपसे
1: मैं
0: आपसे
1: प्लीज कंक्लूड योर स्पीच प्लीज यू टेक योर सीट, आई एम कमिंग टू हिम यू प्लीज टेक, नो यू प्लीज टेक योर सीट, आई एम गोइंग टू कॉल दिस नॉट करेक्ट, आई एम गोइंग टू कॉल द लीडर ऑफ द हाउस यू प्लीज टेक योर सीट।
0: आज के आधुनिक युग में रखने वाले भी हमें दिखते हैं, उनके पैरों का दुनिया क्या सोचती होगी। सभापति जी, यूपीए सरकार ने हर
1: लीडर ऑफ
0: सोनिया गांधी जी के
1: जी प्लीज कंट्रोल,
0: यूपीए सरकार ने कंपल्सरी एजुकेशन के लिए और राइट टू एजुकेशन के लिए,
1: यू आर अ मिनिस्टर, यू प्लीज टेक योर सीट, आई एम गोइंग टू कॉल द लीडर ऑफ द हाउस, यू प्लीज टेक योर सीट। खड़गे जी प्लीज कंक्लूड।
0: ऐसे सोच वालों को निकालना चाहिए। सभापति जी, यूपीए सरकार ने हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन ये लोग अधिकार छीन ले रहे हैं। और मैं इस
1: कंक्लूड, खड़गे जी प्लीज कंक्लूड, हम ऑलरेडी 15
0: आयोग ने एक ही परीक्षा व्यवस्था बच्चों को सीखने के बजाय रखाओ पास होने
1: जोर देने
0: सोचिंग
2: मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया
1: है माननीय
2: और विपक्ष के नेता ने
1: I asked them to sit. Why you are shouting? When your leader is speaking, also you are shouting.
3: सभापति जी, जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का भी वातावरण
1: अशांति का जयराम जी दिस इज नॉट करेक्ट. When the LOP was speaking, I asked them to sit. When the leader of the house is speaking, you should listen to him.
3: अशांति का वातावरण पैदा होता है. हम सब लोग जिम्मेवार सदस्य हैं. मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने कहा है, जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है. और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करें. ये ओरिजिनल नहीं है. ये मैं निवेदन करूंगा इस पर प्रकाश डालने के लिए सुधांशु जी जरा 2 मिनट बोले.
4: सर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा है, मैं यहां ऑब्जेक्टिव सर सुनिए.
1: सुधांशु जी, we will look into it.
4: One minute, listen to me.
1: If this is not authenticating that book, whatever he said about Manusmriti will not go into the records. You understand? You are authenticating.
4: I will authenticate what. खड़गे जी है सेठ. सर, जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं. मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया. उन्होंने सर एक बार सर पूरी बात ले जाता हूं सर, 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया. चापुतला व मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है. और सर मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हुवर शूद्रास चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 उन्होंने लिखा है, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक शूद्रास. बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स उस पर लिखा है, देयर वाज नो अनटचेबिलिटी मनुजरा. सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है. और जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला सर मैं कहना चाहता हूं,
1: डू यू नो अबाउट
4: विलियम जोन से पहले की सर, उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है, मसीह अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है, जहांगीरनामा अवेलेबल है, तजुके बाबरी अवेलेबल है, फतवा ने फिरोज शाही अवेलेबल है, तबा के नासरी अवेलेबल है. और सुनिए सर, तहकीक वही अवेलेबल है सर, मगर वही अवेलेबल नहीं. इसीलिए मैंने कहा I want authentication from
1: original text. Are going to speak at the stage?
4: Are you angry?
1: How many of you are going to speak?
4: No text available.
3: एक बात बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूँ
5: तिवारी,
3: आज
5: तिवारी जी वन मिनट, व्हेन यू आर स्पीकिंग, व्हेन एलओपी स्पीकिंग, ऑल योर मेंबर्स आर स्टैंडिंग ऑल द टाइम।
6: नहीं नहीं, सब बैठ गए,
5: यू शुड हैव सम डिसिप्लिन। When I am asking him to speak, you are shouting.
6: सर एक मिनट बस, मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध है सर,
5: प्लीज आई विल कम बैक टू।
6: माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्वयं स्वमेव नहीं बोला है, एक स्टम्पोल नहीं बोला है, उन्होंने अपने समर्थन में परिमल प्रकाशन पब्लिकेशन नाम है और ये किताब इनके कार्यकाल में छपी है, चल रही है, प्रतिबंधित नहीं है। तो अगर ये दिखा रहे हैं तो गलती इनकी है।
5: आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू दिवाली जी, नो, आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द बुक। What I want to know from you is whether you are Gargaji is authenticating that book.
7: Yes.
5: You are not authenticating. Then why you are quoting from that book? That is not correct.
6: मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि 12 साल से इनकी सरकार।
5: Honorable Leader of the House. Yes.
2: No, only one thing. Whether he is authenticating it or not. If he is authenticating it, please authenticate. I want original text of Manu Smriti. Original text before the British time.
5: Trivedi ji, you please take your seat.
2: Original text before the British time.
5: Trivedi ji, when original text on his legs, why you are shouting?
2: Original text. Before the British time.
5: Nobody can authenticate that text. Why you are quoting him? So whatever has been quoted from that book will get expunged. And now I request Sriman Brijlal ji to deliver his speech. No, you please take your seat. You are going to get your turn. Your name is there, yes, 4. I count only the second. We have to conclude this debate. You can say anything. You can say all your views when... No. You can say all your views. Your number is there as 4. I just called the number 2. Let us have the smooth discussion, please. Yes.
8: बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूँ आपका और अपने पार्टी लीडरशिप का जिन्होंने पार्टी की तरफ से मुझे डिबेट शुरू करने का मौका दिया है। आज इस मौके से ना केवल मेरा समाज एसटी खुश हो रहा है बल्कि लाखों सुरक्षा कर्मी भी खुश हो रहे हैं जिनके साथ मैंने 37.5 बरस
5: I want a smooth, fair discussion and debate. You please conclude, don't quote unnecessarily from other books which you cannot authenticate. When you cannot authenticate, please don't quote.
0: No, one minute.
5: You are authenticating. Who is authenticating?
0: Sir.
5: Who is authenticating? Jayaram Ramaji are authenticating.
7: We are authenticating.
5: You are one man. Who is speaking? He should authenticate. Let him authenticate. He is not authenticating. Sir. Why you are worried?
0: Sir.
5: Please be specific to this subject. You want to improve the law, you tell me something. So that I can request the treasury bench to include that. Kindly, we all are worried about paper leakage. Sir. That is affecting the future of every youngster. That is the feeling of everyone. You please
9: you please be positive, constructive, and you put your arguments.
0: Sir, देखिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं जो बनारस यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुई किताब को रेफर करते हुए और गौतम ऋषि ने जो बोला है वो मैं यहाँ पर रखा।
9: There are so many books from so many universities. Whether we can authenticate everything?
0: We can.
9: You please, we cannot now. So I am requesting you, you please stick on to the subject of the bill.
0: सरकार का ये
9: please take your seat.
0: और कारोबारी माहौल तैयार करना है जो निवेश को आकर्षित करे। निवेश तभी देश के युवाओं के लिए सार्थक होगा जब वो बड़े बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करे। इसीलिए हम मांग करते हैं कि सरकार संसद के सामने एक नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी पेश करे। इसमें यह स्पष्ट किया जाए कि भारत में ऐसा नीति और कारोबारी वातावरण कैसे बनाया जाना और निवेश एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो किस ढंग से करना, ये सब चीजें उसमें होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार में अब तक 30 लाख से भी ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी है और वो पब्लिक सेक्टर हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट बैंकिंग ये सब सारी चीजें हो सकते हैं और अनएडेड स्कूल्स हो सकते हैं। हर जगह जो गवर्नमेंट मदद करती है वैसे इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, लेकिन 30 लाख वैकेंसी रहते हुए भी ये भर्ती क्यों नहीं कर रहे? व्हाई दे आर नॉट फिलिंग? क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट को जाता है, क्योंकि ये बैकवर्ड्स को जाता है, क्योंकि 50% वैकेंसी उनको जाता है। तो आप भर्ती नहीं करना चाहते और गरीबों के बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहते, ये मंशा आपकी है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, सैंक्शन पोस्ट, इसको तुरंत ही भर्ती करना चाहिए। ये मेरी तीसरी मांग है। और लास्ट में मैं आपसे कहूंगा और लास्ट में मैं ये कहूंगा
9: मल्लिकार्जुन खड़गे जी,
0: सर सीधी मेरी चार मांगे हैं। एक, देश में 1% एक फिक्स्ड एनुअल एग्जामिन कैलेंडर होना चाहिए। छात्रों को हर साल अनिश्चितता और देरी का सामना न करना चाहिए। और दूसरा, इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई पावर्ड कमेटी से स्वतंत्र जांच कराई जाए ताकि सच सामने आए और जवाबदेही तय हो। तीसरा, पब्लिक सेक्टर्स, गवर्नमेंट ये इंस्टीट्यूशंस में जो भी खाली जगहें हैं वो भर्ती करना चाहिए। और चौथा, लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं आ गई है, हमने बहुत से चीजें जो लाठीचार्ज हो गया सब चीजें हो गई, तो पहले ये सारी चीजें घटनाएं हुई है, औरतों को घिसेटते लाए, लोगों को मारे, बच्चों को मारे, इसका सब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके लिए तो मैं हाईकोर्ट में सुपरविजन भी होना चाहिए। सर, और एक किसान आंदोलन में किसानों के साथ तो आप चाहते किए, महिला पहलवानों का जंतर मंतर प्रदर्शन में सड़क पर घसीट के लाए, मणिपुर हिंसा हो गई, तो ये सब अब छात्रों पे बर्बरता हुई है। मैं आपसे विनंती करता हूं, ये सबके कारण और सब ये सूत्रधारी जो है जहां भी बैठे होंगे वो फौरन इस्तीफा दे। अमित शाह साहब होम मिनिस्टर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले,
9: राजीनामा दे,
0: तभी ये समस्या हम सुलझाएंगे और लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया इसीलिए आपको भी दूंगा, सब सुने उनको भी दूंगा।
9: श्रीमान ब्रिजलाल जी टू कंटिन्यू प्लीज।
10: धन्यवाद चेयरमैन सर, मैंने शुरू किया जैसे वैसे ही मेरे भाषण में इंटरप्शन हुआ है, तो अनुरोध करूंगा उसको शुरू से भी किया जाए। महोदय
9: यस प्लीज,
10: मुझे पहले भी एक मुझे डिबेट करने का शुरुआत मिला था जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बना था उस पर मैं जो चेयरमैन की हैसियत से मुझे 31 मिनट बोलने का यहाँ मौका दिया गया था, उसके लिए मैं आभारी हूँ अपने लीडरशिप का। महोदय आज का जो विषय है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मेंस अमेंडमेंट बिल 2026, ये बिल जो 2024 में एक्ट बना है उस एक्ट के उसमें परिवर्तन करने के लिए लाया गया है, और इसका उद्देश्य है जो 24 में बने अधिनियम में संशोधन करके परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जो बहुत ही प्रभावी हो। नंबर दो, सभापति महोदय इस कानून का उद्देश्य लोगों की और जो संगठित गिरोह हैं संस्थाएं हैं जिसका विवरण हमारे मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी दे चुके हैं, उनका अगर वो करते हैं तो उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करने का मतलब है। दूसरा महोदय फास्ट ट्रैक कोर्ट, हमारे सरकार की नीयत बहुत साफ है कि इस पर प्रभावी कार्रवाई होने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है। इसमें राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी सेशन जज को फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए नामित कर सकते हैं जो इसकी सुनवाई करेगा। और महोदय जब चार्जशीट दाखिल होती है पुलिस की 2 महीने में प्रोविजन है महोदय, 2 महीने में, और उसके बाद चार्जशीट के 3 महीने में जजमेंट। महोदय इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो ये व्यवस्था दी गई है BNNS अब में ऑलरेडी आ गया है कि इसमें जो डिफेंस लायर 2 से ज्यादा अर्जेंटमेंट नहीं ले सकता। इसमें महोदय व्यवस्था की गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 1 से अधिक जो इसको त्वरित रूप से इस केस का प्रोसिक्यूशन कर सके। इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई है STF स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स महोदय आमतौर पर जो विवेचनाएं होती है एक पुलिस अधिकारी पूर्व पुलिस अधिकारी की हैसियत से मैं बता रहा हूँ, उसमें एक इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर या DSP जांच करता है, लेकिन जब STF बनती है तो एक सीनियर अफसर के उसमें एक समिति बनती है, एक कमिटी बनती है जिसमें कई इन्वेस्टिगेटर होते हैं, फोरेंसिक साइंस होती है, वो सब मिलकर जिससे विवेचना में कोई कमी ना रह जाए। महोदय जब BNNS बना तो उसमें एक प्रोविजन किया गया कि हर जिले में मोबाइल लैब होगा, फोरेंसिक साइंस लैब होगा, जो मैं अमित शाह जी की मैं तारीफ करना चाहता हूं जिन्होंने प्रत्येक जिले में मोबाइल लैब की व्यवस्था की कर दी है। महोदय इसके अलावा केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात मैं बता चुका हूं, और जब फैसला हो जाएगा तो फैसला होने की अपील हाई कोर्ट में होगी और उसमें 2 जज होंगे जो अपील की सुनवाई करेंगे और 3 महीने में वो अपील का निस्तारण करेंगे। इसकी मंशा यह है कि जो ये नकल करने की जो ये शुरुआत हुई संगठित गिरोह बने उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जा सके। महोदय इसमें अनुचित साधनों में शामिल लोगों को कम से कम 5 साल 10 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना, और इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इससे जुड़ते हैं अगर उनके द्वारा कोई गलती होती है तो उनको सजा के अलावा, पहले 1 करोड़ का जुर्माना था उसको 5 करोड़ कर दिया गया है, और इसके अलावा जो उनको डिबार किया जाता था ब्लैकलिस्ट 4 साल से बढ़ा करके उसको कर दिया गया 8 साल। ये महोदय इसके प्रोविजंस हैं। अब मैं आता हूं अभी हमारे गृह मंत्री जी पर बहुत से लांछन उछाले गए, और उनको कहा गया उनको बर्खास्त करिए। महोदय अमित शाह जी वो गृहमंत्री हैं देश के पहले जिन्होंने सीमाओं पर जाकर जवानों से बात किया। महोदय मैं पुलिस अधिकारी रहा हूं। महोदय वी हैव लेड द फोर्स फ्रॉम फ्रंट एज ए होम मिनिस्टर ही हैज लेड द फोर्स फ्रॉम फ्रंट। जाकर सीमाओं पर बात करते हैं बीएसएफ के जवानों से सीआरपीआई टीबीपी के जवानों से और उसी का परिणाम है सभापति महोदय कि आज आतंकवाद खत्म हो चुका। उसी का परिणाम है नक्सलवाद खत्म हो गया। इनके कार्यकाल में महोदय क्या होता था मध्य प्रदेश में इनकी पूरी लीडरशिप मार दी गई। माननीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था ये लेफ्ट विंग टेररिज्म विकास के लिए देश के लिए सबसे खतरनाक है।
11: एंटी पेपर लीक बिल पर इस समय राज्यसभा में चर्चा हो रही है। अब से कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि देश में एक फिक्स्ड परीक्षा कैलेंडर होना चाहिए, एक साल के लिए एक फिक्स्ड परीक्षा कैलेंडर होना चाहिए। गड़बड़ियों को हाई पावर्ड कमिटी से जांच कराई जानी चाहिए। हम आपको सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कौन कौन सी बातें कही हैं।
0: देश में एक फिक्स्ड एनुअल एग्जामिन कैलेंडर होना चाहिए। छात्रों को हर साल अनिश्चितता और देरी का सामना न करना चाहिए। और दूसरा, इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई पावर्ड कमेटी से स्वतंत्र जांच कराई जाए ताकि सच सामने आए और जवाबदेही तय हो। तीसरा, पब्लिक सेक्टर्स, गवर्नमेंट ये इंस्टीट्यूशंस में जो भी खाली जगहें हैं वो भर्ती करना चाहिए। और चौथा, लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं आ गई है, हमने बहुत से चीजें जो लाठीचार्ज हो गया सब चीजें हो गई, तो पहले ये सारी चीजें घटनाएं हुई है, औरतों को घिसेड़ते लाए, लोगों को मारे, बच्चों को मारे, इसका सब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके लिए तो मैं हाईकोर्ट में सुपरविजन भी होना चाहिए सर। और एक किसान आंदोलन में किसानों के साथ तो आप चाहते किए महिला पहलवानों का जंतर मंतर प्रदर्शन में सड़क पर घसीट के लाए, मणिपुर हिंसा हो गई, तो ये सब अब छात्रों पे प्रबलता हुई है। मैं आपसे विनती करता हूँ ये सब के कारण और सब ये सूत्रधारी जो है जहाँ भी बैठे होंगे वो फौरन इस्तीफा दे। अमित शाह साहब होम मिनिस्टर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, राजीनामा दे, तभी ये समस्या हम सुलझाएंगे और लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे।
11: कुछ सुझाव हैं, कुछ आरोप हैं और इसके बीच अभी चर्चा राज्यसभा में चल रही है। इस बीच दिल्ली में 20 जुलाई को हुए सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान संसद की सुरक्षा को कितना खतरा था यह अब पता चल रहा है। नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिनसे यह साफ दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी संसद के कितने करीब पहुंचने में कामयाब हो गए थे।

0: ये 20 जुलाई की वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि उस दिन बड़ा हादसा होते होते बच गया। 5 सीसीटीवी की तस्वीरें आज तक के पास हैं और हर तस्वीर सबूत है कि उस दिन संसद तक प्रदर्शनकारी पहुंचने ही वाले थे। रेल भवन, संसद के बाहर के सेल्फी पॉइंट, पार्लियामेंट एनेक्सी, इन 3 अहम लोकेशन तक प्रदर्शनकारी तकरीबन पहुंच ही गए थे जब पुलिस का एक्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों को वहां से बलपूर्वक हटाया गया।
1: जो प्रोटेस्टर हैं वो यहाँ आपको सामने की तरफ दिखाई देंगे। ये देखिए, अगर ये आप देखेंगे तो ये पार्लियामेंट का गेट है, अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये गाड़ी आपको जाती हुई दिखाई देगी। ये वॉल है, ये संसद भवन की ये वॉल है। ये सब संसद भवन के आसपास की तस्वीरें हैं और बड़ा खुलासा ये इन सीसीटीवी के जरिए कि संसद भवन से महज 50 से 100 मीटर की दूरी तक प्रोटेस्टर 20 जुलाई, ये तस्वीर बहुत डराने वाली है 20 जुलाई की। ये पार्लियामेंट गेट का गेट है, प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच यहाँ झड़प हो रही है। पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आपको फिर से दिखाएंगे दोबारा तस्वीरें तो पार्लियामेंट के गेट से बेहद करीब तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है। ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहे थे, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है।
0: अब एक एक कर इन सीसीटीवी तस्वीरों को देखिए। तस्वीर नंबर 1, रेल भवन के करीब प्रदर्शनकारी। ये उस गोलंबर की तस्वीर है जहां एक किनारे में रेल भवन है। तस्वीर में आपको सैकड़ों प्रदर्शनकारी दिख जाएंगे। यहां से 100 मीटर की दूरी पर संसद भवन है, यहां पर आपको सुरक्षा बलों की तैनाती भी दिख जाएगी, लेकिन वो किस लिए यहां तैनात है ये समझ पाना मुश्किल है। तस्वीर नंबर 2, पार्लियामेंट एनेक्सी के करीब प्रदर्शनकारी। इस सीसीटीवी तस्वीर में आप सुरक्षा बल का भारी जमावड़ा देख सकते हैं। इस तस्वीर के दाएं हिस्से में पार्लियामेंट एनेक्सी है, जहां रोजाना कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। एनेक्सी से संसद भवन ज्यादा दूर नहीं है। तस्वीर नंबर 3, सेल्फी पॉइंट के करीब प्रदर्शनकारी। आज तक के पास मौजूद सीसीटीवी से साफ है कि उस दिन सेल्फी पॉइंट पर पुलिस और आरएएफ का भारी जमावड़ा था, लेकिन बावजूद इसके संसद भवन के करीब भारी तादाद में प्रदर्शनकारी पहुंचने में कामयाब हो गए। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी और प्रदर्शनकारियों को संसद भवन तक कैसे पहुंचने दिया गया। खतरा सिर्फ 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर ही नहीं था, ये भी पता चला है कि सीजेपी के प्रदर्शन में आपराधिक छवि के लोग भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक सीजेपी प्रदर्शन में शामिल आपराधिक छवि वाले 2873 लोगों की पहचान की गई है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए इन लोगों की पहचान की गई। इनके नाम आपराधिक रिकॉर्ड और डोजियर में दर्ज हैं। ये राहत की बात है कि 20 जुलाई और सीजेपी का आंदोलन खत्म होने तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इससे दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: इस सब के बीच में अलग अलग राज्यों में पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी एक सच्चाई है, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी केवल विरोधी दल के राज्य में होने वाले पेपर लीक पर ही आवाज उठाती है और इस सब के बीच छात्रों का जो हित है वो मारा जाता है।
3: मेरी बात सुनिए, पेपर लीक को देखने का अपना अपना नजरिया है
4: कि पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए।
3: तेरा लीक मेरा लीक, तुम्हारे राज्य में हुआ तो धांधली, हमारे यहाँ हुआ तो चीटिंग।
5: में नो कैश नो फरमाइश, ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है पंजाब में पेपर लीक।
3: केंद्रीय शिक्षा मंत्री पेपर लीक में नप गए तो गैर बीजेपी शासित राज्यों के पेपर लीक पर चुप्पी क्यों? जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है बीजेपी पेपर लीक मुद्दे उठाने लगी है।
6: एग्जाम हो गया वो उसमें कोई अनियमितता नहीं थी, इसके बावजूद भी हमने छात्रों की बात मानी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, हम ये कह रहे हैं कि कंपनसेशन देंगे। आप में यदि हैसियत हिम्मत है तो चलिए, नहीं तो आप लीपापोती कर रहे।
3: पंजाब से झारखंड तक पेपर लीक और धांधली के मुद्दे गरमाए हुए हैं।
7: का इस्तीफा हो सकता है तो फिर इन मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं, ये धर्मेंद्र प्रधान से तो बड़े नहीं है।
3: रांची में नौजवानों ने चेतावनी दे दी है, पंजाब चुनावी राज्य है इसलिए नजर इस पे भी है।
8: पे देना पड़ेगा। कांग्रेस दोहरी राजनीति करती है, दिल्ली में यहाँ पर बोलती है कि जांच हो, हम भी मांग करते हैं कि कांग्रेस झारखंड में उतर करके यहाँ से खड़गे जी जाए, सोनिया गांधी जाए, राहुल गांधी जाए, झारखंड की जनता इनको देखना चाहती है, पूछना चाहती है कि तुम दिल्ली में जाके नंगा नाच करते हो, अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को भड़काते हो, और झारखंड में तुम्हारे समर्थन से सरकार चल रही है, वहाँ पर तुम्हारा मुंह बंद क्यों है?
3: क्या सुविधा के अनुसार पेपर लीक की परिभाषा या निरपेक्ष भाव से लीक को लीक कहा जाएगा? क्या झारखंड की धांधली पंजाब पहुंचते पहुंचते चीटिंग बन जाती है? क्या यूपी का पेपर लीक लीक नहीं है? कांग्रेस पंजाब के पेपर लीक पर तो बोलती है, लेकिन झारखंड पर चुप्पी साध लेती है।
2: पंजाब में फार्मेसी परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, यह आरोप बीजेपी का है। बीजेपी ने इसके लिए आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जाकर प्रदर्शन किया। अब यहीं पर दो नजरिए देखिए, जब नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर छात्र थे तब बीजेपी, आज देखिए आम आदमी पार्टी हमलावर है, अब केजरीवाल सन्नाटे में है, बीजेपी और कांग्रेस पंजाब सरकार पर हमलावर है।
4: से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए।
7: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो फिर इन मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं? ये धर्मेंद्र प्रधान से तो बड़े नहीं है।
5: पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ, 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में नो कैश नो फरमाइश, सिर्फ ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है। पंजाब में पेपर लीक, देयर वाज नो चीट नो पेपर लीक, ओनली चीटिंग चल रही थी जो कि रोक दी गई।
3: ये हंगामा बरपा है पंजाब के पेपर लीक पर। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी पेपर लीक आंदोलन की चिंगारी अब सियासी हो उठी है। वहाँ छात्र आंदोलन कर रहे थे, यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर बीजेपी ने धावा बोल दिया। मांग एक ही है कि पेपर लीक पर पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें।
9: आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में इस वक्त बीजेपी जो है वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंची है। चारों ओर अगर आप देखेंगे तो आपको बीजेपी कार्यकर्ता झंडे और पोस्टर बैनर के साथ पहुंचे हैं। पंजाब के जो शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग, हरजीत सिंह वैसा की जो इस्तीफे की मांग है वो यहाँ पर बीजेपी के द्वारा जो है वो की जा रही है।
3: बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि पंजाब में एक नहीं 6 से 11 बार पेपर लीक हुए हैं, छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया। जो सबसे लेटेस्ट पेपर लीक है वो फार्मेसी की परीक्षा का है।
4: चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अलग अलग दल जो है अरविंद केजरीवाल से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, और यदि वो बर्खास्त नहीं करना चाहते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि उनका त्यागपत्र लें।
3: दिल्ली में जब धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सीजेपी का धरना चल रहा था तो केजरीवाल खुद जंतर मंतर गए थे। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आंदोलन के समर्थन में इनकलाब कर रहे थे, लेकिन अब बारी पंजाब के पेपर लीक पर बोलने की आई तो सुविधाजनक सन्नाटा छा गया। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक साथ खड़े दिखते हैं। कांग्रेस की मांग है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाओ, फिर पंजाब से माफी मांगो, फिर विधानसभा में चर्चा करो।
7: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो फिर इन मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं? ये धर्मेंद्र प्रधान से तो बड़े नहीं है। और जब प्रदर्शन होगा फिर ये बच्चों को कहेंगे कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, ये विधानसभा घिराव हो गया, इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। तो फिर ये बच्चों के ऊपर जिस तरीके से केंद्र सरकार अब आरोप लगा रही है वो आरोप लगाए। हमारी मांग है भगवंत मान क्लैरिटी के साथ विधानसभा के इसके ऊपर चर्चा करें, माफी मांगे, और दो जो मिनिस्टर्स कंसर्न है उनसे इस्तीफा दें।
3: कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के घेरे में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि केजरीवाल पंजाब में चुप्पी क्यों साधे हैं, तो भगवंत मान ने उत्तर दिया कि जब पेपर लीक हुआ ही नहीं तो फिर इस्तीफा कैसे?
5: हमारे पास एक चीटिंग का मामला आया था पिछले दिनों, फार्मेसी का एक एग्जाम था, 11 बजे एग्जाम शुरू हुआ, 11:15 तक हमें पता चल गया कि कोई ब्लूटूथ वाले पेन से ना स्कैनिंग करके कोई बच्चा बाहर से अपने हेडफोन के जरिए कोई उनको करवा रहा था एग्जाम, मतलब आंसर बता रहा था। इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन लेके 10 स्टूडेंट और 11 बाहर के जो गैंग था उनको पकड़ के जेल में दे दिया। पेपर तो बिल्कुल सही हुआ। पंजाब में नो कैश नो फरमाइश, सिर्फ ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है पंजाब में पेपर लीक।
10: भगवंत मान दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक नहीं चीटिंग का मामला था, जिसे समय रहते ठीक कर दिया तो किसी के इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन इतने पर विपक्ष के हमले रुकने वाले नहीं है। बीजेपी ने भगवंत मान का एक पुराना वीडियो जारी कर दिया जिसमें वो पेपर लीक की बात कह रहे थे।
11: पंजाब में कल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टेट का, कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए और उनको ऐसी सजा मिलेगी दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करता।
10: पेपर लीक के मुद्दे को हर दल अपने हिसाब से देख रहा है। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुलकर मैदान में थी, पंजाब की बारी आने पर बहानेबाजी करने लगती है। बीजेपी पंजाब का लीक याद रखती है लेकिन महाराष्ट्र यूपी उत्तराखंड पर चुप्पी साध लेती है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
2: आखिर में एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, वंदे मातरम बिल जो है जो कल राज्यसभा में पास हो गया था, अब लोकसभा में भी ये पारित हो चुका है। लोकसभा में वंदे मातरम बिल पारित हो चुका है और अब लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ध्वनिमत से वंदे मातरम बिल लोकसभा में पास हो गया है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair.
15: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
14: Pure Ayurvedic Beauty.
16: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पापा।
5: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया
5: है। हाँ ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
7: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से,
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri, Hind Bade Aaram Se,
1: Punjab National Bank Bharose Ka Prateek.
2: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ पीपल, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड, देर इज वन कैटेगरी ऑफ पीपल कॉल्ड स्टूडेंट विद्यार्थी, जो विद्या का अर्थ ढूंढता है, एंड देन देयर आर द टू अदर कैटेगरीज विच आई विल नॉट नेम। बट दीज कैटेगरीज हैव नेचर्स, सो द स्टूडेंट इज नेवर स्कैर्ड ऑफ द ट्रूथ, ही लव्स द ट्रूथ, गोज टूवर्ड्स द ट्रूथ। स्टूडेंट नेवर यूजेस फोर्स अगेंस्ट समबडी एल्स, because he knows that that person's truth is different than my truth. The other category, they do not like the truth. They need an image. They need force. They need violence. Superficially, it looks that our students were upset because of exams. They were upset because of the education system. They were upset because they have to study hours and hours and hours, and then paper leaks. Some rich boy or girl pays 30, 40 lakh rupees, gets the paper, gets the job, and jo middle class ka gareeb student hai, imandar hai, वो बाईपास हो जाता है। तो दे आर अपसेट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, एंड आवर सिस्टम इज टेरेबल, इट्स टेरेबल, इट्स क्रूअल। लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज आर टेकन फ्रॉम द पुअरेस्ट पीपल, एवरीथिंग हैज बीन प्राइवेटाइज्ड, पेपर लीक्स, इन वन एग्जाम समथिंग हैपेंस, इन अनदर एग्जाम समथिंग एल्स हैपेंस। Some people are allowed re-exam, some people are not allowed re-exam. Rampant privatization means private companies are checking exams, wrong papers are going. It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings.

दौरान राज्यसभा में बरपा हंगामा। खड़गे के मनुस्मृति के हवाला देने पर बढ़की बीजेपी की माफी की मांग, कहा ऐसे बयान से फैलेगी अशांति।

0: संग्राम के बीच प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल सीसीएस की मीटिंग, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्री हुए शामिल, वैश्विक हालातों पर हुई चर्चा। बीस जुलाई को संसद से करीब 100 मीटर दूर तक पहुंच गई थी प्रदर्शनकारियों की भीड़। आज तक के पास पहुंचा सीसीटीवी की तस्वीरें, संसद भवन के गेट के करीब तक हुआ था बवाल। भारतीय हॉकी टीम की केसरिया जर्सी पर सियासत भड़की, प्रियंका गांधी बोली, बीजेपी कर रही है इतिहास बदलने की कोशिश। हॉकी इंडिया का बयान, टफ पर दिखने में दिक्कत इसलिए नीला रंग बदला गया।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो गुड।
0: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। दोस्ती का मुखौटा और दुश्मनी का साथ, अमेरिका से मदद की भीख मांगना और फिर उसी की पीठ में खंजर घोंप देना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि पाकिस्तान की सदियों पुरानी वो तस्वीर है, वो चेहरा है जो एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। याद कीजिए एबटाबाद का वो मंजर, जहां अपनी सैन्य अकादमी के नाक के नीचे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आतंकी ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज फिर उसी रास्ते पर निकल चुका है। अमेरिका से अरबों डॉलर का फंड ऐंठने वाले इस्लामाबाद से लेकर कल भी वॉशिंगटन को धोखा दिया और आज भी वो धोखा ही दे रहा है। पश्चिमी एशिया के युद्ध क्षेत्र में आई एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक चीन से ईरान को भेजी जा रही 400 आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल्स और रॉकेट लॉन्चर्स की खेप किसी और रास्ते से नहीं बल्कि पाकिस्तान से होकर ही ईरान पहुंची है। ये खबर सुनकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बार फिर पाकिस्तान अमेरिका के सामने वफादारी का झूठा नाटक करता रहा और अपने इरादों में आगे भी बढ़ता रहा, ईरान से सुलह में बिचौलिया बना रहा और दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले खतरनाक हथियारों की खेप अपने ही कॉरिडोर के रास्ते ईरान भेजता रहा। इससे पहले उसने अमेरिकी हमलों में ईरानी वायुसेना के जहाजों को बचाने के लिए अपने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस को भी खोल दिया था। और ऐसे समय में जब ईरान को परास्त करने के लिए अमेरिका को खत्म होती मिसाइलों की चिंता सता रही है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान अपनी जमीन से ईरान की जमीन पर चीन के खतरनाक रॉकेट पहुंचा रहा है। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप धोखेबाज पाकिस्तान और चालबाज चीन के हाथों अमेरिका को बर्बाद होते हुए देखते रहेंगे या कोई बड़ा कदम उठाएंगे। चीन पाकिस्तान के खतरनाक गठजोड़ पर रणभूमि की सबसे पहली रिपोर्ट, आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
3: अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी रॉयटर्स की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के खिलाफ युद्ध में बुरी तरह टूट चुके ईरान को फिर से खड़ा करने के लिए चीन और पाकिस्तान ने गुपचुप साजिश रची है। दावा है कि चीन की कंपनी के जरिए ईरान को कंधों पर रखकर दागी जाने वाली 400 आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइलें

0: हथियारों में इनकी गद्दारी का सच पहले ही बेनकाब हो चुका है। चीन और पाकिस्तान के इस नापाक गठजोड़ की खबर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची, तो वो भी हैरान रह गए।
1: Give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran.
2: Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. Yeah, please.
3: President.
2: And he's coming here, I think, on September 24th.
0: ट्रंप का ये बयान तब आया है जब वो मई 2026 में बीजिंग का दौरा कर चुके हैं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 सितंबर 2026 को अमेरिका के राजकीय दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन कूटनीति के पर्दे के पीछे चीन और पाकिस्तान मिलकर अमेरिका की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। पाकिस्तान का इतिहास अमेरिका से डॉलर खाकर उसी को धोखा देने का रहा है। जब जब अमेरिका ईरान का संघर्ष चरम पर पहुंचा, पाकिस्तान ने खुलकर और गुपचुप तरीके से ईरान की सैन्य मदद की। अमेरिकी मीडिया, सीबीएस न्यूज और सैटेलाइट तस्वीरों के सबसे बड़े खुलासे ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी थी। संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने रावलपिंडी स्थित अपने नूर खान एयरबेस पर ईरानी वायुसेना के टोही विमानों यानी RC-130 और परिवहन विमानों C-130 को छिपने की जगह दी थी। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के विनाशकारी हवाई हमलों से अपने सबसे कीमती सैन्य विमानों को बचाने के लिए पाकिस्तान को अपना सेफ हाउस बनाया, यानी अमेरिका का सहयोगी बनने का नाटक करने वाले पाकिस्तान ने अपनी धरती का इस्तेमाल अमेरिकी दुश्मनों को पनाह देने के लिए किया। और इस बार पाकिस्तान के साथ उसका मालिक चीन भी आ गया है। चीन की मिसाइलें और पाकिस्तान की सरजमीन, ये जोड़ी अब दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम छोटे छोटे दस्तों को दिए जा सकते हैं, जिन्हें कहीं भी छिपाकर अमेरिकी विमानों पर हमला किया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान का मकसद साफ है, ईरान के जरिए अमेरिका को उलझाए रखना। पाकिस्तान अमेरिका के पैसे और इमदाद पर पलता है, लेकिन जब वफादारी की बात आती है तो वो चीन की गोद में जाकर बैठ जाता है और अमेरिकी ताकतों के खिलाफ हथियार सप्लाई का जरिया बनता है। नूर खान एयरबेस पर ईरानी जहाजों को छुपाने के लिए चीनी मिसाइलों का रास्ता बनने तक पाकिस्तान की गद्दारी के सबूत अब पूरी दुनिया के सामने हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका अब भी पाकिस्तान की इस दोहरी चाल को नजरअंदाज करेगा, या फिर चीन और पाकिस्तान के इस नापाक गठजोड़ पर कोई सख्त और बड़ा एक्शन लेगा। आज तक ब्यूरो।
4: वैसे तो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं, और अमेरिका ये बात बखूबी जानता है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने आसिफ हुनी जैसे लोगों पर विश्वास किया। अब आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार चीन से ईरान को मिलने वाले वो घातक हथियार कौन से हैं जो इस समय पेंटागन से लेकर दुनिया भर के लिए, इसराइल तक के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं, सरदर्द बन चुके हैं। आइए आपको सबसे पहले बात करते हैं चीन की खतरनाक FN-16 मिसाइल के बारे में। इसकी खासियत क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये दरअसल इंफ्रारेड है और ऑल इसके अंदर सेंसर्स हैं, इंजन हीट होने को पहचान कर इस पर हमला कर सकता है, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट हो या दूसरे एयरक्राफ्ट उनकी हीट को ये टारगेट कर सकता है। टारगेट के पास पहुंचते ही धमाका होता है, विमान पर 80% ये कारगर है और मिसाइल पर 70% इसका अचूक निशाना है। ये आप मानिए कि ये मिसाइल क्यों खासियत है, क्यों दरअसल ईरान को इन चीजों की जरूरत हुई। दुनिया भर में ये विश्लेषण चल रहा था कि आखिरकार ईरान के पास ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है, कौन सी मिसाइलें आ गई हैं जिनसे वो अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट या उनके रेडार्स को, उनके आप ड्रोन्स को अटैक कर रहा है। अब आइए बताइए इसके मेन टारगेट क्या है। अमेरिकी टारगेट में A-10 थंडरबोल्ट है, कम ऊंचाई वाले ग्राउंड अटैक फाइटर जेट है जिनका इस्तेमाल अमेरिका अक्सर करता है उनके स्मॉल रेडार्स को एयरपोर्ट के आसपास अटैक करने के लिए। इसके अलावा AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर है, ये मुख्य अटैक हेलीकॉप्टर है अमेरिका का। इसका इस्तेमाल भी अमेरिका लंबे समय से ग्राउंड ऑपरेशंस में अपने मोबिलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए कहता है। ये है इसके मुख्य टारगेट। और आप मान के चलिए, हम बार बार कहते थे कि ईरान के पास ऐसी कौन सी काबिलियत है, कौन सी क्षमता है, दरअसल वो क्षमताएं के पीछे सीधे तौर पर चीन भी उसमें खड़ा था। अब इसकी खासियत क्या है, रडार वेब नहीं छोड़ती है, इंजन की गर्मी का पीछा करता है और उसे टारगेट को अचीव करता है। 80% तक इस मिसाइल का, आप QW-12 की बात कर रहे हैं, इसकी खासियत है ये दूसरी ऐसी मिसाइल है जो आप कह सकते हैं कि जो हवा में मार करने वाली, यानी जो उसकी रेंज है वो भले ही कम हो, 6 किलोमीटर के करीब इसकी रेंज होती है, लेकिन इसकी क्षमता ईरान के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को

0: सीधे तौर पर टारगेट करते हैं। सुपरसोनिक स्पीड है 6 किलोमीटर की दूरी और 4 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी 4 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होगा उसको ये निष्क्रिय कर देगा। और ये दोनों ही ईरान के डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करने के लिए मिसाइलें दी जा रही है। खासियत क्या है, कम ऊंचाई के ड्रोन हो क्रूज मिसाइलों पर अचूक हमला कर सकते हैं। और खास बात ये, हम बार बार कह रहे हैं, अमेरिका चाहता था कि वो अपने सर्वेलेंस सिस्टम्स को ईरान के ऊपर इतना मजबूत कर ले कि आईआरजीसी उसके शिप्स पर, टैंकर्स पर या किसी भी एयरक्राफ्ट पर टारगेट ना कर सके, लेकिन इन मिसाइलों की मदद से और ईरान की खुद की काबिलियत की, यानी उसके ड्रोन और दूसरी चीजों से, उसने इन चीजों को निष्क्रिय कर दिया। अब भारी ट्रांसपोर्टर विमान, यानी अगर भारी संख्या में अमेरिका को कल को अपने अपने अपने अपने लोगों को उतारना पड़े, चाहे वो C-130J हो या फिर आप कह सकते हैं हरक्यूलिस या C-117 ग्लोब मास्टर हो, अगर इनको भी टारगेट करना पड़े तो ये मिसाइलें उसके लिए सक्षम है। यानी ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट की जब आप बात करेंगे तब उनके लिए एक बड़ा चैलेंज मिसाइल ही बनेगी। सैनी हेलीकॉप्टर हो, UH-60 ब्लैक हॉक या फिर चिनूक हेलीकॉप्टर जो है CH-47, ये भी एक तरीके के ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर्स हैं। और इनके अंदर भी आप देखिए कि अगर इनके डिप्लॉयमेंट करनी हो अमेरिकी सैनिक की तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इनको निष्क्रिय करने में, इन्हें टारगेट करने के लिए ये मिसाइलें बहुत ज्यादा कारगर हैं। हंटर किलर ड्रोन्स यानी MQ-9 ड्रोन्स, आपको याद होगा ईरान ने कहा था कि उसने करीबन 30 से ज्यादा अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन्स मार गिराए हैं। और ना सिर्फ आप कह सकते हैं उनकी सर्वेलेंस करते हुए, बल्कि जो उनका बंदराबास का इलाका हो या फिर जो उनके आसपास के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका हो, वहां पर भी ऐसे कई ड्रोन्स का मलबा दिखाया भी ईरान ने। और शायद इसी वजह से ईरान की काबिलियत या उसकी क्षमता और ज्यादा बढ़ती जा रही है, और शायद ये चैलेंज है अमेरिका के सामने। और अब बात ईरान के खिलाफ अमेरिका सैन्य कार्रवाई की भी करते हैं, पूरी खबर आपको बताएंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी टीवी न्यूज चैनल ABC न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है, ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तस्वीरें भी साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास 3 ही विकल्प हैं, पहला ये कि वो ईरान से डील करने में कामयाब हो जाए, दूसरा विकल्प ये कि ब्लॉकेट जारी रखे, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अमेरिका अपना ब्लॉकेट जारी रखे, तीसरा बड़ा विकल्प उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई करे, यानी बड़े ऑपरेशंस किए जाए। नेतन्याहू ने कहा कि कोई भी कदम हो जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम का खात्मा हो वो उन्हें मंजूर है। यानी इन तीनों विकल्प को उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिस्कस किया, तीनों विकल्पों को उनका मानना था कि उनका एक ही कारण है, एक ही उद्देश्य है कि ईरान कभी भी परमाणु बम ना बना सके।
1: He's got basically 3 options: 1, to indeed succeed making a deal; 2, to continue the blockade; 3, to take military action. Anything that will produce the end of Iran's nuclear program is what we want. That's our common goal. We talked about it.
0: और एक बड़ी खबर जॉर्डन से भी आ रही है, खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जहां ईरान के हमले तेज होते गए हैं, वहीं अमेरिकी बेस के चलते हमले जॉर्डन को भी झेलने पड़े। अमेरिका से पीछा छुड़वाना चाहता है जॉर्डन, यह भी खबर मिल रही है जॉर्डन में। ऐसा ही एक खबर सामने आई है जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर दी गई है कि जॉर्डन के सैकड़ों अहम लोगों ने खुले खत पर दस्तखत किए हैं। इस खत में यह मांग की गई है अमेरिकी सेना जॉर्डन से वापस चली जाए। जॉर्डन के इन अहम लोगों में अमेरिकी फोर्सेस की मौजूदगी को सुरक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया है, जिससे जॉर्डन युद्ध में फंस सकता है। इस खुले खत में उस जॉर्डन में उन्होंने अनहोनी के तौर पर देखा जा रहा है जिस तरीके से ईरान अटैक कर रहा है, और कहा जा रहा है कि अब जॉर्डन में भी इसको लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। वो चाहते हैं कि अमेरिका यहां पर अपने बेसिस को खाली कर दे। और इस बीच कल रात अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए। ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों की गूंज खुजिस्तान से लेकर बंदर अब्बास तक सुनाई दी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक इसकी आपके इंपैक्ट देखना पड़ा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है अमेरिका ने हमला क्यों किया, बल्कि ये भी है किस कार्रवाई में ईरान पीछे हटेगा या फिर ये टकराव और ज्यादा खतरनाक मोड पर आने वाला है। सेंटकॉम ने हमलों की वजह क्या बताई है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या चेतावनी दी है और क्यों अमेरिका हमलों के बावजूद ईरान के तेवर और ज्यादा आक्रामक बताए जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले रिपोर्ट।

0: ईरान के खुजिस्तान प्रांत से लेकर बंदर अब्बास तक शदगान, अरबंद कनार, अबादान और अहवाज में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए हैं। अहवाज में 7 से ज्यादा मिसाइल हमलों से धरती कांप उठी। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट के पास रणनीतिक रूप से अहम केशम द्वीप में मिसाइल एक रिहायशी मकान पर जा गिरी। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जहां सर्च एंड रेस्क्यू टीमें जिंदगियां तलाश रही हैं। बंदर अब्बास, केश और अबू मूसा द्वीप तक धमाकों की गूंज से हड़कंप मचा हुआ है। आखिर अमेरिका ने ईरान पर यह हमला क्यों किया? अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने आधिकारिक बयान जारी कर इसकी वजह साफ कर दी है। सेंटकॉम के मुताबिक 28 जुलाई को ईरान की सेना IRGC ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर अचानक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक करने की कोशिश की थी, जिसे अमेरिकी एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। इसी हमले के जवाब में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने 29 जुलाई की रात ईरान में IRGC के ठिकानों पर भारी हवाई हमले किए। सेंटकॉम ने बताया कि उन्होंने IRGC के सैन्य कमांड सेंटरों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, तटीय निगरानी सेंटरों और नौसैनिक संपत्तियों को निशाना बनाकर पूरी तरह तबाह कर दिया है, ताकि अमेरिकी बलों और हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित रखा जा सके। अमेरिका के हाथों हुई इस तबाही की पटकथा कुछ घंटे पहले ही लिखी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, बीती रात जॉर्डन पर ईरान ने जो सरप्राइज अटैक किया, उसके बाद अमेरिका करारा पलटवार करेगा।
1: In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but you know, they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
0: लेकिन सवाल उठता है कि क्या इतने भारी हमलों के बाद ईरान झुक गया है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा रिपोर्ट एक अलग ही कहानी बयान कर रही है। हमलों के बावजूद ईरान घुटने टेकने के बजाय और अधिक आक्रामक होकर उभरा है। वो युद्ध के मोर्चे का विस्तार कर रहा है, ताकि अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर उलझाया जा सके। पेंटागन और अमेरिकी सैन्य कमांडरों ने चेतावनी दी है कि लगातार हो रहे हमलों के कारण अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार तेजी से घट रहा है, और केवल हवाई हमलों से ईरान को पूरी तरह दबाना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा ईरान का नया नेतृत्व पहले से ज्यादा सख्त और बेखौफ माना जा रहा है, जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ मानवीय नुकसान की चिंता जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं, जिससे अमेरिकी रणनीति में असमंजस की स्थिति बन गई है। ऐसे में अमेरिका के भीषण हमलों के बावजूद मध्य पूर्व का ये बारूद शांत होता नहीं दिख रहा है। क्या पाकिस्तान और कतर जैसे देश अमेरिका और ईरान को बातचीत की टेबल पर ला पाएंगे, या फिर से जंग एक अंतहीन और भयानक महायुद्ध में बदल जाएगी? आज तक ब्यूरो।
2: और वहीं अमेरिका के हमलों के बाद IRGC ने एक बार फिर से एक बड़ी चेतावनी दी है। ये चेतावनी उन देशों को है जो ईरान पर हो रहे हमलों में अमेरिका की मदद कर रहे हैं। दरअसल ईरान ने चेतावनी दी है कि जो देश हमलावर यानी अमेरिका की मदद कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला तो उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दरअसल ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसमें कुवैत से ईरान पर अमेरिकी मिसाइल टांगे जाने का दावा किया गया था। इसके अलावा ईरान ने फिर से कहा है कि हॉर्मुज हमारा इलाका है, और IRGC नौसेना के बहादुर जवान इस पर मजबूती से अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे। अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान ने कहा है कि हजारों किलोमीटर दूर से आने वाली किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसमें दखल देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिकी धमकियों और क्षेत्रीय समुद्री गतिविधियों में दखल जारी रहेगा, हॉर्मुज बंद ही रहेगा। यानी जो शांति आती हुई दिख रही थी, वो अब नेतन्याहू के अमेरिका जाने के बाद एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से नए ऑपरेशन शुरू होने के बाद नहीं दिखती, यानी ये युद्ध और ज्यादा भीषण होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair.
6: Tune in's How To
5: A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
7: Pure Ayurvedic Beauty.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों से सरसों।
6: पापा।
7: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ
9: ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
9: चार्ज हुआ यार।
10: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: In association with
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
6: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: अपने ही नागरिकों को खाना और बिजली मांगने पर दुश्मन और भारतीय एजेंट बताना, ये साबित करता है कि आसिम मुनीर के ये प्यादे बौखला गए। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा दी है। शहजाद इकबाल ने ऑन एयर सरकार से चुपता हुआ सवाल पूछा, अगर पीओके के प्रदर्शनकारियों की फंडिंग भारत से हो रही है तो उनसे पिछले एक डेढ़ साल से बातचीत क्यों होती रही, क्यों उनकी 38 में से 36 मांगे मान ली गई। शहजाद इकबाल ने बेबाकी से आरोप लगाया कि पाकिस्तानी मीडिया को पीओजेके की जमीनी हकीकत दिखाने से रोका जा रहा है। जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जहां एक तरफ पश्चिमी मीडिया पीओके में हो रहे इस मानवाधिकार हनन पर चुप्पी साधे बैठा है, वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के इशारे पर पीओके के अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। सिर्फ रोटी कपड़ा और बुनियादी सहूलियतें मांगने की सजा गोलियों से दी जा रही है। लेकिन अब ये जुल्म ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पीओके की अवाम ने पाकिस्तान की गुलामी के खिलाफ जो बिगुल फूंका है वो अब सच्ची आजादी की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज तक ब्यूरो। अपने ही नागरिकों को खाना और बिजली मांगने पर दुश्मन और भारतीय एजेंट बताना, ये साबित करता है कि आसिम मुनीर के ये प्यादे बौखला गए। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फर्जी नैरेटिव की धज्जियां किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने उड़ा दी है। शहजाद इकबाल ने ऑन एयर सरकार से चुपता हुआ सवाल पूछा, अगर पीओके के प्रदर्शनकारियों की फंडिंग भारत से हो रही है तो उनसे पिछले एक डेढ़ साल से बातचीत क्यों होती रही, क्यों उनकी 38 में से 36 मांगे मान ली गई। शहजाद इकबाल ने बेबाकी से आरोप लगाया कि पाकिस्तानी मीडिया को पीओजेके की जमीनी हकीकत दिखाने से रोका जा रहा है। जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जहां एक तरफ पश्चिमी मीडिया पीओके में हो रहे इस मानवाधिकार हनन पर चुप्पी साधे बैठा है, वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के इशारे पर पीओके के अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। सिर्फ रोटी कपड़ा और बुनियादी सहूलियतें मांगने की सजा गोलियों से दी जा रही है। लेकिन अब ये जुल्म ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पीओके की अवाम ने पाकिस्तान की गुलामी के खिलाफ जो बिगुल फूंका है वो अब सच्ची आजादी की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज तक ब्यूरो।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: राज्यसभा में बरपा हंगामा, खड़गे के मनुस्मृति का हवाला देने पर भड़की बीजेपी, मांगी माफी, कहा ऐसे बयान से फैलेगी अशांति। लोकसभा में पास वंदे मातरम बिल, ध्वनिमत से सदन में किया गया अनुमोदन, राज्यसभा में पहले ही पास हो चुका है विधेयक। संसद में घमासान और पेपर लीक पर संग्राम के बीच प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल सीसीएस की मीटिंग, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्री हुए शामिल, खाड़ी जोत पर हुई चर्चा। बीस जुलाई को संसद से करीब 100 मीटर दूर तक पहुंच गई थी प्रदर्शनकारियों की भीड़, आज तक के पास 5 सीसीटीवी तस्वीरें, संसद भवन के गेट के करीब था बवाल। धार की गौशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर सुनवाई, आज अदालत ने कहा शुक्रवार की नमाज के लिए विवादित परिसर से सटी जमीन पर व्यवस्था करे एमपी की सरकार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
0: ब्रेक के बाद रणभूमि में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 20 जुलाई को सीजेपी के प्रदर्शन से जुड़े एक बड़ा खुलासा हुआ है, आज तक के पास 20 जुलाई के प्रदर्शन का एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, और सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि संसद भवन से 100 मीटर की दूरी पर हजारों प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। यही नहीं, एक वीडियो तो ऐसा भी है जिसमें प्रदर्शनकारी संसद भवन की दीवार के बेहद करीब थे और अगर उन्हें नहीं रोका जाता तो वो संसद के भीतर भी दाखिल हो जाते। रेल भवन के पास सेल्फी पॉइंट तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, यहां तक कि संसद भवन के आसपास के 5 सीसीटीवी फुटेज की ये सारा खुलासा हुआ है कि ये सीसीटीवी दिल्ली पुलिस पर कई सवाल भी खड़े करती है। दिल्ली पुलिस को संसद मार्च के बारे में पहले से जानकारी थी तो पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? नई दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू थी तो कैसे हजारों की तादाद में इतनी भीड़ संसद भवन तक पहुंच गई? हम आपको वो पांचों सीसीटीवी दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि 20 जुलाई का मंजर कैसा था जब संसद भवन परिसर के आसपास ये प्रदर्शनकारियों की भीड़ वहां पहुंच गई थी, रेल भवन के पास, इसके अलावा बैरिकेडिंग में संसद के आसपास के इलाकों में, और आप देख सकते हैं कि सेक्रेटेरिएट के पास भी लोग जमा थे, भीड़ चारों तरफ बढ़ती जा रही थी। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको रोका लेकिन संसद परिसर के 100 मीटर के दायरे में ये भीड़ वहां तक पहुंच गई थी। और आइए अब आपको सीधे अपने संवाददाता अरविंद ओझा के पास ले चलते हैं जो आपको बताएंगे कि इन वीडियो के मायने क्या निकलते हैं और किस तरीके से 20 जुलाई को संसद के बेहद करीब ये छात्र पहुंच गए थे।
2: देखिए ये 5 सीसीटीवी 20 जुलाई का आज तक टुंडिया के हाथ लगा है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है। सामने की तरफ आपको जो ये रेड बिल्डिंग है ये सेल्फी पॉइंट है, जो प्रोटेस्टर है वो यहाँ आपको सामने की तरफ दिखाई देंगे। ये देखिए, अगर ये आप देखेंगे तो ये पार्लियामेंट का गेट है, अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये गाड़ी आपको जाती हुई दिखाई देगी। ये वॉल है, ये संसद भवन की ये वॉल है, ये सब संसद भवन के आसपास की तस्वीरें हैं। और बड़ा खुलासा ये इन सीसीटीवी के जरिए कि संसद भवन से महज 50 से 100 मीटर की दूरी तक प्रोटेस्टर 20 जुलाई, ये तस्वीर बहुत डराने वाली है 20 जुलाई की। ये पार्लियामेंट गेट का गेट है, प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच यहां झड़प हो रही है। पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आपको फिर से दिखाएंगे दोबारा तस्वीरें तो पार्लियामेंट के गेट से बेहद करीब तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है। ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहे थे, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है, नई दिल्ली इलाके में बैरिकेड्स मजबूत लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं चकमा देते हुए पार्लियामेंट के करीब तक पहुंच गए थे, हजारों की तादाद में जो प्रोटेस्टर और बकायदा नारेबाजी हो रही थी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है वो तस्वीर है ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रोटेस्टर यहां खड़े हैं, पुलिस के बीच यहां पर बकायदा उनके बीच झड़प हो रही है। तो ये जो तस्वीर है रेल भवन के राउंड अबाउट में, जहां से संसद भवन बहुत बेहद करीब है, 50 से 100 मीटर की दूरी पर, उसके अलावा सेल्फी पॉइंट, और ये जो तस्वीर है ये तो काफी ज्यादा डराने वाली तस्वीर है। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे। पुलिस पर सवाल ये है कि जब पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है तो प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की गई, मजबूत बैरिकेड्स वो क्यों नहीं लगाए गए, और साथ ही साथ जब इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी थी तो इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नई दिल्ली और आसपास में कैसे इकट्ठा हो गई।
0: चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देश में एक और संकट गहरा है, कहीं बारिश नहीं हो रही तो कहीं बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। मानसून जैसे काल बनकर आया है,

0: जुलाई महीने खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी बचा है। सावन की शुरुआत हो गई है और इन सब के बीच मॉनसून का कहर भी अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रहा है। पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड या फिर मैदानी इलाकों की अगर बात करें, ओडिशा, पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र में भी हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। असम में तो आफत का एक ऐसा असर देखने को मिला है जहां पर करीबन 78 लोगों की जान जा चुकी है। तबाही और हाहाकार की तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आ रही, लेकिन सबसे पहले बात उड़ीसा की करते हैं जहां अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बालासोर, भदक और रायगढ़ जिलों में देखने को मिल रही है।
1: ओडिशा में मानो बादल फट पड़े हैं। ओडिशा में आफत की ऐसी बाढ़ आई है कि कदम कदम पर संकट है। नुआपाड़ा से आई ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि वहां खतरा कितना बढ़ा है। नदियों के जलस्तर में उफान के बाद डैम भी लबालब भर गए हैं। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। इन सब के बीच मामलों को संभालने के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। नुआपाड़ा की ये तस्वीरें 29 जुलाई की है, जो ओडिशा के संकट की सिर्फ एक झलक है। ओडिशा में बीते कुछ दिनों में मूसलाधार बारिश हुई है। सैलाब में डूब रहे रायगढ़ का हाल देखिए, वहाँ एक बड़ा हादसा टल गया। लगातार भारी बारिश की वजह से नागावली नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया। उसी फंती नदी के बीच एक ट्रैक्टर फंस गया। घटना के वक्त ट्रैक्टर पर ड्राइवर और एक बच्चा मौजूद थे। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने पूरी सूझबूझ के साथ सैलाबी संकट में फंसी दोनों जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाला। रायगढ़ के साथ साथ ढेंकनाल में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मूसलाधार बारिश वाली मुसीबत में वहां भी जिंदगी फंसी हुई है। वहां एक दिन पहले एक चौंकाने वाली घटना हो गई। एक भारी भरकम जेसीबी सैलाब में जा फंसी। इलाके में पुल के ऊपर से फंती नदी का पानी बह रहा था। उसी दौरान जेसीबी ऑपरेटर लोगों के मना करने के बाद भी नहीं माना और पुल से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। नतीजा ये हुआ कि वो संकट में फंस गया। जेसीबी तेज बहाव में अपना संतुलन खो बैठी और पुल के किनारे से पलट गई। जेसीबी ऑपरेटर जैसे तैसे केबिन से बाहर निकल गया और मशीन के ऊपर खड़ा होकर उसने अपनी जान बचाई। खबर मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और उसे बचा लिया, लेकिन जेसीबी मशीन लहरों में समा गई। उधर बालासोर में भी सैलाब जान पर बनाई। एक शख्स अपनी बाइक के साथ पुल पार कर रहा था। ऐसे विषम हालात के बाद भी वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन तूफानी रफ्तार वाली लहरों के आगे उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। गरिमत रही कि डेंजरस बहाव से थोड़ी ही दूरी पर दोनों किनारों पर लोग मौजूद थे। साथ ही एनडीआरएफ के जवान भी मुस्तैद थे। तुरंत एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला और उस शख्स को बचा लिया। हालांकि उसकी बाइक लहरों में बह गई। ओडिशा का बालासोर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। वहां लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। दो दिन पहले बालासोर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बाढ़ के पानी में जिंदगी डूबती दिखी। ये कार सर्विस स्टेशन की तस्वीरें हैं। वहां इतना पानी भर गया कि पार्क की गई कई गाड़ियां भी सैलाब में डूब गई। कई बसों का भी वैसा ही हाल दिखा। बालासोर में दो दिन बाद भी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। अभी भी हालात बदतर हैं। लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ से बदहाली दिख रही है। राज्य सरकार के अनुसार 5 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इनमें बालासोर, मयूरभंज, क्योंझर, भद्रक और जाजपुर हैं। बाढ़ से 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। राज्य सरकार ने अब तक बाढ़ से जुड़ी 3 मौतों की पुष्टि की है, जबकि लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्थापित लोगों की मदद के लिए सरकार ने राज्य भर में 237 राहत शिविर स्थापित किए हैं, जहां आश्रय, पका हुआ भोजन, पीने का पानी और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम तक करीब 1,88,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बिगड़े हालात के बीच मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तीन मंत्रियों सूर्यवंशी सूरज, गणेश राम सिंह खुंटिया और केसी महापात्र को बाढ़ की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे संकट के बीच बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और फायर सर्विस की टीमों को तैनात किया गया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी नुआपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिलों में बेहिसाब बारिश का अलर्ट जारी किया है। अजय कुमार नाथ, बालासोर, आज तक।
0: ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आफत है तो उत्तराखंड में भी मौसम के बिगड़ते मिजाज ने जनजीवन को पूरी तरीके से ठप कर दिया है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जबरदस्त संकट है, कहीं लैंडस्लाइड्स ने डराया हुआ है तो कहीं भारी बारिश का असर नदियों के जलस्तर पर भी देखने को मिल रहा है। कई नदियां रौद्र रूप ले चुकी हैं।
1: नदियों का रौद्र रूप दिख रहा है, कहीं सैलाब में पुल डूबते जा रहे हैं, पहाड़ों पर हाहाकार मचा है, कई लैंडस्लाइड से जान पर पन आई है। उत्तराखंड के लिए यह संकट काल है। मॉनसून की मुसीबत ऐसी आई है कि राहत की सांस ले पाना दुभर है। अलग अलग इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। सबसे पहली तस्वीर आपको उत्तरकाशी की दिखाते हैं। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर अचानक खतरा बढ़ गया है। एक दिन पहले की तस्वीरें हैं। उत्तरकाशी के सियाना चट्टी में ऐसा लैंडस्लाइड हुआ कि वहां हड़कंप मच गया। वहां ऊंचाई वाले इलाकों से भारी भरकम पत्थर के टुकड़े हाईवे तक जा गिरे। इस वजह से नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। देर तक ये संकट बरकरार रहा। संकट की ऐसी ही तस्वीर रुद्रप्रयाग से भी आई है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए बनाए जा रहे टनल के पास भूस्खलन हो गया। पहाड़ों से बोल्डर गिरे, हालांकि टनल पूरी तरह सुरक्षित है। भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड के बाद वहां दरार भी दिखी। रुद्रप्रयाग में जिस जगह हादसा हुआ वहां 900 मीटर लंबी टनल बनकर तैयार है। अब इस टनल को बद्रीनाथ हाईवे से जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर बन रहे 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस बीच लगातार हो रही बारिश के कारण वहां मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों में भी उफान है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। हालात ऐसे हैं कि रुद्रप्रयाग में वाल्मीकि बस्ती को जोड़ने वाला पैदल पुल अलकनंदा नदी में डूब चुका है और अब लोगों के घरों तक अलकनंदा का पानी पहुंचने लगा है। हालात गंभीर बने हुए हैं और कई लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं।
0: रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, इस वजह से कई मोटर मार्ग बंद करने पड़े। रुद्रप्रयाग के गंगानगर और बड़मा सड़क पर भी एक ऐसा ही हादसा हुआ और जानकारी दे रहे आज तक संवाददाता प्रवीण सोमवार।
2: मानसूनी सीजन में पहाड़ों का जनजीवन आसान नहीं है, इसका एक जीता जागता उदाहरण आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं। यह रुद्रप्रयाग जनपद के लगभग 40 से 50 गांवों को जोड़ने वाला गंगानगर बड़मा मोटर मार्ग है जो कि लगातार भूस्खलन के चलते बंद हो रहा है। ऊपर से जहां लगातार पहाड़ी से मलबा व बोल्डर बरस रहा है तो ठीक नीचे से आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी की तेज लहरें भू कटाव करती जा रही हैं। ऐसे में यहां पर जो मोटर मार्ग की स्थिति है वह काफ़ी दयनीय बनी हुई है। भूस्खलन होने से मोटर मार्ग का तकरीबन 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह वॉश आउट हो गया है। भले ही PWD रुद्रप्रयाग की एक JCB मशीन मोटर मार्ग को खोलने का कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। दूसरे छोर पर सुबह से ही ग्रामीण मोटर मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो मोटर मार्ग बंद होने से ग्रामीणों की दिनचर्या भी बुरी तरह प्रभावित हो गई है। यह जो मोटर मार्ग आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिस पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, यह मोटर मार्ग बड़मा एवं सिलगढ़ क्षेत्र के तकरीबन 40 से 50 गांवों को जोड़ता है।
0: पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी क्या हालात बने हुए, ये हमने आपको बताया। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है नेपाल से, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा ने विकराल रूप ले लिया है। दरअसल सुनसरी के अंदर हिंसा के कई शहरों तक फैल गई है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आधे दर्जन से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिसमें इंद्रवा, जनकपुर, सेहरा और कोल बाजार और लहान में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंसा, आगजनी और पथराव और तोड़फोड़ की कई घटनाएं सामने आई है। पुलिस के साथ सशस्त्र पुलिस बल और नेपाली सेना भी तैनात कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में सेना का फ्लैग मार्च, हेलीकॉप्टर से निगरानी भी की जा रही है। सरकारी और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचने की खबर भी सामने आ रही है। चलिए रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
1: What about me, Jack? What about me?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
1: Well played, Jack. Well played.
0: Jack FM, playing what we want.
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: सीजेपी के आंदोलन से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। राहुल, प्रियंका और कांग्रेस ब्राह्मण प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय सौंपने पर सवाल उठा रहे हैं, तो यूपी में ओम प्रकाश राजभर ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे समाजवादी पार्टी पर कुर्मी विरोधी होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। यूपी सरकार के मंत्री और SBSP के अध्यक्ष ओपी राजभर ने सवाल उठाया है कि धर्मेंद्र प्रधान को कुर्मी जाति होने की वजह से ही अखिलेश ने इस्तीफा लिया है। अगर शिक्षा मंत्री की जाति यादव होती तो ये रुख नहीं होता। दरअसल इससे पहले अखिलेश यादव ने MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमीन घोटाले के आरोपों को खारिज किया था, तब भी ओपी राजभर ने अखिलेश पर सवाल उठाया था। इस बार यूपी में NDA के सहयोगी OBC नेता फिर वही सवाल उठा रहे हैं।
6: कुर्मी का इस्तीफा लेकर इन लोगों ने, पिछड़ों का एक इस्तीफा लेकर इन्होंने क्या किया? इसका मतलब पिछड़ों के नाम पर ठगी है, नाम ये बेमानी है PDA की भाषा, और निश्चित रूप से कुर्मी सामने आएगा, पिछड़े सामने आएंगे, इन लोगों को इस इलेक्शन में जवाब देंगे।
7: ये जो बात आप कह रहे हैं ये आपको तब याद क्यों नहीं आई जब कुर्मियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपने पद से हटा दिया था कि छद्म राजनीति करना बंद कीजिए। देखिए, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि बहुजन एकता हो, जो नहीं चाहते यादव और कुर्मी साथ रहें।
5: दरअसल पिछले चुनाव में पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और अवध से लेकर रुहेलखंड तक कुर्मी बिरादरी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई, तो समाजवादी पार्टी फर्श से अर्श तक आ गई। यानी 2019 में 5 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 2024 में 37 सीटों पर पहुंच गई, क्योंकि 2019 में NDA को रिकॉर्ड 74% कुर्मी वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी गठबंधन सिर्फ 26% पर थी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में घटकर 61% पर आ गया और SP को 34% कुर्मी वोट मिल गए। इस चमत्कार के पीछे OBC और दलित वोटरों की BJP से नाराजगी और खासकर कुर्मी वोटरों का SP के साथ लामबंद होना एक बड़ी वजह माना गया। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में कोई अपना जनाधार नहीं रखते, लेकिन BJP में देश के बड़े OBC चेहरे के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं और अब उनके इसी बड़े पहचान की चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत में शुरू हो गई है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है।
1: जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।
0: हम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पहले टन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे।
1: ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं।
2: ये मानसून सत्र में राजनीति का दूसरा पार्ट है। पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, जंतर मंतर पर खामोशी है, धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी सीज फायर करने पर राजी नहीं है। राहुल गांधी का इरादा साफ दिख रहा है, पेपर लीक की लड़ाई को पैलेट गन पर शिफ्ट करने की, धर्मेंद्र प्रधान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट पर लाने की।
3: She says the student.
2: कल राहुल गांधी संसद में हुए हंगामे के केंद्र में रहे, उनके हमले पर दिन भर बवाल रहा। राहुल गांधी के भाषणों के कुछ शब्दों को असंसदीय बताकर रिकॉर्ड से बाहर भी किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने संसद से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और हमलों का सिलसिला जारी रखा। बीजेपी राहुल गांधी की मंशा को समझ रही है कि राहुल गांधी ने अमित शाह को ही हमले के लिए क्यों चुना, क्योंकि अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं। सत्र के 10 दिन हुए हैं, 15 दिन और बाकी हैं, और राहुल गांधी अमित शाह को चर्चा के केंद्र में रखने की कोशिश में दिख रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहां, दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जनजीव के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त तो हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे, तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं।
2: बीजेपी बनाम राहुल गांधी की ये लड़ाई असल में युवाओं के बीच पैठ बनाने की जंग भी है। पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन की कामयाबी से लगता है कि विपक्ष के हाथों में भविष्य के लिए नई कुंजी आ गई है, जिसका इस्तेमाल संसद में होता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
5: राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया एम्स की रिपोर्ट के साथ कि पिलेट छर्रे लगे हैं पूरे शरीर में, आंख की रोशनी जा रही है। यही नहीं, AK-47 से फायर किया गया पटना में, और यही नहीं, महिलाओं के साथ जितना अशोभनीय और अश्लील व्यवहार किया गया वो सारी दुनिया ने देखा। गृहमंत्री जी क्यों भाग रहे हैं सदन से? भारत का संविधान कहता है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है संसद के प्रति।
6: राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, मंत्री से क्या मतलब है? वहाँ मजिस्ट्रेट जो होता है वो जिलाधिकारी दे सकता है, SDM दे सकता है, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन होता है वो आदेश देता है, मंत्री थोड़ा आदेश देता है।

लोकसभा में ध्वनिमत से पास वंदे मातरम बिल, राज्यसभा में पहले ही मंजूर हो चुका है विधेयक। ओवैसी का आरोप, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश। संसद में घमासान के बीच पीएम मोदी की हाई लेवल सीसीएस मीटिंग, राजनाथ, अमित शाह समेत कई वरिष्ठ मंत्री शामिल, खाड़ी युद्ध पर चर्चा। धार के भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर सुनवाई। आज अदालत ने कहा शुक्रवार की नमाज के लिए विवादित परिसर से सटी जमीन पर व्यवस्था करे एमपी सरकार। सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा नेपाल, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 की मौत, दर्जनों घायल, करीब 6 शहरों में कर्फ्यू।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। देश की संसद में आज भी एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चल रही है। लोकसभा से पारित बिल अब राज्यसभा पहुंच चुका है। यहां चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री की गैर मौजूदगी का मुद्दा एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक कांग्रेस ने 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई है। संसद में जवाबदेही का सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। दिलचस्प यह है कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के अंदर यह नवजागरण सीजेपी के आंदोलन के बाद अचानक नजर आने लगा है। उधर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से सवाल पूछ रही है, तो झारखंड में बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी से सवाल पूछ रही है, तो पंजाब में बीजेपी केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार को लेकर सियासत का यह नया नवजागरण ऐसा नजर आ रहा है कि बिहार से कर्नाटक तक दूर दराज के स्कूलों में बच्चे गंदे शौचालय, बंद पंखे की शिकायत लेकर भी जिला प्रशासन तक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और उनकी सुनवाई भी अब करनी पड़ रही है। आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि सीजेपी के आंदोलन के बाद यह जवाबदेही का जो नवजागरण नजर आ रहा है, क्या वो देश की बदलती सियासत की तस्वीर पेश करता है या राजनीति की रवायत है जो वक्त की गर्दिश के साथ फिर अपनी पुरानी धारा में लौट जाएगा। संसद में अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस ने जो लॉकजैम खड़ा रखा है, उस सियासत का अंजाम क्या होगा? देश के नौजवानों के असली सवालों और उनके नाम पर चल रही राजनीति से जुड़े तमाम सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: सीजेपी आंदोलन के बाद मंत्री का इस्तीफा हो गया, नए मंत्री बन गए, नया विधेयक लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में चर्चा चल रही है, लेकिन विपक्ष की हसरतें थमती नहीं। अब राहुल गांधी ने ऐसा नया रण छेड़ दिया कि दोनों सदन अशांत दिखे। कल तक एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा करने बैठा विपक्ष, अब गृह मंत्री की सदन में गैर मौजूदगी पर परेशान है। कल लोकसभा में राहुल गांधी गृह मंत्री को खोजते रहे, आज राज्यसभा में खड़गे उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हैं।
2: प्राध्यापक नहीं है, किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी, कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो।
3: विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इसकी इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
1: दरअसल विपक्ष सीजेपी के आंदोलन में हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाबदेही का सवाल कर रहा है।
2: ये सब के कारण और सब ये सूत्रधारी जो है, जहां भी बैठे होंगे वो फौरन इस्तीफा दे। अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, राजीनामा दे।
1: ये सवाल भले सियासी हो, लेकिन ठीक उसी तरह उठाए जा रहे हैं जैसे झारखंड में बीजेपी, जेपीएससी, जेएसएससी के हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने पर उठाती है, जैसे बीजेपी पंजाब में दर्जन भर परीक्षाओं

0: And if he ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it, or he has no idea what's going on in his ministry, and he's incompetent. In either case, he has to go.
1: लोकतंत्र का मतलब ही यह है कि जनता ने जनता द्वारा और जनता के लिए चलाए जाने वाला राज है, और आज की स्थिति में उसमें सबसे बड़ी बात यह जवाबदेही की होती है। लगता है कि यह जवाबदेही कहीं ना कहीं भूल रहे थे, और सीजेपी के इस आंदोलन के बाद एक बार फिर सबको लगने लगा है कि जवाबदेही सबसे ऊपर होनी चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, डॉली शर्मा कांग्रेस की तरफ से चर्चा में शामिल हो रही है, आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी चर्चा में जुड़ रहे हैं, और थोड़ी देर में रजत सेठी ऑथर और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी चर्चा में शामिल होंगे। हमेशा की तरह तीन सवाल दंगल के दर्शकों के लिए और इस पैनल के लिए भी। पहला सवाल, क्या सीजेपी के आंदोलन के बाद देश में जवाबदेही का एक नवजागरण काल नजर आ रहा है? नवनिर्माण की तरह नवजागरण का यह काल नजर आ रहा है क्या? यह हमारा पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल, क्या पेपर लीक मुद्दे पर गृहमंत्री से इस्तीफे की कांग्रेस की मांग सियासी है? दूसरी तरफ कांग्रेस यह भी कह रही है कि इस पर बयान सरकार की तरफ से आना जरूरी है। और तीसरा सवाल, क्या शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के मोदी सरकार के दावे सही है? इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रेम शुक्ला जी, हर जगह अब हम नजर देख रहे हैं कि, और उसमें सियासत भी साफ नजर आ रही है कि, जैसे हमने पहले कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अगर केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है, जवाबदेही मांग रही है, तो तुरंत अब भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जो झारखंड की जेपीएससी की परीक्षाएं थी उसको लेकर जवाबदेही मांग रही है, पंजाब के भीतर आम आदमी पार्टी के सरकार के सामने नजर आ रही है। ये एक नवनिर्माण कहां से हो रहा है, ये नवजागरण कहां से हो रहा है, इसमें सियासत है या सब कुछ का नवजागरण है?
2: देखिए साहिल जी, विपक्ष ने, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने, सपा ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, इन दलों ने जवाब मांगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिक दायित्व स्वीकारते हुए त्यागपत्र दे दिया। नकल विरोधी और परीक्षाओं में अनुचित मार्गों का उपयोग करने वाले प्रक्रियाओं के विरुद्ध जो है कानून आ गया। आप मुझे कृपा करके बताइए ना, आम आदमी पार्टी के आज पंजाब में क्या हुआ? हम जवाब तो मांग रहे हैं, उनका जवाब आ कहां रहा है? पंजाब में कौन सा परिवर्तन हुआ? शिक्षा मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, कोई कानून बन गया? नहीं हुआ। झारखंड में क्या हो रहा है? कर्नाटक में क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में भी पर्चा लीक हुआ, हिमाचल प्रदेश में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कर्नाटक में पर्चा लीक हुआ, कर्नाटक में तो कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये साफ तौर पर इस बात को बताता है, ये संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार तो जवाबदेह है, लेकिन विपक्ष जो है निरा राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। विपक्ष जो है वो सोच के राजनीति करने के अलावा कुछ करने को तैयार ही नहीं है। ये तो साफ संकेत है ना। श्रीमान राहुल गांधी को अगर लगता है इस तरह, भाई केरल में उन्होंने लाठीचार्ज करने पर वहां के गृहमंत्री का त्यागपत्र ले लेना चाहिए था कि केरल में भी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले बरसाए गए, बहुत जो है फोर्स में पानी की बौछारें की गई, तो केरल में करना ये ठीक है। जंतर मंतर पे ये अनुचित हो जाता है क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी के केंद्र का शासन है, केंद्र सरकार का शासन है तो वहां गलत है, लेकिन जहां राज्य सरकार का शासन है वहां तो ठीक है। वहां कांग्रेस का जहां शासन वहां तो करना ही चाहिए क्योंकि इनका बड़ा रक्तरंजित इतिहास है, हजारों हजार लोगों की हत्या करने का इनका इतिहास है, तो थोड़े मोड़ा लाठीचार्ज होगा तो छोटी बात है इनके लिए। लेकिन ये जो है दूसरों से जवाबदेही चाहते हैं, तो जवाबदेही राजनीति में किसी को देने की आवश्यकता है।
1: तो इसकी राजनीति साफ है डॉली शर्मा जी, अगर आपने उनसे जवाबदेही मांगी है तो बदले में आपसे भी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांगी जाएगी, क्योंकि कुछ जगह पर आप भी सरकार में हैं। अगर आपने इस्तीफा लिया है, यानी कांग्रेस जनता पार्टी के इस आंदोलन के बाद अगर इस्तीफा हुआ है तो आपके राज्यों में भी आंदोलन होगा और मांग वही रहेगी, सिर कटाए तो आपका भी सिर कटना पड़ेगा।
3: देखिए मैं यहां सुन रही थी इनको, बहुत अच्छे से मैंने सुना। मैं तो इनसे ये पूछना चाहती हूँ, केंद्र में आप बैठे हैं, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता मजमा लुटा क्यों, बच्चों के साथ ऐसा हुआ क्यों? आप केंद्र में बैठे हैं, और मैं कहती हूँ पूरे देश में कहीं पर भी ये हो रहा हो ये निहायत गलत है, और उसके

0: खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और मुझे लगता है राहुल गांधी जी इतने गंभीर नेता है वो करेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति में संवेदना होती है और जो व्यक्ति संवेदनशील होता है वो अपनी गलती एक्सेप्ट भी करता है और वो आगे भी बढ़ता है। और राहुल गांधी जी का चरित्र है कि वो देश के लिए बात करते हैं, देश की जनता के लिए बात करते हैं। उन्होंने जो कल मुद्दे उठाए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बच्चों के लिए पैलेट गन्स आए, नेल्स वाले लाठी आई जिसके अंदर कीले लगी थी, ठीक। उसके अलावा उन्होंने वो तस्वीरें दिखाई जहां ब्रूचुअलिटी लड़कियों के साथ हुई थी, लड़कियों को मारा था किन्होंने? पुरुष पुलिस ने, गलत जगह छुआ, गलत जगह डंडे मारे, ये पूरे देश ने देखा, छुपा हुआ नहीं। वो जो ट्रक भर के इन्होंने पत्थर मंगाए वो भी पूरे देश ने देखा। वो टूटी हुई गाड़ियां जो ये पहले हर किसान प्रोटेस्ट में कर देते होंगे, हर प्रोटेस्ट में कर देते होंगे ना, इस जेंजी ने ये देश को बता दिया कि तुम्हारा कोई झूठ इस देश के आगे चलने वाला नहीं है, ये बेनकाब हो गए। अच्छा, लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि आप नए नियम ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं, फास्ट ट्रैक बना रहे हैं। फास्ट ट्रैक ने पहले दिन ही बता दिया कि हम कितने फास्ट हैं, वकील ही नहीं आए। देखा ना आपने, ये देश की दिशा बदलने चले थे लेकिन इन्होंने देश की दुर्दशा कर दी, बच्चों की, किसानों की, हर वर्ग की आज दुर्दशा है। बच्चों को सड़क पर आना पड़ रहा है। अभी तो नीट और इसकी बात हो रही है, सीबीएसई तो अभी छू भी नहीं रहा है कोई। सीबीएसई के बच्चे अलग परेशान है साहिल जी, मेरे इनबॉक्स में भरा पड़ा है, मेरा इंस्टाग्राम का इनबॉक्स, जहां बच्चे लिख रहे हैं। कहें तो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो बच्चे कह रहे हैं नीट के कारण सीबीएसई छुप गया, हमारे सीबीएसई पे आज कोई बात ही नहीं कर रहा, तो सीबीएसई का क्या होगा? वो बच्चे भी परेशान है। देश के किसी भी कोने में अगर ये हो रहा है तो केंद्र सरकार अब ऐसे कोई नियम और कानून लाए। इन्होंने कहा ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन सब तब होगा जब पेपर लीक हो जाएगा। ऐसा क्या होगा कि पेपर लीक हो ही ना? ऑडिट क्या ये करेंगे? एंड टू एंड सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तो तब तक कैसे होगा? डिजिटल ऑडिटिंग, इन्होंने किसी भी ऐसी कोई चीज पे बात ही नहीं करी। इन्होंने किसी टीचर से, स्टूडेंट से, एकेडमिशियन से, किसी से सलाह ली? बस आनन फानन में जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी करो। अरे आपको तसल्ली से बैठना चाहिए था जब देश के बच्चों ने संसद घेरा, जब देश के बच्चों ने इतनी बड़ी बात कही और वो अपनी लड़ाई के लिए लड़ते रहे। उन्होंने पत्थर झेले, लाठियां झेली, पैलेट गन्स झेले, तो आप उनको लेते ना, बिठाते, कम से कम उन्होंने 5 पर्चे दिए उसी को पढ़ लेते। लेकिन आनंद फानंद
1: तो
0: में
1: तो...
0: करना, ये करिए कि अच्छा हो ही ना, यही राहुल गांधी कह रहे हैं। बाद में क्या
1: अभी
0: होगा?
1: तो एक
0: बाद में
1: कमिटी बनाई है
0: बच्चों की जाने चली जाती है,
1: जिसमें नंदन निलेकनी भी है, जिन्होंने आधार कार्ड का पूरा, आधार कार्ड के इस जो आधार कार्ड लागू किया गया उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी, उसमें निंदन निलेकनी भी और बाकी सारे एक्सपर्ट्स भी उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन आपका सवाल मैं उनके पास ले जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप जो कह रही है, क्या हम यह मानकर चले कि पंजाब के भीतर भी कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरेगी इसी तरीके से, और झारखंड के भीतर जहां आपकी सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में, जो मांग इनकी अभी है, इस मांग को आप सियासी मांग की तरह देख रही है या सचमुच में नवजागरण की तरह देख रही है कि जवाबदेही केंद्र में होगी तो वहां पर भी होनी चाहिए? जेपीएससी की परीक्षा तो वहां पर राज्य सरकार के द्वारा ली जाती है।
0: साहिल जी, इसका जवाब तो राजनाथ सिंह जी ने बड़ा क्लियर दिया था कि यूपीए में इस्तीफे होते थे, एनडीए में इस्तीफे नहीं होते। ये तो राजनाथ सिंह, इनके बहुत बड़े नेता हैं, ये उनकी बात से इत्तफाक रखते होंगे, चलो मेरी से नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था ना यूपीए में इस्तीफे होते थे, इसका मतलब यूपीए में जवाबदेही थी और एनडीए में नहीं थी। काश ये सब चीजें इस देश ने ना देखी होती, इनकी कलाई ना खुलती इस देश के सामने, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आता। क्योंकि अगर आना होता तो वो 20-22 बच्चों की जान जाने से पहले आ जाता, ठीक। जब इतनी बार पेपर लीक हुए,
1: कांग्रेस पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है प्रेम शुक्ला जी,
0: हो गया तो आ जाता।
1: जो राजनाथ सिंह कहते थे कि इस्तीफे होते थे यूपीए की सरकार में, एनडीए की सरकार में इस्तीफे होते नहीं है, ये इस्तीफा लेना पड़ा है, ये इस्तीफा लेना पड़ा है। अब इसके बदले में आपको लग रहा है कि भाई झारखंड में भी होना चाहिए और उसके साथ साथ पंजाब में भी होना चाहिए, या सियासत का जवाब सियासत है या इस्तीफे का जवाब इस्तीफा है? और सबसे बड़ी बात, एक और जवाबदेही मांगी जा रही है सदन के भीतर कि जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर सरकार का बयान कब आएगा?
2: देखिए, शिक्षा जो है वो भारत के संविधान निर्माताओं ने समवर्ती सूची में रखा, और समवर्ती सूची में होने का साफ संकेत है कि राज्य का विषय भी है, केंद्र का विषय भी है। तो केंद्र की तरफ से तो ये कदम हुआ, लेकिन जिन राज्यों में हुआ वो राज्यों में इंडिया अलायंस के राज्य जो है उनके यहाँ कोई दायित्व बोध है ही नहीं। भाई कर्नाटक में या हिमाचल में शिक्षा मंत्री का त्याग पत्र क्यों नहीं? वहां पर किसी प्रकार का जो है परिमार्जन परिष्करण का प्रयास क्यों नहीं? भाई वहां परिमार्जन परिष्करण की आवश्यकता ही नहीं है। वहां पर्चा लीक हो तो पर्चा लीक वालों को संरक्षण मिलना चाहिए। वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट ही गठित कर दिया होता राज्य सरकारों ने, क्यों नहीं गठित कर दिया? भाई कौन सा कदम उठाया वो बताए ना। और अच्छा अभी जो है विधेयक पर चर्चा हुई लोकसभा में और राज्यसभा में आज हो रही है, तो लोकसभा की चर्चा में विपक्ष की तरफ से जो विधेयक प्रस्तुत किया गया उसमें ऐसा कौन सा प्रस्ताव लाया गया है, ऐसी कौन सी सिफारिश या सुझाव दी गई है जिस सुझाव से ये तय होता हो कि पर्चा लीक कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा एक सुझाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आम आदमी की पार्टी तरफ से, सपा की तरफ से, अन्य विपक्षी दलों की तरफ से आया है। एक सुझाव आप ही बताइए ना भाई, लोकसभा की चर्चा को आपने भी देखा है, कौन सा सुझाव इनकी तरफ से आया है या कौन सा सुझाव देना चाहते हैं?
1: डॉली शर्मा जी,
2: सदन के अंदर सदन के बाहर
1: डॉली शर्मा जी,
2: इनका सुझाव है जो पर्चा लीक को परमानेंट रोक देगा?
0: साहिल जी, पहली बात जो राहुल गांधी जी ने कही, अगर इन्होंने सुना नहीं हो तो ध्यान से सुन ले। राहुल जी ने कहा बाद में क्या होगा, आप उसकी बात किए जा रहे हैं, ठीक, आप ये क्यों नहीं बात करते कि ऐसा हो ही ना, उसके लिए आपके क्या कदम है? इन्होंने शायद सुना नहीं, राहुल जी को बोलने नहीं दिया, माइक बंद किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने देश के आगे कुछ सवाल रखे और वो सवाल जायज है। और मुझे लगता है इतनी बच्चों की आत्महत्या के बाद और जो 20 जुलाई को दिल्ली में बर्बरता हुई उसके बाद गृह मंत्री जी को जवाबदेही उनकी बनती है। अगर उन्हें नहीं पता था जो हुआ तो वो इनकॉम्पिटेंट है, और अगर उन्हें पता था आदेश उन्होंने दिया तो उन्होंने ये ऐसे कैसे आदेश दे दिए कि देश के बच्चों को मार दो, पैलेट गन चला दो, उनको कीलो वाले डंडों से मारो और बेटियों को गंदी गंदी जगह डंडे मारो, उनको इस तरीके से सड़क पे घसीटो, किसी का सर फाड़ दो और AK-47 दाग दो बच्चों को देश के किसी भी कोने में। तो दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है, RAF किसके अंडर आती है, गृह मंत्री जी के अंडर आती है? दोनों ही सूरतों में जो राहुल जी ने कहा, कौन जिम्मेदार है? अरे जवाबदेही तो बनेगी, आप देश के बच्चों के खून नहीं निकाल सकते, गोलियां नहीं चला सकते। 22 से ज्यादा बच्चों की आत्महत्या हुई है, उसके बाद आपके गोली से एक बच्चा मर गया और एक के कंधे में गोली लगी है और ना जाने कितने असंख्य बच्चे, एक की आंख चली गई आपकी पैलेट गन।
1: प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब भी जरूरी है। पिछले एक हफ्ते से अगर पेपर लीक पर जवाब मांगा जा रहा है तो उसके साथ साथ इस बात पर भी जवाब मांगा जा रहा है कि आखिरकार ये पैलेट गन चलाने की नौबत क्यों आई, और अगर चलाई है तो किसने आदेश दिया था। इन दोनों मुद्दों पर सरकार के तरफ से अभी तक अधिकृत तौर पर कोई भी बयान नहीं दिया गया है। भूल जाइए सरकार के तरफ से, लेकिन ना CRPF के तरफ से, ना रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से, ना ही गृह मंत्रालय की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया है। इस बात को लेकर भी बार बार चर्चा हो रही है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं।
2: कांग्रेस के लोगों का जो बौद्धिक स्तर है सब कुछ बहुत उच्च है भाई। गोलीबारी का आदेश 1946 में श्रीमान जवाहरलाल नेहरू ने 250 किसानों पर जो गोलियां चल रही तब से लेकर आज तक गोली चलाने का आदेश कौन देता है? तो ये कांग्रेस की सरकार है, कहती रही कि मजिस्ट्रेट देता, लेकिन अब वो गृहमंत्री देने लगा इनकी निगाह भाई। वहां पर मौके पर जो मौजूद पुलिस की तैनाती का नेतृत्व कर रहा मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट स्तर का सक्षम अधिकारी होता है, वह यह निर्णय ले सकता है कि क्या करना है, किस तरह से जो है वो लाठी चार्ज करना है, वाटर कैनन चलाना है।
1: प्रेम शुक्ला जी, टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा
2: चलाना है
1: जो भी आपको, मेरा सवाल यही है प्रेम शुक्ला जी।
2: हाँ
1: नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल यही है कि जवाबदेही के तौर पर, जवाबदेही के तौर पर, कल भी हमारे पास उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP बैठे हुए थे और उनका यह कहना था कि जब भी इतना बड़ा आंदोलन होता है, जब भी पुलिस के तरफ से लाठी चार्ज या कोई आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं या पैलेट गन अभी चलाई जा रही है, तो उस बात को लेकर बाकायदा एक ब्रीफिंग की जाती है। यह ब्रीफिंग सरकार के तरफ से अब तक नहीं हो पाई है। और अगर पुराने मुर्दे उखाड़ने हैं तो बहुत सारे उखड़ेंगे। कल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इसी शो में कह रहे थे कि अगर मुलायम सिंह यादव आदेश दे रहे हैं तो इसमें किसका आदेश था। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं आपके पास एक सिंपल सवाल लेकर आया हूं। क्या आपको नहीं लगता कि इस बात को लेकर सरकार के तरफ से कोई अधिकृत बयान दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, तब भी, वो भी तब जब संसद का सत्र इस वक्त चल रहा है?
0: साहिल जी, मैं एक सेकंड हूं बस।
2: साहिल जी, मैंने जो है अपने पत्रकारी जीवन में सैकड़ों लाठीचार्ज, आंसू गैस और जो है पैलेट गन चलाए जाने की घटनाओं को कवर किया है। मैंने गोवारी हत्याकांड को भी कवर किया है, जब 1994 में नागपुर में आदिवासियों ने प्रदर्शन किया था, गोवारी जनजाति के आदिवासी, और शरद पवार के नेतृत्व वाली सरकार ने लाठीचार्ज करके भगदड़ मचाकर 114 निर्दोष आदिवासियों की जान ले ली थी। मुझे पूरी तरह से पता है कि ना तो विधानसभा में और ना ही कहीं बाहर ब्रीफिंग संदर्भ में की गई थी। तो कांग्रेस के दौरान जो है एसओपी अलग था, आजकल एसओपी चेंज हो गए,
1: मतलब बयान नहीं होगा। तो मतलब आप समझते हैं कि बयान की कोई जरूरत नहीं है, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि बयान की कोई जरूरत
2: देखिए सीआरपीएफ ने बाकायदा जो है देखिए इस बारे में दिल्ली पुलिस ने बाकायदा कहा कि हमने कोई गोली नहीं चलाई। आधिकारिक बयान आया है कि हमने ना तो पैलेट गन चलाया ना हमने गोली चलाई, आधिकारिक बयान।
1: प्रेम शुक्ला जी,
2: सीएपीएफ की तरफ से भी बाकायदा जो है,
1: आप पत्रकार रहे हैं, मैं सीआरपीएफ की बात कर रहा हूँ, रैपिड एक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ, कोई बयान सीआरपीएफ
2: उसी पर मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। सीएपीएफ ने भी इस संदर्भ में बाकायदा बयान दिया है, सीएपीएफ ने भी इस संदर्भ में बाकायदा बयान दिया है। सीएपीएफ ने कहा है कि हम हथियार जो
1: है
2: उनको निश्चित तौर पर काउंट करें, है ये पब्लिक डोमेन में है। सीएपीएफ ने बाकायदा बयान देकर कहा है कि हमने हमारी तरफ से जो है पैलेट गन किसी ने अगर चलाए
1: है
2: तो उसकी चूंकि हथियार का हथियार को काउंट किया जाता है। जब शस्त्र लेकर कोई भी ड्यूटी पर जाता है तो कितना गन लेकर गया, कितनी गोलियां लेकर गया।
1: रजत सेठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जरा इस डिबेट को जो मुख्य मुद्दा था वो वाइडर जो मैक्रो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको उस तरफ मुझे लेकर जाना है। और आशुतोष पहले से थे तो वो पहले से इस चर्चा को सुन रहे थे और रजत सेठी भी अभी आ चुके हैं। मुद्दा ये है कि एक नवजागरण हुआ है क्या अचानक, क्योंकि बड़े दिलचस्प उदाहरण मेरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि देश में अलग अलग सारे देश के बच्चे देख रहे थे यह आंदोलन और जिस तरीके से सरकार ने रिएक्ट किया। रजत सेठी आप भी एक जमाने में स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े होंगे, आपने भी स्टूडेंट मूवमेंट्स करीब से देखी हुई है और जब भी बड़ा आंदोलन होता है उसके बाद छोटे छोटे आंदोलन अलग अलग इलाकों में होना शुरू हो जाता है, जनता लगातार अलग अलग मुद्दों पर जवाबदेही मांगती है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, 215 कुलपति पूर्व कुलपति शिक्षाविदों ने एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी लिखी हुई है वी कामकोटी के समर्थन में और कहा है कि वी कामकोटी पर प्रियंका गांधी ने जो टिप्पणी की थी उस बात को लेकर प्रियंका गांधी को उन्होंने ये खत लिखा है और उसका विरोध किया है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि एक गोमूत्र एक्सपर्ट भी उस कमिटी में है जिन्हें सुझाव देने हैं सरकार को कि शिक्षा तंत्र में या परीक्षा पद्धति में क्या सुधार किया जाए और कैसे इस शिक्षा परीक्षा पद्धति को मजबूत बनाया जाए। उस बात को लेकर जो कमिटी बनाई है उसमें वी कामकोटी भी है जो आईआईटी मद्रास से आते हैं और उसके साथ साथ गोमूत्र पर उनकी टिप्पणी को लेकर काफी विवाद भी हुआ था और प्रियंका गांधी ने उनका जिक्र बिना नाम लिए यह किया था कि एक गोमूत्र एक्सपर्ट भी इस कमिटी में है। उस बात को लेकर दरअसल यह चिट्ठी लिखी हुई है तो अभी ये चिट्ठियां आती रहेंगी, इस तरीके से बहस भी होती रहेंगी। लेकिन जो मुख्य सवाल आशुतोष मेरा आपके पास था, क्योंकि कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, रजत सेठी आप भी सुनिएगा। बिहार के गया में टिकरी के एक स्कूल के बच्चे मिड डे मील खराब जो उनको खाना मिलता है, गंदे शौचालय की शिकायत को लेकर सीधे एसडीएम के दफ्तर पहुंच गए और उन पर उनको उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। इससे पहले अगर वो जाते मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कार्रवाई होती। कर्नाटक के यादगिरी जिले में स्कूली बच्चे बसों को रोकना पड़ा उनको क्योंकि बसें रुक नहीं रही थी, हाईवे ब्लॉक किया उसके बाद बसों का रुकना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज के बच्चों की ने शिकायत की कि हमारे जो क्लासेस है उसमें ना पंखे हैं, वाटर सप्लाई नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तुरंत उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। ये एक नया चीज हमें देखने को मिल रही है जो आमतौर पर लोकतंत्र में सामान्य होनी चाहिए। बच्चे निकल रहे हैं, पॉलिटिक्स अलग है और यहां पर सियासत तो चलती रहेगी लेकिन पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन एक नया नवनिर्माण दिख रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्कूली बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए।
3: देखिए साहिल, पायलट गन चली नहीं, पेपर लीक हुआ नहीं, तो पता नहीं छात्र क्यों आंदोलन कर रहे, तो मुझे तो मालूम नहीं। आपको याद है ना धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू में कहा था पेपर लीक तो हुआ नहीं और अभी कहा गया कि पायलट गन चला नहीं, तो जो पायलट गन से जिन बच्चों की आंखें जा रही हैं या जिनको चोट लग रही है या जिनके बारे में आरएएफ खुद अपनी इंटरनल मीटिंग में मान चुका है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की जो डीडी डायरी है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है 22 तारीख को रात को 1:26 पर कि पायलट गन चली थी, तो अब जब इस तरीके का नैरेटिव देश में बनाया जाएगा तो बच्चे तो नाराज होंगे होंगे, क्योंकि उनकी जो जेन्युइन शिकायत है, उनकी जो जेन्युइन दिक्कतें हैं, अभी तक ये था कि डर का माहौल था, अब वो डर का माहौल खत्म हो गया है। अब लोगों को लगने लगा है कि भैया हमको अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए, हमें अब सड़क पर अगर नहीं उतरेंगे तो कहीं किसी तरीके का कोई न्याय नहीं मिलने वाला है, इसलिए ये बच्चे उतर रहे हैं। आपको याद होगा ना कि ये बच्चे तो कांग्रेस पार्टी के कहने पर आए नहीं, जो जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे, और लाखों की संख्या में आए, लाखों की संख्या में। किसी पॉलिटिकल पार्टी में आज की तारीख में इतनी हिम्मत नहीं है, ना उनके पास इतनी संगठन की क्षमता है कि वो इतने बड़े पैमाने पर छात्रों को किसी एक जगह इकट्ठा कर सके, ये एक सच्चाई है। तो अगर पार्टी और संगठन और सरकार अगर इस भावना को नहीं समझेगी, उसका तिरस्कार करने की कोशिश करेगी, बार बार ये कहेगी कि पायलट गन नहीं चला, पेपर लीक नहीं हुआ, और देश के जो गृह मंत्री हैं वो संसद से गायब रहेंगे, किसी तरीके की कोई जवाबदेही तय नहीं होगी, और जिसने जिस डीडी एंट्री में जिस डीसीपी का नाम है कि भाई उनके कहने पर हमने ये पायलट गन चलाई, वो कह रहा मैं तो वहां मौजूद ही नहीं था, तो कम से कम कहीं से तो ये स्पष्टता आए कि भाई इतने बड़े पैमाने पर बर्बरता क्यों बरती गई, किसके कहने पर बरती गई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या कमिश्नर जिम्मेदार हैं, क्या गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, कहीं कोई स्पष्टता ही नहीं है। जब स्पष्टता नहीं होती, जवाबदेही नहीं होती, तभी बच्चे सड़क पर उतरते हैं। इसलिए अगर इस पर जल्दी से कार्रवाई नहीं की गई, अगर सरकार ने देश को भरोसा नहीं दिया, तो यह मामला आगे बढ़ेगा। आपको अच्छी तरीके से याद है कि जब हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने पूरा घेर रखा है, वहां 2 दिन से भोपाल लगभग काफी हद तक जाम है वहां पे, और शिवराज सिंह चौहान चिट्ठी लिख रहे हैं किसको, वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, कि भाई आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये देश के कृषि मंत्री अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, जो वहां खुद मुख्यमंत्री थे, और वो कह रहे हैं कि भाई आपने हमको नहीं दिया। यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अगर झगड़ा होता तो मैं समझ लेता, पूर्व मुख्यमंत्री जो उस केंद्रीय मंत्री है वो मोहन यादव जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो यही ये प्रश्न सबसे बड़ा है कि लोकतंत्र के अंदर अगर जवाबदेही नहीं होगी, अगर जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं वो लोग स्पष्टता नहीं देंगे और वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं लेंगे या जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे, तो लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। यही गलती, बिल्कुल इसी तरीके की गलती 1974-75 में इंदिरा गांधी ने की।
1: चिंगारी चिंगारी लग चुकी है अभी,
3: 100%
1: चिंगारी लग चुकी
3: है ही नहीं
1: एक तरीके
3: से। मैंने आप साहिल, मैंने आपसे कहा किसी पोलिटिकल पार्टी में, दुनिया की किसी पोलिटिकल पार्टी में इतनी हैसियत, हिम्मत, संगठन नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा कर पाते, कोई किसी की नहीं, कोई कर नहीं सकता। ये जब तक ये स्पॉन्टेनियस है, स्वतः स्फूर्त है, और लोगों के अंदर गुस्सा है, इस बात को समझने की जरूरत है।
1: रजत सेठी, राजनीति बदल रही है, सियासत बदल रही है, ये डिबेट्स तो इस तरीके से चलती रहेंगी, पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी एक दूसरे का इस्तीफा मांगती रहेगी, लेकिन जो सड़क सड़क पर नजर आ रहा है, छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने आप बच्चे वहां पर निकल कर आ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे लिए बस रुकिए, हमारे क्लासरूम में पंखे लगाइएगा, ये एक नया तंत्र यहां पर शुरू हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है।
4: देखिए साहिल जी, मुझे लगता है कि ऐसा सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी साल दर साल बना रहे, ये अपने आप में जरूरी है और होना चाहिए, बट वास्तविकता आपको मालूम है कि ऐसा होता नहीं है। अभी एक सेंस ऑफ एक्स्ट्रा अवेयरनेस है, हम लोगों को याद है जब हम लोग स्टूडेंट्स की तरह प्रोटेस्ट किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, जब आशुतोषी मंच पे हुआ करते थे और हम लोग उनको बड़े ऑक के साथ देखते थे जमीन से, और उस टाइम पे भी ऐसे ही एक टोल फ्री नंबर आया था कि कहीं पे भी आपको करप्शन दिखे तो तुरंत फोन करिए इस नंबर पे, अगले दिन पुलिस आ जाएगी, थोड़े दिन नौटंकी चली, बट क्या हुआ सिस्टम का? देखिए सिस्टम का रिफॉर्म मैं बार बार बोलता हूँ, ये प्रदर्शन करके सड़कों पर उतर के ठीक, एक अवेयरनेस आप एक पीक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सस्टेन्ड अवेयरनेस और सस्टेन्ड अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, और उसके लिए इस सिस्टम में सिर्फ हाइपर पॉलिटिसाइजेशन जरूरी नहीं है कि इसमें आके कांग्रेस कुछ बोल रही है, बीजेपी कुछ बोल रही है, तू-तू मैं-मैं में पूरा देश फंसा पड़ा है। ये सस्टेन्ड मूवमेंट चलाने के लिए देश की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सिस्टमिक वाइज अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर आनी चाहिए, उसके डीएनए के अंदर। समस्या ये है कि 100 साल हो गए हैं, 1926 में ब्यूरोक्रेसी इंडियन फॉर्मेट में आईएएस और ये सब बने थे अंग्रेजों के अंडर में, 2026 हो गया है, 100 साल बीत गए हैं, उसके अंदर जो जिस लेवल के रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके, वो सिस्टम ही नहीं है। अभी भी आर्टिकल 311 में बार बार इसका उल्लेख करता हूं कि इनकी नौकरियों को बचाने का काम करता है। क्या हुआ एजुकेशन सेक्रेटरी का? उनको एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। आपने पॉलिटिशियन को तो की तो नौकरी ले ली, ठीक है आपको लेनी चाहिए, आप जो पॉलिटिशियन के हेड पे फिक्स करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को के ऊपर कभी भी फिक्सेशन हुआ है? नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ ट्रांसफर होता है उनके साथ। और मेरी ये मूल समस्या ये है कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पॉलिटिकल हेड से डिटरमाइन नहीं होगी, क्योंकि ये फिर बन जाएगा जब जब सड़क पे चीजें होंगी तब तब पॉलिटिशियन सुनेगा। परमानेंट सिस्टम्स अंदर से कैसे साफ होगा? वो प्रक्रिया बोरिंग है, पॉलिसी ओरिएंटेड है जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी सबको और समय लगाना पड़ेगा और वो शोबाजी से नहीं हो सकता। वो जो पार्लियामेंट में जिस तरह की
1: ये बात आपकी ठीक है, शोबाजी से नहीं हो सकता, स्पोरैडिक मूवमेंट से नहीं हो सकता। और आपने सही कहा कि जब आंदोलन हो रहा था वहां पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, उसके बाद टोल फ्री नंबर दिया गया था। मैं उस मुद्दे पर एक बार फिर आना चाहता हूं, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन के मामले में बड़ी खबर, दिल्ली सरकार के तरफ से यह कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, साफ रिकॉर्ड वालों की रिहाई की जाएगी और उसके साथ साथ प्रदर्शनकारी जो थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है उनको राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया है, गिरफ्तार लोगों के रिहाई की समीक्षा की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर दिल्ली सरकार का यह फैसला आया है। सुशांत बेरा इस वक्त हमारे साथ में है। सुशांत, ये बाइफरकेशन सरकार किस तरीके से करेगी आखिरकार, कि कोई पहले से किसी के खिलाफ अगर मामला चल रहा है वो प्रदर्शनकारी था या सचमुच में वहां पर हुड़दंग मचाने आया था, कुछ सीसीटीवीज और बाकी सारी चीजें भी सरकार ने कही थी, लेकिन ये बड़ा फैसला है और कैसे और कब तक ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी कि प्रदर्शनकारियों की रिहाई और उसके साथ साथ उनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनको अलग करना।
5: देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद भी सरकार इस पूरे मामले को बहुत ही तरीके से समीक्षा कर रही है। सरकार की तरफ से ये आदेश आया है, सीधे तौर पर जो प्रदर्शनकारी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, अगर उनपे किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, अगर उनके ऊपर अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है, तो उनके खिलाफ जो पूरी प्रक्रिया है समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार ये केस रजिस्टर क्यों, किस वजह से हुआ, किन कारणों से हुआ, इन सब की समीक्षा की जाएगी। क्योंकि हमने देखा होगा कि आज भी हम किस तरीके से एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो चला रहे हैं, खुद वहां पर जंतर मंतर पर पुलिस की तरफ से फेस रीडिंग को लेकर के एक पूरा वैन जो है वो तैयार की गई थी कि किस तरीके से 2000 से ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है वो उस प्रदर्शन में शामिल थे। तो उन सब चीजों को एनालाइज जो है वो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस जो है वो करेगी, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
1: एक बात की क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, एक बात समझने की जरूरत है और मैं आपसे वो समझना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अभी भी ये फैसला हुआ है, बाकी राज्यों में भी इस तरीके से फैसले लिए गए हैं, जैसे बिहार में सारे एफआईआर जिसको रिवोक करने का फैसला लिया गया है, महाराष्ट्र के भीतर भी वही फैसला लिया गया है कि जो भी एफआईआर अनलॉफुल असेंबली के या फिर आंदोलनकारियों के खिलाफ है वो सारे के सारे वापस लिए जाएंगे। दिल्ली में जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं, करीब 14 से 15 एफआईआर है, उसमें किसी का भी नाम नहीं है, तो क्या ये एफआईआर वापस लिए जाएंगे या अब नाम डाले जाएंगे उन एफआईआर में, किस तरीके से यह कार्रवाई करने का प्लान चल रहा है सरकार का? क्योंकि आखिरकार ये तो बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, कैसे इंश्योर होगा इसके बारे में बताइए, क्या सरकार कह रही है इस बात को लेकर?
5: देखिए, सरकार क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किसी प्रकार का कोई नाम नहीं है, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ कई लोगों ने पर्सनली जाकर के एफआईआर जो है वो कराई है, कुछ पत्रकारों के द्वारा, कुछ आम लोगों के जरिए कुछ एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है, उन सबकी सरकार जो है वो समीक्षा कर रही है, तमाम अधिकारियों के साथ उनकी ये बैठक जो है वो होगी और उसमें ये पूरी तरीके से समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार इनके केस रजिस्टर किए गए हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर किसी पत्रकार
1: ने फैसला है, लेकिन समीक्षा के बाद ही इस पर अमलीजामा इसको पहनाया जाएगा, क्योंकि पहले तो समीक्षा की जाएगी कि जिनको पकड़ा जा रहा है, क्योंकि अभी तक किसी के नाम उसमें नहीं है, यानी एफआईआर वापस नहीं लिए जाएंगे। सिर्फ कार्रवाई को लेकर दिल्ली सरकार ने एक आदेश दिया हुआ है कि जिनके खिलाफ आपराधिक मामले उन पर मामला चलेगा, लेकिन जो बाकी प्रदर्शनकारी थे जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले नहीं थे उन पर कार्रवाई नहीं होगी, ये कहने की यहां पर कोशिश चल रही है। लेकिन आशुतोष, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, रजत सेठी भी यहां पर कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आज की स्थिति में क्या हम ये बात समझकर चले कि जिस तरीके से अन्ना आंदोलन के समय हमने देखा कि स्पोरैडिक था, उस वक्त हुआ और उसके बाद सारा मामला खत्म हो गया, क्या इस बार भी इसी तरीके से दिखाई देगा या आपको लगता है कि यह मामला आगे तक जाएगा? इस तरीके से छोटे छोटे आंदोलन अलग अलग जगह पर होते रहेंगे और जो जवाबदेही का मुद्दा है वो एक बार फिर सबसे आगे आएगा।
3: देखिए साहिल, सबसे बड़ी बात यह कि लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को हिंसात्मक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये उनका एक संवैधानिक दायित्व है और करना भी चाहिए। अगर आपको कहीं किसी तरीके की दिक्कत पैदा हो रही है आप अपना अपने अपने विरोध प्रदर्शन को करिए, हिंसा अपनाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। देखिए, ये जो मैं बार बार इस बारे में कह रहा हूं कि ये जो काकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है इसकी एक ऐतिहासिक जरूरत थी। अगर आप ये सोचे कि आंदोलन बार बार खड़ा हो जाएगा, बार बार जो है वो सरकार को विवश कर देगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो लोगों का गुस्सा था वो पूरी तरीके से इस बार निकला है। अब ये सरकार को तय करना है कि वो इस गुस्से को एक करेक्टिव मेजर्स के तौर पर अपने कंडक्ट में डालती है या नहीं डालती। अगर उनको लगा कि गलत रास्ते पर हम जा रहे थे या लोगों की भावनाओं को समझ के ठीक से कायदे नहीं उठा पा रहे थे तो फिर वो करेक्टिव मेजर्स लेंगे। लेकिन मैं रजत की एक बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि इस देश के अंदर ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा एरोगेंट और बदतमीज हो गई, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये लोगों को फर्जी केसेस में फंसाते हैं और उसके बाद पनिशमेंट के नाम पे इनका ट्रांसफर हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में, ब्यूरोक्रेसी कंडक्ट टूल में ट्रांसफर किसी तरीके का पनिशमेंट नहीं है। दे शुड लूज देयर जॉब्स।
1: एक सवाल
3: जब तक ये नहीं
1: एक होगा, सवाल मेरा सबके लिए है और शुरुआत आशुतोष आपसे करेंगे। एक सवाल मेरा सबके लिए है कि जब सत्ता बदल हुआ था तब यही कहा गया था कि हम सिस्टम बदलना चाहते हैं एक तरीके से। 2014 में जब सत्ता बदली गई थी, जनता ने बहुत साल बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार दी थी, तब मुद्दा यही उठाया था कि सिस्टम बदला जाएगा, जवाबदेही तय होगी, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इस तरीके का नारा भी दिया गया था। उसके साथ साथ कई सारे मुद्दे रखे गए थे कि 15 दिन के भीतर आपको जवाब देना होगा, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जानकारी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। तो ये जो सत्ता बदलाव के साथ में जो स्थिति बदलने की बात कही गई थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाई है, इसके लिए हम इस तरीके का आंदोलन देख रहे हैं क्या आशुतोष, और उसके बाद रजत सेठी, और उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता, और आखिर में प्रेम शुक्ला जी।
3: देखिए ये एक पॉलिटिकल फेलियर है, और अन्ना का आंदोलन तो किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं था बल्कि पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था। उन्होंने कहा था कि देश के अंदर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है कि भ्रष्टाचार तब तक दूर नहीं होगा जब तक आप लोकपाल बिल लेकर नहीं आए, यानी समस्या का समाधान भी उन्होंने दिया था। दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो अभी भी पुराने तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है, और यही कारण है कि 2014 में लोगों ने कांग्रेस को बुरी तरीके से रिजेक्ट किया, कांग्रेस को जनता ने पनिश किया, सजा दी उनको, और लोगों को उम्मीद थी कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से सत्ता का चरित्र बदलेगा। और मैं कहता हूं सत्ता का चरित्र भी बदला, और ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। विचारधारा के स्तर पर भले ही मेरा उससे मतभेद हो सकता है लेकिन जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, और 2019 में भी जनता ने उनको दोबारा चुना है, लेकिन 2024 आते आते अब वो विश्वास खत्म होता जा रहा है। ये वही जनजी है जिसमें 40% बच्चों ने या फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। ये महज इत्तफाक नहीं है कि 2024 में इनकी सीटें घटके 240 पे आकर टिक गई, और उसके बाद आप लगातार देखिए कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और मैं फिर कहता हूं इस बारे में कि जितने बड़े पैमाने पर स्वतः स्फूर्ति आंदोलन हुआ है, यह सरकार के लिए आत्ममंथन का वक्त है और सोचने का वक्त है कि ब्यूरोक्रेसी के भरोसे सरकार नहीं चल सकती, पॉलिटिकल लीडरशिप को कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव काम करने पड़ेंगे।
1: रजत सेठी।
4: साहिल जी देखिए, जिस तरह से सीआरपीएफ ने बोला कि हमको एक हफ्ते का समय चाहिए ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कि पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, ये बड़ा एक टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक जवाब है। और ऐसा नहीं है कि इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सभी इससे ग्रसित होते हैं कि जहां आप जवाब मांगते हैं जिसका त्वरित जवाब होने चाहिए वो लोग हफ्ता दो हफ्ता फिर एक्सटेंशन मांगेंगे एक महीना, अकाउंटेबिलिटी ही फिक्स नहीं होगी। और इस दौरान क्या होता है कि लोगों का जो तापमान है, जो लोगों का पेशेंस है वो रन आउट कर जाता है, और इसीलिए फिर बच्चे सड़कों पे उतरते हैं। क्या ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फटाफट फिक्स की जाती, जितने भी आपके पास कैमरा है, दिल्ली में सबसे ज्यादा कैमरा है, आपको पार्लियामेंट का एरिया है, जरूर हो सकता है कि आपको ऑपरेशनली जरूरत पड़ी हो तो आप सिद्ध करिए ना, फैक्ट्स तो टेबल पे रखिए, ताकि जो जिस तरह से ऑपोजिशन इसको एक पॉलिटिकल विषय बनाने की कोशिश कर रही है नहीं बना पाए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक परफॉर्म और पेरिश इस मानसिकता के साथ ब्यूरोक्रेसी को नहीं कंट्रोल किया जाएगा ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। सरकारें आती जाती रहेंगी, राजनीतिक दल आते जाते रहेंगे, सत्ता से ये वही बने रहेंगे।
1: ठीक है, डॉली शर्मा जी 30 सेकंड, और उसके बाद प्रेम शुक्ला जी।
0: जी, मैं एक बात सीधी और साफ कहना चाहती हूँ साहिल जी, कि देश की जनता ने दो बार इन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार दी और तीसरी बार आशुतोष जी ने बताया जो जनता ने किया। और प्रधानमंत्री जी का एक पुराना ट्वीट है, एज अ कॉमन मैन आई जॉइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्रैकडाउन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, हैव चेंज्ड माय डीपी, सबको सम्मति दे भगवान। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद करूंगी कि अपने इस पुराने ट्वीट को वो याद करते हुए अपनी सरकार में जवाब देने की कोशिश करें और सिस्टम को दुरुस्त।
1: आखिरी 30 सेकंड।
0: वही है प्रधानमंत्री,
2: सुधार जो है वो सतत प्रक्रिया है और कार्यपालिका में भी सुधार की आवश्यकता है, न्यायिका में भी और न्यायपालिका में भी। अभी सुधार समय पर होते गए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कार्यपालिका में तमाम सुधार किए हैं
1: ठीक है, कुल मिलाकर जवाबदेही आखिरकार सिर्फ सरकार बदलने से जवाबदेही देना शुरू नहीं होगा, ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। क्या ये सिस्टम बदलेगी, नजर रखेंगे इस पर। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
4: कि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है, जब से सत्र शुरू हुआ है तब से, यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इसकी इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और यह इसी सत्र की बात नहीं है, जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है। और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है, दे आर इश्यूलेस।
5: राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया एम्स की रिपोर्ट के साथ कि पिलेट छर्रे लगे हैं पूरे शरीर में, आंख की रोशनी जा रही है। यही नहीं, AK-47 से फायर किया गया पटना में। और यही नहीं, महिलाओं के साथ जितना अशोभनीय और अश्लील व्यवहार किया गया वो सारी दुनिया ने देखा है। गृहमंत्री जी क्यों भाग रहे हैं सदन से? भारत का संविधान कहता है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है संसद के प्रति।
6: राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, मंत्री से क्या मतलब है? वहां मजिस्ट्रेट जो होता है वो जिलाधिकारी दे सकता है, SDM दे सकता है, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन होता है वो आदेश देता है, मंत्री थोड़ा आदेश देता है।

0: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
1: continue to face political pressure to reach a peace deal,
0: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
2: We are over, Jimmy.
3: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: सीजेपी आंदोलन के बाद मंत्री का इस्तीफा हो गया, नए मंत्री बन गए, नया विधेयक लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में चर्चा चल रही है, लेकिन विपक्ष की हसरतें थमती नहीं। अब राहुल गांधी ने ऐसा नया रण छेड़ दिया कि दोनों सदन अशांत दिखे। कल तक एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा करने बैठा विपक्ष, अब गृह मंत्री की सदन में गैर मौजूदगी पर परेशान है। कल लोकसभा में राहुल गांधी गृह मंत्री को खोजते रहे, आज राज्यसभा में खड़गे उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हैं।
5: किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी, कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो।
6: विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इसकी इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
4: दरअसल विपक्ष सीजेपी के आंदोलन में हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाबदेही का सवाल कर रहा है।
5: ये सबके कारण और सब ये सूत्रधारी जो है जहां भी बैठे होंगे वो फौरन इस्तीफा दे। अमित शाह साहब होम मिनिस्टर, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, राजीनामा दे।
4: ये सवाल भले सियासी हो लेकिन ठीक उसी तरह उठाए जा रहे हैं जैसे झारखंड में बीजेपी, जेपीएससी, जेएसएससी के हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने पर उठाती है। जैसे बीजेपी पंजाब में दर्जन भर परीक्षाओं के पेपर लीक के दावे पर दिल्ली से पंजाब तक सवाल करती है, और जिस तरह से बरनाला में सफाई कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ सफाई कर्मी पूरा पंजाब बंद करके जवाबदेही पूछते हैं।
7: जो कांग्रेस और झारखंड के चोरों के समर्थन से सहयोग से जो सरकार चल रही है वो इसे चोरों को जेल के अंदर भेजने का काम किया जाए।
8: शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, हम ये कह रहे हैं कि कंपनसेशन देंगे, आप में यदि हैसियत हिम्मत है तो चलिए, नहीं तो आप लीपापोती कर रहे हैं।
9: केजरीवाल से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए।
4: दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने जिस जेन जी की आवाज सुनकर लगातार फैसले किए, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से फास्ट ट्रैक कोर्ट तक और हाई पावर्ड कमेटी से सख्त एंटी पेपर लीक कानून तक बन रहे हैं, इसमें सत्ता की जवाबदेही की झलक दिखती। वैसी ही जवाबदेही अब देश के दूसरे हिस्सों में भी जेन जी को लेकर जेन अल्फा तक तलाशने लगी। वरना बिहार के गया में टिकारी के स्कूली बच्चे मिड डे मील, खराब चापाकल, गंदे शौचालय की शिकायत लेकर एसडीएम दफ्तर नहीं पहुंचते। कर्नाटक के यादगीर जिले में स्कूली बच्चे बसों के नहीं रोके जाने के विरोध में हाईवे ब्लॉक करते नजर नहीं आते, और यूपी के फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज के बच्चों की शिकायतों पर फौरन पंखे, वाटर सप्लाई और साफ सफाई न हो जाती। लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर सख्ती और पुलिसिया कार्रवाई की जवाबदेही खोज रही सियासत को पता चल रहा है कि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी संसद भवन से 100 मीटर नजदीक तक पहुंच गए थे, और इन प्रदर्शनकारियों के वीडियो की फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वाली वैन से पहचान की गई तो पता चला हत्या के 101, हत्या की कोशिश के 62, डकैती रॉबरी के 284, बलात्कार के 61, पॉक्सो के 6, यौन शोषण के 25, आर्म्स एक्ट के 229, झपटमारी के 135, अपहरण के 19, ड्रग्स के 67, अन्य गुनाहों के 1,884 आरोपियों समेत कुल 2,873 आरोपी प्रदर्शन में शामिल दिखे। और 20 जुलाई को जो कुछ हुआ उसमें पुलिस की कार्रवाई सिर्फ प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए नहीं बल्कि प्रदर्शन की आड़ में पुलिस पर हमला कर रहे उन लोगों के खिलाफ भी थी जिन्होंने 130 पुलिस कर्मियों को जख्मी कर अस्पताल पहुंचा दिया था। आज तक ब्यूरो।
9: केजरीवाल से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए।
2: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो फिर इन मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं? ये धर्मेंद्र प्रधान से तो बड़े नहीं है।
10: पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ, 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, पंजाब में एक ही पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में नो कैश नो फरमाइश, ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है। पंजाब में पेपर लीक नहीं, देयर वाज नो चीट नो पेपर लीक, ओनली चीटिंग चल रही थी जो की रोक दी गई।
11: ये हंगामा बरपा है पंजाब के पेपर लीक पर। दिल्ली के जंतर मंतर चौकी पेपर लीक आंदोलन की चिंगारी अब सियासी हो गई। वहाँ छात्र आंदोलन कर रहे थे, यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर बीजेपी ने धावा बोल दिया। मांग एक ही है कि पेपर लीक पर पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। बीजेपी कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि पंजाब में एक नहीं 6 से 11 बार पेपर लीक हुए हैं, छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया। जो सबसे लेटेस्ट पेपर लीक है वो फार्मेसी की परीक्षा का है। दिल्ली में जब धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सीजेपी का धरना चल रहा था तो केजरीवाल खुद जंतर मंतर गए थे। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आंदोलन के समर्थन में इनकलाब कर रहे थे, लेकिन अब बारी पंजाब के पेपर लीक पर बोलने की आई तो सुविधाजनक सन्नाटा छा गया। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक साथ खड़े दिखते हैं। कांग्रेस की मांग है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाओ, फिर पंजाब से माफी मांगो, फिर विधानसभा में चर्चा करो।
12: उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है तो आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता।
13: एक पुरानी कहानी है कि एक समूह बच्चों का चिल्ला रहा था मेरे देश का राजा चोर है। तो पुलिस ने पकड़ लिया, बोला सर हम तो फलाना देश की बात कर रहे थे। बोले बेवकूफ समझ रखा क्या, हमको नहीं पता था। तो एक संदर्भ से अलग उन्होंने बात रखी, आपने वो उड़ता तीर ले लिया, तो आप तो उनकी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही. अब लेंगे एक ब्रेक. ब्रेक के उस पार हल्ला बोल देख करिए आज तक.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

0: बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में बरपा हंगामा। खड़गे के मनुस्मृति का हवाला देने पर भड़की भारतीय जनता पार्टी ने की माफी की मांग। कहा ऐसे बयान से फैलेगी अशांति। लोकसभा में ध्वनि मत से पास वंदे मातरम बिल। राज्यसभा में पहले ही मंजूर हो चुका है विधेयक। ओवैसी का आरोप, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश। आईआईटी मद्रास डायरेक्टर पर प्रियंका गांधी के गौमूत्र वाले बयान का बड़ा विरोध। कई वाइस चांसलर्स और शिक्षाविदों समेत 215 लोगों ने लिखा खुला पत्र। कहा विचारों पर गंभीरता से हो बहस। सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड वालों को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा नेपाल। कई शहरों में बवाल और हंगामा। अब तक 3 की मौत, दर्जनों घायल। करीब 6 शहरों में कर्फ्यू।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।
3: जो राहुल जी आपके सामने लाए थे उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहां से आई? आसमान से गिर गई।
2: एजुकेशन
4: और भावावेश में विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इसकी इनकी आदत है।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पेपर लीक के मुद्दे पर छिड़ी लड़ाई अब पैलेट गन पर आ गई है। पेपर लीक रोकने के बिल पर चर्चा के दौरान आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। कल लोकसभा में राहुल गांधी के बयान के बाद से ही पैलेट गन के मुद्दे पर पूरा विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आज संसद के बाहर भी विपक्ष ने पोस्टर लेकर पैलेट गन पर सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश की। इस बीच आज नई सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी संसद से सिर्फ 100 मीटर दूर थे और उसी की तस्वीरें भी आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मसला हो सकता था। उधर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS वैन से पता चला है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में 2873 आपराधिक छवि के लोग मौजूद थे। सवाल यह है कि क्या छात्रों के आक्रोश के बीच आपराधिक लोगों ने या फिर अपराध के दोषियों ने या फिर आरोपियों ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की? क्या पैलेट गन अब सरकार को घेरने का विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार बन गया है? क्या अमित शाह को लेकर यह लड़ाई संसद में आगे भी चलेगी? पैलेट का हथियार, शाह पर आर पार, यही है हल्ला बोल में आज का विषय। देखिए ये रिपोर्ट।
2: आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे।
0: लोकसभा में राहुल गांधी के बाद राज्यसभा में अमित शाह के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे के तेवर ये थे।
2: ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी।
0: खड़गे के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने लिखा है कि कांग्रेस ने हदें लांघ दी है, ये अर्बन नक्सल की भाषा है। लेकिन आज संसद में विपक्ष का सवाल यही था, ऑर्डर किसने दिया? यानी सीजेपी प्रोटेस्ट के पुलिस एक्शन पर अमित शाह को जिम्मेदार ठहराए जाने की राहुल गांधी की रणनीति को विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाने का नया जरिया बना लिया है। पेपर लीक बिल पर खड़गे ने भी राज्यसभा में अमित शाह का इस्तीफा मांगा।
2: अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहाँ आकर वो सदन में आकर ही देना, मैं बाहर पूछ रहा हूँ थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए। और खासकर इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए।
0: राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो डालकर लिखा, छात्र न्याय के हकदार हैं। छात्रों के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। एक दूसरी पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, अमित शाह संसद में आकर छात्रों के खिलाफ हुई बर्बर हिंसा पर जवाब देने से इतना क्यों बच रहे हैं, यह अपराध बोध की ओर इशारा करती है। पेपर लीक बिल पर लोकसभा में अपने भाषण और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी अमित शाह को हटाए जाने की मांग कर चुके हैं।
5: शाह मस्ट गो, देयर इज नो एम्बिग्युइटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन।
6: ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप?
5: जब तक जानी पड़ेगी, बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही हैज शॉट आवर स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो।
0: धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह पर हमला सरकार को चारों ओर से घेरने की रणनीति है, जबकि सरकार के मुताबिक विपक्ष मुद्दा विहीन है।
7: जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इसकी इनकी आदत है।
0: इस बीच पैलेट गन पर आरएएफ के एक्शन पर घिरी सीआरपीएफ के डीजी ने जवानों को एक बड़ा संदेश दिया है।
8: मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है।
0: पेपर लीक के मुद्दे से शुरू हुई लड़ाई के बीच सीजेपी प्रोटेस्ट की 20 जुलाई की कुछ नई सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि संसद भवन से 100 मीटर की दूरी पर हजारों प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। रेल भवन के पास

0: शुरुआत कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आपकी सरकार अभी कई मोर्चों पर घिरी हुई है और उसमें अब सबसे बड़ा मोर्चा ये बनता जा रहा है कि भाई क्या क्या हुआ? क्योंकि एक पक्ष ये है जिसमें सीसीटीवी का फुटेज ये दिखा रहा है कि 100 मीटर तक पहुंच गई थी पुलिस, लेकिन ये पैलेट गन कहां चला, किसने चलाया, 20 को चला, 22 को एंट्री हुई, क्या हुआ ये सब?
1: देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपको कहूं कि ये आप, मैंने अगर आपका कैमरा देखे, जीरो लिखा है, ZERO, ये है कॉन्ट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी का पूरे के पूरे चर्चा में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का। और मैं आपके जरिए आपसे, इनफैक्ट मैं पूरे दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि पूरी चर्चा हो गई, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में क्या कांग्रेस ने एजुकेशन रिफॉर्म पे कुछ बोला? क्या कांग्रेस ने पेपर लीक कैसे रोका जाएगा उस पर कुछ बोला? क्या युवाओं के मुद्दे पे कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी जो स्टूडेंट्स को लाठीचार्ज केरला के अंदर कर रही है और वाटर कैनन इस पर चला रही है, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं बोला। तो इनका मकसद राजनीति है। अब मैं आ जाता हूं आपके क्वेश्चन पे। आज ये मुद्दा गया था सुप्रीम कोर्ट की बेंच में, 3 जज बेंच है, जस्टिस जोयमला बागची की बेंच है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच है, जिसमें जस्टिस बागची ने क्लियर कहा कि भाई ग्रेडेड रिस्पॉन्स जो है वो आईपीसी की और सीआरपीसी की जो धारा है उसके अंदर, मैं दोनों धाराएं भी पढ़ देता हूं, 96-106 आईपीसी और सेक्शन 100 CRPC 129-132 CRPC के अंदर लीगल है। इस केस के अंदर एक भी पैलेट गन नहीं चली है, जिसके बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया है। पर हां, 2000 से ज्यादा वहां पे डेडेड क्रिमिनल्स हैं, वहां पे 900 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर्स हैं, 100 से ज्यादा मर्डर के एक्यूज्ड हैं, 60 से ज्यादा रेप के चार्जेस के एक्यूज्ड हैं, जिन्होंने ये प्रोटेस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया। और आपने खुद आपकी विजुअल दिखाई कि पार्लियामेंट से ये सिर्फ 100 मीटर दूर थे। अब राहुल गांधी तो चाहते हैं एनआरकी की सिचुएशन, आज मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या स्टेटमेंट था कि जो खींच के लेकर आएंगे वो मिनिस्टर को, मतलब वो भीड़ तंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं, ना कि लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं। तो ये देश को हम भीड़ तंत्र नहीं होने देंगे। जिनके ऊपर आपराधिक मामला है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जिसके ऊपर ठप्पा सुप्रीम कोर्ट का भी लग चुका है। पर मैं आपसे कहता हूं अंजना जी, अगर ये सच में पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ में है तो कर्नाटक में इन लोग ने केसेस क्यों नहीं वापस लिए, केरला के अंदर इनने केसेस क्यों नहीं वापस लिए? और आज तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने कहा कि जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं वेस्ट है, वेस्ट शब्द का प्रयोग किया। तो ये तो छात्र विरोधी लोग हैं और हम तो छात्रों के साथ हैं। असली छात्र विरोधी फायरिंग क्या थी? जब गुजरात नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, याद है ना भाई जी, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे, 100 से ज्यादा छात्रों के ऊपर जो है उस वक्त गोलियों से भून दिया गया था, भूल गए? आप छात्र विरोधी लोग हैं। तो मेरा निवेदन है अंजना जी, ऐसे लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। अराजकता क्रिएट करना चाहते हैं, छात्रों के इस बिल के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा या तो एक IIT मद्रास के प्रोफेसर को अपमानित करते हैं या इस देश के युवा जिन्होंने इनको वोट नहीं किया उनको इडियट कहते हैं, यही इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: चलिए अब अभय दुबे जी, आप इसका जवाब दीजिए और बताइए, वो कह रहे हैं कि आप सकारात्मक तो कुछ भी योगदान नहीं दे रहे हैं, भड़का रहे।
2: मेरे कत्ल का इल्जाम मुझी पर ठहरा हुआ है क्योंकि मेरा कातिल ही मुंसिफ का चेहरा हुआ है। छात्रों पर ही दोष दे रही भारतीय जनता पार्टी, दुश्मन न करे भाजपा ने वो काम किया है, जेएनजी को पेपर लीक, पैलेट गन और AK-47 का इनाम दिया है। आज मैं साधु देता हूं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को, जो पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी के पाप का उन्होंने किया है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये स्टोरी इंडिया टुडे ने की है, उन्होंने कहा कि सफदरगंज हॉस्पिटल रिपोर्ट कंफर्म्स पैलेट गन इंजुरीज एट नीट प्रोटेस्ट। ये मेरे पास MLC की सफदरजंग हॉस्पिटल की रिपोर्ट जो आज तक ने प्रकाशित की है, यहां पर लिखा है पैलेट गन्स। ये डॉक्टर ने पूरा चित्र बनाया और छलनी छलनी शरीर का चित्र बनाकर बताया कि हाथ में, आंख में, पैर पे इतनी पैलेट गन्स है कि हम निकाल भी नहीं सकते। मैं साधुवाद देता हूं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को, वो कह रहे RAF टू प्रोब क्लेम्स अबाउट यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स पैलेट गन्स ड्यूरिंग दिल्ली प्रोटेस्ट। मैं आज साधुवाद देता हूं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, CRPF के चीफ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा बल के प्रमुख होने के नाते बल के द्वारा बल प्रयोग करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो अमित शाह साहब, जो छात्रों को बर्बरता से पीटा, आपके गृह मंत्रालय के आदेश से उस लकड़ी में कील और कांटे लगाकर मारा, पैलेट गन से सीना छलनी कर दिया, AK-47 चलाकर 3-3 छात्रों को घायल किया, किसानों पर भी आपने AK-47 से रायसेन के मध्य प्रदेश में गोली चलाई थी, तो इसकी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दीजिए। मैं आज तक और आज तक इंडिया टुडे का साधुवाद देता हूं। क्या खुलासा किया, ये क्या कह रहे थे अभी कि कोई रिफॉर्म्स पर बात नहीं की, ट्रांसपेरेंसी पर बात नहीं की। अरे ये बिल ही नहीं था उसका, रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी पर सुझाव लेना है तो आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया विजेंद्र गुप्ता नाम के एक आरोपी का, जिसने 2024 के नीट

0: पेपर लीक करने की पहले से घोषणा कर दी मार्च के महीने में। इंडिया टुडे कैमरा छुपाकर उसके पास पहुंचा, उसने क्या कहा कि नीट का पेपर लीक होगा, उसका सरगना होगा संजय मुखिया। उसने कहा कि दो जो विधायक बेदीराम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी विपुल दुबे और बेदीराम, उस बेदीराम पर 9 मुकदमे, 9 में से 8 चार प्रांतों में पेपर लीक के मुकदमे, उसका भी एक वीडियो लीक हुआ। उसने कहा 40-50 एडमिशन ऐसे ही करा देता हूं, परीक्षा निरस्त हो जाए तो पैसे वापस नहीं करता हूं। उसने कहा विजेंद्र गुप्ता ने कि ये जो संजीव मुखिया है ये मुख्य आरोपी है, 700 स्थानों पर पेपर बांटे गए, 300 करोड़ कलेक्ट किए। संजीव मुखिया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, अगर क्लीन चिट नहीं देते तो 2024 की नीट की परीक्षा भी आपको फिर से करानी पड़ती। ये कह रहे हैं अभद्र भाषा, क्या कह रहे हैं मेरे जेंजी के लिए, भारत के भविष्य के लिए, जिन्होंने भारत का सौभाग्य अपने खून से लिख दिया और भारतीय जनता पार्टी ने बर्बरता की कालिक से। आरएसएस के एक केरल के आरएसएस विचारक कह रहे हैं कि मैं होता तो गोली मार देता प्रदर्शनकारियों को और प्रदर्शनकारियों को बलात्कारी प्रेमी बताया। इनकी सांसद कंगना रनौत इतनी अभद्रता से मेरे जेंजी के लिए बात कर रही है, वो कहती है कि गटर की जनरेशन है, लिखा नशा शराब कई आदमियों से यौन संबंध बनाने की आजादी, हाउसवाइफ तक नहीं बन सकती। प्रधानमंत्री जी इतने घृणित लोग आपके राजनीतिक दल में, आप बर्बरता से छात्रों की पिटाई करें, आप भविष्य बर्बाद करें उनका पेपर लीक करा करके, और आपके सांसद लोग घृणित तरीके से
1: बोलोगे जी।
0: अंजना जी मैं साधुवाद देता हूं आज आज तक को, जो खुलासा उन्होंने किया है एक क्षण अमित शाह जी को रहने का अधिकार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी गए, अब प्रधानमंत्री की बारी, लेकिन उसके पहले अमित शाह साहब आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। आप बताइए कि किसने गोली चलाने का अधिकार दिया, अगर आपने दिया है तो इस्तीफा दीजिए, और आपके संज्ञान में नहीं है तो ये निग्लिजेंस आपका है, तब भी आप इस्तीफा दीजिए। और ज्ञानेंद्र जी को सैल्यूट करता हूं, उन्होंने दायित्व लिया कि मेरे सीआरपीएफ का जो भी बल प्रयोग हुआ है उसकी जिम्मेदारी मेरी, मतलब पहले कीड़ा और काकरोच बताया।
1: अबे जी एरा प्रेस रिलीज आज का, जितना भी आपने बोला इसका कंप्लीट खंडन यहाँ पे आ चुका है।
0: जो
1: किसी भी छात्र के ऊपर कोई भी फायरिंग नहीं रही है, एरा गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का होम डिपार्टमेंट का प्रेस रिलीज,
0: ये रिपोर्ट
1: का सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसको सबमिट किया गया जस्टिस जोयमला बागची को, जो आप न्यूज रिपोर्ट बता रहे हैं उसके पहले की थी, और उसमें भी कोई स्टूडेंट के ऊपर फायरिंग की बात नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, झूठ बोलना बंद करिए अबे जी, इतना ज्यादा रटके आए, एक भी बार छात्र की बात नहीं करी, यही जाके कोर्ट में सबमिट कर दीजिए ना एविडेंस, कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन दिखा दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ केरला के ऊपर छात्रों के ऊपर लाठी चला रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? आपके राज्यों के अंदर पेपर लीक हो रहा है, पंजाब में पेपर लीक हो रहा है, क्यों शांत है? कर्नाटक में पेपर लीक हो रहा है, क्यों शांत है? केरला के अंदर पेपर लीक हो रहा है, क्यों शांत है? तेलंगाना के अंदर पेपर लीक हो रहा है, क्यों शांत है? अरे कुछ तो स्टूडेंट्स का बोलोगे कि नहीं बोलोगे? एक तो स्टूडेंट की बात करो, एक तो स्टूडेंट की बात करो। असम के अंदर आप
2: लोग
0: रात को 12 बजे आकर प्रधानमंत्री जी फ्रेंड्स बताते हैं, और फ्रेंड्स पर इतना अत्याचार प्रधानमंत्री जी, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुझे लगा था कि ये सरकार संवेदनहीन है, लेकिन हजार संवेदनाओं की मौत के बाद अगर कोई जन्म लेता है तो वो ऐसे भारतीय जनता पार्टी का शासन है जिसने हमारे छात्रों को, और क्या मांगने आए थे वो तो अपना भविष्य मांगने आए थे प्रधानमंत्री जी, दोनों हाथ फैलाकर, क्योंकि वो मन की बात सुनते थे, उन्हें नहीं पता था ऐसी मनमानी होगी वहां पर। और क्या कसूर है अगर वो संसद के दरवाजे पर आकर गुहार लगाना चाहते हैं, अगर पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो
2: संसद के अंदर घुसना अगर आप देखिए तो कानूनी जिस तरह से भी उसको काउंटर करना पुलिस के लिए जरूरी था, लेकिन ये स्थिति किसने पैदा की है प्रदीप जी? पहले तो पैलेट गन से इनकार करते रहे, और आप आज तक की कुछ डिजिटल रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे, हमने ब्लैक एंड व्हाइट में भी हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिखाई, उसमें बाकायदा पैलेट गन लिखा हुआ है, तो फिर क्यों इनकार करते रहे? पहले उसको उसका फैक्ट चेक करते रहे। 20 को हुआ इंसिडेंट,
0: आपका शो, आपके शो का भी रेफरेंस है
1: जी,
0: ठीक है, आज ही सर देसाई के शो का भी रेफरेंस है, दोनों आपकी
2: 20 को हुआ था, आपने 22 का उसके बाद उसकी एंट्री करते, क्यों किया ये सर?
1: अंजना जी आज ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वृंद्रा गोवर ने यही एविडेंस सबमिट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस को ग्रेडेड रिस्पांस करने का अधिकार है, कोई पैलेट नहीं चली है। पर आप मुझे बताइए अगर पुलिस के ऊपर कोई पत्थरबाजी करेगा वो स्टूडेंट नहीं है, वो एंटी सोशल एलिमेंट है, कोई पार्लियामेंट के अंदर घुसने का प्रयास करेगा, नेपाल जैसा हालात हिंदुस्तान के अंदर क्रिएट करने की बात करेगा, वो स्टूडेंट नहीं है, वो असामाजिक तत्व है जिसको कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, 2000 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर्स वहां पे मौजूद है, और कांग्रेस क्या बात करेगी? बैंगलोर के अंदर कांग्रेस पार्टी की साइबर दिसंबर पुलिस ने एफआईआर करी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। कर्नाटका के अलावा तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर करी। केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी वाटर कैनन से स्टूडेंट्स को पीट रही है। ये मुझे बताइए ये क्या बात करेंगे ये लोग। इनके समय में जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले एक साल में पेपर लीक हुआ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर पेपर लीक हुआ है, पंजाब में पेपर लीक हुआ है, ये तो रिजाइन तक नहीं कर रहे हैं। इनका एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा तक नहीं किया है। पूरी चर्चा हो गई अंजना जी, आप पूरा उठा लीजिए अपनी आर्काइव। एक राहुल गांधी द्वारा एक इनपुट तो बताइए।
2: अभय दुबे जी
1: एक इनपुट क्या उसने बोला था ना?
2: अभय दुबे एक एक रिस्पॉन्स तो अभय जी इस पर बनता है ना कि खाली नैतिक जवाबदेही जिम्मेदारी सिर्फ नीट एग्जाम पर है या बाकी बच्चों का भी भविष्य मैटर करता है? ऑडियो नहीं आ रहा उनका,
1: झूठ बोलते तो ऑडियो नहीं आता,
0: तो आवाज उठाए हमारे खिलाफ।
2: अनम्यूट कीजिए।
0: जो हमारे हमारे प्रांतों में है तो हम हमारे प्रांतों में है तो उठाए भारतीय जनता पार्टी आवाज।
2: अच्छा,
0: आज मैं कह रहा हूँ संजीव मुखिया को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? जब इतना बड़ा खुलासा इंडिया टुडे आज तक ग्रुप ने इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया, वो ब्रजेंद्र गुप्ता को पकड़ा
1: भाई मेरे भाई में,
0: वो महाराष्ट्र
1: कर्नाटक में छात्र लाठी खा रहा है, अपने
0: पकड़ो नीट के एक्सपोजर दिलवाओगे। उसने
1: 2000 से ज्यादा शिक्षक वहाँ पे मौजूद है, इनका समर्थन क्यों करोगे? सीधी बात बताओ ना अभय जी, कर्नाटक का छात्र छात्र नहीं है? अभय भाई तेलंगाना का छात्र छात्र नहीं है? हिमाचल का छात्र छात्र नहीं है? वहाँ इस्तीफा पंजाब में तो आपका लाइन्स
2: नहीं है। अनिल दुबे जी फिर यही नियम रहेगा ना कि उठाओ तब उठाओ, उठाओ मतलब अब नया शब्द हुआ है, उठाओ तब इस्तीफा होगा, उठाओ मतलब पॉलिटिकल तूफान करो, सड़क पर उतरो।
0: नहीं अंजना
2: दुबे
0: अंजना जी,
2: हाँ जी
0: अंजना जी, क्या बताइए ना, इन्होंने 2024 में कानून बनाया, एक एक एक एक एक हुआ क्या अपराध सिद्ध?
1: अरे सर हम तो कानून लेके आए, आपने 2010 के अंदर बिल को
0: राधा कृष्ण कमेटी
1: 200 सिफारिशें उसकी
0: एक लाख
2: की। अच्छा प्रदीप जी, पहली हियरिंग में सीबीआई का वकील क्यों नहीं पहुंचा?
1: सीबीआई का वकील पहुंचेगा भाई,
2: पहले वो हियरिंग में क्यों नहीं पहुंचा? ये सिंसियरिटी है
1: अंजना जी, सिंसियरिटी है क्योंकि 3 महीने के लिए सीबीआई जो है वो बाउंडेड है। अब तो 3 महीने हमने कानून में ही, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बदमाशी करने का प्रयास करेगा वो कर ही नहीं सकता। मैं आपसे पूछ रहा हूं अंजना जी, आपने हमसे जितने सवाल पूछे, हमने नैतिक जिम्मेदारी ली, उधर नैतिकता के मापदंड सेम क्यों नहीं हो सकते? हमने तो बिल लेके आए, इनने तो बिल तक नहीं लाया। आप देखिए 2010 मई के अंदर बिल लैप्स करने दिया था जब कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर थे, तो ये तो जीरो करने वाले लोग हैं। हमने क्लॉकेट किया
0: भैया की बात करते हो, आज की बात करो।
1: अरे आज की बात कर रहा हूँ, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ, तेलंगाना की बात कर रहा हूँ। आज ही रेवंत रेड्डी ने इंजीनियरिंग के छात्रों को गार्बेज वेस्ट बुलाया मेरे भाई।
0: मुखिया की भी बताओ,
1: आज के दिन आपकी कर्नाटक में सरकार है, डीके शिवकुमार या दिल्ली के अंदर पड़े हुए, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे 80 लाख रुपए की रिश्वत दी जा रही है भाई।
0: कुशवाहा के एनआरआई कॉलेज में पटवारी,
1: अभय जी नैतिकता की जिम्मेदारी लेकर कर्नाटक में कब इस्तीफा होगा, तेलंगाना में कब इस्तीफा होगा, हिमाचल में कब इस्तीफा होगा, ये बता दो आप। वहाँ का छात्र छात्र इसको पीट रहे हो, जिसपे केसेस कर रहे हो
0: कि 3 महीने में 3 महीने।
1: अभय जी
2: बार बार आपका अनम्यूट करने की नौबत आ रही है। इस पर एक बार दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी मतलब चिंता सिर्फ नीट देने वाले बच्चों की करनी है या बाकी बच्चों की भी देश में करनी है? झारखंड में भी करनी है, महाराष्ट्र में भी करनी है, उत्तराखंड में भी करनी है, हाँ तेलंगाना
3: जी। नमस्ते, नमस्ते सागर प्रणाम। सबसे पहले तो इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संसद में भले पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद न हो, लेकिन आज तक पर आप सभी को समान अवसर देती हैं, इसके लिए आपको और आपके पूरी टीम को बधाई। देखिए जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है उसी से सवाल भी पूछे जाते हैं। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में और केंद्र में बीजेपी की है। बीजेपी के इंटेलिजेंस, बीजेपी की पुलिस, बीजेपी के पास पूरी यंत्रणा, उसके बाद भी हमारे विद्यार्थियों पर हमला हो रहा है, हमारे पुलिस कर्मियों पर हमला हो रहा है, हमारे मीडिया के साथियों के ऊपर हमला हो रहा है। ये हमलावर कौन है इसको ढूंढने की जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की है। इनको सजा दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की है। अगर सरकार ये करने में नाकामयाब है तो भाई प्रदीप भंडारी जी आप असफल हैं। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि आपका सवाल था, जहां जहां पेपर लीक होंगे हर जगह दोषियों को ढूंढकर कार्रवाई करनी होगी, उन्हें सजा देना होगा, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने होंगे। ये नहीं कह सकते कि वहां भाजपा की सरकार है तो हम करेंगे, यहां कांग्रेस की सरकार है तो हम नहीं करेंगे। हर उस राज्य में करेंगे जहां पेपर लीक होगा। और भगवान से प्रार्थना करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि आप इसको रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून लाइए। 10 करोड़ के जुर्माना से काम नहीं चलेगा, इसके लिए 100 नहीं 500 करोड़, उनकी आने वाली पीढ़ियां तरस जाएं एक इंच भूमि को, इतना तगड़ा उनको सजा दीजिए। और 10 करोड़ से भी काम नहीं चलेगा, अपना 10 साल के कारावास से सजा से काम नहीं चलेगा, आजीवन उनको फांसी होनी चाहिए, ताकि उनकी जो नस्लें हैं चोरों की, वो नस्ल ही पैदा ना हो डर के मारे। इस तरह अगर हम लोग काम करेंगे तभी होगा, वरना इसका फायदा कुछ मुट्ठी भर कॉकरोच लेके चले जाएंगे। न सरकार को कुछ मिल रहा है, न विपक्ष को कुछ मिल रहा है। हमें देश आगे बढ़ाना है, प्रदीप जी और अभय जी, हमें ये कॉकरोचों और
1: के
3: चक्कर में मत पड़िए।
1: मैं स्वागत करता हूँ कि आप कांग्रेस शासित राज्यों से इस्तीफा मांग रहे हैं,
3: हमें विकसित भारत बनाना है।
1: मैं स्वागत करता हूँ कि आज आपने कांग्रेस को आईना दिखाया।
3: ठीक है भाई, आप शांत हो जाइए, आप
1: शांत हो जाइए, अभय जी
3: किसी भी राज्य में, प्रदीप जी प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ, हमें हर उस राज्य में जहां पर पेपर लीक होगा उसकी आवाज उठानी होगी। दूसरी बात, तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, ये पैलेट गन अगर पुलिस कह रही हमने नहीं चलाया, विद्यार्थी कह रहे हम तो इसके बारे में जानते ही नहीं, तो वो उपद्रवियों ने चलाया होगा, वो अपराधियों ने चलाया होगा, उनको कौन ढूंढेगा? आप और हम बैठ के तो ढूंढ नहीं पाएंगे, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है। ये जिम्मेदारी प्रदीप भंडारी जी आपको लेनी होगी। आप कसम खाइए आज तक के चैनल पर कि मैं ढूंढवाऊंगा, पुलिस मेरे पास है, मंत्रालय मेरे पास है, पूरी यंत्रणा मेरे पास है। अब हम और अभय जी कहां ढूंढेंगे? हम नहीं ढूंढ सकते। आपको ये बताना होगा, ये जो पेपर लीक करते हैं इनके तार आपके शासित राज्यों में क्यों जुड़े मिलते हैं? आप देखिए, आप महाराष्ट्र में आपकी सरकार यहाँ से धरपकड़ होती है, हरियाणा में आपकी सरकार यहाँ से धरपकड़ होती है, दिल्ली में आपकी सरकार यहाँ धरपकड़ होती है, राजस्थान में आपकी सरकार यहाँ धरपकड़ होती है, 13 लोग जेल में बंद हैं। उनसे पूछिए ना कि इनका मेन माफिया कौन है, उसको कब ढूंढा जाएगा? क्योंकि 15 में पेपर लीक हुआ, उसके बाद 21 में हुआ, उसके बाद 24 में हुआ, अब 26 में हो गया। ये क्या करते हैं आप? डबल इंजन की सरकार आपकी फेल हो गई है, उसमें थोड़ा और डीजल पेट्रोल डालिए, जितना तेजी से उसको बढ़ाना नहीं बढ़ा पा रहे हैं आप। आप झूठवाए जुमले बाजी करते हैं।
1: इनका जवाब देना चाहूंगा, बस 30
3: सब दोगे, कैसे दोगे? नहीं पाते। आपको आनंद जी होगा कि ये पैलेट गन चलाने वाले अपराधी।
1: अरे आनंद जी, कोई नहीं चली भैया, कितनी बार तो बोले आपको,
3: मेरी पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है, मैं जानता हूँ। मेरे पुलिस के भी परिवार है, मेरे पुलिस के भी बीवी बच्चे हैं।
1: आनंद जी आज आप कंफ्यूज हो,
3: कुकर्म नहीं कर सकते।
1: आनंद जी आज आप कंफ्यूज हो, एक तरफ आप कह रहे हो
3: इसमें छुपा हुआ भेदिया है,
1: एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई हमने 13 लोगों को गिरफ्तार किया जिनने नीट का पेपर लीक किया, सबको जेल में डाला, आप हमारी तारीफ कर रहे हो। दूसरी तरफ आप अभय दुबे के जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उससे इस्तीफा मांग रहे हो। तो आज मैं स्वागत करता हूं कि आज आपने उद्धव ठाकरे की लाइन नहीं ली, आज आपने कांग्रेस को आईना देखा। और सुनिए, आज जिम्मेदारी हमारी है। दिल्ली दंगों के अंदर 2000 से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के नीचे सड़ रहे हैं, उमर खालिद अभी भी जेल की सलाखों के नीचे सड़ रहा है, वो ताहिर हुसैन जो है उसको सजा हो चुकी है, ये भूलो मत। ये गृहमंत्री अमित शाह है, किसी को नहीं छोड़ेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर, जिसने अगर हाथ में पत्थर उठाया है। हर छात्र को बचाएंगे, हर उपद्रवी को नहीं छोड़ेंगे, याद रखना।
2: तो दिल्ली में भी सारे केस वापस लेने पड़ रहे हैं,
1: सिर्फ छात्रों के
2: लेने,
1: सिर्फ छात्रों के, हम तो पहले से ही कह रहे हैं। पर जिसने हाथ में हाजी अफजल का केस थोड़ी वापस लेंगे, जिसने जाके एसीपी भगत के ऊपर की शर्ट फाड़ी उसका केस थोड़ी।
2: हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, अब आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि अब इससे निकला क्या? अंत तो यही चर्चा होगी ना, कि भाई ये आरोप लगाए कि वहां प्रदर्शनकारियों में आदि हुल्लड़बाज से गालियां दे रहे थे, ये कर रहे थे। अब इनके भी सांसद आ गई हैं, कंगना रनौत जी, जिनको आप बहुत डिफेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आपको लगता है कि एक पूरी जेनरेशन को इस तरह से गटर कहना सही है?
4: नहीं निराई जी, सबसे पहले तो ये कि किसी भी एक इशू की वजह से, किसी भी घटना की वजह से किसी भी जनरेशन को ब्लैंकेट बोलना वो एकदम ठीक नहीं है। और कंगना को मैंने उसके लिए डिफेंड नहीं किया, कंगना को मैंने दूसरी चीज के लिए डिफेंड किया, जो एक दूसरे किसी से बातचीत में उन्होंने कहा था उसका मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो उन्होंने कहा, अगर जाहिर है कि अगर कोई कुछ कहेगा तो उसको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। कंगना ने यही कहा, अगर आजादी गाली देने की और कपड़े उतारने की है तो आपको मुबारक, जिनको कहा हो मैं उसको नहीं बोलता हूं। लेकिन अब उसके आगे की बात, जो मूल बात है, सचमुच आपने जो बड़ा सवाल किया, और देखिए बात तो सब अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आज अभय दुबे जी ने तो अद्भुत बात कर दी, उन्होंने कहा कि जरा उठाओ भाई, तुम भी उठाओ। यानी क्या इस देश में ऐसे ही प्रोटेस्ट होंगे उसके बाद ही सरकारें? ये टिपिकल गवर्नमेंट बिहेवियर है, जो केंद्र की सरकार ने भी जो काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, और मैंने पता नहीं आपके शो में कहा या नहीं कहा, लेकिन लगातार मैं कहता रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सरकार को लगा कि हमने ठीक से परीक्षा करा ली, हमारा काम खत्म हो गया, जबकि देश के बच्चों के लिए वो बहुत बड़ा मुद्दा था। और झारखंड में हजारों बच्चे सड़क पर हैं, देश के हर हिस्से में बच्चे रोज जूझ रहे हैं। असली समस्या क्या है? क्या कोई मैकेनिज्म बनने जा रहा है जिससे इस देश के बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको सरकार सीधे सुन ले? वो मैकेनिज्म बनेगा क्या? और देखिए कितनी हल्की बात हो जाती है, अभी प्रियंका जी पर टिप्पणी की है शिक्षाविदों ने, अब वो वी काम गोटी को आप शिक्षा में सुधार नहीं बता रही और आप कह रही कि वो गौमूत्र एक्सपर्ट है। मतलब कहां, किस तरह की डिबेट हम लोकसभा और राज्यसभा में देख रहे हैं? राज्यसभा में हमने देखा कि खड़गे जी ने पता नहीं कौन सी मनुस्मृति का संदर्भ उठा दिया। सवाल यह, क्या उन बच्चों के भविष्य के लिए सचमुच बात हो रही है क्या? क्या सचमुच कोई ऐसा मैकेनिज्म बनता हुआ दिख रहा है क्या? क्योंकि कानून बन जाने भर से यह नहीं होता है, इसके लिए मैकेनिज्म बनाना होता है जो लगातार, क्योंकि एनटीए भी एक रिफॉर्म था, AIPMT के पेपर लीक होते थे, NTA भी एक रिफॉर्म था, तभी राधाकृष्णन कमेटी बनी, तभी उसने 101 रिकमेंडेशन दिए, वो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा, और ये दुर्भाग्यपूर्ण।
2: चलिए अभय जी, अब इसका जवाब आप दीजिए।
0: अंजना जी, अंजन बहुत अच्छा, पहले तो साधुवाद, इन्होंने प्रकाश डाला कि राधाकृष्णन कमेटी इन्होंने बनाई, 101 सिफारिशें दी, उस कमेटी को कूड़ेदान में डालकर नंदन नीलेकणी की कमेटी बना दी। मैं बिल्कुल राहुल गांधी जी इससे इस व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, किसी भी प्रांत में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए। पिछले 10 साल में 95,000 स्कूल बंद हो गए, 2.6 करोड़ एनरोलमेंट कम हो गए, रिटेंशन रेट 47% रह गया, जानते हैं 24 करोड़ एनरोलमेंट में से 12 करोड़ बच्चे आप स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर रहे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कॉलेजेस का 30%, मतलब 70% बच्चे कॉलेज का चेहरा ही नहीं देख रहे, 15 करोड़ 18 से 23 अच्छा, वर्ष के नौजवान हैं उसमें से।
2: ठीक है, आप आपने कमेटी की कितनी सिफारिशें लागू की आज आप बता दीजिए। प्रदीप जी एक सेकंड, में लौट रही हूं अभय जी, क्योंकि ये कह रहे कि हमने कमेटी की सिफारिशें लागू की है, क्या क्या लागू किया है गिनाइए।
1: राधा कृष्णन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी, जिस रिकमेंडेशंस में से एक प्रिंसिपल एनटीए बनाने का था वो लागू हुआ है। राधा कृष्ण कमेटी की मोर देन 65-70% रिकमेंडेशंस लागू हो चुकी है। इसके पहले 2010 IIT डायरेक्टर्स कमेटी की मीटिंग का एक कमेटी बनी थी जिसने भी यही बात करी थी कि भाई एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग रेगुलेटर होना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से दूर रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको अपॉइंट करेगी बट इट विल बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन इट्स फंक्शनिंग। हमने लागू किया है, सिर्फ एक उसकी बची थी विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो इसलिए नहीं लागू हो पाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला बोला कि भाई अगले साल CBT लागू करेंगे। इसीलिए अगर आप गवर्नमेंट का एफिडेविट देखेंगे तो गवर्नमेंट एफिडेविट में कहा कि हम सीबीटी लागू करने वाले हैं अगले साल से, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। हम तो इसी साल करने वाले थे रीनीट के अंदर, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं अगले साल करिए, और रीनीट उसी व्यवस्था के अंदर सक्सेसफुली हुआ, 11 लोग बच्चे सक्सेसफुली रीनीट दिए हैं अंजना जी, ये हमें भूलना नहीं चाहिए वो ही व्यवस्था के अंदर। पर मैं मुख्य बात कहूंगा, आपने हमसे इतनी अकाउंटेबिलिटी करी अंजना जी, हमने अकाउंटेबिलिटी ली, ये झारखंड की कल की तस्वीर है, इन्होंने बोला सड़क पे आओ सड़क पे आओ, ये लोग हम सड़क पे आ गए, अब क्या इस्तीफा देंगे? इन्हें आपके शो पे बोला कि सड़क पे आओ आंदोलन करो, ये रहा सड़क पे आंदोलन, क्या अब झारखंड के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है इस्तीफा देंगे? अरे उठ ही रहा है भाई,
2: अमर जी कह रहे थे उठाओ, क्या उठाना है सर
1: बताइए इनसे, क्यों नहीं झारखंड पीएससी का पेपर तक लीक हो चुका है, झारखंड पीएससी का पेपर लीक हुआ है,
2: अभय जी क्या उठाना है?
0: अंजना जी
2: इस्तीफा होगा? हाँ
0: अंजना जी, व्हाट्सएप मैं कह रहा हूं ना आपको, देखिए आपने 2024 में फास्ट्रैक कोर्ट बनाया, इंडिया टुडे ने इतना बड़ा खुलासा किया
1: इस पे भी जवाब
0: कि बजेंद्र गुप्ता कह रहा है कि नीट का पेपर लीक होगा और वो लीक हो गया
1: भाई, आपने
0: लीक हो गया, और किसने किया वो बता रहे हैं, संजीव मुखिया ने किया, वो कह रहा है देखिए बीच बीच में ये या ये इनके साथ क्या है अपरिपक्व, इनको ज्ञान है नहीं, तो ये चाहते बीच बीच में बोलकर लोगों के सामने सत्य और तथ्य न जाएं। बेदीराम विधायक है कि नहीं है आपका? बेदीराम विधायक है? संजीव मुखिया को क्लीन चिट क्यों दी बताइए? जब इतना बड़ा आज तक ने खुलासा कर दिया और उस बेदीराम का वीडियो अंजना जी, वो कहता है 50-50 एडमिशन कराता हूं, जब सारे पत्रकार पहुंचे उसको ये भी नहीं पता कि डीपफेक क्या होता है, बोले डीप वीडियो है। अरे तो जांच करे ना सीबीआई, अगर डीपफेक है तो बता आके देश को कि हमने जांच की, पकड़े संजय मुखिया को, क्यों नहीं पकड़ रहे? क्योंकि इनकी पार्टी के
1: मेरे
0: पटवारी भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश में इनका एमएलए का कॉलेज एनआरआई कॉलेज, 10 में से 7 टॉपर, ज्यादातर जो सिलेक्शन हुए इनके कॉलेज से हुए। आज तक गया उसने टॉपर से पूछा कि कितने जिले मध्य, एक प्रश्न सामान्य ज्ञान का उस लड़की को एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं था। बहुत बड़ा हल्ला मचा, इन्होंने वापस नहीं कराई वो परीक्षा, उसकी भी एफआईआर पहले हो चुकी थी, एग्जाम के पहले उन्होंने चोरी चुपके से छुपा दिया उसको, बाद में हमने वो पेपर डिस्क्लोज किए क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जो एफआईआर होती। तो ये क्या करते हैं, संगठित रूप से पाप
1: पर जवाब देते हैं
0: क्योंकि इनके लोग शामिल हैं। ये इसलिए राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिशें क्या इंप्लीमेंट करेंगे जब आपके पास पता होते हुए आरोपियों को नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि आप सत्ताधारी दल उस षड्यंत्र में और बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं। आप कितनी कमेटियां बना लीजिए, कितने कानून बना लीजिए। आपने कहा जुर्माना 5 से 10 करोड़ कर देंगे, सजा 5 से 10 साल कर, अरे पूछ रहा है देश कि आपने 2024 में बनाया, बताइए कितना कन्विक्शन हुआ, कितनों को प्रोसिक्यूट किया, क्या कन्विक्शन रेट है? 0। अरे साहब पूछना ही नहीं चाहते आप, और आप आरोप लगा देते हैं। देखिए कांग्रेस के कर्नाटक में हो रहा है, केरला में हो रहा है, वहां, अरे तो आप क्या क्या हो रहा है ये बताइए। आपने तो उत्तर प्रदेश में उस
1: आदमी को परीक्षा का ठेका दिया
0: जो बिहार की जेल से छूटा है एजुटेस्ट, क्यों? क्योंकि वो गुजरात का है, वो गुजरात की कंपनी है, उसने भी अपनी कंपनी का नाम बदल लिया, एजुटेस्ट कर लिया और उसको दे दिया, एसआईटी ने उसको नोटिस दिया। देश सच जानता है, गूगल करेगा देश साफ पता लग जाएगा। आज तक ने भी उस पे स्टोरी की है भंडारी जी, किसी भ्रम में मत रहिए।
2: छोटे छोटे कॉलेजेस से आ रही है शिकायत, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या प्रदीप
1: जी? ये
2: कि भाई हाँ,
1: मैं गोल पोस्ट इनको शिफ्ट नहीं करने दूंगा। हम पे तो जितने सवाल थे हमने तो जिम्मेदारी लेके देश का अभी तक का सबसे कठोर कानून बनाया जिसमें टाइम बाउंड कन्विक्शन होने वाला है। मैं कह रहा हूँ झारखंड के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिना जी सड़कों पे है, झारखंद में कांग्रेस की सरकार है, 8 पेपर पोस्टपोन और लीक हो चुके हैं, झारखंड पीएससी तक पोस्टपोन और लीक हो चुका है। कांग्रेस पार्टी कब यहाँ इस्तीफा देगी? कांग्रेस पार्टी इस्तीफा यहाँ कब देगी?
2: बीच में बोल रहे हैं
1: अब, देखिये मैं
2: अभय जी, अब आप बीच बीच में बोल रहे हैं, ऐसे मत कीजिए ना।
1: मैंने इनकी सब बात सुनी, इनकी बातों का जिस्ट था, उसके कारण ही तो हम लाके अभी तक का सबसे कठोर कानून लेके आए जो डेटरेंट है। इतना बड़ा डेटरेंट तो अमेरिका के अंदर भी नहीं है, अमेरिका में भी 7 साल की सजा होती है, हमने उससे भी ज्यादा बढ़ाई है।
2: अच्छा, तो एग्जाम कैसे कराई गई ये तो बताइए
1: अंजना जी,
2: मतलब जब चोरी होगी फिर पकड़ी जाएगी तो ठीक है, डेटरेंस ठीक है,
1: हमने
2: एग्जाम कैसे कराइएगा
1: अंजना जी? हमने रीनीट कराया, उस पूरी व्यवस्था के साथ में हमने रीनीट कराया और पूरा 100% सही हुआ। ये आपने भी सबने बताया, 11 लाख बच्चे क्वालिफाई किए 22 लाख में से, और अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नेक्स्ट ईयर से होने वाला है, और उसके साथ में भी अमेंडमेंट लंदन नीलकरी जी की जो टास्क फोर्स है जो बताएगी हम करें, हम तो कर रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है अंजना जी, वहां तो पेपर लीक हो रहे हैं क्योंकि एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, हमारी जिम्मेदारी जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट के अंदर है हम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इनके उस पे बात नहीं हो। अभी इसी समय झारखंड में पेपर लीक हुआ है जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब केरला के अंदर भी जो है छात्रों के ऊपर लाठी हुआ, तभी कर्नाटक में 80 लाख की रिश्वत इनने ली। इनके समय ना रेजिग्नेशन होता है, ना कार्रवाई होती है, ना इन्वेस्टिगेशन होता है, क्यों? ये ना मेरे पास में जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में इतने सारे पेपर लीक हुए थे, 2006 का एम्स, 9 का हरियाणा शिक्षा मंत्री, 2011 का AIEEE, 2012 का एम्स पेपर लीक, 2015 का यूपीपीएससी समाजवादी पार्टी के अंदर, 2013 का कर्नाटक पीयूसी, एक रेजिग्नेशन तक नहीं दिया, ना एक इनने कमेटी बनाई अंजना जी, देश के अंदर एक लॉ तक नहीं लेके आए। मैं तो स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, हमने तो करेक्टिव एक्शन लिया अंजना जी, हमने करेक्टिव एक्शन लिया, हमने टास्क फोर्स बनाई, हमने डेटरेंट दिया, हमने मॉरल ऑब्लिगेशन लिया, इनने क्या?
2: ठीक है, एक बार आइए आपको जरा दिखा देते हैं, सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त राज्यसभा में बोल रहे हैं, फिर लौट रहे हैं दुबे जी।
5: बाद में इंजीनियरिंग के शिक्षक के रूप में मैंने छात्र और शिक्षक दोनों रूपों में बच्चों के उस भाव को अनुभव किया है कि अगर उनको लगता है कि उनकी परीक्षा में कुछ गड़बड़ हो गई तो उनके मन का क्या भाव होता है, यह मैंने अनुभव किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं जिस जमाने में हमने एग्जाम दिए थे, एंट्रेंस एग्जाम, आईटीज के, जिस जमाने में राजीव गांधी जी थे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ इंग्लिश का एग्जाम होता था, और जब तक इंग्लिश क्वालिफाई ना करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कॉपी नहीं जस्ती थी, तमाम बच्चे इसलिए नहीं आ पाते थे, और अगर वो सिलेक्ट हो जाएं तो वो छोड़ के चले जाते थे क्योंकि वो घबरा जाते थे। हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत लोग थे, मगर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 13 भाषाओं में एग्जाम होता है और 13 भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, और आज जो युवा पीढ़ी है, तरुणाई है, वो आज नई ऊंचाइयों पर जा रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया फिजिक्स ओलंपियाड में हमने ज्वाइंट रूप में सही 5 गोल्ड मेडल पाकर टॉप किया, बायो केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ के ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन हमारे बच्चों ने किया। आप अगर देखें तो अभी स्काई रूट कंपनी ने भारत का फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट विक्रम 1 लॉन्च किया और जिसकी एवरेज एज 28 साल है, और यह भी याद करिए इस समय हमारे बच्चों के युवाओं के प्रतीक कौन, गुकेश डोमराजू जो 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बना, वो देवव्रत महेश रेके जिसने 19 साल की उम्र में दंडकम पारायण शुक्ल यजुर्वेद का करके दिखा दिया, ये है हमारी एक्चुअल जेन जी की प्रतिभा, और इस प्रतिभा को निखारने और सवारने के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और वो कितनी संवेदनशील है उसका प्रमाण उपसभापति महोदय ये है कि हमारे इसी सदन के नेता माननीय नड्डा जी और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी दोनों गए और उन्होंने सोनम वांगचुक जी का अनशन समाप्त करने में सफलता हासिल की। पर संवेदनशीलता के अलंबरदारों से मैं पूछना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत का पहला आमरण अनशन हुआ था 19 अक्टूबर 1952 को कोट्टाभी श्रीरामलु ने, किस लिए कि तेलंगाना आंध्र को अलग किया जाए, मगर सभापति महोदय 15 दिसंबर 1952 तक और उनकी मृत्यु हो गई उस आमरण अनशन में, मगर सरकार के कान पर जू नहीं रोगी थी। यह दिखाता है कि कितनी संवेदनशीलता थी और कितना। फिर हमारी सरकार ने जो भी कार्य किए, 2 चक्र की वार्ता की माननीय नड्डा जी ने और माननीय जितेंद्र सिंह जी ने, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने किया, कैबिनेट में कठोर प्रावधानों वाला बिल पास किया, मध्य रात्रि में छात्रों के लिए संदेश किया और छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई उल्लेखनीय सकारात्मक कदम उठाए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने श्री नंदन नीलकंठी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई, मगर सभापति जी मैं समझ नहीं पाता हूं हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए यह गोमूत्र कहां से बीच में आ जाता है, यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं जिनको गोमूत्र की भी समस्या है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 641059, और गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा। सर अगर यह आत्मविश्वास होता जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस में बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती, हम आज लीडर बन के खड़े होते। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। मैं यह भी बताना चाहता हूं हम इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का मजाक नहीं करते, हम पूरी तरीके से संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं, और इस गंभीरता के लिए जो ये बिल आया है हमारे 3 मूल मंत्र हैं, छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता, और पेपर लीक जैसे अपराध के लिए कानूनी कठोरता। Which I can say in English, we are having a sensitive approach, secure process and stringent law. So triple S is our main motto, how to ensure these things. और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विषय पे 2 पक्ष हैं, एक लीगल यानी वैधानिक पक्ष और दूसरा है राजनीतिक पॉलिटिकल पक्ष। हम दोनों, पहले मैं लीगल पक्ष के ऊपर बात करूंगा फिर पॉलिटिकल पक्ष के ऊपर, मगर हमारी सरकार ने यह प्रतिबद्धता दिखाई है कि जब छात्रों के भविष्य की बात आए तो ऐसा कठोर कानून बनाया है कि पेपर लीक करने वाले माफियाओं का मनोबल गिरना नहीं चाहिए, मनोबल जमींदोज हो जाना चाहिए। और इसके लिए 2024 के एक्ट के सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संगठित पेपर लीक करता है तो 1 करोड़ रुपए से उसको आर्थिक दंड को 10 करोड़ रुपए किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी आर्थिक ढांचा जमींदोज हो जाना चाहिए। सबसेक्शन 1 में 5 वर्ष के कारावास को 7 वर्ष किया गया है और 7 वर्ष के कारावास को 10 वर्ष किया गया है। 2024 के एक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन किया गया है कि यदि कोई व्यक्तिगत रूप से इसका दोषी पाया जाता है तो 50 लाख रुपए का होगा फाइन। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी कड़ा शिकंजा करने की व्यवस्था की गई है, तो यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर या मैनेजर होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का फाइन और सजा जो है वो 10 वर्ष तक की हो सकती है। परंतु मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कानून कितना भी कठोर हो वो तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक जांच द्रुत गति से ना हो। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है 2024 के एक्ट के सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 और बी, ए एंड बी दो नए संशोधन किए गए हैं जिससे जांच एजेंसी को 2 महीने के अंदर ही।
2: सुधांशु त्रिवेदी को आप राज्यसभा में सुन रहे थे। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे कि क्या अब जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके बाद आपको बताएंगे कि किस शर्त पर सोनम वांगचुक सरकार पर गर्व करना चाहते हैं, और आखिर में आपको बताएंगे कि जंतर मंतर पर सीआरपीएफ के जिस एक्शन पर सियासत हो रही है उस पर सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि वो जवानों के साथ खड़े। देखते रहिए आज तक।

0: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
1: What you got for me, Jack?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
5: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
6: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
7: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
10: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
9: छक्का?
10: सब कैशलेस हो गया
9: है। हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
11: चार्ज हुआ यार।
12: बैट किसका है?
13: टाटा AIG है तो भरोसा है।
14: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
15: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
18: वी आर ओवर जिमी।
19: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
1: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
2: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
1: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
2: अर्ज किया है
1: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
3: वाँ वाँ वाँ वाँ।
1: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
4: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
5: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
7: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
8: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया
7: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट।
9: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
10: बिलो तो चार्ज हुआ यार।
11: ओ बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: वी आर ओवर जिमी।
14: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता।
1: जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।
0: होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे।
1: ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं।
2: ये मानसून सत्र में राजनीति का दूसरा पार्ट है। पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, जंतर मंतर पर खामोशी है, धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी सीज फायर करने पर राजी नहीं है। राहुल गांधी का इरादा साफ दिख रहा है, पेपर लीक की लड़ाई को पायलट गन पर शिफ्ट करने की, धर्मेंद्र प्रधान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट पर लाने की।
3: She says the student.
2: कल राहुल गांधी संसद में हुए हंगामे के केंद्र में रहे, उनके हमले पर दिन भर बवाल रहा। राहुल गांधी के भाषणों के कुछ शब्दों को असंसदीय बताकर रिकॉर्ड से बाहर भी किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने संसद से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और हमलों का सिलसिला जारी रखा। बीजेपी राहुल गांधी की मंशा को समझ रही है कि राहुल गांधी ने अमित शाह को ही हमले के लिए क्यों चुना, क्योंकि अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं। सत्र के 10 दिन हुए हैं, 15 दिन और बाकी हैं, और राहुल गांधी अमित शाह को चर्चा के केंद्र में रखने की कोशिश में दिख रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहां, दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे, तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं।
2: बीजेपी बनाम राहुल गांधी की यह लड़ाई असल में युवाओं के बीच पैठ बनाने की जंग भी है। पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन की कामयाबी से लगता है कि विपक्ष के हाथों में भविष्य के लिए नई कुंजी आ गई है, जिसका इस्तेमाल संसद में होता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
5: केजरीवाल से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए।
6: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो फिर इन मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं, ये धर्मेंद्र प्रधान से तो बड़े नहीं है।
7: पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ, 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, पंजाब में एक ही पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में नो कैश नो फरमाइश, सिर्फ ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है। पंजाब में पेपर लीक नहीं, देयर वाज नो चीट नो पेपर लीक, ओनली चीटिंग चल रही थी जो कि रोक दी गई।
8: ये हंगामा बरपा है पंजाब के पेपर लीक पर। दिल्ली के जंतर मंतर चौकी पेपर लीक आंदोलन की चिंगारी अब सियासी हो उठी। वहाँ छात्र आंदोलन कर रहे थे, यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर बीजेपी ने धावा बोल दिया। मांग एक ही है कि पेपर लीक पर पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। बीजेपी कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि पंजाब में एक नहीं 6 से 11 बार पेपर लीक हुए हैं, छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया। जो सबसे लेटेस्ट पेपर लीक है वो फार्मेसी की परीक्षा का है। दिल्ली में जब धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सीजेपी का धरना चल रहा था तो केजरीवाल खुद जंतर मंतर गए थे। मनीष सिसोदिया संजय सिंह आंदोलन के समर्थन में इनकलाब कर रहे थे, लेकिन अब बारी पंजाब के पेपर लीक पर बोलने की आई तो सुविधाजनक सन्नाटा छा गया। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक साथ खड़े दिखते हैं। कांग्रेस की मांग है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाओ, फिर पंजाब से माफी मांगो, फिर विधानसभा में चर्चा करो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। आज हम चर्चा कर रहे थे एक बार फिर से जो संसद में आज विपक्ष ने घेराबंदी की है सरकार पर। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए साथ तक मारिया के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: है शकील, शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में बरपा हंगामा, खड़गे के मनुस्मृति का हवाला देने पर भड़की बीजेपी ने की माफी की मांग, कहा ऐसे बयान से फैलेगी अशांति। लोकसभा में ध्वनि मत से पास वंदे मातरम बिल, राज्यसभा में पहले ही मंजूर हो चुका है विधेयक, ओवैसी का आरोप देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश। आईआईटी मद्रास डायरेक्टर पर प्रियंका गांधी के गौमूत्र वाले बयान का बड़ा विरोध, कई वाइस चांसलर और शिक्षाविदों समेत 215 लोगों ने लिखा खुला पत्र, कहा विचारों पर गंभीरता से हो बहस। सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड वालों को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा नेपाल, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 की मौत, दर्जनों घायल, करीब 6 शहरों में कर्फ्यू। शो की शुरुआत संसद में पेपर लीक पर जारी घमासान के साथ, जहां प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर सियासत जारी है। आज राज्यसभा में एक बार फिर विपक्ष ने पैलेट गन के मुद्दे पर सरकार को घेरा।
1: पेपर लीक से शुरू हुआ हंगामा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के एक्शन तक पहुंच गया। विपक्ष के नेताओं ने एक बार फिर पैलेट गन के मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन किया, तो वहीं राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा।
2: इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे।
3: मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में ना आए।
1: उधर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के संसद में ना मौजूद होने पर भी सवाल खड़े कर रहा है।
4: आई डिमांड दैट द होम मिनिस्टर कम टू दिस हाउस, मेक अ स्टेटमेंट, आंसर द स्टूडेंट्स, अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। इफ ही कैन नॉट डू सो, द होम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन सर।
5: हम कह रहे हैं कि छात्रों पे लाठीचार्ज हुई, छात्रों पे बुलेट फायर हुआ, तो अमित शाह जी आए और जवाब दे।
6: डरते नहीं है आप उससे, डरते हैं। वो डराने वाले आदमी है, डराने वाले किसको, जो देशद्रोही ताकत है।
1: पैलेट गन पर जारी घमासान के बीच सीआरपीएफ डीजी का बयान सामने आया, जहां वो अपने जवानों के बचाव में दिखे।
7: आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बलहित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है।
1: बहरहाल अब पूरी सियासत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन पर शिफ्ट हो गई है, जहां विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान भाषा का मुद्दा भी उठा, जहां प्रदर्शनकारियों की भाषा के साथ कंगना रनौत की टिप्पणी को लेकर भी विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे। तो वहीं जेन जी की भाषा का बचाव करने पर बीजेपी ने विपक्ष पर हमला भी किया।
8: इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को ये कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को, अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे, ऐसी बात करोगे गटर, जेंजी को गटर कहोगे, जेंजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेंजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा।
9: भाव समझिए, भाव नहीं समझेंगे तो अगले आंदोलन के लिए तैयार।
8: थैंक यू,
9: इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार।
8: थैंक यू प्रोफेसर झा।
10: वो बहुत अशोभनीय और चिंताजनक था जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया गया, मगर बच्चों की क्या गलती है सर, जो बड़ों से सीखते हैं। यदि यहाँ पे गालियां दी जाती हैं, अभी जो सदन में सदस्य खड़े हुए उन्होंने भी गाली वाली दी थी, अलग बात है, प्रधानमंत्री जी को बिहार में माँ की गाली दी जाती है, आखिर में बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, तो मुझे लगता है अभी ध्यान रखना चाहिए। मगर मैं दलगत भावना से अलग होकर कहता हूं, आज जो कुछ आपने सुना, हम इस तरफ पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, क्या हमें नहीं लगता कि इस विषय को लेकर हमें चिंता होनी चाहिए, इस पे पूरे सदन को चिंता होनी चाहिए और इसका मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। इसलिए मैं सदन की तरफ से कहना चाहूंगा कि शील विनय आदर्श सभ्यता तार बिना झनकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है।
0: उधर पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन जारी है। इस बीच आज तक को 20 जुलाई के नए सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जो पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं।
11: आज तक के पास 20 जुलाई के प्रदर्शन का ये चौंकाने वाला नया सीसीटीवी वीडियो है। वीडियो में दिख रहा है कि संसद भवन से 100 मीटर की दूरी पर हजारों प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, जबकि बीएनएस की धारा 163 लागू थी।
12: ये तो काफी ज्यादा डराने वाली तस्वीर है, तो ये बताता है कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे। पुलिस पर सवाल ये है कि जब पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है तो प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की गई, मजबूत बैरिकेड्स वो क्यों नहीं लगाए गए, और साथ ही साथ जब इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी थी तो इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नई दिल्ली और आसपास में कैसे इकट्ठा हो गई।
11: इन प्रदर्शनकारियों की वीडियो की फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वाले वैन से पहचान की गई तो पता चला कि हत्या के 101, हत्या की कोशिश के 62, डकैती रॉबरी के 284, बलात्कार के 61, पॉक्सो के 6, यौन शोषण के 25, आर्म्स एक्ट के 229, झपटमारी के 135, अपहरण के 19, ड्रग्स के 67, अन्य गुनाहों के 1884 आरोपियों समेत कुल 2873 आरोपी प्रदर्शन में शामिल थे। पुलिस का दावा है कि एक्शन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए नहीं बल्कि प्रदर्शन की आड़ में पुलिस पर हमला कर रहे उन लोगों के खिलाफ भी थी जिसने 130 पुलिस वालों को अस्पताल तक पहुंचा दिया था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सीजेपी प्रदर्शन में शामिल आपराधिक छवि वाले 2873 लोगों की पहचान

0: पार्टी की पंजाब की सरकार एकदम चुप्पी साधे हुई है, टेक्निकलिटीज के पीछे छिप रही है। और इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अभी तक उन्होंने पंजाब के अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया?
1: उधर हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लेकर पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर जांच की मांग की है।
2: मैं डिमांड करती हूँ कि भगवंत मान को ही हटाया जाए, केजरीवाल हटाए, मनीष सिसोदिया जो इधर बोल के गया है कि धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाए, हम हटा देते, तो हरजोत बैंस को हटाए ना। आज तक अपने एजुकेशन मिनिस्टर को आपने नहीं हटाया,
3: अपने
2: हेल्थ मिनिस्टर को नहीं हटाया, तो आप खुद हटिए, क्योंकि आपकी सरकार को उधर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है।
1: फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की परीक्षा को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन पंजाब सरकार इसे पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला बता रही है।
4: ये चीटिंग का मामला था जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में हुआ, और इमीडिएटली पंजाब सरकार ने उस पर एक्शन लिया और जो दोषी लोग थे उनके खिलाफ एक्शन लिया।
1: इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर आप बीजेपी को घेर रही थी, तो वहीं अब बरनाला में पंजाब पुलिस के लाठीचार्ज पर विपक्ष मान सरकार को घेर रहा है। अलग अलग शहरों में बंद का ऐलान किया जा रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच बेअदबी के मामले में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अकाल तख्त ने सभी सिख विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों से मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी दूरी बनाए रखने की बात कही है।
5: गुरु दुखी ते पंथ दुखी दे किसे सवाल दा जवाब ना देन, ओदे वल मुंह ना करन, ओदा मुंह ना वेखन और ओदे तो किनारा करन। वो विधानसभा करके जा रहे, ओदे करके थोड़ा जा रहे, कला मुख्यमंत्री थोड़ा सब कुछ हुंदा।
1: पंजाब में चुनाव से पहले भगवंत मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।
6: आज से सावन का महीना शुरू हो गया है और इस पवित्र महीने के साथ ही शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा। भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर निकल रहे हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। ओवैसी की पार्टी ने कुछ कांवड़ियों पर सवाल उठाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जबरदस्त पलटवार हुआ।
7: भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकल चुके हैं, तन पर भगवा, कांधे पर कांवड़ और महादेव का उद्घोष। लेकिन इस यात्रा के साथ ही शुरू हो गई है सियासत, और इस सियासत की शुरुआत की है ओवैसी के दल ने। AIMIM के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांवड़ ले जा रहे भोले के भुत्तों में कुछ नशेड़ी होते हैं, उनसे सरकार कैसे निपटेगी?
8: क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए, जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं?
7: आरोप सिर्फ इतने नहीं, यूपी सरकार ने तय किया है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा निकलेगी उन रास्तों पर मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की दुकानें ढकी जाएंगी, जैसे यहाँ हापुड़ में शराब की दुकान पर पर्दा डाल दिया गया है। AIMIM यहाँ भी आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी करके दुकानें बंद कराई जा रही हैं।
8: कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं उनको किसने अधिकार दिया, वो कौन होते हैं। दूसरा कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई, आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं।
7: AIMIM ने कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए तो कांग्रेस AIMIM पर टूट पड़ी।
9: अरे बेवकूफी की बातें ना करें फालतू की, AIMIM जब बीजेपी की दलाली कर रहे हो, क्या वही जबान बोल रहे हो जो दूसरे लोग बोलते हैं?
7: बीजेपी भी अब हमलावर है और बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों का इलाज किया जाएगा।
10: लोग पगला गए हैं और ऐसा करके अपनी कब्र खोदने का प्रयास कर रहे
11: हैं। इस तरह की बातें पहले भी कांवड़ यात्रियों पर जो है हमने देखा, टीका टिप्पणी असदुल ओवैसी की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से होती रही है।
10: ऐसे राष्ट्र विरोधी, भारतीय संस्कृति विरोधी लोग
11: जी
10: पहले से सक्रिय है, इलाज किया जाएगा।
7: यूपी और उत्तराखंड की सरकार ने तय किया है कि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कांवड़ यात्रा पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
6: बिहार के पंचायती राज

0: मंत्री दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। याचिका में कहा गया था कि दीपक प्रकाश ना तो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के सदस्य। ये बता दें हम आपको कि गैर विधायक को मंत्री पद पर बने रहने के लिए संविधान में 6 महीने की छूट दी गई है, लेकिन ये छूट केवल एक बार के लिए होती है। दीपक प्रकाश इस समय सीमा को पार कर चुके हैं। हॉकी इंडिया ने तय किया है कि भारतीय हॉकी टीम की जर्सी अब नीले की जगह भगवा रंग की होगी। इस निर्णय के साथ ही राजनीति के गलियारों में जबरदस्त भूचाल आ गया है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जर्सी का रंग बदलने पर नाराजगी जाहिर कर रही है।
1: भारतीय पुरुष और महिला हॉकी की टीमें अगले महीने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले FIH विश्व कप में जब उतरेंगी तो पारंपरिक नीली जर्सी नहीं बल्कि भगवा रंग की ऐसी जर्सी में नजर आएंगी। जी हां, हॉकी टीमों की जर्सी का रंग अब भगवा हो गया है। अब जब जर्सी का रंग भगवा हुआ तो सियासत ने भी रंग दिखाना शुरू किया। सबसे पहले कांग्रेस ने सवाल उठाए,
2: चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है, कोई उसे निकाल नहीं सकता। RSS वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता।
1: अकेले कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी जर्सी का रंग बदलने से नाराज है।
3: बिल्कुल गलत है। हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो कोई भगवा या RSS के BJP के कार्यकर्ता नहीं है। जो उनका रंग आप भगवा कर रहे हो, वो इस देश के सम्मान के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश का नाम रोशन करने के लिए खेलते हैं, आप उसके अंदर भगवा रंग कैसे ला सकते हो।
1: लेकिन BJP खुश है। BJP के नेता जर्सी का रंग भगवा करने वालों को धन्यवाद कह रहे हैं।
4: पूरा देश भगवा में है और देश का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है और हर सनातनी को गर्व होता है भगवा पर। इसलिए अगर टीम इंडिया का स्वेटर का कलर भगवा हो गया है तो ये तो बधाई के पात्र है। टीम भी बधाई के पात्र है और करने वाले भी बधाई के पात्र हैं।
1: अब सवाल ये है कि आखिर हॉकी टीमों की जर्सी का रंग क्यों बदल गया। जवाब हॉकी इंडिया के अध्यक्ष से सुनिए।
5: जो हॉकी टर्फ फील्ड भी है वो भी ब्लू है और जो प्लेइंग किट है खिलाड़ियों का वो भी ब्लू है। कहीं ना कहीं टेक्निकली कहीं ना जब खेल रहे हैं उस दौरान कहीं ना कहीं विजिबिलिटी उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के नेशनल कलर है ऑरेंज कलर, 3 कलर में एक कलर ऑरेंज कलर है, तो इसलिए ऑरेंज कलर को चूज किया गया।
1: यानी कोच, कैप्टन और सपोर्ट स्टाफ से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। फिर भी देश के सियासतदानों ने अपने अपने हिसाब से जर्सी पर जंग शुरू कर दी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब खबरें शेयर बाजार की, चलिए जानते हैं क्या रहा आज बाजार का रुख और सोने चांदी के भाव में कितना अंतर आया।
1: घरेलू शेयर बाजार आज लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 77,928 और निफ्टी 67 अंक की बढ़त के साथ 24,317 पर बंद हुआ। IT और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी के साथ कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों से बाजार को समर्थन मिला। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की खरीदारी और घरेलू अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक धारणा से भी निवेशकों का भरोसा मजबूत रहा। शेयर बाजार में तेजी के साथ रुपए में भी मजबूती देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे मजबूत होकर 95.67 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी और विदेशी पूंजी प्रवाह के चलते रुपए को समर्थन मिला। हालांकि डॉलर में हल्की मजबूती के बावजूद रुपया बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं सराफा बाजार में आज मिला जुला रुख रहा और सोना 177 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 142,401 रुपए और चांदी 789 रुपए गिरकर 216,566 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में हल्की मजबूती और मुनाफा वसूली के दबाव से चांदी में गिरावट रही, जबकि सोने में सीमित खरीदारी के चलते इसकी कीमतों में हल्की बढ़त दर्ज की गई।
0: रणवीर कपूर की फिल्म रामायण के पहले पार्ट का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। मेकर्स ने इसे 30 जुलाई को सुबह 4:15 के शुभ मुहूर्त पर दुनिया भर में लॉन्च किया। ट्रेलर में शान, तेजस्वी और मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि में रणवीर कपूर का लुक प्रभावशाली नजर आ रहा है। माता सीता के किरदार में साई पल्लवी के लुक में सादगी और शालीनता नजर आ रही है। मजेदार स्क्रीन प्रेजेंस और खतरनाक अंदाज में यश दिख रहे हैं जो रावण का किरदार निभा रहे हैं। इनकी चर्चा सबसे ज्यादा की जा रही है।
6: 14 वर्ष का वनवास, उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था।
0: और अब बात दुनिया की, जहां एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुल गई है।
1: अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी रॉयटर्स की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के खिलाफ युद्ध में बुरी तरह टूट चुके ईरान को फिर से खड़ा करने के लिए चीन और पाकिस्तान ने गुपचुप साजिश रची है। दावा है कि चीन की कंपनी के जरिए ईरान को कंधों पर रखकर दागी जाने वाली 400 आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइलें दी जा रही हैं। और इस जहरीली खेप का रूप क्या है? चीन के उरुमकी से मिसाइलें विमान के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगी, फिर या तो विमान से या फिर सीपैक के तहत बनाए गए रास्ते से बलूचिस्तान से होकर ईरान पहुंचेंगी। यानी पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर बन गया है। हालांकि रॉयटर्स की इस खबर पर घिरे चीन और पाकिस्तानी सेना ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें झूठा करार दिया है, लेकिन खुफिया गलियारों में इनकी गद्दारी का सच पहले ही बेनकाब हो चुका है। चीन और पाकिस्तान के इस नापाक गठजोड़ की खबर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची तो वो भी हैरान रह गए।
7: Give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran.
8: Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake. And he knows I'd be quite disappointed. Yeah, please. And he's coming here, I think, on September 24th.
1: Trump ka ye bayan tab aaya hai जब वो मई 2026 में बीजिंग का दौरा कर चुके हैं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 सितंबर 2026 को अमेरिका के राजकीय दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन कूटनीति के पर्दे के पीछे चीन और पाकिस्तान मिलकर अमेरिका की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
9: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
10: In association with
11: भारत की अपनी
12: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
13: Third period comes to an end, game two headed to overtime.
12: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a section of action.
13: They score!
12: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
14: Savari, Sokudo.
15: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
9: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
8: ओ अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और NSE का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
10: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
11: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
12: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
13: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
14: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
15: कुछ तो बात है इस तेल में।
16: We are over, Jimmy.
17: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
18: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
19: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri, Hind Bade Aaram Se,
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
4: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
5: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
6: Your own.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए।
2: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो फिर इन मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं? ये धर्मेंद्र प्रधान से तो बड़े नहीं है।
3: पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ, 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, पंजाब में एक ही पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में नो कैश नो फरमाइश, ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है। पंजाब में पेपर लीक, देयर वाज नो चीट, नो पेपर लीक, ओनली चीटिंग चल रही थी जो कि रोक दी गई।
4: ये हंगामा बरपा है पंजाब के पेपर लीक पर। दिल्ली के जंतर मंतर चौकी पेपर लीक आंदोलन की चिंगारी अब सियासी हो उठी। वहाँ छात्र आंदोलन कर रहे थे, यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर बीजेपी ने धावा बोल दिया। मांग एक ही है कि पेपर लीक पर पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि पंजाब में एक नहीं 6 से 11 बार पेपर लीक हुए हैं। छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया। जो सबसे लेटेस्ट पेपर लीक है वो फार्मेसी की परीक्षा का है। दिल्ली में जब धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सीजेपी का धरना चल रहा था तो केजरीवाल खुद जंतर मंतर गए थे। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आंदोलन के समर्थन में इनकलाब कर रहे थे। लेकिन अब बारी पंजाब के पेपर लीक पर बोलने की आई तो सुविधाजनक सन्नाटा छा गया। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक साथ खड़े दिखते हैं। कांग्रेस की मांग है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाओ, फिर पंजाब से माफी मांगो, फिर विधानसभा में चर्चा करो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में बरपा हंगामा, खरगे के मनुस्मृति का हवाला देने पर भड़की बीजेपी ने की माफी की मांग, कहा ऐसे बयान से फैलेगी अशांति। लोकसभा में ध्वनि मत से पास वंदे मातरम बिल, राज्यसभा में पहले ही मंजूरी हो चुकी थी। ओवैसी का आरोप, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश। आईआईटी मद्रास डायरेक्टर पर प्रियंका गांधी के गौमूत्र वाले बयान का बड़ा विरोध, कई वाइस चांसलर समेत शिक्षाविदों ने लिखा खुला पत्र, कहा विचारों पर गंभीरता से हो बहस। सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड वालों को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा नेपाल, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 की मौत, दर्जनों घायल, करीब 6 शहरों में कर्फ्यू।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.
0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं मारिया शकील। आज विशेष में बात करेंगे असम में आई भीषण बाढ़ की। असम के 7 जिलों को इस समय सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। सैलाब का सितम ऐसा है कि पूरा असम रो रहा है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है और उसके साथ ही ये भी पता चल रहा है कि कैसे गांव, खेत, खलियान, घर बार, फसल सब बर्बाद हो गए, पशु मारे गए, लोगों को अपने साथ कुछ भी ले जाने का मौका नहीं मिला। अब असम के 3 लाख बाढ़ पीड़ित मदद की आस में हैं।

0: अपर असम बर्बाद हो गया है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, लेकिन अपनी तबाही के निशान बहुत गहरे छोड़ गया है। हर तरफ पानी भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी। गांव के गांव अभी भी झील बने हुए हैं। ये असम के शिवसागर जिले के निमाईजान गांव की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ की विभीषिका और सैकड़ों लोगों के दर्द की कई कहानियां हैं। शिवसागर जिले के कई गांव आज भी जलमग्न हैं। हजारों लोग राहत शिविरों और सड़कों पर जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। राहत सामग्री पहुंच तो रही है, लेकिन बहुत कम। 19 जुलाई को आई बाढ़ सब कुछ बर्बाद करके ले गई। ये महिला अपने पानी में डूबे हुए घर से एक गठरी निकाल कर ला रही है। इस गठरी में कोई कीमती सामान नहीं, बल्कि उनके 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बेटे की स्कूल की किताबें। करीब 10 दिनों तक पानी में डूबे रहने के बाद आज वो इन्हें बाहर निकालने में सफल हुई है। अब सड़क किनारे इन किताबों को सुखाया जा रहा है, इस उम्मीद में कि शायद इनमें से कुछ किताबें दोबारा इस्तेमाल की जा सके। ऐसी एक नहीं, कई कहानियां।
1: 11 डेज हो गया, आज तक लोगों का घर से पानी नहीं निकाला, और हर दिन नदी से बारिश पानी आ रहा है और बारिश भी हो रहा है, इसीलिए लोग बहुत नाराज है। तो आसाम का हर लोग अभी डिमांड कर रहा है, मांग रहा है कि आसाम का ये सिचुएशन को, इस कैलामिटी को नेशनल कैलामिटी और नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दो।
0: आपको जानकर हैरानी होगी कि असम में इस मॉनसून में 30% कम बारिश हुई है, और राज्य की क्या हालत है ये पूरी दुनिया देख रही है। 1 जून से 28 जुलाई तक 19,913 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जबकि आमतौर पर इस सीजन में 28,487 मिलीमीटर बारिश होती है। असम के 33 जिलों में से 23 जिलों में 20% कम बारिश हुई थी, और फिर एक साथ बहुत ज्यादा बारिश आ गई। 19 और 20 जुलाई को असम में दो बार सबसे ज्यादा बारिश हुई। नुमालीगढ़ में धनश्री नदी ने कुछ ही घंटों में अपने खतरे के निशान को पार किया, और लगभग 210 घंटों यानी कि 8 दिनों तक खतरे के निशान के पार ही रही। अपर असम में ऐसी बाढ़ पिछले 52 सालों में नहीं दिखी। 28 जुलाई तक बाढ़ असम के 7 जिलों के 622 गांवों तक पहुंच गई। अभी तक कुल 78 लोगों की मौत हुई है। कुल 3,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। चराईदेव जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, यहाँ 1,04,756 लोग प्रभावित हैं, जिसके बाद शिवसागर में 97,074 और जोरहाट में 57,371 लोग बाढ़ प्रभावित हैं। बताया जा रहा है कि करीब 45,342 हेक्टेयर की फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई है। अकेले शिवसागर जिले में ही 22,276 हेक्टेयर और चराईदेव जिले में 16,652 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम के लिए सेना लगा दी गई है। ये तस्वीरें असम के नाजिरा से आई, जहां एक छोटे से बच्चे को सेना के जवानों ने रेस्क्यू किया है। हर तरफ बाढ़ का पानी भरा है। ये परिवार अपने ही घर में फंस गया था। पहले जवानों ने एक महिला को निकाला, और फिर एक दुदमुहे बच्चे को यहां से सुरक्षित निकालकर नाव में बिठाया। बाढ़ में लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया। गाय, बकरी, भैंस, घर बार सब डूब गया। यह तस्वीर भी दिल दहला देने वाली है। पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, और एक शख्स अपनी गाय के छोटे से बछड़े को बचाने के लिए पूरी जान लगा रहा है। शिवसागर के नाजिरा जिले की ये तस्वीरें हैं। ऐसे ही हजारों लोग बेघर हो गए हैं, जो खुले में खाना बना रहे हैं, क्योंकि बाढ़ में पूरा घर बर्बाद है। ये लोग अपने घरों में जाएं तो जाएं कैसे? पानी उतर भी गया, लेकिन कीचड़ इतना है कि जाना ही मुश्किल है। पूरा दलदल बना हुआ है, और किसी तरह से जब घर पहुंच रहे हैं तो दिख रहा है कि घर तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पूरा बिस्तर, सोफा, सब कुछ बर्बाद है। दीवार पर टीवी टंगा है, लेकिन मिट्टी के ये निशान बता रहे हैं कि कहां तक पानी भरा हुआ था। पूरे घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कीचड़ है।
2: ऐसे बाढ़ हुआ है जो नागालैंड से जो उतर के आया है पानी, वो ऐसे मार के गया ना, घर बाड़ी बराबर करके गया है। खुद आदमी का अलावा कुछ नहीं बचा है, यहाँ तो फांस मारा है, बाकी सब नीचे मारा है, फांस तो यहाँ लगा है। लेकिन
3: कितना तारीख को हुआ था वो?
2: ये आपको संडे को 19 तारीख को
3: क्या क्या खेती क्या किया आपने?
2: हम लोग का सब कुछ किया, खाली आदमी जैसे तैसे बचा है, घर बाड़ी गाय बछरी सब खत्म। मिट्टी बालू सबका घर में घुसा है, किसी का आधा घर घुसा, मैंने हाफ हाफ वाल तक घुस गया, किसी का पूरा ऊपर तक आपका छत का ऊपर पानी गया है ना, तो ऐसे सबका घर में घुसा है मिट्टी। तो जो एरिया है वो इधर में ऊपर जो डायरेक्ट नदी का साइड में आने वाला सब पूरा बराबर करके ले गया।
0: 19 और 20 तारीख को अचानक से बाढ़ आई, लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, बस किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागे, उनका कुछ नहीं बच पाया, गाय बकरी भैंसे सब कुछ बाढ़ में बह गए या मारे गए। इस गांव में 150 घर थे, 100 तो पूरी तरह से खत्म हो गए। लोगों के पास सरकार ने खाने के लिए सिर्फ राशन दिया है, बाकी कुछ नहीं है, कपड़े भी मांग कर पहन रहे हैं, बर्तन भी मांग कर ला रहे हैं, पीने का साफ पानी भी नहीं है। इस बाढ़ के पानी में जहां चारों ओर जानवर मरे हुए हैं, वहां बीमारियां भी फैल रही हैं। विकास शर्मा, शिव सागर, असम, आज तक।
4: परिस्थितियों के लिए इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से 1999 में केयर टुडे फंड की स्थापना की गई थी। ऐसी आपदाओं से पीड़ित लोगों की मदद हम तब से कर रहे हैं। आप भी असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सकते हैं। आपको ये मदद कैसे करनी है हम आपको बताते हैं। सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, इन्हें आप नोट कर लीजिए। केयर टुडे फंड के फेवर में आप अपना चेक या डिमांड ड्राफ्ट भेज सकते हैं। इसके लिए आप एड्रेस नोट कर लीजिए। केयर टुडे फंड, इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स, FC8, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी नोएडा, 201301, उत्तर प्रदेश। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट या बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अकाउंट का नाम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, MICR कोड और ब्रांच का एड्रेस भी आप देख सकते हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिए और आप मदद कर सकते हैं। अगर आप में से कोई हमें भारत के बाहर से देख रहा है तो आप हमें मेल करिए caretoday@indiatoday.com पर। बताया जा रहा है कि ऊपरी असम ने ऐसी बाढ़ कई सालों में देखी है। अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने बाढ़ में अपना सब कुछ खो दिया, जिनका घर खत्म हो गया, पशु मारे गए, ना कपड़ा है, ना बर्तन, ना फर्नीचर है, वो फिर से अपनी जिंदगी कैसे शुरू कर पाएंगे? सरकार उनकी कितनी मदद कर पाएगी?
0: देखिए बाढ़ कैसे तबाही लाती। असम का शिवसागर जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये नेपाली खुदी गांव की तस्वीरें हैं, जहां लोग 10 दिन बाद अपने गांव में लौटे हैं और देखिए कैसे उन्हें बर्बादी के निशान मिल रहे हैं। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जैसे ही बाढ़ का पानी उतरा तो लोग अपने गांव में पहुंचे और वहां उन्हें शव भी मिल रहे हैं। यहां इस गांव में 2 शव मिले हैं। पहला शव एक महिला का है जो नदी के किनारे मिला। जैसे ही गांव वाले पहुंचे तो कीचड़ में पूरा शव धंसा हुआ था, बाहर सिर्फ पैर नजर आ रहे थे। दूसरे शव की पहचान सोनू कर्माकर के रूप में हुई है। यह शव भी पूरी तरह से कीचड़ में धंसा हुआ था। लोगों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी।
5: देखिसे मैं आही एग्जैक्ट डेड बॉडी काखते आसु बर्तमान आरो एया साक आमी देखाबले चेष्टा करिसु आपनलोकक बाने उटी आनी यात असलते पेला पेलाले बुली कबो लागিবো
6: बाने
5: आ ए स्थानत आजिलेके हयतु कोनो गम पुआ नाय आमी आजि आही यात उपस्थित होइसु हि আর এই ঘরটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। এই ঘরটো কাৰ আছিল?
6: এটো সোনু কৰ্মকাৰ।
5: সোনু কৰ্মকাৰ। এই সোনু কৰ্মকাৰৰ ঘৰৰ কাষতে আছে 2টা ডেড বডি বৰ্তমান। সদ্যহতে এটা দেখা পোৱা গৈছে আৰু অকণমান আগলৈ এই ডখৰতে পৰি আছে চাব তলত আছে। সেই ডখৰত আমি যাব নোৱাৰো।
0: ইস গাঁও মে ৰহনে ৱালে লোগোঁ কা সব কুছ বৰবাদ হো গয়া। পানী উতৰা হে তো লোগ আপনে ঘৰোঁ মে আপনা সামান তলাশনে কে লিয়ে গয়ে হে। लेकिन बाढ़ की विभीषिका ने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो उन्हें सही सलामत मिल रहा हो।
7: इन मुश्किल हालात में असमवासी भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कई संगठन इस आपदा में पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये असम के बगाईगांव की तस्वीरें हैं, जहां राहत सामग्री का ढेर लगा है। शिवसागर, जोरहाट, चराईदेव के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ग्रेटर बोगाईगांव प्रेस क्लब ने ये बाढ़ सहायता केंद्र खोला है, जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन पानी, खाने पीने का सामान लोग भेज रहे हैं। काफी राहत सामग्री जमा हो गई। मदद करने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पहुंच गए। जाम के हालात हो गए थे।
8: जोरहाट है और जो सराइडो जिला में बहुत बाढ़ हुआ है, तो इसलिए हम भी बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट से बोंगाईगांव ऑल असम स्टूडेंट यूनियन बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट कमेटी और प्रेस क्लब बोंगाईगांव मिलकर हम यहां पे जो सामग्री है वो उठा रहे हैं। यहां पे पानी है, रेशन है, मिसिंग पाउडर है और जो खाद्यों का सारे सामग्री है, कपड़ा है, वो लेकर हम शिवसागर में जाएगा।
7: असम के बहुत से स्थानीय खिलाड़ी भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ये हिमा दास हैं, जो इंटरनेशनल एथलीट हैं। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने भी बाढ़ पीड़ितों की मदद की है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी गुवाहाटी से प्रभावित जिलों के लिए राहत सामग्री के ट्रकों को रवाना किया। बीजेपी के झंडों के साथ इन ट्रकों को यहाँ से भेजा गया।
9: This effort is entirely from the party. An amount has been collected from the grassroots level karyakartas. This small help will be accepted by the people in their four district. We'll continue our effort as party to help the flood victims in the days to come also. This effort will be ongoing. And we'll continue to make such effort to help the flood victim family of Assam.
4: विशेष में वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: बीजेपी के आंदोलन से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। राहुल, प्रियंका और कांग्रेस ब्राह्मण प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय सौंपने पर सवाल उठा रहे हैं, तो यूपी में ओम प्रकाश राजभर ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे समाजवादी पार्टी पर कुर्मी विरोधी होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। यूपी सरकार के मंत्री और SBSP के अध्यक्ष ओपी राजभर ने सवाल उठाया है कि धर्मेंद्र प्रधान को कुर्मी जाति होने की वजह से ही अखिलेश ने इस्तीफा लिया है। अगर शिक्षा मंत्री की जाति यादव होती तो ये रुख नहीं होता। दरअसल इससे पहले अखिलेश यादव ने MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमीन घोटाले के आरोपों को खारिज किया था। तब भी ओपी राजभर ने अखिलेश पर सवाल उठाया था। इस बार यूपी में NDA के सहयोगी OBC नेता फिर वही सवाल उठा रहे हैं।
2: कुर्मी का इस्तीफा लेकर इन लोगों ने, पिछड़ों का एक इस्तीफा लेकर इन्होंने क्या किया? इसका मतलब पिछड़ों के नाम पर ठगी है, नाम ये बेमानी है PDA की भाषा, और निश्चित रूप से कुर्मी सामने आएगा, पिछड़े सामने आएंगे, इन लोगों को इस इलेक्शन में जवाब देंगे।
3: ये जो बात आप कह रहे हैं, ये आपको तब याद क्यों नहीं आई जब कुर्मियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपको आपने पद से हटा दिया था कि छद्म राजनीति करना बंद कीजिए। देखिए, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि बहुजन एकता हो, जो नहीं चाहते यादव और कुर्मी साथ रहें।
1: दरअसल पिछले चुनाव में पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और अवध से लेकर रुहेलखंड तक कुर्मी बिरादरी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई, तो समाजवादी पार्टी फर्श से अर्श तक आ गई। यानी 2019 में 5 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 2024 में 37 सीटों पर पहुंच गई, क्योंकि 2019 में NDA को रिकॉर्ड 74% कुर्मी वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी गठबंधन सिर्फ 26% पर थी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में घटकर 61% पर आ गया और SP को 34% कुर्मी वोट मिल गए। इस चमत्कार के पीछे OBC और दलित वोटरों की BJP से नाराजगी और खासकर कुर्मी वोटरों का SP के साथ लामबंद होना एक बड़ी वजह माना गया। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में कोई अपना जनाधार नहीं रखते, लेकिन BJP में देश के बड़े OBC चेहरे के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं और अब उनके इसी बड़े पहचान की चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत में शुरू हो गई है।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: To right field, and it will leave.
0: From the first pitch of the season to the stretch run,
1: and that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Where's the truth? It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege.
2: सदन में राहुल के बयान पर मचा घमासान, पैलेट गन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीजेपी ने राहुल के बयान को बताया तथ्यहीन,
3: और वह है माफी मांगो राहुल।
2: लोकसभा ने एंटी पेपर लीक बिल पर मुहर लगा दी है, लेकिन बिल पास होने से पहले लड़ाई राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई है। चर्चा के दौरान राहुल ने गृह मंत्री के सदन में न होने का सवाल उठाया, जिस पर काफी देर तक हंगामा हुआ।
1: I'm very happy today to see that the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here.
2: गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए राहुल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री को कांपते देखा।
1: Sir, I saw the carcade, 30 cars, with the Home Minister sitting inside the car, like that, looking.
2: राहुल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा, अमित शाह वो शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली भी थर्रथराते हैं।
4: इस प्रकार से एक्शन किया कि मैंने देखा गाड़ी के अंदर इस प्रकार अमित शाह जी थरथरा रहे थे, कांप रहे थे।
3: राहुल जी, अमित शाह जी वह शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली थरथराते हैं।
2: तो अब साफ है कि एंटी पेपर लीक बिल पर शुरू हुई लड़ाई लोकसभा में राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई है। आज तक ब्यूरो।
5: राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया एम्स की रिपोर्ट के साथ कि पिलेट छर्रे लगे हैं पूरे शरीर में, आंख की रोशनी जा रही है। यही नहीं, AK-47 से फायर किया गया पटना में, और यही नहीं, महिलाओं के साथ जितना अशोभनीय और अश्लील व्यवहार किया गया उस सारी दुनिया ने देखा है। गृहमंत्री जी क्यों भाग रहे हैं सदन से? भारत का संविधान कहता है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है संसद के प्रति।
6: राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, मंत्री से क्या मतलब है? वहाँ मजिस्ट्रेट जो होता है वो जिलाधिकारी दे सकता है, SDM दे सकता है, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन होता है वो आदेश देता है, मंत्री थोड़ा आदेश देता है।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: विशेष में मेरे साथ इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: पर लीड बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में बरपा हंगामा। खड़गे के मनुस्मृति का हवाला देने पर भड़की बीजेपी ने की माफी की मांग। कहा ऐसे बयान से फैलेगी अशांति। लोकसभा में ध्वनि मत से पास वंदे मातरम बिल। राज्यसभा में पहले ही मंजूर हो चुका है विधेयक। ओवैसी का आरोप, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश। आईआईटी मद्रास डायरेक्टर पर प्रियंका वाड्रा के गोमूत्र वाले बयान का बढ़ा विरोध। कई वाइस चांसलर और शिक्षाविदों समेत 215 लोगों ने लिखा खुला पत्र। कहा विचारों पर गंभीरता से हो बहस। सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड वालों को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा नेपाल। कई शहरों में बवाल और हंगामा। अब तक 3 की मौत, दर्जनों घायल। करीब 6 शहरों में कर्फ्यू।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। देश में संसद पर इस वक्त सबकी नजर, विपक्ष की भी जो सरकार को घेर रहा है, सरकार की भी जो आज लगातार बिल पर बहस और पास कराने में कामयाब हो रही है, और सबसे बड़ी नजर जनता की है। क्या संसद में जनता के हक की बात हो रही है? और इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर है कि राज्यसभा में 6 घंटे से पेपर लीक रोकने वाले नए बिल पर बहस जारी है। इस बिल पर देर रात तक चर्चा जारी रह सकती है, जिसके बाद पेपर लीक रोकने वाला नया बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो सकता है। कल लोकसभा में भारी हंगामे के बीच बिल पास हुआ था, लेकिन आज राज्यसभा में बहस जारी। आज ये खबर भी आई है कि एक देश एक चुनाव बिल इस सत्र में नहीं आएगा। इस बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, अब शीतकालीन सत्र तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस बीच आज संसद में हंगामे के बीच भी काम हुआ, लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में बिल पास होने वाला है, और तब सवाल है कि कल तक गृह मंत्री को संसद में घेरने में जुटा रहा विपक्ष क्या अब रणनीति बदल रहा है? क्या अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि E20 और चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो ताकि फायदा उत्तर प्रदेश में उठाया जा सके? और क्या गृह मंत्री को लेकर राहुल के सवाल के जवाब में बीजेपी ने जो कहा उससे अखिलेश यादव को भी ढाल मिल गई है? इन सियासी सवालों के जवाब से पहली रिपोर्ट में खबरदार हो जाइए।
1: वंदे मातरम बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी पास हो गया, हंगामा जरूर हुआ।
2: जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहे। मेरे विचार में
1: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पेपर लीक रोकने वाला बिल पास हो रहा है।
3: सर, देयर इज अ नेशनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू रेज ऑन वैल्यू।
1: तो यानी बिल पास हो रहे हैं, सदन चल रहा है। सवाल सीधा सा है, क्या राहुल गांधी की रणनीति सरकार ने फेल कर दी, या फिर विपक्ष के बीच मुद्दों पर अब आगे बढ़ने की राजनीति हो रही है? सीधी सी बात पहली यही कि जो राहुल गांधी बुधवार तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बताते रहे कि गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग पर कोई कंफ्यूजन नहीं है।
4: कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है।
5: हाँ।
4: क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल
5: लिखा हुआ है? अमित शाह मस्ट गो, नो एम्बिग्युइटी हियर, देयर नो कंफ्यूजन।
1: लेकिन संसद में अमित शाह को लेकर जो रणनीति राहुल गांधी चाहते हैं उससे अलग स्टैंड लिया जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस सदन ठप नहीं करती, पेपर लीक बिल पर बहस में हिस्सा लेती है। अमित शाह का इस्तीफा खड़गे मानते हैं और तभी ऐसा बयान देते हैं जिस पर हंगामा होता है।
6: बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे के सामने हम दिखाएंगे इनके बारे में क्या है।
1: लेकिन इन सब के बीच अखिलेश की रणनीति क्या है? सवाल की वजह ये पोस्ट है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर डाला कि साइकिल की रफ्तार जोरदार है क्योंकि साइकिल E20 से आजाद है। ये पोस्ट क्या इस बात की तरफ इशारा करती है कि अखिलेश संसद में अब E20 के मुद्दे पर बढ़ना चाहते हैं? E20 के अलावा समाजवादी पार्टी संसद में अब और सत्ता और विपक्ष के बीच बहुत खींचतान की जगह उन मुद्दों पर चर्चा चाहती दिखती है जिसका वो फायदा यूपी की राजनीति में उठा सके। जैसे E20 के अलावा वो राम मंदिर, चढ़ावा चोरी के विषय पर चर्चा चाहते हैं।
7: राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा आज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ संसद के अंदर नजर आ रहा है। इस वक्त जो है मकर द्वार के सामने एक दान पात्र रख दिया गया है और इस दान पात्र के अंदर विपक्ष के सभी सांसद दान डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए कैसे जो सांसद है उनके हाथ में जो दान पात्र है उसमें कुछ अलग अलग सांसद, ये दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद है जिन्होंने हाथ में दान पात्र लिया हुआ है, और स्वागत हो रहा है। जो TMC के सांसद है वो उसमें दान डालते हुए नजर आ रहे हैं। हुए हैं। और जैसे ही ये दान डाला जाता है वैसे ही संसद जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो इस दान पत्र को छीनने लगते हैं, यानी कि एक प्रतीकात्मक विरोध है जिसमें जैसे ही दान डलेगा वैसे ही उस डब्बे को लेकर जो है जो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। और ये आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि आप दान लेते हैं और उसी चंदे को जो है लेकर भाग जाते हैं।
8: ये लोग चंदा चोरी की भी नहीं बात करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि बहस हो, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया है चाहे वो हमारे देश के हो चाहे एनआरआईज हो, कितना चंदा आया, हजारों करोड़ों का चंदा आया है। आज ये लोग चंदा चोरी पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये केवल ध्यान भटकाने वाली राजनीति पे बात करना चाहते हैं।
9: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पर कार्य कर रही है, विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं, ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं, ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कारसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी।
1: दिलचस्प राजनीति है कि जब सदन में गृहमंत्री पर सवाल प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से फायरिंग को लेकर विपक्ष उठाता है तो सत्ता पक्ष इस पर बचाव में कहता है कि आदेश मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट या

0: और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिसमें की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया है कि BS3 मानक वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं जिन्हें सर्विसिंग के दौरान बदला जा सकता है। इनसे किसी बड़ी मैकेनिकल समस्या का संकेत नहीं मिलता, मतलब इसके इस्तेमाल से इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं होगी। इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दो पहिया चार पहिया गाड़ियों पर E20 ईंधन की स्टडी की थी। जून 2021 की स्टडी में पाया गया कि पुरानी गाड़ियों की परफॉर्मेंस में कोई खास अंतर नहीं दिखा है और न ही E20 पेट्रोल के चलने पर उसमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई।
2: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
0: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
2: हाँ।
0: क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई?
2: अभी तक तो नहीं।
0: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती हैं मुझे?
1: साल 2005 से 2016 के बीच बनी गाड़ियां BS3 मानक वाली गाड़ियां हैं। माइलेज को लेकर मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसकी वजह सिर्फ ईंधन नहीं है बल्कि ये ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और गाड़ी के रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार ने बताया कि E20 का इस्तेमाल दुनिया में एक सदी से ज्यादा समय से हो रहा है जिसमें सभी बड़े देश शामिल हैं।
0: अमेरिका में इथेनॉल है,
2: हाँ।
0: ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है,
2: हाँ।
0: स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है।
1: सरकार की दलील है कि E20 को लागू करने की तैयारी बारीकी से की गई है। पेट्रोल पंप तक पहुंचने से पहले कई राउंड की टेस्टिंग में इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम, रबर के पार्ट्स, एमिशन और फ्यूल एफिशिएंसी जैसी सभी चीजों की जांच की गई। अगर निर्माताओं को E20 की सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता तो वो इसकी वारंटी नहीं देते।
0: ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा महिंद्र किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया।
1: BS3 मानक की गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं जिनके माइलेज और इंजन की हालत रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार का कहना है कि अगर ऐसी गाड़ियों के रबर पार्ट्स खराब भी होते हैं तो उन्हें आसानी से रूटीन सर्विसिंग में बदला जा सकता है।
3: और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया है, नोटिस, विशेषाधिकार हनन का नोटिस अनुराग ठाकुर की तरफ से राहुल गांधी को दिया गया है। सदन के भीतर असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल को लेकर यह नोटिस है। बीस तारीख को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने ही बताया कि 2800 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी भीड़ में शामिल थे। दिल्ली पुलिस का यह दावा अब उसी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि आज तक को 20 तारीख के जो 5 CCTV फुटेज मिले हैं उनमें प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक जा पहुंचे, बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां से हटाया जा सका। हर CCTV में दिल्ली पुलिस की लापरवाही खबरदार करती दिखी।
4: ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रोटेस्टर यहां खड़े हैं पुलिस के बीच।
1: बीस जुलाई को क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारी संसद में कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे? अगर प्रदर्शनकारी संसद के अंदर आ जाते तो क्या होता? संसद तक कुछ प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंचे? दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चक्र में प्रदर्शनकारी सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए?

0: आज तक के पास आई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने दिल्ली पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि जब प्रदर्शनकारियों के इरादों का पता था, जब दिल्ली पुलिस अच्छे से जानती थी कि प्रदर्शनकारी संसद पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब भी वो खबरदार क्यों नहीं हुई? आखिर प्रदर्शनकारी संसद के गेट के करीब तक कैसे पहुंच गए? 20 तारीख को दोपहर 2 बजे तक प्रदर्शनकारी संसद के गेट तक करीब करीब पहुंच ही गए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, संसद के अंदर गाड़ियां चलती दिख रही हैं, लोगों की आवाजाही साफ नजर आ रही है। संसद भवन की दीवार के पास भीड़ खड़ी हुई देखी जा सकती है। पुलिस भी वहां मौजूद है, जिससे भीड़ की झड़प होती है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। अगर वो ऐसा नहीं करती या फिर इससे 2 गुनी 3 गुनी भीड़ अगर यहाँ होती तो फिर पुलिस को इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो सकता था।
1: पार्लियामेंट के गेट से बेहद करीब तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये देखे, ये अगर आप देखेंगे ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है। ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहे थे, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है, प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की गई, मजबूत बैरिकेड्स वो क्यों नहीं लगाए गए, और साथ ही साथ जब इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी थी तो इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नई दिल्ली और आसपास में कैसे इकट्ठा हो गई।
0: दिल्ली पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी? प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन करने कैसे दिया गया? अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अब ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। संसद के पास लाल रंग की दिख रही इमारत सेल्फी पॉइंट है, जिसकी तरफ अचानक प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते दिखे थे। यहाँ खड़े पुलिस वाले जैसे ही भीड़ को देखते हैं, वो बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद करते नजर आते हैं। रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों का पहुंचना चिंताजनक है, क्योंकि यहां से संसद बहुत नजदीक है। रोजमर्रा की तरह 20 जुलाई को तब यहां ट्रैफिक चलता दिखता है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखकर आम लोग भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने वाला यहां कोई नहीं था। अगर भीड़ शांतिपूर्ण की जगह उग्र होती तो बड़े आराम से आम लोगों की गाड़ियों को निशाना बना सकती थी, क्योंकि यहां पर पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था, जो थे वो एक कोने में खड़े थे। रेल भवन के बाहर की एक और सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जिसमें पुलिस और आरएएफ के जवान देखे जा सकते हैं, जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रेल भवन से दूर करने के लिए धक्के मारते हैं। अगर भीड़ यहां भड़क जाती तो हालात बेकाबू हो सकते थे। हालांकि पुलिस ने यहां तैयारी कर रखी थी। अब सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जो संसद भवन के बेहद नजदीक बने मेट्रो स्टेशन में से एक है। यहां भी 20 तारीख को दोपहर 12:34 पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक इस मेट्रो स्टेशन की तरफ भीड़ भागती हुई आई। पुलिस को हंगामे की आशंका थी, इसलिए यहां पहले से बैरिकेडिंग की गई थी। पीसीआर वैन भी खड़ी देखी जा सकती है।
1: 5 सीसीटीवी संसद भवन के आसपास हमने हमारे पास आया है, जिससे ये पता चलता है कि संसद भवन की दीवार के बेहद करीब जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस पर इन तस्वीर, इन 5 तस्वीरों को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी मजबूत तैयारी क्यों नहीं की थी, भीड़ संसद भवन के आसपास पहुंचने तक कैसे कामयाब हो गई थी। और 20 जुलाई को ऐसी भी तस्वीरें आई थी जब संसद भवन के अंदर सुरक्षा जो कर्मी थे वो अलर्ट मोड में आ गए थे। तो वो अलर्ट मोड में क्यों आए थे 20 जुलाई को, जब वो तस्वीर आई थी वो इसलिए आए थे क्योंकि ये सीसीटीवी जिसमें अगर आप देखें संसद भवन की दीवार, प्रोटेस्टर झड़प होते हुए आपको दिखाई दे रहा, संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है।
0: 20 तारीख को प्रदर्शन की ये 5 सीसीटीवी तस्वीरें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाती हैं, बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद के दरवाजे तक पहुंच गई। अगर ज्यादा लोग होते तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने में काफी दिक्कत आती, लेकिन किसी तरह प्रदर्शनकारी पीछे धकेल दिए गए और संसद में घुसने से बच गए। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: आज ही दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली सरकार ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को बड़ी राहत देते हुए फैसला किया है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया कि ये राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़ी खबर को आज एक नए नजरिए से देखकर खबरदार हो जाइए। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। इन अपराधियों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और तकनीकी तरीकों से की गई। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि जंतर मंतर की तरह ही लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में भी बाहर यही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता तो क्या पता चलता।
0: दिल्ली पुलिस दावा करती है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। हत्या के आरोप से जुड़े 101 आरोपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान देखे गए, ये दावा दिल्ली पुलिस का है। हत्या के प्रयास के आरोप वाले 62 लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी भीड़ में दिल्ली पुलिस को दिखे। 284 डकैती और लूट के आरोपी, रेप केस के 61, पॉक्सो के 6 आरोपी दिल्ली पुलिस कहती है कि जंतर मंतर पर दिख रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आर्म्स एक्ट के 229 आरोपी, स्नैचिंग के 135, किडनैपिंग के 19 आरोपी, ऐसे अलग अलग कुल 2873 चेहरों को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से दिल्ली पुलिस ने पहचानने का दावा किया जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रिकॉर्ड वाला है और वो जंतर मंतर पर पुलिस कहती है प्रदर्शन के दौरान दिखे भी। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का सीधा दावा नहीं करती कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ये 2873 लोग 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर पर किसी तरह की हिंसा या उपद्रव में शामिल थे। पुलिस कहती है कि वो इसकी जांच कर रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो तकनीक है जिसमें पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड वालों के डेटाबेस से मिलान करके अपराध के आरोपियों को भीड़ में देखती है, पहचानती है। लेकिन सवाल है कि जंतर मंतर पर क्या इस तकनीक का इस्तेमाल करके मिले डेटा से ये नैरेटिव देने की कोशिश है कि जंतर मंतर पर पहुंचने वालों या फिर 20 जुलाई के प्रदर्शन में अपराध के आरोपी भी बहुत थे। और तब एक सवाल आता है, सवाल देश की संसद से जुड़ा है जहां संसद में लोग पूछते हैं कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बाहर लगा होता तो फिर सांसद कैसे दिखते। एडीआर का डेटा कहता है कि लोकसभा के 251 यानी करीब 46% सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर के डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि संसद के बाहर अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया जाए तो 170 सांसद यानी करीब 31% ऐसे मिलेंगे जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत दूसरे गंभीर आपराधिक केस हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अगर संसद में होने लगे तो एडीआर के डेटा के मुताबिक पता चलेगा कि 16 सांसदों पर तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का केस चल रहा है जिनमें से 2 सांसद के खिलाफ रेप तक के मामले दर्ज हैं, 4 सांसद के खिलाफ किडनैपिंग का मामला है तो लोकसभा के 43 सांसद के खिलाफ हेट स्पीच का केस है। राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहा है। राज्यसभा के 73 में से 36 यानी 16% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, 1 सांसद पर मर्डर का केस है, 4 सांसद पर हत्या की कोशिश और 3 पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस हैं। ये तस्वीर तब दिख सकती है जब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम देश की संसद के बाहर भी लग जाए।
2: उधर आज राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान भाषा का मुद्दा भी उठा जहां प्रदर्शनकारियों की भाषा के साथ कंगना रनौत की टिप्पणी को लेकर भी विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा तो जेन जी की भाषा का बचाव करने पर बीजेपी ने विपक्ष पर हमला किया।
3: इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर, इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को ये कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को, अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ पांच उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेंजी को गटर कहोगे, जेंजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेंजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा।
4: भाव समझिए, भाव नहीं समझेंगे तो अगले आंदोलन के लिए तैयार।
5: थैंक यू,
4: इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार।
5: थैंक यू प्रोफेसर जहां।
6: वो बहुत अशोभनीय और चिंताजनक था जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया गया, मगर बच्चों की क्या गलती है सर, जो बड़ों से सीखते हैं। यदि यहाँ पे गालियां दी जाती हैं, अभी जो सदन में सदस्य खड़े हुए उन्होंने भी गाली वाली दी थी, अलग बात है। प्रधानमंत्री जी को बिहार में माँ की गाली दी जाती है, आखिर में बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। तो मुझे लगता है अभी ध्यान रखना चाहिए। मगर मैं दलगत भावना से अलग होकर कहता हूं, आज जो कुछ आपने सुना, हम इस तरफ पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, क्या हमें नहीं लगता कि इस विषय को लेकर हमें चिंता होनी चाहिए? इस पे पूरे सदन को चिंता होनी चाहिए और इसका मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। इसलिए मैं सदन की तरफ से कहना चाहूंगा कि शील विनय आदर्श सभ्यता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है?
2: बहस और चर्चा संसद में सदन के भीतर ही नहीं बाहर भी ऐसी चलती दिखी जिससे आपको खबरदार करना जरूरी है। संसद परिसर में मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बीच बातचीत हुई। इतिहास याद दिलाते हुए दोनों ने एक दूसरे को जवाब दिया।
7: बीजेपी के राज में तो सब कुछ ही होता है।
8: कुछ लोग हमारे यहाँ से पहले आपके यहाँ गए, फिर आपके
7: नहीं, वो लोग को हमारा टिकट से जीता था। आप लोग का उधर से 2014 में चला गया। पश्चिम बंगाल में आप लोग को कुछ भी नहीं है, नहीं था, इसलिए कुछ नहीं करना सका। लोगों के दो तीन आदमी तो चला गया और एक वो लोग का हमारा टिकट से जीता है। कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया।
9: तो कांग्रेस ही है ना?
7: अरे कांग्रेस तो हम भी थे, तो छोड़ो ना क्या यार तुम लोग। अरे कांग्रेस तो हम लोग को, कांग्रेस तो हम भी थे। आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस। अरे आप लोग दीदी को तो भगा दिया था, ये बात बोलो। अरे दीदी को नहीं भगा था तुम लोग का, ऐसा हाल होगा? दीदी को 1997 में राजीव जी को सम्मान दिया कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया हमारा फाइट का सीपीएम का साथ एक हो गया।
2: देश की संसद में बड़ी चर्चा करके अब की बार पेपर लीक नहीं होने देने के लिए सख्त सजा और तुरंत सजा वाले कानून का बिल पास हो रहा है। लेकिन देश के अलग अलग राज्य के युवा पूछते हैं कि भर्तियों को लटकाने से दूर करने वाला जो कानून है वो कब पास होगा। हर राज्य की ये मुसीबत है जहां एक नौकरी पाना कई धरने के बाद संभव हो पाता है। नौकरी का भर्ती विज्ञापन निकलवाने के लिए धरना, भर्ती परीक्षा कराने के लिए धरना, भर्ती का रिजल्ट निकलवाने के लिए धरना, रिजल्ट निकला तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए धरना, फिर फाइनल रिजल्ट निकलवाने के लिए धरना, फिर वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को खाली पोस्ट पर नौकरी दिलाने का धरना। इन सब स्टेज के बाद नौकरी मिल जाए तो माएं भगवान को प्रसाद चढ़ाती हैं। यही राजस्थान में हो रहा है जहां सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में वेटिंग नियम लागू करने के लिए बेरोजगार आज फिर जयपुर में प्रदर्शन करते दिखे। 10वीं पास के लिए निकली भर्ती में बड़ी डिग्रियों वाले नौकरी तो पा लिए लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पद के सही हकदार वंचित रह गए।
0: सही क्या है, गलत क्या है, आज आप इस रिपोर्ट को देखिए, खुद बताइए। 100 पद की मान लीजिए सरकारी भर्ती निकली, 100 लोग चुने गए, 50 लोग को वेटिंग लिस्ट में डाला गया। चुने गए 100 लोगों में से अगर 30 ने नौकरी एक साल में छोड़ दी तो वेटिंग लिस्ट वाले 50 में से उन्हें नौकरी देना सही है या फिर दोबारा जनता का पैसा खर्च करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से करना सही? फैसला आप ही करिए और राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार को इन युवाओं के प्रदर्शन की आवाज से आवाज मिलाकर जगाइए, जो बेरोजगार राजस्थान सरकार के मंत्रियों के घर धरना देने के बाद अब जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे। लेकिन सरकार तो इन्हें धरना देने के लिए भी एक दिन का ही मौका देती है। कपड़े खोलकर अपना दर्द बयां करने वाले ये वो बेरोजगार जो राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में कुछ पॉइंट से फाइनल लिस्ट से रह गए और वेटिंग लिस्ट में शामिल कर दिए गए।
10: मेरी उम्र 40 साल हो गई सर, अगर ये वेटिंग नियम लागू नहीं होता है तो हम भर्ती से बाहर हो जाएंगे सर, कभी तैयारी नहीं कर पाएंगे और हमारा परिवार बिखर जाएगा सर हमेशा के लिए। हम बहुत परेशान है सर, डिप्रेशन के शिकार हैं हम।
11: बड़े बड़े मंत्रियों के पास हमने हमारी मांग पहुंचा दी है, सचिवालय में तो कितनी बार हम जाके चपले घिस के आ गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा कि उनके ही जो बच्चे हैं, उनके ही जो राज्य के जो बेरोजगार हैं, उनकी मांग नहीं मान रहे हैं।
12: आज अगर सरकार प्रकृति भर्ती में लगाती है, विशेषकर जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है 54,000 पदों पे, अगर इसका लाभ आज नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या है।
0: हुआ ये कि एमए, एमबीए, पीएचडी करने वाले जो बेरोजगार चपरासी भर्ती में चुने गए, वो ज्वाइन करने की बजाय दूसरी नौकरियों की तैयारी करने लगे। कई चयनित हुए लोग दूसरी नौकरियों का रिजल्ट आते ही चपरासी की नौकरी छोड़ने भी लगे। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वेटिंग लिस्ट में आए लोगों को उन खाली पदों पर रख दिया जाए, लेकिन चुनौती ये कि सरकार का ही बनाया वेटिंग लिस्ट का नियम इस चपरासी भर्ती में लागू नहीं हो रहा।
13: करीब 54,000 पदों की भर्ती थी और इसमें सभी लोग, चाहे वो एमबीए किए हों, पीएचडी किए हों, बहुत ज्यादा शिक्षित लोगों ने भी फॉर्म भर दिया, जिसमें माना जा रहा है कि वो दूसरी परीक्षाएं भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पद खाली रहने वाला है। अब समस्या ये है कि सरकार ने घोषणा कर दी बजट के समय, उसके बाद नियम भी लागू कर दिया, मगर इस सबसे बड़ी भर्ती में उस प्रक्रिया को, वेटिंग नियम जो है 1 ईयर का, उसे लागू नहीं कर पा रही है। बार बार कहा जा रहा है कि हम विचार कर रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी कह दिया कि हम सरकार को बता रहे हैं इंतजार कीजिए, मगर कब तक इंतजार करें ये समझ में नहीं आ रहा है।
14: मैं 3 नंबर से रह रहा हूं, अगर वेटिंग नियम लागू हो जाता है, वजनलाल सरकार वेटिंग नियम लागू कर देती है तो इसमें कम से कम 20 से 25,000 अभ्यर्थियों का भला हो जाएगा।
15: मेरे 156 नंबर थे, 8.5 नंबर तो पहले ही काट दिए। अब वेटिंग में भी पहले बोल रहे थे कि वेटिंग नियम लागू होगा, तब तो वाह वाह लूट ली सरकार ने, और अब इनमें प्रक्रियाधीन भर्तियों में ये लागू नहीं करके बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा है।
0: इस भर्ती का जिम्मा संभाल रहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है कि प्रयास किया था, बात नहीं बनी, टेक्निकल इशू है, सरकार भी चाहेगी लागू हो, प्रयास कर रहे हैं, आगे ईश्वर की मर्जी। लेकिन बेरोजगारों को भगवान के भरोसे छोड़ना कैसे सही माने, जबकि एक साल में खाली हुए पद पर वेटिंग लिस्ट से भर्ती देने के नियम पर सरकार ही अपनी वाहवाही करती है।
16: एक वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा।
0: बेरोजगारों के आंदोलन के बाद अब मंत्री कहते हैं सरकार कोशिश कर रही है।
17: मैंने उचित स्थान पर उस बात को पहुंचाया है, परीक्षण उसका किया जा रहा है, परीक्षण के बाद जो नियमों में प्रावधान है उसके अनुरूप चर्चा करके कुछ किया जा सकता है।
0: इस धरने में दिव्यांग भी हैं जो इशारों से अपनी बात कहते हैं। इनके इशारों को क्या सरकार तब सुनेगी जब बेरोजगारों की ऊंची आवाज और उनके नारे तक सरकार के कान में नहीं पहुंच पा रहे।
13: 54,000 में से करीब करीब 25,000 तक पद बेकार हो सकते हैं, ऐसे में सरकार वेटिंग रूल को लागू करे जिसकी घोषणा विधानसभा में की गई है और इन बेरोजगारों को राहत दे, क्योंकि छोटी नौकरियों में जो कम शिक्षित लोग हैं और जिनकी उम्र बीती जा रही है उन्हें नौकरी की ज्यादा जरूरत है। मगर ये कह रहे हैं कि तमाम मंत्रियों से मिलने के बावजूद अभी तक कोई रास्ता खुला नहीं है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
2: भारत में शिक्षा कभी भी राजनीतिक दलों का कोर एजेंडा नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से जन अल्फा स्कूलों की हालत के खिलाफ लगातार सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए लगता है कि अब चुनावी रेवड़ियों की तरह नेता बेहतर स्कूल के वादे करते नजर आ सकते हैं, गारंटी देंगे कि, क्योंकि मामला जैन अल्फा अब देश भर में सरकारों को खबरदार कर रहा है। आज तक लगातार जैन अल्फा की आवाज को देश तक पहुंचा रहा है। राजस्थान के जालौर से शुरू हुआ यह सिलसिला यूपी के फतेहपुर से होता हुआ अब बिहार के गया जी और कर्नाटक के यादगीर तक पहुंच गया है। मतलब अब यह मुद्दा किसी एक राज्य का नहीं रहा, यह मुद्दा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का हो चुका है। कहीं पर पीने के साफ पानी की मांग हो रही है, कहीं पर टीचरों की मांग प्रदर्शन के बाद पूरी हो चुकी है। दक्षिण में छात्र हाईवे पर इसीलिए बैठ गए क्योंकि उनके यहां पर सरकारी बसें नहीं रुकती थी, जिससे उन्हें स्कूल पहुंचने में देरी हो रही थी। इस नाइंसाफी के खिलाफ बच्चे सड़क पर उतर गए, अपनी मांग पूरी होने तक प्रदर्शन करने की बात चेतावनी के तौर पर देते रहे।
18: राजस्थान के जालौर में टीचरों के लिए प्रदर्शन कर रहे जैन अल्फा ने प्रशासन को खबरदार करके अपनी मांग मनवा ली। जैन अल्फा ने ऐसा ही कमाल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में करके दिखाया, जिसे लेकर आज तक ने जब प्रशासन को खबरदार किया तो छात्रों की मांग पर स्कूल के भीतर पंखे लगते सबने देखा। जैन अल्फा का अब ये प्रदर्शन फतेहपुर से 500 किलोमीटर दूर बिहार के गया जी पहुंच गया, जहां जैन अल्फा ने सिस्टम को झकझोर दिया। गया जी में जैन अल्फा के आक्रोश की आवाज बने उज्जवल कुमार ने एक सांस में अफसरों को अपने स्कूल से जुड़ी एक एक समस्या से खबरदार किया है।
19: किसी भी चीज का सुविधा नहीं है सर, पहले तो बिजली, पानी और सर जो बुक वगैरह था ना सर, बुक भी नहीं मिलता है। कभी कभी किसी को मिल गया तो मिल गया, और फिर किसी को नहीं मिलता है सर। और जब बोले जाते हैं तो बोलते हैं
18: तो गया जी में कहानी फतेहपुर वाली, जहाँ के स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी जरूरतों का अभाव। पंखा, साफ पानी, साफ शौचालय और मिड डे मील से जुड़ी समस्याओं के गुस्से ने ऐसा उबाल मारा कि जैन अल्फा की आवाज सुनकर अफसर हिल गए। गया जी के टिकारी में अनुमंडल कार्यालय के दरवाजे पर जैन अल्फा छात्र धरने पर बैठ गए और लगे नारेबाजी करने। अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं के लिए जैन अल्फा इस तरह से जिम्मेदार अफसरों के दफ्तर पर बैठ जाएंगे, इसका अंदाजा इन अधिकारियों को कभी नहीं रहा होगा। इसीलिए एसडीएम कार्यालय में हलचल मच जाती है, तुरंत छात्रों की समस्या सुनने के लिए अधिकारियों को भेजा जाता है, लेकिन छात्र एसडीएम से मुलाकात करने पर अड़ जाते हैं।
20: चलो तो ऊपर बैठो,
19: यहाँ पर क्या दिक्कत है सर?
20: वहाँ बैठो आराम से, रूम में
19: नहीं सर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सही है सब लोग।
18: गया जी में ये छात्र स्कूल में लंबे समय से छोटी छोटी बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी से भड़के हुए, जब प्रिंसिपल तक ने उनकी एक नहीं सुनी तो इन जैन अल्फा छात्रों के पास सीधे एसडीएम दफ्तर पर धावा बोलकर अपना हक मांगने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा।
19: जो खाना वगैरह बनता ना है, खाना वगैरह में जो है जो कीड़ा निकलता है, तो भाई हम लोग बोले उनसे, एसडीओ सर से, तो वो बोले कि आप चेकअप नहीं करते हैं, तो बोलते हैं कि हम चावल नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो बोले कि चेक आप कर सकते हैं ना, थोड़ा सा भी टेस्ट कर सकते हैं ना कि कैसा बना है खाना, तो वो बोल रहे हैं कि रसोईया चेक करता है।
20: आप कभी शिक्षक खाते हैं क्या? कभी
19: हम लोग नहीं खाते, शिक्षक कभी नहीं खाते।
21: पता चला कि उनका कुछ कुछ शिकायत है जिसको लेकर बच्चे लोग आए हुए हैं, तो हम तुरंत फिर यहाँ पे जैसे ही आए उन लोग से फिर बात हुई, तो जानकारी प्राप्त हुआ कि बेसिक सुविधा जैसे मूलभूत सुविधा जो होता है, पानी, शौचालय, मिड डे मील में जो खाना, फिर उनका जो वस्त्र को लेके बहुत सारा उनका डिमांड था अलग अलग, पंखा को भी लेकर उनका डिमांड था कि पंखा नहीं है, तो इसके आलोक में हमने फिर अभी तत्काल रूप से हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी ADSO और हमारे जो कार्यपालक दंडाधिकारी हैं उनका हमने एक जांच टीम बना दिया है, और प्रिंसिपल को भी हमने एक मौखिक चेतावनी दी है कि जो भी इनका समस्या है 4-5 दिन के अंदर निष्पादन कर दिया जाए, और जो टीम हमारी है वो भी कल जाएगी वहाँ पे, जो भी उनका कंप्लेन होगा और उसको गहन रूप से उसका जांच किया जाएगा।
18: जैन अल्फा की मांग पर प्रशासन ने अपना वादा पूरा किया कि नहीं, ये देखने के लिए आज तक एसडीएम के आश्वासन के अगले दिन गया जी के स्कूल दोबारा पहुंचता है, यहां पर हमें क्लास में लगे पंखे दिखते हैं।
22: इन बच्चों के प्रदर्शन के बाद आप देख सकते हैं कि स्कूल में जिला प्रशासन के द्वारा पंखा लगा दिया गया है, और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बिजली की तार जो खराब थी, वायरिंग खराब था, उसको यहाँ पर सुधार किया।
18: उत्तर में जैन अल्फा के प्रदर्शन को मिलती कामयाबी दक्षिण को भी प्रेरणा दे रही। कर्नाटक की यादगीर में बस सर्विस ना होने पर छात्रों ने रास्ता जाम कर दिया। यादगीर के हट्टीकुनी गांव में बच्चे हाईवे पर बैठ गए क्योंकि स्कूल जाने के लिए यहां सरकारी बस नहीं रुकती थी। इस वजह से रोज इन सैकड़ों छात्रों को
0: बहुत समय बर्बाद होता है, जिससे छात्र और छात्राएं तय वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पाते थे। जब किसी ने इनकी नहीं सुनी तो ये विरोध जताने स्टेट हाईवे पर ही धरना देने लगे। छात्रों ने चेतावनी भी दे दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो इससे भी बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। तो जिन बच्चों को क्लास में होना चाहिए वो बच्चे सड़क पर उतरकर जिम्मेदार अफसरों और सरकारों को अपने हक के लिए उन अफसर और सरकारों की जिम्मेदारी खबरदार करके याद दिला रहे हैं, क्योंकि शिक्षा को लेकर हर सरकार का रवैया छात्र छात्राओं को चुभ रहा है। ये तस्वीर तेलंगाना के खम्मम के गोपालापुरम गांव की है, जहां सरकारी स्कूल की कोई स्थायी इमारत तक नहीं, जिस नाम मात्र के ब्लैक बोर्ड पर एक्शन वर्ड टीचर लिख रही है। यहां भी ये बच्चे कितने दिन पढ़ पाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बच्चों के स्कूल की कोई स्थायी इमारत नहीं। बच्चे जिस टीन शेड के नीचे पढ़ रहे हैं उसे भी टीचर ने पैसा इकट्ठा करके बनवाया है। इसी के नीचे बच्चे जमीन पर जैसे तैसे बैठकर पढ़ने को मजबूर है, और पिछले साल सितंबर में स्कूल की इमारत खतरनाक होने पर गिराई जा चुकी है। साल भर के अंदर कई बार अपील करने के बाद भी प्रशासन स्कूल की नई इमारत नहीं बना पाया। ऐसी ही नाइंसाफियों के खिलाफ जेन अल्फा अब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सरकारों और अफसरों को उनका काम याद दिला रहे हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं।
2: कहा जा रहा है कि जेन अल्फा का अपना अपना जंतर मंतर है, जिन्हें ये महसूस हो रहा है कि उनका हक है कि स्कूल में कम से कम पंखा तो हो, साफ पानी तो हो, लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट तो हो। असल में अब तक हर राज्य में ये होता आया है कि नेताओं को जब निरीक्षण करना होता है तो वो स्कूल पहुंचते हैं, उससे पहले सब कुछ प्रशासन चमका देता है। हकीकत में बुनियादी जरूरतें तक पूरी नहीं होती। ये वो जेन अल्फा है जो खबरदार करके बताता है कि स्कूल की कमी को दूर किया जाए, जिनकी बात प्रशासन सुनता है। ये कहीं जेन जी होते तो प्रशासन इनमें भी शायद कोई पार्टी, जाति, क्रिमिनल बैकग्राउंड खोज लेता। जेन अल्फा उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना में अपनी मांगों को आवाज दे रहे हैं। आवाज तो झारखंड के युवाओं की भी सुननी जरूरी है, जिनके हक के लिए तीन दिन से लगातार आज तक खबरदार कर रहा है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती में धांधली के पीड़ित युवा अब दिल्ली के जंतर मंतर की तरह ही रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में तंबू लगाकर आंदोलन करना शुरू कर चुके हैं। इनकी मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी की भर्तियों में लगातार होते भ्रष्टाचार को रोका जाए।
1: दिल्ली के जंतर मंतर के तरह ही रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में विद्यार्थी जो है जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्ति भर्ती अभियान के खिलाफ उसके लिए अपनी मांगों को लेकर यहां देख सकते हैं अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पे बैठ चुके हैं, और बोरिया बिस्तर इन्होंने यहां डाल दिया है। देखिए गद्दे जो हैं वो आपको दिख जाएंगे, देखिए गद्दे है यहाँ पे, अंदर जो है बिस्तर भी लगा हुआ है, यानी अब रात भर यही कैंप कर रहे हैं 24 घंटा ये बच्चे।
3: हम हजारीबाग से आते हैं सर, अनिश्चितकालीन धरना का हम लोग आह्वान कर चुके हैं और जंतर मंतर के तर्ज पर हम लोग ये आंदोलन को शुरुआत किए हैं, और हमें जब तक सरकार ना मान ले हम लोग की बातें,
1: वार्ता वगैरह
3: नहीं अभी तक वार्ता नहीं हुई है। आप अभी 2026 है ना, 2026 में कोई फॉर्म आ रही है ना, तो 2026 में भी भरिएगा, 2028 में भी भरिएगा और 2029 में भी भरिएगा। इसका जीता जागता उदाहरण है।
1: पैसे भी लगते हैं?
3: नहीं, पैसे नहीं लेते हैं। पैसे तो एक बार ही लेते हैं, अपडेट करने के लिए कोई टेंशन नहीं, लेकिन सर पैसे का महत्व है, या फिर आपका जो समय दे रहे हैं
1: उसका
3: समय पार हो रहा है, उसके बाद जिस लड़का का उम्र सीमा गुजर जाता है ना, फिर उसको प्रोटेस्ट करना पड़ता है, सरकार को बात मनवाना पड़ता है। 2014 में वैकेंसी आई थी कछपाल, 2014 में और 2026 में 2025 में फिर फॉर्म आता है, हम लोग एक बार दिए नहीं और एज एक्सपायर हो गया, सोचने वाला विषय सर।
4: इस मामले में इसलिए आए हैं क्योंकि हरियाणा की जो एजेंसी है TDPL, उसको यहाँ यूपी में ब्लैकलिस्टेड किया गया, आपके राज्य में ही जेएसएससी उसको ब्लैकलिस्टेड किया, लेकिन आप ही की राज्य की सर्वोच्च संस्था जेपीएससी है उसी से आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। देखिए खाना पीना हम लोग इतने मतलब अमीर घर से बिलोंग नहीं करते, हम लोग किसान की बेटियां हैं, गरीब घर की बेटियां हैं, तो हम लोग डेली यहाँ पे बिरयानी और चाट वगैरह नहीं खा सकते हैं, हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं।
23: CID सरकार और जो भी एजेंसियां हैं, आयोग वगैरह सारा मिलकर जैसे CGL में इतना बड़ा धांधली हुआ, हम लोग जब से करप्शन हुआ तब से बोलते आ रहे हैं कि सर इसको सही से जाँच किया जाए। जाए, बट सरकार सीबीआई मतलब सीआईडी और जो भी आयोग है सारे ने मिलकर सर उसको मतलब ज्वाइनिंग करवा दिया।
5: यह है इनके अंदर आक्रोश है, जिस तरह से यहाँ पे इनका आरोप है कि भ्रष्टाचार होता है, सीटें बेची जाती है, उसके खिलाफ कमर कस के अब जो है इनका आक्रोश फूट कर सामने आ गया, कमर कसकर इन्होंने तैयारी की है और ये धरना लंबा चलने वाला है। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
2: बड़ी खबर बता दें आपको, मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय की परीक्षा में सामूहिक नकल का बड़ा मामला सामने आया है। यह आरोप लग रहा है कि छात्रों ने चैट जीपीटी से उत्तर लिखकर परीक्षा दी, कॉपी जांच में एक जैसा जवाब पाया गया और आंसर के अंत में वीडियो लिंक मिला। इसके बाद छिंदवाड़ा के एक निजी कॉलेज का रिजल्ट रोक दिया गया है।
6: विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग के माध्यम से ये सामने आया है कि छिंदवाड़ा का जो एफिलिएटेड कॉलेज है विश्वविद्यालय से, वहाँ पे मोबाइल के माध्यम से चैट जीपीटी के माध्यम से नकल प्रकरण सामने आए हैं। और यह तब उजागर हुआ जब जो सेंट्रल वैल्यूएशन है वहाँ पे जो मूल्यांकनकर्ता परीक्षक थे उन्होंने ये पाया कि बहुत सारी कॉपीज में एक जैसे आंसर लिखे हुए हैं और चैट जीपीटी के जो रेफरेंसेज होते हैं वो उसमें मेंशनड है। तो उन्होंने परीक्षा विभाग को इस बात की सूचना दी है जैसा कि ज्ञात हुआ है, और उस सूचना के आधार पर जब प्राइमरीली देखा गया कि बहुत सारे विद्यार्थियों की कॉपी एक जैसी है तो उस पर एक समिति बनाई गई है और वो समिति जाँच करके या रिपोर्ट देगी कि ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस तरह के सामूहिक नकल प्रकरण में भागीदारी करते हुए परीक्षाएं दी हैं। केवल उन्हीं विद्यार्थियों के परीक्षा पर के परिणाम को रोका जाएगा। अभी तो फिलहाल कॉलेज के परीक्षा को परिणाम को रोका गया है।
2: अब अगली खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे सुनकर आपको हैरानी होगी, गुस्सा आ सकता है, डर लग सकता है कि कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। नई गाड़ी खरीदने में लोग आजकल सुरक्षा को बहुत अहमियत देते हैं, ये समझदारी भी है। राजस्थान के झुंझुनू के 21 साल की नौजवान ने भी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, लेकिन जब उसकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई तो परिजनों का दावा है कि गाड़ी का एयरबैग नहीं खुला, उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिजनों ने गाड़ी के शोरूम के बाहर 20 फीट ऊंचाई पर क्रेन से गाड़ी को लटकाकर गाड़ी को सांकेतिक रूप से फांसी दे दी। गाड़ी पर लाल रंग से मौत का सामान, 20 लाख का डब्बा और खतरा लिखकर कार कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। यह हादसा 20 जुलाई को हुआ जिसमें भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए, लेकिन दावा है कि एयरबैग नहीं खुला। इस हादसे में 21 साल के तरुण नायक की जान चली गई। अब परिवार कह रहा है कि उसे न तो मुआवजा चाहिए, न ही नई गाड़ी चाहिए, बल्कि इस हादसे के लिए जवाब चाहिए, न्याय चाहिए। ताकि तरुण नायक झुंझुनू में रेंटल गाड़ियों का व्यवसाय करते थे। 20 जुलाई को वो अपने 4 साथियों के साथ सीकर से झुंझुनू लौट रहे थे। इसी दौरान डुंडलोद बाईपास पर उनकी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई, पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तरुण ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
8: आते टाइम रस्ते में गेल दो टायर पार्ट को, जो गाड़ी अनियंत्रित होके और पोल के बिटगी और पलटा खाए 7-8 और फिर 150 मीटर तक रसड़ती गई है। इतो कदम होने के बाद में भी अरे गाड़ी का एयर बैग कौन खुलिया, तो अगर ये गाड़ी का एयर बैग खुल जाता तो मारो भाई बच जाता। तो ये मांगने लेके मैं उरा पूछा कि अगर तारी गलती के कारण अगर मारो भाई नहीं बचे तो भी भाई के परिवार में भी का पिताजी भी को नहीं, वो आपके घर को खर्चो चलाना और वो खुद हो तो भी का परिवार ने मुआवजो मिलना चाहिए। आरिया जो गाड़ी है वो तारो डब्बो ले लो और डब्बो मान चाहे को नहीं।
2: ये गाड़ी चुरू के बीकानेर मोटर्स से खरीदी गई थी। महिंद्रा कंपनी बीमा कंपनी से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की कोशिश कर रही।
9: इस गाड़ी का मार्च में भी एक्सीडेंट हुआ था, तब इसके दोनों एयरबैग खुले थे। एक्सीडेंट होने के बाद में ये गाड़ी हमारे यहाँ पे एक्सीडेंटल कार्य के लिए आई थी। हमने इस गाड़ी का पूरा कार्य करके दिया है और कंपनी नॉर्म्स के अनुसार पूरे फिटमेंट और पूरे अच्छी से कार्य करके दिया है। अब पार्टी का आक्षेप है कि इसके एयरबैग ओपन नहीं हुए। अब एयरबैग ओपन नहीं हुए उसका कारण जानने के लिए या उसका इम्पैक्ट इस तरह से था कि नहीं था, उसके लिए हमने पूरी रिपोर्ट बना के हमारे जो महिंद्रा के इंजीनियर्स हैं उनको भेजी है।
2: रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
2: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
1: क्रॉसबॉन्ड, सुपर स्ट्रॉन्ग।
2: सुपर स्ट्रॉन्ग
1: और मॉइस्चर प्रूफ।
3: वारंटी
1: 15 साल की।
2: कदम
1: सर प्लीज,
2: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
4: क्रॉसबॉन्ड HGMR Max, फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: आगे आगे,
4: अरे उधर उधर,
3: करेक्ट करेक्ट,
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: पापा,
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
7: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
15: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
16: कुछ तो बात है इस तेल में।
17: वी आर ओवर जिमी।
18: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
19: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
20: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
21: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
23: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
1: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
0: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF samal lega. Aap apna dekh lo.
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: कि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है, जब से सत्र शुरू हुआ है तब से, यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इसकी इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और यह इसी सत्र की बात नहीं है, जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है। और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है, दे आर इशूलेस।
3: उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है तो आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता।
4: एक पुरानी कहानी है कि एक समूह बच्चों का चिल्ला रहा था, मेरे देश का राजा चोर है, देश का राजा चोर है, मेरे भी नहीं, देश का राजा चोर है। तो पुलिस ने पकड़ लिया, बोला सर हम तो फलाना देश की बात कर रहे थे। बोले बेवकूफ समझ रखा क्या, हमको नहीं पता था। तो एक संदर्भ से अलग उन्होंने बात रखी, आपने वो उड़ता तीर ले लिया, तो आप तो उनकी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजनाम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर वेल्डिंग किए गए 8 फीट ऊंचे बैरिकेड्स की तस्वीरें वायरल है। दावा है कि नए आंदोलन को रोकने के लिए किलेबंदी की जा रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर पर अब भी खुला है सब कुछ और वेल्डिंग सिर्फ 20 जुलाई को टूटे बैरिकेड्स की मरम्मत के लिए की गई है। लेकिन आज हम इसके पीछे का सच आपको बताएंगे क्योंकि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी संसद भवन से सिर्फ 100 मीटर दूर रह गए थे। और इसके बाद आपको सोनम वांगचुक के बारे में बताएंगे जो 26 दिनों की भूख हड़ताल और अस्पताल से भावुक संदेश देने के बाद अब एक बार फिर चर्चा में है। इस बार उन्होंने वंदे भारत और चिनाब पुल की तारीफ करते हुए सरकार को युवाओं पर कार्रवाई ना करने का वादा भी याद दिलाया। आज आपको बताएंगे कि सोनम वांगचुक ने सरकार पर गर्व करने के लिए क्या शर्त रखी है। जिस वक्त प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों के एक्शन पर सियासत हो रही है, तमाम राजनेता सुरक्षा बलों के जवानों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तब आपको सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के बयान के बारे में बताएंगे।

उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान ईमानदारी और नियमों के तहत फैसला लेते वक्त बिल्कुल ना हिचकिचाए। अगर कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही तय होगी तो उसे वो खुद संभालेंगे, जवानों पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को प्रदर्शनकारियों के लिए बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें ये दिखाई देता है कि जंतर मंतर पर लगाए गए लोहे के बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके आपस में जोड़ दिया गया है। दावा है कि सरकार को ऐसी आशंका है कि कॉकरोच जनता पार्टी फिर से आंदोलन शुरू कर सकती है, जिसके कारण पुलिस पहले ही ऐसी तैयारी कर रही है कि कोई बड़ा प्रदर्शन ना हो सके। हालांकि ये दावा कितना सही है इसकी पुष्टि करने के लिए हमारी टीम खुद जंतर मंतर पर पहुंची। वहां जाकर हमें तीन बातें समझ में आई हैं। पहली बात, ये दावा सही है कि कई बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके आपस में जोड़ा गया है ताकि उन्हें आसानी से गिराया या तोड़ा ना जा सके। दूसरी बात, जंतर मंतर पर अब भी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात है, यानी सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह अब भी कड़ी बनी हुई है। और तीसरी बात, आंदोलन खत्म हुए कई दिन हो चुके हैं लेकिन वहां लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, लाउड स्पीकर्स और जो दूसरे अस्थाई सुरक्षा इंतजाम है वो अब भी हटे नहीं है, यानी ये तीनों बातें पूरी तरह सही है। लेकिन इन्हीं सारी बातों के बीच दिल्ली पुलिस ने खुद सामने आकर ये कहा है कि जंतर मंतर को किसी भी विरोध प्रदर्शन और धरने के लिए बंद नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर आज भी विरोध प्रदर्शन के लिए खुला है, पहले की तरह अब भी पुलिस की अनुमति लेकर कोई भी वहां जाकर प्रदर्शन किया जा सकता है और मौजूदा नियमों के मुताबिक एक समय में करीब 1000 लोगों को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है। यानी ये दावा सही नहीं है कि जंतर मंतर को जेन जी युवाओं के विरोध प्रदर्शन के कारण अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। यहां ये भी समझिए कि अगर जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए खुला है तो पुलिस ने वहां 8 फीट ऊंचे बैरिकेड्स क्यों लगाए और उन्हें इस तरह वेल्डिंग से क्यों जोड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि 20 जुलाई को हुए हंगामे में कई बैरिकेड्स टूट गए थे और इसलिए उनकी मरम्मत कराई गई है। दूसरा, जिन बैरिकेड्स पर आपत्तिजनक नारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द लिखे गए थे उन्हें दोबारा ठीक किया गया है, पेंट किया गया है। और तीसरा, इन बैरिकेड्स को वेल्डिंग से जोड़ने की व्यवस्था नहीं है और ये पहले भी होता रहा है। 20 जुलाई के आंदोलन में जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को गिराने की कोशिश की थी तब भी कई जगह इन्हीं बैरिकेड्स को वेल्डिंग से जोड़कर मजबूत किया गया था। पुलिस का कहना है कि इसका मकसद किसी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन को रोकना नहीं बल्कि भीड़ को नियंत्रित करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। और ये जरूरी क्यों है उसके लिए अब आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। अब तक यही कहा जा रहा था कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद भवन की ओर बढ़ने से रोक दिया था, लेकिन हमारी जांच में मिले 5 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों के फुटेज एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। इन फुटेज में साफ दिखाई देता है कि उस दिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद भवन के चारों ओर मौजूद अलग अलग रास्तों तक पहुंच गए थे और कई जगहों पर उनकी दूरी जो है वो संसद भवन से सिर्फ 100 मीटर रह गई थी। इनमें भी सबसे अहम फुटेज रेल भवन के पास सेल्फी पॉइंट इलाके का है। यहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे, उनके पीछे संसद भवन साफ नजर आ रहा था, यानी प्रदर्शनकारी संसद के बहुत करीब थे। इसके अलावा दूसरे कैमरा जो वहां पर है उनके फुटेज में भी ट्रांसपोर्ट भवन और आसपास के इलाके जितने हैं उनमें प्रदर्शनकारी दिखाई देते हैं। कई जगह उनके पीछे संसद भवन और संसद परिसर की इमारतें साफ नजर आती हैं। यानी इन तस्वीरों से साफ संकेत मिलता है कि धारा 163 लागू होने के बावजूद कई जगह प्रदर्शनकारी पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ने में कामयाब रहे थे। अब सवाल है कि ऐसा हुआ कैसे? तो पुलिस की जो शुरुआती रणनीति थी वो ये थे कि जो लोग जंतर मंतर पहुंच जाएं उन्हें धरना स्थल तक जाने दिया जाए लेकिन वहां से बाहर निकलकर संसद की ओर ना जाने दिया जाए। दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी मेट्रो से आ रहे थे उन्हें स्टेशन या रास्ते में ही रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन दावा है कि यही रणनीति उल्टी पड़ गई। जैसे जैसे लोगों को जंतर मंतर के अंदर आने दिया गया वहां भीड़ लगातार बढ़ती गई, बाहर निकलने के रास्ते सीमित थे, पुलिस लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। इससे भीड़ का दबाव बढ़ता गया और आखिरकार
कई जगह बैरिकेड्स टूटे और बड़ी संख्या में लोग अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। ये भी दावा है कि जिन प्रदर्शनकारियों को मेट्रो स्टेशन के बाहर रोका गया था उन्हें ऐसे निर्देश मिले कि जंतर मंतर पहुंचने के बजाय वो सीधे संसद मार्च की तरफ बढ़े। इसके बाद जो लोग जहां थे वहीं से अलग अलग रास्तों से संसद भवन की ओर बढ़ने लगे और यही वजह रही कि प्रदर्शनकारी कई दिशाओं से संसद परिसर के बेहद करीब पहुंच गए। और इस पूरे घटनाक्रम से दो बातें साफ समझ आती हैं। पहली बात, 21 जुलाई की स्थिति सामान्य विरोध प्रदर्शन से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। उस समय संसद का सत्र चल रहा था, सरकार और विपक्ष के सांसद संसद के अंदर मौजूद थे और उसी दौरान प्रदर्शनकारी संसद भवन से करीब 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए थे। और दूसरी बात, अगर उस दिन सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी भी और कमजोर पड़ती या हालात थोड़े और बिगड़ते तो स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती थी। और यही कारण है कि अब दिल्ली पुलिस भविष्य में ऐसे किसी तरह के हालात नहीं हो और कोई भी मार्च जो यहां से निकले सुरक्षा इंतजामों को मजबूत बनाए रखना चाहती है। और इन्हीं कारणों से उसकी दलील है कि भारी सुरक्षा बल की तैनाती जारी है, बैरिकेड्स को वेल्डिंग किया जा रहा है। अब पहले ये देखिए,

इस वक्त जंतर मंतर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां रैपिड एक्शन फोर्स अभी भी डिप्लॉयड है और उनके पीछे अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े विशालकाय जो बैरिकेड्स हैं ये अब यहां पर लगा दिए गए हैं। ये पिछले कई सालों से ऐसे बैरिकेड्स यहां पर नहीं लगे थे। ये बैरिकेड्स आखिरी बार जो देखा गया था वो किसान आंदोलन के

0: जवानों पर इसे नहीं डाला जाएगा, यानी इसकी आंच जवानों तक नहीं जाएगी। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली में हुए आंदोलन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल को सीआरपीएफ पर कई सवाल जिसकी वजह से उठाए गए, और संसद में भी विपक्ष इस पर खूब सवाल उठा रहा है। और ऐसे में सीआरपीएफ के महानिदेशक ने खुद सामने आकर कह दिया है कि अगर अच्छी नीयत से कोई कार्रवाई हुई है तो उसकी जवाबदेही वो लेने के लिए तैयार रहेंगे। सुनिए।
1: मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें, जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा।
0: कहते हैं कि किसी व्यक्ति का शब्दकोश उसके मन और सोच की असली खिड़की होता है, और अब हम इसी खिड़की से कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के सोनम वांगचुक के आगे की रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। 26 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद जब सोनम वांगचुक ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हाथों जूस पीकर अपना अनशन खत्म किया तो सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सही फैसला लिया, लेकिन कुछ लोगों ने उन पर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए, यहां तक कि उन पर सरकार से समझौता करने के आरोप लगाने लगे। उस वक्त स्थिति ऐसी बन गई कि सोनम वांगचुक को अस्पताल से ही एक वीडियो जारी करना पड़ा, और उन्होंने भावुक होकर कहा कि क्या 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद भी अब उन्हें अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये बात उन्हें इसलिए भी ज्यादा चुभी क्योंकि इस पूरे आंदोलन की शुरुआत करने वालों में सबसे प्रमुख चेहरा वही थे, और इसी के साथ साथ उनके भूख हड़ताल की वजह से वहां पर पूरे देश में एक भावनात्मक उफान आया। जब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी तब देश भर के हजारों जेंजी युवाओं ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था। लोग एक दूसरे से अपील कर रहे थे कि अगर सोनम वांगचुक युवाओं के भविष्य के लिए भूखे रह सकते हैं तो वो जंतर मंतर जाकर उनका साथ नहीं दे सकते, और एक मुहिम चली, यानी उस वक्त सोनम वांगचुक इस आंदोलन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गए थे। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद माहौल बदला, कुछ लोगों और कुछ नेताओं ने उन पर सरकार के साथ समझौता करने के आरोप लगाने शुरू किए, जिसके कारण सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक को लेकर एक बहस चलती रही, और अब लगभग वही बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है। आज सुबह दरअसल सोनम वांगचुक ने एक नया वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली से श्रीनगर के बीच उन्होंने पहली बार वंदे भारत ट्रेन में सफर किया। उन्होंने चिनाब नदी पर बने हुए दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को भी पहली बार देखा और कहा कि अनुभव उनके लिए बहुत शानदार रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय रेल पर गर्व है। इसके बाद उन्होंने सरकार द्वारा पेपर लीक रोकने के लिए बनाए गए संशोधित कानून का भी स्वागत किया, और उम्मीद जताई कि जिस तरह परीक्षा प्रणाली को सुधारने की कोशिश की जा रही है उसी तरह पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होंगे। और यहां उन्होंने सिर्फ तारीफ नहीं की, वीडियो के आखिर में उन्होंने सरकार को उसका एक वादा भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान सरकार ने भरोसा दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल युवाओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और अब उस वादे को पूरी ईमानदारी से निभाने का वक्त है। यानी एक ही वीडियो में उन्होंने सरकार के कुछ फैसलों की सराहना की, सरकार को उसका वादा भी याद दिलाया। लेकिन सोशल मीडिया का एक हिस्सा सिर्फ पहले हिस्से पर थम गया है, रुक गया है। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर सोनम वांगचुक वंदे भारत ट्रेन और चिनाब ब्रिज की तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है अब उनका रुख बदल गया है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर लोकतंत्र में सिर्फ आलोचना ही स्वीकार हो, प्रशंसा नहीं, या सिर्फ प्रशंसा ही स्वीकार हो आलोचना नहीं, तो फिर दोनों तरफ से लोकतंत्र के मायने पर सवाल उठता है। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि आप भी सोनम वांगचुक का यह पूरा वीडियो देखें, और इसी जिस चिनाब पुल की वो प्रशंसा कर रहे हैं वही आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। क्या इस वीडियो में ऐसा कुछ है जिससे उनकी नीयत पर सवाल उठाया जाए, उस शख्स पर जिसने सबसे लंबी अवधि तक भूख हड़ताल करके इस आंदोलन को इतना मजबूत बनाया था?

0: नमस्कार दोस्तों, जुलाई जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, परसों हम लद्दाख के लिए निकल रहे हैं। तो हम रेलगाड़ी से निकले, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा यातायात है, और जो दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत की सेवा शुरू की गई है, उस पर मेरा पहला अनुभव था, और चिनाब पर बने पुल को भी देखना चाहता था, और बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। बहुत गर्व है मुझे भारतीय रेल पर। और आज और कल यहाँ कश्मीर में एक दिन का विश्राम लेके हम लद्दाख के लिए बढ़ रहे हैं, साफ पानी और हवा लेकर, थोड़ी ताकत लेकर। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई, और उम्मीद करता हूँ कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी हो, ये जारी रहे। और दूसरी तरफ अपील करना चाहूँगा सरकार से कि वो जो समझौते हुए थे पहले मेरे साथ लिखित में, और फिर CJP के साथ, कि वो प्रदर्शन में जो छात्र थे उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, FIRs नहीं करेंगे, उस पर कायम रहे, पालन करें, और देश में खासकर युवा पीढ़ी में एक भरोसे का माहौल बनाएं, और सब मिलकर राष्ट्रनिर्माण और एक महान भारत बनाने में जुट जाएं फिर से भरोसे के साथ। जुड़ता रहूंगा आप लोगों से। जय हिंद।
1: अब बात करते हैं इस आंदोलन के दूसरे प्रमुख चेहरे अभिजीत दीपके की। इस वक्त दीपके और सोनम वांगचुक दोनों की चिंता लगभग एक है। दोनों चाहते हैं कि प्रदर्शन में शामिल युवाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो, लेकिन उस मांग को रखने का दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। दीपके का अंदाज आक्रामक है, वो सरकार को घेर रहे हैं। वहीं चिनाब ब्रिज की तारीफ को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है वांगचुक की तरफ से। सरकार को दीपके चेतावनी देते हुए, अगर युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन दोबारा शुरू होगा, पहले से बड़ा होगा। सोनम वांगचुक का तरीका अलग है, वो सरकार को धमकी नहीं देते, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि सरकार ने जो लिखित आश्वासन दिए हैं उन पर अमल होना चाहिए, और इसी को लेकर एक बहस है। उनका कहना है कि सोनम वांगचुक का कि युवाओं का भरोसा टूटना नहीं चाहिए, सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए, और इसी वजह से आज सोशल मीडिया पर सिर्फ इस आंदोलन की नहीं बल्कि दोनों के कार्यशैली और भाषा की भी चर्चा हो रही है।
2: अगर FIR पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में, और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा, और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा।
0: मैं खुश हूं कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई, और उम्मीद करता हूं कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी हो, ये जारी रहे।
1: अब ये मांग लगातार हो रही है कि पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन में जो प्रदर्शनकारी शामिल हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने खुद इस मांग पर अपनी सहमति दी है। ज्यादातर जो राज्य हैं उनमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों को वापस भी लिया गया है, लेकिन आज ही हमारे पास दिल्ली पुलिस की एक इंटरनल रिपोर्ट आई है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये बताया गया है कि जब जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन चल रहा था तब वहां कुल 2873 जो अपराधियों हैं उनको देखा गया। इनमें 101 अपराधी हत्या, 62 अपराधी हत्या की कोशिश, 284 अपराधी डकैती और लूट, 61 अपराधी रेप, 229 अपराधी आर्म्स एक्ट, 135 अपराधी लूटपाट, 19 अपराधी अपहरण, 25 अपराधी महिला उत्पीड़न और 6 अपराधी पॉक्सो मामले के थे। और जानते हैं आंदोलन में घुसे इन अपराधियों की पहचान कैसे हुई। पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे और गाड़ियां खड़ी की थी, जिनमें कैमरों की मदद से पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर इन अपराधियों को पहचाना गया। इनके चेहरे स्कैन करके उनकी प्रोफाइल की जांच हुई। हम यहां दो बातें और जोड़ना चाहते हैं। पहली बात, चेहरों को स्कैन करके जिस तरह उनका डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है उसका लीगल फ्रेमवर्क अभी तय नहीं हुआ है, और हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है कि क्या पुलिस का ऐसा करना लोगों की निजता का हनन है, उल्लंघन है। और दूसरा, अगर इन अपराधियों को इस आंदोलन में देखा गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आंदोलन इन अपराधियों का था। ये अपराधी इस आंदोलन के आसपास जरूर दिखे, लेकिन खुद पुलिस ने अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा है कि इन अपराधियों का आंदोलन से कोई कनेक्शन था। यहां इस खबर को ब्लैक एंड व्हाइट में भी देखना होगा। अब तक आपको यह तो बताया गया कि जंतर मंतर के आसपास हत्या, रेप, डकैती, लूट के कितने अपराधियों को देखा गया, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर यही फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे जो है वो संसद अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में लगा दी जाए, तो ये सवाल आएगा कि न जाने कितने माननीय ऐसे नजर आ जाएंगे जिन पर हत्या, हत्या की कोशिश, रेप, डकैती, लूट जैसे गंभीर आरोप है। 2024 में देश के 46% सांसद दागी थे, इनमें भी 31% सांसदों पर हत्या, रेप, लूट, अपहरण जैसे संगीन अपराध के मामले थे और आज भी हैं। राज्यसभा में 31% सांसदों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और अगर राज्य सरकारों की बात करें तो 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यहां हम इन नेताओं की प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं उठा रहे, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपराधिक मामलों की बात होती है तो हमको देखना होगा कि हमारे कितने नेता दागी। कई नेता तो अपराध करने के बाद राजनीति में आए और सांसद और विधायक भी बन गए। यहां यह भी समझना होगा कि भारत का जेंजी आंदोलन श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के जेंजी आंदोलन से बहुत अलग था। श्रीलंका के जेंजी वहां की संसद, राष्ट्रपति भवन में घुस गए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश के जेंजी आंदोलन में भी 1400 लोग मारे गए थे और शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। नेपाल के जेंजी आंदोलन में भी 76 लोग मारे गए, खूब खराबा हुआ खूब। लेकिन भारत का जेंजी आंदोलन अपने मुद्दे से भटका नहीं। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से संवाद किया, उनकी मांगों पर सहमति दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, आंदोलन खत्म हुआ। इसके अलावा यह आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं था। जो लोग इसे सिर्फ जंतर मंतर का आंदोलन मानते हैं वो गलती कर रहे हैं। 17 जुलाई से 19 जुलाई के बीच पूरे देश में 27 विरोध प्रदर्शन हुए, यानी हर दिन औसतन 9 विरोध प्रदर्शन इस पेपर लीक के खिलाफ हुए। इसी तरह 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच 224 विरोध प्रदर्शन हुए, जिसका मतलब ये था कि हर दिन औसतन 81 प्रदर्शन। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18 जुलाई को पूरे देश में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर समेत कुल 11 जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। 19 जुलाई को भी इनकी संख्या 13 थी, लेकिन इसके बाद 20 जुलाई को 62, 21 जुलाई को 75, 22 जुलाई को पूरे भारत में 107 जगह विरोध प्रदर्शन हुए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पूरे भारत में कुल 412 विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इनमें से 328 शांतिपूर्ण थे, 63 जगह पुलिस या सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा, 21 विरोध प्रदर्शन कुछ हद तक हिंसक रहे। यानी आंदोलन बड़ा था लेकिन ज्यादातर जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। और कारण यही है कि ज्यादातर जेंजी युवा अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट थे, क्लियर। ये भी देखिए कि इस वक्त दक्षिण एशिया के देशों में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन भारत में है। 1 जनवरी से 24 जुलाई 2026 तक दक्षिण एशिया में कुल 27,253 विरोध प्रदर्शन और दूसरी घटनाएं दर्ज हुई। इनमें भारत में सबसे ज्यादा 15,762, पाकिस्तान में 6,818, बांग्लादेश में 1,875, नेपाल में 1,257 घटनाएं। इस ग्राफिक से आप समझ सकते हैं कि भारत में कैसे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि लोक परीक्षा संशोधन विधेयक राज्यसभा में भी पास हो गया है। बीते दिन अगर आपको याद हो तो ध्वनिमत से लोकसभा में इसे पास किया गया था और ध्वनिमत से ही आज राज्यसभा में भी ये जो संशोधन बिल है, लोक परीक्षा संशोधन बिल, वो पास कर दिया गया है। तो अब राष्ट्रपति से इसकी एक तरह से इजाजत और उसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। तो लोक परीक्षा संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास हो गया है, ध्वनि मत में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है। खैर, इस अब नजर रहेगी कि कैसे ये कानून का रूप लेता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाता है और कितना वाकई छात्रों के हित में, बच्चों के हित में बदलाव हो पाता है। लेकिन एक बड़ा बदलाव अगर आप देखिए इस आंदोलन से यह आया है कि अब अलग अलग राज्यों, शहरों में युवा और छात्र बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी की मांग कर रहे हैं। यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने देश के युवाओं और छात्रों का नजरिया बदला है। अब वो मौजूदा हालात में एडजस्ट करने वाली इस परंपरा के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। जैसे फतेहपुर सरकारी स्कूल में साफ पानी, बिजली, पंखे, शौचालय की मांग को लेकर जेन अल्फा बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसका असर यह हुआ कि शिक्षा विभाग को अपनी गलती जो है वो माननी पड़ी और तत्काल स्कूल में पंखे लगाने के आदेश जारी किए गए। बिहार के गया में भी जेन जी युवाओं की तरह जेन अल्फा बच्चों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए विरोध प्रदर्शन किया। यहां भी कुछ घंटों में जवाबदेही तय हुई, प्रशासन को हरकत में आना ही पड़ा। उत्तराखंड में जिस समण गांव के 38 लोग भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, उस गांव के स्कूल में भी 72 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर है, और इस पर भी अब वहां के बच्चे शिक्षा विभाग सरकार की जवाबदेही मांग रहे हैं। तो उनकी आवाज में हम भी अपनी आवाज शामिल आज करना चाहते हैं कि अगर उत्तराखंड में इस खबर को जो भी लोग जो शिक्षा मंत्री हैं वो देख रहे हैं, तुरंत स्थिति को बदलिए, और 72 बच्चों पर अगर एक टीचर है तो इसकी जवाबदेही आपकी है, आपको इस स्थिति को बदलना चाहिए। इसी के साथ एक और मामला, IIT कानपुर का है। पिछले दिनों आधिकारिक वेबसाइट हैक हो गई थी और इस पर सिर्फ यही लिखा हुआ दिख रहा था कि मुझे बस एक फेयर चांस यानी एक ईमानदार मौका चाहिए। शुरुआत में वेबसाइट हैक होने पर IIT कानपुर में हलचल मच गई। पूरा संस्थान इस मामले में FIR दर्ज कराने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। पता चला कि वेबसाइट हैक करने वाला कोई साइबर अपराधी नहीं बल्कि एक छात्र है, और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो छात्र IIT कानपुर के BTech साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन उसे एडमिशन नहीं मिल पाया था। इसके बाद उसने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए IIT कानपुर की वेबसाइट को हैक कर लिया और उसके स्क्रीनशॉट्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ऐसा करने के पीछे एक बड़ा मकसद यही था कि इस छात्र को IIT कानपुर के साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में दाखिला चाहिए था। वो अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर IIT कानपुर ने भी इस छात्र से बात की, और अब ऐसी खबरें हैं कि इस छात्र को एक ईमानदार मौका देने के लिए IIT कानपुर इंटर्नशिप दे सकता है। यहां इस बात पर बहस हो सकती है कि इस छात्र का तरीका सही था या गलत था, लेकिन ये बात कई लोग मान रहे हैं कि इस छात्र ने एक ईमानदार मौके के लिए ये जोखिम उठाया, और इसीलिए उठाया क्योंकि वो पीछे नहीं छूटना चाहता था। जानते हैं हमारे युवाओं के अंदर ये डर, ये बेचैनी, ये निराशा क्यों आई है। अगर उसे समझना है तो इन आंकड़ों को एक बार देखिए। भारत में 22 से 29 साल की जो जेंजी युवा है उनकी औसत जो मासिक तनख्वाह है, मंथली सैलरी, वो 18 से 22,000 है, जबकि हमारे देश में जेंजी युवाओं की सबसे बड़ी आबादी रहती है। वहीं चाइना में जेंजी युवाओं की मासिक तनख्वाह औसतन 1,26,000 रुपए, जो भारत के जेंजी युवाओं से 6 गुना ज्यादा है। अमेरिका में जेंजी युवाओं की मासिक तनख्वाह 4,30,000 रुपए है। ब्रिटेन में 3,42,000 रुपए है। जर्मनी में 4,68,000 रुपए है। ये आंकड़े बताते हैं कि हम जिस संस्कृति से आते हैं उसके मुताबिक अभी युवाओं को अच्छी शिक्षा, संसाधन, नौकरियां और सैलरी नहीं मिल रही है। ये तब हो रहा है जब भारत के युवा इस देश के असली शक्तिपुंज है, जब हमारे देश के लोगों की औसत उम्र 29 साल है। मुझे लगता है उसमें कुछ गलती थी, औसतन उम्र देश की 29 साल नहीं है। खैर, लोकसभा सांसदों की औसत उम्र जो है वो देखिए 56 साल है, राज्यसभा सांसदों की औसत उम्र 63 साल है, और देशभर के विधायकों की औसत उम्र जो है वो 54 साल है। और आंकड़े PRS और ADF जैसी संस्थाओं के ये आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार का शिक्षा बजट 1,39,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 8.27% की वृद्धि हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकारें एक साल में शिक्षा पर जितना पैसा खर्च करती हैं वो हमारी कुल GDP के सिर्फ 4.1% के बराबर है, जबकि 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि देश का शिक्षा खर्च GDP के 6% के बराबर होना चाहिए। यानी हम शिक्षा की जो जरूरत है उसके मुताबिक खर्च नहीं कर रहे। ये बात सही है कि शिक्षा पर हमारा खर्च पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना के अनुपात में ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये खर्च सरकार के ही मुताबिक पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि आज शायद पेटेंट एप्लीकेशंस दायर करने के मामले में भारत बहुत ज्यादा पीछे है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स की पिछले साल की रिपोर्ट कहती है कि चाइना ने 18,00,000 पेटेंट एप्लीकेशंस दायर की। 12.5 करोड़ की आबादी वाले जापान ने भी 3,00,000 से ज्यादा पेटेंट्स के लिए आवेदन दिया, लेकिन भारत ने इसी दौरान 64,000 पेटेंट एप्लीकेशंस भेजे। और इसी स्थिति में पिछले कुछ सालों में सुधार हुआ, लेकिन ये स्थिति अब भी अच्छी नहीं है। बड़ी बात क्या है, शिक्षा व्यवस्था में कई खामियों के कारण आज प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही है। भारत के 289 बच्चों पर एक प्राइवेट स्कूल है, जबकि 118 बच्चों पर एक सरकारी स्कूल। यानी सरकारी स्कूल ज्यादा है, फिर भी बहुत सारे लोग अब अपने बच्चों को महंगी फीस देकर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं। और इनमें भी कई माता पिता की ये शिकायत होती है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर है। उदाहरण के लिए 1,843,00,000 स्कूल तो ऐसे हैं जहां एक से ज्यादा टीचर नहीं है। और यह बात सिर्फ स्कूल्स की नहीं है, भारत में जो बच्चे 12वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, ऐसे भी 2,222 बच्चों पर एक सरकारी कॉलेज। और यही वजह है कि इन कॉलेजेस से डिग्री लेने के बाद भी बहुत सारे युवा आज बेरोजगार जा रहे हैं। जून 2026 में 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 16.2% रही, जिससे आप हमारे युवाओं की इस पीड़ा को समझ सकते हैं। इसी शिक्षा व्यवस्था के कारण साल 2024 तक भारत के 13 लाख से ज्यादा बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए गए, और इनमें भी सबसे ज्यादा बच्चों ने अपनी शिक्षा के लिए कनाडा देश को चुना। सोचिए, भारत कनाडा से बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा गुणवत्ता कनाडा से बहुत पीछे। ये भी सोचिए कि सारी बातें उस भारत की शिक्षा के बारे में है जहां कल ही गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया गया।
3: शौचालय के बारे में बोल रहे थे, शौचालय इतना गंदा था कि ना के बराबर ही था, कोई नहीं जाता था। बट अब थोड़ा समसेबुल वगैरह भी पहले से खराब था, जब आवाज उठाया तो समसेबुल भी बन गया और सब कुछ साफ सफाई भी हो गया।
4: यहाँ पानी नहीं आ रहा था, पंखा नहीं चल रहा था, और फिर बाथरूम वगैरह था साफ नहीं था, खाना में पानी कीड़ा वगैरह सब निकलता था।

हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या राजनीति की है। जो पार्टियां बीजेपी शासित राज्यों में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक के मुद्दे पर आक्रोश दिखाती हैं, वही पार्टियां अपने राज्यों की स्थिति पर खामोश रहती हैं।

और हमें लगता है कि यही खंडित और सिलेक्टिव राजनीति इस देश के लिए खतरा है। बड़ी बात यह है कि इस देश के जेंजी युवा आज इस राजनीति को समझ भी रहे हैं। आज पेपर लीक के खिलाफ झारखंड में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ पंजाब में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। और यहां बात सिर्फ इस्तीफे की नहीं है, बात बदलाव की है, बात युवाओं को समझने की है। जैसे पंजाब में रूपनगर के एक सरकारी कॉलेज में हाल ही में एक धार्मिक कार्यक्रम हुआ, जिसके लिए 400 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक को कई जगह से खोदा गया, वहां एक मंच बनाया गया। ये वही मंच था जिस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दूसरे माननीय बैठे। लेकिन जानते हैं इसके बाद इस ग्राउंड की कोई मरम्मत नहीं हुई और अब ये जेंजी खिलाड़ी सरकार से पूछ रहे हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए,

0: यहाँ पर एक रिलीजियस फंक्शन जो है वो कराया गया पंजाब सरकार द्वारा, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट क्योंकि रिलीजियस फंक्शंस करा रही है एक शाम शिव के नाम अलग अलग शहरों में, तो रोपड़ में भी कल रात को जो है ये फंक्शन कराया गया जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शामिल हुए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तरह एक पूरे ग्राउंड को सेक्रीफाइस कर दिया गया, ये एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, पंजाब स्पोर्ट्स के लिए नोन है, यहाँ से खिलाड़ी जो हैं पंजाब के वो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं, मेडल लाते हैं, लेकिन उनकी स्पोर्ट्स ग्राउंड का क्या हल किया गया है एक रिलीजियस फंक्शन के लिए, आप देख सकते हैं।
1: ये कोई सरकार ने नहीं इसके ऊपर काम किया था, कार सेवा के थ्रू बाबा जी टिब्बी साहब वाले हैं, उन्होंने अपने पैसों से, लोगों के पैसों से, संगत के पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर ट्रैक बनवाया था, वो सारा तहस नहस कर दिया। और बाहर आप बोर्ड देखोगे, कॉलेज का बोर्ड लगा हुआ है, ये सरकारी कॉलेज का ग्राउंड है, ये सरकारी कॉलेज है पीछे, वहां बोर्ड पे लगा हुआ है, अंदर कोई भी धार्मिक प्रोग्राम नहीं हो सकता। आज आपने एक परमिशन दे दिया, आपने एक फ्लड गेट्स खोल दिया, अब किसी और धर्म के कोई और यही चाहे कोई भी धर्म का होगा वो आगे कहेंगे हम भी प्रोग्राम करेंगे, तो आप उनको कैसे मना करोगे? अगर सरकार एक प्रोग्राम करा सकती है तो कोई भी प्रोग्राम करवा सकता है।
2: पंजाब के अलावा आज ही कर्नाटक से ये खबर आई कि वहां पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में जो गड़बड़ी और बेईमानी हुई उसे दबाने की कोशिश हो रही है। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार से पूछा है कि क्यों न वो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दे। जबकि पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस के इस्तीफे की मांग की। देखिए,
3: भगवंत मान मुर्दाबाद
4: देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है कि नहीं, वहां का जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होता है कि नहीं।
5: पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो,
3: शर्म नहीं आती है केजरीवाल जी को? अरे अपने घर में झांक के देखो किस तरह से पंजाब में लगातार पेपर लीक है।
2: खैर, आज की एक और बड़ी खबर यह है कि अब से कोई वंदे मातरम का अपमान करेगा तो उसे अधिकतम 3 साल जेल की सजा हो सकती है। सरकार इसे लेकर जो बिल लाई थी वो राज्यसभा के बाद आज लोकसभा में भी पास हो गया है। इस बिल के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम को रोकता है या कार्यक्रम में बाधा पैदा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा काम करता है जिससे वंदे मातरम का अपमान हो तो वो इस कानून के तहत अपराध होगा। और तीसरा, ऐसे मामलों में अधिकतम 3 साल जेल की सजा हो सकती है, यानी अब वंदे मातरम का अपमान कोई सामान्य घटना नहीं होगी। जो लोग वंदे मातरम गाने का विरोध करेंगे या इसमें बाधा डालेंगे या इस पर हमला करेंगे तो उन्हें कानूनी रूप से दोषी माना जाएगा। अब ये कोशिश तो अच्छी, लेकिन यहां हम एक जरूरी बात को जोड़ना चाहते हैं। जिस कानून में सरकार ने बदलाव किया है उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर। ये वही कानून है जिसके तहत पहले राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान, राष्ट्रगान, जनगणमन के अपमान को अपराध माना गया था। लेकिन जानते हैं, इस कानून के तहत जितने भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए उनमें कभी भी आरोपियों को सजा हो ही नहीं पाई। साल 2014 से 2024 के बीच इस कानून के तहत पूरे देश में 699 मामले दर्ज हुए जिनमें 1102 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 11 सालों के अंदर हमारी अदालतें सिर्फ 60 दोषियों को ही सजा सुना पाई। बाकी मामलों में सबूतों के अभाव और कमजोर जांच के कारण आरोपी छूट गए या उन पर लगे आरोप साबित ही नहीं हुए। ऐसे सवाल ये उठता है कि जब पुराने कानून की प्रभाव शीलता जो है एक तरह से वो कम थी तो वंदे मातरम के लिए जब इस कानून में बदलाव हुआ तो क्या इस तस्वीर को बदला जाएगा? हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी मानते हैं, जबकि ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्यों और पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है कि साल 1905 से पहले वंदे मातरम सभी लोग, सभी धर्म के लोग गाते थे। ये बात हमने आपसे पहले भी कही थी कि वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि भारत माता को भारत के लोगों की ओर से किया गया नमन है। और विवाद अगर इस पर होता है तो सोचना होगा भारत में देश और धर्म ये आपस में विरोधाभासी नहीं हो सकते।
6: Why are you dividing this country? You are calling anybody who opposes you as anti-national. This government is anti-national. It is dividing this country by of this nation.
7: एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए, वंदे मातरम। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए।
8: प्रश्न यही है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ।
9: अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की, बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है।
2: खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि कैसे भारतीय सेना असम में आई बाढ़ से लोगों की जान बचा रही है। हाल ही में जब जंतर मंतर का आंदोलन हुआ, कुछ लोगों ने भारतीय सेना के लिए भी आपत्तिजनक और अपशब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हमारी सेना और उसके बहादुर और देश के प्रति समर्पित जवानों को देखना और समझना जरूरी है तो आपको असम में आई ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। जब असम बाढ़ में डूबा हुआ है तब सेना ही वहां सबसे बड़ी रक्षक बनी हुई है। अब तक भारतीय सेना 1000 लोगों को बाढ़ से रेस्क्यू कर चुकी है, 200 से ज्यादा लोगों का इलाज कराया गया है, 30,500 फूड पैकेट्स, 43,000 लीटर पानी, दूसरा खाने पीने का सामान सेना द्वारा बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया गया है। देखिए,

0: आराम से छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत, हाथ पकड़ो, चलो चलो आराम से,
1: आज जब पूरा असम बाढ़ का शिकार है, इंसान से लेकर जानवर तक जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तब ये सोचना होगा कि आखिर असम देश में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों नहीं है। जिस तरह ये राज्य और ये इलाका दूर दराज के समझे जाते हैं, इनकी चर्चाएं भी दूर से हो रही हैं। ना ये संसद में चर्चा का विषय है, ना खबरों में बहुत जगह मिली है, और इसीलिए हमने आज सोचा कि आपको पूरे असम की तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की मुश्किलों का लोग सामना कर रहे हैं। असम में बाढ़ का ऐसा हाल तब है जब वहां मानसून का सीजन अच्छा नहीं रहा है, और इस मानसून में 14% कम बारिश हुई है, तब स्थिति देखिए भयावह हो रही है। असम कम बारिश में भी डूब रहा है, और इसके पीछे कारण यह है कि असम में बहने वाली कई नदियां अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पूर्वी हिमालय से निकलती हैं, और क्योंकि ये नदियां उफान पर हैं, इनका पानी रिहायशी इलाकों में आ चुका है, इसीलिए ये बाढ़ भयानक रूप ले चुकी है। अब हम ईरान वॉर की खबर बताते हैं, जो 5 दिन के विराम के बाद फिर से भड़क उठी है। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद से अमेरिका ने ईरान पर कहर बरपा दिया है। ईरान ने 28 जुलाई को जॉर्डन और फिर अगले दिन 29 जुलाई को मिस्र के दमयाता बंदरगाह पर हमला किया था। ईरान के निशाने पर जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे, और मिस्र के दमयाता पोर्ट पर खड़े 2 गैस टैंकर्स थे जो अमेरिकी कंपनी के थे। दमयाता पोर्ट पर जो हमला हुआ वो एक ड्रोन अटैक था, उसकी तस्वीरें आई हैं। इस हमले में दोनों गैस टैंकर्स जिनमें आग लग गई, और हालांकि हम अगर देखें तो इस हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि मिस्र के दमयाता पोर्ट पर जो हमला हुआ है वो सांकेतिक हमला था। ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिका ने जंग को और बढ़ाया तो दुनिया की एक और समुद्री मार्ग को वो रोक सकता है, और उस रास्ते होने वाली एनर्जी सप्लाई चेन को भी तोड़ सकता है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद से दुनिया के 20% कच्चे तेल का व्यापार प्रभावित हुआ है। हालांकि इसी के पास में एक और समुद्री मार्ग जो बाबल मंदेप है, जिसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं, जिसके चलते अगर आप देखिए तो ये रास्ता रहने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें तो अभी नहीं हो रही हैं, लेकिन ईरान ने मिस्र के जिस बंदरगाह पर हमला किया है वो बाबल मंदेप और स्यूएज कैनाल समुद्री मार्ग से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये हमला करके ईरान ने दिखा दिया है कि वो बाबल मंदेप समुद्री मार्ग को भी रोकने में सक्षम है, और इसका मतलब समझते हैं आप, इधर हॉर्मूज का बंद होना, इधर बाबल मंदेप का बंद होना, यानी तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। इन दोनों हमलों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी चेतावनी दी। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका अब ईरान पर एक बड़ा हमला करेगा, क्योंकि अब अमेरिका की बारी है।
2: In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but you know, they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground, but they nevertheless took a shot. So it's our turn, and we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
1: अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जॉर्डन में ईरान के हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया और उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन हमलों ने अमेरिका को भड़का दिया, और कल रात अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में खुजेस्तान प्रांत के अरवंद, कनार, आबादान और अहवाज में अटैक किए। इसके अलावा उन्होंने इस्फहान प्रांत के शदगान पर भी बमबारी की। अमेरिकी सेना ने बुशहर पर भी अटैक किया, फिर इसके बाद एक साथ किश, केशम और अबू मूसा द्वीप पर अटैक किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने साफ कहा है कि ईरान द्वारा अमेरिकी सैन्य बेस पर किए गए नाकाम हमलों के जवाब में ही IRGC के 10 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। हमलों का टारगेट मिलिट्री कमांड सेंटर, मिसाइल्स और ड्रोन फैसिलिटी और सर्विलेंस सेंटर्स है। सेंट्रल कमांड ने ईरान को याद दिलाया कि मिडिल ईस्ट में अभी भी अमेरिकी सेना के 50,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त और कैसे भी परिस्थिति में सैन्य ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जो हमले किए वो अमेरिका और सऊदी अरब के इराक पर किए गए हमले का जवाब था। 28 जुलाई को अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर इराक के एक मिलिशिया ग्रुप पीएमएफ के ठिकानों पर हमला किया था। पीएमएफ इराक का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है जिसे ईरान ने आर्थिक मदद और हथियार मिलते हैं। सऊदी अरब का दावा था कि पिछले कुछ हफ्तों में इस मिलिशिया ग्रुप ने उनके ऊर्जा ठिकानों पर कई हमले किए और ये हमले ईरान के आदेश पर हुए। यही वजह थी कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर पीएमएफ पर हमला किया और इस हमले में 20 पीएमएफ आतंकी मारे गए। पीएमएफ पर हुए हमलों के जवाब में ही ईरान ने जॉर्डन पर 5 मिसाइलें दागी थी जो नाकाम हो गई और उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर भीषण बमबारी की। अब इस बमबारी के बाद ईरान ने धमकी दी है कि आज रात अमेरिका को इस हमले की सजा दी जाएगी। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक आईआरजीसी ने बड़े हमलों की चेतावनी जारी की है और साथ ही साथ दुनिया भर के देशों को धमकाया है कि ईरान की इजाजत के बिना हॉर्मुज से कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा, यानी अगर किसी देश ने ऐसा किया तो ईरान उनके जहाजों पर हमला करेगा।

0: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
1: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
0: Smartless.
2: Hey, guys, we got a mouthful of English muffin with a glass full of
0: Marketplace.
3: The big three on the program today, or, you know, the big three of the...
0: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
4: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
6: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
4: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
3: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
4: सुपर स्ट्रॉन्ग
3: और मॉइस्चर प्रूफ।
5: वारंटी
3: 15 साल की।
4: कदम
3: सर प्लीज
4: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
6: क्रॉसबॉन्ड HGMR Max फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: मैं करता हूँ ना,
5: मैं करूँगा।
6: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
4: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
6: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
4: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
6: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
4: Where's the truth? It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege.
5: सदन में राहुल के बयान पर मचा घमासान। पैलेट गन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीजेपी ने राहुल के बयान को बताया तथ्यहीन।
6: और वह माफी मांगो राहुल।
5: लोकसभा ने एंटी पेपर लीक बिल पर मुहर लगा दी है, लेकिन बिल पास होने से पहले लड़ाई राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई है। चर्चा के दौरान राहुल ने गृह मंत्री के सदन में न होने का सवाल उठाया, जिस पर काफी देर तक हंगामा हुआ।
4: I'm very happy today to see that the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here.
5: गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए राहुल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री को कांपते देखा।
4: सर, आई सॉ द कार केज, 30 कार्स विद द होम मिनिस्टर सिटिंग इनसाइड द कार लाइक दैट लुकिंग।
5: राहुल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा अमित शाह वो शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली भी थरथराते हैं।
7: इस प्रकार से एक्शन किया कि मैंने देखा गाड़ी के अंदर इस प्रकार अमित शाह जी थरथरा रहे थे, कांप रहे थे।
6: राहुल जी, अमित शाह जी वह शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली थरथराते हैं।
5: तो अब साफ है कि एंटी पेपर लीक बिल पर शुरू हुई लड़ाई लोकसभा में राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई है। आज तक ब्यूरो।
3: राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया एम्स की रिपोर्ट के साथ कि पिलेट छर्रे लगे हैं पूरे शरीर में, आंख की रोशनी जा रही है। यही नहीं, AK-47 से फायर किया गया पटना में। और यही नहीं, महिलाओं के साथ जितना अशोभनीय और अश्लील व्यवहार किया गया वो सारी दुनिया ने देखा है। गृहमंत्री जी क्यों भाग रहे हैं सदन से? भारत का संविधान कहता है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है संसद के प्रति।
8: राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। मंत्री से क्या मतलब है? वहाँ मजिस्ट्रेट जो होता है वो जिलाधिकारी दे सकता है, SDM दे सकता है, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन होता है वो आदेश देता है, मंत्री थोड़ा आदेश देता है।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए. और सब नजरिए का फेर है. जो तराशता है उसे खूबी दिखाई देती है, जो तलाशता है उसे खामी दिख ही जाती है. नमस्कार.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी. Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ परीक्षा संशोधन बिल। अमित शाह के बयान की मांग के साथ विपक्ष का वॉकआउट। वंदे मातरम बिल को भी संसद से मिली मंजूरी। राहुल के बयान पर बीजेपी की घेराबंदी। अनुराग ठाकुर विशेषाधिकार हनन का दे रहे थे नोटिस। परीक्षा बिल के दौरान असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का मामला। बिहार महाराष्ट्र के बाद दिल्ली सरकार का निर्णय। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कोई भी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रेखा सरकार का बड़ा निर्णय।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज बात दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाती हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की रिपोर्ट पर। अब तक प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज पर बात हुई, प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का सच आपने देखा, लेकिन हमारे आज तक के संवाददाता अरविंद ओझा 20 जुलाई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, खुफिया कैमरे में कैद उस सच का खुलासा करेंगे जो अब तक सिर्फ वीडियोज में कैद था। यह खुलासा हमारे देश की संसद की सुरक्षा के साथ हुई खिलवाड़ से पर्दा उठाने वाला है। 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस की विभिन्न बंदोबस्त के बावजूद प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंचते हैं। सवाल यही है कि संसद भवन तक प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंचे दिल्ली पुलिस के रहते हुए? दिल्ली पुलिस आखिर कर क्या रही थी? प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई पर लीपापोती में जुटी दिल्ली पुलिस आज अपनी नाकामी पर क्या जवाब देगी? जहां आज दिल्ली पुलिस को अपनी नाकामी पर जवाब देना चाहिए।
1: सीसीटीवी में सबूत, फंस गई दिल्ली पुलिस।
2: ये देखिए, ये प्रोटेस्टर है। अगर दीवार डाकी जाए तो आप पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाएंगे और यहाँ दीवार के ठीक बाहर झड़प होती हुई आपको दिखाई देगी, और इसलिए पुलिस पर इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस की तैयारी आखिर किस तरह की थी, क्या पुलिस को नहीं मालूम था कितने बड़े बड़े पैमाने पर भीड़ आ गई।
1: कैसे संसद भवन तक पहुँच गए प्रदर्शनकारी? क्या 20 जुलाई को भगवान भरोसे थी दिल्ली?
2: आज तक की टीम लगातार पूछ रही है कि दिल्ली पुलिस की तैयारी इतनी मुकम्मल क्यों नहीं थी। जंतर मंतर आपको सब कुछ पहले से पता था, जंतर मंतर के पास आप प्रॉपर मजबूत बैरिकेड्स करते, आपका जो इंटेलिजेंस की टीम है वो पहले से इंटेलिजेंस गैदर करती, और कम से कम ये तस्वीर तो देखने को नहीं मिली।
1: सीसीटीवी वीडियो से खुल गया एक एक राज। इंटेलिजेंस फेल या दिल्ली पुलिस का प्लान?
2: संसद भवन से महज 50 से 100 मीटर की दूरी तक प्रोटेस्टर 20 जुलाई, ये तस्वीर बहुत डराने वाली है 20 जुलाई की। ये पार्लियामेंट गेट का गेट है, प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच यहाँ झड़प हो रही है।
1: पुलिस रहती अलर्ट तो नहीं होती होनी हिंसा। खाकी पर सवाल, जवाब दो दिल्ली पुलिस।
2: 5 सीसीटीवी संसद भवन के आसपास हमने हमारे पास आया है, जिससे ये पता चलता है कि संसद भवन की दीवार के बेहद करीब जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस पर इन 5 तस्वीरों को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी मजबूत तैयारी क्यों नहीं की थी, भीड़ संसद भवन के आसपास पहुंचने तक कैसे कामयाब हो।
1: बड़ा खुलासा तस्वीर नंबर 1। बड़ा खुलासा तस्वीर नंबर 2। बड़ा खुलासा तस्वीर नंबर 3। बड़ा खुलासा तस्वीर नंबर 4। बड़ा खुलासा तस्वीर नंबर 5। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें 20 जुलाई की हैं। सीजेपी के संसद मार्च के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तरफ से दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू थी, मतलब शांति भंग होने की आशंका पुलिस को पहले से थी। पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। अब सवाल यही है कि ये धारा लागू थी, प्रदर्शनकारियों से निपटने के पूरे इंतजाम थे, तो हिंसा कैसे हुई? कैसे प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद भवन तक पहुंचने में सफल रही? क्या 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस की बड़ी चूक से बहुत बड़ा कांड हो सकता था?
2: ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है। ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहते, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है और नई दिल्ली इलाके में बैरिकेड्स मजबूत लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं चकमा देते हुए पार्लियामेंट के करीब तक पहुंच गए थे। हजारों की तादाद में जो प्रोटेस्टर और बकायदा नारेबाजी हो रही थी, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है वो तस्वीर है ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रोटेस्टर यहां खड़े हैं।
1: तस्वीरों से साफ है कि जंतर मंतर से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी उस वक्त संसद भवन के एकदम करीब पहुँच गए जब संसद चल रही थी। ये संसद भवन का बाहरी दीवार का दृश्य है। ये संसद भवन परिसर के बाहर बने सेल्फी पॉइंट की तस्वीरें हैं।
2: पूरा पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, सामने की तरफ आपको जो ये रेड बिल्डिंग है ये सेल्फी पॉइंट है। जो प्रोटेस्टर है वो यहाँ आपको सामने की तरफ दिखाई देंगे। ये देखिए, अगर ये आप देखेंगे तो ये पार्लियामेंट का गेट है, अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये गाड़ी आपको जाती हुई दिखाई देगी। ये वॉल है, ये संसद भवन की ये वॉल है, ये सब संसद भवन के आसपास की तस्वीरें हैं।
1: सीसीटीवी की ये तस्वीरें दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े करती हैं। पहली तस्वीरें दोपहर 12:20 की हैं। आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद के चंद मीटर दूर तक पहुंच गए। दूसरी तस्वीर करीब दोपहर 2:03 की है, जब संसद की बाहरी दीवार के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। सवाल यही है कि करीब 1.5 घंटे तक पुलिस क्या कर रही थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के मुखिया अनुराग कुमार खुद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, यानी संसद भवन के करीब मौजूद थे।
2: तस्वीरें दिखा रहे हैं, अनुराग कुमार यहां पर पहुंचे हुए और घंटों यहां पर बातचीत की, जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बातचीत की और पूरा जायजा लिया। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी मौजूद थे। अब जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में इस वक्त मौजूद है, और जबकि बाहर की तरफ भारी भीड़ प्रोटेस्टर की है, जिन्होंने बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की, और पुलिस कमिश्नर अब पार्लियामेंट थाने से बाहर निकल रहे हैं अनुराग कुमार। और जिस तरह से नई दिल्ली में जो हालात है उस हालात के बारे में पूरी जानकारी ली।
0: संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने संसद चलो मार्च निकालने का ऐलान किया और उसकी कोशिश की। यही मार्च सुरक्षा बलों, दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प का कारण बना। अगर दिल्ली पुलिस का सुरक्षा चक्रव्यूह मजबूत होता, अगर दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चक्रव्यूह को भेदकर प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए तो दिल्ली पुलिस ने क्या इंतजाम किए थे और उनका यह सुरक्षा चक्रव्यूह कैसा था? मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस एकदम फेल सिद्ध हुआ। क्या दिल्ली पुलिस ये जवाब देगी कि वो इंटेलिजेंस के मामले में फेल हुई?
1: दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस फेल, दिल्ली पुलिस का सुरक्षा घेरा फेल, संसद की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस फेल, हिंसक प्रदर्शन रोकने में पुलिस फेल, प्रदर्शनकारियों को समझाने में पुलिस

0: पुलिस और जो फोर्स है वो एक रणनीति के तहत अब आगे बढ़ रही है। ये वज्र वाहन आगे बढ़ रहा है, फोर्स आगे बढ़ रही है और कोशिश है कि जंतर मंतर पर जो भीड़ है उसको अब जो प्रोटेस्टर उनको खदेड़ा जा सके। तो ये देखिए कुछ लोग छत पर भी मौजूद थे, उनको भी अब खदेड़ा जा रहा है। ये देखिए इस तरह से पुलिस जो प्रशासन की टीम है वो कोशिश कर रही है कि जो छत पर लोग थे, क्योंकि छत से एक पत्थर फेंका गया था जिसके बाद पुलिस की टीम, ये देखिए पुलिस पर ही हमला कर दिया। ये देखिए तस्वीरें हम आज तक पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक प्रोटेस्टर ने पुलिस वाले पर ही, ये सिविल ड्रेस में पुलिस वाला गया था। ये देखिए ये टीयर गैस की गैस जो लगातार जो यहाँ से छोड़ी जा रही है, आंसू गैस के गोले यहाँ से लगातार छोड़े जा रहे हैं।
1: आपने देखा देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह प्रदर्शनकारी और फोर्स आमने सामने थे। पुलिस एक्शन के बाद प्रदर्शनकारी भी कानून को हाथ में लेने को तैयार थे।
0: ये देखिए किस तरीके से जो बैरिकेड है वो बैरिकेड यहाँ पर पूरी तरह से गिरा हुआ है। इस बैरिकेड को तोड़ दिया गया था प्रोटेस्टर की तरफ से और उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़े, जबकि दिल्ली पुलिस लगातार सुबह से कह रही थी कि इस इलाके में किसी तरह का प्रोटेस्ट वर्जित है।
1: उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह मानते हैं कि देश की राजधानी में जो हुआ उसके लिए दिल्ली पुलिस सीधे सीधे जिम्मेदार है।
2: अब एक ट्रक पत्थर कहां से आ गया? अगर इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम मजबूत होती तो एक ट्रक पत्थर हम लाए, आप लाए भी तो ये भी है। वो कह रहे हैं बलवाई लाए, तो बलवाई कह रहे नहीं पुलिस वाले लाए। जो भी लाए नालायकी हमारी मतलब पुलिस की है कि एक ट्रक पत्थर आ कैसे गया। आज तो ये भी सुख, हमारे टाइम में तो ड्रोन थे नहीं, लेकिन हम ये दावे के साथ कहते थे कि जेब में हाथ डाला और हमने आपका वहीं पर निस्तारण कर दिया बड़े कायदे से। हम ये सुख नहीं देंगे आपको जेब में हाथ डालें, पत्थर निकालें और फिर पैराबोला बना करके पोजीशन।
1: पुलिस की जिम्मेदारी थी शांति बनाए रखना, ऐसी हालत से निपटने के लिए एसओपी को फॉलो करना, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हर कदम पर गलतियां की। नतीजा एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की वर्किंग स्टाइल पर सीधे सवाल उठ रहे हैं। क्यों दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए? संसद चल रही थी तो प्रदर्शनकारी संसद तक कैसे पहुंचे? क्यों पुलिस के पास प्रदर्शन को लेकर खुफिया इनपुट नहीं थे? क्यों दिल्ली पुलिस ने एसओपी को सही ढंग से फॉलो नहीं किया? कैसे कुछ प्रदर्शनकारी लाठी और पत्थर लेकर पहुंच गए? क्या दिल्ली पुलिस के एक्शन की वजह से ही हिंसा भड़की
0: और जो भीड़ है उसको नई दिल्ली इलाके से पूरी तरह से खदेड़ा जा रहा है, खदेड़ कर भगाया जा रहा है।
3: और अब खबर दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल पैलेट गन पर भड़के हंगामे की। जी हां, 20 जुलाई को नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की अगुवाई में संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर संसद गर्म है। पैलेट गन पर विपक्ष अमित शाह को घेर रहा है तो सीजेपी के फाउंडर अभिजीत देवकर ने भी पैलेट गन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। पैलेट गन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, लेकिन इन सब के बीच पैलेट गन विवाद को लेकर सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का बयान भी खूब चर्चा में है। सीआरपीएफ चीफ ने अपने जवानों से कहा है कि राष्ट्रहित में निर्भय होकर अपनी ड्यूटी करें, बाकी मैं देख लूंगा। तो आइए आपको दिखाएं पैलेट गन पर कैसे मचा है कोहराम।
1: प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाई, छिड़ गई बड़ी लड़ाई। पैलेट गन विवाद के बीच सीआरपीएफ के डीजी बोले मैं देख लूंगा। पैलेट गन पर तकरार, सड़क से संसद तक आर पार। पैलेट गन के इस्तेमाल पर अभिजीत देवके का अल्टीमेटम। प्रदर्शनकारियों पर चली पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? भले ही संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष और सरकार के बीच प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर तगड़ी बहस होती रही।
4: वे संवाद चाहते थे लेकिन उन्हें मिला पैलेट गन। इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है।
5: लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

0: into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot.
1: झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आया?
2: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे?
3: आंदोलन में कोई गोली नहीं चली।
4: किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया?
5: हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया। वो आदेश कहां से आया?
0: इंडिया गन से। ये पैलेट गन तो आपने ही कश्मीर में शुरू किया।
6: 20 जुलाई को CJP की अगुवाई में संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की खबर आती है, लेकिन दिल्ली पुलिस पहले इसे फेक न्यूज बताती है और बाद में खुद ही पैलेट गन के इस्तेमाल की बात कबूल कर लेती है। और जब पैलेट गन का मुद्दा सड़क से संसद तक गूंजता है तो ऐसे में CRPF के DG ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का बयान चर्चा में आता है। जी हाँ, CRPF के चीफ अपने जवानों के सामने कहते हैं कि राष्ट्रहित में निर्भय होकर अपनी ड्यूटी करें, बाकी वो देख लेंगे।
7: चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हो, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हो, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बलहित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें, जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा।
6: आपको बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF इस विवाद के केंद्र में है, जो कि CRPF की ही एक यूनिट है। ऐसे में CRPF चीफ का ये बयान जवानों का मनोबल बनाए रखने के तौर पर देखा जा रहा है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने ये बयान 27 जुलाई को CRPF के स्थापना दिवस के मौके पर दिया, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि पहले दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को फेक न्यूज क्यों बताया और फिर बाद में क्यों पैलेट गन चलाने की बात स्वीकार कर ली? अब CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी छात्रों पर पैलेट के इस्तेमाल को लेकर सीधे सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अभिजीत दिपके ने कहा है कि क्या प्रदर्शन करने वाले छात्र आतंकवादी थे?
8: AK-47 जो इस देश में आर्मी यूज करती थी, पुलिस यूज करती थी, वो टेररिस्ट के अगेंस्ट यूज करती थी, लोकल गुंडों के खिलाफ भी नहीं यूज करती थी। ये सरकार स्टूडेंट्स के अगेंस्ट AK-47 यूज कर रही है, तो ये अपने ही देश के युवाओं को आतंकवादियों जैसा ट्रीट कर रही है सरकार। ये बहुत शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी बस वोट की भाषा समझते हैं, अमित शाह बस वोट की भाषा समझते हैं, तो उनके वोट की भाषा से मैं समझाना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट पर पैलेट गन चलेगी, एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी, तो उसके घर में 4 वोट है वो आपके कम हो जाएंगे।
6: छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं, सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले पैलेट गन से घायल हुए छात्र साहिल लोचाप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने 24 जुलाई को अपने आवास 10 जनपद पर संसद मार्च में कथित तौर पर पैलेट गन से घायल स्टूडेंट के हाथ, पीठ और छाती में लगे घाव दिखाए और ये भी दावा किया कि पैलेट गन से आंख की रोशनी भी चली गई।
9: इसको कहते हैं पैलेट गन।
6: और इसके बाद राहुल गांधी के अमित शाह पर बयान को लेकर संसद के अंदर 29 जुलाई को हंगामा हुआ, तो फिर से राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पैलेट गन पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा।
10: सर, गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट।
11: राहुल जी, यह वह गृह मंत्री है, ये वह प्रधानमंत्री है जिनके नाम से देशद्रोही कांपते हैं, जिनके नाम से नक्सली कांपते हैं, जिनके नाम से आतंकवादी कांपते हैं। ये नहीं कांपते हैं, देशद्रोहियों को कपाते हैं।
6: आपको बता दें कि दिल्ली में 20 जुलाई को CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान चली पैलेट गन से कथित तौर पर 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें साहिल लोचाप और इरशाद मंसूरी को गंभीर चोटों की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि 20 जुलाई को सीजेपी के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आरएफ के जवान ने पैलेट गन चलाई। 21 जुलाई को मीडिया में पैलेट गन से 3 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट छपी। 22 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल के दावों को फेक न्यूज करार दिया। 23 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराने आए पीड़ित की मेडिको लीगल रिपोर्ट में पैलेट गन से घायल होने की पुष्टि हुई। 24 जुलाई को राहुल गांधी ने पैलेट गन के पीड़ित साहिल लोचाप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 24 जुलाई को ही आरएएफ ने आरोपों की वेरिफिकेशन करने का फैसला किया। 26 जुलाई को राहुल गांधी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए और 29 जुलाई को संसद बार पुलिस स्टेशन की 22 जुलाई की डायरी एंट्री में एक डीसीपी के निर्देश पर पैलेट गन के इस्तेमाल की बात पुलिस ने स्वीकार कर ली। आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद, प्रशांत कुमार सिंह और पीड़ित शेख इरशाद मंसूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पैलेट गन पर बैन लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि सीजेपी के संसद मार्च में पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराया जाए। वहीं कोर्ट ने केंद्र से कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान तैनात आरएएफ के हथियारों और गोला बारूद के इस्तेमाल का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय बाल्या बागची और जस्टिस बी मोहन की बेंच ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस विशेष स्थितियों में इसका इस्तेमाल कर सकती है। आज तक ब्यूरो।
9: दशक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे पीओके में मुजफ्फराबाद मार्च से झुकेंगे मुनीर। आप देखते रहिए दशक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
14: एवरी सिटी हैज हिडन स्टोरीज, द बिल्डिंग यू पास एवरी डे, the park where history was made, the person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life, and now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring. Sokudo.
15: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
16: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
17: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
16: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना? अर्ज किया है, पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
18: वाह वाह वाह वाह।
16: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
19: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
20: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
21: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
22: कुछ तो बात है इस दिल में।
23: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है। ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तो
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
9: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
10: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
13: We are over, Jimmy.
14: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है।
1: जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।
0: हम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पहले टन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे।
1: ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं।
2: ये मॉनसून सत्र में राजनीति का दूसरा पार्ट है। पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, जंतर मंतर पर खामोशी है, धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी सीज फायर करने पर राजी नहीं है। राहुल गांधी का इरादा साफ दिख रहा है, पेपर लीक की लड़ाई को पैलेट गन पर शिफ्ट करने की, धर्मेंद्र प्रधान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट पर लाने की।
3: She says the student.
2: कल राहुल गांधी संसद में हुए हंगामे के केंद्र में रहे, उनके हमले पर दिन भर बवाल रहा। राहुल गांधी के भाषणों के कुछ शब्दों को असंसदीय बताकर रिकॉर्ड से बाहर भी किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने संसद से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और हमलों का सिलसिला जारी रखा। बीजेपी राहुल गांधी की मंशा को समझ रही है कि राहुल गांधी ने अमित शाह को ही हमले के लिए क्यों चुना, क्योंकि अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं। सत्र के 10 दिन हुए हैं, 15 दिन और बाकी हैं, और राहुल गांधी अमित शाह को चर्चा के केंद्र में रखने की कोशिश में दिख रहे हैं।
4: कि हो क्या रहा है यहां, दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है, राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा ये सीजेपी के लोग आए, ये जनजीव के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो, चलो उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया, हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे, तो चलो कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं।
2: बीजेपी बनाम राहुल गांधी की ये लड़ाई असल में युवाओं के बीच पैठ बनाने की जंग भी है। पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन की कामयाबी से लगता है कि विपक्ष के हाथों में भविष्य के लिए नई कुंजी आ गई है, जिसका इस्तेमाल संसद में होता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब खबर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। पीओके में मुनीर की सेना ने कत्लेआम मचाया तो अब यहां के लोग एक तरफ तो भारतीय सेना से मदद की गुहार लगा रहे हैं और दूसरी तरफ मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ आंदोलन भी जारी इन्होंने रखा है। जी हां, पीओके में अपने अधिकार की आवाज के लिए आंदोलन कर रही जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC ऐलान जंग कर चुकी है और यह भी कह दिया है कि मुनीर कितना भी लहू बहा ले अब वो मुजफ्फराबाद तक मार्च जरूर करेंगे और इस्लामाबाद तक भी जाएंगे। तो आइए हम आपको दिखाएं कि पीओके में अब आगे क्या होगा।
5: पीओके में प्रदर्शनकारियों का ऐलान अब आर या पार।
6: नारे नारे नारे कश्मीर
7: जिए जिए जिए।
6: नारे नारे नारे कश्मीर
7: जिए जिए जिए।
6: नारे नारे नारे कश्मीर
7: जिए जिए जिए।
5: मुजफ्फराबाद तक निकलेगा बाद, इस्लामाबाद तक चोट। मुनीर ने मचाया कत्लेआम, पीओके ने लगाई मदद की गुहार। पीओके वाले बोले भारतीय सेना हमारी मदद करे।
8: इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा साथ दे।
5: पीओके में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद, मुनीर की सेना ने बरसाई गोलियां। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कलेजा चीर देने वाली हैं। अपने हक की आवाज के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मुनीर की सेना ओपन फायर यानी सीधे गोलियां बरसा रही है, फिर भी प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
9: सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि कर्फ्यू लगाया गया है, ठीक है, रोड्स बंद की गई हैं, इंटरनेट बंद किया गया है, लेकिन लोग फिर भी बाहर निकल रहे हैं। डायरेक्ट फायरिंग की तस्वीरें, वीडियो एविडेंस मेरे आपको एक्स प्रोफाइल पे हर जगह सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। मैं नहीं दिखा सकता, कम्युनिटी गाइडलाइंस इजाजत नहीं उसकी देती, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद, डायरेक्ट फायरिंग के बावजूद लोग फिर भी बाहर निकल रहे हैं और लोग फिर भी एहतजाज कर रहे हैं। ये वीडियोस आज की देख लीजिए आप। डिस्ट्रेसफुल वीडियोस जो है इससे ज्यादा हम आपको दिखा नहीं सकते, इससे बहुत ज्यादा मैसिव वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन आप देखिए। अवाम फिर भी निकली हुई है और ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये खौफ के बुत तोड़ दिए हैं कश्मीरियों ने इतनी ज्यादा 110 शहादतों के बावजूद। लोग आपको सड़कों पे नजर आ रहे हैं, देख लीजिए आप।
5: रावला कोट से प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की सेना इन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन अब ये प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं दे रहे।
10: Oh,
5: पीओके में आंदोलन की अगुवाई कर रही जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान कर दिया है, चाहे कितनी भी जाने क्यों ना चली जाएं, मुजफ्फराबाद तक मार्च निकाल कर रहेंगे, इस्लामाबाद तक चोट पहुंचा कर ही रहेंगे। आसिम मुनीर और उनकी सेना पीओके में अब तक 110 से ज्यादा बेगुनाहों का खून बहा चुकी है। सिर्फ पिछले दो दिनों में 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रही ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी की कोर समिति के अध्यक्ष और प्रवक्ता उमर नजीर के भाई उस्मान नजीर भी पाकिस्तानी रेंजरों की गोली से मारे गए हैं। पीओके से कई ऑनलाइन वीडियो सामने आए हैं, जिनमें लोगों ने भारतीय सेना से मदद की अपील करते हुए बताया है कि पाकिस्तान की सेना अपने कब्जे वाले कश्मीर में कत्लेआम मचा रही है। एक महिला ने ऑनलाइन वीडियो में बताया कि पाकिस्तान की फौज और पुलिस ने कश्मीर में उनके लोगों को शहीद कर दिया है, हमारा कश्मीर खून से भरा हुआ है। महिला ने भारतीय फौज से पीओके के लोगों को बचाने की अपील की है।
8: इंटरनेशनल मीडिया से रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा हमारे कश्मीर में सारे बच्चे हमारे शहीद कर दिए, पाकिस्तान मुनाफिक मुल्क ने हमारे भाई हमारे वर्सा सारे शहीद हो गए हमारे, और इन लोगों ने बहुत जुल्म करते हैं, इंडिया में भी इतना जुल्म नहीं हो रहा है। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदा रहा हमारा साथ दे। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदा रहा हमारा साथ दे। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को हमारे वर्सा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है, हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदा रहा हमारी आवाज बने, अल्लाह का वास्ता आप लोगों को, आप मुसलमान हैं, खुदा के लिए हमारी आवाज।
5: आंदोलन में हिस्सा लेने वाले छात्रों और शिक्षाविदों की आवाज दबाने के लिए 13 स्कूल कॉलेजों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाकर पाकिस्तानी सरकार इस जुल्म की दास्तान को दबाए रखना चाहती है। जिस छल के साथ पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया, अब कब्जे वाले कश्मीर में उसके बढ़ते अत्याचार ही नासूर बन रहे हैं। और तो और, पाकिस्तान में ही पीओके की पोल खुल रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री ने खुलासा किया है कि जिस पीओके में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मुजाहिदीन बनाने की ट्रेनिंग दी, अब वो भी पाकिस्तान से पीओके की आजादी चाहते हैं।
2: ये वहाँ पे वही लोग हैं जिनको, जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेन किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और उनके पास असला है और वो वहाँ पे कोई उनका कोई सियासी मुतालबा नहीं है, कोई उनका पब्लिक वेलफेयर का मामला नहीं है, वो लोगों को शील्ड बना के तो वहाँ पे जो है ये जो है वो खेल खेलना चाहते हैं।
5: पाकिस्तान पीओके में चुनाव का ढोंग रच रहा है, लेकिन मुनीर और शहबाज की इस चुनावी साजिश का बहिष्कार खुद पीओके के लोग कर रहे हैं और इसी से बौखलाया पाकिस्तान बेगुनाहों पर गोलियां चलवा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव करा रहा है, जबकि पीओके की असेंबली में 12 सीटें बाहर से आए हुए लोगों के नाम पर आरक्षित हैं। आरोप यह है कि पाकिस्तान की सरकार इन 12 सीटों पर अपने लोगों को बिठा देती है और इन 12 सीटों के जरिए ही पीओके में पावर कंट्रोल होता है। इसीलिए पीओके में कश्मीरियों की मांग है कि ये 12 सीटें हथ करके इन पर पीओके के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। पाकिस्तान इसे मानने को तैयार नहीं है और पीओके वाले झुकने को तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो।
4: ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया। जॉर्डन पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। ट्रंप ने धमकी दी कि आने वाले कुछ घंटों में ईरान पर बहुत बड़ा और सबसे बड़ा हमला वो करने वाले हैं। इस धमकी के बाद ईरान ने भी मिडिल ईस्ट के आसपास और इसके साथ साथ पूरे इलाके में अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें बरसाने की चेतावनी दे दी।

0: ईरान पर फिर अमेरिका की बमबारी शुरू। जॉर्डन हमले का लिया बदला, ईरान दहला। ट्रंप के बड़े हमले की धमकी का मतलब क्या? क्या कई फ्रंट से हमले की तैयारी में है ट्रंप? क्या इजराइल और सऊदी भी करेंगे हमला? ईरान पर वार, अब विश्व युद्ध है तैयार। ईरान की धरती को एक बार फिर अमेरिकी सेना ने अपने बारूद से दहलाना शुरू कर दिया है। जॉर्डन पर ईरानी हमले के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने आर पार की जंग का ऐलान किया है। दावा यही है कि ईरान पर विनाशकारी हमला संभव है।
1: In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had five rockets shot going 8,500 miles an hour, and all five rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
0: ट्रंप की इसी धमकी के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के अलग अलग शहरों में भीषण बमबारी की। इस लिस्ट में ईरान के कई शहरों के नाम हैं: खुजिस्तान प्रांत, अबादान, केश्म द्वीप, बंदर अब्बास और बुशहर प्रांत। ये हमले जॉर्डन में अमेरिकी सेना के ठिकाने पर ईरान के मिसाइल हमलों के एक दिन बाद किए गए हैं। अमेरिकी सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, ये हमले मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सेना पर कल ईरान द्वारा किए गए हमलों की कोशिश का कड़ा जवाब है। ईरान ने भी दावा किया है कि जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए हमले में अमेरिका के 3 F-35 लड़ाकू विमान तबाह हो गए, जबकि 3 फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा है। बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका और ईरान युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम मुल्क अब इस युद्ध में सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। ईरान के सांसद अलाउद्दीन बोले जॉर्डी ने आशंका जताई है कि ट्रंप से मुलाकात के बाद इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग के बाद ही एक बार फिर ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हो गया है। दुश्मन ने अपना मनोवैज्ञानिक युद्ध फिर से शुरू कर दिया है और इसराइल ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा और ट्रंप के साथ मीटिंग का मकसद भी इसी मामले पर निर्णय लेना है। ईरान ने कभी भी अमेरिका जैसी युद्ध विराम नीति को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका जब चाहे तब लड़ाई फिर से शुरू कर देता है। ये ईरान को कबूल नहीं है। इसराइल को लेकर ईरान की आशंका को अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट सही ठहराती है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा ईरान को लेकर हुई। दोनों नेताओं ने ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों पर चर्चा की। रिपोर्ट के मुताबिक 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प, ईरान पर हमले जारी रखते हुए बातचीत जारी रखना। ये वही रणनीति है जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति इस वक्त काम कर रहे हैं। भले ही अमेरिका और ईरान के बीच बार पलटवार जारी हो, लेकिन मध्यस्थों के जरिए बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। ऐसे में अमेरिकी हमलों से ईरान इस वक्त दबाव में है और जल्द ही अमेरिका की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार हो सकता है। दूसरा विकल्प, हमलों के साथ साथ ईरान पर आर्थिक दबाव भी बढ़ाने की जरूरत है। इसमें ईरान के चारों ओर नौसैनिक नाकेबंदी बनाए रखना और नए प्रतिबंधों के साथ ईरान की तेल और गैस की सप्लाई चेन को तोड़ना है, ताकि ईरान के पास लंबे वक्त तक युद्ध खींचने की ताकत न बचे। तीसरा विकल्प, अगर बातचीत से समाधान नहीं निकला तो एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले करना। इन हमलों से ईरान के पावर प्लांट, परमाणु ठिकानों के साथ साथ गैस और तेल के प्लांट पर हमले शामिल हैं। इन हमलों में इजराइल के साथ साथ कई और मुल्क शामिल हो सकते हैं। ट्रंप को उम्मीद है कि हॉर्मुज को बंद करके ईरान ने अब तक यूरोपीय देशों से मिल रहे समर्थन को खो दिया है। अब ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश हॉर्मुज को लेकर ईरान पर हमलावर हैं। यूरोप के ज्यादातर देश यही चाहते हैं कि हुर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है और इसे ईरान बंद ना कर पाए।
2: Stock markets, as of about an hour ago, was like through the roof. But no, they requested a meeting. They would not have requested the meeting if we were doing poorly. The only reason they want to meet is because we've been hitting them very hard.
3: आपने ट्रंप को सुना और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान अमेरिका युद्ध ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
4: दुनिया पर इस समय युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं और दो युद्ध, एक रूस यूक्रेन के बीच युद्ध और दूसरा अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध, दोनों अब मिलते जा रहे हैं कैस्पियन सागर में। जी हाँ, यूक्रेन ने ईरान के एक जहाज को कैस्पियन सागर में निशाना बनाया, वो जहाज जो कुछ सामग्री लेकर रूस जा रहा था। यूक्रेन का कहना है कि उसमें हथियार थे, ईरान का कहना है कि उसमें मिलिट्री वेपन्स या युद्ध का साजो सामान बिल्कुल नहीं था और पलटवार होगा यूक्रेन पर। यह क्या दर्शाता है? यूक्रेन और रूस की लड़ाई और अमेरिका और ईरान की लड़ाई कैस्पियन सागर में ये बढ़ती जा रही है। दोनों युद्ध अब बढ़ते जा रहे हैं, ये तो ही पहली बात। दूसरी बात, एक और बड़ा हमला जो ईरान ने किया है। अब आप देखिए युद्ध का दायरा कैसे बढ़ रहा है, एक यूक्रेन और कैस्पियन सागर में, दूसरा अब हम आपको भूमध्य सागर में लिए चलते हैं। भूमध्य सागर के पास भी एक और हमला हुआ है, दूसरा ईरान ने जॉर्डन के अमेरिका के एक मिलिट्री बेस को यहां निशाना बनाया है, क्योंकि जॉर्डन में वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसराइल की रक्षा करता है। तो ईरान अगर डायरेक्ट इसराइल पर वार करना चाहता है तो उसकी मिसाइलों को जॉर्डन पर इंटरसेप्ट कर लेती है।
3: समय आ रही है और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और नया वीडियो संदेश जारी किया है। पिछले कुछ दिनों में यह तीसरा वीडियो संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सुनवाएं आपको।
5: पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है, टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा, हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
6: ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया और दोनों सदनों में पास होने के बाद इस बिल के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो। हिमांशु मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके सीधे छात्रों तक पहुंचने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से?
7: देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार, अगर आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते में उन्होंने लगातार जो है वो इंस्टाग्राम पे वीडियो को अपलोड किया। आप पहला अगर उनका इंस्टाग्राम वीडियो देखें जो पिछले एक हफ्ते में है, तो सबसे पहला जो है वो वीडियो जो था वो इस बात को लेकर था कि कैबिनेट जो है वो प्राइवेट एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर बिल में नए अमेंडमेंट लेकर आ रही है, जिससे पेपर लीक करने वाले जो माफिया है उनको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिले और उनके मन में एक डर आए। उस वीडियो को उन्होंने जारी किया। उसके बाद जो है कैबिनेट से जब उसको मंजूरी मिल गई
6: जी,
7: वो उन्होंने जारी किया और साथ ही साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार जानते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जो इंस्टाग्राम है वो एक तरीके से नए जो यूथ जनरेशन है, जेन जी जो है
6: जी,
7: वो इंस्टाग्राम को कैसे पर है और एक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस तरीके के वीडियो जारी करते हैं। और साफ तौर पर कल लोकसभा से और राज्यसभा से इस बिल को जो है वो पास हुआ है और अब राष्ट्रपति के पास जब ये अनुमोदित हो जाएगा, वहां से पास मंजूरी मिलने के बाद जो है ये नए कानून जो है कानून में नए संशोधनों के साथ दिखेगा, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उनको लीगल बैकिंग मिलेगी। 2 महीने में आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, 3 महीने के अंदर जो है कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई कर पूरे मामले पर फैसला आ जाएगा। इसमें 10 साल की जो है वो सजा है और 10 करोड़ का जुर्माना है। तो एक तरीके से पेपर लीक के लिए जो दोषी है उनको सजा भी मिलेगी और भविष्य में इस तरीके के कदम ना उठाए गए, इसीलिए कड़ी सजा का जो है वो प्रावधान रखे गए हैं। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए कहे सोशल मीडिया टूल के जरिए जो है वो यूथ को जो है सीधा कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी जो युवा है उनके साथ सीधा डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो उन्होंने बनाया।
6: बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता, जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से परीक्षा संशोधन बिल पास होने के बाद एक इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट किया। एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं।
5: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया। परीक्षा संशोधन बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद सीधे छात्रों से संवाद, तीसरा वीडियो और दो वीडियो ने तो रिकॉर्ड्स बनाए थे। दर्शक, में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
12: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn. Sokudo.
13: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
8: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
9: कि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इसकी इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और यह इसी सत्र की बात नहीं है, जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है। और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। दे आर इशूलेस।
10: उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है तो आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता।
11: एक पुरानी कहानी है कि एक समूह बच्चों का चिल्ला रहा था, मेरे देश का राजा चोर है, मेरे भी नहीं, देश का राजा चोर है। तो पुलिस ने पकड़ लिया, बोला सर हम तो फलाना देश की बात कर रहे थे। बोले बेवकूफ समझ रखा क्या, हमको नहीं पता था। तो एक संदर्भ से अलग उन्होंने बात रखी, आपने वो उड़ता तीर ले लिया, तो आप तो उनकी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: characters.
1: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इंस्टाग्राम पर एक बार फिर से वीडियो संदेश जारी किया है और जिसमें उन्होंने बात की है इस बिल के बारे में। तो एंटी लीग बिल पर एक बार फिर से यंगस्टर्स को मैसेज, देश को मैसेज इंस्टाग्राम पर उनकी तरफ से दिया गया है। सुनिए क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
2: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: संशोधन बिल पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तरफ से इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश वारदात शम्स ताहिर खान के साथ।
3: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आज वारदात में आपको एक लाइव क्राइम सीन दिखाने जा रहा हूं। एक नर्स पत्नी का पति पिछले 2 सालों से ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा था, ऐसा पत्नी का कहना था। मगर सच्चाई ये थी कि उसका पति उसी शहर में पिछले 2 सालों से कब्र में सो रहा था। जैसे ही यह सच्चाई सामने आई, पुलिस फौरन क्राइम सीन की तरफ पहुंची लाश को कब्र से बाहर निकालने। इसके बाद अब जो कुछ भी होता है वो सब कुछ आप लाइव देखेंगे। ये गुजरात के जामनगर इलाके में मौजूद एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए यहाँ कई कारखाने हैं। 29 जुलाई बुधवार का दिन था, अचानक पुलिस की गाड़ियां इस कारखाने का रुख करती है। इलाके की एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रही है। शायद ऑपरेशन की खबर आसपास के लोगों को भी मिल चुकी है, लिहाजा कारखाने के चारों तरफ अब भीड़ भी इकट्ठा है। ये उसी कारखाने के अंदर का सीन है। कुछ पुलिस वाले बैठे हैं तो कुछ खड़े हैं। इन्हीं पुलिस वालों की मौजूदगी में एक मजदूर कारखाने के अंदर इस जगह फर्श पर ड्रिलिंग मशीन से खुदाई शुरू करता है। सब कुछ यहाँ सामान्य है, पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ मुस्कुरा भी रहे। पुलिस वालों को खबर देने वाला जमीन के ऊपर था, लेकिन जो खबर थी वो जमीन के अंदर थी। लिहाजा शुरुआत ड्रिलिंग मशीन से होती है और खबर की सच्चाई को गहराई से बाहर निकालने के लिए

0: तो यहाँ तक की कहानी तो आप समझ गए। अब चलिए वापस उसी कारखाने में चलते हैं। शायद अब तक खुदाई पूरी हो चुकी होगी। और ये लीजिए, नीलेश ने बिल्कुल सही खबर दी थी। कारखाने में इस जमीन के अंदर नाप तोल कर ठीक 12 फीट की गहराई से लाश तो नहीं, पर लाश के सारे सबूत एक एक कर अंदर से बाहर आने लगते हैं। सबसे पहले मिट्टी के साथ कुछ इंसानी हड्डियां बाहर आती हैं, फिर बास्केट में कंकाल का ये सिर बाहर आता है, इसके बाद किश्तों में बाकी हड्डियां बाहर आती हैं। खबर सही थी। अब 2 साल पहले 12 फीट की गहराई में दफनाए गए किसी इंसान की लाश लाश की शक्ल में तो बाहर आने से रही, आएगी तो सिर्फ हड्डियां कंकाल की शक्ल में, और वही बाहर आई। अब पुलिस ने उन्हें कपड़ों की पोटली में बंद कर एम्बुलेंस में रखा और अस्पताल के लिए रवाना हो गए। 2 चीज जानने के लिए, पहली कि जिसका ये कंकाल है उसकी मौत कैसे हुई, और दूसरी क्या मरने वाला सचमुच जिग्नेश ही है। मौत कैसे हुई ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देगी, लेकिन ये हड्डियां जिग्नेश की ही है ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इसका पता डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। अब वापस फिर से पृथ्वी और नीलेश के पास चलते हैं, क्योंकि सारी कहानी यहीं से पता चलेगी। करीब 5-6 साल पहले पृथ्वी की शादी जिग्नेश से हुई, पर जब पृथ्वी की शादी हुई तब पृथ्वी नीलेश से प्यार करती थी। शादी के कुछ वक्त बाद तक तो पृथ्वी और नीलेश एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद फिर से करीब आ गए। जिग्नेश का जामनगर में फर्नीचर का बिजनेस था।
1: इनकी शादी को अप्रोक्सीमेटली 5-6 साल हो गए थे, और ये इसकी वाइफ पृथ्वी वो अपनी शादी से पहले से ही अपने प्रेम जो नीलेश है उसके साथ प्रेम संबंध में थी। शादी के टाइम पे कुछ समय के लिए उनका प्रेम संबंध टूटा, फिर शादी के बाद वापस शुरू हो गया।
0: बात 2 साल पुरानी है। एक रोज अचानक जिग्नेश गायब हो जाता है। जब काफी दिनों तक उसकी खबर नहीं मिलती तब रिश्तेदार और दोस्त पृथ्वी से जिग्नेश के बारे में पूछते हैं। तब पृथ्वी उन्हें बताती है कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया चला गया है और वहीं काम कर रहा है। जब रिश्तेदार जिग्नेश का फोन नंबर मांगते हैं तो पृथ्वी कहती है कि ऑस्ट्रेलिया में जिग्नेश के दफ्तर में फोन पर बात करना मना है, इसलिए फोन हमेशा बंद रहता है। इस तरह अगले 2 सालों तक जिग्नेश से कोई भी रिश्तेदार संपर्क नहीं कर पाया। इधर इस दौरान पृथ्वी बिल्कुल आम जिंदगी जी रही थी। पारिवारिक फंक्शन से लेकर त्योहार तक में वो हिस्सा लेती। अब तो रिश्तेदार भी यकीन कर बैठे थे कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए पृथ्वी यहाँ खुश है।
1: 26/7/2026 को सिटी बी पुलिस स्टेशन में एक अर्जी आई थी कि उसमें फरियादी अशोक धर्मेश भाई माधव जी भाई मावदिया, उन्होंने बोला कि उनका भाई पिछले दोस्त जिग्नेश जिसका नाम जिग्नेश है वो पिछले 2 साल से लापता है। उसकी पत्नी से पूछने पे उसकी पत्नी कहती थी कि वो ऑस्ट्रेलिया गया है, और जब उसका परिवार उसका संपर्क कॉन्टेक्ट नंबर मांगता था तो उसकी पत्नी ने कहा कि उसका ऑस्ट्रेलिया में वो जिस कंपनी में काम करता है वहां फोन पर बात करना अलाउ नहीं करते। तो 2 साल उसका उसके परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया।
0: पृथ्वी की अब तक की चाल तो कामयाब रही। लगभग रिश्तेदारों ने यकीन कर लिया कि जिग्नेश सही सलामत और ऑस्ट्रेलिया में ही है। पर गड़बड़ इस महीने की 25 जुलाई को तब हुई जब जिग्नेश के चाचा का बेटा यानी उसका कजन पृथ्वी से मिलने पहुंचा। उसने कहा कि वो काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, जहां जिग्नेश से भी उसकी मुलाकात हो जाएगी, इसलिए उसने पृथ्वी से जिग्नेश का मोबाइल नंबर और पता मांगा। पहले तो पृथ्वी वही रटा रटाया बहाना करती रही कि वहां फोन पर बात करना मना है, लेकिन जब कजन ने कहा कि वो घर पर उससे बात करेगा और उसके घर जाएगा तब पृथ्वी घबरा गई। वो न जिग्नेश का ऑस्ट्रेलिया का पता दे रही थी न फोन नंबर। कजन को शक हुआ, उसने सीधे पुलिस के पास जाने की धमकी दी। अब पृथ्वी घबरा गई और पहली बार उसने खुलासा किया कि असल में जिग्नेश को उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 2 साल पहले मार डाला है।
1: उसका परिवार का उसके काका का बेटा ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, तो उन्होंने उसकी वाइफ से वापस पूछा कि हमें हमारे भाई का नंबर दो, मैं वहां जा रहा हूं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तब उसकी वाइफ ने उन्हें बताया, पुलिस की जब धमकी दी गई तो उसकी वाइफ ने बताया कि उसको तो हमने 2 साल पहले मार दिया है। इस बात की फरियाद उन्होंने सिटी बी पुलिस स्टेशन

0: 26/7/2026 को गुम दाखिल करवाई। उसमें उन्होंने बोला कि उन्हें डाउट है कि उनके भाई को उसकी वाइफ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया।
1: इसी के बाद 26 जुलाई को जिग्नेश का कजन पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा देता है। रिपोर्ट लिखने के बाद जब पुलिस पृथ्वी से पूछताछ करती है तब वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वो बताती है कि 2 साल पहले उसने अपने प्रेमी नीलेश के साथ मिलकर जिग्नेश के कत्ल की प्लानिंग की। इसी साजिश के तहत नीलेश ने जिग्नेश को किराए के अपने इसी कारखाने में बुलाया, शराब में साइनाइड मिलाया और फिर उसे पिला दिया।
0: जो विक्टिम है जिग्नेश, उसकी बीवी पृथ्वी ने अपने प्रेमी नीलेश के साथ मिलकर उसकी दारू में साइनाइड मिलाकर उसका मर्डर कर दिया और उसकी लाश दरेड़ के कारखाने के अंदर गाड़ दी। और अभी इसका आगे की हम खोदकाम चालू है, आगे की जो भी अपडेट होती है हम आपको देंगे।
1: जहरीली शराब पीने के कुछ देर बाद ही जिग्नेश की मौत हो गई। इसके बाद नीलेश ने इसी कारखाने में 12 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया।
0: इसमें हत्या दरेड़ जीआईडीसी के अंदर जहां उसकी बॉडी गाड़ी गई है वहीं हत्या हुई है, यही आशंका है। अभी तक
2: बॉडी कैसे छुपाई, कैसे हत्या की, पूरा डिटेल बताइए।
0: बॉडी वहां गड्ढा खोदकर उसमें 12 फीट का गड्ढा खोदकर उसमें बॉडी छुपाई गई।
1: जामनगर पुलिस इस बात पर हैरान है कि आखिर पृथ्वी और नीलेश ने पूरे 2 साल तक कत्ल के इस राज को छुपाए कैसे रखा। हैरानी इस बात पर भी है कि 2 साल तक जिग्नेश की कोई खबर नहीं थी। पूरे 2 साल तक रिश्तेदारों से उसका कोई संपर्क नहीं था, फिर भी किसी ने जिग्नेश के बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की। ये अशोक मवादिया हैं, जिग्नेश के बड़े भाई। अशोक मवादिया ने ही पुलिस में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। इनका कहना है कि इन्होंने कई बार जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी बेन से जिग्नेश के बारे में पूछा लेकिन उसने हमेशा इनसे झूठ बोला। इन्होंने गुजराती में हमारे रिपोर्टर को बताया कि वो बार बार यही कहकर हम सबको गुमराह करती रही कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में है। अशोक मवादिया का कहना है कि अगर उनका चचेरा भाई ऑस्ट्रेलिया न जा रहा होता तो शायद जिग्नेश का सच कभी सामने ही नहीं आ पाता। वो अशोक मवादिया ही थे जिनको पृथ्वी बेन ने आखिर में फोन कर पहली बार ये बताया था कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में नहीं है बल्कि उसको मार डाला है। ये सुनने के बाद ही अशोक मवादिया पुलिस के पास गए थे। इन्होंने ही ये भी कहा कि पृथ्वी बेन को देखकर कभी जरा सा भी शक नहीं हुआ कि उनके भाई के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। सारी सच्चाई और कंकाल की शक्ल में लाश बाहर आने के बाद जामनगर पुलिस ने पृथ्वी बेन और उसके प्रेमी नीलेश को जामनगर की अदालत में पेश किया। पुलिस दोनों की 7 दिनों की रिमांड मांग रही थी, हालांकि अदालत ने 4 दिनों की पुलिस हिरासत दी है। अब इन 4 दिनों में पुलिस को न सिर्फ 2 साल पुरानी इस कत्ल की सारी कड़ियों को जोड़ना है बल्कि ऐसे पुख्ता सबूत और गवाहों को भी ढूंढना है जिनसे आगे चलकर दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। हालांकि जामनगर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक पृथ्वी बेन से पूछताछ के दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा है। दर्शन ठक्कर के साथ ब्रजेश दोषी, जामनगर आज तक। एक घर में 3 कत्ल होता है, शक घर के चौथे शख्स पर जाता है। अब पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है लेकिन कुछ वक्त बाद ही उस चौथे शख्स की भी लाश मिलती है। अब पुलिस परेशान हो जाती है लेकिन इसके बाद उन 4 लाशों और क्राइम सीन की फिर से जब नए सिरे से जांच की जाती है तो अचानक असली कातिल का चेहरा सामने आ जाता है। जब नोएडा की आरुषि का कत्ल हुआ था तब पुलिस समेत हरेक को यही लगा कि घरेलू नौकर हेमराज आरुषि का कत्ल कर भाग गया है क्योंकि आरुषि के कत्ल के बाद खुद हेमराज गायब था। नोएडा पुलिस की एक टीम हेमराज को पकड़ने के लिए नेपाल तक रवाना कर दी गई थी पर तभी अगले दिन पुलिस को ख्याल आया कि घर की अच्छे से तलाशी ली जाए और उसी तलाशी के दौरान आरुषि के कत्ल के 1 दिन बाद उसी घर की छत से हेमराज की लाश मिली, यानी जिसे नोएडा पुलिस कातिल मान रही थी खुद उसका कत्ल हो चुका था। मतलब साफ था कि आरुषि और हेमराज का असली कातिल कोई और था कौन था ये खैर आज 18 साल बाद भी किसी को नहीं पता। नोएडा वाले इसी यूपी के प्रयागराज में लगभग आरुषि की यही कहानी दोहराई जाने वाली थी। एक घर से तीन लोगों की लाश मिलती है और उस घर का चौथा मेंबर यानी घर का बेटा गायब। पुलिस समेत लोगों को यही लगा कि बेटे ने ही अपने माँ बाप और बहन का कत्ल किया और भाग गया। पर शायद आरुषि की कहानी प्रयागराज पुलिस के जहन से गई नहीं थी, लिहाजा पुलिस ने उस गलती को दोहराने की बजाय ये तय किया कि पूरे घर और घर वालों की दुकान की अच्छी से तलाशी ली जाए। फैसला काम कर गया। जिस बेटे पर घर के तीन लोगों के कत्ल का शक था, दुकान से उसी बेटे की लाश मिलती है। यानी अब मरने वालों की तादाद चार हो गई थी और जिस पर कातिल होने का शक था खुद उसका कत्ल हो चुका था। असल में चार कत्ल की ये वो कहानी है जो आपको हर कदम पर चौंकाएगी। इस कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट हैं, क्रिमिनल दिमाग की ऐसी ऐसी सोच कि क्या कहें। सबसे अजीब तो इस कहानी का क्लाइमेक्स है जो पूरी कहानी का ही रुख मोड़ देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात 2 जून की है। प्रयागराज के इस घर से पड़ोसियों को कुछ बदबू आती है। ये घर 70 साल के वीरेंद्र वैश्य का है। घर के नीचे 18 दुकानें हैं। ये सभी दुकानें वीरेंद्र वैश्य की ही है। घर में वीरेंद्र वैश्य के अलावा उनकी पत्नी 65 साल की अनीता और 45 साल की बेटी मीनाक्षी रहती थी। इन तीनों के अलावा वीरेंद्र का 40 साल का बेटा अभिषेक भी इसी घर में रहता था। घर से आती बदबू की शिकायत मिलने पर जब पुलिस घर के अंदर गई तो अंदर का मंजर बेहद डरावना था। सीढ़ी पर मीनाक्षी की लाश पड़ी थी, जबकि कमरे में वीरेंद्र और उनकी पत्नी अनीता की। सभी के सर पर किसी वजनी चीज से हमला किया गया था, लेकिन अभिषेक घर पर नहीं था। कुछ वक्त पहले ही वीरेंद्र ने अपने बेटे अभिषेक को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से ये पता चलते ही पुलिस को लगा कि केस आसान है। अभिषेक ने ही तीनों का कत्ल किया और भाग गया। लेकिन तभी घर के अंदर से पुलिस को 2 ऐसी चीजें मिली जिसके बाद पुलिस को लगा कि वो खामखा अभिषेक पर शक कर रही है। असल में एक जगह दीवार पर लिखा था बेटा बहू, और उसी घर में एक गत्ते पर लिखा मिला बंटी बबली और बहू ने मारा। पुलिस का दिमाग चकरा गया। कहानी में अचानक बंटी और बबली की अब एंट्री हो चुकी थी। असल में बंटी कोई और नहीं, वीरेंद्र का बड़ा बेटा अश्वनी वैश्य है और अश्वनी की पत्नी रितु वैश्य। इन दोनों का नाम बंटी बबली इसलिए पड़ा क्योंकि दोनों ही एक नंबर के ठग हैं। फ्रॉड के कई केस इनके सर पर है, यहाँ तक कि पुलिस ने इन पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। अश्वनी इस वक्त जेल में है जबकि उसकी पत्नी यानी बबली जेल से बाहर। वीरेंद्र वैश्य ने दोनों की इसी करतूत के चलते अपने दूसरे बेटे को भी बेदखल कर रखा है। अब पुलिस कंफ्यूज थी कि तीनों कत्ल अगर बंटी बबली ने किए हैं तो अभिषेक कहां गायब है। आरुषि केस वाली गलती न दोहराई जाए इसलिए अब पुलिस ने वीरेंद्र और अभिषेक की दुकानों की तलाशी लेने की सोची। अभिषेक की दुकान बंद थी, ताला खोल कर पुलिस अंदर गई। अंदर जाते ही पुलिस एक बार फिर हैरान। जिस अभिषेक को शुरुआत में पुलिस ने कातिल माना वो खुद अंदर मुर्दा पड़ा था। इस तरह अब लाशों की गिनती 4 तक जा पहुंची। अभिषेक की लाश मिलने के बाद जब पुलिस को पता चला कि वीरेंद्र का दूसरा बेटा यानी अश्वनी उर्फ बंटी पहले से ही जेल के अंदर है तो फिर वो कत्ल कैसे कर सकता है। लिहाजा पुलिस ने अब नए एंगल के साथ अपनी जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों को तसल्ली से खंगालने का फैसला किया। आनन फानन में 20 टीमें बनाई गई। अभिषेक समेत घर वालों के कॉल डिटेल निकाले गए। इन्हीं सारी कवायद के दौरान 2 चीजें हुई। पहली, एक सीसीटीवी कैमरे में 1 जून की सुबह 5 बजे एक शख्स वीरेंद्र के घर से बाहर निकलते दिखा। जब उसकी शिनाख्त कराई गई तो पता चला उसका नाम सनी गुप्ता है। सनी की अभिषेक की दुकान के पास ही समोसे और कचौरी की दुकान है। इसके बाद जब अभिषेक के मोबाइल के कॉल डिटेल निकाले गए तो पता चला कि 31 मई की शाम तक अभिषेक और सनी ने कई बार फोन पर बातचीत की थी। पुलिस की एक टीम सनी के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद अब जैसे ही सनी मुंह खोलता है पूरी कहानी ही पलट जाती है। कहानी का पूरा क्लाइमेक्स ही बदल जाता है। असल में वो वीरेंद्र का बेटा अभिषेक ही था जिसने सनी के साथ मिलकर अपने माँ बाप और बहन का कत्ल किया था। तो फिर अभिषेक का कत्ल किसने किया? तो चलिए अब सिलसिलेवार हर साजिश से पर्दा उठाते हैं। असल में जब अभिषेक को उसके पिता ने बेदखल किया तभी से वो नाराज था, कर्ज में भी डूबा था। इसी के बाद उसने सनी के साथ मिलकर अपने माँ बाप और बहन के कत्ल की साजिश रची। अभिषेक ने तय किया कि 31 मई की शाम वो इस कत्ल को अंजाम देगा। 31 मई की दोपहर से अभिषेक और सनी पहले बियर पीते हैं, कचौरी खाते हैं और फिर घर में दाखिल होते हैं। घर में घुसते ही सबसे पहले अभिषेक को अपनी बहन मीनाक्षी सीढ़ियों पर नजर आई। इससे पहले कि मीनाक्षी कुछ समझ पाती, अभिषेक और सनी ने अपने साथ लाए लोहे के रॉड और बियर की बोतल से उस पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों उस कमरे में गए जहां वीरेंद्र और उनकी पत्नी मौजूद थी। दोनों ने उन दोनों के सिर पर भी लोहे के रॉड से हमला किया और दोनों को मार डाला। तीन कत्ल करने के बाद दोनों घर में रखे करीब 1 किलो जेवरात, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ से ज्यादा है, एक बैग में भरते हैं। फिर लोहे का रॉड, बियर की बोतल, मोबाइल फोन, लैपटॉप, हथौड़ा, सब कुछ उसी घर में पानी की टंकी में डाल देते हैं। अब लूट के सामान के साथ दोनों नीचे आते हैं। अभिषेक और सनी अब अभिषेक की दुकान में बैठे थे। अब बारी लूटे गए जेवरात का हिस्सा करना था। अभिषेक ने सनी को लूटे गए जेवर में से सिर्फ 5 कंगन दिए। सनी को यह बुरा लगा। फिर उसे अचानक ख्याल आया कि जो शख्स अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो उसका क्या होगा। सनी को यह भी ख्याल आया कि अगर वो अभिषेक को ही मार दे तो सारे जेवर उसके हो जाएंगे। बस इसी के बाद अभिषेक की दुकान में ही सनी ने अब अभिषेक को भी मार डाला। अभिषेक का कत्ल करने के बाद सनी उसी दुकान में बैठा रहा। उसने खून साफ किया, लाश पर तेजाब जैसी चीज डाली, फिर वापस वीरेंद्र के घर गया। पूरी रात वहीं रहा। चूंकि कपड़े खून से सने थे लिहाजा उसी घर में नहाया, फिर वीरेंद्र के ही कपड़े निकाल कर पहने, वीरेंद्र के जूते भी पहने। इसके बाद सुबह होने से पहले घर से निकल गया, पर कुछ सोचकर वो फिर वापस घर आया। वो सनी ही था जिसने बताया कि कत्ल के बाद घर की दीवार और गत्ते पर बंटी, बबली और बहू की कहानी क्यों लिखी गई थी। असल में अभिषेक को पता था कि उसका बड़ा भाई घोषित क्रिमिनल है, लिहाजा कत्ल का सारा शक उसी पर जाएगा और वो अपने पिता की सारी मिल्कियत का इकलौता वारिस बन जाएगा।
3: इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस दोस्त की मदद से अभिषेक ने कृत्य किया, बड़े बेटे ने कृत्य किया, उसकी दुकान आपको हम दिखा दें, गुप्ता जी समोसे वाले, यानी कि एक समोसे वाला, उसकी दुकान भी इसी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा थी। 2-3 दिन पहले जो व्यक्ति यहाँ समोसे तल रहा था, उसकी मदद से पूरे परिवार को घर के ही बड़े बेटे ने खत्म कर दिया है। बड़ी बात यह है, पुलिस को भटकाने के लिए तख्ती पर बंटी, बबली, बहू ने किया लिखकर पूरी कोशिश की गई, जिससे आरोप छोटे बेटे और उसकी प्रेमिका पर लग जाए, लेकिन पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया।
1: जब इस 4 कत्ल के खुलासे के लिए प्रयागराज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सनी लगातार पीछे खड़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब उसे ले जाया जा रहा था तब सनी ने कहा कि असल में 3 कत्ल करने के लिए अभिषेक ने ही उसे उकसाया था और अभिषेक का कत्ल उसने इसलिए किया क्योंकि उसमें उसका हिस्सा नहीं था।
4: सर, हमारा कोई क्राइम नहीं था। उसने उकसाया हमको, उसने हमको बुलाया, उसने अपने साथ मिलके अपने माँ बाप को सबको कत्ल किया, अच्छी तरह से सब सोना चांदी नीचे लेकर आया, हमको सब बोला था दे, फिर नहीं दिया।
1: माँ बाप और बहन का कातिल भी बन गया, खुद भी मारा गया। न दौलत मिली, न जायदाद, और क्या पता अब सब कुछ उसी बंटी बबली के हिस्से आ जाए, जिसका नाम दीवार और गत्ते पर लिखकर अभिषेक ने पुलिस को उलझाने की कोशिश की थी। वो एक लाइन है ना, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, यह अभिषेक पर पूरी तरह फिट बैठ रही है। पंकज श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार।
6: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
5: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
7: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
8: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
7: to live sports action.
9: To the near side corner, to wrap around, he scores!
7: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
5: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
10: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
11: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

पास हुआ लोक परीक्षा संशोधन बिल। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे शिक्षा माफिया। राहुल के बयान पर बीजेपी की घेरेबंदी, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस, परीक्षा बिल के दौरान असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी पुलिस कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन।

0: असम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मुंबई को नशामुक्त बनाने की मुहिम शुरू हुई। सीएम फडणवीस ने छात्रों से ड्रग्स को न कहने की अपील की। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बागी विधायकों का योग्य ठहराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा अहम फैसला। अगले हफ्ते इस मामले पर विस्तार से होगी सुनवाई। शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को सुनवाई। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे और ठाकरे गुट में मतभेद। रीडीट परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर लगाया ₹5,000 का जुर्माना। महाराष्ट्र में स्कूल कैंटीन के लिए एफडीए लाइसेंस अनिवार्य। 50 मीटर दायरे में जंक फूड और बिक्री पर विज्ञापन पर रोक। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की ताबड़तोड़ कार्रवाईयां। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में सभी 14 आरोपियों की विभिन्नी कोर्ट में पेशी। 3 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए। नागपुर में आरक्षण हटाओ आंदोलन के तहत छात्रों का प्रदर्शन। सोशल मीडिया के माध्यम से जुटे प्रदर्शनकारी। जीरो माइक चौक से संविधान चौक तक पहुंचे और जोरदार नारेबाजी की। बुलडाणा में अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण के विरोध में विशाल मोर्चा। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुजरात के मांजलपुर उपचुनाव में मतदान केंद्र पर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। कांग्रेस समर्थक से मारपीट के भी आरोप। ग्लासगो में अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने भी हिस्सा लिया। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव के तहत दही हांडी कार्यक्रम आयोजित। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गुजरात में 3 दिन के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान। सरकार ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी और स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान। अकोला नागपुर समेत कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। घरों और दफ्तरों में घुस गया पानी। सड़कों पर पानी और जलभराव से आवाजाही बाधित हुई। महाराष्ट्र के पालघर में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश और इसी कारण बैंक का लैंडस्लाइड। मां लक्ष्मीगढ़ मंदिर तक जाने का पैदल रास्ता भी बंद हुआ। गुजरात के पंचमहल हाईवे पर होटल में नशे में धुत युवकों का उत्पात। खाने को लेकर विवाद के बीच ताबड़तोड़ लूट और जान से मारने की कोशिश। गुजरात के बनासकांठा में कार बाइक की भीषण टक्कर हुई। मंदिर से लौट रहे युवक और युवती की मौत। गुजरात के आणंद में एक घर में बाथरूम में घुस गया था मगरमच्छ। वन विभाग ने और दया फाउंडेशन ने सुरक्षित रेस्क्यू करके तालाब में छोड़ा। राजकोट में तेज रफ्तार रिक्शे ने सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी। घटना कैमरे में कैद हुई। अरावली में अधूरी सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने रोड जाम कर दी। हादसे में ड्राइवर की मौत के बाद फूटा था गुस्सा। फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज किया। सावन महीने के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 बजे ट्रेलर को जारी किया गया था। 4:10 का है ये ट्रेलर। विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित आध्यात्मिक फिल्म हनुमान अंश कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। साईं बाबा के रोल में नजर आएंगे संजय मिश्रा। 13 साईं का पहला पोस्टर जारी। 2027 में हिंदी समेत मराठी तमिल और तेलुगु में भाषाओं में रिलीज की जाएगी फिल्म। फिल्म दायरा का फर्स्ट लुकआउट हुआ। पोस्टर में करीना के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन आ रहे हैं नजर। 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हिमांशु कोहली सोनाली सहगल और रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का जीरो का ट्रेलर रिलीज किया गया। 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना बनाम शिवसेना यूबीटी मामले की सुनवाई हुई है और महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले पर अब अहम सुनवाई हुई है। लेकिन अब 4 अगस्त को मामले की निर्णायक सुनवाई होनी है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर असली शिवसेना कौन सी है।
1: आगे विधायकों को और सांसदों को अयोग्य घोषित करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलील दी और उन्होंने ये कहा कि हमने पहले भी कोर्ट में और निर्वाचन आयोग सब जगह हमने शिकायत की थी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट समय पर सुनवाई करता, समय पर निर्णय देता तो एकनाथ शिंदे की सरकार नहीं बनती। और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय हमें कहा था कि हम देखते हैं और हमने निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की। निर्वाचन आयोग ने हमारे संविधान को अयोग्य बताया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे सुनवाई होगी, लेकिन तब तक बाकी पक्षकार इसमें कंपाइलेशन करके अपनी दलीलों की सूची दे दें और अगले मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा, जिसमें चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ में इस मामले में सुनवाई हुई और कपिल सिब्बल ने लगातार ये अपनी दलील दी और उनका ये कहना था कि जिस तरह से अदालत में और निर्वाचन आयोग में हुआ है, उन्होंने सारी अपने इतिहास बताते हुए शिवसेना का बताया कि इस गठन के बाद और 2012 में बाड़ा साहब ठाकरे जो इसके संस्थापक भी थे और संस्थापक अध्यक्ष थे, उनके निधन के बाद उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाया गया और उद्धव ठाकरे ने फिर अपने कार्यकाल में 40 से ज़्यादा चुनाव लड़े हैं। 2018 में जब जीत दर्ज की गई उसके बाद 2019 में एकनाथ शिंदे जो बाद में मुख्यमंत्री बने बागी होकर, वो भी मंत्री थे। अचानक जिस समय MLC का चुनाव हुआ विधानमंडल में विधान परिषद का, तो उस समय कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी और उस क्रॉस वोटिंग के बाद जब उसकी जांच की गई तो बाद में पता चला, जब इस मामले की परतें उघड़ना शुरू हुई तो पता चला एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ दुराभिसंधि में लगे थे और षड्यंत्र रच रहे थे। अचानक ये सारे विधायक, कई विधायक गायब हो गए और वो पता चला कि वो गुवाहाटी गए हैं। उनसे बात करने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ जब उन्होंने बिगुल बजाया और उन्हें वहाँ पर हमारे शिवसेना के जो मुख्य सचेतक थे उनको हटा दिया, उन्होंने अपना सचेतक नियुक्त किया, तो इस पूरी शिकायत, पूरा इतिहास बताया गया और ये कहा गया कि किस तरह से इसमें अध्यक्ष को और मूल कार्यकारिणी को अंधेरे में रखकर ये काम किए गए हैं।
0: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में स्कूलों के अंदर और बाहर जंक फूड की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंडे के निर्देश के बाद स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर्स, बड़े पाव, नूडल्स जैसे तमाम आइटम्स नहीं मिल पाएंगे। इतना ही नहीं, स्कूलों में फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की नियुक्ति भी करना जरूरी होगा।

0: पहले महाराष्ट्र में एफडीए ने दूध में मिलावट करने वालों पर शिकंजा कसा। उसके बाद एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने मुंबई के 5 बड़े क्लबों की किचन में कॉकरोच और गंदगी मिलने के बाद फूड लाइसेंस सस्पेंड किए। अब एफडीए ने बच्चों की सेहत के लिए अहम निर्देश दिए। महाराष्ट्र एफडीए ने राज्य भर के स्कूलों में कैंटीन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया है। स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में ज्यादा फैट और ट्रांस फैट वाले खाने पीने के सामान की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के मुताबिक यह आदेश 28 जुलाई को जारी किया गया है। स्कूलों को अपनी कैंटीन चलाने के लिए सिर्फ लाइसेंस वाले वेंडर रखने की इजाजत होगी। यह आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा।
1: आसान तरीके से हाई फैट जो प्रोडक्ट है, डीप फ्राइड है, शुगरी है, जहां ज्यादा मैदा होता है, जो जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, ऑल दिस इज नॉट अलाउड विद इन 50 मीटर्स पेरिफेरी ऑफ द स्कूल्स। दिस इज सिंपल एज दिस।
0: एफडीए के इस फरमान को मुंबई के दुकानदार कैसे देखते हैं, इसे जानने के लिए हमारी टीम स्कूलों के पास मौजूद दुकानों पर पहुंची।
2: फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कल एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जहां पर मुंबई और महाराष्ट्र में जो स्कूल्स हैं उनके 50 मीटर के दायरे तक किसी भी प्रकार के जंक फूड बेचने पर जो है अब पाबंदी लगा दी गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे द्वारा कल ये जानकारी दी गई। हम इस वक्त मुंबई के एक फूड स्टॉल पर है जहां पर हम बात करेंगे। सर, एफडीए द्वारा एक निर्णय लिया गया है जहां पर कहा गया है कि स्कूल के 50 मीटर के दायरे तक जंक फूड ना बेचा जाए, आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं?
3: बराबर, साफ सफाई भी होना चाहिए ना, ऐसा सब क्लीन अप रखना चाहिए ना बराबर। हम लोग तो क्या देखते हो, आज आजू देख लीजिए, अब हमारे आगे आजू बाजू देख लीजिए कैसा है। हम लोग हमेशा करते रहते हैं, दो दिन में दो बार तो साफ सफाई करते ही रहते हैं।
2: आप इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, आप सहमत हैं इस निर्णय से?
3: क्या बोल सकते, जनता बोलेगी या गवर्नमेंट बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते, पर हमारा काम है क्लीन अप रखने का।
2: बिल्कुल, तो जो निर्णय है उसको कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनकी तरफ से सहमति दी जा रही है।
0: खाने में मिलावट के खिलाफ उठाए गए कदमों के बाद महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के इस निर्देश पर दुकानदार कह रहे हैं कि हमारा काम साफ सफाई से बेचना है, आगे सरकार और बच्चों की मर्जी।
2: मुंबई महाराष्ट्र में जो स्कूल हैं, 50 मीटर के दायरे तक कोई भी जंक फूड ना बेचा जाए, मतलब वड़ा पाव या ऐसी जो चीजें तली हुई वैसी चीजें ना बेचा, आप इसको कैसे देखते
4: हैं? क्या है, जो स्कूल है, खाने पीने का बच्चे लोग को मांगता है तो आएंगे, नहीं तो नहीं आए बराबर। पैसा उससे ज्यादा मैं इसको बोल नहीं सकता, बच्चे लोग आए खाने पीने का रखेगा तो बच्चे लोग कोई भी आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा।
2: तो चीजें रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए स्कूल के?
4: जंगते हैं मगर वो बराबर साफ सुथरा रखना मांगता है, नहीं होगा तो बराबर नहीं।
2: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सुना कि साफ सुथरी चीजें रखी जाए और बच्चों का खाने का मन होगा तो वो आएंगे। जाहिर तौर पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है यहाँ पर लोगों की जो है वो देखने को मिल रही है। और भी दुकानें हैं यहाँ पर, अब देखना होगा कि कब तक ये जो निर्णय लिया गया है उसको अमली जामा पहनाया जाता है और कब तक इन नियम को जो है वो लागू किया जाता है।
0: एफडीए ने स्कूलों के पास चॉकलेट, आइसक्रीम और ज्यादा फैट और शुगर वाले खाने पीने की चीजों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। एफडीए के इस आदेश के तहत वड़ा पाव, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तले हुए स्नैक्स और ज्यादा फैट, ज्यादा शुगर और नमक वाली दूसरी चीजों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। ज्यादातर मुंबई वाले इस नियम का समर्थन करते दिखाई दिए।
5: तो जो भी बाहर का जंक फूड जो भी रहेगा वो नहीं रहेगा तो ही अच्छा है, बच्चों लोग के लिए अच्छा है।
2: तो इस डिसीजन से आप सहमत हैं? आप एग्री करते हैं? अच्छा डिसीजन।
5: हाँ सहमत है मैं।
2: बेटा आप इस डिसीजन को कैसे देखते हो, आप क्या कहते हो, सही है?
6: सही है, जो बच्चे लोग हैं उनका हानिकारक खाना खाने से उनका तबीयत बिगड़ता है और फिर खाने से लीवर वेवर खराब होके तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो ये डिसीजन अच्छा है।
7: जंक फूड बेचना ही नहीं चाहिए।
2: हाँ जी सर।
7: क्योंकि उससे कितना साइड इफेक्ट्स कितने हैं उसके
2: बच्चों पे।
7: हाँ, और बच्चों को उनका बॉडी ग्रोइंग बॉडी रहता है, तो ग्रोइंग बॉडी में ऐसा ये खाना देंगे तो मतलब जल्दी बूढ़े हो जाएंगे।
2: आप एग्री करते हैं डिसीजन से?
7: यस, मतलब बहुत अच्छा डिसीजन है ये, जंक फूड बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे इंडिया के फूड्स कम है क्या जो जंक फूड ये करने के लिए बेचने के लिए? इंडिया में इंडियन भी फूड बहुत अच्छे अच्छे है ना, यू हैव टू डू।
0: फूड रेगुलेटर ने स्कूलों और आसपास के दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वो जंक फूड और ज्यादा फैट वाली चीजों की जगह पौष्टिक चीजें जैसे फल, जूस, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, दूध और स्थानीय स्तर पर मिलने वाली हेल्दी चीजें रखें। एफडीए ने कहा कि जंक फूड आसानी से मिल जाने की वजह से बच्चों में मोटापा, एनीमिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी और फोकस न कर पाने जैसी समस्याएं पड़ रही हैं। एफडीए ने निर्देश दिया है कि हर स्कूल को एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर और एक हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर या नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा। इसके साथ ही स्कूलों को फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड भी लगाना होगा। आगे से हर स्कूल में साल में कम से कम दो बार फूड सेफ्टी की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर पहले स्कूल, कैंटीन, फूड सप्लायर और वेंडर को सुधार के लिए नोटिस भेजा जाएगा और आखिर में उनके लाइसेंस को सस्पेंड या रद्द भी किया जा सकता है।
1: ट्रांस फैट, शुगर हे प्रोडक्ट याच्यामध्ये बॅन आहेत। आजही बऱ्याच ठिकाणी शाळेच्या किंवा ज्याला ज्युनियर कॉलेज आपण म्हणतो जी 12वी शाळा असते तिथपर्यंत कॅन्टीनमध्ये असे प्रॉडक्ट्स भेटले जातात। दे विल बी ऍक्टेड अगेन्स्ट ॲज पर आपले जे रेग्युलेशन्स आहेत त्याप्रमाणे त्यांच्यावरती कारवाई होईल। विदिन द प्रिमायसेस अँड आउटसाइड विदिन 50 meters पेरिफरी ऑफ द बाउंड्री। हा करण्याचा उद्देश एवढाच आहे की शाळेमधल्या विद्यार्थ्यांचा ग्रोथ फिजिकल आणि मेंटल किंवा इंटेलेक्च्युअल हा जो ग्रोथ आहे त्यांच्या रिक्वायरमेंट्स आहेत। ज्या वेळेस मुलं लहान असतात किंवा ग्रोईंग फेजमध्ये सर्वात जास्त रिक्वायरमेंट ही प्रोटीनची असते, फायबरची असते, मॅक्रोन्युट्रियंट्स आणि मायक्रोन्युट्रियंट्सची असते। हे बॅलन्स डायट त्याच्यामध्ये जायला पाहिजे आणि ते खाल्लं तर त्यांचा ग्रोथ बोथ इंटेलेक्च्युअल आणि फिजिकल चांगल्या पद्धतीने होतो हे त्याच्यातून अपेक्षित आहे। आणि म्हणून हे 2020 हे रेग्युलेशन आलं आहे। आय रिपीट, 2020 रेग्युलेशन्स आहेत आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन 2021 पासून झालेलं आहे।
0: ज्यादातर दुकानदार इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदारों ने कहा कि अगर उन्हें दुकानें बंद करनी पड़ी तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
8: जब से बीएमसी में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है, विपक्ष किसी न किसी मुद्दे पर मेयर रितु तावड़े और बीजेपी पर हमलावर है। अब नया विवाद है लग्जरी कार की मांग को लेकर सामने आया है और विपक्ष का आरोप यह है कि नेता सदन 6 नई कार्स की मांग कर रही हैं, जिससे बीएमसी के खजाने में 1.5 करोड़ का अतिरिक्त तो बोझ बढ़ जाएगा। जबकि बीजेपी कह रही है कि नेता विपक्ष ने ही लग्जरी कार की डिमांड रखी थी।
0: बीएमसी में नया विवाद 1.5 करोड़ के कार अपग्रेड प्लान पर हो रहा है। नई कारों की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। सदन के नेता और बीजेपी पार्षद गणेश खनकर कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो एन की जगह इनोवा क्रिस्टा कार की मांग उन्होंने नहीं बीएमसी में नेता प्रतिपक्ष किशोरी पेडनेकर ने की थी।
9: हमें कुछ स्पेसिफिकली गाड़ियां देनी चाहिए, हम ये मांग हमने कभी नहीं की थी। उल्टा हमने ये कहा था कि यदि आप गाड़ियां लेना चाहते हैं तो आप ईवी गाड़ियां लीजिए। जो मोदी जी के आह्वान के बाद में बातचीत हुई तो हमने ये कहा था और मैं खुद मेरी पर्सनल गाड़ी जो है ये ईवी गाड़ी मैं करीबन 1.5 साल से मैं उपयोग में ला रहा हूं। मैंने उस दिन स्टैंडिंग में इसके बारे में ब्रीफिंग बताया कि उसके चार्जिंग, उसके फायदे और वो कैसे एनवायरमेंट के लिए अच्छी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो गाड़ी आयुक्त को दी जाती है वो हम नहीं दे सकते, उसके बदले हम दूसरी गाड़ी दो। मैंने कहा भाई वो आप तय करिए और लाइए। इसमें हमने कभी भी कि हमें स्पेसिफिकली यही गाड़ी चाहिए हमने कोई मांग नहीं की थी। कुछ सदस्यों ने, विशेषतः हमारी विरोधी पक्ष नेता ने कहा था कि महिला होने के नाते मुझे वहां दिक्कत होती है तो मेरे लिए कोई व्यवस्था करो। एज ए लीडर ऑफ द हाउस ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो समितियों के अध्यक्ष होते हैं उनकी मैं बात रखूं, इसलिए मैंने बात रखी।
0: हालांकि गणेश खनकर ने 28 जुलाई को बयान दिया जिसमें वो इनोवा क्रिस्टा कार की मांग की पुष्टि कर रहे हैं।
10: जे वैधानिक समितीचे अध्यक्ष आहेत, उपमहापौर आहेत, यांनी सर्वांनी मिळून आम्ही मागणी केली होती की आता ज्या जी वाहनं आम्हाला दिलेली आहेत या गाड्या बदलण्यात याव्या याविषयी तक्रार होती आणि त्या पद्धतीने प्रशासनाकडे आम्ही गटनेत्यांच्या बैठकीतही आम्ही मागणी केली होती। त्यानुसार आताच्या ज्या गाड्या आहेत या बदलून नवीन क्रिस्टा गाड्या घ्याव्यात असा माझ्या माहितीप्रमाणे प्रस्ताव येतो आहे। आम्ही मागणी केली होती की आमच्या गाड्या बदला आणि प्रशासनाने ते मान्य केलं होतं की होय याबाबत आम्हालाही तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत, त्या अनुषंगाने आता नवीन गाड्या येतील अशी आमची माहिती आहे।
0: ये 6 नई कार की मांग बीएमसी में नेता सदन, डिप्टी मेयर, नेता विपक्ष के साथ समितियों के अध्यक्षों के लिए हो रही थी। इन्हें जनवरी 2026 में स्कॉर्पियो एन कार दी गई थी जिसे कथित तौर पर कम आरामदायक बताया गया था और सफर के दौरान पीठ दर्द का हवाला दिया था। अपग्रेडेड इनोवा क्रिस्टा कारों के लिए 1.5 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया था।
11: बीएमसी ने नेताओं के लिए 6 नई गाड़ियों का 1.5 करोड़ का प्रपोजल तो बना दिया है, लेकिन कोई भी नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि वो गाड़ियां उसको चाहिए। हालांकि ये स्कॉर्पियो गाड़ियां जो खड़ी हैं, ये 6 महीने पहले ही आई है, ये हाइब्रिड मॉडल की है, लेटेस्ट है और आप कह सकते हैं कि अच्छी कंडीशन में है, लेकिन फिर भी ये बात कही गई कुछ नेताओं की तरफ से कुछ मीटिंग में कि उन्हें पीठ दर्द होता है लंबे सफर की वजह से, इसलिए इनोवा कार चाहिए। लेकिन अब जब मामला तूल पकड़ चुका है तो कोई नेता ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये डिमांड उन्होंने की थी। अब लीडर ऑफ द हाउस गणेश खनकर कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन किशोरी पेडनेकर ने मांग की थी, जो कि किशोरी पेडनेकर डिनाई कर रही हैं। तो अब बीएमसी ये गाड़ी नई गाड़ियां क्यों किसके लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्चा कर मंगा रही है, एक बड़ा सवाल है।
0: वहीं किशोरी पेडनेकर कह रही हैं कि उन्होंने कभी आरामदायक कार देने की मांग नहीं की, उन्होंने इसे निगम के खजाने पर अतिरिक्त बोझ बताया।
11: बीएमसी ने प्रपोजल लाके 1.5 करोड़ रुपए में 6 नई इनोवा गाड़ियां खरीदेगी, इस तरह की बात की गई, जिसमें लीडर ऑफ द हाउस शामिल है, कमिटीज के चेयरमैन शामिल है और लीडर ऑफ अपोजिशन का भी इसमें नाम लिया गया। इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन बीएमसी में किशोरी पेडनेकर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। लीडर ऑफ द हाउस का कहना है कि ये आपकी मांग थी जिस वजह से नई स्कॉर्पियो को इनोवा बदलने का प्रस्ताव लाया गया।
12: एक तो ना ये बहुत ही हास्यास्पद है, लीडर ऑफ अपोजिशन की इतने ये काम करने लगे, इसमें ही उनके बातों में ही वो फेल है। मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो मेरी 10 साल मेरे पास, मैंने वो यूज की है, तो मुझे कभी भी स्कॉर्पियो से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है।
0: आज तक से बात करते हुए नेता सदन गणेश खनकर ने अपना मोबाइल दिखाते हुए बताया कि वो खुद का समय बचाने के लिए लोकल ट्रेन से बीएमसी आते हैं।
8: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: रणबीर कपूर की फिल्म रामायण के पहले पार्ट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मेकर्स ने ट्रेलर सुबह 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में दुनिया भर के सामने लॉन्च किया। मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि में रणबीर कपूर का लुक प्रभावशाली नजर आ रहा है।
2: तुम्हारा नया राजा
3: रणबीर कपूर की फिल्म रामायण के पहले पार्ट का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। मेकर्स ने इसे सुबह 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त के शुभ अवसर पर एक साथ दुनिया भर में लॉन्च किया। 2026 की सबसे बड़ी फिल्म रामायण का ग्रैंड ट्रेलर 4:10 का है। ये फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होगी, जबकि फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2027 में दिवाली पर रिलीज होगा। दो पार्ट में बनी फिल्म रामायण का बजट 4,000 करोड़ का है। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा है, जबकि फिल्म का म्यूजिक ऑस्कर विनर एआर रहमान और हांस जिमर ने दिया है।
4: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सुपर्णा, राम की मृत्यु साधारण होगी।
5: काफी इंतजार करवाने के बाद रामायण का ट्रेलर फाइनली आ चुका है, आज सुबह 4:00 बजे ड्रॉप हुआ है। जी हाँ, काफी लोग सुबह उठते ही उन्होंने रणबीर कपूर और यश की जो एक ग्रैंड स्केल फिल्म आने वाली है दिवाली पे, उसका पहला ट्रेलर देखा। डेफिनेटली काफी क्रिटिसिज्म चल रही थी कि रणबीर कपूर राम के अवतार में कैसे लगेंगे, बट जी हाँ, जब से ट्रेलर आया है एक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आई है, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी है। बट ये शायद वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स होगी जिसमें हीरो से ज्यादा विलन की बातें चल रही है। रावण का किरदार जो प्ले कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार यश, उनके परफॉर्मेंस को सब काफी तारीफ कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंसेस होने वाली है। और इस ट्रेलर में हमने जो कहानी है वो देखी कि कैसे राम और सीता की शादी होती है, कैसे उन्हें वनवास दिया जाता है और फिर रावण आते हैं, और कहीं ना कहीं सुपर्णरेखा का जो ट्विस्ट है वो भी हमें ये देखने को मिला है। 4,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ ये दो पार्ट में फिल्म आएगी। पहली फिल्म इस दिवाली आएगी और दूसरी नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी।
6: रावण तीनों लोगों का स्वामी है तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा।
3: रामायण के ट्रेलर को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम समेत कई भाषाओं में एक साथ रिलीज किया गया है। रणबीर कपूर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के किरदार में बेहद प्रभावशाली लग रहे हैं। माता सीता के किरदार में साई पल्लवी के लुक में सादगी और शालीनता नजर आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रावण की हो रही है। साउथ के सुपरस्टार यश ने रावण का किरदार जीवंत कर दिया है। अभिनेता रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में है तो रामानंद सागर की रामायण के राम अरुण गोविल दशरथ के किरदार में बेहद सौम्य नजर आ रहे हैं।
6: मेरा ज्येष्ठ पुत्र।
3: फिल्म में रकुलप्रीत सिंह रावण की बहन शूर्पणखा का किरदार निभा रही हैं। लेकिन पूरे ट्रेलर में हनुमान के रोल में सनी देओल मिसिंग है, जिससे सनी के फैंस के साथ श्री राम के भक्त भी हनुमान की कमी को महसूस कर रहे हैं।
7: रामायण का ट्रेलर आया है करीब 4 मिनट का और ये ट्रेलर काफ़ी इम्प्रेसिव है। शुरुआत ही इसकी जब रावण की एंट्री के साथ होती है, जो यश ने किया है वो इतना प्रभावशाली है कि तीनों लोकों पे राज करने वाला रावण ऐसा लगता है कि आपके सामने साक्षात आया हुआ है। स्पेशल इफेक्ट्स ज़बरदस्त है, राजा दशरथ की एंट्री, फिर कैकेयी की एंट्री, फिर राजा राम की एंट्री, फिर सीता जी की एंट्री, सारी ही एंट्रीज प्रभावशाली है। और फिर वो शूर्पणखा वाला एंगल और उसके बाद वो बदले का आगाज और फिर जो युद्ध की गतिविधियां और वो सारा ग्रैंडियर मन को लुभाने वाला है। बड़े ही जबरदस्त स्पेशल इफेक्ट्स है, म्यूजिक बड़ा इंप्रेसिव है। जीमर और यार रहमान ने मिलकर जब म्यूजिक किया तो ऑब्वियसली बात तो होगी, डायरेक्शन अच्छा लग रहा है। स्क्रीन प्ले के बारे में हम बात नहीं कर सकते, एक कमी खलती है और वो कमी है हनुमान जी की। अब इतनी बड़ी स्टोरी में अगर हनुमान जी ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा।
3: चाहे अनचाहे इस फिल्म की तुलना रामानंद सागर के रामायण सीरियल और आदि पुरुष फिल्म से होना शुरू हो गई है, इसीलिए इस फिल्म पर पूरे बॉलीवुड की नजर है।
6: तो तीनों लोगों के सामने उसका वध।
3: सना फरजीन, मुंबई आज तक।
6: मैं अपनी सीता को वापस।
1: और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
9: Jack, come home. It's supper time.
8: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
10: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
8: Jack FM, playing what we want.

से भी पास हुआ लोक परीक्षा संशोधन बिल। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, बख्शे नहीं जाएंगे शिक्षा माफिया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की घेरेबंदी, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस, परीक्षा बिल के दौरान असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी पुलिस की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन। असम में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 78 की मौत, सरकार का अहम ऐलान, 4 जिलों में ईएमआई पर 6 महीने की राहत। और सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा नेपाल, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 की मौत, दर्जनों घायल, करीब 6 शहरों में कर्फ्यू।

लगातार 9वें दिन संसद में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 का पेश किया। बोले, विपक्ष भी मान रहा है कानून की जरूरत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बोले, माहौल ठंडा करने के लिए लाए गए बिल, ये अभी भी अधूरा। खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुनाई कविता। कहा, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पिटते रहे। कैसा न्याय, ये कैसी रीति, गुनहगार हंसते रहे, मासूम से सकते रहे। खड़गे ने अमित शाह पर निशाना साधा। कहा, बहुत दिनों तक छुप नहीं सकते, हम आपको खींच कर लाएंगे बाहर। भाषण के दौरान खड़गे ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए बीजेपी ने माफी की मांग की है। जेपी नड्डा ने कहा, ऐसी बयान से अशांति फैलेगी। खड़गे बोले, देश में फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए। परीक्षा गड़बड़ियों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हाई पावर कमेटी से जांच की मांग की गई। लोकसभा में भी ध्वनिमत से पास हुआ है वंदे मातरम बिल। राज्यसभा में पहले ही मंजूर हो चुका है विधेयक। एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर बड़ा आरोप। बोले, सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कर रही है कोशिश, संविधान में किसी को मजबूर करने की अनुमति नहीं। वंदे मातरम बिल के विरोध में डीएमके सांसद कनिमोझी बोली, राष्ट्रवाद का दिखावा, हिंदुत्व एक एजेंडा। संसद के मानसून सत्र में पेश नहीं होगा एक देश एक चुनाव बिल, बकाया बढ़ाया गया। जेपीसी का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन जेपीसी को सौंपनी होगी रिपोर्ट। हंगामेदार मानसून सत्र में राहुल गांधी की टिप्पणी पर भड़के अनुराग ठाकुर। विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, संसदीय शब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगाए। आज 31 जुलाई तक के लिए स्थगित चर्चा के दौरान राज्यसभा विपक्ष ने वॉकआउट किया था। गृहमंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। सीजेपी प्रदर्शन में शामिल लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली सरकार इनके खिलाफ नहीं करेगी कानूनी कार्रवाई। आईआईटी मद्रास डायरेक्टर पर प्रियंका गांधी के गौमूत्र वाले बयान का विरोध। कई कुलपतियों और शिक्षाविदों समेत 215 लोगों ने लिखाया खुला पत्र। कहा, विचारों पर गंभीरता से बात हो। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर बैठक। सीएम डीके शिवकुमार भी मौजूद थे। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने नीट पेपर लीक मामले में अपनी चुप्पी का कारण बताया। बोले, उनका काम सवाल पूछना नहीं, समाधान देना है। सरकार ने छात्रों की बात को सुनकर एक्शन लिया। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, दिखावटी सुधारों से काम नहीं चलेगा, बीमारी की जड़ को ही खत्म करना जरूरी। एनटीए को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कुल 71.44% का मतदान हुआ। 2.20 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले। बिहार की मांगीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव में कुल 34.30% मतदान दर्ज किया गया। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। गाजीपुर दौरे पर सीएम योगी, 268 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। शिलान्यास और लाभार्थियों को बांटे गए मंजूरी पत्र और प्रमाण पत्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मुंबई में नशा मुक्त बनाने की मुहिम शुरू हुई। सीएम फडणवीस ने छात्रों से ड्रग्स को न कहने की अपील की। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा अहम फैसला। अगले हफ्ते इस मामले में विस्तार से सुनवाई। शिवसेना सांसदों के विलय विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को सुनवाई। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे और ठाकरे गुट में है मतभेद। रीनीट परिणाम को चुनौती देने वाली चारों ही याचिकाएं खारिज। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर लगाया है 5,000 रुपए का जुर्माना। महाराष्ट्र में स्कूल कैंटीन के लिए एफडीए लाइसेंस अनिवार्य है। 50 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों को विमंडी कोर्ट में पेशी। 3 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए। नागपुर में आरक्षण घटाओ आंदोलन के तहत छात्रों का प्रदर्शन। सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े प्रदर्शनकारी जीरो माइक चौक से संविधान चौक तक पहुंचे और जोरदार नारेबाजी की। बुलडाणा में अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण के विरोध में विशाल मोर्चा, बड़ी संख्या में लोग शामिल। गुजरात के मांजलपुर उपचुनाव में मतदान केंद्र पर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। कांग्रेस समर्थक से मारपीट के आरोप है। एमपी के धार भूशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर से सुनवाई। कोर्ट ने कहा, शुक्रवार की नमाज के लिए विवादित परिसर से सटी जमीन पर व्यवस्था करे एमपी सरकार। दिल्ली में भारत ड्रोन एंड रोबोटिक्स मंथन 3.0 का आगाज। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी और नई तकनीक पर जोर दिया। सफाई कर्मचारियों की मांगों में समर्थन के पंजाब बंद का भारी असर देखने को मिला है। शहर के मुख्य बाजारों सहित अधिकांश दुकानें बंद थी। गया में सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं का बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर अनुमंडल कार्यालय पर प्रदर्शन और खराब चापाकल, टूटे पंखे जैसी समस्याओं पर मांगा गया है जवाब। हरिद्वार में संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में कलश यात्रा की आयोजन। इस धार्मिक सामाजिक आयोजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। ग्लासगो में अहमदाबाद एक्सपीरियंसेस सेंटर का उद्घाटन हुआ। गुजरात के डेप्यूटी सीएम हर्ष सांघवी ने हिस्सा लिया। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव के तहत दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
गुजरात में 3 दिन के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान। सरकार ने सभी अधिकारियों को छुट्टियां रद्द की, स्कूलों में छुट्टी घोषित। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान है। अकोला, नागपुर समेत कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट, नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। घरों और दफ्तरों में पानी घुसा, सड़कों पर पानी, जलभराव से आवाजाही बाधित। महाराष्ट्र के पालघर में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश, इसी की वजह से भयंकर लैंडस्लाइड। महालक्ष्मीगढ़ मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल रास्ता भी बंद। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश बन गई आफत, कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। खेतों में भरा पानी, किसानों की बढ़ गई है चिंता। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण तेलंगाना के कुमरम भीम आसिफाबाद में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। नदी नालों में उफान से निचले इलाकों में पानी ही पानी। राजस्थान के कई जिलों में आफत की बारिश, अलवर में पानी में फंस गई थी यात्रियों से भरी हुई बस, जेसीबी से रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद सूखी नदी उफान पर है, कई वाहन बह गए हैं। क्रेन की मदद से गाड़ियों को निकाला गया बाहर। पहाड़ों में मानसूनी बारिश से बिगड़ गए हालात। तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 20 से ज्यादा सड़कें बंद। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के कटाव से केदारनाथ हाईवे का बड़ा हिस्सा बह गया है। सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा लगातार 4th दिन भी स्थगित। उत्तराखंड के चमोली में केमाना गांव में आया भारी बारिश और मलवा, ग्रामीणों में दहशत है, परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। चमोली में आफत की बारिश के बीच बीमार बुजुर्ग को पालकी के सहारे अस्पताल पहुंचाने के लिए मजबूर थे ग्रामीण, लोगों की बंद सड़कों को लेकर मांग। हिमाचल के कांगड़ा में मानसून का कहर, 128 करोड़ का नुकसान हुआ, 33 घर पूरी तरह से ध्वस्त हुए। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, लोगों से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में न जाने की अपील। असम में बाढ़ का असर धीरे धीरे हो रहा है कम, लेकिन अब भी शिवसागर में कई गांव जलमग्न है। हजारों लोग राहत शिविरों में और सड़कों पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं।

ओडिशा के नुआपाड़ा में पानी नियंत्रण तरीके से छोड़ने के बाद भी तिखाली बांध का गेट बंद किया गया। कैचमेंट एरिया से पानी को बहाव के कारण बढ़ गया था जलस्तर। ओडिशा के टिटलागढ़ में बाढ़ का कहर, कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में तेज रफ्तार कार ने दो स्कूली छात्राओं सहित तीन लोगों को टक्कर मारी। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हल्द्वानी में बेखौफ स्नेचर्स का आतंक, सैर पर निकली बुजुर्ग महिला के सोने के कुंडल छून छीन कर फरार हुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। मुजफ्फरनगर में मंदिर से लौट रही महिला से बदमाश ने झपटे थे कान के कुंडल, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। जयपुर में तेज बारिश के बीच तेज रफ्तार एसयूवी ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मारी, गाड़ी सहित कई फीट दूरी पर जा गिरा युवक, मौके पर जान गई। हरदोई में सड़क पर धारदार हथियार से दो युवकों की हत्या, डबल मर्डर से पूरे इलाके में फैली सनसनी। मिर्जापुर में हाईवे पर घर के बाहर सो रहे पिता पुत्र को रौंदते हुए अनियंत्रित कंटेनर घर में घुस गया था, भीषण हादसे में दोनों की मौत। जयपुर से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई, बेटे की चाहत में पिता ने अस्पताल में 13 घंटे की नवजात बेटी का गला दबाकर हत्या कर डाली। झांसी में नामी सुपारी का हाफ एनकाउंटर, रेस्टोरेंट में घुसकर ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या की गई थी, गोली लगने से हुआ घायल। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक ही घर से 31 सांप निकलने के बाद हड़कंप मचा, कटने के बाद भय के माहौल में है परिवार। कर्नाटक के यादगीर में बस सेवा न मिलने और बसों के द्वारा स्टॉप पर न रुकने से नाराज छात्रों ने स्टेट हाईवे जाम किया, यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिम बंगाल के आपला में स्कूल टीचर ने 4 साल की बच्ची के साथ हाथ बांधकर डंडे से पीटा, क्लास में भूख लगने की बात कहने पर गुस्सा हो गई थी, आरोपी टीचर पर केस दर्ज। एमपी के बैतूल में सोफे के अंदर छुपा मिला 5 फीट लंबा कोबरा, समय रहते रेस्क्यू से टला बड़ा हादसा। गोरखपुर जिला अस्पताल में आरोपी को मेडिकल जांच के दौरान भीड़ ने जमकर पीटा था, बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या कर डाली थी। मुंबई हाईकोर्ट के पास टो की जा रही कार में बैठे रहे वकील, पुलिस कार्रवाई का वीडियो वायरल हुआ। राजकोट में एक ऑफिस में बंदूक की नोक पर 18 लाख की लूट, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुजरात के पंचमहल हाईवे पर होटल में नशे में धुत युवकों का उत्पात, खाने को लेकर विवाद के बाद तोड़फोड़ और लूट और जान से मारने की धमकी। गुजरात के बनासकांठा में कार और बाइक की भीषण टक्कर हुई, मंदिर से लौटते समय युवक और युवती की मौत। गुजरात के आणंद में एक घर के बाथरूम में घुस गया था मगरमच्छ, वन विभाग और दया फाउंडेशन ने सुरक्षित रेस्क्यू करके तालाब में छोड़ा। राजकोट में तेज रफ्तार रिक्शा ने सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। अरावली में अधूरी सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने रोड जाम किया, हादसे में ड्राइवर की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा था। अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, अब आईपीएल भी नहीं खेलेंगे, अपने इंस्टा अकाउंट पर संन्यास का ऐलान किया। सचिन तेंदुलकर ने रहाणे के संन्यास को लेकर पोस्ट किया, उनके शानदार क्रिकेट करियर और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। अब रेड बॉल क्रिकेट में दिखेगा वैभव सूर्यवंशी का जलवा, 23 अगस्त को दिलीप ट्रॉफी में दिखाएंगे अपना जलवा, बनाए गए हैं ईस्ट जोन के उप कप्तान। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो फाइनल में पहुंचे भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज ने 69.61 मीटर का बेस्ट थ्रो करके 5वें स्थान हासिल किया। भारत के रोहित यादव 78.37 मीटर के साथ 9वें और यशवीर सिंह 78.36 मीटर के साथ 10वें स्थान पर है। आज देर रात 12:45 पर खेला जाएगा मेडल इवेंट। फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज किया गया, सावन महीने के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 ट्रेलर रिलीज किया गया, 4:10 का है। विशाल चतुर्वेदी के द्वारा निर्देशित आध्यात्मिक फिल्म हनुमान अंश आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी, नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है यह फिल्म। साईं बाबा के रोल में नजर आएंगे संजय मिश्रा, 13 साईं का पहला पोस्टर जारी, 2027 में हिंदी समेत मराठी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी ये फिल्म। फिल्म दायरा का फर्स्ट लुकआउट हुआ, पोस्टर में करीना के साथ पृथ्वीराज सुकुमारा नारायण नजर, 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हिमांशु कोहली, सोनाली सहगल और रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का जीरो का ट्रेलर रिलीज किया गया, 7 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आरबीआई के संशोधित नियमों और सेक्टर में हो रहे बदलावों से गोल्ड लोन कारोबार में आ सकता है ईएमआई मॉडल, अभी तक बुलेट पेमेंट की वजह से 90% कस्टमर्स करते थे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एक मुश्त भुगतान। ट्वेरेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल 245 कंपनियां आईपीओ लाने की तैयारी में, 175 कंपनियों को सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। 2016 से पहले बनी BS3 गाड़ियों में रबर पार्ट्स E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से खराब होने की आशंका, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में जानकारी दी। E20 पर चली बहस के बीच सरकार ने शुरू की E25 पेट्रोल की टेस्टिंग, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ किया कि सेफ्टी जांच पूरी होने तक बाजारों में नहीं उतारा जाएगा नया फ्यूल। अप्रैल जून तिमाही में भारत का स्मार्टफोन एक्सपो 23% बढ़कर रिकॉर्ड $9.84 अरब के पार पहुंच गया, आईफोन की डिमांड बनी सबसे बड़ी वजह। अमेरिका के हमलों पर ईरान का जबरदस्त पलटवार।

ईरान ने जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। जॉर्डन में 3 F-35 फाइटर जेट्स को नष्ट किया गया। अंकारा में हमास के नए चीफ खलील अलहिया से मिले हैं तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान। गजा में शांति वार्ता और मानवीय सहायता को लेकर चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा आरोप, कहा रूस ने यूक्रेन पर हमले में उत्तर कोरियाई मिसाइल का किया है इस्तेमाल। हमले में एक ही परिवार के कई लोगों की मौत। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की सेना का भीषण हमला। राजधानी कीव से लेकर लीव और क्रिवी री शहर में बरसाए गए बम। 3 लोगों की मौत, 13 से ज्यादा लोगों की जान गई है, 25 से ज्यादा घायल। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच पोलैंड में जोरदार धमाका। संदिग्ध वस्तु गिरने के बाद हड़कंप मच गया था। लोगों ने सुनी उड़ते हुए विमानों की तेज आवाजें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, 10 पुलिसकर्मियों की मौत हुई, कई घायल हुए। खून झड़प में 15 आतंकवादी भी मारे गए। नेपाल में फिर से भड़की हिंसा, कई शहरों में बवाल और हंगामा। अब तक 3 लोगों की मौत की खबर, दर्जनों घायल हुए। सांप्रदायिक हिंसा के बाद करीब 6 शहरों में लगाया गया कर्फ्यू। अमेरिका में अटॉर्नी जनरल पद के नामांकन को लेकर खींचतान जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने टॉड ब्लेंच की तारीफ करते हुए उन्हें स्टार बताया। यूरोप में जंगलों में आग से बड़ी तबाही हुई है। फ्रांस स्पेन में बड़े पैमाने पर रिहायशी इलाके जलकर खाक हुए। तेज हवाओं हीट वेव की वजह से आग पर काबू पाने में दिक्कतें। जर्मनी में भीषण गर्मी का कहर, 2016 के बाद गर्मी से मौतों का रिकॉर्ड टूट गया। गर्मी से करीब 10,000 लोगों की मौत हुई है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर वेल्डिंग किए गए 8 फीट ऊंचे बैरिकेड्स की तस्वीरें वायरल है। दावा है कि नए आंदोलन को रोकने के लिए किलेबंदी की जा रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर पर अब भी खुला है सब कुछ और वेल्डिंग सिर्फ 20 जुलाई को टूटे बैरिकेड्स की मरम्मत के लिए की गई है। लेकिन आज हम इसके पीछे का सच आपको बताएंगे क्योंकि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी संसद भवन से सिर्फ 100 मीटर दूर रह गए थे और इसके बाद आपको सोनम वांगचुक के बारे में बताएंगे जो 26 दिनों की भूख हड़ताल और अस्पताल से भावुक संदेश देने के बाद अब एक बार फिर चर्चा में है। इस बार उन्होंने वंदे भारत और चिनाब पुल की तारीफ करते हुए सरकार को युवाओं पर कार्रवाई ना करने का वादा भी याद दिलाया। आज आपको बताएंगे कि सोनम वांगचुक ने सरकार पर गर्व करने के लिए क्या शर्त रखी है। जिस वक्त प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों के एक्शन पर सियासत हो रही है, तमाम राजनेता सुरक्षा बलों के जवानों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तब आपको सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के बयान के बारे में बताएंगे। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान ईमानदारी और नियमों के तहत फैसला लेते वक्त बिल्कुल ना हिचकिचाएं। अगर कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही तय होगी तो उसे वो खुद संभालेंगे, जवानों पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को प्रदर्शनकारियों के लिए बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें ये दिखाई देता है कि जंतर मंतर पर लगाए गए लोहे के बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके आपस में जोड़ दिया गया है। दावा है कि सरकार को ऐसी आशंका है कि कॉकरोच जनता पार्टी फिर से आंदोलन शुरू कर सकती है, जिसके कारण पुलिस पहले ही ऐसी तैयारी कर रही है कि कोई बड़ा प्रदर्शन ना हो सके। हालांकि ये दावा कितना सही है इसकी पुष्टि करने के लिए हमारी टीम खुद जंतर मंतर पर पहुंची। वहां जाकर हमें 3 बातें समझ में आई हैं। पहली बात, ये दावा सही है कि कई बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके आपस में जोड़ा गया है ताकि उन्हें आसानी से गिराया या तोड़ा ना जा सके। दूसरी बात, जंतर मंतर पर अब भी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात है, यानी सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह अब भी कड़ी बनी हुई है। और तीसरी बात, आंदोलन खत्म हुए कई दिन हो चुके हैं लेकिन वहां लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, लाउडस्पीकर्स और जो दूसरे अस्थायी सुरक्षा इंतजाम है वो अब भी हटे नहीं है, यानी ये तीनों बातें पूरी तरह सही है। लेकिन इन्हीं सारी बातों के बीच दिल्ली पुलिस ने खुद सामने आकर ये कहा है कि जंतर मंतर को किसी भी विरोध प्रदर्शन और धरने के लिए बंद नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर आज भी विरोध प्रदर्शन के लिए खुला है, पहले की तरह अब भी पुलिस की अनुमति लेकर कोई भी वहां जाकर प्रदर्शन किया जा सकता है और मौजूदा नियमों के मुताबिक एक समय में करीब 1000 लोगों को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है। यानी ये दावा सही नहीं है कि जंतर मंतर को जेनजी युवाओं के विरोध प्रदर्शन के कारण अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। यहां ये भी समझिए कि अगर जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए खुला है तो पुलिस ने वहां 8 फीट ऊंचे बैरिकेड्स क्यों लगाए हैं और उन्हें इस तरह वेल्डिंग से क्यों जोड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि 20 जुलाई को हुए हंगामे में कई बैरिकेड्स टूट गए थे और इसलिए उनकी मरम्मत कराई गई है। दूसरा, जिन बैरिकेड्स पर आपत्तिजनक नारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द लिखे गए थे उन्हें दोबारा ठीक किया गया है, पेंट किया गया है। और तीसरा, इन बैरिकेड्स को वेल्डिंग से जोड़ने की व्यवस्था नहीं है और ये पहले भी होता रहा है। 20 जुलाई के आंदोलन में जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को गिराने की कोशिश की थी तब भी कई जगह इन्हीं बैरिकेड्स को वेल्डिंग से जोड़कर मजबूत किया गया था। पुलिस का कहना है कि इसका मकसद किसी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन को रोकना नहीं बल्कि भीड़ को नियंत्रित करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। और ये जरूरी क्यों है उसके लिए अब आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। अब तक यही कहा जा रहा था कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद भवन की ओर बढ़ने से रोक दिया था, लेकिन हमारी जांच में मिले 5 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों के फुटेज एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। इन फुटेज में साफ दिखाई देता है कि उस दिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद भवन के चारों ओर मौजूद अलग अलग रास्तों तक पहुंच गए थे और कई जगहों पर उनकी दूरी जो है वो संसद भवन से सिर्फ 100 मीटर रह गई थी। इनमें भी सबसे अहम फुटेज रेल भवन के पास सेल्फी पॉइंट इलाके का है।
यहाँ बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे। उनके पीछे संसद भवन साफ नजर आ रहा था, यानी प्रदर्शनकारी संसद के बहुत करीब थे। इसके अलावा दूसरे कैमरा जो वहां पर है उनके फुटेज में भी ट्रांसपोर्ट भवन और आसपास के इलाके जितने हैं उनमें प्रदर्शनकारी दिखाई देते हैं। कई जगह उनके पीछे संसद भवन और संसद परिसर की इमारतें साफ नजर आती हैं। यानी इन तस्वीरों से साफ संकेत मिलता है कि धारा 163 लागू होने के बावजूद कई जगह प्रदर्शनकारी पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ने में कामयाब रहे थे। अब सवाल है कि ऐसा हुआ कैसे? तो पुलिस की जो शुरुआती रणनीति थी वो ये थे कि जो लोग जंतर मंतर पहुंच जाएं उन्हें धरना स्थल तक जाने दिया जाए, लेकिन वहां से बाहर निकलकर संसद की ओर ना जाने दिया जाए। दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी मेट्रो से आ रहे थे उन्हें स्टेशन या रास्ते में ही रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन दावा है कि यही रणनीति उल्टी पड़ गई। जैसे जैसे लोगों को जंतर मंतर के अंदर आने दिया गया वहां भीड़ लगातार बढ़ती गई। बाहर निकलने के रास्ते सीमित थे, पुलिस लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। इससे भीड़ का दबाव बढ़ता गया और आखिरकार कई जगह बैरिकेड्स टूटे और बड़ी संख्या में लोग अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। ये भी दावा है कि जिन प्रदर्शनकारियों को मेट्रो स्टेशन के बाहर रोका गया था उन्हें ऐसे निर्देश मिले कि जंतर मंतर पहुंचने के बजाय वो सीधे संसद मार्च की तरफ बढ़े। इसके बाद जो लोग जहां थे वहीं से अलग अलग रास्तों से संसद भवन की ओर बढ़ने लगे और यही वजह रही कि प्रदर्शनकारी कई दिशाओं से संसद परिसर के बेहद करीब पहुंच गए। और इस पूरे घटनाक्रम से दो बातें साफ समझ आती हैं। पहली बात, 21 जुलाई की स्थिति सामान्य विरोध प्रदर्शन से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। उस समय संसद का सत्र चल रहा था, सरकार और विपक्ष के सांसद संसद के अंदर मौजूद थे और उसी दौरान प्रदर्शनकारी संसद भवन से करीब 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए थे। और दूसरी बात, अगर उस दिन सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी भी और कमजोर पड़ती या हालात थोड़े और बिगड़ते तो स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती थी। और यही कारण है कि अब दिल्ली पुलिस भविष्य में ऐसे किसी तरह के हालात नहीं हो और कोई भी मार्च जो यहां से निकले सुरक्षा इंतजामों को मजबूत बनाए रखना चाहती है। और इन्हीं कारणों से उसकी दलील है कि भारी सुरक्षा बल की तैनाती जारी है, बैरिकेड्स को वेल्डिंग किया जा रहा है। आप पहले ये देखिए,

0: इस वक्त जंतर मंतर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां रैपिड एक्शन फोर्स अभी भी डिप्लॉयड है और उनके पीछे अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े विशालकाय जो बैरिकेड्स हैं ये अब यहां पर लगा दिए गए हैं। ये पिछले कई सालों से ऐसे बैरिकेड्स यहां पर नहीं लगे थे। ये बैरिकेड्स आखिरी बार जो देखा गया था वो किसान आंदोलन के टाइम पर दिल्ली के बॉर्डर्स पे लगे हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इस वक्त आप देखें तो जंतर मंतर पर भी इस तरह के बैरिकेड्स जो एंट्री पर हैं। इसके अलावा जो एक नई चीज इस वक्त दिखाई दे रही है जंतर मंतर पे वो है इन बैरिकेड्स का आपस में वेल्ड होना। ये देखिए इस तरीके से इन बैरिकेड्स को एक दूसरे से वेल्ड कर दिया गया है, जिससे फायदा क्या होगा, फायदा अमूमन ये होगा कि अगर कोई इन बैरिकेड्स को गिराना चाहेगा तो ज्यादा ताकत लगेगा, ज्यादा लोग लगेंगे और बैरिकेड्स को गिराना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये जो नया एक तरीके से एसओपी हम देख रहे हैं या जो नए चेंजेस किए गए हैं इससे ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि जिस तरीके से 20 तारीख को हमें बैरिकेड्स गिरते हुए दिखे वो हो सकता है आगे देखने को ना मिले, या अगर आगे होता भी है तो और ज्यादा भीड़ और ज्यादा ताकत लगेगी इन बैरिकेड्स को गिराने में। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
1: इस सब के बीच सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने अपने जवानों और अधिकारियों से कहा है कि ड्यूटी निभाते समय अगर वो ईमानदारी और नियमों के तहत कोई फैसला लेते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं तो उन्हें डरने या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अगर इसके लिए जिम्मेदारी या जवाबदेही तय करने की जरूरत पड़ी तो उसे वो खुद स्वीकार करेंगे और जवानों पर इसे नहीं डाला जाएगा, यानी इसकी आंच जवानों तक नहीं जाएगी। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली में हुए आंदोलन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल को सीआरपीएफ पर कई सवाल जिसकी वजह से उठाए गए और संसद में भी विपक्ष इस पर खूब सवाल उठा रहा है और ऐसे में सीआरपीएफ के महानिदेशक ने खुद सामने आकर कह दिया है कि अगर अच्छी नीयत से कोई कार्रवाई हुई है तो उसकी जवाबदेही वो लेने के लिए तैयार रहेंगे। सुनिए।
2: मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हो, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हो, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें, जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा।
1: कहते हैं कि किसी व्यक्ति का शब्दकोश उसके मन और सोच की असली खिड़की होता है और अब हम इसी खिड़की से कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के सोनम वांगचुक के आगे की रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। 26 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद जब सोनम वांगचुक ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हाथों जूस पीकर अपना अनशन खत्म किया तो सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सही फैसला लिया, लेकिन कुछ लोगों ने उन पर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए, यहां तक कि उन पर सरकार से समझौता करने के आरोप लगाने लगे। उस वक्त स्थिति ऐसी बन गई कि सोनम वांगचुक को अस्पताल से ही एक वीडियो जारी करना पड़ा और उन्होंने भावुक होकर कहा कि क्या 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद भी अब उन्हें अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये बात उन्हें इसलिए भी ज्यादा चुभी क्योंकि इस पूरे आंदोलन की शुरुआत करने वालों में सबसे प्रमुख चेहरा वही थे और इसी के साथ साथ उनके भूख हड़ताल की वजह से वहां पर पूरे देश में एक भावनात्मक उफान आया। जब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी तब देश भर के हजारों जेंजी युवाओं ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था। लोग एक दूसरे से अपील कर रहे थे कि अगर सोनम वांगचुक युवाओं के भविष्य के लिए भूखे रह सकते हैं तो वो जंतर मंतर जाकर उनका साथ नहीं दे सकते और एक मुहिम चली, यानी उस वक्त सोनम वांगचुक इस आंदोलन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गए थे। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद माहौल बदला, कुछ लोगों और कुछ नेताओं ने उन पर सरकार के साथ समझौता करने के आरोप लगाने शुरू किए जिसके कारण सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक को लेकर एक बहस चलती रही और अब लगभग वही बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है। आज सुबह दरअसल सोनम वांगचुक ने एक नया वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली से श्रीनगर के बीच उन्होंने पहली बार वंदे भारत ट्रेन में सफर किया उन्होंने चिनाब नदी पर बने हुए दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को भी पहली बार देखा और कहा कि यह अनुभव उनके लिए बहुत शानदार रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय रेल पर गर्व है। इसके बाद उन्होंने सरकार द्वारा पेपर लीक रोकने के लिए बनाए गए संशोधित कानून का भी स्वागत किया और उम्मीद जताई कि जिस तरह परीक्षा प्रणाली को सुधारने की कोशिश की जा रही है उसी तरह पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होंगे। और यहां उन्होंने सिर्फ तारीफ नहीं की, वीडियो के आखिर में उन्होंने सरकार को उसका एक वादा भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान सरकार ने भरोसा दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल युवाओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और अब उस वादे को पूरी ईमानदारी से निभाने का वक्त है। यानी एक ही वीडियो में उन्होंने सरकार के कुछ फैसलों की सराहना की, सरकार को उसका वादा भी याद दिलाया। लेकिन सोशल मीडिया का एक हिस्सा सिर्फ पहले हिस्से पर थम गया है, रुक गया है। कुछ लोगों ने कहा, कहना शुरू कर दिया है कि अगर सोनम वांगचुक वंदे भारत ट्रेन और चिनाब ब्रिज की तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है अब उनका रुख बदल गया है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर लोकतंत्र में सिर्फ आलोचना ही स्वीकार हो, प्रशंसा नहीं, या सिर्फ प्रशंसा ही स्वीकार हो आलोचना नहीं, तो फिर दोनों तरफ से लोकतंत्र के मायने पर सवाल उठता है। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि आप भी सोनम वांगचुक का ये पूरा वीडियो देखें और इसी जिस चिनाब पुल की वो प्रशंसा कर रहे हैं वही आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। क्या इस वीडियो में ऐसा कुछ है जिससे उनकी नीयत पर सवाल उठाया जाए, उस शख्स पर जिसने सबसे लंबी अवधि तक भूख हड़ताल करके इस आंदोलन को इतना मजबूत बनाया था?
3: नमस्कार दोस्तों, जुले जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, परसों हम लद्दाख के लिए निकल रहे हैं तो हम रेलगाड़ी से निकले जो कि मेरा सबसे पसंदीदा यातायात है। और जो दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत की सेवा शुरू की गई है उस पर मेरा पहला अनुभव था और चिनाब पर बने पुल को भी देखना चाहता था और बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। बहुत गर्व है मुझे भारतीय रेल पर। और आज और कल यहाँ कश्मीर में एक दिन का विश्राम लेके हम लद्दाख के लिए बढ़ रहे हैं, साफ पानी और हवा लेकर, थोड़ी ताकत लेकर। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई और उम्मीद करता हूँ कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं शिक्षा प्रणाली में भी हो, ये जारी रहे। और दूसरी तरफ अपील करना चाहूँगा सरकार से कि वो जो समझौते हुए थे पहले मेरे साथ लिखित में और फिर CJP के साथ कि वो प्रदर्शन में जो छात्र थे उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, FIRs नहीं करेंगे, उस पर कायम रहे, पालन करें और देश में खासकर युवा पीढ़ी में एक भरोसे का माहौल बनाएं और सब मिलकर राष्ट्र निर्माण और एक महान भारत बनाने में जुट जाएं फिर से भरोसे के साथ। जुड़ता रहूंगा आप लोगों से। जय हिंद।
1: अब बात करते हैं इस आंदोलन के दूसरे प्रमुख चेहरे अभिजीत दीपके की। इस वक्त दीपके और सोनम वांगचुक दोनों की चिंता लगभग एक है। दोनों चाहते हैं कि प्रदर्शन में शामिल युवाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो, लेकिन उस मांग को रखने का दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। दीपके का अंदाज आक्रामक है, वो सरकार को घेर रहे हैं, वहीं चिनाब ब्रिज की तारीफ को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है वांगचुक की तरफ से। सरकार को दीपके चेतावनी देते हुए अगर युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन दोबारा शुरू होगा, पहले से बड़ा होगा। सोनम वांगचुक का तरीका अलग है, वो सरकार को धमकी नहीं देते, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि सरकार ने जो लिखित आश्वासन दिए हैं उन पर अमल होना चाहिए और इसी को लेकर एक बहस है। उनका कहना है कि सोनम वांगचुक का कि युवाओं का भरोसा टूटना नहीं चाहिए, सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए और इसी वजह से आज सोशल मीडिया पर सिर्फ इस आंदोलन की नहीं बल्कि दोनों के कार्यशैली और भाषा की भी चर्चा हो रही है।
4: अगर FIR पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा।
3: मैं खुश हूं कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई और उम्मीद करता हूं कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं शिक्षा प्रणाली में भी हो, ये जारी रहे।
1: अब ये मांग लगातार हो रही है कि पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन में जो प्रदर्शनकारी शामिल हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने खुद इस मांग पर अपनी सहमति दी है। ज्यादातर जो राज्य हैं उनमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों को वापस भी लिया गया है। लेकिन आज ही हमारे पास दिल्ली पुलिस की एक इंटरनल रिपोर्ट आई है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये बताया गया है कि जब जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन चल रहा था, तब वहां कुल 2873 जो अपराधियों हैं उनको देखा गया। इनमें 101 अपराधी हत्या, 62 अपराधी हत्या की कोशिश, 284 अपराधी डकैती और लूट, 61 अपराधी रेप, 229 अपराधी आर्म्स एक्ट, 135 अपराधी लूटपाट, 19 अपराधी अपहरण, 25 अपराधी महिला उत्पीड़न और 6 अपराधी पॉक्सो मामले के थे। और जानते हैं आंदोलन में घुसे इन अपराधियों की पहचान कैसे हुई? पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे और गाड़ियां खड़ी की थी, जिनमें कैमरों की मदद से पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर इन अपराधियों को पहचाना गया। इनके चेहरे स्कैन करके उनकी प्रोफाइल की जांच हुई। हम यहां दो बातें और जोड़ना चाहते हैं। पहली बात, चेहरों को स्कैन करके जिस तरह उनका डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है, उसका लीगल फ्रेमवर्क अभी तय नहीं हुआ है और हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है कि क्या पुलिस का ऐसा करना लोगों की निजता का हनन है, उल्लंघन है। और दूसरा, अगर इन अपराधियों को इस आंदोलन में देखा गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि यह आंदोलन इन अपराधियों का था। ये अपराधी इस आंदोलन के आसपास जरूर दिखे, लेकिन खुद पुलिस ने अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा है कि इन अपराधियों का आंदोलन से कोई कनेक्शन था। यहां इस खबर को ब्लैक एंड व्हाइट में भी देखना होगा। अब तक आपको यह तो बताया गया कि जंतर मंतर के आसपास हत्या, रेप, डकैती, लूट के कितने अपराधियों को देखा गया, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर यही फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे जो है वो संसद, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में लगा दी जाए, तो ये सवाल आएगा कि न जाने कितने माननीय ऐसे नजर आ जाएंगे जिन पर हत्या, हत्या की कोशिश, रेप, डकैती, लूट जैसे गंभीर आरोप है। 2024 में देश के 46% सांसद दागी थे। इनमें भी 31% सांसदों पर हत्या, रेप, लूट, अपहरण जैसे संगीन अपराध के मामले थे और आज भी हैं। राज्यसभा में 31% सांसदों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और अगर राज्य सरकारों की बात करें तो 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यहां हम इन नेताओं की प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं उठा रहे, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपराधिक मामलों की बात होती है तो हमको देखना होगा कि हमारे कितने नेता दागे। कई नेता तो अपराध करने के बाद राजनीति में आए और सांसद और विधायक भी बन गए। यहां यह भी समझना होगा कि भारत का जेंजी आंदोलन श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के जेंजी आंदोलन से बहुत अलग था। श्रीलंका के जेंजी वहां की संसद, राष्ट्रपति भवन में घुस गए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश के जेंजी आंदोलन में भी 1400 लोग मारे गए थे और शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। नेपाल के जेंजी आंदोलन में भी 76 लोग मारे गए, खूब खराबा हुआ खूब। लेकिन भारत का जेंजी आंदोलन अपने मुद्दे से भटका नहीं। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से संवाद किया, उनकी मांगों पर सहमति दी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, आंदोलन खत्म हुआ। इसके अलावा यह आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं था। जो लोग इसे सिर्फ जंतर मंतर का आंदोलन मानते हैं वो गलती कर रहे हैं। 17 जुलाई से 19 जुलाई के बीच पूरे देश में 27 विरोध प्रदर्शन हुए, यानी हर दिन औसतन 9 विरोध प्रदर्शन इस पेपर लीक के खिलाफ हुए। इसी तरह 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच 224 विरोध प्रदर्शन हुए, जिसका मतलब ये था कि हर दिन औसतन 81 प्रदर्शन। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18 जुलाई को पूरे देश में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर समेत कुल 11 जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। 19 जुलाई को भी इनकी संख्या 13 थी, लेकिन इसके बाद 20 जुलाई को 62, 21 जुलाई को 75, 22 जुलाई को पूरे भारत में 107 जगह विरोध प्रदर्शन हुए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पूरे भारत में कुल 412 विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इनमें से 328 शांतिपूर्ण थे, 63 जगह पुलिस या सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा, 21 विरोध प्रदर्शन कुछ हद तक हिंसक रहे। यानी आंदोलन बड़ा था लेकिन ज्यादातर जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। और कारण यही है कि ज्यादातर जेंजी युवा अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट थे, क्लियर। ये भी देखिए कि इस वक्त दक्षिण एशिया के देशों में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन भारत में है। 1 जनवरी से 24 जुलाई 2026 तक दक्षिण एशिया में कुल 27,253 विरोध प्रदर्शन और दूसरी घटनाएं दर्ज हुई। इनमें भारत में सबसे ज्यादा 15,762 पाकिस्तान में 6,818, बांग्लादेश में 1,875, नेपाल में 1,257 घटे। इस ग्राफिक से आप समझ सकते हैं कि भारत में कैसे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। लेकिन एक बड़ा बदलाव अगर आप देखिए इस आंदोलन से यह आया है कि अब अलग अलग राज्यों और शहरों में युवा और छात्र बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी की मांग कर रहे हैं। यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने देश के युवाओं और छात्रों का नजरिया बदला है। अब वो मौजूदा हालात में एडजस्ट करने वाली इस परंपरा के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। जैसे फतेहपुर सरकारी स्कूल में साफ पानी, बिजली, पंखे, शौचालय की मांग को लेकर जेन अल्फा बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसका असर यह हुआ कि शिक्षा विभाग को अपनी गलती जो है वो माननी पड़ी और तत्काल स्कूल में पंखे लगाने के आदेश जारी किए गए। बिहार के गया में भी जेनजी युवाओं की तरह जेन अल्फा बच्चों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए विरोध प्रदर्शन किया। यहां भी कुछ घंटों में जवाबदेही तय हुई, प्रशासन को हरकत में आना ही पड़ा। उत्तराखंड में जिस समण गांव के 38 लोग भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, उस गांव के स्कूल में भी 72 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर है और इस पर भी अब वहां के बच्चे शिक्षा विभाग सरकार की जवाबदेही मांग रहे हैं। तो उनकी आवाज में हम भी अपनी आवाज शामिल आज करना चाहते हैं कि अगर उत्तराखंड में इस खबर को जो भी लोग जो शिक्षा मंत्री हैं वो देख रहे हैं, तुरंत स्थिति को बदलिए और 72 बच्चों पर अगर एक टीचर है तो इसकी जवाबदेही आपकी है, आपको इस स्थिति को बदलना चाहिए। इसी के साथ एक और मामला IIT कानपुर का है। पिछले दिनों आधिकारिक वेबसाइट हैक हो गई थी और इस पर सिर्फ यही लिखा हुआ दिख रहा था कि मुझे बस एक फेयर चांस यानी एक ईमानदार मौका चाहिए। शुरुआत में वेबसाइट हैक होने पर IIT कानपुर में हलचल मच गई। पूरा संस्थान इस मामले में FIR दर्ज कराने की तैयारी कर रहा था लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। पता चला कि वेबसाइट हैक करने वाला कोई साइबर अपराधी नहीं बल्कि एक छात्र है और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो छात्र IIT कानपुर के BTech साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहता था लेकिन उसे एडमिशन नहीं मिल पाया था। इसके बाद उसने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए IIT कानपुर की वेबसाइट को हैक कर लिया और उसके स्क्रीनशॉट्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ऐसा करने के पीछे एक बड़ा मकसद यही था कि इस छात्र को IIT कानपुर के साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में दाखिला चाहिए था। वो अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर IIT कानपुर ने भी इस छात्र से बात की और अब ऐसी खबरें हैं कि इस छात्र को एक ईमानदार मौका देने के लिए IIT कानपुर इंटर्नशिप दे सकता है। यहां इस बात पर बहस हो सकती है कि इस छात्र का तरीका सही था या गलत था लेकिन ये बात कई लोग मान रहे हैं कि इस छात्र ने एक ईमानदार मौके के लिए ये जोखिम उठाया और इसीलिए उठाया क्योंकि वो पीछे नहीं छूटना चाहता था। जानते हैं हमारे युवाओं के अंदर ये डर, ये बेचैनी, ये निराशा क्यों आई है। अगर उसे समझना है तो इन आंकड़ों को एक बार देखिए। भारत में 22 से 29 साल की जो जेंजी युवा है उनकी औसत जो मासिक तनख्वाह है मंथली सैलरी वो 18 से 22,000 है जबकि हमारे देश में जेंजी युवाओं की सबसे बड़ी आबादी रहती है। वहीं चाइना में जेंजी युवाओं की मासिक तनख्वाह औसतन 1,26,000 रुपए जो भारत के जेंजी युवाओं से 6 गुना ज्यादा है। अमेरिका में जेंजी युवाओं की मासिक तनख्वाह 4,30,000 रुपए है। ब्रिटेन में 3,42,000 रुपए है। जर्मनी में 4,68,000 रुपए है। ये आंकड़े बताते हैं कि हम जिस संस्कृति से आते हैं उसके मुताबिक अभी युवाओं को अच्छी शिक्षा, संसाधन, नौकरियां और सैलरी नहीं मिल रही है। ये तब हो रहा है जब भारत के युवा इस देश के असली शक्तिपुंज है, जब हमारे देश के लोगों की औसत उम्र 29 साल है। मुझे लगता है उसमें कुछ गलती थी, औसतन उम्र देश की 29 साल नहीं है। खैर, लोकसभा सांसदों की औसत उम्र जो है वो देखिए 56 साल है, राज्यसभा सांसदों की औसत उम्र 63 साल है और देशभर के विधायकों की औसत उम्र जो है वो 54 साल है। और आंकड़े PRS और ADF जैसी संस्थाओं के ये आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार का शिक्षा बजट 1,39,000 करोड़ रुपए का है जिसमें पिछले साल के मुकाबले 8.27% की वृद्धि हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकारें एक साल में शिक्षा पर जितना पैसा खर्च करती हैं वो हमारी कुल GDP के सिर्फ 4.1% के बराबर है। जबकि 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि देश का शिक्षा खर्च जीडीपी के 6% के बराबर होना चाहिए, यानी हम शिक्षा की जो जरूरत है उसके मुताबिक खर्च नहीं कर रहे। ये बात सही है कि शिक्षा पर हमारा खर्च पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना के अनुपात में ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये खर्च सरकार के ही मुताबिक पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि आज शायद पेटेंट एप्लीकेशंस दायर करने के मामले में भारत बहुत ज्यादा पीछे है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स की पिछले साल की रिपोर्ट कहती है कि चाइना ने 18 लाख पेटेंट एप्लीकेशंस दायर की। 12.5 करोड़ की आबादी वाले जापान ने भी 3 लाख से ज्यादा पेटेंट्स के लिए आवेदन दिया, लेकिन भारत ने इसी दौरान 64,000 पेटेंट एप्लीकेशंस भेजे। और इसी स्थिति में पिछले कुछ सालों में सुधार हुआ, लेकिन ये स्थिति अब भी अच्छी नहीं है। बड़ी बात क्या है, शिक्षा व्यवस्था में कई खामियों के कारण आज प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही है। भारत के 289 बच्चों पर एक प्राइवेट स्कूल है, जबकि 118 बच्चों पर एक सरकारी स्कूल। यानी सरकारी स्कूल ज्यादा है, फिर भी बहुत सारे लोग अब अपने बच्चों को महंगी फीस देकर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं। और इनमें भी कई माता पिता की ये शिकायत होती है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर है। उदाहरण के लिए 1,843,00,000 स्कूल तो ऐसे हैं जहां एक से ज्यादा टीचर नहीं है। और यह बात सिर्फ स्कूल्स की नहीं है, भारत में जो बच्चे 12वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, ऐसे भी 2,222 बच्चों पर एक सरकारी कॉलेज है। और यही वजह है कि इन कॉलेजेस से डिग्री लेने के बाद भी बहुत सारे युवा आज बेरोजगार जा रहे हैं। जून 2026 में 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 16.2% रही, जिससे आप हमारे युवाओं की इस पीड़ा को समझ सकते हैं। इसी शिक्षा व्यवस्था के कारण साल 2024 तक भारत के 13 लाख से ज्यादा बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए गए, और इनमें भी सबसे ज्यादा बच्चों ने अपनी शिक्षा के लिए कनाडा देश को चुना। सोचिए, भारत कनाडा से बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा गुणवत्ता कनाडा से बहुत पीछे। ये भी सोचिए कि सारी बातें उस भारत की शिक्षा के बारे में है जहां कल ही गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया गया।
5: शौचालय के बारे में बोल रहे थे, शौचालय इतना गंदा था कि ना के बराबर ही था, कोई नहीं जाता था। बट अब थोड़ा समसेबुल वगैरह भी पहले से खराब था, जब आवाज उठाया तो समसेबुल भी बन गया और सब कुछ साफ सफाई भी हो गया।
6: यहाँ पानी नहीं आ रहा था, पंखा नहीं चल रहा था, और फिर बाथरूम वगैरह था साफ नहीं था, खाना में पानी कीड़ा वगैरह सब निकलता था।

हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या राजनीति की है। जो पार्टियां बीजेपी शासित राज्यों में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक के मुद्दे पर आक्रोश दिखाती हैं, वही पार्टियां अपने राज्यों की स्थिति पर खामोश रहती हैं।

और हमें लगता है कि यही खंडित और सिलेक्टिव राजनीति इस देश के लिए खतरा है। बड़ी बात यह है कि इस देश के जेंजी युवा आज इस राजनीति को समझ भी रहे। आज पेपर लीक के खिलाफ झारखंड में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ पंजाब में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। और यहां बात सिर्फ इस्तीफे की नहीं है, बात बदलाव की है, बात युवाओं को समझने की है। जैसे पंजाब में रूपनगर के एक सरकारी कॉलेज में हाल ही में एक धार्मिक कार्यक्रम हुआ, जिसके लिए 400 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक को कई जगह से खोदा गया, वहां एक मंच बनाया गया। ये वही मंच था जिस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दूसरे माननीय बैठे। लेकिन जानते हैं इसके बाद इस ग्राउंड की कोई मरम्मत नहीं हुई और अब ये जेंजी खिलाड़ी सरकार से पूछ रहे हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए,

0: यहाँ पर एक रिलीजियस फंक्शन जो है वो कराया गया पंजाब सरकार द्वारा, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट क्योंकि रिलीजियस फंक्शंस करा रही है एक शाम शिव के नाम अलग अलग शहरों में, तो रोपड़ में भी कल रात को जो है ये फंक्शन कराया गया जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शामिल हुए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तरह एक पूरे ग्राउंड को सेक्रीफाइस कर दिया गया। ये एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, पंजाब स्पोर्ट्स के लिए नोन है, यहाँ से खिलाड़ी जो हैं पंजाब के वो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं, मेडल लाते हैं, लेकिन उनकी स्पोर्ट्स ग्राउंड का क्या हल किया गया है एक रिलीजियस फंक्शन के लिए, आप देख सकते हैं।
1: ये कोई सरकार ने नहीं इसके ऊपर काम किया था, कार सेवा के थ्रू बाबा जी टिब्बी साहब बड़े हैं, उन्होंने अपने पैसों से, लोगों के पैसों से, संगत के पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर ट्रैक बनवाया था, वो सारा तहस नहस कर दिया। और बाहर आप बोर्ड देखोगे, कॉलेज का बोर्ड लगा हुआ है, ये सरकारी कॉलेज का ग्राउंड है, ये सरकारी कॉलेज है पीछे, वहां बोर्ड पे लगा हुआ है अंदर कोई भी धार्मिक प्रोग्राम नहीं हो सकता। आज आपने एक परमिशन दे दिया, आपने एक फ्लड गेट्स खोल दिया, आप किसी और धर्म के कोई और यही चाहे कोई भी धर्म का होगा वो आके कहेंगे हम भी प्रोग्राम करेंगे, तो आप उनको कैसे मना करोगे? अगर सरकार एक प्रोग्राम करा सकती है तो कोई भी प्रोग्राम करवा सकता है।
2: पंजाब के अलावा आज ही कर्नाटक से एक खबर आई कि वहां पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में जो गड़बड़ी और बेईमानी हुई उसे दबाने की कोशिश हो रही है। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार से पूछा है कि क्यों न वो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दे। जबकि पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस के इस्तीफे की मांग की। देखिए,
3: पंजाब सरकार मुर्दाबाद, भगवंत मान मुर्दाबाद। देखना है कि अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है कि नहीं, वहां का जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होता है कि नहीं।
4: पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो,
3: शर्म नहीं आती है केजरीवाल जी को? अरे अपने घर में झांक के देखो किस तरह से पंजाब में लगातार पेपर लीक है।
2: खैर, आज की एक और बड़ी खबर यह है कि अब से कोई वंदे मातरम का अपमान करेगा तो उसे अधिकतम 3 साल जेल की सजा हो सकती है। सरकार इसे लेकर जो बिल लाई थी वो राज्यसभा के बाद आज लोकसभा में भी पास हो गया है। इस बिल के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम को रोकता है या कार्यक्रम में बाधा पैदा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा काम करता है जिससे वंदे मातरम का अपमान हो तो वो इस कानून के तहत अपराध होगा। और तीसरा, ऐसे मामलों में अधिकतम 3 साल जेल की सजा हो सकती है, यानी अब वंदे मातरम का अपमान कोई सामान्य घटना नहीं होगी। जो लोग वंदे मातरम गाने का विरोध करेंगे या इसमें बाधा डालेंगे या इस पर हमला करेंगे तो उन्हें कानूनी रूप से दोषी माना जाएगा। अब ये कोशिश तो अच्छी, लेकिन यहां हम एक जरूरी बात को जोड़ना चाहते हैं। जिस कानून में सरकार ने बदलाव किया है उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर। ये वही कानून है जिसके तहत पहले राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान, राष्ट्रगान, जनगणमन के अपमान को अपराध माना गया था। लेकिन जानते हैं, इस कानून के तहत जितने भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए उनमें कभी भी आरोपियों को सजा हो ही नहीं पाई। साल 2014 से 2024 के बीच इस कानून के तहत पूरे देश में 699 मामले दर्ज हुए जिनमें 1102 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 11 सालों के अंदर हमारी अदालतें सिर्फ 7 दोषियों को ही सजा सुना पाई। बाकी मामलों में सबूतों के अभाव और कमजोर जांच के कारण आरोपी छूट गए या उन पर लगे आरोप साबित ही नहीं हुए। ऐसे सवाल ये उठता है कि जब पुराने कानून की प्रभावशीलता जो है एक तरह से वो कम थी तो वंदे मातरम के लिए जब इस कानून में बदलाव हुआ तो क्या इस तस्वीर को बदला जाएगा? हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी मानते हैं, जबकि ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्यों और पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है कि साल 1905 से पहले वंदे मातरम सभी लोग, सभी धर्म के लोग गाते थे। ये बात हमने आपसे पहले भी कही थी कि वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि भारत माता को भारत के लोगों की ओर से किया गया नमन है। और विवाद अगर इस पर होता है तो सोचना होगा भारत में देश और धर्म ये आपस में विरोधाभासी नहीं हो सकते।
5: This government is anti-national. It is dividing this country, bro. of this nation.
6: एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए, वंदे मातरम। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए।
7: प्रश्न यही है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ।
8: अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद में बहुत बड़ी गलती की, बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है।
2: खैर, आगे बढ़ते और आपको ये दिखाते हैं कि कैसे भारतीय सेना असम में आई बाढ़ से लोगों की जान बचा रही है। हाल ही में जब जंतर मंतर का आंदोलन हुआ, कुछ लोगों ने भारतीय सेना के लिए भी आपत्तिजनक और अपशब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हमारी सेना और उसके बहादुर और देश के प्रति समर्पित जवानों को देखना और समझना जरूरी है, तो आपको असम में आई ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। जब असम बाढ़ में डूबा हुआ है, तब सेना ही वहां सबसे बड़ी रक्षक बनी हुई है। अब तक भारतीय सेना 1000 लोगों को बाढ़ से रेस्क्यू कर चुकी है। 200 से ज्यादा लोगों का इलाज कराया गया है। 30,500 फूड पैकेट्स, 43,000 लीटर पानी, दूसरा खाने पीने का सामान सेना द्वारा बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया गया है। देखिए,

0: अब
1: आराम से छोड़ना मत हाथ पकड़ो चलो आराम से।
2: आज जब पूरा असम बाढ़ का शिकार है, इंसान से लेकर जानवर तक जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तब ये सोचना होगा कि आखिर असम देश में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों नहीं है। जिस तरह ये राज्य और ये इलाका दूर दराज के समझे जाते हैं, इनकी चर्चाएं भी दूर से हो रही हैं। ना ये संसद में चर्चा का विषय है, ना खबरों में बहुत जगह मिली है, और इसीलिए हमने आज सोचा कि आपको पूरे असम की तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की मुश्किलों का लोग सामना कर रहे हैं। असम में बाढ़ का ऐसा हाल तब है जब वहां मानसून का सीजन अच्छा नहीं रहा है, और इस मानसून में 14% कम बारिश हुई है, तब स्थिति देखिए भयावह हो रही है। असम कम बारिश में भी डूब रहा है, और इसके पीछे कारण यह है कि असम में बहने वाली कई नदियां अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पूर्वी हिमालय से निकलती हैं, और क्योंकि ये नदियां उफान पर है, इनका पानी रिहायशी इलाकों में आ चुका है, इसीलिए ये बाढ़ भयानक रूप ले चुकी है। अब हम ईरान वॉर की खबर बताते हैं, जो 5 दिन के विराम के बाद फिर से भड़क उठी है। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद से अमेरिका ने ईरान पर कहर बरपा दिया है। ईरान ने 28 जुलाई को जॉर्डन और फिर अगले दिन 29 जुलाई को मिस्र के दमयाता बंदरगाह पर हमला किया था। ईरान के निशाने पर जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे, और मिस्र के दमयाता पोर्ट पर खड़े 2 गैस टैंकर्स थे जो अमेरिकी कंपनी के थे। दमयाता पोर्ट पर जो हमला हुआ वो एक ड्रोन अटैक था, उसकी तस्वीरें आई हैं। इस हमले में दोनों गैस टैंकर्स जिनमें आग लग गई, और हालांकि हम अगर देखें तो इस हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि मिस्र के दमयाता पोर्ट पर जो हमला हुआ है वो सांकेतिक हमला था। ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिका ने जंग को और बढ़ाया तो दुनिया की एक और समुद्री मार्ग को वो रोक सकता है, और उस रास्ते होने वाली एनर्जी सप्लाई चेन को भी तोड़ सकता है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद से दुनिया के 20% कच्चे तेल का व्यापार प्रभावित हुआ है। हालांकि इसी के पास में एक और समुद्री मार्ग जो बाबल मंदेप है, जिसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं, जिसके चलते अगर आप देखिए तो ये रास्ता रहने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें तो अभी नहीं हो रही है, लेकिन ईरान ने मिस्र के जिस बंदरगाह पर हमला किया है वो बाबल मंदेप और स्यूज कैनाल समुद्री मार्ग से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये हमला करके ईरान ने दिखा दिया है कि वो बाबल मंदेप समुद्री मार्ग को भी रोकने में सक्षम है, और इसका मतलब समझते हैं आप, इधर हॉर्मूज का बंद होना, इधर बाबल मंदेप का बंद होना, यानी तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। इन दोनों हमलों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी चेतावनी दी। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका अब ईरान पर एक बड़ा हमला करेगा, क्योंकि अब अमेरिका की बारी है।
3: In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but you know, they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shots going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground, but they nevertheless took a shot. So it's our turn, and we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
2: अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जॉर्डन में ईरान के हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया और उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन हमलों ने अमेरिका को भड़का दिया, और कल रात अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में खुजेस्तान प्रांत के अरवंद, कनार, आबादान और अहवाज में अटैक किए। इसके अलावा उन्होंने इस्फहान प्रांत के शदगान पर भी बमबारी की। अमेरिकी सेना ने बुशहर पर भी अटैक किया, फिर इसके बाद एक साथ किश, केशम और अबू मूसा द्वीप पर अटैक किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने साफ कहा है कि ईरान द्वारा अमेरिकी सैन्य बेस पर किए गए नाकाम हमलों के जवाब में ही IRGC के 10 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। हमलों का टारगेट मिलिट्री कमांड सेंटर, मिसाइल्स और ड्रोन फैसिलिटी और सर्विलेंस सेंटर्स है। सेंट्रल कमांड ने ईरान को याद दिलाया कि मिडिल ईस्ट में अभी भी अमेरिकी सेना के 50,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त और कैसे भी परिस्थिति में सैन्य ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जो हमले किए वो अमेरिका और सऊदी अरब के इराक पर किए गए हमले का जवाब था। 28 जुलाई को अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर इराक के एक मिलिशिया ग्रुप पीएमएफ के ठिकानों पर हमला किया था। पीएमएफ इराक का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है जिसे ईरान ने आर्थिक मदद और हथियार मिलते हैं। सऊदी अरब का दावा था कि पिछले कुछ हफ्तों में इस मिलिशिया ग्रुप ने उनके ऊर्जा ठिकानों पर कई हमले किए और ये हमले ईरान के आदेश पर हुए। यही वजह थी कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर पीएमएफ पर हमला किया और इस हमले में 20 पीएमएफ आतंकी मारे गए। पीएमएफ पर हुए हमलों के जवाब में ही ईरान ने जॉर्डन पर 5 मिसाइलें दागी थी जो नाकाम हो गई और उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर भीषण बमबारी की। अब इस बमबारी के बाद ईरान ने धमकी दी है कि आज रात अमेरिका को इस हमले की सजा दी जाएगी। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बड़े हमलों की चेतावनी जारी की है और साथ ही साथ दुनिया भर के देशों को धमकाया है कि ईरान की इजाजत के बिना हॉर्मुज से कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा, यानी अगर किसी देश ने ऐसा किया तो ईरान उनके जहाजों पर हमला करेगा।

0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए. और सब नजरिए का फेर है, जो तराशता है उसे खूबी दिखाई देती है, जो तलाशता है उसे खामी दिख ही जाती है. नमस्कार.
1: संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया. अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगा.
2: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं. टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है. बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है. इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है. टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा. इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है. हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है. अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है. काम आगे भी चलता रहेगा. हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे. इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले. बहुत बहुत धन्यवाद.
1: राज्यसभा में भी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है. सवाल अभी है कि गृह मंत्री को संसद में घेरने में जुटा रहा विपक्ष क्या अब रणनीति बदल देगा? क्या अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि E20 और चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो जाए ताकि फायदा उत्तर प्रदेश में उठाया जा सके? और क्या गृह मंत्री को लेकर राहुल गांधी के सवाल के जवाब में बीजेपी ने जो कहा है उससे अखिलेश यादव को भी ढाल मिल गई है?
3: वंदे मातरम बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी पास हो गया, हंगामा जरूर हुआ.
4: जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें. मेरे विचार में
3: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पेपर लीक रोकने वाला बिल पास हो रहा है.
5: सर, देयर इज अ नेशनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू रेज ऑन मैलिनेशन.
3: तो यानी बिल पास हो रहे हैं, सदन चल रहा है. सवाल सीधा सा है, क्या राहुल गांधी की रणनीति सरकार ने फेल कर दी या फिर विपक्ष के बीच मुद्दों पर अब आगे बढ़ने की राजनीति हो रही है? सीधी सी बात पहली यही कि जो राहुल गांधी बुधवार तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बताते रहे कि गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग पर कोई कंफ्यूजन नहीं है.
6: कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है.
7: हाँ.
6: क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल जाए?
7: हुआ है, अमित शाह मस्ट गो. देयर इज नो एम्बिग्युइटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन.
3: लेकिन संसद में अमित शाह को लेकर जो रणनीति राहुल गांधी चाहते हैं उससे अलग स्टैंड लिया जा रहा है. क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस सदन ठप नहीं करती, पेपर लीक बिल पर बहस में हिस्सा लेती है, अमित शाह का इस्तीफा खड़गे मानते हैं और तभी ऐसा बयान देते हैं जिस पर हंगामा होता है।
8: बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके बोलों में क्या है।
3: लेकिन इन सब के बीच अखिलेश की रणनीति क्या है? सवाल की वजह ये पोस्ट है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर डाला कि साइकिल की रफ्तार जोरदार है क्योंकि साइकिल E20 से

0: संसद में अब E20 के मुद्दे पर बढ़ना चाहते हैं। E20 के अलावा समाजवादी पार्टी संसद में अब और सत्ता और विपक्ष के बीच बहुत खींचतान की जगह उन मुद्दों पर चर्चा चाहती दिखती है जिसका वो फायदा यूपी की राजनीति में उठा सके। जैसे E20 के अलावा वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विषय पर चर्चा चाहते हैं।
1: राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा आज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ संसद के अंदर नजर आ रहा है। इस वक्त जो है मकर द्वार के सामने एक दान पात्र रख दिया गया है और इस दान पात्र के अंदर विपक्ष के सभी सांसद दान डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए कैसे जो सांसद है उनके हाथ में जो दान पात्र है उसमें कुछ अलग अलग सांसद, ये दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद है जिन्होंने हाथ में दान पात्र लिया हुआ है और स्वागत हो रहा है। जो TMC के सांसद है वो उसमें दान डालते हुए नजर आ रहे और जैसे ही ये दान डाला जाता है वैसे ही संसद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो इस दान पात्र को छीनने लगते हैं, यानी कि एक प्रतीकात्मक विरोध है जिसमें जैसे ही दान डलेगा वैसे ही उस डब्बे को लेकर जो है जो वो लोग यहां से चले जाएंगे और ये आरोप BJP पर लगाया जा रहा है कि आप दान लेते हैं और उसी चंदे को जो है लेकर भाग जाते हैं।
2: ये लोग चंदा चोरी की भी नहीं बात करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि बहस हो क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया है चाहे वो हमारे देश के हो चाहे NRIs हो, कितना चंदा आया, हजारों करोड़ों का चंदा आया है। आज ये लोग चंदा चोरी पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये केवल ध्यान भटकाने वाली राजनीति पे बात करना चाहते हैं।
3: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पे कार्य कर रही है, विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं, ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं, ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कारसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी।
0: दिलचस्प राजनीति है कि जब सदन में गृहमंत्री पर सवाल प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से फायरिंग को लेकर विपक्ष उठाता है तो सत्ता पक्ष इस पर बचाव में कहता है कि आदेश मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट या अधिकारी देते हैं।
4: वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है, हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है।
0: इसी बयान को आधार बनाकर अब अखिलेश यादव अयोध्या में चली गोलियों के कटघरे में BJP की तरफ से समाजवादी पार्टी को खड़ा किए जाते रहने का बचाव करते हैं। सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जब अपने पर आरोप की उंगली उठी तब ये बात समझ में आई।
2: E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सोशल मीडिया पर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ी के इंजन में बदलाव से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार ने माना है कि E20 का असर BS3 गाड़ियों पर हो सकता है, उसके रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं।
5: आज जो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है?
0: इथेनॉल पर जनता के जुड़े सवाल से आज तक ने कुछ दिन पहले सरकार को खबरदार करके पूछा था कि क्या इथेनॉल वाला पेट्रोल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है,
5: आपको लग रहा है सेफ है इथेनॉल?
0: इस पर सरकार ने दावा किया कि उसने पूरी तैयारी के साथ ये काम किया।
6: कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया और मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता।
0: सरकार ने एक बार फिर E20 यानी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का बचाव किया।
6: मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिस भी की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने DM तैयार की है इसके बारे में हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया है कि BS3 मानक वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से

0: कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं जिन्हें सर्विसिंग के दौरान बदला जा सकता है। इनसे किसी बड़ी मैकेनिकल समस्या का संकेत नहीं मिलता, मतलब इसके इस्तेमाल से इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं होगी। इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दो पहिया चार पहिया गाड़ियों पर E20 ईंधन की स्टडी की थी। जून 2021 की स्टडी में पाया गया कि पुरानी गाड़ियों की परफॉर्मेंस में कोई खास अंतर नहीं दिखा है और न ही E20 पेट्रोल के चलने पर उसमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई।
1: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
2: पहली बात, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ।
1: हाँ।
2: क्या आपके नजरों में आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है? अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई?
3: अभी तक तो नहीं।
2: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती हैं मुझे?
0: साल 2005 से 2016 के बीच बनी गाड़ियां BS3 मानक वाली गाड़ियां हैं। माइलेज को लेकर मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसकी वजह सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि ये ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और गाड़ी के रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार ने बताया कि E20 का इस्तेमाल दुनिया में एक सदी से ज्यादा समय से हो रहा है, जिसमें सभी बड़े देश शामिल हैं।
2: अमेरिका में इथेनॉल है,
1: हाँ।
2: ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है,
1: हाँ।
2: स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है।
0: सरकार की दलील है कि E20 को लागू करने की तैयारी बारीकी से की गई है। पेट्रोल पंप तक पहुंचने से पहले कई राउंड की टेस्टिंग में इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम, रबर के पार्ट्स, एमिशन और फ्यूल एफिशिएंसी जैसी सभी चीजों की जांच की गई। अगर निर्माताओं को E20 की सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता तो वो इसकी वारंटी नहीं देते।
2: ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है। उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा महिंद्र किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया।
0: BS3 मानक की गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिनके माइलेज और इंजन की हालत रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार का कहना है कि अगर ऐसी गाड़ियों के रबर पार्ट्स खराब भी होते हैं तो उन्हें आसानी से रूटीन सर्विसिंग में बदला जा सकता है।
4: 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने ही बताया कि 2800 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी भीड़ में शामिल थे। दिल्ली पुलिस का यह दावा अब और उसी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि आज तक को 20 तारीख की जो 5 CCTV फुटेज मिले हैं उसमें प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक जा पहुंचे हैं। बड़ी मुश्किल से वहां से उन्हें हटाया जा सका। हर CCTV में दिल्ली पुलिस की लापरवाही साफ नजर आई।
5: ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रोटेस्टर यहां खड़े हैं पुलिस के बीच।
0: बीस जुलाई को क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारी संसद में कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे? अगर प्रदर्शनकारी संसद के अंदर आ जाते तो क्या होता? संसद तक कुछ प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंचे? दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चक्र में प्रदर्शनकारी सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए? आज तक के पास आई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने दिल्ली पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जब प्रदर्शनकारियों के इरादों का पता था, जब दिल्ली पुलिस अच्छे से जानती थी कि प्रदर्शनकारी संसद पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब भी वो खबरदार क्यों नहीं हुई? आखिर प्रदर्शनकारी संसद के गेट के करीब तक कैसे पहुंच गए? 20 तारीख को दोपहर 2 बजे तक प्रदर्शनकारी संसद के गेट तक करीब करीब पहुंच ही गए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं संसद के अंदर गाड़ियां चलती दिख रही हैं, लोगों की आवाजाही साफ नजर आ रही है। संसद भवन की दीवार के पास भीड़ खड़ी हुई देखी जा सकती है। पुलिस भी वहां मौजूद है, जिससे भीड़ की झड़प होती है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। अगर वो ऐसा नहीं करती या फिर इससे 2-3 गुनी भीड़ अगर यहां होती तो फिर पुलिस को इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो सकता था।
5: पार्लियामेंट के गेट से बेहद करीब तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये देखे, ये अगर आप देखेंगे ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है, ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहे थे, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है, प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की गई, मजबूत बैरिकेड्स वो क्यों नहीं लगाए गए, और साथ ही साथ जब इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी थी तो इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नई दिल्ली और आसपास में कैसे इकट्ठा हो गई।
0: दिल्ली पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी, प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन करने कैसे दिया गया, अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। अब ये सीसीटीवी वीडियो देखिए, संसद के पास लाल रंग की दिख रही इमारत सेल्फी पॉइंट है, जिसकी तरफ अचानक प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते दिखे थे। यहाँ खड़े पुलिस वाले जैसे ही भीड़ को देखते हैं वो बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद करते नजर आते हैं। रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों का पहुंचना चिंताजनक है, क्योंकि यहां से संसद बहुत नजदीक है, रोजमर्रा की तरह 20 जुलाई को तब यहां ट्रैफिक चलता दिखता है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखकर आम लोग भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने वाला यहां कोई नहीं था। अगर भीड़ शांतिपूर्ण की जगह उग्र होती तो बड़े आराम से आम लोगों की गाड़ियों को निशाना बना सकती थी, क्योंकि यहां पर पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था, जो थे वो एक कोने में खड़े थे। रेल भवन के बाहर की एक और सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जिसमें पुलिस और आरएएफ के जवान देखे जा सकते हैं, जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रेल भवन से दूर करने के लिए धक्के मारते हैं। अगर भीड़ यहां भड़क जाती तो हालात बेकाबू हो सकते थे, हालांकि पुलिस ने यहां तैयारी कर रखी थी। अब सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जो संसद भवन के बेहद नजदीक बने मेट्रो स्टेशन में से एक है। यहां भी 20 तारीख को दोपहर 12:34 पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक इस मेट्रो स्टेशन की तरफ भीड़ भागती हुई आई। पुलिस को हंगामे की आशंका थी, इसलिए यहां पहले से बैरिकेडिंग की गई थी। पीसीआर वैन भी खड़ी देखी जा सकती है।
5: 5 सीसीटीवी संसद भवन के आसपास हमने हमारे पास आया है, जिससे ये पता चलता है कि संसद भवन की दीवार के बेहद करीब जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस पर इन 5 तस्वीरों को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी मजबूत तैयारी क्यों नहीं की थी, भीड़ संसद भवन के आसपास पहुंचने तक कैसे कामयाब हो गई थी, और 20 जुलाई को ऐसी भी तस्वीरें आई थी जब संसद भवन के अंदर सुरक्षा जो कर्मी थे वो अलर्ट मोड में आ गए थे, तो वो अलर्ट मोड में क्यों आए थे 20 जुलाई को जब वो तस्वीर आई थी, वो इसलिए आए थे क्योंकि ये सीसीटीवी जिसमें अगर आप देखें संसद भवन की दीवार, प्रोटेस्टर झड़प होते हुए आपको दिखाई दे रहा, संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है।
0: 20 तारीख को प्रदर्शन की ये 5 सीसीटीवी तस्वीरें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाती हैं, बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद के दरवाजे तक पहुंच गई। अगर ज्यादा लोग होते तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने में काफी दिक्कत आती, लेकिन किसी तरह प्रदर्शनकारी पीछे धकेल दिए गए और संसद में घुसने से बच गए। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
4: दिल्ली पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। इन अपराधियों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और तकनीकी तरीकों से की गई है। अब चर्चाएं इस बात की हो रही है कि जंतर मंतर की ही तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद में भी बाहर यही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता तो क्या पता चलता।
0: दिल्ली पुलिस दावा करती है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। हत्या के आरोप से जुड़े 101 आरोपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान देखे गए, ये दावा दिल्ली पुलिस का है। हत्या के प्रयास के आरोप वाले 62 लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी भीड़ में दिल्ली पुलिस को दिखे। 284 डकैती और लूट के आरोपी, रेप केस के 61, पॉक्सो के 6 आरोपी दिल्ली पुलिस कहती है कि जंतर मंतर पर दिख रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आर्म्स एक्ट के 229 आरोपी, स्नैचिंग के 135, किडनैपिंग के 19 आरोपी, ऐसे अलग अलग कुल 2873 चेहरों को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से दिल्ली पुलिस ने पहचानने का दावा किया, जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रिकॉर्ड वाला है और वो जंतर मंतर पर पुलिस कहती है प्रदर्शन के दौरान दिखे भी। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का सीधा दावा नहीं करती कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ये 2873 लोग 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर पर किसी तरह की हिंसा या उपद्रव में शामिल थे। पुलिस कहती है कि वो इसकी जांच कर रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो तकनीक है जिसमें पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड वालों के डेटाबेस से मिलान करके अपराध के आरोपियों को भीड़ में देखती है, पहचानती है। लेकिन सवाल है कि जंतर मंतर पर क्या इस तकनीक का इस्तेमाल करके मिले डेटा से ये नैरेटिव देने की कोशिश है कि जंतर मंतर पर पहुंचने वालों या फिर 20 जुलाई के प्रदर्शन में अपराध के आरोपी भी बहुत थे। और तब एक सवाल आता है, सवाल देश की संसद से जुड़ा है, जहां संसद में लोग पूछते हैं कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बाहर लगा होता तो फिर सांसद कैसे दिखते। एडीआर का डेटा कहता है कि लोकसभा के 251 यानी करीब 46% सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर के डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि संसद के बाहर अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया जाए तो 170 सांसद यानी करीब 31% ऐसे मिलेंगे जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत दूसरे गंभीर आपराधिक केस हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अगर संसद में होने लगे तो एडीआर के डेटा के मुताबिक पता चलेगा कि 16 सांसदों पर तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का केस चल रहा है, जिनमें से 2 सांसद के खिलाफ रेप तक के मामले दर्ज हैं, 4 सांसद के खिलाफ किडनैपिंग का मामला है, तो लोकसभा के 43 सांसद के खिलाफ हेट स्पीच का केस है। राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहा है। राज्यसभा के 73 में से 36 यानी 16% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, 1 सांसद पर मर्डर का केस है, 4 सांसद पर हत्या की कोशिश और 3 पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस हैं। ये तस्वीर तब दिख सकती है जब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम देश की संसद के बाहर भी लग जाए।
4: सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस पवित्र महीने के साथ ही शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा। भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर निकल रहे हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी ने कुछ कांवड़ियों पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया है।
3: भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकल चुके हैं, तन पर भगवा, कांधे पर कांवड़ और महादेव का उद्घोष। लेकिन इस यात्रा के साथ ही शुरू हो गई है सियासत और इस सियासत की शुरुआत की है ओवैसी के दल ने। AIMIM के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांवड़ ले जा रहे भोले के भक्तों में कुछ नशेड़ी होते हैं, उनसे सरकार कैसे निपटेगी।
6: क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए, जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं?
3: आरोप सिर्फ इतने नहीं, यूपी सरकार ने तय किया है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा निकलेगी उन रास्तों पर मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की दुकानें ढकी जाएंगी। जैसे यहाँ हापुड़ में शराब की दुकान पर पर्दा डाल दिया गया है। AIMIM यहाँ भी आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी करके दुकानें बंद कराई जा रही हैं।
6: कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं उनको किसने अधिकार दिया, वो कौन होते हैं। दूसरा कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई, आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं।
3: AIMIM ने कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए तो कांग्रेस AIMIM पर टूट पड़ी।
7: अरे बेवकूफी की बातें ना करें फालतू की, AIMIM जब बीजेपी की दलाली कर रहे हो, क्या वही जबान बोल रहे हो जो दूसरे लोग बोलते हैं?
3: बीजेपी भी अब हमलावर है और बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों का इलाज किया जाएगा।
8: लोग पगला गए हैं और ऐसा करके अपनी कब्र खोदने का प्रयास कर।
9: लेकिन इस तरह की बातें पहले भी कांवड़ यात्रियों पर जो है हमने देखा, टीका टिप्पणी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से होती रही है।
8: ऐसे राष्ट्र विरोधी, भारतीय संसद विरोधी लोग
9: जी
8: पहले से सक्रिय है, इलाज किया जाएगा।
3: यूपी और उत्तराखंड की सरकार ने तय किया है कि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कांवड़ यात्रा पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
4: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: से भी पास हुआ लोक परीक्षा संशोधन बिल। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, बख्शे नहीं जाएंगे शिक्षा माफिया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की घेरेबंदी, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस, परीक्षा बिल के दौरान असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी पुलिस की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन। असम में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 78 की मौत, सरकार का अहम ऐलान, 4 जिलों में ईएमआई पर 6 महीने की राहत। और सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा नेपाल, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 की मौत, दर्जनों घायल, करीब 6 शहरों में कर्फ्यू। संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगा।
1: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है, बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा, हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राज्यसभा में भी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। सवाल अभी है कि गृह मंत्री को संसद में घेरने में जुटा रहा विपक्ष क्या अब रणनीति बदल देगा? क्या अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि E20 और चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो जाए ताकि फायदा उत्तर प्रदेश में उठाया जा सके? और क्या गृह मंत्री को लेकर राहुल गांधी के सवाल के जवाब में बीजेपी ने जो कहा है उससे अखिलेश यादव को भी ढाल मिल गई है?
2: वंदे मातरम बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी पास हो गया, हंगामा जरूर हुआ।
3: जो सदस्य इसके पक्ष में वो हां कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में
2: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पेपर लीक रोकने वाला बिल पास हो रहा है।
4: सर, देयर इज अ नेशनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू रेज ऑन
2: लाइव। तो यानी बिल पास हो रहे हैं, सदन चल रहा है। सवाल सीधा सा है, क्या राहुल गांधी की रणनीति सरकार ने फेल कर दी या फिर विपक्ष के बीच मुद्दों पर अब आगे बढ़ने की राजनीति हो रही है? सीधी सी बात पहली यही कि जो राहुल गांधी बुधवार तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बताते रहे कि गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग पर कोई कंफ्यूजन नहीं है।
5: कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है।
2: हाँ।
5: क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल
6: लिखा हुआ है अमित शाह मस्ट गो, देयर इज नो एम्बिग्युइटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन।
7: लेकिन संसद में अमित शाह को लेकर जो रणनीति राहुल गांधी चाहते हैं उससे अलग स्टैंड लिया जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस सदन ठप नहीं करती, पेपर लीक बिल पर बहस में हिस्सा लेती है, अमित शाह का इस्तीफा खड़गे मानते हैं और तभी ऐसा बयान देते हैं जिस पर हंगामा होता है।
8: बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिल में क्या है।
7: लेकिन इन सब के बीच अखिलेश की रणनीति क्या है? सवाल की वजह ये पोस्ट है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर डाला कि साइकिल की रफ्तार जोरदार है क्योंकि साइकिल E20 से आजाद है। ये पोस्ट क्या इस बात की तरफ इशारा करती है कि अखिलेश संसद में अब E20 के मुद्दे पर बढ़ना चाहते हैं? E20 के अलावा समाजवादी पार्टी संसद में अब और सत्ता और विपक्ष के बीच बहुत खींचतान की जगह उन मुद्दों पर चर्चा चाहती दिखती है जिसका वो फायदा यूपी की राजनीति में उठा सके, जैसे E20 के अलावा वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विषय पर चर्चा चाहते हैं।
9: राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा आज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ संसद के अंदर नजर आ रहा है। इस वक्त जो है मकर द्वार के सामने एक दान पात्र रख दिया गया है और इस दान पात्र के अंदर विपक्ष के सभी सांसद दान डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए कैसे जो सांसद है उनके हाथ में जो दान पात्र है उसमें कुछ अलग अलग सांसद, ये दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद है जिन्होंने हाथ में दान पात्र लिया हुआ है और स्वागत हो रहा है, जो TMC के सांसद है वो उसमें दान डालते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही ये दान डाला जाता है वैसे ही संसद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो इस दान पात्र को छीनने लगते हैं, यानी कि एक प्रतीकात्मक विरोध है जिसमें जैसे ही दान डलेगा वैसे ही उस डब्बे को लेकर जो है जो वो लोग यहां से चले जाएंगे। और ये आरोप BJP पर लगाया जा रहा है कि आप दान लेते हैं और उसी चंदे को जो है लेकर भाग जाते हैं।
10: ये लोग चंदा चोरी की भी नहीं बात करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि बहस हो क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया है चाहे वो हमारे देश के हो चाहे NRIs हो, कितना चंदा आया, हजारों करोड़ों का चंदा आया है। आज ये लोग चंदा चोरी पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये केवल ध्यान भटकाने वाली राजनीति पे बात करना चाहते हैं।
11: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पे कार्य कर रही है, विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं, ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं, ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कारसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी।
7: दिलचस्प राजनीति है कि जब सदन में गृहमंत्री पर सवाल प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से फायरिंग को लेकर विपक्ष उठाता है तो सत्ता पक्ष इस पर बचाव में कहता है कि आदेश मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट या अधिकारी देते हैं।
12: वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है, हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है।
7: इसी बयान को आधार बनाकर अब अखिलेश यादव अयोध्या में चली गोलियों के कटघरे में BJP की तरफ से समाजवादी पार्टी को खड़ा किए जाते रहने का बचाव करते हैं। सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जब अपने पर आरोप की उंगली उठी तब ये बात समझ में आई।
0: E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ी के इंजन में बदलाव से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार ने माना है कि E20 का असर BS3 गाड़ियों पर हो सकता है, उसके रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं।
13: आज जो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है? गाड़ियां खराब हो रही हैं।
14: इथेनॉल पर जनता के जुड़े सवाल से आज तक ने कुछ दिन पहले सरकार को खबरदार करके पूछा था कि क्या इथेनॉल वाला पेट्रोल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है।
13: आपको लग रहा है सेफ है इथेनॉल?
14: इस पर सरकार ने दावा किया कि उसने पूरी तैयारी के साथ ये काम किया।
15: कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया और मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता।
14: सरकार ने एक बार फिर E20 यानी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का बचाव किया।
15: मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है, और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिसमें की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे, और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
14: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया है कि BS3 मानक वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, जिन्हें सर्विसिंग के दौरान बदला जा सकता है। इनसे किसी बड़ी मैकेनिकल समस्या का संकेत नहीं मिलता, मतलब इसके इस्तेमाल से इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं होगी। इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दो पहिया चार पहिया गाड़ियों पर E20 ईंधन की स्टडी की थी। जून 2021 की स्टडी में पाया गया कि पुरानी गाड़ियों की परफॉर्मेंस में कोई खास अंतर नहीं दिखा है और न ही E20 पेट्रोल के चलने पर उसमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई।
13: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
15: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
13: हाँ।
15: क्या आपके नजरों में आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है? अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई?
13: अभी तक तो नहीं।
15: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती हैं मुझे?
14: साल 2005 से 2016 के बीच बनी गाड़ियां BS3 मानक वाली गाड़ियां हैं। माइलेज को लेकर मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसकी वजह सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि ये ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और गाड़ी के रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार ने बताया कि E20 का इस्तेमाल दुनिया में एक सदी से ज्यादा समय से हो रहा है, जिसमें सभी बड़े देश शामिल हैं।
15: अमेरिका में इथेनॉल है,
13: हाँ।
15: ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है,
13: हाँ।
15: स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है।
14: सरकार की दलील है कि E20 को लागू करने की तैयारी बारीकी से की गई है। पेट्रोल पंप तक पहुंचने से पहले कई राउंड की टेस्टिंग में इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम, रबर के पार्ट्स, एमिशन और फ्यूल एफिशिएंसी जैसी सभी चीजों की जांच की गई। अगर निर्माताओं को E20 की सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता तो वो इसकी वारंटी नहीं देते।
15: ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया।
14: BS3 मानक की गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिनके माइलेज और इंजन की हालत रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार का कहना है कि अगर ऐसी गाड़ियों के रबर पार्ट्स खराब भी होते हैं तो उन्हें आसानी से रूटीन सर्विसिंग में बदला जा सकता है।
0: 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने ही बताया कि 2800 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी भीड़ में शामिल थे। दिल्ली पुलिस का यह दावा अब और उसी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि आज तक को 20 तारीख की जो 5 CCTV फुटेज मिले हैं उसमें प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक जा पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से वहां से उन्हें हटाया जा सका। हर CCTV में दिल्ली पुलिस की लापरवाही साफ नजर आई।
16: ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रोटेस्टर यहां खड़े हैं पुलिस के बीच।
14: बीस जुलाई को क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारी संसद में कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे? अगर प्रदर्शनकारी संसद के अंदर आ जाते तो क्या होता?
7: संसद तक कुछ प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंचे। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चक्र में प्रदर्शनकारी सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए। आज तक के पास आई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने दिल्ली पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जब प्रदर्शनकारियों के इरादों का पता था, जब दिल्ली पुलिस अच्छे से जानती थी कि प्रदर्शनकारी संसद पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब भी वो खबरदार क्यों नहीं हुई। आखिर प्रदर्शनकारी संसद के गेट के करीब तक कैसे पहुंच गए। 20 तारीख को दोपहर 2 बजे तक प्रदर्शनकारी संसद के गेट तक करीब करीब पहुंच ही गए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं संसद के अंदर गाड़ियां चलती दिख रही हैं, लोगों की आवाजाही साफ नजर आ रही है। संसद भवन की दीवार के पास भीड़ खड़ी हुई देखी जा सकती है। पुलिस भी वहां मौजूद है, जिससे भीड़ की झड़प होती है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। अगर वो ऐसा नहीं करती या फिर इससे 2 गुनी 3 गुनी भीड़ अगर यहां होती तो फिर पुलिस को इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो सकता था।
16: पार्लियामेंट के गेट से बेहद करीब तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है। ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहे थे, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है, प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की गई, मजबूत बैरिकेड्स वो क्यों नहीं लगाए गए, और साथ ही साथ जब इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी थी तो इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नई दिल्ली और आसपास में कैसे इकट्ठा हो गई। दिल्ली पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी, प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन करने कैसे दिया गया। अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। अब ये सीसीटीवी वीडियो देखिए, संसद के पास लाल रंग की दिख रही इमारत सेल्फी पॉइंट है, जिसकी तरफ अचानक प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते दिखे थे। यहाँ खड़े पुलिस वाले जैसे ही भीड़ को देखते हैं वो बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद करते नजर आते हैं। रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों का पहुंचना चिंताजनक है, क्योंकि यहां से संसद बहुत नजदीक है। रोजमर्रा की तरह 20 जुलाई को तब यहां ट्रैफिक चलता दिखता है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखकर आम लोग भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने वाला यहां कोई नहीं था। अगर भीड़ शांतिपूर्ण की जगह उग्र होती तो बड़े आराम से आम लोगों की गाड़ियों को निशाना बना सकती थी, क्योंकि यहां पर पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था, जो थे वो एक कोने में खड़े थे। रेल भवन के बाहर की एक और सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जिसमें पुलिस और आरएएफ के जवान देखे जा सकते हैं, जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रेल भवन से दूर करने के लिए धक्के मारते हैं। अगर भीड़ यहां भड़क जाती तो हालात बेकाबू हो सकते थे। हालांकि पुलिस ने यहां तैयारी कर रखी थी। अब सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जो संसद भवन के बेहद नजदीक बने मेट्रो स्टेशन में से एक है। यहां भी 20 तारीख को दोपहर 12:34 पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक इस मेट्रो स्टेशन की तरफ भीड़ भागती हुई आई। पुलिस को हंगामे की आशंका थी, इसलिए यहां पहले से बैरिकेडिंग की गई थी। पीसीआर वैन भी खड़ी देखी जा सकती है। 5 सीसीटीवी संसद भवन के आसपास हमने हमारे पास आया है, जिससे ये पता चलता है कि संसद भवन की दीवार के बेहद करीब जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस पर इन 5 तस्वीरों को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी मजबूत तैयारी क्यों नहीं की थी, भीड़ संसद भवन के आसपास पहुंचने तक कैसे कामयाब हो गई थी। और 20 जुलाई को ऐसी भी तस्वीरें आई थी जब संसद भवन के अंदर सुरक्षा जो कर्मी थे वो अलर्ट मोड में आ गए थे। तो वो अलर्ट मोड में क्यों आए थे 20 जुलाई को जब वो तस्वीर आई थी, वो इसलिए आए थे क्योंकि ये सीसीटीवी जिसमें अगर आप देखें संसद भवन की दीवार, प्रोटेस्टर झड़प होते हुए आपको दिखाई दे रहा, संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है।
7: 20 तारीख को प्रदर्शन की ये 5 सीसीटीवी तस्वीरें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाती हैं, बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद के दरवाजे तक पहुंच गई। अगर ज्यादा लोग होते तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने में काफी दिक्कत आती, लेकिन किसी तरह प्रदर्शनकारी पीछे धकेल दिए गए और संसद में घुसने से बच गए। अरविंद ओझा,
14: दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। इन अपराधियों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और तकनीकी तरीकों से की गई है। अब चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि जंतर मंतर की ही तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद में भी बाहर यही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता तो क्या पता चलता।
14: दिल्ली पुलिस दावा करती है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। हत्या के आरोप से जुड़े 101 आरोपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान देखे गए, ये दावा दिल्ली पुलिस का है। हत्या के प्रयास के आरोप वाले 62 लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी भीड़ में दिल्ली पुलिस को दिखे। 284 डकैती और लूट के आरोपी, रेप केस के 61, पॉक्सो के 6 आरोपी दिल्ली पुलिस कहती है कि जंतर मंतर पर दिख रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आर्म्स एक्ट के 229 आरोपी, स्नैचिंग के 135, किडनैपिंग के 19 आरोपी, ऐसे अलग अलग कुल 2873 चेहरों को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से दिल्ली पुलिस ने पहचानने का दावा किया जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रिकॉर्ड वाला है और वो जंतर मंतर पर पुलिस कहती है प्रदर्शन के दौरान दिखे भी। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का सीधा दावा नहीं करती कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ये 2873 लोग 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर पर किसी तरह की हिंसा या उपद्रव में शामिल थे। पुलिस कहती है कि वो इसकी जांच कर रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो तकनीक है जिसमें पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड वालों के डेटाबेस से मिलान करके अपराध के आरोपियों को भीड़ में देखती है, पहचानती है। लेकिन सवाल है कि जंतर मंतर पर क्या इस तकनीक का इस्तेमाल करके मिले डेटा से ये नैरेटिव देने की कोशिश है कि जंतर मंतर पर पहुंचने वालों या फिर 20 जुलाई के प्रदर्शन में अपराध के आरोपी भी बहुत थे। और तब एक सवाल आता है, सवाल देश की संसद से जुड़ा है जहां संसद में लोग पूछते हैं कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बाहर लगा होता तो फिर सांसद कैसे दिखते। एडीआर का डेटा कहता है कि लोकसभा के 251 यानी करीब 46% सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर के डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि संसद के बाहर अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया जाए तो 170 सांसद यानी करीब 31% ऐसे मिलेंगे जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत दूसरे गंभीर आपराधिक केस हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अगर संसद में होने लगे तो एडीआर के डेटा के मुताबिक पता चलेगा कि 16 सांसदों पर तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का केस चल रहा है जिनमें से 2 सांसद के खिलाफ रेप तक के मामले दर्ज हैं, 4 सांसद के खिलाफ किडनैपिंग का मामला है तो लोकसभा के 43 सांसद के खिलाफ हेट स्पीच का केस है। राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहा है। राज्यसभा के 73 में से 36 यानी 16% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। 1 सांसद पर मर्डर का केस है, 4 सांसद पर हत्या की कोशिश और 3 पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस हैं। ये तस्वीर तब दिख सकती है जब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम देश की संसद के बाहर भी लग जाए।
0: सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस पवित्र महीने के साथ ही शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा। भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर निकल रहे हैं लेकिन कांवड़ यात्रा के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी ने कुछ कांवड़ियों पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया है।
17: भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकल चुके हैं, तन पर भगवा, कांधे पर कांवड़ और महादेव का उद्घोष। लेकिन इस यात्रा के साथ ही शुरू हो गई है सियासत और इस सियासत की शुरुआत की है ओवैसी के दल ने। AIMIM के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांवड़ ले जा रहे भोले के भक्तों में कुछ नशेड़ी होते हैं, उनसे सरकार कैसे निपटेगी।
18: क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं उनको रोकने के लिए, जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं?
17: आरोप सिर्फ इतने नहीं, यूपी सरकार ने तय किया है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा निकलेगी उन रास्तों पर मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की दुकानें ढकी जाएंगी, जैसे यहाँ हापुड़ में शराब की दुकान पर पर्दा डाल दिया गया है। AIMIM यहाँ भी आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी करके दुकानें बंद कराई जा रही हैं।
18: कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं उनको किसने अधिकार दिया, वो कौन होते हैं। दूसरा कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं।
17: AIMIM ने कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए तो कांग्रेस AIMIM पर टूट पड़ी।
19: अरे बेवकूफी की बातें ना करें फालतू की। AIMIM जब बीजेपी की दलाली कर रहे हो क्या, वही जबान बोल रहे हो जो दूसरे लोग बोलते हैं?
17: बीजेपी भी अब हमलावर है और बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों का इलाज किया जाएगा।
20: लोग पगला रहे हैं और ऐसा करके अपनी कब्र खोदने का प्रयास कर रहे
21: हैं। इस तरह की बातें पहले भी कांवड़ यात्रियों पर जो है हमने देखा, टीका टिप्पणी असदुल ओवैसी की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से होती रही है।
20: ऐसे राष्ट्र विरोधी भारतीय संसदीय विरोधी लोग
21: जी
20: पहले से सक्रिय है, इलाज किया जाएगा।
17: यूपी और उत्तराखंड की सरकार ने तय किया है कि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कांवड़ यात्रा पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात पंजाब सरकार की करेंगे जो चुनाव से पहले कई मुद्दों पर घिरती हुई नजर आ रही है। पेपर लीक और लाठी चार्ज पर केंद्र सरकार को घेरने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद सवालों के घेरे में है, जहां लड़ाई अब मान के आवाज से लेकर सड़क तक देखने को मिल रही है।
22: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं की एक ही मांग है, पेपर लीक मामले में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस इस्तीफा दें।
23: आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार एकदम चुप्पी साधे हुई है, टेक्निकलिटीज के पीछे छिप रही है। और इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अभी तक उन्होंने पंजाब के अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया?
22: उधर हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लेकर पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर जांच की मांग की है।
24: मैं डिमांड करती हूँ कि भगवंत मान को ही हटाया जाए, केजरीवाल हटाए, मनीष सिसोदिया जो इधर बोल के गया है कि धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाए, हम हटा देते तो हरजोत बैंस को हटाए ना। आज तक अपने एजुकेशन मिनिस्टर को आपने नहीं हटाया, हेल्थ मिनिस्टर को नहीं हटाया, तो आप खुद हटिए, क्योंकि आपकी सरकार को उधर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है।
22: फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की परीक्षा को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन पंजाब सरकार इसे पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला बता रही है।
25: ये चीटिंग का मामला था जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में हुआ और इमीडिएटली पंजाब सरकार ने उस पर एक्शन लिया और जो दोषी लोग थे उनके खिलाफ एक्शन लिया।
22: इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर आप बीजेपी को घेर रही थी, तो वहीं अब बरनाला में पंजाब पुलिस के लाठीचार्ज पर विपक्ष मान सरकार को घेर रहा है। अलग अलग शहरों में बंद का ऐलान किया जा रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच बेअदबी के मामले में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अकाल तख्त ने सभी सिख विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों से मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी दूरी बनाए रखने की बात कही है।
26: गुरु दुखी ते पंथ दुखी दे किसी सवाल दा जवाब ना देन, ओदे वल मुंह ना करन, ओदा मुंह ना वेखन और ओदे तो किनारा करन। वो विधानसभा करके जा रहे, ओदे करके थोड़ा जा रहे, कला मुख्यमंत्री थोड़ा सब कुछ हुंदा।
22: पंजाब में चुनाव से पहले भगवंत मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
27: When your cat is acting weird-er, or your dog is being loud-er, your turtle moves slow-er.
28: Hello, Ted.
27: Your cat seems thirsty-er.
29: Whoa, slow down, buddy.
27: Or your puppy is acting clumsy-er. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
28: Veg ER for Pets, this is Kate.
27: Veg, the better, kinder ER for Pets.

0: पास से भी पास हुआ लोक परीक्षा संशोधन बिल। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, बख्शे नहीं जाएंगे शिक्षा माफिया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की घेरेबंदी, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस, परीक्षा बिल के दौरान असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी पुलिस की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन। असम में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 78 की मौत, सरकार का अहम ऐलान, 4 जिलों में ईएमआई पर 6 महीने की राहत। और सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा नेपाल, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 की मौत, दर्जनों घायल, करीब 6 शहरों में कर्फ्यू। संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगा।
1: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राज्यसभा में भी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। सवाल अभी है कि गृह मंत्री को संसद में घेरने में जुटा रहा विपक्ष क्या अब रणनीति बदल देगा? क्या अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि E20 और चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो जाए ताकि फायदा उत्तर प्रदेश में उठाया जा सके? और क्या गृह मंत्री को लेकर राहुल गांधी के सवाल के जवाब में बीजेपी ने जो कहा है उससे अखिलेश यादव को भी ढाल मिल गई है?
2: वंदे मातरम बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी पास हो गया, हंगामा जरूर हुआ।
3: जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में
2: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पेपर लीक रोकने वाला बिल पास हो रहा है।
4: सर, देयर इज अ नेशनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू रेज ऑन वैल्यू।
2: तो यानी बिल पास हो रहे हैं, सदन चल रहा है। सवाल सीधा सा है, क्या राहुल गांधी की रणनीति सरकार ने फेल कर दी या फिर विपक्ष के बीच मुद्दों पर अब आगे बढ़ने की राजनीति हो रही है? सीधी सी बात पहली यही कि जो राहुल गांधी बुधवार तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बताते रहे कि गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग पर कोई कंफ्यूजन नहीं है।
5: कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है।
6: हाँ।
5: क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल
6: लिखा हुआ है अमित शाह मस्ट गो, देयर इज नो एम्बिग्युइटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन।
2: लेकिन संसद में अमित शाह को लेकर जो रणनीति राहुल गांधी चाहते हैं उससे अलग स्टैंड लिया जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस सदन ठप नहीं करती, पेपर लीक बिल पर बहस में हिस्सा लेती है, अमित शाह का इस्तीफा खड़गे मानते हैं और तभी ऐसा बयान देते हैं जिस पर हंगामा होता है।
7: बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके बेहोश क्या है।
2: लेकिन इन सब के बीच अखिलेश की रणनीति क्या है? सवाल की वजह ये पोस्ट है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर डाला कि साइकिल की रफ्तार जोरदार है क्योंकि साइकिल E20 से आजाद है। ये पोस्ट क्या इस बात की तरफ इशारा करती है कि अखिलेश संसद में अब E20 के मुद्दे पर बढ़ना चाहते हैं? E20 के अलावा समाजवादी पार्टी संसद में अब और सत्ता और विपक्ष के बीच बहुत खींचतान की जगह उन मुद्दों पर चर्चा चाहती दिखती है जिसका वो फायदा यूपी की राजनीति में उठा सके, जैसे E20 के अलावा वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विषय पर चर्चा चाहते हैं।
8: राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा आज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ संसद के अंदर नजर आ रहा है। इस वक्त जो है मकर द्वार के सामने एक दान पात्र रख दिया गया है और इस दान पात्र के अंदर विपक्ष के सभी सांसद दान डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए कैसे जो सांसद है उनके हाथ में जो दान पात्र है उसमें कुछ अलग अलग सांसद, ये दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद है जिन्होंने हाथ में दान पात्र लिया हुआ है और स्वागत हो रहा है, जो TMC के सांसद है वो उसमें दान डालते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही ये दान डाला जाता है वैसे ही संसद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो इस दान पात्र को छीनने लगते हैं, यानी कि एक प्रतीकात्मक विरोध है जिसमें जैसे ही दान डलेगा वैसे ही उस डब्बे को लेकर जो है जो वो लोग यहां से चले जाएंगे और ये आरोप BJP पर लगाया जा रहा है कि आप दान लेते हैं और उसी चंदे को जो है लेकर भाग जाते हैं।
9: ये लोग चंदा चोरी की भी नहीं बात करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि बहस हो क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया है चाहे वो हमारे देश के हो चाहे NRIs हो, कितना चंदा आया, हजारों करोड़ों का चंदा आया है। आज ये लोग चंदा चोरी पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये केवल ध्यान भटकाने वाली राजनीति पे बात करना चाहते हैं।
10: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पे कार्य कर रही है, विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं, ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं, ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कारसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी।
2: दिलचस्प राजनीति है कि जब सदन में गृहमंत्री पर सवाल प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से फायरिंग को लेकर विपक्ष उठाता है तो सत्ता पक्ष इस पर बचाव में कहता है कि आदेश मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट या अधिकारी देते हैं।
11: वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है, हम सब

0: इसी बयान को आधार बनाकर अब अखिलेश यादव अयोध्या में चली गोलियों के कटघरे में बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी को खड़ा किए जाते रहने का बचाव करते हैं। सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जब अपने पर आरोप की उंगली उठी तब ये बात समझ में आई।
1: E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ी के इंजन में बदलाव से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार ने माना है कि E20 का असर BS3 गाड़ियों पर हो सकता है, उसके रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं।
2: आज जो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही है, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है?
0: इथेनॉल पर जनता के जुड़े सवाल से आज तक ने कुछ दिन पहले सरकार को खबरदार करके पूछा था कि क्या इथेनॉल वाला पेट्रोल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है,
2: आपको लग रहा है सेफ है इथेनॉल?
0: इस पर सरकार ने दावा किया कि उसने पूरी तैयारी के साथ ये काम किया।
3: कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया और मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता।
0: सरकार ने एक बार फिर E20 यानी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का बचाव किया।
3: मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है, और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिस भी की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे, और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया है कि BS3 मानक वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, जिन्हें सर्विसिंग के दौरान बदला जा सकता है। इनसे किसी बड़ी मैकेनिकल समस्या का संकेत नहीं मिलता, मतलब इसके इस्तेमाल से इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं होगी। इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दो पहिया चार पहिया गाड़ियों पर E20 ईंधन की स्टडी की थी। जून 2021 की स्टडी में पाया गया कि पुरानी गाड़ियों की परफॉर्मेंस में कोई खास अंतर नहीं दिखा है और न ही E20 पेट्रोल के चलने पर उसमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई।
2: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
3: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
2: हाँ।
3: क्या आपके नजरों में आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है? अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई?
2: अभी तक तो नहीं।
3: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती हैं मुझे?
0: साल 2005 से 2016 के बीच बनी गाड़ियां BS3 मानक वाली गाड़ियां हैं। माइलेज को लेकर मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसकी वजह सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि ये ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और गाड़ी के रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार ने बताया कि E20 का इस्तेमाल दुनिया में एक सदी से ज्यादा समय से हो रहा है, जिसमें सभी बड़े देश शामिल हैं।
3: अमेरिका में इथेनॉल है,
2: हाँ।
3: ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है,
2: हाँ।
3: स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है।
0: सरकार की दलील है कि E20 को लागू करने की तैयारी बारीकी से की गई है। पेट्रोल पंप तक पहुंचने से पहले कई राउंड की टेस्टिंग में इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम, रबर के पार्ट्स, एमिशन और फ्यूल एफिशिएंसी जैसी सभी चीजों की जांच की गई। अगर निर्माताओं को E20 की सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता तो वो इसकी वारंटी नहीं देते।
3: ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया।
0: BS3 मानक की गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिनके माइलेज और इंजन की हालत रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार का कहना है कि अगर ऐसी गाड़ियों के रबर पार्ट्स खराब भी होते हैं तो उन्हें आसानी से रूटीन सर्विसिंग में बदला जा सकता है।
1: 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने ही बताया कि 2800 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी भीड़ में शामिल थे। दिल्ली पुलिस का ये दावा अब और उसी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि आज तक को 20 तारीख की जो 5 CCTV फुटेज मिले हैं उसमें प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक जा पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से वहां से उन्हें हटाया जा सका। हर CCTV में दिल्ली पुलिस की लापरवाही साफ नजर आई।
4: ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती

0: दिखाई दे रही है। प्रोटेस्टर यहाँ खड़े हैं पुलिस के बीच।
1: बीस जुलाई को क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारी संसद में कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे? अगर प्रदर्शनकारी संसद के अंदर आ जाते तो क्या होता? संसद तक कुछ प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंचे? दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चक्र में प्रदर्शनकारी सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए? आज तक के पास आई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने दिल्ली पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जब प्रदर्शनकारियों के इरादों का पता था, जब दिल्ली पुलिस अच्छे से जानती थी कि प्रदर्शनकारी संसद पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब भी वो खबरदार क्यों नहीं हुई? आखिर प्रदर्शनकारी संसद के गेट के करीब तक कैसे पहुंच गए? 20 तारीख को दोपहर 2 बजे तक प्रदर्शनकारी संसद के गेट तक करीब करीब पहुंच ही गए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, संसद के अंदर गाड़ियां चलती दिख रही हैं, लोगों की आवाजाही साफ नजर आ रही है। संसद भवन की दीवार के पास भीड़ खड़ी हुई देखी जा सकती है। पुलिस भी वहां मौजूद है, जिससे भीड़ की झड़प होती है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। अगर वो ऐसा नहीं करती या फिर इससे 2-3 गुनी भीड़ अगर यहां होती तो फिर पुलिस को इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो सकता था।
0: पार्लियामेंट के गेट से बेहद करीब तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है। ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहे थे, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है, प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की गई, मजबूत बैरिकेड्स वो क्यों नहीं लगाए गए, और साथ ही साथ जब इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी थी तो इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नई दिल्ली और आसपास में कैसे इकट्ठा हो गई।
1: दिल्ली पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी? प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन करने कैसे दिया गया? अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अब ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। संसद के पास लाल रंग की दिख रही इमारत सेल्फी पॉइंट है, जिसकी तरफ अचानक प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते दिखे थे। यहाँ खड़े पुलिस वाले जैसे ही भीड़ को देखते हैं, वो बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद करते नजर आते हैं। रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों का पहुंचना चिंताजनक है, क्योंकि यहां से संसद बहुत नजदीक है। रोजमर्रा की तरह 20 जुलाई को तब यहां ट्रैफिक चलता दिखता है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखकर आम लोग भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने वाला यहां कोई नहीं था। अगर भीड़ शांतिपूर्ण की जगह उग्र होती तो बड़े आराम से आम लोगों की गाड़ियों को निशाना बना सकती थी, क्योंकि यहां पर पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था, जो थे वो एक कोने में खड़े थे। रेल भवन के बाहर की एक और सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जिसमें पुलिस और आरएएफ के जवान देखे जा सकते हैं, जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रेल भवन से दूर करने के लिए धक्के मारते हैं। अगर भीड़ यहां भड़क जाती तो हालात बेकाबू हो सकते थे। हालांकि पुलिस ने यहां तैयारी कर रखी थी। अब सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जो संसद भवन के बेहद नजदीक बने मेट्रो स्टेशन में से एक है। यहां भी 20 तारीख को दोपहर 12:34 पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक इस मेट्रो स्टेशन की तरफ भीड़ भागती हुई आई। पुलिस को हंगामे की आशंका थी, इसलिए यहां पहले से बैरिकेडिंग की गई थी। पीसीआर वैन भी खड़ी देखी जा सकती है।
0: 5 सीसीटीवी संसद भवन के आसपास हमने हमारे पास आया है, जिससे ये पता चलता है कि संसद भवन की दीवार के बेहद करीब जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस पर इन तस्वीर इन 5 तस्वीरों को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी मजबूत तैयारी क्यों नहीं की थी, भीड़ संसद भवन के आसपास पहुंचने तक कैसे कामयाब हो गई थी। और 20 जुलाई को ऐसी भी तस्वीरें आई थी जब संसद भवन के अंदर सुरक्षा जो कर्मी थे वो अलर्ट मोड में आ गए थे। तो वो अलर्ट मोड में क्यों आए थे 20 जुलाई को जब वो तस्वीर आई थी? वो इसलिए आए थे क्योंकि ये सीसीटीवी जिसमें अगर आप देखें संसद भवन की दीवार, प्रोटेस्टर, झड़प होते हुए आपको दिखाई दे रहा, संसद भवन भवन, संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है।
1: 20 तारीख को प्रदर्शन की ये 5 सीसीटीवी तस्वीरें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाती हैं, बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद के दरवाजे तक पहुंच गई। अगर ज्यादा लोग होते तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने में काफी दिक्कत आती, लेकिन किसी तरह प्रदर्शनकारी पीछे धकेल दिए गए और संसद में घुसने से बच गए। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। इन अपराधियों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और तकनीकी तरीकों से की गई है। अब चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि जंतर मंतर की ही तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद में भी बाहर यही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता तो क्या पता चलता।
1: दिल्ली पुलिस दावा करती है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। हत्या के आरोप से जुड़े 101 आरोपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान देखे गए, ये दावा दिल्ली पुलिस का है। हत्या के प्रयास के आरोप वाले 62 लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी भीड़ में दिल्ली पुलिस को दिखे। 284 डकैती और लूट के आरोपी, रेप केस के 61, पॉक्सो के 6 आरोपी दिल्ली पुलिस कहती है कि जंतर मंतर पर दिख रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आर्म्स एक्ट के 229 आरोपी, स्नैचिंग के 135, किडनैपिंग के 19 आरोपी, ऐसे अलग अलग कुल 2873 चेहरों को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से दिल्ली पुलिस ने पहचानने का दावा किया, जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रिकॉर्ड वाला है और वो जंतर मंतर पर पुलिस कहती है प्रदर्शन के दौरान दिखे भी। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का सीधा दावा नहीं करती कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ये 2873 लोग 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर पर किसी तरह की हिंसा या उपद्रव में शामिल थे। पुलिस कहती है कि वो इसकी जांच कर रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो तकनीक है जिसमें पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड वालों के डेटाबेस से मिलान करके अपराध के आरोपियों को भीड़ में देखती है, पहचानती है। लेकिन सवाल है कि जंतर मंतर पर क्या इस तकनीक का इस्तेमाल करके मिले डेटा से ये नैरेटिव देने की कोशिश है कि जंतर मंतर पर पहुंचने वालों या फिर 20 जुलाई के प्रदर्शन में अपराध के आरोपी भी बहुत थे। और तब एक सवाल आता है, सवाल देश की संसद से जुड़ा है, जहां संसद में लोग पूछते हैं कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बाहर लगा होता तो फिर सांसद कैसे दिखते। एडीआर का डेटा कहता है कि लोकसभा के 251 यानी करीब 46% सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर के डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि संसद के बाहर अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया जाए तो 170 सांसद यानी करीब 31% ऐसे मिलेंगे जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत दूसरे गंभीर आपराधिक केस हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अगर संसद में होने लगे तो एडीआर के डेटा के मुताबिक पता चलेगा कि 16 सांसदों पर तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का केस चल रहा है, जिनमें से 2 सांसद के खिलाफ रेप तक के मामले दर्ज हैं, 4 सांसद के खिलाफ किडनैपिंग का मामला है, तो लोकसभा के 43 सांसद के खिलाफ हेट स्पीच का केस है। राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहा है। राज्यसभा के 73 में से 36 यानी 16% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, 1 सांसद पर मर्डर का केस है, 4 सांसद पर हत्या की कोशिश और 3 पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस हैं। ये तस्वीर तब दिख सकती है जब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम देश की संसद के बाहर भी लग जाए।
2: सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस पवित्र महीने के साथ ही शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा। भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर निकल रहे हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी ने कुछ कांवड़ियों पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया है।
3: भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकल चुके हैं, तन पर भगवा, कांधे पर कांवड़ और महादेव का उद्घोष। लेकिन इस यात्रा के साथ ही शुरू हो गई है सियासत और इस सियासत की शुरुआत की है ओवैसी के दल ने। AIMIM के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांवड़ ले जा रहे भोले के भक्तों में कुछ नशेड़ी होते हैं, उनसे सरकार कैसे निपटेगी।
4: क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए, जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं, क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं?
3: आरोप सिर्फ इतने नहीं, यूपी सरकार ने तय किया है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा निकलेगी उन रास्तों पर मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की दुकानें ढकी जाएंगी। जैसे यहाँ हापुड़ में शराब की दुकान पर पर्दा डाल दिया गया है। AIMIM यहाँ भी आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी करके दुकानें बंद कराई जा रही हैं।
4: कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं उनको किसने अधिकार दिया, वो कौन होते हैं। दूसरा कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई, आपकी आस्था है क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं।
3: AIMIM ने कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए तो कांग्रेस AIMIM पर टूट पड़ी।
5: अरे बेवकूफी की बातें ना करें फालतू की। AIMIM जब बीजेपी की दलाली कर रहे हो क्या? वही जबान बोल रहे हो जो दूसरे लोग बोलते हैं।
3: बीजेपी भी अब हमलावर है और बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों का इलाज किया जाएगा।
6: लोग पगला गए हैं और ऐसा करके अपनी कब्र खोदने का प्रयास कर रहे
7: हैं। इस तरह की बातें पहले भी कांवड़ यात्रियों पर जो है हमने देखा, टीका टिप्पणी असदुल ओवैसी की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से होती रही है।
6: ऐसे राष्ट्र विरोधी, भारतीय संस्कृति विरोधी लोग
7: जी
6: पहले से सक्रिय है, इलाज किया जाएगा।
3: यूपी और उत्तराखंड की सरकार ने तय किया है कि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कांवड़ यात्रा पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: और अब बात पंजाब सरकार की करेंगे जो चुनाव से पहले कई मुद्दों पर घिरती हुई नजर आ रही है। पेपर लीक और लाठी चार्ज पर केंद्र सरकार को घेरने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद सवालों के घेरे में है, जहां लड़ाई अब मान के आवाज से लेकर सड़क तक देखने को मिल रही है।
8: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं की एक ही मांग है, पेपर लीक मामले में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस इस्तीफा दें।
9: आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार एकदम चुप्पी साधे हुई है, टेक्निकलिटीज के पीछे छिप रही है। और इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अभी तक उन्होंने पंजाब के अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया?
8: उधर हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लेकर पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर जांच की मांग की है।
10: मैं डिमांड करती हूँ कि भगवंत मान को ही हटाया जाए, केजरीवाल हटाए, मनीष सिसोदिया जो इधर बोल के गया है कि धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाए, हम हटा देते, तो हरजोत बैंस को हटाए ना। आज तक अपने एजुकेशन मिनिस्टर को आपने नहीं हटाया,
11: अपने
10: हेल्थ मिनिस्टर को नहीं हटाया, तो आप खुद हटिए, क्योंकि आपकी सरकार को उधर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है।
8: फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की परीक्षा को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन पंजाब सरकार इसे पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला बता रही है।
12: ये चीटिंग का मामला था जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में हुआ और इमीडिएटली पंजाब सरकार ने उस पर एक्शन लिया और जो दोषी लोग थे उनके खिलाफ एक्शन लिया।
8: इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर आप बीजेपी को घेर रही थी, तो वहीं अब बरनाला में पंजाब पुलिस के लाठीचार्ज पर विपक्ष मान सरकार को घेर रहा है। अलग अलग शहरों में बंद का ऐलान किया जा रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच बेअदबी के मामले में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अकाल तख्त ने सभी सिख विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों से मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी दूरी बनाए रखने की बात कही है।
13: गुरु दुखी ते पंथ दुखी दे किसे सवाल दा जवाब ना देन, ओदे वल मुंह ना करन, ओदा मुंह ना वेखन और ओदे तो किनारा करन। वो विधानसभा करके जा रहे, ओदे करके थोड़ा जा रहे, कला मुख्यमंत्री थोड़ा सब कुछ हुंदा।
8: पंजाब में चुनाव से पहले भगवंत मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: से भी पास हुआ लोक परीक्षा संशोधन बिल। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, बख्शे नहीं जाएंगे शिक्षा माफिया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की घेरेबंदी, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस, परीक्षा बिल के दौरान असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी पुलिस की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन। असम में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 78 की मौत, सरकार का अहम ऐलान, 4 जिलों में ईएमआई पर 6 महीने की राहत। और सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा नेपाल, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 की मौत, दर्जनों घायल, करीब 6 शहरों में कर्फ्यू। संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगा।
1: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राज्यसभा में भी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। सवाल अभी है कि गृह मंत्री को संसद में घेरने में जुटा रहा विपक्ष क्या अब रणनीति बदल देगा? क्या अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि E20 और चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो जाए ताकि फायदा उत्तर प्रदेश में उठाया जा सके? और क्या गृह मंत्री को लेकर राहुल गांधी के सवाल के जवाब में बीजेपी ने जो कहा है उससे अखिलेश यादव को भी ढाल मिल गई है?
2: वंदे मातरम बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी पास हो गया, हंगामा जरूर हुआ।
3: जो सदस्य इसके पक्ष में वो हां कहे, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहे, मेरे विचार में।
2: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पेपर लीक रोकने वाला बिल पास हो रहा है।
4: सर, देयर इज अ नेशनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू रेज ऑन वैल्यू।
2: तो यानी बिल पास हो रहे हैं, सदन चल रहा है। सवाल सीधा सा है, क्या राहुल गांधी की रणनीति सरकार ने फेल कर दी या फिर विपक्ष के बीच मुद्दों पर अब आगे बढ़ने की राजनीति हो रही है? सीधी सी बात पहली यही कि जो राहुल गांधी बुधवार तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बताते रहे कि गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग पर कोई कंफ्यूजन नहीं है।
5: कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है।
2: हाँ।
5: क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल
6: लिखा हुआ है अमित शाह मस्ट गो, नो एम्बिग्विटी हियर, देयर नो कंफ्यूजन।
7: लेकिन संसद में अमित शाह को लेकर जो रणनीति राहुल गांधी चाहते हैं उससे अलग स्टैंड लिया जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस सदन ठप नहीं करती, पेपर लीक बिल पर बहस में हिस्सा लेती है, अमित शाह का इस्तीफा खड़गे मानते हैं और तभी ऐसा बयान देते हैं जिस पर हंगामा होता है।
8: बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिल में क्या है।
7: लेकिन इन सब के बीच अखिलेश की रणनीति क्या है? सवाल की वजह ये पोस्ट है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर डाला कि साइकिल की रफ्तार जोरदार है क्योंकि साइकिल E20 से आजाद है। ये पोस्ट क्या इस बात की तरफ इशारा करती है कि अखिलेश संसद में अब E20 के मुद्दे पर बढ़ना चाहते हैं? E20 के अलावा समाजवादी पार्टी संसद में अब और सत्ता और विपक्ष के बीच बहुत खींचतान की जगह उन मुद्दों पर चर्चा चाहती दिखती है जिसका वो फायदा यूपी की राजनीति में उठा सके, जैसे E20 के अलावा वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विषय पर चर्चा चाहते हैं।
9: राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा आज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ संसद के अंदर नजर आ रहा है। इस वक्त जो है मकर द्वार के सामने एक दान पात्र रख दिया गया है और इस दान पात्र के अंदर विपक्ष के सभी सांसद दान डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए कैसे जो सांसद है उनके हाथ में जो दान पात्र है उसमें कुछ अलग अलग सांसद, ये दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद है जिन्होंने हाथ में दान पात्र लिया हुआ है और स्वागत हो रहा है। जो TMC के सांसद है वो उसमें दान डालते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे ही ये दान डाला जाता है वैसे ही संसद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो इस दान पात्र को छीनने लगते हैं, यानी कि एक प्रतीकात्मक विरोध है जिसमें जैसे ही दान डलेगा वैसे ही उस डब्बे को लेकर जो है जो वो लोग यहां से चले जाएंगे और ये आरोप BJP पर लगाया जा रहा है कि आप दान लेते हैं और उसी चंदे को जो है लेकर भाग जाते हैं।
10: ये लोग चंदा चोरी की भी नहीं बात करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि बहस हो क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया है चाहे वो हमारे देश के हो चाहे NRIs हो, कितना चंदा आया, हजारों करोड़ों का चंदा आया है। आज ये लोग चंदा चोरी पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये केवल ध्यान भटकाने वाली राजनीति पे बात करना चाहते हैं।
11: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पे कार्य कर रही है, विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं, ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं, ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कारसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी।
7: दिलचस्प राजनीति है कि जब सदन में गृहमंत्री पर सवाल प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से फायरिंग को लेकर विपक्ष उठाता है तो सत्ता पक्ष इस पर बचाव में कहता है कि आदेश मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट या अधिकारी देते हैं।
12: वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है, हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है।
7: इसी बयान को आधार बनाकर अब अखिलेश यादव अयोध्या में चली गोलियों के कटघरे में BJP की तरफ से समाजवादी पार्टी को खड़ा किए जाते रहने का बचाव करते हैं। सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जब अपने पर आरोप की उंगली उठी तब ये बात समझ में आई।
0: E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ी के इंजन में बदलाव से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार ने माना है कि E20 का असर BS3 गाड़ियों पर हो सकता है, उसके रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं।
13: आज जो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है? गाड़ियां खराब हो रही हैं।
14: इथेनॉल पर जनता के जुड़े सवाल से आज तक ने कुछ दिन पहले सरकार को खबरदार करके पूछा था कि क्या इथेनॉल वाला पेट्रोल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है।
13: आपको लग रहा है सेफ है इथेनॉल?
14: इस पर सरकार ने दावा किया कि उसने पूरी तैयारी के साथ ये काम किया।
15: कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया और मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता।
14: सरकार ने एक बार फिर E20 यानी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का बचाव किया।
15: मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है, और मैं तो आह्वान करता हूँ। मैंने कल ही कहा कि जिसमें की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे, और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
14: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया है कि BS3 मानक वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, जिन्हें सर्विसिंग के दौरान बदला जा सकता है। इनसे किसी बड़ी मैकेनिकल समस्या का संकेत नहीं मिलता, मतलब इसके इस्तेमाल से इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं होगी। इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दो पहिया चार पहिया गाड़ियों पर E20 ईंधन की स्टडी की थी। जून 2021 की स्टडी में पाया गया कि पुरानी गाड़ियों की परफॉर्मेंस में कोई खास अंतर नहीं दिखा है और न ही E20 पेट्रोल के चलने पर उसमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई।
13: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
15: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
13: हाँ।
15: क्या आपके नजरों में आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है? अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई?
13: अभी तक तो नहीं।
15: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती हैं मुझे?
14: साल 2005 से 2016 के बीच बनी गाड़ियां BS3 मानक वाली गाड़ियां हैं। माइलेज को लेकर मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसकी वजह सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि ये ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और गाड़ी के रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार ने बताया कि E20 का इस्तेमाल दुनिया में एक सदी से ज्यादा समय से हो रहा है, जिसमें सभी बड़े देश शामिल हैं।
15: अमेरिका में इथेनॉल है,
13: हाँ।
15: ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है,
13: हाँ।
15: स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है।
14: सरकार की दलील है कि E20 को लागू करने की तैयारी बारीकी से की गई है। पेट्रोल पंप तक पहुंचने से पहले कई राउंड की टेस्टिंग में इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम, रबर के पार्ट्स, एमिशन और फ्यूल एफिशिएंसी जैसी सभी चीजों की जांच की गई। अगर निर्माताओं को E20 की सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता तो वो इसकी वारंटी नहीं देते।
15: ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है। उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया।
14: BS3 मानक की गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिनके माइलेज और इंजन की हालत रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार का कहना है कि अगर ऐसी गाड़ियों के रबर पार्ट्स खराब भी होते हैं तो उन्हें आसानी से रूटीन सर्विसिंग में बदला जा सकता है।
0: 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने ही बताया कि 2800 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी भीड़ में शामिल थे। दिल्ली पुलिस का यह दावा अब और उसी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि आज तक को 20 तारीख की जो 5 CCTV फुटेज मिले हैं उसमें प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक जा पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से वहां से उन्हें हटाया जा सका। हर CCTV में दिल्ली पुलिस की लापरवाही साफ नजर आई।
16: ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रोटेस्टर यहां खड़े हैं पुलिस के बीच।
14: बीस जुलाई को क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारी संसद में कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे? अगर प्रदर्शनकारी संसद के अंदर आ जाते तो क्या होता? संसद तक कुछ प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंचे? दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चक्र में प्रदर्शनकारी सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए? आज तक के पास आई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने दिल्ली पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जब प्रदर्शनकारियों के इरादों का पता था, जब दिल्ली पुलिस अच्छे से जानती थी कि प्रदर्शनकारी संसद पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब भी वो खबरदार क्यों नहीं हुई? आखिर प्रदर्शनकारी संसद के गेट के करीब तक कैसे पहुंच गए? 20 तारीख को दोपहर 2 बजे तक प्रदर्शनकारी संसद के गेट तक करीब करीब पहुंच ही गए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, संसद के अंदर गाड़ियां चलती दिख रही हैं, लोगों की आवाजाही साफ नजर आ रही है। संसद भवन की दीवार के पास भीड़ खड़ी हुई देखी जा सकती है। पुलिस भी वहां मौजूद है, जिससे भीड़ की झड़प होती है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। अगर वो ऐसा नहीं करती या फिर इससे 2-3 गुनी भीड़ अगर यहां होती तो फिर पुलिस को इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो सकता था।
16: पार्लियामेंट के गेट से बेहद करीब तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है। ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहे थे, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है, प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की गई, मजबूत बैरिकेड्स वो क्यों नहीं लगाए गए, और साथ ही साथ जब इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी थी तो इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नई दिल्ली और आसपास में कैसे इकट्ठा हो गई। दिल्ली पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी? प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन करने कैसे दिया गया? अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अब ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। संसद के पास लाल रंग की दिख रही इमारत सेल्फी पॉइंट है, जिसकी तरफ अचानक प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते दिखे थे। यहाँ खड़े पुलिस वाले जैसे ही भीड़ को देखते हैं वो बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद करते नजर आते हैं। रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों का पहुंचना चिंताजनक है, क्योंकि यहां से संसद बहुत नजदीक है। रोजमर्रा की तरह 20 जुलाई को तब यहां ट्रैफिक चलता दिखता है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखकर आम लोग भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने वाला यहां कोई नहीं था। अगर भीड़ शांतिपूर्ण की जगह उग्र होती तो बड़े आराम से आम लोगों की गाड़ियों को निशाना बना सकती थी, क्योंकि यहां पर पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था, जो थे वो एक कोने में खड़े थे। रेल भवन के बाहर की एक और सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जिसमें पुलिस और आरएएफ के जवान देखे जा सकते हैं, जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रेल भवन से दूर करने के लिए धक्के मारते हैं। अगर भीड़ यहां भड़क जाती तो हालात बेकाबू हो सकते थे। हालांकि पुलिस ने यहां तैयारी कर रखी थी। अब सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जो संसद भवन के बेहद नजदीक बने मेट्रो स्टेशन में से एक है। यहां भी 20 तारीख को दोपहर 12:34 पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक इस मेट्रो स्टेशन की तरफ भीड़ भागती हुई आई। पुलिस को हंगामे की आशंका थी, इसलिए यहां पहले से बैरिकेडिंग की गई थी। पीसीआर वैन भी खड़ी देखी जा सकती है। 5 सीसीटीवी संसद भवन के आसपास हमने हमारे पास आया है, जिससे ये पता चलता है कि संसद भवन की दीवार के बेहद करीब जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस पर इन 5 तस्वीरों को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी मजबूत तैयारी क्यों नहीं की थी, भीड़ संसद भवन के आसपास पहुंचने तक कैसे कामयाब हो गई थी, और 20 जुलाई को ऐसी भी तस्वीरें आई थी जब संसद भवन के अंदर सुरक्षा जो कर्मी थे वो अलर्ट मोड में आ गए थे। तो वो अलर्ट मोड में क्यों आए थे 20 जुलाई को जब वो तस्वीर आई थी? वो इसलिए आए थे क्योंकि ये सीसीटीवी, जिसमें अगर आप देखें संसद भवन की दीवार, प्रोटेस्टर झड़प होते हुए आपको दिखाई दे रहा, संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है।
14: 20 तारीख को प्रदर्शन की ये 5 सीसीटीवी तस्वीरें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाती हैं, बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद के दरवाजे तक पहुंच गई। अगर ज्यादा लोग होते तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने में काफी दिक्कत आती, लेकिन किसी तरह प्रदर्शनकारी पीछे धकेल दिए गए और संसद में घुसने से बच गए। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। इन अपराधियों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और तकनीकी तरीकों से की गई है। अब चर्चाएं इस बात की हो रही है कि जंतर मंतर की ही तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद में भी बाहर यही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता तो क्या पता चलता।
14: दिल्ली पुलिस दावा करती है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। हत्या के आरोप से जुड़े 101 आरोपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान देखे गए, ये दावा दिल्ली पुलिस का है। हत्या के प्रयास के आरोप वाले 62 लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी भीड़ में दिल्ली पुलिस को दिखे। 284 डकैती और लूट के आरोपी, रेप केस के 61, पॉक्सो के 6 आरोपी दिल्ली पुलिस कहती है कि जंतर मंतर पर दिख रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आर्म्स एक्ट के 229 आरोपी, स्नैचिंग के 135, किडनैपिंग के 19 आरोपी, ऐसे अलग अलग कुल 2873 चेहरों को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से दिल्ली पुलिस ने पहचानने का दावा किया जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रिकॉर्ड वाला है और वो जंतर मंतर पर पुलिस कहती है प्रदर्शन के दौरान दिखे भी। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का सीधा दावा नहीं करती कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ये 2873 लोग 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर पर किसी तरह की हिंसा या उपद्रव में शामिल थे। पुलिस कहती है कि वो इसकी जांच कर रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो तकनीक है जिसमें पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड वालों के डेटाबेस से मिलान करके अपराध के आरोपियों को भीड़ में देखती है, पहचानती है। लेकिन सवाल है कि जंतर मंतर पर क्या इस तकनीक का इस्तेमाल करके मिले डेटा से ये नैरेटिव देने की कोशिश है कि जंतर मंतर पर पहुंचने वालों या फिर 20 जुलाई के प्रदर्शन में अपराध के आरोपी भी बहुत थे। और तब एक सवाल आता है, सवाल देश की संसद से जुड़ा है जहां संसद में लोग पूछते हैं कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बाहर लगा होता तो फिर सांसद कैसे दिखते। एडीआर का डेटा कहता है कि लोकसभा के 251 यानी करीब 46% सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर के डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि संसद के बाहर अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया जाए तो 170 सांसद यानी करीब 31% ऐसे मिलेंगे जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत दूसरे गंभीर आपराधिक केस हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अगर संसद में होने लगे तो एडीआर के डेटा के मुताबिक पता चलेगा कि 16 सांसदों पर तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का केस चल रहा है जिनमें से 2 सांसद के खिलाफ रेप तक के मामले दर्ज हैं, 4 सांसद के खिलाफ किडनैपिंग का मामला है तो लोकसभा के 43 सांसद के खिलाफ हेट स्पीच का केस है। राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहा है। राज्यसभा के 73 में से 36 यानी 16% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। 1 सांसद पर मर्डर का केस है, 4 सांसद पर हत्या की कोशिश और 3 पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस हैं। ये तस्वीर तब दिख सकती है जब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम देश की संसद के बाहर भी लग जाए।
0: सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस पवित्र महीने के साथ ही शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा। भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर निकल रहे हैं लेकिन कांवड़ यात्रा के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी ने कुछ कांवड़ियों पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया है।
17: भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकल चुके हैं, तन पर भगवा, कांधे पर कांवड़ और महादेव का उद्घोष। लेकिन इस यात्रा के साथ ही शुरू हो गई है सियासत और इस सियासत की शुरुआत की है ओवैसी के दल। AIMIM के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांवड़ ले जा रहे भोले के भुत्तों में कुछ नशेड़ी होते हैं, उनसे सरकार कैसे निपटेगी।
18: क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं?
17: आरोप सिर्फ इतने नहीं, यूपी सरकार ने तय किया है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा निकलेगी उन रास्तों पर मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की दुकानें ढकी जाएंगी। जैसे यहाँ हापुड़ में शराब की दुकान पर पर्दा डाल दिया गया है। AIMIM यहाँ भी आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी करके दुकानें बंद कराई जा रही हैं।
18: कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं उनको किसने अधिकार दिया, वो कौन होते हैं। दूसरा कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं।
17: AIMIM ने कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए तो कांग्रेस AIMIM पर टूट पड़ी।
19: अरे बेवकूफी की बातें ना करें फालतू की। AIMIM जब बीजेपी की दलाली कर रहे हो क्या, वही जबान बोल रहे हो जो दूसरे लोग बोलते हैं?
17: बीजेपी भी अब हमलावर है और बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों का इलाज किया जाएगा।
20: लोग पगला रहे हैं और ऐसा करके अपनी कब्र खोदने का प्रयास कर रहे
21: हैं। इस तरह की बातें पहले भी कांवड़ यात्रियों पर जो है हमने देखा, टीका टिप्पणी असदुल ओवैसी की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से होती रही है।
20: ऐसे राष्ट्र विरोधी भारतीय संसदीय विरोधी लोग
21: जी
20: पहले से सक्रिय है, इलाज किया जाएगा।
17: यूपी और उत्तराखंड की सरकार ने तय किया है कि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कांवड़ यात्रा पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात पंजाब सरकार की करेंगे जो चुनाव से पहले कई मुद्दों पर घिरती हुई नजर आ रही है। पेपर लीक और लाठी चार्ज पर केंद्र सरकार को घेरने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद सवालों के घेरे में है, जहां लड़ाई अब मान के आवाज से लेकर सड़क तक देखने को मिल रही है।
22: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं की एक ही मांग है, पेपर लीक मामले में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस इस्तीफा दें।
23: आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार एकदम चुप्पी साधे हुई है, टेक्निकलिटीज के पीछे छिप रही है। और इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अभी तक उन्होंने पंजाब के अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया?
22: उधर हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लेकर पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर जांच की मांग की है।
24: मैं डिमांड करती हूँ कि भगवंत मान को ही हटाया जाए, केजरीवाल हटाए, मनीष सिसोदिया जो इधर बोल के गया है कि धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाए, हम हटा देते, तो हरजोत बैंस को हटाए ना। आज तक अपने एजुकेशन मिनिस्टर को आपने नहीं हटाया, हेल्थ मिनिस्टर को नहीं हटाया, तो आप खुद हटिए, क्योंकि आपकी सरकार को उधर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है।
22: फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की परीक्षा को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन पंजाब सरकार इसे पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला बता रही है।
25: ये चीटिंग का मामला था जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में हुआ और इमीडिएटली पंजाब सरकार ने उस पर एक्शन लिया और जो दोषी लोग थे उनके खिलाफ एक्शन लिया।
22: इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर आप बीजेपी को घेर रही थी, तो वहीं अब बरनाला में पंजाब पुलिस के लाठीचार्ज पर विपक्ष मान सरकार को घेर रहा है। अलग अलग शहरों में बंद का ऐलान किया जा रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच बेअदबी के मामले में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अकाल तख्त ने सभी सिख विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों से मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी दूरी बनाए रखने की बात कही है।
26: गुरु दुखी ते पंथ दुखी दे किसे सवाल दा जवाब ना देन, ओदे वल मुंह ना करन, ओदा मुंह ना वेखन और ओदे तो किनारा करन। वो विधानसभा करके जा रहे, ओदे करके थोड़ा जा रहे, कला मुख्यमंत्री थोड़ा सब कुछ हुंदा।
22: पंजाब में चुनाव से पहले भगवंत मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: से भी पास हुआ लोक परीक्षा संशोधन बिल। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, बख्शे नहीं जाएंगे शिक्षा माफिया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की घेरेबंदी, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस, परीक्षा बिल के दौरान असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी पुलिस की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन। असम में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 78 की मौत, सरकार का अहम ऐलान, 4 जिलों में ईएमआई पर 6 महीने की राहत। और सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा नेपाल, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 की मौत, दर्जनों घायल, करीब 6 शहरों में कर्फ्यू। संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगा।
1: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राज्यसभा में भी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। सवाल अब यह कि गृह मंत्री को संसद में घेरने में जुटा रहा विपक्ष क्या अब रणनीति बदल देगा? क्या अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि E20 और चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो जाए ताकि फायदा उत्तर प्रदेश में उठाया जा सके? और क्या गृह मंत्री को लेकर राहुल गांधी के सवाल के जवाब में बीजेपी ने जो कहा है उससे अखिलेश यादव को भी ढाल मिल गई है?
2: वंदे मातरम बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी पास हो गया, हंगामा जरूर हुआ।
3: जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहे। मेरे विचार में
2: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पेपर लीक रोकने वाला बिल पास हो रहा है।
4: सर, देयर इज अ नेशनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू रेज ऑन
2: लाइव। तो यानी बिल पास हो रहे हैं, सदन चल रहा है। सवाल सीधा सा है, क्या राहुल गांधी की रणनीति सरकार ने फेल कर दी या फिर विपक्ष के बीच मुद्दों पर अब आगे बढ़ने की राजनीति हो रही है? सीधी सी बात पहली यही कि जो राहुल गांधी बुधवार तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बताते रहे कि गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पर कोई कंफ्यूजन नहीं है।
3: कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है।
5: हाँ।
3: क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल जाएगा? हुआ है,
5: अमित शाह मस्ट गो, देयर इज नो एम्बिग्युइटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन।
2: लेकिन संसद में अमित शाह को लेकर जो रणनीति राहुल गांधी चाहते हैं उससे अलग स्टैंड लिया जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस सदन ठप नहीं करती, पेपर लीक बिल पर बहस में हिस्सा लेती है, अमित शाह का इस्तीफा खड़गे मानते हैं और तभी ऐसा बयान देते हैं जिस पर हंगामा होता है।
6: बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे के सामने हम दिखाएंगे इनके क्या है।
2: लेकिन इन सब के बीच अखिलेश की रणनीति क्या है? सवाल की वजह ये पोस्ट है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर डाला कि साइकिल की रफ्तार जोरदार है क्योंकि साइकिल E20 से आजाद है। ये पोस्ट क्या इस बात की तरफ इशारा करती है कि अखिलेश संसद में अब E20 के मुद्दे पर बढ़ना चाहते हैं? E20 के अलावा समाजवादी पार्टी संसद में अब और सत्ता और विपक्ष के बीच बहुत खींचतान की जगह उन मुद्दों पर चर्चा चाहती दिखती है जिसका वो फायदा यूपी की राजनीति में उठा सके, जैसे E20 के अलावा वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विषय पर चर्चा चाहते हैं।
5: राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा आज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ संसद के अंदर नजर आ रहा है। इस वक्त जो है मकर द्वार के सामने एक दान पात्र रख दिया गया है और इस दान पात्र के अंदर विपक्ष के सभी सांसद दान डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए कैसे जो सांसद है उनके हाथ में जो दान पात्र है उसमें कुछ अलग अलग सांसद, ये दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद है जिन्होंने हाथ में दान पात्र लिया हुआ है और स्वागत हो रहा है। जो TMC के सांसद है वो उसमें दान डालते हुए नजर आ रहे, और जैसे ही ये दान डाला जाता है वैसे ही संसद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो इस दान पात्र को छीनने लगते हैं, यानी कि एक प्रतीकात्मक विरोध है जिसमें जैसे ही दान डलेगा वैसे ही उस डब्बे को लेकर जो है जो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। और ये आरोप BJP पर लगाया जा रहा है कि आप दान लेते हैं और उसी चंदे को जो है लेकर भाग जाते हैं।
7: ये लोग चंदा चोरी की भी नहीं बात करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि बहस हो, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया है चाहे वो हमारे देश के हो चाहे NRIs हो, कितना चंदा आया, हजारों करोड़ों का चंदा आया है। आज ये लोग चंदा चोरी पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये केवल ध्यान भटकाने वाली राजनीति पे बात करना चाहते हैं।
8: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पे कार्य कर रही है, विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं, ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं, ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कारसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी।
2: दिलचस्प राजनीति है कि जब सदन में गृह मंत्री पर सवाल प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से फायरिंग को लेकर विपक्ष उठाता है तो सत्ता पक्ष इस पर बचाव में कहता है कि आदेश मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट या अधिकारी देते हैं।
9: वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है, हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है।
2: इसी बयान को आधार बनाकर अब अखिलेश यादव अयोध्या में चली गोलियों के कटघरे में BJP की तरफ से समाजवादी पार्टी को खड़ा किए जाते रहने का बचाव करते हैं। सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जब अपने पर आरोप की उंगली उठी तब ये बात समझ में आई।
0: E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सोशल मीडिया

0: पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ी के इंजन में बदलाव से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार ने माना है कि E20 का असर BS3 गाड़ियों पर हो सकता है, उसके रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं।
1: आज जो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है? गाड़ियां खराब हो रही हैं।
2: इथेनॉल पर जनता के जुड़े सवाल से आज तक ने कुछ दिन पहले सरकार को खबरदार करके पूछा था कि क्या इथेनॉल वाला पेट्रोल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है।
1: आपको लग रहा है सेफ है इथेनॉल?
2: इस पर सरकार ने दावा किया कि उसने पूरी तैयारी के साथ ये काम किया।
3: कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता।
2: सरकार ने एक बार फिर E20 यानी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का बचाव किया।
3: मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है, और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिस भी की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे, और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
2: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया है कि BS3 मानक वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं जिन्हें सर्विसिंग के दौरान बदला जा सकता है। इनसे किसी बड़ी मैकेनिकल समस्या का संकेत नहीं मिलता, मतलब इसके इस्तेमाल से इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं होगी। इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दो पहिया चार पहिया गाड़ियों पर E20 ईंधन की स्टडी की थी। जून 2021 की स्टडी में पाया गया कि पुरानी गाड़ियों की परफॉर्मेंस में कोई खास अंतर नहीं दिखा है और ना ही E20 पेट्रोल के चलने पर उसमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई।
1: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
3: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
1: हाँ।
3: क्या आपके नजरों में आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है? अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई?
1: अभी तक तो नहीं।
3: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती हैं मुझे?
2: साल 2005 से 2016 के बीच बनी गाड़ियां BS3 मानक वाली गाड़ियां हैं। माइलेज को लेकर मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसकी वजह सिर्फ ईंधन नहीं है बल्कि ये ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और गाड़ी के रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार ने बताया कि E20 का इस्तेमाल दुनिया में एक सदी से ज्यादा समय से हो रहा है जिसमें सभी बड़े देश शामिल हैं।
3: अमेरिका में इथेनॉल है,
1: है।
3: ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है,
1: हाँ।
3: स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है।
2: सरकार की दलील है कि E20 को लागू करने की तैयारी बारीकी से की गई है। पेट्रोल पंप तक पहुंचने से पहले कई राउंड की टेस्टिंग में इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम, रबर के पार्ट्स, एमिशन और फ्यूल एफिशिएंसी जैसी सभी चीजों की जांच की गई। अगर निर्माताओं को E20 की सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता तो वो इसकी वारंटी नहीं देते।
3: ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया।
2: BS3 मानक की गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं जिनके माइलेज और इंजन की हालत रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार का कहना है कि अगर ऐसी गाड़ियों के रबर पार्ट्स खराब भी होते हैं तो उन्हें आसानी से रूटीन सर्विसिंग में बदला जा सकता है।
0: 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने ही बताया कि 2800 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी भीड़ में शामिल थे। दिल्ली पुलिस का यह दावा अब और उसी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि आज तक को 20 तारीख की जो 5 CCTV फुटेज मिले हैं उसमें प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक जा पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से वहां से उन्हें हटाया जा सका। हर CCTV में दिल्ली पुलिस की लापरवाही साफ नजर आई।
4: ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रोटेस्टर यहां खड़े हैं पुलिस के बीच।
2: बीस जुलाई को क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारी संसद में कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे? अगर प्रदर्शनकारी संसद के अंदर आ जाते तो क्या होता? संसद तक कुछ

0: प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंचे। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चक्र में प्रदर्शनकारी सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए। आज तक के पास आई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने दिल्ली पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जब प्रदर्शनकारियों के इरादों का पता था, जब दिल्ली पुलिस अच्छे से जानती थी कि प्रदर्शनकारी संसद पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब भी वो खबरदार क्यों नहीं हुई। आखिर प्रदर्शनकारी संसद के गेट के करीब तक कैसे पहुंच गए। 20 तारीख को दोपहर 2 बजे तक प्रदर्शनकारी संसद के गेट तक करीब करीब पहुंच ही गए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, संसद के अंदर गाड़ियां चलती दिख रही हैं, लोगों की आवाजाही साफ नजर आ रही है। संसद भवन की दीवार के पास भीड़ खड़ी हुई देखी जा सकती है। पुलिस भी वहां मौजूद है, जिससे भीड़ की झड़प होती है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। अगर वो ऐसा नहीं करती या फिर इससे 2 गुनी 3 गुनी भीड़ अगर यहां होती तो फिर पुलिस को इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो सकता था।
1: पार्लियामेंट के गेट से बेहद करीब तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये देखे, ये अगर आप देखेंगे ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है। ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहे थे, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है, प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की गई, मजबूत बैरिकेड्स वो क्यों नहीं लगाए गए, और साथ ही साथ जब इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी थी तो इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नई दिल्ली और आसपास में कैसे इकट्ठा हो गई।
0: दिल्ली पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी, प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन करने कैसे दिया गया। अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। अब ये सीसीटीवी वीडियो देखिए, संसद के पास लाल रंग की दिख रही इमारत सेल्फी पॉइंट है, जिसकी तरफ अचानक प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते दिखे थे। यहाँ खड़े पुलिस वाले जैसे ही भीड़ को देखते हैं वो बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद करते नजर आते हैं। रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों का पहुंचना चिंताजनक है, क्योंकि यहां से संसद बहुत नजदीक है। रोजमर्रा की तरह 20 जुलाई को तब यहां ट्रैफिक चलता दिखता है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखकर आम लोग भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने वाला यहां कोई नहीं था। अगर भीड़ शांतिपूर्ण की जगह उग्र होती तो बड़े आराम से आम लोगों की गाड़ियों को निशाना बना सकती थी, क्योंकि यहां पर पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था, जो थे वो एक कोने में खड़े थे। रेल भवन के बाहर की एक और सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जिसमें पुलिस और आरएएफ के जवान देखे जा सकते हैं, जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रेल भवन से दूर करने के लिए धक्के मारते हैं। अगर भीड़ यहां भड़क जाती तो हालात बेकाबू हो सकते थे। हालांकि पुलिस ने यहां तैयारी कर रखी थी। अब सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जो संसद भवन के बेहद नजदीक बने मेट्रो स्टेशन में से एक है। यहां भी 20 तारीख को दोपहर 12:34 पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक इस मेट्रो स्टेशन की तरफ भीड़ भागती हुई आई। पुलिस को हंगामे की आशंका थी, इसलिए यहां पहले से बैरिकेडिंग की गई थी। पीसीआर वैन भी खड़ी देखी जा सकती है।
1: 5 सीसीटीवी संसद भवन के आसपास हमने हमारे पास आया है, जिससे ये पता चलता है कि संसद भवन की दीवार के बेहद करीब जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस पर इन 5 तस्वीरों को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी मजबूत तैयारी क्यों नहीं की थी, भीड़ संसद भवन के आसपास पहुंचने तक कैसे कामयाब हो गई थी। और 20 जुलाई को ऐसी भी तस्वीरें आई थी जब संसद भवन के अंदर सुरक्षा जो कर्मी थे वो अलर्ट मोड में आ गए थे, तो वो अलर्ट मोड में क्यों आए थे 20 जुलाई को जब वो तस्वीर आई थी, वो इसलिए आए थे क्योंकि ये सीसीटीवी जिसमें अगर आप देखें संसद भवन की दीवार, प्रोटेस्टर झड़प होते हुए आपको दिखाई दे रहा, संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है।
0: 20 तारीख को प्रदर्शन की ये 5 सीसीटीवी तस्वीरें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाती हैं, बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद के दरवाजे तक पहुंच गई। अगर ज्यादा लोग होते तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने में काफी दिक्कत आती, लेकिन किसी तरह प्रदर्शनकारी पीछे धकेल दिए गए और संसद में घुसने से बच गए। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। इन अपराधियों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और तकनीकी तरीकों से की गई है। अब चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि जंतर मंतर की ही तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद में भी बाहर यही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता तो क्या पता चलता।
0: दिल्ली पुलिस दावा करती है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। हत्या के आरोप से जुड़े 101 आरोपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान देखे गए, ये दावा दिल्ली पुलिस का है। हत्या के प्रयास के आरोप वाले 62 लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी भीड़ में दिल्ली पुलिस को दिखे। 284 डकैती और लूट के आरोपी, रेप केस के 61, पॉक्सो के 6 आरोपी दिल्ली पुलिस कहती है कि जंतर मंतर पर दिख रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आर्म्स एक्ट के 229 आरोपी, स्नैचिंग के 135, किडनैपिंग के 19 आरोपी, ऐसे अलग अलग कुल 2873 चेहरों को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से दिल्ली पुलिस ने पहचानने का दावा किया, जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रिकॉर्ड वाला है और वो जंतर मंतर पर पुलिस कहती है प्रदर्शन के दौरान दिखे भी। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का सीधा दावा नहीं करती कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ये 2873 लोग 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर पर किसी तरह की हिंसा या उपद्रव में शामिल थे। पुलिस कहती है कि वो इसकी जांच कर रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो तकनीक है जिसमें पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड वालों के डेटाबेस से मिलान करके अपराध के आरोपियों को भीड़ में देखती है, पहचानती है। लेकिन सवाल है कि जंतर मंतर पर क्या इस तकनीक का इस्तेमाल करके मिले डेटा से ये नैरेटिव देने की कोशिश है कि जंतर मंतर पर पहुंचने वालों या फिर 20 जुलाई के प्रदर्शन में अपराध के आरोपी भी बहुत थे। और तब एक सवाल आता है, सवाल देश की संसद से जुड़ा है, जहां संसद में लोग पूछते हैं कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बाहर लगा होता तो फिर सांसद कैसे दिखते। एडीआर का डेटा कहता है कि लोकसभा के 251 यानी करीब 46% सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर के डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि संसद के बाहर अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया जाए तो 170 सांसद यानी करीब 31% ऐसे मिलेंगे जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत दूसरे गंभीर आपराधिक केस हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अगर संसद में होने लगे तो एडीआर के डेटा के मुताबिक पता चलेगा कि 16 सांसदों पर तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का केस चल रहा है, जिनमें से 2 सांसद के खिलाफ रेप तक के मामले दर्ज हैं, 4 सांसद के खिलाफ किडनैपिंग का मामला है, तो लोकसभा के 43 सांसद के खिलाफ हेट स्पीच का केस है, राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहा है, राज्यसभा के 73 में से 36 यानी 16% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, 1 सांसद पर मर्डर का केस है, 4 सांसद पर हत्या की कोशिश और 3 पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस हैं। ये तस्वीर तब दिख सकती है जब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम देश की संसद के बाहर भी लग जाए।
2: सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस पवित्र महीने के साथ ही शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा। भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर निकल रहे हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी ने कुछ कांवड़ियों पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया है।
3: भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकल चुके हैं, तन पर भगवा, कांधे पर कांवड़ और महादेव का उद्घोष। लेकिन इस यात्रा के साथ ही शुरू हो गई है सियासत और इस सियासत की शुरुआत की है ओवैसी के दल ने। AIMIM के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांवड़ ले जा रहे भोले के भक्तों में कुछ नशेड़ी होते हैं, उनसे सरकार कैसे निपटेगी।
4: क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए, जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं?
3: आरोप सिर्फ इतने नहीं, यूपी सरकार ने तय किया है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा निकलेगी उन रास्तों पर मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की दुकानें ढकी जाएंगी। जैसे यहाँ हापुड़ में शराब की दुकान पर पर्दा डाल दिया गया है। AIMIM यहाँ भी आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी करके दुकानें बंद कराई जा रही हैं।
4: कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं उनको किसने अधिकार दिया, वो कौन होते हैं। दूसरा कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं।
3: AIMIM ने कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए तो कांग्रेस AIMIM पर टूट पड़ी।
5: अरे बेवकूफी की बातें ना करें फालतू की, MIM जब बीजेपी की दलाली कर रहे हो क्या? कोई जबान बोल रहे हो जो दूसरे लोग बोलते हैं?
3: बीजेपी भी अब हमलावर है और बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों का इलाज किया जाएगा।
6: लोग पगला गए हैं और ऐसा करके अपनी कब्र खोदने का प्रयास कर रहे
7: हैं। इस तरह की बातें पहले भी कांवड़ यात्रियों पर जो है हमने देखा, टीका टिप्पणी असदुल्लाह ओवैसी की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से होती रही है।
6: ऐसे राष्ट्र विरोधी भारतीय संस्कृति विरोधी लोग
7: जी
6: पहले से सक्रिय है, इलाज किया जाएगा।
3: और उत्तराखंड की सरकार ने तय किया है कि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कांवड़ यात्रा पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: और अब बात पंजाब सरकार की करेंगे जो चुनाव से पहले कई मुद्दों पर घिरती हुई नजर आ रही है। पेपर लीक और लाठी चार्ज पर केंद्र सरकार को घेरने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद सवालों के घेरे में है, जहां लड़ाई अब मान के आवाज से लेकर सड़क तक देखने को मिल रही है।
8: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं की एक ही मांग है, पेपर लीक मामले में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस इस्तीफा दें।
9: आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार एकदम चुप्पी साधे हुई है, टेक्निकलिटीज के पीछे छिप रही है, और इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ अभी तक उन्होंने पंजाब के अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया।
8: उधर हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लेकर पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर जांच की मांग की है।
10: मैं डिमांड करती हूँ कि भगवंत मान को ही हटाया जाए, केजरीवाल हटाए, मनीष सिसोदिया जो इधर बोल के गया है कि धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाए, केजरीवाल हटाए, मनीष सिसोदिया जो इधर बोल के गया है कि धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाए, हम हटा देते तो हरजोत बैंस को हटाए ना। आज तक अपने एजुकेशन मिनिस्टर को आपने नहीं हटाया,
11: नहीं
10: हेल्थ मिनिस्टर को नहीं हटाया, तो आप खुद हटिए क्योंकि आपकी सरकार को उधर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है।
8: फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की परीक्षा को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन पंजाब सरकार इसे पेपर लीक नहीं।
12: पंजाब सरकार ने उस पे एक्शन लिया और जो दोषी लोग थे
8: इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर आप बीजेपी को घेर रही थी, तो वहीं अब बरनाला में पंजाब पुलिस के लाठीचार्ज पर विपक्ष मान सरकार को घेर रहा है। अलग अलग शहरों में बंद का ऐलान किया जा रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच बेअदबी के मामले में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अकाल तख्त ने सभी सिख विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों से मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी दूरी बनाए रखने की बात कही है।
13: गुरु दुखी ते पंथ दुखी दे किसे सवाल दा जवाब ना देन, ओदे वल मुंह ना करन, ओदा मुंह ना वेखन और ओदे तो किनारा करन। वो विधान सभा करके जा रहे, ओदे करके थोड़ा जा रहे, कला मुख्यमंत्री थोड़ा सब कुछ हुंदा।
8: पंजाब में चुनाव से पहले भगवंत मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: से भी पास हुआ लोक परीक्षा संशोधन बिल। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, बख्शे नहीं जाएंगे शिक्षा माफिया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की घेरेबंदी, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस, परीक्षा बिल के दौरान असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी पुलिस की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन। असम में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 78 की मौत, सरकार का अहम ऐलान, 4 जिलों में ईएमआई पर 6 महीने की राहत। और सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा नेपाल, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 की मौत, दर्जनों घायल, करीब 6 शहरों में कर्फ्यू। संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगा।
1: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है, बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राज्यसभा में भी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। सवाल अब यह कि गृह मंत्री को संसद में घेरने में जुटा रहा विपक्ष क्या अब रणनीति बदल देगा? क्या अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि E20 और चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो जाए ताकि फायदा उत्तर प्रदेश में उठाया जा सके? और क्या गृह मंत्री को लेकर राहुल गांधी के सवाल के जवाब में बीजेपी ने जो कहा है उससे अखिलेश यादव को भी ढाल मिल गई है?
2: वंदे मातरम बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी पास हो गया, हंगामा जरूर हुआ।
3: जो सदस्य इसके पक्ष में वो हां कहे, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहे, मेरे विचार में।
2: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पेपर लीक रोकने वाला बिल पास हो रहा है।
4: सर, देयर इज अ नेशनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू रेज ऑन
2: लाइव। तो यानी बिल पास हो रहे हैं, सदन चल रहा है। सवाल सीधा सा है, क्या राहुल गांधी की रणनीति सरकार ने फेल कर दी या फिर विपक्ष के बीच मुद्दों पर अब आगे बढ़ने की राजनीति हो रही है? सीधी सी बात पहली यही कि जो राहुल गांधी बुधवार तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बताते रहे कि गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग पर कोई कंफ्यूजन नहीं है।
5: कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है।
2: हाँ।
5: क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल जाएगा? हुआ है
6: अमित शाह मस्ट गो, देयर इज नो एम्बिग्युइटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन।
7: लेकिन संसद में अमित शाह को लेकर जो रणनीति राहुल गांधी चाहते हैं उससे अलग स्टैंड लिया जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस सदन ठप नहीं करती, पेपर लीक बिल पर बहस में हिस्सा लेती है, अमित शाह का इस्तीफा खड़गे मानते हैं और तभी ऐसा बयान देते हैं जिस पर हंगामा होता है।
8: बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके बोल में क्या है।
7: लेकिन इन सब के बीच अखिलेश की रणनीति क्या है? सवाल की वजह ये पोस्ट है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर डाला कि साइकिल की रफ्तार जोरदार है क्योंकि साइकिल E20 से आजाद है। ये पोस्ट क्या इस बात की तरफ इशारा करती है कि अखिलेश संसद में अब E20 के मुद्दे पर बढ़ना चाहते हैं? E20 के अलावा समाजवादी पार्टी संसद में अब और सत्ता और विपक्ष के बीच बहुत खींचतान की जगह उन मुद्दों पर चर्चा चाहती दिखती है जिसका वो फायदा यूपी की राजनीति में उठा सके, जैसे E20 के अलावा वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विषय पर चर्चा चाहते हैं।
9: राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा आज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ संसद के अंदर नजर आ रहा है। इस वक्त जो है मकर द्वार के सामने एक दान पात्र रख दिया गया है और इस दान पात्र के अंदर विपक्ष के सभी सांसद दान डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए कैसे जो सांसद है उनके हाथ में जो दान पात्र है उसमें कुछ अलग अलग सांसद, ये दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद है जिन्होंने हाथ में दान पात्र लिया हुआ है और स्वागत हो रहा है। जो TMC के सांसद है वो उसमें दान डालते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे ही ये दान डाला जाता है वैसे ही संसद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो इस दान पात्र को छीनने लगते हैं, यानी कि एक प्रतीकात्मक विरोध है जिसमें जैसे ही दान डलेगा वैसे ही उस डब्बे को लेकर जो है जो वो लोग यहां से चले जाएंगे और ये आरोप BJP पर लगाया जा रहा है कि आप दान लेते हैं और उसी चंदे को जो है लेकर भाग जाते हैं।
10: ये लोग चंदा चोरी की भी नहीं बात करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि बहस हो क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया है चाहे वो हमारे देश के हो चाहे NRIs हो, कितना चंदा आया, हजारों करोड़ों का चंदा आया है। आज ये लोग चंदा चोरी पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये केवल ध्यान भटकाने वाली राजनीति पे बात करना चाहते हैं।
11: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पे कार्य कर रही है, विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं, ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं, ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कारसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी।
7: दिलचस्प राजनीति है कि जब सदन में गृहमंत्री पर सवाल प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से फायरिंग को लेकर विपक्ष उठाता है तो सत्ता पक्ष इस पर बचाव में कहता है कि आदेश मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट या अधिकारी देते हैं।
12: वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है, हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है।
7: इसी बयान को आधार बनाकर अब अखिलेश यादव अयोध्या में चली गोलियों के कटघरे में BJP की तरफ से समाजवादी पार्टी को खड़ा किए जाते रहने का बचाव करते हैं। सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जब अपने पर आरोप की उंगली उठी तब ये बात समझ में आई।
0: E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ी के इंजन में बदलाव से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार ने माना है कि E20 का असर BS3 गाड़ियों पर हो सकता है, उसके रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं।
13: आज जो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है? गाड़ियां खराब हो रही हैं।
14: इथेनॉल पर जनता के जुड़े सवाल से आज तक ने कुछ दिन पहले सरकार को खबरदार करके पूछा था कि क्या इथेनॉल वाला पेट्रोल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है।
13: आपको लग रहा है सेफ है इथेनॉल?
14: इस पर सरकार ने दावा किया कि उसने पूरी तैयारी के साथ ये काम किया।
15: कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया और मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता।
14: सरकार ने एक बार फिर E20 यानी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का बचाव किया।
15: मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है, और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिस भी की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे, और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
14: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया है कि BS3 मानक वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, जिन्हें सर्विसिंग के दौरान बदला जा सकता है। इनसे किसी बड़ी मैकेनिकल समस्या का संकेत नहीं मिलता, मतलब इसके इस्तेमाल से इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं होगी। इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दो पहिया चार पहिया गाड़ियों पर E20 ईंधन की स्टडी की थी। जून 2021 की स्टडी में पाया गया कि पुरानी गाड़ियों की परफॉर्मेंस में कोई खास अंतर नहीं दिखा है और न ही E20 पेट्रोल के चलने पर उसमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई।
13: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
15: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
13: हाँ।
15: क्या आपके नजरों में आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है? अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई?
13: अभी तक तो नहीं।
15: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती हैं मुझे?
14: साल 2005 से 2016 के बीच बनी गाड़ियां BS3 मानक वाली गाड़ियां हैं। माइलेज को लेकर मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसकी वजह सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि ये ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और गाड़ी के रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार ने बताया कि E20 का इस्तेमाल दुनिया में एक सदी से ज्यादा समय से हो रहा है, जिसमें सभी बड़े देश शामिल हैं।
15: अमेरिका में इथेनॉल है,
13: हाँ।
15: ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है,
13: हाँ।
15: स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है।
14: सरकार की दलील है कि E20 को लागू करने की तैयारी बारीकी से की गई है। पेट्रोल पंप तक पहुंचने से पहले कई राउंड की टेस्टिंग में इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम, रबर के पार्ट्स, एमिशन और फ्यूल एफिशिएंसी जैसी सभी चीजों की जांच की गई। अगर निर्माताओं को E20 की सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता तो वो इसकी वारंटी नहीं देते।
15: ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया।
14: BS3 मानक की गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिनके माइलेज और इंजन की हालत रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार का कहना है कि अगर ऐसी गाड़ियों के रबर पार्ट्स खराब भी होते हैं तो उन्हें आसानी से रूटीन सर्विसिंग में बदला जा सकता है।
0: 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने ही बताया कि 2800 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी भीड़ में शामिल थे। दिल्ली पुलिस का यह दावा अब और उसी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि आज तक को 20 तारीख की जो 5 CCTV फुटेज मिले हैं उसमें प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक जा पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से वहां से उन्हें हटाया जा सका। हर CCTV में दिल्ली पुलिस की लापरवाही साफ नजर आई।
16: ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रोटेस्टर यहां खड़े हैं पुलिस के बीच।
14: बीस जुलाई को क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारी संसद में कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे? अगर प्रदर्शनकारी संसद के अंदर आ जाते तो क्या होता?
7: संसद तक कुछ प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंचे? दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चक्र में प्रदर्शनकारी सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए? आज तक के पास आई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने दिल्ली पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जब प्रदर्शनकारियों के इरादों का पता था, जब दिल्ली पुलिस अच्छे से जानती थी कि प्रदर्शनकारी संसद पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब भी वो खबरदार क्यों नहीं हुई? आखिर प्रदर्शनकारी संसद के गेट के करीब तक कैसे पहुंच गए? 20 तारीख को दोपहर 2 बजे तक प्रदर्शनकारी संसद के गेट तक करीब करीब पहुंच ही गए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, संसद के अंदर गाड़ियां चलती दिख रही हैं, लोगों की आवाजाही साफ नजर आ रही है। संसद भवन की दीवार के पास भीड़ खड़ी हुई देखी जा सकती है। पुलिस भी वहां मौजूद है, जिससे भीड़ की झड़प होती है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। अगर वो ऐसा नहीं करती या फिर इससे 2 गुनी 3 गुनी भीड़ अगर यहां होती तो फिर पुलिस को इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो सकता था।
16: पार्लियामेंट के गेट से बेहद करीब तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है। ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहे थे, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है, प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की गई, मजबूत बैरिकेड्स वो क्यों नहीं लगाए गए, और साथ ही साथ जब इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी थी तो इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नई दिल्ली और आसपास में कैसे इकट्ठा हो गई।
7: दिल्ली पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी? प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन करने कैसे दिया गया? अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अब ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। संसद के पास लाल रंग की दिख रही इमारत सेल्फी पॉइंट है, जिसकी तरफ अचानक प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते दिखे थे। यहाँ खड़े पुलिस वाले जैसे ही भीड़ को देखते हैं, वो बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद करते नजर आते हैं। रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों का पहुंचना चिंताजनक है, क्योंकि यहां से संसद बहुत नजदीक है। रोजमर्रा की तरह 20 जुलाई को तब यहां ट्रैफिक चलता दिखता है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखकर आम लोग भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने वाला यहां कोई नहीं था। अगर भीड़ शांतिपूर्ण की जगह उग्र होती तो बड़े आराम से आम लोगों की गाड़ियों को निशाना बना सकती थी, क्योंकि यहां पर पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था, जो थे वो एक कोने में खड़े थे। रेल भवन के बाहर की एक और सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जिसमें पुलिस और आरएएफ के जवान देखे जा सकते हैं, जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रेल भवन से दूर करने के लिए धक्के मारते हैं। अगर भीड़ यहां भड़क जाती तो हालात बेकाबू हो सकते थे। हालांकि पुलिस ने यहां तैयारी कर रखी थी। अब सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जो संसद भवन के बेहद नजदीक बने मेट्रो स्टेशन में से एक है। यहां भी 20 तारीख को दोपहर 12:34 पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक इस मेट्रो स्टेशन की तरफ भीड़ भागती हुई आई। पुलिस को हंगामे की आशंका थी, इसलिए यहां पहले से बैरिकेडिंग की गई थी। पीसीआर वैन भी खड़ी देखी जा सकती है।
16: 5 सीसीटीवी संसद भवन के आसपास हमने हमारे पास आया है, जिससे ये पता चलता है कि संसद भवन की दीवार के बेहद करीब जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस पर इन तस्वीर इन 5 तस्वीरों को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी मजबूत तैयारी क्यों नहीं की थी, भीड़ संसद भवन के आसपास पहुंचने तक कैसे कामयाब हो गई थी, और 20 जुलाई को ऐसी भी तस्वीरें आई थी जब संसद भवन के अंदर सुरक्षा जो कर्मी थे वो अलर्ट मोड में आ गए थे। तो वो अलर्ट मोड में क्यों आए थे 20 जुलाई को जब वो तस्वीर आई थी? वो इसलिए आए थे क्योंकि ये सीसीटीवी जिसमें अगर आप देखें संसद भवन की दीवार, प्रोटेस्टर झड़प होते हुए आपको दिखाई दे रहा, संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है।
7: 20 तारीख को प्रदर्शन की ये 5 सीसीटीवी तस्वीरें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाती हैं, बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद के दरवाजे तक पहुंच गई। अगर ज्यादा लोग होते तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने में काफी दिक्कत आती, लेकिन किसी तरह प्रदर्शनकारी पीछे धकेल दिए गए और संसद में घुसने से बच गए।
14: अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। इन अपराधियों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और तकनीकी तरीकों से की गई है। अब चर्चाएं इस बात की हो रही है कि जंतर मंतर की ही तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद में भी बाहर यही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता तो क्या पता चलता।
14: दिल्ली पुलिस दावा करती है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। हत्या के आरोप से जुड़े 101 आरोपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान देखे गए, ये दावा दिल्ली पुलिस का है। हत्या के प्रयास के आरोप वाले 62 लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी भीड़ में दिल्ली पुलिस को दिखे। 284 डकैती और लूट के आरोपी, रेप केस के 61, पॉक्सो के 6 आरोपी दिल्ली पुलिस कहती है कि जंतर मंतर पर दिख रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आर्म्स एक्ट के 229 आरोपी, स्नैचिंग के 135, किडनैपिंग के 19 आरोपी, ऐसे अलग अलग कुल 2873 चेहरों को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से दिल्ली पुलिस ने पहचानने का दावा किया जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रिकॉर्ड वाला है और वो जंतर मंतर पर पुलिस कहती है प्रदर्शन के दौरान दिखे भी। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का सीधा दावा नहीं करती कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ये 2873 लोग 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर पर किसी तरह की हिंसा या उपद्रव में शामिल थे। पुलिस कहती है कि वो इसकी जांच कर रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो तकनीक है जिसमें पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड वालों के डेटाबेस से मिलान करके अपराध के आरोपियों को भीड़ में देखती है, पहचानती है। लेकिन सवाल है कि जंतर मंतर पर क्या इस तकनीक का इस्तेमाल करके मिले डेटा से ये नैरेटिव देने की कोशिश है कि जंतर मंतर पर पहुंचने वालों या फिर 20 जुलाई के प्रदर्शन में अपराध के आरोपी भी बहुत थे। और तब एक सवाल आता है, सवाल देश की संसद से जुड़ा है जहां संसद में लोग पूछते हैं कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बाहर लगा होता तो फिर सांसद कैसे दिखते। एडीआर का डेटा कहता है कि लोकसभा के 251 यानी करीब 46% सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर के डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि संसद के बाहर अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया जाए तो 170 सांसद यानी करीब 31% ऐसे मिलेंगे जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत दूसरे गंभीर आपराधिक केस हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अगर संसद में होने लगे तो एडीआर के डेटा के मुताबिक पता चलेगा कि 16 सांसदों पर तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का केस चल रहा है जिनमें से 2 सांसद के खिलाफ रेप तक के मामले दर्ज हैं, 4 सांसद के खिलाफ किडनैपिंग का मामला है तो लोकसभा के 43 सांसद के खिलाफ हेट स्पीच का केस है। राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहा है। राज्यसभा के 73 में से 36 यानी 16% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। 1 सांसद पर मर्डर का केस है, 4 सांसद पर हत्या की कोशिश और 3 पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस हैं। ये तस्वीर तब दिख सकती है जब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम देश की संसद के बाहर भी लग जाए।
0: सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस पवित्र महीने के साथ ही शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा। भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर निकल रहे हैं लेकिन कांवड़ यात्रा के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी ने कुछ कांवड़ियों पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया है।
17: भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकल चुके हैं, तन पर भगवा, कांधे पर कांवड़ और महादेव का उद्घोष। लेकिन इस यात्रा के साथ ही शुरू हो गई है सियासत और इस सियासत की शुरुआत की है ओवैसी के दल ने। AIMIM के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांवड़ ले जा रहे भोले के भक्तों में कुछ नशेड़ी होते हैं, उनसे सरकार कैसे निपटेगी।
18: क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं?
17: आरोप सिर्फ इतने नहीं, यूपी सरकार ने तय किया है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा निकलेगी उन रास्तों पर मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की दुकानें ढकी जाएंगी। जैसे यहाँ हापुड़ में शराब की दुकान पर पर्दा डाल दिया गया है। AIMIM यहाँ भी आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी करके दुकानें बंद कराई जा रही हैं।
18: कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं उनको किसने अधिकार दिया, वो कौन होते हैं। दूसरा कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं।
17: AIMIM ने कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए तो कांग्रेस AIMIM पर टूट पड़ी।
19: अरे बेवकूफी की बातें ना करें फालतू की। AIMIM जब बीजेपी की दलाली कर रहे हो क्या, कोई जबान बोल रहे हो जो दूसरे लोग बोलते हैं?
17: बीजेपी भी अब हमलावर है और बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों का इलाज किया जाएगा।
20: लोग पगला गए हैं और ऐसा करके अपनी कब्र खोदने का प्रयास कर रहे
21: हैं। इस तरह की बातें पहले भी कांवड़ यात्रियों पर जो है हमने देखा, टीका टिप्पणी असदुल ओवैसी की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से होती रही है।
20: ऐसे राष्ट्र विरोधी भारतीय संसदीय विरोधी लोग
21: जी
20: पहले से सक्रिय है, इलाज किया जाएगा।
17: यूपी और उत्तराखंड की सरकार ने तय किया है कि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कांवड़ यात्रा पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात पंजाब सरकार की करेंगे जो चुनाव से पहले कई मुद्दों पर घिरती हुई नजर आ रही है। पेपर लीक और लाठी चार्ज पर केंद्र सरकार को घेरने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद सवालों के घेरे में है, जहां लड़ाई अब मान के आवाज से लेकर सड़क तक देखने को मिल रही है।
22: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं की एक ही मांग है, पेपर लीक मामले में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत पैंस इस्तीफा दें।
23: आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार एकदम चुप्पी साधे हुई है, टेक्निकलिटीज के पीछे छिप रही है। और इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अभी तक उन्होंने पंजाब के अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया?
22: उधर हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लेकर पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर जांच की मांग की है।
24: मैं डिमांड करती हूँ कि भगवंत मान को ही हटाया जाए, केजरीवाल हटाए, मनीष सिसोदिया जो इधर बोल के गया है कि धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाए, हम हटा देते, तो हरजोत पैंस को हटाए ना। आज तक अपने एजुकेशन मिनिस्टर को आपने नहीं हटाया, हेल्थ मिनिस्टर को नहीं हटाया, तो आप खुद हटिए, क्योंकि आपकी सरकार को उधर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है।
22: फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की परीक्षा को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन पंजाब सरकार इसे पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला बता रही है।
25: ये चीटिंग का मामला था जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में हुआ और इमीडिएटली पंजाब सरकार ने उस पर एक्शन लिया और जो दोषी लोग थे उनके खिलाफ एक्शन लिया।
22: इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर आप बीजेपी को घेर रही थी, तो वहीं अब बरनाला में पंजाब पुलिस के लाठीचार्ज पर विपक्ष मान सरकार को घेर रहा है। अलग अलग शहरों में बंद का ऐलान किया जा रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच बेअदबी के मामले में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अकाल तख्त ने सभी सिख विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों से मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी दूरी बनाए रखने की बात कही है।
26: गुरु दुखी ते पंथ दुखी दे किसे सवाल दा जवाब ना देन, ओदे वल मुंह ना करन, ओदा मुंह ना वेखन और ओदे तो किनारा करन। वो विधानसभा करके जा रहे, ओदे करके थोड़ा जा रहे, कला मुख्यमंत्री थोड़ा सब कुछ हुंदा।
22: पंजाब में चुनाव से पहले भगवंत मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
27: When your cat is acting weird-er, or your dog is being loud-er, your turtle moves slow-er.
28: Hello, Ted.
27: Your cat seems thirsty-er.
29: Whoa, slow down, buddy.
27: Or your puppy is acting clumsy-er. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
28: Veg ER for Pets, this is Kate.
27: Veg, the better, kinder ER for Pets.

0: से भी पास हुआ लोक परीक्षा संशोधन बिल। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, बख्शे नहीं जाएंगे शिक्षा माफिया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की घेरेबंदी, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस, परीक्षा बिल के दौरान असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी पुलिस की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन। असम में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 78 की मौत, सरकार का अहम ऐलान, 4 जिलों में ईएमआई पर 6 महीने की राहत। और सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा नेपाल, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 की मौत, दर्जनों घायल, करीब 6 शहरों में कर्फ्यू। संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगा।
1: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राज्यसभा में भी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। सवाल अभी है कि गृह मंत्री को संसद में घेरने में जुटा रहा विपक्ष क्या अब रणनीति बदल देगा? क्या अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि E20 और चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो जाए ताकि फायदा उत्तर प्रदेश में उठाया जा सके? और क्या गृह मंत्री को लेकर राहुल गांधी के सवाल के जवाब में बीजेपी ने जो कहा है उससे अखिलेश यादव को भी ढाल मिल गई है?
2: वंदे मातरम बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी पास हो गया, हंगामा जरूर हुआ।
3: जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहे। मेरे विचार में
2: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पेपर लीक रोकने वाला बिल पास हो रहा है।
4: सर, देयर इज अ नेशनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू रेज ऑन लाइव।
2: तो यानी बिल पास हो रहे हैं, सदन चल रहा है। सवाल सीधा सा है, क्या राहुल गांधी की रणनीति सरकार ने फेल कर दी या फिर विपक्ष के बीच मुद्दों पर अब आगे बढ़ने की राजनीति हो रही है? सीधी सी बात पहली यही कि जो राहुल गांधी बुधवार तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बताते रहे कि गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पर कोई कंफ्यूजन नहीं है।
3: कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है।
5: हाँ।
3: क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल जाएगा? हुआ है
5: अमित शाह मस्ट गो, देयर इज नो एम्बिग्युइटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन।
6: लेकिन संसद में अमित शाह को लेकर जो रणनीति राहुल गांधी चाहते हैं उससे अलग स्टैंड लिया जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस सदन ठप नहीं करती, पेपर लीक बिल पर बहस में हिस्सा लेती है, अमित शाह का इस्तीफा खड़गे मानते हैं और तभी ऐसा बयान देते हैं जिस पर हंगामा होता है।
7: बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे के सामने, जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके बारे में क्या है।
6: लेकिन इन सब के बीच अखिलेश की रणनीति क्या है? सवाल की वजह ये पोस्ट है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर डाला कि साइकिल की रफ्तार जोरदार है क्योंकि साइकिल E20 से आजाद है। ये पोस्ट क्या इस बात की तरफ इशारा करती है कि अखिलेश संसद में अब E20 के मुद्दे पर बढ़ना चाहते हैं? E20 के अलावा समाजवादी पार्टी संसद में अब और सत्ता और विपक्ष के बीच बहुत खींचतान की जगह उन मुद्दों पर चर्चा चाहती दिखती है जिसका वो फायदा यूपी की राजनीति में उठा सके, जैसे E20 के अलावा वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विषय पर चर्चा चाहते हैं।
8: राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा आज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ संसद के अंदर नजर आ रहा है। इस वक्त जो है मकर द्वार के सामने एक दान पात्र रख दिया गया है और इस दान पात्र के अंदर विपक्ष के सभी सांसद दान डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए कैसे जो सांसद है उनके हाथ में जो दान पात्र है उसमें कुछ अलग अलग सांसद, ये दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद है जिन्होंने हाथ में दान पात्र लिया हुआ है और स्वागत हो रहा है। जो TMC के सांसद है वो उसमें दान डालते हुए नजर आ रहे, और जैसे ही ये दान डाला जाता है वैसे ही संसद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो इस दान पात्र को छीनने लगते हैं, यानी कि एक प्रतीकात्मक विरोध है जिसमें जैसे ही दान डलेगा वैसे ही उस डब्बे को लेकर जो है जो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। और ये आरोप BJP पर लगाया जा रहा है कि आप दान लेते हैं और उसी चंदे को जो है लेकर भाग जाते हैं।
9: ये लोग चंदा चोरी की भी नहीं बात करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि बहस हो क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया है चाहे वो हमारे देश के हो चाहे NRIs हो, कितना चंदा आया, हजारों करोड़ों का चंदा आया है। आज ये लोग चंदा चोरी पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये केवल ध्यान भटकाने वाली राजनीति पे बात करना चाहते हैं।
10: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पे कार्य कर रही है, विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं, ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं, ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कारसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी।
6: दिलचस्प राजनीति है कि जब सदन में गृह मंत्री पर सवाल प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से फायरिंग को लेकर विपक्ष उठाता है तो सत्ता पक्ष इस पर बचाव में कहता है कि आदेश मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट या अधिकारी देते हैं।
11: वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है, हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है।
6: इसी बयान को आधार बनाकर अब अखिलेश यादव अयोध्या में चली गोलियों के कटघरे में BJP की तरफ से समाजवादी पार्टी को खड़ा किए जाते रहने का बचाव करते हैं। सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जब अपने पर आरोप की उंगली उठी तब ये बात समझ में आई।
0: E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ी के इंजन में बदलाव से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार ने माना है कि E20 का असर BS3 गाड़ियों पर हो सकता है, उसके रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं।
12: आज जो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है?

0: मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है। और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिसकी की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया है कि BS3 मानक वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं जिन्हें सर्विसिंग के दौरान बदला जा सकता है। इनसे किसी बड़ी मैकेनिकल समस्या का संकेत नहीं मिलता, मतलब इसके इस्तेमाल से इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं होगी। इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दो पहिया चार पहिया गाड़ियों पर E20 ईंधन की स्टडी की थी। जून 2021 की स्टडी में पाया गया कि पुरानी गाड़ियों की परफॉर्मेंस में कोई खास अंतर नहीं दिखा है और न ही E20 पेट्रोल के चलने पर उसमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई।
2: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
0: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
2: हाँ।
0: क्या आपके नजरों में आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है? अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई?
2: अभी तक तो नहीं।
0: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती हैं मुझे?
1: साल 2005 से 2016 के बीच बनी गाड़ियां BS3 मानक वाली गाड़ियां हैं। माइलेज को लेकर मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसकी वजह सिर्फ ईंधन नहीं है बल्कि ये ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और गाड़ी के रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार ने बताया कि E20 का इस्तेमाल दुनिया में एक सदी से ज्यादा समय से हो रहा है जिसमें सभी बड़े देश शामिल हैं।
0: अमेरिका में इथेनॉल है,
2: हाँ।
0: ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है,
2: हाँ।
0: स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है।
1: सरकार की दलील है कि E20 को लागू करने की तैयारी बारीकी से की गई है। पेट्रोल पंप तक पहुंचने से पहले कई राउंड की टेस्टिंग में इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम, रबर के पार्ट्स, एमिशन और फ्यूल एफिशिएंसी जैसी सभी चीजों की जांच की गई। अगर निर्माताओं को E20 की सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता तो वो इसकी वारंटी नहीं देते।
0: ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटा के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा महिंद्र किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया।
1: BS3 मानक की गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं जिनके माइलेज और इंजन की हालत रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार का कहना है कि अगर ऐसी गाड़ियों के रबर पार्ट्स खराब भी होते हैं तो उन्हें आसानी से रूटीन सर्विसिंग में बदला जा सकता है।
3: 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया कि 2800 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी भीड़ में शामिल थे। दिल्ली पुलिस का यह दावा अब और उसी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि आज तक को 20 तारीख की जो 5 CCTV फुटेज मिले हैं उसमें प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक जा पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से वहां से उन्हें हटाया जा सका। हर CCTV में दिल्ली पुलिस की लापरवाही साफ नजर आई।
4: ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रोटेस्टर यहां खड़े हैं पुलिस के बीच।
1: बीस जुलाई को क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारी संसद में कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे? अगर प्रदर्शनकारी संसद के अंदर आ जाते तो क्या होता? संसद तक कुछ प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंचे? दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चक्र में प्रदर्शनकारी सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए? आज तक के पास आई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने दिल्ली पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जब प्रदर्शनकारियों के इरादों का पता था, जब दिल्ली पुलिस अच्छे से जानती थी कि प्रदर्शनकारी संसद पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब भी वो खबरदार क्यों नहीं हुई? आखिर प्रदर्शनकारी संसद के गेट के करीब तक कैसे पहुंच गए? 20 तारीख को दोपहर 2 बजे तक प्रदर्शनकारी संसद के गेट तक करीब करीब पहुंच ही गए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं संसद के अंदर गाड़ियां चलती दिख रही हैं, लोगों की आवाजाही साफ नजर आ रही है।

0: संसद भवन की दीवार के पास भीड़ खड़ी हुई देखी जा सकती है। पुलिस भी वहां मौजूद है, जिससे भीड़ की झड़प होती है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। अगर वो ऐसा नहीं करती या फिर इससे दोगुनी तीन गुनी भीड़ अगर यहां होती तो फिर पुलिस को इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो सकता था।
1: पार्लियामेंट के गेट से बेहद करीब तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है। ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहे थे, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है, प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की गई, मजबूत बैरिकेड्स वो क्यों नहीं लगाए गए, और साथ ही साथ जब इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी थी तो इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नई दिल्ली और आसपास में कैसे इकट्ठा हो गई।
0: दिल्ली पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी? प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन करने कैसे दिया गया? अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अब ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। संसद के पास लाल रंग की दिख रही इमारत सेल्फी पॉइंट है, जिसकी तरफ अचानक प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते दिखे थे। यहाँ खड़े पुलिस वाले जैसे ही भीड़ को देखते हैं वो बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद करते नजर आते हैं। रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों का पहुंचना चिंताजनक है, क्योंकि यहां से संसद बहुत नजदीक है। रोजमर्रा की तरह 20 जुलाई को तब यहां ट्रैफिक चलता दिखता है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखकर आम लोग भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने वाला यहां कोई नहीं था। अगर भीड़ शांतिपूर्ण की जगह उग्र होती तो बड़े आराम से आम लोगों की गाड़ियों को निशाना बना सकती थी, क्योंकि यहां पर पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था, जो थे वो एक कोने में खड़े थे। रेल भवन के बाहर की एक और सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जिसमें पुलिस और आरएएफ के जवान देखे जा सकते हैं, जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रेल भवन से दूर करने के लिए धक्के मारते हैं। अगर भीड़ यहां भड़क जाती तो हालात बेकाबू हो सकते थे। हालांकि पुलिस ने यहां तैयारी कर रखी थी। अब सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जो संसद भवन के बेहद नजदीक बने मेट्रो स्टेशन में से एक है। यहां भी 20 तारीख को दोपहर 12:34 पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक इस मेट्रो स्टेशन की तरफ भीड़ भागती हुई आई। पुलिस को हंगामे की आशंका थी, इसलिए यहां पहले से बैरिकेडिंग की गई थी। पीसीआर वैन भी खड़ी देखी जा सकती है।
1: 5 सीसीटीवी संसद भवन के आसपास हमने हमारे पास आया है, जिससे ये पता चलता है कि संसद भवन की दीवार के बेहद करीब जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस पर इन 5 तस्वीरों को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी मजबूत तैयारी क्यों नहीं की थी, भीड़ संसद भवन के आसपास पहुंचने तक कैसे कामयाब हो गई थी, और 20 जुलाई को ऐसी भी तस्वीरें आई थी जब संसद भवन के अंदर सुरक्षा जो कर्मी थे वो अलर्ट मोड में आ गए थे। तो वो अलर्ट मोड में क्यों आए थे 20 जुलाई को जब वो तस्वीर आई थी? वो इसलिए आए थे क्योंकि ये सीसीटीवी जिसमें अगर आप देखें संसद भवन की दीवार, प्रोटेस्टर झड़प होते हुए आपको दिखाई दे रहा, संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है।
0: 20 तारीख को प्रदर्शन की ये 5 सीसीटीवी तस्वीरें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाती हैं, बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद के दरवाजे तक पहुंच गई। अगर ज्यादा लोग होते तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने में काफी दिक्कत आती, लेकिन किसी तरह प्रदर्शनकारी पीछे धकेल दिए गए और संसद में घुसने से बच गए। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। इन अपराधियों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और तकनीकी तरीकों से की गई है। अब चर्चाएं इस बात की हो रही है कि जंतर मंतर की ही तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद में भी बाहर यही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता तो क्या पता चलता।
0: दिल्ली पुलिस दावा करती है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। हत्या के आरोप से जुड़े 101 आरोपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान देखे गए, ये दावा दिल्ली पुलिस का है। हत्या के प्रयास के आरोप वाले 62 लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी भीड़ में दिल्ली पुलिस को दिखे। 284 डकैती और लूट के आरोपी, रेप केस के 61, पॉक्सो के 6 आरोपी दिल्ली पुलिस कहती है कि जंतर मंतर पर दिख रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आर्म्स एक्ट के 229 आरोपी, स्नैचिंग के 135, किडनैपिंग के 19 आरोपी, ऐसे अलग अलग कुल 2873 चेहरों को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से दिल्ली पुलिस ने पहचानने का दावा किया जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रिकॉर्ड वाला है और वो जंतर मंतर पर पुलिस कहती है प्रदर्शन के दौरान दिखे भी। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का सीधा दावा नहीं करती कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ये 2873 लोग 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर पर किसी तरह की हिंसा या उपद्रव में शामिल थे। पुलिस कहती है कि वो इसकी जांच कर रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो तकनीक है जिसमें पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड वालों के डेटाबेस से मिलान करके अपराध के आरोपियों को भीड़ में देखती है, पहचानती है। लेकिन सवाल है कि जंतर मंतर पर क्या इस तकनीक का इस्तेमाल करके मिले डेटा से ये नैरेटिव देने की कोशिश है कि जंतर मंतर पर पहुंचने वालों या फिर 20 जुलाई के प्रदर्शन में अपराध के आरोपी भी बहुत थे। और तब एक सवाल आता है, सवाल देश की संसद से जुड़ा है जहां संसद में लोग पूछते हैं कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बाहर लगा होता तो फिर सांसद कैसे दिखते। एडीआर का डेटा कहता है कि लोकसभा के 251 यानी करीब 46% सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर के डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि संसद के बाहर अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया जाए तो 170 सांसद यानी करीब 31% ऐसे मिलेंगे जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत दूसरे गंभीर आपराधिक केस हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अगर संसद में होने लगे तो एडीआर के डेटा के मुताबिक पता चलेगा कि 16 सांसदों पर तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का केस चल रहा है जिनमें से 2 सांसद के खिलाफ रेप तक के मामले दर्ज हैं, 4 सांसद के खिलाफ किडनैपिंग का मामला है तो लोकसभा के 43 सांसद के खिलाफ हेट स्पीच का केस है। राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहा है। राज्यसभा के 73 में से 36 यानी 16% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। 1 सांसद पर मर्डर का केस है, 4 सांसद पर हत्या की कोशिश और 3 पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस हैं। ये तस्वीर तब दिख सकती है जब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम देश की संसद के बाहर भी लग जाए।
2: सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस पवित्र महीने के साथ ही शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा। भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर निकल रहे हैं लेकिन कांवड़ यात्रा के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी ने कुछ कांवड़ियों पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया है।
3: भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकल चुके हैं, तन पर भगवा, कांधे पर कांवड़ और महादेव का उद्घोष। लेकिन इस यात्रा के साथ ही शुरू हो गई है सियासत और इस सियासत की शुरुआत की है ओवैसी के दल ने। AIMIM के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांवड़ ले जा रहे भोले के भक्तों में कुछ नशेड़ी होते हैं, उनसे सरकार कैसे निपटेगी।
4: क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए, जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं?
3: आरोप सिर्फ इतने नहीं, यूपी सरकार ने तय किया है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा निकलेगी उन रास्तों पर मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की दुकानें ढकी जाएंगी। जैसे यहां हापुड़ में शराब की दुकान पर पर्दा डाल दिया गया है। AIMIM यहां भी आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी करके दुकानें बंद कराई जा रही हैं।
4: कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं उनको किसने अधिकार दिया, वो कौन होते हैं। दूसरा कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई, आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं।
3: AIMIM ने कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए तो कांग्रेस AIMIM पर टूट पड़ी।
5: अरे बेवकूफी की बातें ना करें फालतू की, AIMIM जब बीजेपी की दलाली कर रहे हो, क्या वही जबान बोल रहे हो जो दूसरे लोग बोलते हैं?
3: बीजेपी भी अब हमलावर है और बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों का इलाज किया जाएगा।
6: लोग पगला रहे हैं, ऐसा करके अपनी कब्र खोदने का प्रयास
7: था। लेकिन इस तरह की बातें पहले भी कांवड़ यात्रियों पर जो है हमने देखा टीका टिप्पणी असदुल ओवैसी की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से होती रही है।
6: ऐसे राष्ट्र विरोधी भारतीय संसदीय विरोधी लोग
7: जी
6: पहले से सक्रिय है, इलाज किया जाएगा।
8: यूपी और उत्तराखंड की सरकार ने तय किया है कि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कांवड़ यात्रा पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: और अब बात पंजाब सरकार की करेंगे, जो चुनाव से पहले कई मुद्दों पर घिरती हुई नजर आ रही है। पेपर लीक और लाठी चार्ज पर केंद्र सरकार को घेरने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद सवालों के घेरे में है, जहां लड़ाई अब मान के आवाज से लेकर सड़क तक देखने को मिल रही है।
9: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं की एक ही मांग है, पेपर लीक मामले में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत पैंस इस्तीफा दें।
10: आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार एकदम चुप्पी साधे हुई है, टेक्निकलिटीज के पीछे छिप रही है, और इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अभी तक उन्होंने पंजाब के अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया।
9: उधर हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लेकर पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर जांच की मांग की है।
11: मैं डिमांड करती हूँ कि भगवंत मान को ही हटाया जाए, केजरीवाल हटाए, मनीष सिसोदिया जो इधर बोल के गया है कि धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाए, हम हटा देते तो हरजोत पैंस को हटाए ना। आज तक अपने एजुकेशन मिनिस्टर को आपने नहीं हटाया,
12: नहीं
11: हेल्थ मिनिस्टर को नहीं हटाया, तो आप खुद हटिए, क्योंकि आपकी सरकार को उधर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है।
9: फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की परीक्षा को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन पंजाब सरकार इसे पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला बता रही है।
13: ये चीटिंग का मामला था जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में हुआ, और इमीडिएटली पंजाब सरकार ने उस पर एक्शन लिया और जो दोषी लोग थे उनके खिलाफ एक्शन
9: लिया। इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर आप बीजेपी को घेर रही थी, तो वहीं अब बरनाला में पंजाब पुलिस के लाठीचार्ज पर विपक्ष मान सरकार को घेर रहा है। अलग अलग शहरों में बंद का ऐलान किया जा रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच बेअदबी के मामले में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अकाल तख्त ने सभी सिख विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों से मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी दूरी बनाए रखने की बात कही है।
14: गुरु दुखी ते पंथ दुखी दे किसे सवाल दा जवाब ना देन, ओदे वल मुंह ना करन, ओदा मुंह ना वेखन और ओदे तो किनारा करन। वो विधानसभा करके जा रहे, उदे करके थोड़ा जा रहे, कला मुख्यमंत्री थोड़ा सब कुछ हुंदा।
9: पंजाब में चुनाव से पहले भगवंत मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: से भी पास हुआ लोक परीक्षा संशोधन बिल। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, बख्शे नहीं जाएंगे शिक्षा माफिया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की घेरेबंदी, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस, परीक्षा बिल के दौरान असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी पुलिस की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन। असम में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 78 की मौत, सरकार का अहम ऐलान, 4 जिलों में ईएमआई पर 6 महीने की राहत। और सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा नेपाल, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 की मौत, दर्जनों घायल, करीब 6 शहरों में कर्फ्यू। संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगा।
1: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा, बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राज्यसभा में भी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। सवाल अभी है कि गृह मंत्री को संसद में घेरने में जुटा रहा विपक्ष क्या अब रणनीति बदल देगा? क्या अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि E20 और चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो जाए ताकि फायदा उत्तर प्रदेश में उठाया जा सके? और क्या गृह मंत्री को लेकर राहुल गांधी के सवाल के जवाब में बीजेपी ने जो कहा है उससे अखिलेश यादव को भी ढाल मिल गई है?
2: वंदे मातरम बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी पास हो गया, हंगामा जरूर हुआ।
3: जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में
2: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पेपर लीक रोकने वाला बिल पास हो रहा है।
4: सर, देयर इज अ नेशनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू रेज ऑन लाइन।
2: तो यानी बिल पास हो रहे हैं, सदन चल रहा है। सवाल सीधा सा है, क्या राहुल गांधी की रणनीति सरकार ने फेल कर दी या फिर विपक्ष के बीच मुद्दों पर अब आगे बढ़ने की राजनीति हो रही है? सीधी सी बात पहली यही कि जो राहुल गांधी बुधवार तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बताते रहे कि गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग पर कोई कंफ्यूजन नहीं है।
5: कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है।
6: हाँ।
5: क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल
6: लिखा हुआ है अमित शाह मस्ट गो, देयर इज नो एम्बिग्युइटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन।
7: लेकिन संसद में अमित शाह को लेकर जो रणनीति राहुल गांधी चाहते हैं उससे अलग स्टैंड लिया जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस सदन ठप नहीं करती, पेपर लीक बिल पर बहस में हिस्सा लेती है, अमित शाह का इस्तीफा खड़गे मानते हैं और तभी ऐसा बयान देते हैं जिस पर हंगामा होता है।
8: बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके बेहोश में क्या है।
7: लेकिन इन सब के बीच अखिलेश की रणनीति क्या है? सवाल की वजह ये पोस्ट है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर डाला कि साइकिल की रफ्तार जोरदार है क्योंकि साइकिल E20 से आजाद है। ये पोस्ट क्या इस बात की तरफ इशारा करती है कि अखिलेश संसद में अब E20 के मुद्दे पर बढ़ना चाहते हैं? E20 के अलावा समाजवादी पार्टी संसद में अब और सत्ता और विपक्ष के बीच बहुत खींचतान की जगह उन मुद्दों पर चर्चा चाहती दिखती है जिसका वो फायदा यूपी की राजनीति में उठा सके। जैसे E20 के अलावा वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विषय पर चर्चा चाहते हैं।
9: राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा आज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ संसद के अंदर नजर आ रहा है। इस वक्त जो है मकर द्वार के सामने एक दान पात्र रख दिया गया है और इस दान पात्र के अंदर विपक्ष के सभी सांसद दान डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए कैसे जो सांसद है उनके हाथ में जो दान पात्र है उसमें कुछ अलग अलग सांसद, ये दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद है जिन्होंने हाथ में दान पात्र लिया हुआ है और स्वागत हो रहा है। जो TMC के सांसद है वो उसमें दान डालते हुए नजर आ रहे और जैसे ही ये दान डाला जाता है वैसे ही संसद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो इस दान पात्र को छीनने लगते हैं, यानी कि एक प्रतीकात्मक विरोध है जिसमें जैसे ही दान डलेगा वैसे ही उस डब्बे को लेकर जो है जो वो लोग यहां से चले जाएंगे और ये आरोप BJP पर लगाया जा रहा है कि आप दान लेते हैं और उसी चंदे को जो है लेकर भाग जाते हैं।
10: ये लोग चंदा चोरी की भी नहीं बात करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि बहस हो क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया है चाहे वो हमारे देश के हो चाहे NRIs हो, कितना चंदा आया, हजारों करोड़ों का चंदा आया है। आज ये लोग चंदा चोरी पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये केवल ध्यान भटकाने वाली राजनीति पे बात करना चाहते हैं।
11: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पे कार्य कर रही है, विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं, ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं, ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कारसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी।
7: दिलचस्प राजनीति है कि जब सदन में गृहमंत्री पर सवाल प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से फायरिंग को लेकर विपक्ष उठाता है तो सत्ता पक्ष इस पर बचाव में कहता है कि आदेश मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट या अधिकारी देते हैं।
12: वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है, हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है।
7: इसी बयान को आधार बनाकर अब अखिलेश यादव अयोध्या में चली गोलियों के कटघरे में BJP की तरफ से समाजवादी पार्टी को खड़ा किए जाते रहने का बचाव करते हैं। सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जब अपने पर आरोप की उंगली उठी तब ये बात समझ में आई।
0: E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ी के इंजन में बदलाव से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार ने माना है कि E20 का असर BS3 गाड़ियों पर हो सकता है, उसके रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं।
13: आज जो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है?
14: इथेनॉल पर जनता के जुड़े सवाल से आज तक ने कुछ दिन पहले सरकार को खबरदार करके पूछा था कि क्या इथेनॉल वाला पेट्रोल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है।
13: आपको लग रहा है सेफ है इथेनॉल?
14: इस पर सरकार ने दावा किया कि उसने पूरी तैयारी के साथ ये काम किया।
15: कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया और मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता।
14: सरकार ने एक बार फिर E20 यानी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का बचाव किया।
15: मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है, और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिस भी की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे। और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
14: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया है कि BS3 मानक वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, जिन्हें सर्विसिंग के दौरान बदला जा सकता है। इनसे किसी बड़ी मैकेनिकल समस्या का संकेत नहीं मिलता, मतलब इसके इस्तेमाल से इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं होगी। इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दो पहिया चार पहिया गाड़ियों पर E20 ईंधन की स्टडी की थी। जून 2021 की स्टडी में पाया गया कि पुरानी गाड़ियों की परफॉर्मेंस में कोई खास अंतर नहीं दिखा है और न ही E20 पेट्रोल के चलने पर उसमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई।
13: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
15: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
13: हाँ।
15: क्या आपके नजरों में आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है? अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई?
13: अभी तक तो नहीं।
15: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती हैं मुझे?
14: साल 2005 से 2016 के बीच बनी गाड़ियां BS3 मानक वाली गाड़ियां हैं। माइलेज को लेकर मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसकी वजह सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि ये ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और गाड़ी के रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार ने बताया कि E20 का इस्तेमाल दुनिया में एक सदी से ज्यादा समय से हो रहा है, जिसमें सभी बड़े देश शामिल हैं।
15: अमेरिका में इथेनॉल है,
13: हाँ।
15: ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है,
13: हाँ।
15: स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है।
14: सरकार की दलील है कि E20 को लागू करने की तैयारी बारीकी से की गई है। पेट्रोल पंप तक पहुंचने से पहले कई राउंड की टेस्टिंग में इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम, रबर के पार्ट्स, एमिशन और फ्यूल एफिशिएंसी जैसी सभी चीजों की जांच की गई। अगर निर्माताओं को E20 की सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता तो वो इसकी वारंटी नहीं देते।
15: ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया।
14: BS3 मानक की गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिनके माइलेज और इंजन की हालत रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार का कहना है कि अगर ऐसी गाड़ियों के रबर पार्ट्स खराब भी होते हैं तो उन्हें आसानी से रूटीन सर्विसिंग में बदला जा सकता है।
0: 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने ही बताया कि 2800 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी भीड़ में शामिल थे। दिल्ली पुलिस का यह दावा अब और उसी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि आज तक को 20 तारीख की जो 5 CCTV फुटेज मिले हैं उसमें प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक जा पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से वहां से उन्हें हटाया जा सका। हर CCTV में दिल्ली पुलिस की लापरवाही साफ नजर आई।
16: ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रोटेस्टर यहां खड़े हैं पुलिस के बीच।
14: बीस जुलाई को क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारी संसद में कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे? अगर प्रदर्शनकारी संसद के अंदर आ जाते तो क्या होता? संसद तक कुछ प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंचे? दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चक्र में प्रदर्शनकारी सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए? आज तक के पास आई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने दिल्ली पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जब प्रदर्शनकारियों के इरादों का पता था, जब दिल्ली पुलिस अच्छे से जानती थी कि प्रदर्शनकारी संसद पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब भी वो खबरदार क्यों नहीं हुई? आखिर प्रदर्शनकारी संसद के गेट के करीब तक कैसे पहुंच गए? 20 तारीख को दोपहर 2 बजे तक प्रदर्शनकारी संसद के गेट तक करीब करीब पहुंच ही गए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, संसद के अंदर गाड़ियां चलती दिख रही हैं, लोगों की आवाजाही साफ नजर आ रही है। संसद भवन की दीवार के पास भीड़ खड़ी हुई देखी जा सकती है। पुलिस भी वहां मौजूद है, जिससे भीड़ की झड़प होती है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। अगर वो ऐसा नहीं करती या फिर इससे 2 गुनी 3 गुनी भीड़ अगर यहां होती तो फिर पुलिस को इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो सकता था।
17: पार्लियामेंट के गेट से बेहद करीब तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये देखे, ये अगर आप देखेंगे ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है। ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहे थे, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है, प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की गई, मजबूत बैरिकेड्स वो क्यों नहीं लगाए गए, और साथ ही साथ जब इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी थी तो इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नई दिल्ली और आसपास में कैसे इकट्ठा हो गई।
14: दिल्ली पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी? प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन करने कैसे दिया गया? अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अब ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। संसद के पास लाल रंग की दिख रही इमारत सेल्फी पॉइंट है, जिसकी तरफ अचानक प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते दिखे थे। यहाँ खड़े पुलिस वाले जैसे ही भीड़ को देखते हैं वो बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद करते नजर आते हैं। रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों का पहुंचना चिंताजनक है, क्योंकि यहां से संसद बहुत नजदीक है। रोजमर्रा की तरह 20 जुलाई को तब यहां ट्रैफिक चलता दिखता है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखकर आम लोग भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने वाला यहां कोई नहीं था। अगर भीड़ शांतिपूर्ण की जगह उग्र होती तो बड़े आराम से आम लोगों की गाड़ियों को निशाना बना सकती थी, क्योंकि यहां पर पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था, जो थे वो एक कोने में खड़े थे। रेल भवन के बाहर की एक और सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जिसमें पुलिस और आरएएफ के जवान देखे जा सकते हैं, जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रेल भवन से दूर करने के लिए धक्के मारते हैं। अगर भीड़ यहां भड़क जाती तो हालात बेकाबू हो सकते थे। हालांकि पुलिस ने यहां तैयारी कर रखी थी। अब सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जो संसद भवन के बेहद नजदीक बने मेट्रो स्टेशन में से एक है। यहां भी 20 तारीख को दोपहर 12:34 पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक इस मेट्रो स्टेशन की तरफ भीड़ भागती हुई आई। पुलिस को हंगामे की आशंका थी, इसलिए यहां पहले से बैरिकेडिंग की गई थी। पीसीआर वैन भी खड़ी देखी जा सकती है।
17: 5 सीसीटीवी संसद भवन के आसपास हमने हमारे पास आया है, जिससे ये पता चलता है कि संसद भवन की दीवार के बेहद करीब जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस पर इन 5 तस्वीरों को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी मजबूत तैयारी क्यों नहीं की थी, भीड़ संसद भवन के आसपास पहुंचने तक कैसे कामयाब हो गई थी, और 20 जुलाई को ऐसी भी तस्वीरें आई थी जब संसद भवन के अंदर सुरक्षा जो कर्मी थे वो अलर्ट मोड में आ गए थे, तो वो अलर्ट मोड में क्यों आए थे 20 जुलाई को जब वो तस्वीर आई थी? वो इसलिए आए थे क्योंकि ये सीसीटीवी जिसमें अगर आप देखें संसद भवन की दीवार, प्रोटेस्टर झड़प होते हुए आपको दिखाई दे रहा, संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है।
14: 20 तारीख को प्रदर्शन की ये 5 सीसीटीवी तस्वीरें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाती हैं, बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद के दरवाजे तक पहुंच गई। अगर ज्यादा लोग होते तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने में काफी दिक्कत आती, लेकिन किसी तरह प्रदर्शनकारी पीछे धकेल दिए गए और संसद में घुसने से बच गए। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। इन अपराधियों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और तकनीकी तरीकों से की गई है। अब चर्चाएं इस बात की हो रही है कि जंतर मंतर की ही तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद में भी बाहर यही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता तो क्या पता चलता।
14: दिल्ली पुलिस दावा करती है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। हत्या के आरोप से जुड़े 101 आरोपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान देखे गए, ये दावा दिल्ली पुलिस का है। हत्या के प्रयास के आरोप वाले 62 लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी भीड़ में दिल्ली पुलिस को दिखे। 284 डकैती और लूट के आरोपी, रेप केस के 61, पॉक्सो के 6 आरोपी दिल्ली पुलिस कहती है कि जंतर मंतर पर दिख रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आर्म्स एक्ट के 229 आरोपी, स्नैचिंग के 135, किडनैपिंग के 19 आरोपी, ऐसे अलग अलग कुल 2873 चेहरों को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से दिल्ली पुलिस ने पहचानने का दावा किया जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रिकॉर्ड वाला है और वो जंतर मंतर पर पुलिस कहती है प्रदर्शन के दौरान दिखे भी। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का सीधा दावा नहीं करती कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ये 2873 लोग 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर पर किसी तरह की हिंसा या उपद्रव में शामिल थे। पुलिस कहती है कि वो इसकी जांच कर रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो तकनीक है जिसमें पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड वालों के डेटाबेस से मिलान करके अपराध के आरोपियों को भीड़ में देखती है, पहचानती है। लेकिन सवाल है कि जंतर मंतर पर क्या इस तकनीक का इस्तेमाल करके मिले डेटा से ये नैरेटिव देने की कोशिश है कि जंतर मंतर पर पहुंचने वालों या फिर 20 जुलाई के प्रदर्शन में अपराध के आरोपी भी बहुत थे। और तब एक सवाल आता है, सवाल देश की संसद से जुड़ा है जहां संसद में लोग पूछते हैं कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बाहर लगा होता तो फिर सांसद कैसे दिखते। एडीआर का डेटा कहता है कि लोकसभा के 251 यानी करीब 46% सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर के डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि संसद के बाहर अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया जाए तो 170 सांसद यानी करीब 31% ऐसे मिलेंगे जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत दूसरे गंभीर आपराधिक केस हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अगर संसद में होने लगे तो एडीआर के डेटा के मुताबिक पता चलेगा कि 16 सांसदों पर तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का केस चल रहा है जिनमें से 2 सांसद के खिलाफ रेप तक के मामले दर्ज हैं, 4 सांसद के खिलाफ किडनैपिंग का मामला है तो लोकसभा के 43 सांसद के खिलाफ हेट स्पीच का केस है। राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहा है। राज्यसभा के 73 में से 36 यानी 16% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। 1 सांसद पर मर्डर का केस है, 4 सांसद पर हत्या की कोशिश और 3 पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस हैं। ये तस्वीर तब दिख सकती है जब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम देश की संसद के बाहर भी लग जाए।
0: सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस पवित्र महीने के साथ ही शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा। भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर निकल रहे हैं लेकिन कांवड़ यात्रा के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी ने कुछ कांवड़ियों पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया है।
18: भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकल चुके हैं, तन पर भगवा, कांधे पर कांवड़ और महादेव का उद्घोष। लेकिन इस यात्रा के साथ ही शुरू हो गई है सियासत और इस सियासत की शुरुआत की है ओवैसी के दल ने। AIMIM के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांवड़ ले जा रहे भोले के भक्तों में कुछ नशेड़ी होते हैं, उनसे सरकार कैसे निपटेगी।
19: क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं उनको रोकने के लिए, जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं?
18: आरोप सिर्फ इतने नहीं, यूपी सरकार ने तय किया है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा निकलेगी उन रास्तों पर मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की दुकानें ढकी जाएंगी। जैसे यहाँ हापुड़ में शराब की दुकान पर पर्दा डाल दिया गया है। AIMIM यहाँ भी आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी करके दुकानें बंद कराई जा रही हैं।
19: कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उनको किसने अधिकार दिया, वो कौन होते हैं। दूसरा, कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई, आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं।
18: AIMIM ने कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए तो कांग्रेस AIMIM पर टूट पड़ी।
20: अरे बेवकूफी की बातें ना करें फालतू की। MIM जब बीजेपी की दलाली कर रहे हो क्या? वही जबान बोल रहे हो जो दूसरे लोग बोलते हैं।
18: बीजेपी भी अब हमलावर है और बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों का इलाज किया जाएगा।
21: लोग पगला रहे हैं और ऐसा करके अपनी कब्र खोदने का प्रयास कर।
22: लेकिन इस तरह की बातें पहले भी कांवड़ यात्रियों पर जो है हमने देखा, टीका टिप्पणी असदुल ओवैसी की तरफ से, उनकी पार्टी नेताओं की तरफ से होती रही है।
21: ऐसे राष्ट्र विरोधी, भारतीय संस्कृति विरोधी लोग
22: जी
21: पहले से सक्रिय है, इलाज किया जाएगा।
18: यूपी और उत्तराखंड की सरकार ने तय किया है कि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कांवड़ यात्रा पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात पंजाब सरकार की करेंगे, जो चुनाव से पहले कई मुद्दों पर घिरती हुई नजर आ रही है। पेपर लीक और लाठी चार्ज पर केंद्र सरकार को घेरने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद सवालों के घेरे में है, जहां लड़ाई अब मान के आवाज से लेकर सड़क तक देखने को मिल रही है।
23: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं की एक ही मांग है, पेपर लीक मामले में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस इस्तीफा दें।
24: आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार एकदम चुप्पी साधे हुई है, टेक्निकलिटीज के पीछे छिप रही है। और इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अभी तक उन्होंने पंजाब के अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया?
23: उधर हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लेकर पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर जांच की मांग की है।
25: मैं डिमांड करती हूँ कि भगवंत मान को ही हटाया जाए, केजरीवाल हटाए, मनीष सिसोदिया जो इधर बोल के गया है कि धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाए, हम हटा देते, तो हरजोत बैंस को हटाए ना। आज तक अपने एजुकेशन मिनिस्टर को आपने नहीं हटाया,
26: नहीं
25: हेल्थ मिनिस्टर को नहीं हटाया, तो आप खुद हटिए, क्योंकि आपकी सरकार को उधर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है।
23: फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की परीक्षा को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन पंजाब सरकार इसे पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला बता रही है।
27: ये चीटिंग का मामला था जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में हुआ, और इमीडिएटली पंजाब सरकार ने उस पर एक्शन लिया और जो दोषी लोग थे उनके खिलाफ एक्शन
23: लिया। इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर आप बीजेपी को घेर रही थी, तो वहीं अब बरनाला में पंजाब पुलिस के लाठीचार्ज पर विपक्ष मान सरकार को घेर रहा है। अलग अलग शहरों में बंद का ऐलान किया जा रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच बेअदबी के मामले में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अकाल तख्त ने सभी सिख विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों से मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी दूरी बनाए रखने की बात कही है।
28: गुरु दुखी ते पंथ दुखी दे किसे सवाल दा जवाब ना देन, ओदे वल मुंह ना करन, ओदा मुंह ना वेखन और ओदे तो किनारा करन। वो विधान सभा करके जा रहे, उदे करके थोड़ा जा रहे, कला मुख्यमंत्री थोड़ा सब कुछ हंदा।
23: पंजाब में चुनाव से पहले भगवंत मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
29: When your cat is acting weird-er, or your dog is being loud-er, your turtle moves slow-er.
30: Hello, Ted.
29: Your cat seems thirsty-er.
31: Whoa, slow down, buddy.
29: Or your puppy is acting clumsy-er. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
30: Veg ER for Pets, this is Kate.
29: Veg, the better, kinder ER for Pets.
32: Tune in's how to
1: A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.

0: से भी पास हुआ लोक परीक्षा संशोधन बिल। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, बख्शे नहीं जाएंगे शिक्षा माफिया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की घेरेबंदी, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस, परीक्षा बिल के दौरान असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी पुलिस की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन। असम में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 78 की मौत, सरकार का अहम ऐलान, 4 जिलों में ईएमआई पर 6 महीने की राहत। और सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा नेपाल, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 की मौत, दर्जनों घायल, करीब 6 शहरों में कर्फ्यू। संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगा।
1: साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राज्यसभा में भी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। सवाल अब यह कि गृह मंत्री को संसद में घेरने में जुटा रहा विपक्ष क्या अब रणनीति बदल देगा? क्या अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि E20 और चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो जाए ताकि फायदा उत्तर प्रदेश में उठाया जा सके? और क्या गृह मंत्री को लेकर राहुल गांधी के सवाल के जवाब में बीजेपी ने जो कहा है उससे अखिलेश यादव को भी ढाल मिल गई है?
2: वंदे मातरम बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी पास हो गया, हंगामा जरूर हुआ।
3: जो सदस्य इसके पक्ष में वो हां कहे, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहे, मेरे विचार में
2: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पेपर लीक रोकने वाला बिल पास हो रहा है।
4: सर, देयर इज अ नेशनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू रेज ऑन
2: लाइव। तो यानी बिल पास हो रहे हैं, सदन चल रहा है। सवाल सीधा सा है, क्या राहुल गांधी की रणनीति सरकार ने फेल कर दी या फिर विपक्ष के बीच मुद्दों पर अब आगे बढ़ने की राजनीति हो रही है? सीधी सी बात पहली यही कि जो राहुल गांधी बुधवार तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बताते रहे कि गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग पर कोई कंफ्यूजन नहीं है।
5: कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है।
2: हाँ।
5: क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल
6: जाएगा? हुआ है अमित शाह मस्ट गो, देयर इज नो एम्बिग्युइटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन।
7: लेकिन संसद में अमित शाह को लेकर जो रणनीति राहुल गांधी चाहते हैं उससे अलग स्टैंड लिया जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस सदन ठप नहीं करती, पेपर लीक बिल पर बहस में हिस्सा लेती है, अमित शाह का इस्तीफा खड़गे मानते हैं और तभी ऐसा बयान देते हैं जिस पर हंगामा होता है।
8: बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे के सामने हम दिखाएंगे इनके क्या है।
7: लेकिन इन सब के बीच अखिलेश की रणनीति क्या है? सवाल की वजह ये पोस्ट है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर डाला कि साइकिल की रफ्तार जोरदार है क्योंकि साइकिल E20 से आजाद है। ये पोस्ट क्या इस बात की तरफ इशारा करती है कि अखिलेश संसद में अब E20 के मुद्दे पर बढ़ना चाहते हैं? E20 के अलावा समाजवादी पार्टी संसद में अब और सत्ता और विपक्ष के बीच बहुत खींचतान की जगह उन मुद्दों पर चर्चा चाहती दिखती है जिसका वो फायदा यूपी की राजनीति में उठा सके, जैसे E20 के अलावा वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विषय पर चर्चा चाहते हैं।
9: राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा आज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ संसद के अंदर नजर आ रहा है। इस वक्त जो है मकर द्वार के सामने एक दान पात्र रख दिया गया है और इस दान पात्र के अंदर विपक्ष के सभी सांसद दान डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए कैसे जो सांसद है उनके हाथ में जो दान पात्र है उसमें कुछ अलग अलग सांसद, ये दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद है जिन्होंने हाथ में दान पात्र लिया हुआ है और स्वागत हो रहा है। जो TMC के सांसद है वो उसमें दान डालते हुए नजर आ और जैसे ही ये दान डाला जाता है वैसे ही संसद जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो इस दान पात्र को छीनने लगते हैं, यानी कि एक प्रतीकात्मक विरोध है जिसमें जैसे ही दान डलेगा वैसे ही उस डब्बे को लेकर जो है जो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। और ये आरोप BJP पर लगाया जा रहा है कि आप दान लेते हैं और उसी चंदे को जो है लेकर भाग जाते हैं।
10: ये लोग चंदा चोरी की भी नहीं बात करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि बहस हो क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया है चाहे वो हमारे देश के हो चाहे NRIs हो, कितना चंदा आया, हजारों करोड़ों का चंदा आया है। आज ये लोग चंदा चोरी पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये केवल ध्यान भटकाने वाली राजनीति पे बात करना चाहते हैं।
11: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पे कार्य कर रही है, विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रहा है। इसके उपरांत भी राजनीति करने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहां थी ही नहीं, ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं, ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कारसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी।
7: दिलचस्प राजनीति है कि जब सदन में गृहमंत्री पर सवाल प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से फायरिंग को लेकर विपक्ष उठाता है तो सत्ता पक्ष इस पर बचाव में कहता है कि आदेश मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट या अधिकारी देते हैं।
12: वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है, हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है।
7: इसी बयान को आधार बनाकर अब अखिलेश यादव अयोध्या में चली गोलियों के कटघरे में BJP की तरफ से समाजवादी पार्टी को खड़ा किए जाते रहने का बचाव करते हैं। सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जब अपने पर आरोप की उंगली उठी तब ये बात समझ में आई।
0: E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ी के इंजन में बदलाव से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार ने माना है कि E20 का असर BS3 गाड़ियों पर हो सकता है, उसके रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं।
13: आज जो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है? गाड़ियां खराब हो रही
14: हैं। इथेनॉल पर जनता के जुड़े सवाल से आज तक ने कुछ दिन पहले सरकार को खबरदार करके पूछा था कि क्या इथेनॉल वाला पेट्रोल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है।
13: आपको लग रहा है सेफ है इथेनॉल?
14: इस पर सरकार ने दावा किया कि उसने पूरी तैयारी के साथ ये काम किया।
15: कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया और मैंने

0: मैंने कल ही कहा कि जिसमें की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया है कि BS3 मानक वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं जिन्हें सर्विसिंग के दौरान बदला जा सकता है। इनसे किसी बड़ी मैकेनिकल समस्या का संकेत नहीं मिलता, मतलब इसके इस्तेमाल से इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं होगी। इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दो पहिया चार पहिया गाड़ियों पर E20 ईंधन की स्टडी की थी। जून 2021 की स्टडी में पाया गया कि पुरानी गाड़ियों की परफॉर्मेंस में कोई खास अंतर नहीं दिखा है और न ही E20 पेट्रोल के चलने पर उसमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई।
2: क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
0: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
2: हाँ।
0: क्या आपके नजरों में आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है? अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई?
2: अभी तक तो नहीं।
0: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती हैं मुझे?
1: साल 2005 से 2016 के बीच बनी गाड़ियां BS3 मानक वाली गाड़ियां हैं। माइलेज को लेकर मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसकी वजह सिर्फ ईंधन नहीं है बल्कि ये ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और गाड़ी के रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार ने बताया कि E20 का इस्तेमाल दुनिया में एक सदी से ज्यादा समय से हो रहा है जिसमें सभी बड़े देश शामिल हैं।
0: अमेरिका में इथेनॉल है,
2: हाँ।
0: ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है,
2: हाँ।
0: स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है।
1: सरकार की दलील है कि E20 को लागू करने की तैयारी बारीकी से की गई है। पेट्रोल पंप तक पहुंचने से पहले कई राउंड की टेस्टिंग में इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम, रबर के पार्ट्स, एमिशन और फ्यूल एफिशिएंसी जैसी सभी चीजों की जांच की गई। अगर निर्माताओं को E20 की सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता तो वो इसकी वारंटी नहीं देते।
0: ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है। उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया।
1: BS3 मानक की गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं जिनके माइलेज और इंजन की हालत रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार का कहना है कि अगर ऐसी गाड़ियों के रबर पार्ट्स खराब भी होते हैं तो उन्हें आसानी से रूटीन सर्विसिंग में बदला जा सकता है।
3: 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने ही बताया कि 2800 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी भीड़ में शामिल थे। दिल्ली पुलिस का यह दावा अब और उसी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि आज तक को 20 तारीख की जो 5 CCTV फुटेज मिले हैं उसमें प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक जा पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से वहां से उन्हें हटाया जा सका। हर CCTV में दिल्ली पुलिस की लापरवाही साफ नजर आई।
4: ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रोटेस्टर यहां खड़े हैं पुलिस के बीच।
1: बीस जुलाई को क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारी संसद में कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे? अगर प्रदर्शनकारी संसद के अंदर आ जाते तो क्या होता? संसद तक कुछ प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंचे? दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चक्र में प्रदर्शनकारी सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए? आज तक के पास आई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने दिल्ली पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जब प्रदर्शनकारियों के इरादों का पता था, जब दिल्ली पुलिस अच्छे से जानती थी कि प्रदर्शनकारी संसद पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब भी वो खबरदार क्यों नहीं हुई? आखिर प्रदर्शनकारी संसद के गेट के करीब तक कैसे पहुंच गए? 20 तारीख को दोपहर 2 बजे तक प्रदर्शनकारी संसद के गेट तक करीब करीब पहुंच ही गए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं संसद के अंदर गाड़ियां चलती दिख रही हैं, लोगों की आवाजाही साफ नजर आ रही है, संसद भवन की दीवार के पास भीड़ खड़ी हुई देखी जा सकती है, पुलिस भी वहां मौजूद है जिससे भीड़ की झड़प होती है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया।

0: अगर वो ऐसा नहीं करती या फिर इससे दो गुनी तीन गुनी भीड़ अगर यहाँ होती तो फिर पुलिस को इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो सकता था।
1: पार्लियामेंट के गेट से बेहद करीब तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है कि ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है, ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहे थे, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है, प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की गई, मजबूत बैरिकेड्स वो क्यों नहीं लगाए गए, और साथ ही साथ जब इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगी थी तो इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो नई दिल्ली और आसपास में कैसे इकट्ठा हो गई।
0: दिल्ली पुलिस आखिरकार क्या कर रही थी, प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन करने कैसे दिया गया? अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अब ये सीसीटीवी वीडियो देखिए, संसद के पास लाल रंग की दिख रही इमारत सेल्फी पॉइंट है, जिसकी तरफ अचानक प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते दिखे थे। यहाँ खड़े पुलिस वाले जैसे ही भीड़ को देखते हैं वो बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को बंद करते नजर आते हैं। रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों का पहुंचना चिंताजनक है क्योंकि यहां से संसद बहुत नजदीक है। रोजमर्रा की तरह 20 जुलाई को तब यहां ट्रैफिक चलता दिखता है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखकर आम लोग भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने वाला यहां कोई नहीं था। अगर भीड़ शांतिपूर्ण की जगह उग्र होती तो बड़े आराम से आम लोगों की गाड़ियों को निशाना बना सकती थी, क्योंकि यहां पर पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था, जो थे वो एक कोने में खड़े थे। रेल भवन के बाहर की एक और सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जिसमें पुलिस और आरएएफ के जवान देखे जा सकते हैं, जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रेल भवन से दूर करने के लिए धक्के मारते हैं। अगर भीड़ यहां भड़क जाती तो हालात बेकाबू हो सकते थे, हालांकि पुलिस ने यहां तैयारी कर रखी थी। अब सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जो संसद भवन के बेहद नजदीक बने मेट्रो स्टेशन में से एक है। यहां भी 20 तारीख को दोपहर 12:34 पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक इस मेट्रो स्टेशन की तरफ भीड़ भागती हुई आई। पुलिस को हंगामे की आशंका थी, इसलिए यहां पहले से बैरिकेडिंग की गई थी। पीसीआर वैन भी खड़ी देखी जा सकती है।
1: 5 सीसीटीवी संसद भवन के आसपास हमने हमारे पास आया है, जिससे ये पता चलता है कि संसद भवन की दीवार के बेहद करीब जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस पर इन 5 तस्वीरों को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी मजबूत तैयारी क्यों नहीं की थी, भीड़ संसद भवन के आसपास पहुंचने तक कैसे कामयाब हो गई थी, और 20 जुलाई को ऐसी भी तस्वीरें आई थी जब संसद भवन के अंदर सुरक्षा जो कर्मी थे वो अलर्ट मोड में आ गए थे, तो वो अलर्ट मोड में क्यों आए थे 20 जुलाई को जब वो तस्वीर आई थी? वो इसलिए आए थे क्योंकि ये सीसीटीवी जिसमें अगर आप देखें संसद भवन की दीवार, प्रोटेस्टर झड़प होते हुए आपको दिखाई दे रहा, संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है।
0: 20 तारीख को प्रदर्शन की ये 5 सीसीटीवी तस्वीरें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाती हैं, बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद के दरवाजे तक पहुंच गई। अगर ज्यादा लोग होते तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने में काफी दिक्कत आती, लेकिन किसी तरह प्रदर्शनकारी पीछे धकेल दिए गए और संसद में घुसने से बच गए। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। इन अपराधियों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और तकनीकी तरीकों से की गई है। अब चर्चाएं इस बात की हो रही है कि जंतर मंतर की ही तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद में भी बाहर यही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता तो क्या पता चलता।
0: दिल्ली पुलिस दावा करती है जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2873 लोग मौजूद थे। हत्या के आरोप से जुड़े 101 आरोपी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान देखे गए, ये दावा दिल्ली पुलिस का है। हत्या के प्रयास के आरोप वाले 62 लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी भीड़ में दिल्ली पुलिस को दिखे। 284 डकैती और लूट के आरोपी, रेप केस के 61, पॉक्सो के 6 आरोपी। दिल्ली पुलिस कहती है कि जंतर मंतर पर दिख रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आर्म्स एक्ट के 229 आरोपी, स्नैचिंग के 135, किडनैपिंग के 19 आरोपी। ऐसे अलग अलग कुल 2873 चेहरों को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से दिल्ली पुलिस ने पहचानने का दावा किया, जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रिकॉर्ड वाला है और वो जंतर मंतर पर पुलिस कहती है प्रदर्शन के दौरान दिखे भी। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का सीधा दावा नहीं करती कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ये 2873 लोग 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर पर किसी तरह की हिंसा या उपद्रव में शामिल थे। पुलिस कहती है कि वो इसकी जांच कर रही है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो तकनीक है जिसमें पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड वालों के डेटाबेस से मिलान करके अपराध के आरोपियों को भीड़ में देखती है, पहचानती है। लेकिन सवाल है कि जंतर मंतर पर क्या इस तकनीक का इस्तेमाल करके मिले डेटा से ये नैरेटिव देने की कोशिश है कि जंतर मंतर पर पहुंचने वालों या फिर 20 जुलाई के प्रदर्शन में अपराध के आरोपी भी बहुत थे। और तब एक सवाल आता है, सवाल देश की संसद से जुड़ा है, जहां संसद में लोग पूछते हैं कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बाहर लगा होता तो फिर सांसद कैसे दिखते। एडीआर का डेटा कहता है कि लोकसभा के 251 यानी करीब 46% सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर के डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि संसद के बाहर अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया जाए तो 170 सांसद यानी करीब 31% ऐसे मिलेंगे जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत दूसरे गंभीर आपराधिक केस हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अगर संसद में होने लगे तो एडीआर के डेटा के मुताबिक पता चलेगा कि 16 सांसदों पर तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का केस चल रहा है, जिनमें से 2 सांसद के खिलाफ रेप तक के मामले दर्ज हैं, 4 सांसद के खिलाफ किडनैपिंग का मामला है, तो लोकसभा के 43 सांसद के खिलाफ हेट स्पीच का केस है। राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहा है। राज्यसभा के 73 में से 36 यानी 16% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, 1 सांसद पर मर्डर का केस है, 4 सांसद पर हत्या की कोशिश और 3 पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस हैं। ये तस्वीर तब दिख सकती है जब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम देश की संसद के बाहर भी लग जाए।
2: सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस पवित्र महीने के साथ ही शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा। भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर निकल रहे हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी ने कुछ कांवड़ियों पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया है।
3: भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकल चुके हैं, तन पर भगवा, कांधे पर कांवड़ और महादेव का उद्घोष। लेकिन इस यात्रा के साथ ही शुरू हो गई है सियासत और इस सियासत की शुरुआत की है ओवैसी के दल। AIMIM के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांवड़ ले जा रहे भोले के भक्तों में कुछ नशेड़ी होते हैं, उनसे सरकार कैसे निपटेगी।
4: क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए, जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं?
3: आरोप सिर्फ इतने नहीं, यूपी सरकार ने तय किया है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा निकलेगी उन रास्तों पर मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की दुकानें ढकी जाएंगी। जैसे यहाँ हापुड़ में शराब की दुकान पर पर्दा डाल दिया गया है। AIMIM यहाँ भी आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी करके दुकानें बंद कराई जा रही हैं।
4: कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं उनको किसने अधिकार दिया, वो कौन होते हैं। दूसरा कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई, आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं।
3: AIMIM ने कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए तो कांग्रेस AIMIM पर टूट पड़ी।
5: अरे बेवकूफी की बातें ना करें फालतू की, AIMIM जब बीजेपी की दलाली कर रहे हो क्या, वही जबान बोल रहे हो जो दूसरे लोग बोलते हैं।
3: बीजेपी भी अब हमलावर है और बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों का इलाज किया जाएगा।
6: लोग पगला रहे हैं और ऐसा करके अपनी कब्र खोदने का प्रयास कर।
7: लेकिन इस तरह की बातें पहले भी कांवड़ यात्रियों पर जो है हमने देखा, टीका टिप्पणी असदुल्लाह ओवैसी की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से होती रही है।
6: ऐसे राष्ट्र विरोधी भारतीय संसदीय विरोधी लोग
8: जी
6: पहले से सक्रिय है, इलाज किया जाएगा।
9: यूपी और उत्तराखंड की सरकार ने तय किया है कि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कांवड़ यात्रा पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: और अब बात पंजाब सरकार की करेंगे, जो चुनाव से पहले कई मुद्दों पर घिरती हुई नजर आ रही है। पेपर लीक और लाठी चार्ज पर केंद्र सरकार को घेरने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद सवालों के घेरे में है, जहां लड़ाई अब मान के आवाज से लेकर सड़क तक देखने को मिल रही है।
10: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं की एक ही मांग है, पेपर लीक मामले में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत पैंस इस्तीफा दें।
11: आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार एकदम चुप्पी साधे हुई है, टेक्निकलिटीज के पीछे छिप रही है, और इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अभी तक उन्होंने पंजाब के अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया।
10: उधर हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लेकर पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर जांच की मांग की है।
12: मैं डिमांड करती हूँ कि भगवंत मान को ही हटाया जाए, केजरीवाल हटाए, मनीष सिसोदिया जो इधर बोल के गया है कि धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाए, हम हटा देते, तो हरजोत पैंस को हटाए ना। आज तक अपने एजुकेशन मिनिस्टर को आपने नहीं हटाया,
13: नहीं
12: हेल्थ मिनिस्टर को नहीं हटाया, तो आप खुद हटिए, क्योंकि आपकी सरकार को उधर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है।
10: फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की परीक्षा को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन पंजाब सरकार इसे पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला बता रही है।
14: ये चीटिंग का मामला था जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में हुआ, और इमीडिएटली पंजाब सरकार ने उस पर एक्शन लिया और जो दोषी लोग थे उनके खिलाफ एक्शन लिया।
10: इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर आप बीजेपी को घेर रही थी, तो वहीं अब बरनाला में पंजाब पुलिस के लाठीचार्ज पर विपक्ष मान सरकार को घेर रहा है। अलग अलग शहरों में बंद का ऐलान किया जा रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच बेअदबी के मामले में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अकाल तख्त ने सभी सिख विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों से मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी दूरी बनाए रखने की बात कही है।
15: गुरु दुखी ते पंथ दुखी दे किसे सवाल दा जवाब ना देन, ओदे वल मुंह ना करन, ओदा मुंह ना वेखन और ओदे तो किनारा करन। वो विधानसभा करके जा रहे, उदे करके थोड़ा जा रहे, कला मुख्यमंत्री थोड़ा सब कुछ हंदा।
10: पंजाब में चुनाव से पहले भगवंत मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: से भी पास हुआ लोक परीक्षा संशोधन बिल। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, बख्शे नहीं जाएंगे शिक्षा माफिया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की घेरेबंदी, अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस, परीक्षा बिल के दौरान असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी पुलिस की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर होगा एक्शन। असम में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 78 की मौत, सरकार का अहम ऐलान, 4 जिलों में ईएमआई पर 6 महीने की राहत। और सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा नेपाल, कई शहरों में बवाल और हंगामा, अब तक 3 की मौत, दर्जनों घायल, करीब 6 शहरों में कर्फ्यू। संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगा।
1: साथियों,